0: जन्मभूमि वडनगर में सेवा संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। अमित शाह ने वडनगर में बाइक रैली को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की, जो कि वाराणसी तक जाएगी।
1: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
0: उधर दिल्ली में इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने रक्तदान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली सरकार के मंत्री और सीएम रेखा गुप्ता ने भी रक्तदान किया।
2: प्रधानमंत्री जी का ये जन्म दिवस हम सबको जन सेवा की प्रेरणा देता है, और दिल्ली सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते हुए इस काम को करेगी। आज हम मोदी जी को समर्पित करते हुए हमारे स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए हुए एक बर्थडे सॉन्ग, एक गीत का भी लॉन्चिंग करेंगे।
0: कुल मिलाकर 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के जश्न के नाम रहा। आज तक ब्यूरो।
3: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान 19 सितंबर को आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री जाकर उन्हें मानहानि का नोटिस खुद सौंपेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अपने और अपनी कानूनी टीम के लिए वहां जाते समय पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासत हावी होती जा रही है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में दोनों नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई गई है। सतीश सालियान ने दोनों को बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, बयान वापस लेने, लिखित माफी मांगकर उसे प्रिंट मीडिया में छपवाने, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 मिनट का माफीनामा वीडियो जारी करने की मांग की है।
1: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी की तरफ से आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को डिफामेशन का नोटिस दिया गया है। ये अलग डिफामेशन का नोटिस है, उन्होंने जो पोस्ट किए उसके लिए एक और एडिशनल नोटिस दिया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है, ये उन्होंने मैटर वही है, सिमिलर। उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा था कि सतीश सालियान के पिताजी ने पिटीशन गलत फाइल की है और ऑलरेडी इस मैटर में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दी है, लेकिन राजकीय हेतु से प्रेरित होकर और पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ मीडिया के लोग जिनके इनके ये संबंध ठीक नहीं है उनके इशारे पे ये पिटीशन फाइल की गई है।
0: दिशा के पिता ने 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस में लिखा, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने मेरे बयानों और कानूनी कार्रवाई को लेकर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने मेरी बेटी दिशा की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। आदित्य कह रहे हैं कि वो दिशा को जानते ही नहीं थे, ये बात सच नहीं है। हमारे पास इन नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
2: 17 पन्ने के इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख दोनों को ही एक अनकंडीशनल अपॉलोजी देनी है, और अनकंडीशनल अपॉलोजी किस तरीके की हो ये भी स्पेसिफाई किया गया है। अखबार में एडवर्टीजमेंट A4 साइज के होने चाहिए, 3 मिनट से कम के वीडियो के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 500 करोड़ जो डिफेमेशन में है किया है, जिसकी वजह से जो इतनी बदनामी हुई है उसका हर्जाना ये 500 करोड़ भी दिए जाएं। तो ये तमाम बातें इन 17 पन्नों में लिखे हैं, और अब अनिल देशमुख और आदित्य ठाकरे दोनों के ही वकील ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर से डील कैसे किया जाए।
0: दरअसल 16 सितंबर को आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिशा मौत मिस्ट्री केस में सफाई देते हुए लिखा था, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और ना ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
1: और बाकी जो उन्होंने अभी जो नया पोस्ट किया है कि इन्वेस्टिगेशन शांतिपूर्ण तरीके से होने दो, मीडिया के लोग डिबेट ना करें, तो इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दिया, इन्होंने खुद उसके रिकॉर्ड डिलीट करवाए, इन्होंने खुद सतीश सालियान के पिटीशन को ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि सीबीआई को मैटर ना जाए, इसी और इन्हीं की वजह से डिले हुआ है ये सब। तो अभी वो तो हमने इनको खिलाफ लड़के सबूत देके ये ऑर्डर लिया है, इनका सारा झूठ पकड़ा गया है, और अब यही खुद चिल्ला रहे और ये जो कह रहे हैं दिशा का मेरा संबंध नहीं है, हमारे पास में सारे डिजिटल प्रूफ्स, आई विटनेस से लेके सारी चीजें है। ये दो चीजों का आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप इस ड्रग्स के बिजनेस में ड्रग्स का बिजनेस करते हुए और खुद ड्रग्स का सेवन करते हुए ड्रगिस्ट हो। ये नारकोटिक्स ब्यूरो के क्राइम नंबर 15/2020 में आया, आपके फोन सर्विलेंस में आया, ये हमने एफिडेविट पे कहा, उसका आप जवाब नहीं दे पाए और उसको मना भी नहीं कर रहे हो, उसके बारे में बोलो, और आपके मोबाइल टावर लोकेशन वहां थे, और आपने जो पहला डिफेंस लिया था कि मैं उस दिन बाहर था, मेरे नाना जी गुजर गए थे 8 जून को, मुंबई से बाहर था, वो भी झूठा साबित हो गया, नाना जी 14 जून को गुजरे थे। उसके बाद में आपने कहा इसकी जो आपकी मेन पार्टनर इन क्राइम है इसमें रिया चक्रवर्ती, बोले मैं उसको जानता नहीं, रिया ने कहा मैं आपको नहीं जानती, ये भी फोरेंसिक की चैट रिकवरी में ये भी झूठा साबित हो गया। उस तो आप हैबिचुअल झूठ बोलने वाले हो।
0: दिशा सालियान के पिता 6 साल से कह रहे हैं कि उनकी बेटी दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी। वो आदित्य ठाकरे समेत कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं।
3: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनो मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया है।
0: हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सतीश सालियान के आरोपों की कार्रवाई करने को कहा है। बीजेपी विधायक राम कदम भी लगातार तत्कालीन उद्धव सरकार की भूमिका संदिग्ध बताते रहे हैं।
4: दिशा सालियान की मौत, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष से ऊपर उठ करके है। श्रीमान आदित्य ठाकरे को 6.5 वर्ष लग गए ये बोलने के लिए कि उनका इस मामले में कोई संबंध नहीं है। इसके पहले उनकी खामोशी का क्या कारण था? किसने उन्हें रोका था? उनके पिता तो लगातार बार बार आरोप कर रहे थे, तब आप क्यों नहीं बोले? और कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का था? क्या कारण था कि आपकी सरकार पुलिस को जांच करने से क्यों रोक रही थी? और यदि पुलिस जांच नहीं कर रही है तो आपकी सरकार ने पुलिस से क्यों नहीं कहा उस पिता को न्याय मिलना चाहिए?
0: दिशा सालियान की मौत की शुरुआती जांच मुंबई पुलिस ने की थी। पुलिस की जांच में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया था। मार्च 2025 में सामने आई मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में भी दिशा की मौत को सुसाइड बताते हुए उनकी मानसिक परेशानी का जिक्र किया गया था। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो पाएगी?
5: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपने वकील अपने एडवोकेट द्वारा मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक पत्र द्वारा सिक्योरिटी मांगी है। ये सिक्योरिटी इसलिए मांगी है क्योंकि उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे, शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे पर जो वो मानहानि का नोटिस उन्हें देने जा रहे हैं, 500 करोड़ का ये मानहानि का नोटिस है, डिफेमेशन नोटिस है, वो बाय हैंड डिलीवर करना चाहते हैं। इसीलिए 19 सितंबर को वो आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री बैंड्रा जाएंगे और उन्होंने एडिक्वेट सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी की मांग की है पुलिस द्वारा।
0: विद्या के साथ दिव्यांश सिंह, मुंबई आज तक।
2: सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था से तो हर कोई वाकिफ रहता है, लेकिन जब डॉक्टर्स के नाम पर उनके ड्राइवर मरीजों का इलाज करने लग जाएं तो सोचिए कि क्या ही होता होगा। जी हाँ, कानपुर के सरकारी अस्पताल में ऐसा खिलवाड़ हुआ है। डॉक्टर आराम पर और उनका ड्राइवर काम पर। जब ड्राइवर डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कानपुर से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। तो आइए देखते हैं ड्राइवर डॉक्टर का ओपीडी में जानलेवा इलाज। तस्वीरें देखिए आप।
6: इस हरकत पर तो यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में इलाज नहीं बल्कि दिन दहाड़े मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ चल रहा है। जी हां, कानपुर के काशीराम अस्पताल में डॉक्टर आराम पर हैं और ड्राइवर काम पर हैं। ओपीडी में मरीज आ रहे हैं और डॉक्टर साहब का ड्राइवर मरीजों को धड़ाधड़ दवाइयां लिख रहा है। ड्राइवर डॉक्टर मरीजों से उनका हाल पूछता है और पर्ची पर पता नहीं कौन सी दवाई लिखकर आगे बढ़ा देता है, फिर अगले मरीज का नंबर लेता है। बाकायदा ड्राइवर की ये ओपीडी कानपुर के काशीराम अस्पताल में जनरल मेडिसिन विभाग के हेड और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ओपीडी में चल रही है। कहां तो स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कहां अस्पताल में डॉक्टर की जगह उनके ड्राइवर ही इलाज करने बैठ जाएं तो मरीजों का हाल क्या होगा, ये आप और हम सभी समझ सकते हैं। यकीनन ये मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ से कम नहीं है। जब ड्राइवर ने ओपीडी चलाई तो सीएमओ कहां थे? जब ड्राइवर ओपीडी में मरीजों को देख रहा था तब सीएमएस कहां थे? इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की ओपीडी में ड्राइवर कैसे बैठा? सवाल यह है कि जब अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ड्यूटी थी तो वो कहां थे? क्या डॉक्टर रामकेश ने ओपीडी में मरीजों के देखने के लिए अपने ड्राइवर को बैठा दिया? बड़ी बात यह है कि सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकर सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी अस्पताल में बैठते हैं, तो पूरा अस्पताल प्रशासन कहां था जिन्हें एक ड्राइवर ओपीडी चलाता हुआ नहीं दिखा? वीडियो वायरल होने के बाद पूरा अस्पताल प्रशासन जाग उठा है और कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि सरकारी सिस्टम कितना सड़ चुका है कि डॉक्टर की जगह ड्राइवर इलाज करता है। वीडियो में ड्राइवर मरीजों से उनकी परेशानी पूछता दिखाई दे रहा है। वो मरीजों से पूछ रहा है कि पेट में दर्द है या क्या तकलीफ है। इसके बाद वो पर्चे पर दवाई लिखता नजर आता है और मरीजों के पूछने पर वो उन्हें दवा अस्पताल से नहीं बल्कि बाहर मेडिकल स्टोर से लेने की बात कहता है। अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर ड्राइवर ने जो पर्ची पर दवाइयां लिख कर दी, आखिर पर्ची में क्या लिखा। पर्चे पर लिखा हुआ है जो हमें समझ आता है, कुछ BIG 500 लिखा है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता, फिर कुछ OINT KT2 और कॉम्बी बी टाइप लिखा है, साथ ही KT2 200 mg लिखा है। अब ये कौन सी दवाइयां हैं जो ड्राइवर डॉक्टर ने मरीजों को लिख कर दी हैं? अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के ड्राइवर ही इलाज करेंगे तो फिर किस काम के CMO, किस काम के CMS और किस काम का स्वास्थ्य मंत्रालय? अस्पताल में ड्राइवर मरीजों का इलाज करते हुए पकड़ा गया तो अस्पताल के CMO हरिदत्त नेमी ने जांच कमेटी गठित करके पतली गली से बच निकलने की कोशिश की। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMO साहब पल्ला नहीं झाड़ सकते।
7: कल से वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी उसे देखा है। वहाँ पर CMS हैं डॉक्टर पीयूष, तो डॉक्टर पीयूष से मेरी बात हुई है, तो वहाँ पर उसकी जांच बिठा दी है और जांच में जो भी जिसके भी जो दोष होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की।
6: अस्पताल के CMS यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीयूष मिश्रा ड्राइवर पर FIR की बात करके बच नहीं सकते। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMS साहब जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।
8: नहीं, मैंने स्पष्टीकरण ये अपना जवाब दे पहले। और 3 सदस्यीय हमने वरिष्ठ चिकित्सकों की कमेटी बनाई है और इनकी इस पूरी घटनाक्रम को उसके ड्राइवर के खिलाफ विरुद्ध FIR करेंगे और इनको इनके खिलाफ हम शासन को पत्र भी लिखने जा रहे हैं कि ये अनुशासनहीनता है। बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, ये हमें बड़ा खेद के लगता है कि सुनने में भी ये इतना बड़ा अच्छा अस्पताल जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ऊंचाई तक ले जाऊं, इस प्रकार का बहुत ही खराब कार्य किया है इन्होंने।
6: आज तक ने इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर रामकेश से भी पूछा कि उनकी OPD में उनकी कुर्सी पर उनका ड्राइवर इलाज करने क्यों बैठा। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, डॉक्टर रामकेश का कोई बहाना नहीं चलने वाला।
9: एक वीडियो वायरल हुआ कि आपका ड्राइवर आपकी सीट पे बैठ के दवा दे रहा
10: है। ये सर आप महोदय, आप लोगों के माध्यम से या साहब CMS साहब के माध्यम से मुझे पता चला, तत्काल प्रभाव से उसे मैंने बाहर निकाल दिया अपने से।
9: तो ये क्या पहले भी कभी बैठता था क्या?
10: नहीं, मेरे साथ रहता तो मेरी गाड़ी साफ करता था।
9: अच्छा, उसको दवा वगैरह कुछ तो नॉलेज होगा?
10: नहीं, कोई नॉलेज नहीं।
9: कोई नॉलेज नहीं। तो ये दवा किसको दे रहा था ये?
10: नहीं, वो अब हम नहीं थे। अब उसने क्या किया है ये बताया, ये पता चला है कि वो उसके जानने वाला था, उसको लिख दिया है दवा।
9: तो वो सर आप कहाँ गए थे उस समय?
10: मैं कोर्ट गया था।
9: कोर्ट गया था।
6: डॉक्टर रामकेश ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है, लेकिन डॉक्टर रामकेश कहते हैं जब उनका ड्राइवर OPD में इलाज कर रहा था वो कोर्ट गए हुए थे। अब डॉक्टर रामकेश सच बोल रहे हैं या झूठ? लेकिन आज तक को अस्पताल के CMS पीयूष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अस्पताल का अटेंडेंट रजिस्टर चेक किया तो डॉक्टर रामकेश की कोई न्यायालय ड्यूटी नहीं थी। डॉक्टर रामकेश का कोर्ट वाला बहाना एक्सपोज।
8: ये किस समय आके कब बैठा, उस दिन कमरा में न्यायालय कार्य लिखा हुआ था, लेकिन अभी हमने उपस्थिति पंजिका को देखा तो उसमें कोई न्यायालय ड्यूटी थी नहीं इनकी पिछले लगभग 15 दिन से। लेकिन ये कमरे में नहीं थे उस समय मौजूद, समय ये वीडियो वायरल हुआ है।
6: तो क्या डॉक्टर रामकेश आराम पर थे और ड्राइवर काम पर था? कानपुर के सरकारी अस्पताल ने एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। कैसे सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर दिन दहाड़े खिलवाड़ किया जाता है?
11: वीडियो वायरल होने के बाद CMO ने जांच की बात की है, संबंधित अस्पताल और डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। डॉक्टर ने भी अपना पल्ला यह कह के झाड़ दिया है कि उसने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या जांच की खाना पूर्ति से इतने बड़ी लापरवाही को दबाया जा सकता है? ना कोई तत्काल FIR, ना कोई ठोस कार्रवाई और ना कोई निलंबन। ऐसे में लोगों का प्रशासन से बड़ा सवाल है कि आखिरकार मरीजों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही कब तय होगी।
6: रंजय सिंह के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।
12: और अब आपको दिखाते हैं द लखनऊ स्टोरी। कैसे एक लड़की को कार के बोनट पर घसीटते हुए वीडियो वायरल हुआ, तो अब कहानी पूरी तरह से परत दर परत खुलती जा रही है। पीड़ित लड़की का आरोपी है कि शहनवाज नाम के लड़के ने पहले यश ठाकुर बनकर उससे दोस्ती की, उसके बाद विवाद होने पर शहनवाज ने लड़की को कार से घसीटा। अब इसमें हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है जो इसे लव जिहाद बता रहे हैं और तगड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं।
6: लखनऊ से आई ये तस्वीरें देश भर में वायरल हो जाती हैं, जिसमें सफेद रंग की ये वरना कार एक महिला को बोनट के आगे घसीटते हुए दिखाई देती है। वीडियो में कार का नंबर साफ दिखता है, यूपी 32KH8090। आज तक के कैमरे पर आकाश नाम के चश्मदीद ने इस पूरी घटना की गवाही दी।
13: दीदी मतलब कि उसके ऊपर ऐसे रुक गई, रोक रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसने नहीं रोका, फिर यहाँ यही मेरी दुकान के सामने रोका, ठीक है। रोकने के बाद में फिर आगे रुकते रुकते वहाँ रुक गई दीदी, फिर वहाँ रुकी और दीदी बस जैसे साइड से मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, बस तुरंत ही रुक गए। बस रोकने के बाद में बस इतनी स्पीड में भगाया जैसे दीदी थोड़ा साइड में, दीदी फिर ऐसे रोकने की कोशिश, बहुत गिर गई दीदी ने, तो यहाँ चोट खा गई। मेरे दुकान पे कस्टमर बैठे वो भी वीडियो बनाए।
6: कार और कार चलाने वाले शहनवाज को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही निकलती है। कार के भीतर गाड़ी चला रहे शख्स का नाम शहनवाज है और जिस लड़की को इसने टक्कर मारी उसका नाम अनामिका है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सोशल मीडिया पर अनामिका के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो आरोपी शहनवाज के साथ एक कार में बैठी नजर आ रही है और वो खुद बता रही है कैसे दोनों की मुलाकात हुई।
14: ये मैं हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक। कली क्यों है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। हमारे बीच में ये हुआ है, हमें छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं रहे। हमने इससे बोला कि 1 से 2 महीने का मुझे टाइम दो, मैं अपने आप छोड़ दूंगी, अगर ना छोड़ा तो तुम मुझे खुद छोड़ देना बस।
15: कल मैं टकला बनवा लूंगा।
14: तुम ये चाहे टकला बनवा ले, चाहे लंगड़ा बनवा ले, चाहे एक आंख फूट जाए, तब भी हम इसके साथ रहेंगे। पहचान में आए या ना आए, तब भी हम इसके साथ रहेंगे। अब और मैं गई थी इसके पास, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने नंबर मांगा था, हमने जबरदस्ती नंबर लिया था फोन से निकाल के इसके, मैंने इसे मारा था, तोड़ा था, तब नंबर इसने दिया था, तभी हमारे साथ रिलेशनशिप में आया था। डर गया था बेचारा कि बहुत मारेगी अगर हमसे बात ना की।
6: आज तक ने अनामिका से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, हम आपको अनामिका का पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अनामिका ने पुलिस को बताया कि आरोपी शहनवाज ने उससे अपना असली नाम छुपाकर दोस्ती की थी। शहनवाज ने अपना नाम यश ठाकुर बताया था।
12: गाड़ी उस व्यक्ति की नहीं थी, उस व्यक्ति ने जो भी झूठ वूट बोला है, जो मुझे प्राइमा फेसी पता चला है, तो इसकी हम लोग जांच करवाएंगे। और इसके पीछे भी अगर कोई गुट शामिल है जो धर्मांतरण करा रहा है, या कोई इस प्रकार के लोग हैं जहां पर हिंदू लड़कियां टारगेट हो रही हैं, तो उनका भी पर्दाफाश होगा।
6: वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
16: ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल गिरोह हो सकता है, जिस तरह से जमालुद्दीन छांगुर बाबा जैसा व्यक्ति हजारों हिंदू बेटियों को शिकार बनाया, निकाह कराया, धर्मांतरण कराया, चाहे पैसा देकर कराया, चाहे जबरन कराया, तो ऐसी स्थिति में आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीसीपी पूर्वी कार्यालय पर आज मैडम को मैं ये ज्ञापन देने आया था। ज्ञापन का प्रक्रिया क्या है कि उच्च स्तरीय जाँच हो।
6: 16 सितंबर को जनेश्वर मिश्र पार्क के पास अनामिका चाय पीने पहुंची थी, इसी दौरान शहनवाज भी एक दूसरी महिला मित्र के साथ कार से वहां पहुंचा। दूसरी युवती को शहनवाज के साथ देखकर अनामिका भड़क गई और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद शहनवाज वहां से कार लेकर निकलने लगा। शहनवाज जब कार लेकर जाने लगा तो अनामिका उसकी कार के सामने खड़ी हो गई। आरोप है कि शहनवाज ने कार आगे बढ़ा दी, इससे अनामिका कार के बोनट पर आ गई, जिसके बाद शहनवाज ने कार की स्पीड बढ़ा दी और अनामिका को घसीटते हुए चला गया। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
12: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे महाराष्ट्र के नासिक में अजीब और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने पंचायत के चीफ ऑफिसर के दफ्तर पर धावा बोला और कुत्तों को ऑफिसर की टेबल पर छोड़ दिया।
6: ये है महाराष्ट्र के नासिक में पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी का दफ्तर। अचानक मुख्य अधिकारी के दफ्तर में शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ता 3 बोरियां लेकर धावा बोलते हैं। मुख्य अधिकारी अपनी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहे होते हैं, तभी युवा सेना के कार्यकर्ता बोरियां उठाकर टेबल पर खोलते हैं तो उसमें से निकलते हैं कुत्ते। और ये देखिए कैसे कुत्ते टेबल पर दौड़ने लगते हैं। पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी हैरत में पड़ जाते हैं, आखिर ये है क्या, और कुत्ते टेबल पर कोने में जाकर फाइलों पर बैठ जाते हैं। फिर सब कुछ क्लियर होता है। जी हाँ, नासिक में आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की युवा सेना का ये बड़ा ही अनोखा विरोध प्रदर्शन था, जिसमें 2 आवारा कुत्ते बोरियों में कैद करके मुख्य अधिकारी की बेस पर छोड़ दिए जाते हैं। शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि बार बार आवारा कुत्तों के आतंक की शिकायत करने पर भी प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा था, और जब कई बार शिकायत दर्ज कराने पर भी उनकी बातें नहीं सुनी गईं, तो मुख्य अधिकारी के दफ्तर में ही उनकी मेज पर आवारा कुत्ते छोड़ दिए गए।
17: आज निपाड़ शहरा मध्ये जर तुम्ही बघितलं प्रत्येक गावात गल्लीत असेल प्रत्येक चौका चौकामध्ये मोकट कुत्र्यांचा इतका सुळसुळार झालेला आहे। 6 महिन्यापासून मुख्य अधिकाऱ्यांना सांगतोय, धीरज भांबरे त्यांचं नाव आहे, 6 महिन्यापासून सांगतोय का असं असं मोकट कुत्र्यांचा प्रश्न आहे, तुम्ही मनावर घ्या। अनेक लहान बालकांना चावा घेतलाय, अनेक लोकांवर महिलांवर धावून आलेले, मोकट कुत्र्यांची परिस्थिती त्यांना दाखवली, तिथले फोटो टाकले, वारंवार सांगितलं, पण मला वाटतं लातो की भूतबातो से नाही मानते। आज आम्ही त्याचा निषेध म्हणून इथं 4 कुत्रे त्यांच्या टेबलवर सोडले, त्याचप्रमाणे ते कुत्रे त्यांच्या टेबलवर बसवले।
6: लोगों का दावा है कि आवारा कुत्तों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काटा है और प्रशासन ने बार बार शिकायत करने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब मुख्य अधिकारी के दफ्तर में इस तरह से कुत्ते छोड़ने पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, और सरकारी काम में रुकावट डालने, कर्मचारियों पर हमला करने और दंगा करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। प्रवीण बी ठाकरे, नासिक आज तक।
12: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव। काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। प्रधानमंत्री ने जताया आभार। बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतव्रत गुट को झटका। चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक। दोनों से मांगे गए 3-3 विकल्प। यूपी में हाईवे को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा। कहा, बीजेपी सरकार में निर्माण बाद में पूरा होता है, वो गिरने पहले लगता है। बोले, अब वो हर लेन देन पर टैक्स लेंगे। फीसदी टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा की खरीद। और T20 में अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान। महज 30 गेंद में जड़ा शतक। टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड। भारत ने 127 रन से जीता मैच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। कल का दिन बेहद खास था क्योंकि पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। उन्हें लोगों ने आशीर्वाद दिया, कई ऐसे कार्यक्रम हुए। पार्टी के कार्यक्रमों में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर सीएम योगी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट, पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न। तो ये इसलिए मौका खास था क्योंकि इसे संकल्प सेवा के तौर पर बीजेपी ने मनाया। जितने बीजेपी एनडीए शासित राज्य, कहीं दिए जलाए गए, कहीं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, और इन सब के बीच जो समय मुकर्रर था वो 6 से 7 बजे तक का था कि वो दिए जलाए जाएंगे। तो पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोई बस उन्हें आशीर्वाद दे रहा था।
1: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न। कहीं केक काटा गया, कहीं दिए जलाए गए। आशीर्वाद का दिया नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हुए। वाराणसी में भी गंगा तट पर दीपोत्सव किया गया।
2: नमो घाट पर हूँ, एक तरफ पतित पावनी माँ गंगा है जो मेरे सामने तेज प्रवाह में बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आज माहौल बनारस में अयोध्या जैसा है, क्योंकि ये जो दिए हैं ना, ये दिए यहाँ पर लग गए हैं। असंख्यों दिए जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर लाए गए हैं, लगाए गए हैं, और बच्चों ने बकायदा काफी मेहनत की है इन दियों को यहाँ बिछाने के लिए। वाइट फिल्म यहाँ से दिखाएं एक बार और पूरा दर्शकों को यहाँ से दिखाएं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर नमो घाट पर दिए लगा दिए गए हैं।
1: उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में आज दीपोत्सव की रोशनी बिखरी हुई है। महाकाल की नगरी में शिप्रा के रामघाट, दत्त अखाड़ा घाट और महाकाल लोक में 25 लाख दीप जलाए गए।
3: महाकाल की इस पवित्र नगरी से प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की, दीर्घायु होने की कामना पूरा महाकाल के हमारे सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पवित्र तट से माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की कामना की जा रही है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया, और इस तट की बात करें तो 800 करोड़ की अधिक सी योजना महाकाल कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री जी ने किया, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा, आज यहाँ पर लोग का व्यवसाय बढ़ा है, उनके जीवन में उनके बदलाव आए हैं।
1: इसके अलावा श्रीनगर, कोलकाता और पटना में भी भव्य दीपोत्सव हुआ। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भी 1 लाख दिए जलाए गए।
4: यहाँ पर लगभग 1.5 लाख दिए एक समय पर जलाए जा रहे हैं, और ये जो प्रज्वलित दिए हैं जो आपको दूर तक नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे दिए इसीलिए जलाए गए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वादा किया था आज से 12 साल पहले, और लोगों से जो वादा किया था गुजरात के लोगों से आज से 25 साल पहले, उसको उन्होंने पूरा किया है। देखिए, हम लोग जब खुश होते हैं, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसका कारण यही है कि हम बताते हैं कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तो किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये दिए जो है इस समय उसी का सिंबल है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से पूजन का अनुष्ठान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पूजा अर्चना में शामिल हुए।
5: सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है, और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
6: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सके।
1: राजनाथ सिंह ने वाराणसी से बाइक रैली को भी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से वडनगर के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मभूमि वडनगर में सेवा संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। अमित शाह ने वडनगर में बाइक रैली को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की, जो कि वाराणसी तक जाएगी।
7: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
1: उधर दिल्ली में इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने रक्तदान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली सरकार के मंत्री और सीएम रेखा गुप्ता ने भी रक्तदान किया।
8: प्रधानमंत्री जी का ये जन्म दिवस हम सबको जन सेवा की प्रेरणा देता है, और दिल्ली सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते हुए इस काम को करेगी। आज हम मोदी जी को समर्पित करते हुए हमारे स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए हुए एक बर्थडे सॉन्ग, एक गीत का भी लॉन्चिंग करेंगे।
1: कुल मिलाकर 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के जश्न के नाम रहा। आज तक ब्यूरो।
0: देशा सालियान के पिता सतीश सालियान 19 सितंबर को आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री जाकर उन्हें मानहानि का नोटिस खुद सौंपेंगे। साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अपने और अपनी कानूनी टीम के लिए वहां जाते समय पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासत हावी होती जा रही है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में दोनों नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई गई है। सतीश सालियान ने दोनों को बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, बयान वापस लेने, लिखित माफी मांगकर उसे प्रिंट मीडिया में छपवाने, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 मिनट का माफीनामा वीडियो जारी करने की मांग की है।
1: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी की तरफ से आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को डिफामेशन का नोटिस दिया गया है। ये अलग डिफामेशन का नोटिस है, उन्होंने जो पोस्ट किए उसके लिए एक और एडिशनल नोटिस दिया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है, ये उन्होंने मैटर वही है, सिमिलर। उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा था कि सतीश सालियान के पिताजी ने पिटीशन गलत फाइल की है और ऑलरेडी इस मैटर में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दी है, लेकिन राजकीय हेतु से प्रेरित होकर और पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ मीडिया के लोग जिनके इनके ये संबंध ठीक नहीं है उनके इशारे पे ये पिटीशन फाइल की गई है।
0: दिशा के पिता ने 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस में लिखा, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने मेरे बयानों और कानूनी कार्रवाई को लेकर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने मेरी बेटी दिशा की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। आदित्य कह रहे हैं कि वो दिशा को जानते ही नहीं थे, ये बात सच नहीं है। हमारे पास इन नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
2: 17 पन्ने के इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख दोनों को ही एक अनकंडीशनल अपॉलोजी देनी है, और अनकंडीशनल अपॉलोजी किस तरीके की हो ये भी स्पेसिफाई किया गया है। अखबार में एडवर्टीजमेंट A4 साइज के होने चाहिए, 3 मिनट से कम के वीडियो के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 500 करोड़ जो डिफेमेशन में है किया है, जिसकी वजह से जो इतनी बदनामी हुई है उसका हर्जाना ये 500 करोड़ भी दिए जाएं। तो ये तमाम बातें इन 17 पन्नों में लिखे हैं, और अब अनिल देशमुख और आदित्य ठाकरे दोनों के ही वकील ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर से डील कैसे किया जाए।
0: दरअसल 16 सितंबर को आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिशा मौत मिस्ट्री केस में सफाई देते हुए लिखा था, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और ना ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
1: और बाकी जो उन्होंने अभी जो नया पोस्ट किया है कि इन्वेस्टिगेशन शांतिपूर्ण तरीके से होने दो, मीडिया के लोग डिबेट ना करें, तो इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दिया, इन्होंने खुद उसके रिकॉर्ड डिलीट करवाए, इन्होंने खुद सतीश सालियान के पिटीशन को ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि सीबीआई को मैटर ना जाए, इसी और इन्हीं की वजह से डिले हुआ है ये सब। तो अभी वो तो हमने इनको खिलाफ लड़के सबूत देके ये ऑर्डर लिया है, इनका सारा झूठ पकड़ा गया है, और अब यही खुद चिल्ला रहे और ये जो कह रहे हैं दिशा का मेरा संबंध नहीं है, हमारे पास में सारे डिजिटल प्रूफ्स, आई विटनेस से लेके सारी चीजें हैं। ये दो चीजों का आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप इस ड्रग्स के बिजनेस में ड्रग्स का बिजनेस करते हुए और खुद ड्रग्स का सेवन करते हुए ड्रगिस्ट हो, ये नारकोटिक्स ब्यूरो के क्राइम नंबर 15/2020 में आया, आपके फोन सर्विलेंस में आया, ये हमने एफिडेविट पे कहा, उसका आप जवाब नहीं दे पाए और उसको मना भी नहीं कर रहे हो, उसके बारे में बोलो, और आपके मोबाइल टावर लोकेशन वहां थे, और आपने जो पहला डिफेंस लिया था कि मैं उस दिन बाहर था, मेरे नाना जी गुजर गए थे 8 जून को, मुंबई से बाहर था, वो भी झूठा साबित हो गया, नाना जी 14 जून को गुजरे थे। उसके बाद में आपने कहा इसकी जो आपकी मेन पार्टनर इन क्राइम है इसमें रिया चक्रवर्ती, बोले मैं इसको जानता नहीं, रिया ने कहा मैं आपको नहीं जानती, ये भी फोरेंसिक की चैट रिकवरी में ये भी झूठा साबित हो गया। उस तो आप हैबिचुअल झूठ बोलने वाले हो।
0: दिशा सालियान के पिता 6 साल से कह रहे हैं कि उनकी बेटी दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी। वो आदित्य ठाकरे समेत कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं।
3: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया है।
0: हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सतीश सालियान के आरोपों की कार्रवाई करने को कहा है। बीजेपी विधायक राम कदम भी लगातार तत्कालीन उद्धव सरकार की भूमिका संदिग्ध बताते रहे हैं।
4: दिशा सालियान की मौत, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष से ऊपर उठ करके है। श्रीमान आदित्य ठाकरे को 6.5 वर्ष लग गए ये बोलने के लिए कि उनका इस मामले में कोई संबंध नहीं है। इसके पहले उनकी खामोशी का क्या कारण था? किसने उन्हें रोका था? उनके पिता तो लगातार बार बार आरोप कर रहे थे, तब आप क्यों नहीं बोले? और कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का था? क्या कारण था कि आपकी सरकार पुलिस को जांच करने से क्यों रोक रही थी? और यदि पुलिस जांच नहीं कर रही है तो आपकी सरकार ने पुलिस से क्यों नहीं कहा उस पिता को न्याय मिलना चाहिए?
0: दिशा सालियान की मौत की शुरुआती जांच मुंबई पुलिस ने की थी। पुलिस की जांच में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया था। मार्च 2025 में सामने आई मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में भी दिशा की मौत को सुसाइड बताते हुए उनकी मानसिक परेशानी का जिक्र किया गया था। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो पाएगी? विद्या के साथ दिव्यक्ष सिंह, मुंबई आज तक।
5: सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था से तो हर कोई वाकिफ रहता है, लेकिन जब डॉक्टर के नाम पर उनके ड्राइवर मरीजों का इलाज करने लगे तो सोचिए क्या होगा। कानपुर के सरकारी अस्पताल में एक ऐसा ही खिलवाड़ हुआ। डॉक्टर आराम पर हैं, ड्राइवर काम पर है। जब ड्राइवर डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ तो कानपुर से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए ड्राइवर डॉक्टर का ओपीडी में जानलेवा इलाज।
6: इस हरकत पर तो यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में इलाज नहीं बल्कि दिन दहाड़े मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ चल रहा है। जी हां, कानपुर के काशीराम अस्पताल में डॉक्टर आराम पर हैं और ड्राइवर काम पर हैं। ओपीडी में मरीज आ रहे हैं और डॉक्टर साहब का ड्राइवर मरीजों को धड़ाधड़ दवाइयां लिख रहा है। ड्राइवर डॉक्टर मरीजों से उनका हाल पूछता है और पर्ची पर पता नहीं कौन सी दवाई लिखकर आगे बढ़ा देता है, फिर अगले मरीज का नंबर लेता है। बाकायदा ड्राइवर की ये ओपीडी कानपुर के काशीराम अस्पताल में जनरल मेडिसिन विभाग के हेड और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ओपीडी में चल रही है। कहा तो स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कहा अस्पताल में डॉक्टर की जगह उनके ड्राइवर ही इलाज करने बैठ जाएं तो मरीजों का हाल क्या होगा, ये आप और हम सभी समझ सकते हैं। यकीनन ये मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ से कम नहीं है। जब ड्राइवर ने ओपीडी चलाई तो सीएमओ कहाँ थे? जब ड्राइवर ओपीडी में मरीजों को देख रहा था तब सीएमएस कहाँ थे? इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की ओपीडी में ड्राइवर कैसे बैठा? सवाल यह है कि जब अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ड्यूटी थी तो वो कहाँ थे? क्या डॉक्टर रामकेश ने ओपीडी में मरीजों के देखने के लिए अपने ड्राइवर को बैठा दिया? बड़ी बात यह है कि सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकर सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी अस्पताल में बैठते हैं, तो पूरा अस्पताल प्रशासन कहाँ था जिन्हें एक ड्राइवर ओपीडी चलाता हुआ नहीं दिखा? वीडियो वायरल होने के बाद पूरा अस्पताल प्रशासन जाग उठा है और कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि सरकारी सिस्टम कितना सड़ चुका है कि डॉक्टर की जगह ड्राइवर इलाज करता है। वीडियो में ड्राइवर मरीजों से उनकी परेशानी पूछता दिखाई दे रहा है। वो मरीजों से पूछ रहा है कि पेट में दर्द है या क्या तकलीफ है। इसके बाद वो पर्चे पर दवाई लिखता नजर आता है और मरीजों के पूछने पर वो उन्हें दवा अस्पताल से नहीं बल्कि बाहर मेडिकल स्टोर से लेने की बात कहता है। अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर ड्राइवर ने जो पर्ची पर दवाइयां लिख कर दी आखिर पर्ची में क्या लिखा। पर्चे पर लिखा हुआ है जो हमें समझ आता है, कुछ BIG 500 लिखा है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता, फिर कुछ OINT KT2 और कॉम्बी B टाइप लिखा है, साथ ही KT2 200 mg लिखा है। अब ये कौन सी दवाइयां हैं जो ड्राइवर डॉक्टर ने मरीजों को लिख कर दी हैं? अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के ड्राइवर ही इलाज करेंगे तो फिर किस काम के CMO, किस काम के CMS और किस काम का स्वास्थ्य मंत्रालय? अस्पताल में ड्राइवर मरीजों का इलाज करते हुए पकड़ा गया तो अस्पताल के CMO हरिदत्त नेमी ने जांच कमेटी गठित करके पतली गली से बच निकलने की कोशिश की। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMO साहब पल्ला नहीं झाड़ सकते।
7: कल से वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी उसे देखा है। वहाँ पर CMS हैं डॉक्टर पीयूष, तो डॉक्टर पीयूष से मेरी बात हुई है तो वहाँ पर उसकी जांच बिठा दी है और जांच में जो भी जिसके भी जो दोष होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की।
6: अस्पताल के CMS यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीयूष मिश्रा ड्राइवर पर FIR की बात करके बच नहीं सकते। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMS साहब जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।
8: नहीं, मैंने स्पष्टीकरण ये अपना जवाब दे पहले। और 3 सदस्यीय हमने वरिष्ठ चिकित्सकों की कमेटी बनाई है और इनकी इस पूरी घटनाक्रम को उसके ड्राइवर के खिलाफ विरुद्ध FIR करेंगे और इनको इनके खिलाफ हम शासन को पत्र भी लिखने जा रहे हैं कि ये अनुशासनहीनता है। बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, ये हमें बड़ा खेद के लगता है कि सुनने में भी ये इतना बड़ा अच्छा अस्पताल जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी इसको ऊंचाई तक ले जाऊँ, इस प्रकार का बहुत ही खराब कार्य किया है इन्होंने।
6: आज तक ने इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर रामकेश से भी पूछा कि उनकी OPD में उनकी कुर्सी पर उनका ड्राइवर इलाज करने क्यों बैठा। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, डॉक्टर रामकेश का कोई बहाना नहीं चलने वाला।
9: एक वीडियो वायरल हुआ कि आपका ड्राइवर आपकी सीट पे बैठ के दवा दे रहा है।
7: ये सर आप महोदय आप लोगों के माध्यम से या साहब CMS साहब के माध्यम से मुझे पता चला, तत्काल प्रभाव से उसे मैंने बाहर निकाल दिया अपने।
9: तो ये क्या पहले भी कभी बैठता था क्या?
7: नहीं, मेरे साथ रहता तो मेरी गाड़ी साफ करता था।
9: अच्छा, उसको दवा वगैरह कुछ तो नॉलेज होगा?
7: नहीं, कोई नॉलेज,
9: कुछ नॉलेज नहीं। तो दवा किसको दे रहा था ये?
7: नहीं, वो अब हम नहीं थे। अब उसने क्या किया है ये बताया, ये पता चला है कि वो उसके जानने वाला था, उसको लिख दिया है दवा।
9: तो वो सर आप कहाँ गए थे? उसने
7: मैं कोर्ट गया था,
9: कोर्ट गया था।
6: डॉक्टर रामकेश ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है, लेकिन डॉक्टर रामकेश कहते हैं जब उनका ड्राइवर OPD में इलाज कर रहा था वो कोर्ट गए हुए थे। अब डॉक्टर रामकेश सच बोल रहे हैं या झूठ? लेकिन आज तक को अस्पताल के CMS पीयूष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अस्पताल का अटेंडेंट रजिस्टर चेक किया तो डॉक्टर रामकेश की कोई न्यायालय ड्यूटी नहीं थी। डॉक्टर रामकेश का कोर्ट वाला बहाना एक्सपोज।
8: ये किस समय आके कब बैठा, उस दिन कमरा में न्यायालय कार्य लिखा हुआ था, लेकिन अभी हमने उपस्थिति पंजिका को देखा तो उसमें कोई न्यायालय ड्यूटी थी नहीं इनकी पिछले लगभग 15 दिन से। लेकिन ये कमरे में नहीं थे उस समय मौजूद, समय ये वीडियो वायरल हुआ है।
6: तो क्या डॉक्टर रामकेश आराम पर थे और ड्राइवर काम पर था? कानपुर के सरकारी अस्पताल ने एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। कैसे सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर दिन दहाड़े खिलवाड़ किया जाता है?
10: वीडियो वायरल होने के बाद CMO ने जांच की बात की है, संबंधित अस्पताल और डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। डॉक्टर ने भी अपना पल्ला ये कह के झाड़ दिया है कि उसने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या जांच की खानापूर्ति से इतने बड़ी लापरवाही को दबाया जा सकता है? ना कोई तत्काल FIR, ना कोई ठोस कार्रवाई और ना कोई निलंबन। ऐसे में लोगों का प्रशासन से बड़ा सवाल है कि आखिरकार मरीजों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही कब तय होगी।
6: रंजय सिंह के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।
5: वक्त एक ब्रेक है, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
12: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक 18 सितंबर, सिर्फ आज तक पर।

0: नकारात्मक ऊर्जा, क्या नकारात्मक ऊर्जा जीवन की उन्नति को रोक देती है? क्या नकारात्मक ऊर्जा आपको बहुत बीमार कर देती है? नकारात्मक ऊर्जा के आने का क्या है कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: There is a very famous quote ki history repeat itself.
2: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
3: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
2: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bichara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नी 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम,
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
0: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कह जाएंगे।
1: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
3: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
1: क्या बात कर रहे हैं,
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
1: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: राजस्थान में टूरिज्म का भले ही ऑफ सीजन चल रहा, लेकिन फिर भी वहाँ रिजॉर्ट और होटल फुल। राजस्थान के पार्षद स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं, तो कहीं परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए सबको रिजॉर्ट में बुला ले रहे हैं। देर रात तक गीत संगीत की महफिल चल रही है। नाली पानी सड़क बिजली के लिए संघर्ष कर रही जनता को पसीने पसीने छोड़कर पुष्कर के रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में मजे कर रहे हैं। ये ब्यावर के कांग्रेस के पार्षद हैं। 9 सितंबर को वोटिंग के बाद से ही इन्हें रिजॉर्ट में बंद कर दिया गया है। दौसा के महुआ नगरपालिका में जीते ये बीजेपी के पार्षद हैं, जो जयपुर के जामवारागढ़ में रिजॉर्ट में महुआ के विधायक राजेंद्र मीणा की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में शरीक हो रहे हैं। इस पार्टी में आशीर्वाद देने बाड़ेबंदी में ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आए हैं। राजस्थान के 309 निकाय चुनाव में से बीजेपी को 85 निकाय में बहुमत मिला है, तो कांग्रेस को 45 निकाय में स्पष्ट बहुमत मिला है। बाकी 5 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 122 नगर पालिकाओं में चाबी निर्दलियों के हाथ में है। 34 निकायों में तो निर्दलियों ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में पार्टी नेताओं को डर था कि कहीं जीतने वाले पार्षदों पर दूसरे दलों की नजर ना पड़ जाए और बोर्ड बनाने के समय कोई खेला ना हो जाए। इसी आशंका के चलते प्रत्याशियों को अलग अलग होटलों में ठहराया गया। मतदान के बाद पार्षद अपने वार्ड में जनता के बीच कम और होटल की चारदीवारी में ज्यादा नजर आए। सबसे ज्यादा खतरा अजमेर के कांग्रेस के पार्षदों को, जिन्हें 4 दिनों में 4 होटल बदलने पड़े और आखिर में इन्हें कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के बेंगलुरु में ले जाना पड़ा। अजमेर के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमारे पार्षदों को तोड़ने में लगी है। होटलों में पार्षदों की आवभगत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लजीज पकवान खिलाए जा रहे हैं, मौज मस्ती का भी पूरा इंतजाम है, ताकि वफादारी निभाने के समय ये भाग न जाए। जयपुर में तो बीजेपी ने बहुमत मिलने के बाद भी पार्षदों को 30 किलोमीटर दूर बगलू के होटल में बंद कर रखा है। गेट पर ताला बंद है। किसी की पत्नी प्रसाद लेकर पहुंच रही है, तो किसी का बेटा दवाई लेकर आ रहा है।
7: दिशा सालियान की मौत, मिस्ट्री पर सियासी घमासान जारी है। दिशा के पिता सतीश सालियान तत्कालीन उद्धव सरकार और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद से महायुति सरकार भी आदित्य ठाकरे पर निशाना साध रही है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने आखिरकार दिशा की मौत मिस्ट्री मामले में अपने ऊपर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर सोशल मीडिया पर

0: राजस्थान में टूरिज्म का भले ही ऑफ सीजन चल रहा लेकिन फिर भी वहां रिजॉर्ट और होटल फुल। राजस्थान के पार्षद स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं, तो कहीं परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए सबको रिजॉर्ट में बुला ले रहे हैं। देर रात तक गीत संगीत की महफिल चल रही है। नाली पानी सड़क बिजली के लिए संघर्ष कर रही जनता को पसीने पसीने छोड़कर पुष्कर के रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में मजे कर रहे हैं। ये ब्यावर के कांग्रेस के पार्षद हैं। 9 सितंबर को वोटिंग के बाद से ही इन्हें रिजॉर्ट में बंद कर दिया गया है। दौसा के महुआ नगरपालिका में जीते ये बीजेपी के पार्षद हैं, जो जयपुर के जामवारागढ़ में रिजॉर्ट में महुआ के विधायक राजेंद्र मीणा की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में शरीक हो रहे हैं। इस पार्टी में आशीर्वाद देने बाड़ेबंदी में ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आए हैं। राजस्थान के 309 निकाय चुनाव में से बीजेपी को 85 निकाय में बहुमत मिला है, तो कांग्रेस को 45 निकाय में स्पष्ट बहुमत मिला है। बाकी 5 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 122 नगर पालिकाओं में चाबी निर्दलियों के हाथ में है। 34 निकायों में तो निर्दलियों ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में पार्टी नेताओं को डर था कि कहीं जीतने वाले पार्षदों पर दूसरे दलों की नजर ना पड़ जाए और बोर्ड बनाने के समय कोई खेला ना हो जाए। इसी आशंका के चलते प्रत्याशियों को अलग अलग होटलों में ठहराया गया। मतदान के बाद पार्षद अपने वार्ड में जनता के बीच कम और होटल की चारदीवारी में ज्यादा नजर आए। सबसे ज्यादा खतरा अजमेर के कांग्रेस के पार्षदों को, जिन्हें 4 दिनों में 4 होटल बदलने पड़े और आखिर में इन्हें कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के बेंगलुरु में ले जाना पड़ा। अजमेर के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमारे पार्षदों को तोड़ने में लगी है। होटलों में पार्षदों की आवभगत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लजीज पकवान खिलाए जा रहे हैं, मौज मस्ती का भी पूरा इंतजाम है ताकि वफादारी निभाने के समय ये भाग न जाए। जयपुर में तो बीजेपी ने बहुमत मिलने के बाद भी पार्षदों को 30 किलोमीटर दूर बगलू के होटल में बंद कर रखा है। गेट पर ताला बंद है। किसी की पत्नी प्रसाद लेकर पहुंच रही है तो किसी का बेटा दवाई लेकर आ रहा है। दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासी घमासान जारी है। दिशा के पिता सतीश सालियान तत्कालीन उद्धव सरकार और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद से महायुति सरकार भी आदित्य ठाकरे पर निशाना साध रही है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने आखिरकार दिशा की मौत मिस्ट्री मामले में अपने ऊपर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर सोशल मीडिया पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। आदित्य ने लिखा, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
1: इसके पहले उन्होंने और एक झूठा डिफेंस लिया था कि जिस दिन दिशा की डेथ हुई उस दिन मैं तो मुंबई में नहीं था, मैं डोंबिवली में था, मेरे नाना जी की डेथ हुई थी। वो भी झूठा निकला क्योंकि दिशा का डेथ हुआ 8 जून को, उनके नाना जी 14 जून तक जिंदा थे। तो ये हैबिचुअल झूठ बोलने वाले, लोगों को बेवकूफ समझने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले ऐसे लोग हैं।
0: 11 सितंबर को सीबीआई ने इस केस में FIR दर्ज की है। दिशा के पिता सतीश सालियन की शिकायत में शिवसेना UBT विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय के नाम शामिल हैं। आज तक के पास सीबीआई की FIR की कॉपी भी मौजूद है। सतीश सालियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भी सच छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ जांच में शामिल कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाजे, परमवीर सिंह और DCP विशाल ठाकुर का नाम है। पिछले शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने CBI अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी।

पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देशभर में दीपोत्सव, काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए, प्रधानमंत्री ने जताया आभार। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी और रितव्रता गुट को झटका लगा, चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाई, दोनों से मांगे गए 3-3 विकल्प। 100% टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है, अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। T20 में अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान, महज 30 गेंद में जड़ा शतक, टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड, भारत ने 127 रन से जीता मैच। और आईफोन 18 प्रो किया से इंडिया में बिक्री, दिल्ली के साकेत में एप्पल स्टोर पर रात से ही लाइन में लगे लोग, आईफोन ने पहली बार उतारा फोल्डेबल फोन। पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, तो आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दिया गया, कई जगह कार्यक्रम हुए, इन कार्यक्रमों में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न।

0: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न। कहीं केक काटा गया, कहीं दिए जलाए गए। आशीर्वाद का दिया नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हुए। वाराणसी में भी गंगा तट पर दीपोत्सव किया गया।
1: नमो घाट पर हूँ, एक तरफ पतित पावनी माँ गंगा है जो मेरे सामने तेज प्रवाह हमें बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आज माहौल बनारस में अयोध्या जैसा है, क्योंकि ये जो दिए हैं ना, ये दिए यहाँ पर लग गए हैं, असंख्यों दिए जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर लाए गए हैं, लगाए गए हैं, और बच्चों ने बकायदा काफी मेहनत की है इन दियों को यहाँ बिछाने के लिए। वाइड फ्रेम यहाँ से दिखाएं एक बार और पूरा दर्शकों को यहाँ से दिखाएं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर नमो घाट पर दिए लगा दिए गए हैं।
0: उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में आज दीपोत्सव की रोशनी बिखरी हुई है। महाकाल की नगरी में शिप्रा के रामघाट, दत्त अखाड़ा घाट और महाकाल लोक में 25 लाख दीप जलाए गए।
2: महाकाल की इस पवित्र नगरी से प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की, दीर्घायु होने की कामना पूरा महाकाल के हमारे सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पवित्र तट से माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की कामना की जा रही है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया, और इस तट की बात करें तो 800 करोड़ की अधिक सी योजना महाकाल कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री जी ने किया, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा, आज यहाँ पर लोग का व्यवसाय बढ़ा है, उनके जीवन में उनके बदलाव आए हैं।
0: इसके अलावा श्रीनगर, कोलकाता और पटना में भी भव्य दीपोत्सव हुआ। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भी 1 लाख दिए जलाए गए।
3: लगभग 1.5 लाख दिए एक समय पर जलाए जा रहे हैं, और ये जो प्रज्वलित दिए हैं जो आपको दूर तक नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे दिए इसीलिए जलाए गए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वादा किया था आज से 12 साल पहले, और लोगों से जो वादा किया था गुजरात के लोगों से आज से 25 साल पहले, उसको उन्होंने पूरा किया है। देखिए, हम लोग जब खुश होते हैं, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसका कारण यही है कि हम बताते हैं कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तो किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये दिए जो हैं इस समय उसी का सिंबल है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से पूजन का अनुष्ठान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पूजा अर्चना में शामिल हुए।
4: सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है, और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
5: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सके।
0: राजनाथ सिंह ने वाराणसी से बाइक रैली को भी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से वडनगर के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मभूमि वडनगर में सेवा संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। अमित शाह ने वडनगर में बाइक रैली को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की, जो कि वाराणसी तक जाएगी।
6: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना, ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
0: उधर दिल्ली में इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने रक्तदान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली सरकार के मंत्री और सीएम रेखा गुप्ता ने भी रक्तदान किया।
7: प्रधानमंत्री जी का ये जन्म दिवस हम सबको जन सेवा की प्रेरणा देता है और दिल्ली सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते हुए इस काम को करेगी। आज हम मोदी जी को समर्पित करते हुए हमारे स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए हुए एक बर्थडे सॉन्ग, एक गीत का भी लॉन्चिंग करेंगे।
0: कुल मिलाकर 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के जश्न के नाम रहा। आज तक ब्यूरो।
8: तेजा सालियान के पिता सतीश सालियान 19 सितंबर को आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री जाकर उन्हें मानहानि का नोटिस खुद सौंपेंगे। साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अपने और अपने कानूनी टीम के लिए वहां जाते समय पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।
9: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासत हावी होती जा रही है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में दोनों नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई गई है। सतीश सालियान ने दोनों को बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, बयान वापस लेने, लिखित माफी मांगकर उसे प्रिंट मीडिया में छपवाने, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 मिनट का माफीनामा वीडियो जारी करने की मांग की है।
10: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी की तरफ से आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को डिफामेशन का नोटिस दिया गया है। ये अलग डिफामेशन का नोटिस है, उन्होंने जो पोस्ट किए उसके लिए एक और एडिशनल नोटिस दिया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है ये उन्होंने मैटर वही है सिमिलर, उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा था कि सतीश सालियान के पिताजी ने पिटीशन गलत फाइल की है और ऑलरेडी इस मैटर में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दी है, लेकिन राजकीय हेतु से प्रेरित होकर और पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ मीडिया के लोग जिनके इनके ये समन ठीक नहीं है उनके इशारे पे ये पिटीशन फाइल की गई है।
9: दिशा के पिता ने 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस में लिखा, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने मेरे बयानों और कानूनी कार्रवाई को लेकर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने मेरी बेटी दिशा की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। आदित्य कह रहे हैं कि वो दिशा को जानते ही नहीं थे, ये बात सच नहीं है। हमारे पास इन नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
11: 17 पन्ने के इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख दोनों को ही एक अनकंडीशनल अपॉलोजी देनी है और अनकंडीशनल अपॉलोजी किस तरीके की हो ये भी स्पेसिफाई किया गया है। अखबार में एडवर्टीजमेंट A4 साइज के होने चाहिए, 3 मिनट से कम के वीडियो के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 500 करोड़ जो डिफेमेशन में है किया है जिसकी वजह से जो इतनी बदनामी हुई है उसका हर्जाना ये 500 करोड़ भी दिए जाएं। तो ये तमाम बातें इन 17 पन्नों में लिखे हैं और अब अनिल देशमुख और आदित्य ठाकरे दोनों के ही वकील ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर से डील कैसे किया जाए।
9: दरअसल 16 सितंबर को आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिशा मौत मिस्ट्री केस में सफाई देते हुए लिखा था, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और ना ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का यह अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती, इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
10: और बाकी जो उन्होंने अभी जो नया पोस्ट किया है कि इन्वेस्टिगेशन शांतिपूर्ण तरीके से होने दो, मीडिया के लोग डिबेट ना करें, तो इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दिया, इन्होंने खुद उसके रिकॉर्ड डिलीट करवाए, इन्होंने खुद सतीश सालियान के पिटीशन को ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि सीबीआई को मैटर ना जाए, इसी और इन्हीं की वजह से डिले हुआ है ये सब। तो तो अभी वो तो हमने इनको खिलाफ लड़के सबूत दे के ये ऑर्डर लिया है, इनका सारा झूठ पकड़ा गया है और अब यही खुद चिल्ला रहे। और ये जो कह रहे हैं दिशा का मेरा संबंध नहीं है, हमारे पास में सारे डिजिटल प्रूफ्स, आई विटनेस से लेके सारी चीजें हैं। ये दो चीजों का आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप इस ड्रग्स के बिजनेस में, ड्रग्स का बिजनेस करते हुए और खुद ड्रग्स का सेवन करते हुए ड्रगिस्ट हो। ये नारकोटिक्स ब्यूरो के क्राइम नंबर 15/2020 में आया, आपके फोन सर्विलेंस में आया, ये हमने एफिडेविट पे कहा, उसका आप जवाब नहीं दे पाए और उसको मना भी नहीं कर रहे हो, उसके बारे में बोलो। और आपके मोबाइल टावर लोकेशन वहां थे और आपने जो पहला डिफेंस लिया था कि मैं उस दिन बाहर था, मेरे नाना जी गुजर गए थे 8 जून को, मुंबई से बाहर था, वो भी झूठा साबित हो गया, नाना जी 14 जून को गुजरे थे। उसके बाद में आपने कहा इसकी जो आपकी मेन पार्टनर इन क्राइम है इसमें रिया चक्रवर्ती, बोले मैं उसको जानता नहीं, रिया ने कहा मैं आपको नहीं जानती, ये भी फोरेंसिक की चैट रिकवरी में ये भी झूठा साबित हो गया। उस तो आप हैबिचुअल झूठ बोलने वाले हो।
9: दिशा सालियान के पिता 6 साल से कह रहे हैं कि उनकी बेटी दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी। वो आदित्य ठाकरे समेत कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं।
12: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनो मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया है।
9: हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सतीश सालियान के आरोपों की कार्रवाई करने को कहा है। बीजेपी विधायक राम कदम भी लगातार तत्कालीन उद्धव सरकार की भूमिका संदिग्ध बताते रहे हैं।
13: दिशा सालियान की मौत, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष से ऊपर उठ करके है। श्रीमान आदित्य ठाकरे को 6.5 वर्ष लग गए ये बोलने के लिए कि उनका इस मामले में कोई संबंध नहीं है। इसके पहले उनकी खामोशी का क्या कारण था, किसने उन्हें रोका था? उनके पिता तो लगातार बार बार आरोप कर रहे थे, तब आप क्यों नहीं बोले? और कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का था? क्या कारण था कि आपकी सरकार पुलिस को जांच करने से क्यों रोक रही थी? और यदि पुलिस जांच नहीं कर रही है तो आपकी सरकार ने पुलिस से क्यों नहीं कहा उस पिता को न्याय मिलना चाहिए?
9: दिशा सालियान की मौत की शुरुआती जांच मुंबई पुलिस ने की थी। पुलिस की जांच में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया था। मार्च 2025 में सामने आई मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में भी दिशा की मौत को सुसाइड बताते हुए उनकी मानसिक परेशानी का जिक्र किया गया था। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो पाएगी? विद्या के साथ दिव्यक्ष सिंह, मुंबई, आज तक।
8: सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था से हर कोई वाकिफ रहता है, लेकिन जब डॉक्टर के नाम पर उनके ड्राइवर मरीजों का इलाज करने लगे तो सोचिए क्या होगा। जी हां, कानपुर के सरकारी अस्पताल में ऐसा ही खेलवाड़ हुआ। डॉक्टर आराम पर, उनका ड्राइवर काम पर, और जब ड्राइवर डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ तो कानपुर से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। आइए देखते हैं ड्राइवर डॉक्टर का ओपीडी में जानलेवा इलाज।
0: इस हरकत पर तो यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में इलाज नहीं बल्कि दिन दहाड़े मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ चल रहा है। जी हां, कानपुर के काशीराम अस्पताल में डॉक्टर आराम पर हैं और ड्राइवर काम पर हैं। ओपीडी में मरीज आ रहे हैं और डॉक्टर साहब का ड्राइवर मरीजों को धड़ाधड़ दवाइयां लिख रहा है। ड्राइवर डॉक्टर मरीजों से उनका हाल पूछता है और पर्ची पर पता नहीं कौन सी दवाई लिखकर आगे बढ़ा देता है, फिर अगले मरीज का नंबर लेता है। बाकायदा ड्राइवर की ये ओपीडी कानपुर के काशीराम अस्पताल में जनरल मेडिसिन विभाग के हेड और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ओपीडी में चल रही है। कहा तो स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कहा अस्पताल में डॉक्टर की जगह उनके ड्राइवर ही इलाज करने बैठ जाएं तो मरीजों का हाल क्या होगा, ये आप और हम सभी समझ सकते हैं। यकीनन ये मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ से कम नहीं है। जब ड्राइवर ने ओपीडी चलाई तो सीएमओ कहाँ थे? जब ड्राइवर ओपीडी में मरीजों को देख रहा था तब सीएमएस कहाँ थे? इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की ओपीडी में ड्राइवर कैसे बैठा? सवाल यह है कि जब अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ड्यूटी थी तो वो कहाँ थे? क्या डॉक्टर रामकेश ने ओपीडी में मरीजों के देखने के लिए अपने ड्राइवर को बैठा दिया? बड़ी बात यह है कि सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकर सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी अस्पताल में बैठते हैं, तो पूरा अस्पताल प्रशासन कहाँ था जिन्हें एक ड्राइवर ओपीडी चलाता हुआ नहीं दिखा? वीडियो वायरल होने के बाद पूरा अस्पताल प्रशासन जाग उठा है और कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि सरकारी सिस्टम कितना सड़ चुका है कि डॉक्टर की जगह ड्राइवर इलाज करता है। वीडियो में ड्राइवर मरीजों से उनकी परेशानी पूछता दिखाई दे रहा है। वो मरीजों से पूछ रहा है कि पेट में दर्द है या क्या तकलीफ है। इसके बाद वो पर्चे पर दवाई लिखता नजर आता है और मरीजों के पूछने पर वो उन्हें दवा अस्पताल से नहीं बल्कि बाहर मेडिकल स्टोर से लेने की बात कहता है। अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर ड्राइवर ने जो पर्ची पर दवाइयां लिख कर दी आखिर पर्ची में क्या लिखा। पर्चे पर लिखा हुआ है जो हमें समझ आता है, कुछ BIG 500 लिखा है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता, फिर कुछ OINT KT2 और कॉम्बी बी टाइप लिखा है, साथ ही KT2 200 mg लिखा है। अब ये कौन सी दवाइयां हैं जो ड्राइवर डॉक्टर ने मरीजों को लिख कर दी हैं? अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के ड्राइवर ही इलाज करेंगे तो फिर किस काम के CMO, किस काम के CMS और किस काम का स्वास्थ्य मंत्रालय? अस्पताल में ड्राइवर मरीजों का इलाज करते हुए पकड़ा गया तो अस्पताल के CMO हरिदत्त नेमी ने जांच कमेटी गठित करके पतली गली से बच निकलने की कोशिश की। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMO साहब पल्ला नहीं झाड़ सकते।
14: कल से वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी उसे देखा है। वहाँ पर CMS हैं डॉक्टर पीयूष, तो डॉक्टर पीयूष से मेरी बात हुई है, तो वहाँ पर उसकी जांच बिठा दी है और जांच में जो भी जिसके भी जो दोष होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की।
0: अस्पताल के CMS यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीयूष मिश्रा ड्राइवर पर FIR की बात करके बच नहीं सकते। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMS साहब जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।
15: मैंने स्पष्टीकरण ये अपना जवाब दे पहले, और 3 सदस्यीय हमने वरिष्ठ चिकित्सकों की कमेटी बनाई है और इनकी इस पूरी घटनाक्रम को उसके ड्राइवर के खिलाफ विरुद्ध FIR करेंगे और इनको इनके खिलाफ हम शासन को पत्र भी लिखने जा रहे हैं कि ये अनुशासनहीनता है, बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। ये हमें बड़ा खेद के लगता है कि सुनने में भी ये इतना बड़ा अच्छा अस्पताल जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी इसको ऊंचाई तक ले जाऊँ, इस प्रकार का बहुत ही खराब कार्य किया है इन्होंने।
0: आज तक ने इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर रामकेश से भी पूछा कि उनकी ओपीडी में उनकी कुर्सी पर उनका ड्राइवर इलाज करने क्यों बैठा। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, डॉक्टर रामकेश का कोई बहाना नहीं चलने वाला।
16: एक वीडियो वायरल हुआ कि आपका ड्राइवर आपकी सीट पे बैठ के दवा दे रहा
17: है। सर आप महोदय आप लोगों के माध्यम से या साहब CMS साहब के माध्यम से मुझे पता चला, तत्काल प्रभाव से उसे मैंने बाहर निकाल दिया अपने से।
16: तो ये क्या पहले भी कभी बैठता था क्या?
17: नहीं, मेरे साथ रहता तो मेरी गाड़ी साफ करता था।
16: अच्छा, उसको दवा वगैरह कुछ तो नॉलेज होगा?
17: नहीं, कोई नॉलेज,
16: कुछ नॉलेज नहीं। तो ये दवा किसको दे रहा था ये?
17: नहीं, वो अब हम नहीं थे। अब उसने क्या किया है ये बताया, ये पता चला है कि वो उसके जानने वाला था, उसको लिख दिया है दवा।
16: तो वो सर आप कहाँ गए थे? उसने
17: मैं कोर्ट गया था,
16: कोर्ट गया था।
0: डॉक्टर रामकेश ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है, लेकिन डॉक्टर रामकेश कहते हैं जब उनका ड्राइवर ओपीडी में इलाज कर रहा था वो कोर्ट गए हुए थे। अब डॉक्टर रामकेश सच बोल रहे हैं या झूठ? लेकिन आज तक को अस्पताल के CMS पीयूष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अस्पताल का अटेंडेंट रजिस्टर चेक किया तो डॉक्टर रामकेश की कोई न्यायालय ड्यूटी नहीं थी। डॉक्टर रामकेश का कोर्ट वाला बहाना एक्सपोज।
15: ये किस समय आके कब बैठा, उस दिन कमरा में न्यायालय कार्य लिखा हुआ था, लेकिन अभी हमने उपस्थिति पंजिका को देखा तो उसमें कोई न्यायालय ड्यूटी थी नहीं इनकी पिछले लगभग 15 दिन से। लेकिन ये कमरे में नहीं थे उस समय मौजूद, समय ये वीडियो वायरल हुआ है।
0: तो क्या डॉक्टर रामकेश आराम पर थे और ड्राइवर काम पर था? कानपुर के सरकारी अस्पताल ने एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। कैसे सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर दिन दहाड़े खेलवाड़ किया जाता है।
18: वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ ने जांच की बात की है, संबंधित अस्पताल और डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। डॉक्टर ने भी अपना पल्ला यह कह के झाड़ दिया है कि उसने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या जांच की खाना पूर्ति से इतने बड़ी लापरवाही को दबाया जा सकता है? ना कोई तत्काल FIR, ना कोई ठोस कार्रवाई और ना कोई निलंबन। ऐसे में लोगों का प्रशासन से बड़ा सवाल है कि आखिरकार मरीजों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही कब तय होगी।
0: रंजय सिंह के साथ सीमा चावला, कानपुर आज तक।
8: बुलेटिन में रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: प्रेजेंटेड बाय
1: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देशभर में दीपोत्सव, काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए, प्रधानमंत्री ने जताया आभार। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी और रितव्रता गुट को झटका लगा, चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाई, दोनों से मांगे गए 3-3 विकल्प। 100% टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है, अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। टी20 में अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान, महज 30 गेंद में जड़ा शतक, टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड, भारत ने 127 रन से जीता मैच। और आईफोन 18 प्रो किया से इंडिया में बिक्री, दिल्ली के साकेत में एप्पल स्टोर पर रात से ही लाइन में लगे लोग, आईफोन ने पहली बार उतारा फोल्डेबल फोन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे निगेटिव एनर्जी की, यानी नकारात्मक ऊर्जा की। नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी क्या होती है और ये आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालती है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। हम आज बात कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा की, यानी निगेटिव एनर्जी की। क्या होती है नकारात्मक ऊर्जा? हर व्यक्ति और वस्तु से उसके स्वभाव के अनुसार तरंगे निकलती रहती हैं। व्यक्ति के अंदर से निकलने वाली तरंगे ज्यादा प्रभावशाली होती हैं, और एक साथ जब बहुत सारी तरंगे इकट्ठा हो जाती हैं तो वो एक ऊर्जा बन जाती हैं, एक एनर्जी बन जाती हैं। अच्छे संस्कारों वाले व्यक्ति की ऊर्जा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, और खराब संस्कारों वाले व्यक्ति की ऊर्जा नकारात्मक होती है। अगर आप निगेटिव एनर्जी के या नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो ये ऊर्जा आपके और आपके प्रगति के बीच में आ करके सब कुछ रोक डालती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि सब कुछ अच्छा है, मेहनत भी ठीक से कर रहे हैं, लेकिन जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण ज्यादातर नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो आपकी उन्नति को, आपके डेवलपमेंट को रोक डालती है। नकारात्मक ऊर्जा पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

व्यस्तता बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा यानी निगेटिव एनर्जी है या नहीं है तो कैसे जानेंगे? अगर आपके घर में मीठी चीज लड्डू है, गुड़ है, चीनी है, ये खुला रहता है फिर भी उसमें चींटियां नहीं लगती तो इसका मतलब घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। अगर बार बार लगाने के बावजूद

तो आप ये समझिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अगर घर में काफी पैसा बीमारियों में और दवाइयों में खर्च होता है तो समझिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है और ये नकारात्मक ऊर्जा आप लोगों को बीमार कर रही है। बार बार घर की दीवारों पर अगर सीलन आ जाती है ठीक करने के बावजूद, तो ये समझिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है जिसका प्रभाव आपके घर के माहौल पर और आपके घर पर निगेटिवली बुरी तरीके से पड़ रहा है। नकारात्मक ऊर्जा पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का सबसे शुभ फायदा किस राशि को मिलेगा और किस राशि को सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, करियर में अभी रुकावट रहेगी, पारिवारिक समस्या का ध्यान दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

योग हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न गोपीनाथ जी ने हमें लिखा है और गोपीनाथ जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1992, जन्म का समय शाम के 5:45, जन्म स्थान है वाराणसी। गोपीनाथ जी कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का अभी तक विवाह नहीं हो पाया है, तो उसका विवाह कब होगा और जीवन कैसा रहेगा? गोपीनाथ जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और साल 2026 के अंत में या 2027 के शुरुआती समय में इनके विवाह के योग बनते हैं। स्वयं की इच्छा से जाने पहचाने बालक से विवाह करेंगी। जब भी विवाह करें कुंडली एक बार मिला ली जाए, एक बार देख ली जाए, उसके बाद विवाह का निर्णय लिया जाए तो मुझे लगता है बेहतर होगा। अपनी बेटी को एक ओपल बनवा करके पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाएं और इनसे कहें कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, इनको लाभ होगा। अगर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, तो उसके नुकसान क्या हैं? ये जीवन पर कैसे बुरा असर डाल देती है? देखिए, अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी है तो आप घर के बाहर बिल्कुल खुश रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे, लेकिन घर में प्रवेश करने के साथ आपका मन खराब हो जाएगा, मन में चिंताएं और नकारात्मकता आ जाएगी। अगर घर में निगेटिव एनर्जी है, घर में छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश होगा और घर के लोगों में तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो बिना वजह के बीमारियों में और बेवजह के कारणों में पैसा खर्च होगा। पैसा बचा पाना, पैसे की सुरक्षा कर पाना कठिन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि घर में रहने वाले लोगों के महत्वपूर्ण काम नहीं बनेंगे, हर काम में लगातार अड़चन आएगी। और अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो अच्छा करने के बावजूद जीवन में अपयश मिलेगा, बदनामी मिलेगी, घर में अशांति होगी, लोगों के बीच में आपसी प्रेम और आपसी तालमेल बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको दूर कैसे किया जाए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे
आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया, जीवन की घटनाओं से ये समझ लिया कि आपके जीवन में, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, तो क्या उपाय करेंगे? घर में सूर्य के पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करिए। ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य का प्रकाश आए, या खिड़की बनवाकर, रोशनदान बनवाकर घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिएगा। अपने घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए और उनकी देखभाल करिए। घर में जब भी पोंछा होता है, पानी का पोंछा घर के फर्श पर लगाया जाता है, तो कोशिश करें कि उस पानी में एक चम्मच, दो चम्मच नमक डाल दें। नमक मिले हुए पानी का पोंछा घर में लगाइए। हर महीने में एक बार अमावस्या आती है, हर अमावस्या को घर की सफाई करिएगा और जो वस्तु आपके काम की ना हो उस वस्तु को हटा दीजिएगा। अनुपयोगी वस्तुएं अपने घर से हटाते रहिएगा। सुबह के समय जब घर की सफाई हो जाए तो घर में मंत्र का जप करिए, चालीसा पढ़िए, स्तुति करिए भगवान की और तीन बार शंख बजाइएगा। अपने घर में नियमित रूप से सुबह और शाम गुग्गल की सुगंध वाली धूप बत्ती अगर आप जलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
गूगल को लेकर के या तो गोबर के उपले पे डालें या गूगल पे जरा सा सरसों का तेल डालकर उसको जलाएं और उसके धुएं को पूरे घर में घुमाएं। ऐसा सप्ताह में एक या दो बार करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो घर के कोने कोने से नकारात्मक ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, जैसे घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है वैसे ही व्यक्तियों के ऊपर भी निगेटिव एनर्जी का, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पाया जाता है। अगर आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जिसकी वजह से आप बीमार रहते हैं या आपके हर काम में अड़चन आती है, तो स्नान करने के पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर स्नान करिए, ऐसा नियम बना लीजिए। दूसरा, घर से निकलने के पहले अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान को अच्छी तरह नमस्कार और प्रणाम करके तब निकलें। और शाम को या रात में जब भी आपको समय मिले, जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है, 5 मिनट 2 मिनट उनकी स्तुति जरूर करें, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमान।

करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 3, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग हैं। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 8, स्वास्थ्य में सुधार होगा। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक।

पूरे होंगे। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक@aajtak.com पर। अगला प्रश्न नवीन जी ने हमें लिखा है और नवीन जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 अप्रैल सन 2000। जन्म का समय है शाम के 7:35 और जन्म का स्थान है इंदौर। नवीन जी कह रहे हैं कि मैं अभी कंप्यूटर के क्षेत्र में एक सामान्य सी नौकरी कर रहा हूं, क्या मुझे अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए आगे मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहिए? क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा? नवीन जी, आपकी कुंडली वास्तव में मैनेजमेंट वाली ही है, तो अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रयास करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं और बाद में उस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको काफी सफलता मिलेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से मैनेजमेंट का मामला आपके लिए बेहतर रहेगा। आप पढ़ाई पूरी कर पाएं, जीवन में आगे बढ़ सकें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करिएगा और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी।

काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान।

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। सिंह राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा। मीन राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और रितब्रता गुट को झटका लगा। चुनाव आयोग ने टीएमसी के सिंबल और नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाई। आयोग के निर्देशों के मुताबिक दोनों गुटों को आज सुबह 11 बजे तक अपने अपनी पसंद के तीन नाम और फ्री सिंबल सूची में तीन चुनाव चिन्हों के विकल्प सौंपने होंगे। टीएमसी के चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद के बीच रितब्रता बैनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह आदेश अस्थायी है, भविष्य में समाधान निकलेगा। रितब्रता ने कहा कि राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम नहीं कर सकता और लोकतंत्र में फांसीवाद के लिए कोई जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रजनीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने, दोनों ही गुटों को नए नाम और नए चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा। 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ी राजनीतिक मुहिम शुरू की है। बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्राएं नशे की समस्या को उजागर करेंगी। नितिन नवीन आज दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी ने पंजाब में नशे की समस्या के लिए पंजाब सरकार को दोषी ठहराया। बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब का दर्द है, आम आदमी पार्टी की सरकार और ड्रग्स मुद्दे पर फेल रही है। बीजेपी के आरोप पर आपका पलटवार, कहा यह पंजाब को बदनाम करने की कोशिश। पंजाब ड्रग्स मामले पर आपका बीजेपी पर पलटवार, कहा 2007 से 17 के बीच ड्रग्स से प्रभावित परिवारों को भी सामने लाए बीजेपी, तब पंजाब में थी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार। युवा कांग्रेस का मेरी डिग्री का क्या राष्ट्रीय अभियान शुरू, केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे युवा कांग्रेस नेता। युवा कांग्रेस ने मांग की कि देश भर में सभी रिक्त सरकारी पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए, साथ ही प्रधानमंत्री आवास को घेरने की चेतावनी भी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात करेंगी। फाइनेंसिंग से जुड़ी चुनौतियों और पॉलिसी की प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। यूपीआई चार्ज को लेकर विवाद के बीच सरकार ने एक आधिकारिक दावा निकाला है कि पैनल में शामिल कांग्रेस सांसदों ने इस फैसले को मंजूरी दी थी। टाटा संस के चेयरमैन बने रहेंगे इंद्र चंद्रशेखरन, बोर्ड सदस्यों ने पक्ष में वोट किया, तीसरी बार 5 साल के लिए बढ़ा कार्यकाल। मेहसाणा में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर बाल बाल बचा, वडनगर के पास गुंजा में उड़ान भरने से पहले आई तकनीकी खराबी। कांग्रेस ने चुनाव चिन्ह को फ्रीज किए जाने पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा, कहा ईसीआई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो बीजेपी के हाथों की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। बालाघाट में 30 बच्चों की मौत पर राहुल गांधी ने फिर एमपी सरकार पर निशाना साधा, कहा मध्य प्रदेश सरकार आज भारत की सबसे भ्रष्ट और

से कुशासित सरकार है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी का जो भी निर्माण का काम होता है पूरा बाद में होता है, गिरने पहले लगता है। दिल्ली एसआईर में अनियमितता के आरोपों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 22 सितंबर को इस मामले पर होगी सुनवाई। अमेरिकी 100% टैरिफ बिल पर भारत का दो टूक जवाब, कहा ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जेपीसी की पहली बैठक आज दोपहर 2:30 बजे होगी, एमएचए संसदीय पैनल को बिल में प्रस्तावित बदलाव के बारे में जानकारी देगा। भारत में आज से एप्पल आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की पहली सेल शुरू होने वाली, देर रात से स्टोर्स के बाहर लंबी लाइनें लगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए आज वोटिंग है, डे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए वोटिंग का समय सुबह 8:30 बजे दोपहर 1 बजे तक चलेगा। शाम के छात्रों के लिए वोटिंग दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगी, नतीजे कल जारी होंगे। एनटीए ने यूजीसी नीट जून 2025 परीक्षा के फाइनल आंसर की जारी की, उम्मीदवार अपनी फाइनल आंसर की एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लाखों दियों की रोशनी से जगमग हुई महाकाल नगरी उज्जैन, आतिशबाजी की रंग बिरंगी रोशनी से रोशन हुआ आसमान। प्रधानमंत्री के जन्मदिन में कोलकाता में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया, हजारों दियों की रोशनी के साथ इलेक्ट्रिकल लाइटों से भी जबरदस्त सजावट की गई। पीएम के जन्मदिन के मौके पर लाखों दियों की रोशनी से जगमग हुआ अयोध्या का सूर्यकुंड मंदिर, दीपदान और लेजर लाइट शो का भी आयोजन किया गया। पीएम के जन्मदिन के मौके पर जयपुर में जबरदस्त सजावट की गई, शहर की प्रमुख सड़कों, सरकारी इमारतों और चौराहों को भी रोशन किया गया। मोदी के जन्मदिन के मौके पर गुवाहाटी में हजारों दिए जलाए गए, बांस के बनाए गए स्ट्रक्चर पर दिए जलाए गए थे, पूरा इलाका रोशन किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि, कहा मध्य प्रदेश की सियासत में उनका अमूल्य योगदान है। मध्य प्रदेश की सियासत में सफेद शेर के नाम से मशहूर थे श्रीनिवास तिवारी, कांग्रेस से कमलनाथ, जीतू पटवारी ने भी नमन किया। पौत्र सिद्धार्थ तिवारी रीवा की 73 सीट से बीजेपी के विधायक हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कुपवाड़ा में 2 आतंकी अब्दुल मजीद कुशेज परवेज अहमद कुरेशी की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया, ये आतंकी पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। आज भारत को मिलेगी आसमान की त्रिशक्ति, एचएएल सौंपेगा तेजस ट्रेनर, HTT-40 और ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर। मैदरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर सजा भव्य गणेश पंडाल, 25 से 30 किलो सोने चांदी से हुआ बापा का दिव्य श्रृंगार, करीब 2,00,000 अमेरिकन डायमंड जड़ित हैं इसमें। मैदरपुरा का गणपति पंडाल आकर्षण का मुख्य केंद्र है, क्योंकि पंडाल की नक्काशी मैसूर पैलेस की असली झलक देती है, बापा के मुकुट बाजूबंद हार की कारीगरी बेहद खास है। भिलाई में भव्य गणपति पंडाल आकर्षण का केंद्र बने, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था पंडाल, अनोखी थीम देखकर लोगों को आकर्षण हुआ। गणपति की भक्ति में रखा तिरुवनंतपुरम, जहां मंडी महागणपति मंदिर में गणेशोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। मुंबई में इसराइल के कौंसुल जनरल यानी रिवाश ने लालबाग राजा के दर्शन किए, बापा का आशीर्वाद लिया। सिखों के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू, बेहद मनमोहक दिखा तीर्थस्थल का नजारा। बांदीपुरा जिले के गुरेज में तुलाइल घाटी के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, दिखा प्रकृति का सुंदर नजारा। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, बारलाचा दर्रे से घेपन पीक तक बिछी सफेद चादर, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, बारिश गिरते तापमान ने लाहौल स्पीति के मौसम का रंग पूरी तरह बदल दिया, निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी। लाहौल स्पीति में ड्रिलबुरी कोरा यात्रा के दौरान हादसा हुआ, 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत, 1 घायल, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया से जान गई। चमोली के रुद्रनाथ में हल्की बर्फबारी के साथ ओले गिरे, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी। कुल्लू में मौसम बदला, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, हनुमान टिब्बा ब्यासकुंड और खीरगंगा में सफेद चादर। राजौरी में भी मौसम का हाल बदला, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर लेह हाईवे में जोजिला के 0 पॉइंट पर सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई, तापमान में भी गिरावट आई। गैंगटोक में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ, सड़क और संपर्क मार्ग बाधित हुआ, 1 मकान क्षतिग्रस्त। सोनीपत में पिटबुल का आतंक देखने को मिला, 6 महीने के बच्चे पर यह खूंखार कुत्ता झपटा, सीसीटीवी में घटना कैद हुई, अस्पताल में मासूम की हालत नाजुक है। विकासनगर में सीवरेज के गड्ढे में एक बाइक सवार गिर गया, स्थानीय लोगों ने युवक को बाहर निकाला। मिर्जापुर में रेलवे अंडरपास में बीजेपी विधायक की कीचड़ में गाड़ी फंसी, ट्रैक्टर से खींचकर ग्रामीणों ने गाड़ी को बाहर निकाला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
चित्रकूट में एम्बुलेंस को धक्का लगाने का वायरल वीडियो सामने आया। मरीज को एम्बुलेंस उतारकर माइकल बाइक से ले जाने का वीडियो भी सामने आया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 2 में सोसाइटी में गार्ड से मारपीट हुई, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। नोएडा में फिनटेक कंपनी का सर्वर हैक हो गया, 2,42,00,000 रुपए का फ्रॉड हुआ। 497 ट्रांजैक्शन में 58 खातों में भेजी गई रकम। सतना में 4 सहेलियों ने छात्रा से बेरहमी से मारपीट की, वीडियो वायरल हुआ। उधम सिंह नगर में महिला की आग लगाने का लाइव वीडियो सामने आया। ई रिक्शा में आग लगने के बाद कूदती हुई महिला का सीसीटीवी भी सामने आया। गया में प्रेमिका को शादी के लिए मनाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया प्रेमी, घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नीचे उतारा गया। ग्रेटर नोएडा में रोडरेज का खौफनाक मामला देखने को मिला, नशे में धुत कार सवारों ने बाइक चालक को टक्कर मारने के बाद मारपीट की। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में दर्दनाक हादसा हुआ, बारबेक्यू पर डिनर के दौरान अचानक आग लगने से नवविवाहिता झुलसी, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन सड़क में धंसी कार, करीब 1 घंटे तक गाड़ी फंसी रही, क्रेन से उसे बाहर निकाला गया। दमन में शराब पीकर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, करीब 3 घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़े रहने के बाद सुरक्षित नीचे उतारा गया। आउटर नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप और नाबालिग लड़की की हत्या के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों में 3 नाबालिग थे। झारखंड के चक्रधरपुर में युवक ने घर में घुसकर युवती की हत्या की, चौथी मंजिल पर धारदार हथियार से वार कर काट डाला गला, युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। मथुरा में दर्दनाक हादसा हुआ, बोरिंग करने के दौरान 11,000 की लाइन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। भोपाल के 4 नामी फूड ठिकानों पर छापा पड़ा, कहीं कॉकरोच तो कहीं सड़ा गला खाना मिला, 20 किलो सड़ा प्याज मौके पर नष्ट कराया गया। पटना के हॉस्टल में बीए की छात्रा का फंदे से लटका हुआ संदिग्ध अवस्था में शव मिला, पुलिस छानबीन में जुटी। आगरा में ताजमहल के पास एक रिजॉर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप, बम डिस्पोजल स्क्वाड के खोज के दौरान नहीं मिला कोई संदिग्ध वस्तु। सोनीपत में नाबालिग 6 साल की बच्ची की हत्या के बाद हंगामा, अंतिम संस्कार से परिवार का इनकार, पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट, परिवार ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की। तीसरे T20 में अफगानिस्तान को भारत ने 127 रन से हराया, टीम इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर जीती सीरीज। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में जड़ा सबसे तेज शतक, 34 गेंदों में 108 रनों की तूफानी पारी खेली, अभिषेक ने 9 चौके 11 छक्के लगाए।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
6: पापा।
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ।
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
13: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट।
14: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट खुशियों के रंग।
15: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
16: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
17: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
18: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
19: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRF।
9: अब मैं क्या ही बोलूं?
6: परिवार अटूट भरोसा।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
2: यार लोन भूल गया। मैरी,
8: इट्स
2: जस्ट अ गुड बैंक ना।
8: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
8: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
3: There's nothing small about them.
2: Ujjivan, nothing small about us.
10: Oof. ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
10: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक, 18 सितंबर सिर्फ आज तक पर।
3: There is a very famous quote ki history repeat itself.
4: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
5: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
4: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नी 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम, लो मिठाई भी खाओ।
1: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
0: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
2: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
3: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा हैं।
2: क्या बात कर रहे हैं,
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
2: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पंचायत आज तक 18 सितंबर सिर्फ आज तक पर।
1: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
1: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ ला भाई मेरा बैट,
3: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: चार्ज हुआ यार,
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
15: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
14: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

तीन दिनों से तबाही मची है, सरकार सफाई देकर परेशान है, पीआईबी ने बताया, वित्त मंत्रालय ने बताया, एनपीसीआई ने कई बार बताया, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले फैक्स दे रहे हैं, दर्जनों डिबेट्स हो गई, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। पहले विरोध किया, फिर विदेशी दबाव बनाया, फिर नियम वापसी की मांग की और अब मनमाने फैसले का आरोप पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार ने अमेरिकी दबाव में फैसला लिया, और गौरव गोगोई कहते हैं कि जब संसदीय समिति की बैठक हुई तो वित्त मंत्रालय के पास यूपीआई पर टैक्स के कोई ठोस प्रस्ताव नहीं थे। मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर की जरूरत पर सवाल पूछा गया लेकिन जवाब नहीं थे। ये गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं और अपने दल के बाकी 5 और सांसदों के साथ वित्त विभाग के संसदीय मामलों की समिति के सदस्य हैं। इस समिति की 25वीं रिपोर्ट के पेज नंबर 23 पर साफ लिखा है कि बिना एमडीआर के यूपीआई चलना मुश्किल है। पेज नंबर 78 पर लिखा है कि यूपीआई के लिए अपना रेवेन्यू मॉडल तैयार करना होगा, और 12 मार्च को ये रिपोर्ट उस समिति ने दी थी जिसमें कांग्रेस की ओर से पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी, किशोरी लाल और के गोपीनाथ, ये सभी सांसद उस कमेटी के सदस्य हैं जिनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने आदेश निकाला है। और रिपोर्ट में खुद स्टैंडिंग कमेटी ने माना था कि सरकारी इंसेंटिव डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की लागत का सिर्फ 11% ही कवर करते हैं। ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड का पता लगाना, सेटलमेंट, KYC और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार फंडिंग की जरूरत होती है। तो ये आरोप सच नहीं कि कांग्रेस की जानकारी मंजूरी के बिना 0.4% MDR लागू हुआ। इसके बाद जब लोकसभा में 6 अगस्त 2026 को टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल पर चर्चा हो रही थी तो विपक्षी सांसद शोर मचा रहे थे, ध्वनि मत से बिल पारित हुआ था। इसी तरह 10 अगस्त को भी बिल पर चर्चा के समय विपक्षी आसन के सामने शोर मचा रहे थे और बिल पारित हो गया था। और तभी जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि ये संशोधन बिल US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की 2026 की रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें UPI और रुपए के मुफ्त होने की आलोचना की गई है और उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अमेरिकी पेमेंट प्लेटफॉर्म को बाहर कर दिया है। जयराम रमेश ने सवाल उठाए थे कि क्या ट्रंप के दबाव में UPI को कमजोर करना चाहते हैं और डिजिटल पेमेंट सेक्टर को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना चाहते हैं। अमेरिका की USTR की पेज नंबर 272 पर कहा गया था कि NPCI के रुख से अमेरिकी कंपनियों को बराबरी का मौका नहीं मिल रहा। अमेरिका ने थर्ड पार्टी एप्स को UPI सिस्टम में 30% के कैप का विरोध किया था। हालांकि 30% का कैप अभी तक लागू नहीं किया गया। हाल ये है कि अमेरिका की वॉलमार्ट वाला फोन पे और गूगल वाला गूगल पे भारत की 80% से अधिक UPI पेमेंट मार्केट पर कब्जा कर चुकी है। हालांकि इसमें से कुछ चार्ज वो बैंक भी वसूलेंगे जिनके खाते से पेमेंट हो रहे हैं, और भी अनुमान के मुताबिक 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का सालाना फायदा गूगल पे फोन पे को हो सकता है, और ऐसा ही फायदा पेटीएम जैसी भारतीय पेमेंट ऐप्स को भी हो सकता है। सरकार ये भी दलील देती है कि इन देसी ऐप्स को चलाने के लिए सरकारी सब्सिडी का रेवेन्यू मॉडल नहीं चल सकता, क्योंकि पिछले साल फोन पे का सालाना खर्च 9,394 करोड़ रुपए था जिसमें सर्वर और डेटा सेंटर्स पर 2,800 करोड़ रुपए, बैंकों और गेटवे को 1,688 करोड़ रुपए, बाकी सॉफ्टवेयर, क्लाउड, क्लाइंट सपोर्ट सब मिलाकर 500 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, और ये तब था जब एक तिहाई मार्केट पर फोन पे का कब्जा है। अमेरिका के सामने चुनौती बनी हुई है कि अगर भारत में थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स पर 30% का कैप लग गया तो भारतीय बाजार पर उनका एकाधिकार सीमित हो सकता है और तब वॉलमार्ट और गूगल जैसी कंपनियों का मुनाफा भी एक तिहाई तक सिमट सकता है। इसके साथ ही पेटीएम जैसी भारत की देसी थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स को सर्वाइवल का बड़ा मौका मिल सकता है, क्योंकि अब 0.4% MDR लागू होने का फायदा उन्हें भी मिलेगा। आज तक ब्यूरो।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नी 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम, लो मिठाई भी खाओ।
1: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे,
0: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
2: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा है।
3: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
2: क्या बात कर रहे हैं,
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
2: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

के निशाने और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक, दोनों से मांगे गए तीन तीन विकल्प, 20 बागी सांसदों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंजाब में आज से बीजेपी का नशा मुक्त अभियान, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन शुरू करेंगे 13 दिनों तक चलने वाली यात्रा, सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलकर सौंपेंगे पंजाब की रिपोर्ट। यूपी में मिशन 2027 के लिए बीजेपी का संगठन से सरकार तक फीडबैक का दौर, पार्टी प्रभारी विनोद तावड़े अवध पूर्वांचल में जमीनी नब्ज टटोलेंगे, आरएसएस ने थमाई चुनौतियों की लिस्ट। सौ फीसदी टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध, अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। बिहार की सियासत संस्कृति भविष्य पर बहस का महामंच, पंचायत आज तक बिहार में सीएम सम्राट चौधरी के साथ बड़े मंत्री, सांसद मनोज तिवारी एक्टर संजय मिश्रा भी होंगे मौजूद, सुबह 10 बजे से लगातार जारी।

0: सबसे पहले ये जानते हैं कि इस बुलेटिन में क्या खास होने वाला है। आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री अब शुरू हो चुकी है। फोन खरीदने के लिए लोग कतार में लगे हुए हैं। वहीं टीएमसी ममता गुट को क्या झटका लगा है, नाम निशान पर कैसे मचा है सियासी घमासान, डिटेल के साथ आपको बताएंगे। साथ ही 100% अमेरिकी टैरिफ कानून को लेकर भारत की दो टूक, वहीं पंजाब में बीजेपी का मेगा कैंपेन कैसे चलने वाला है और क्या है रणनीति, ये भी आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कैसे दीपोत्सव से दिवाली की तरह माहौल हो गया है, वहीं पहाड़ों पर बर्फ की पहली फुहार कैसी दिख रही है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहाड़ों पर मौसम ने कैसे बदली है करवट, अभिषेक ने बल्ले से क्या तूफान मचाया, धमाकेदार पारी ने सुर्खियां बटोरी है, डिटेल के साथ आपको बताएंगे। और नासिक में अनोखा प्रदर्शन हुआ, साहब की टेबल पर छोड़ दिए गए कुत्ते, ये सब होगा सुपर एट में थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईफोन की खबर के साथ, क्योंकि भारत में आज से आईफोन 18 सीरीज के फोन की बिक्री शुरू हो चुकी है। दरअसल नए आईफोन के लिए दिल्ली में देर रात से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं। आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की बिक्री शुरू हो चुकी है। दिल्ली के एप्पल स्टोर के बाहर रात भर ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिली। सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में जबरदस्त क्रेज दिख रहा है। जिन लोगों ने आईफोन के लिए एडवांस बुकिंग की है वो तो लाइन में है ही, जिनकी बुकिंग नहीं है वो भी लाइन में लगे हुए हैं कि शायद आईफोन का नया वर्जन उनको मिल जाए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई बेंगलुरु से भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई है। लोग रात से ही लाइन में लगे हुए हैं। तो आईफोन की बिक्री की अब शुरुआत हो चुकी है। हमारी सहयोगी आस्था हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। आईफोन स्टोर के बाहर आस्था आप मौजूद हैं, कैसा वहां पर दृश्य देख पा रही हैं, कितनी लंबी कतार है आईफोन स्टोर के बाहर?
1: जी बिल्कुल, इस समय मैं बीकेसी में खड़ी हूँ एप्पल स्टोर के बिल्कुल सामने, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं दरवाजे खुल चुके हैं फाइनली। जिन लोगों की एडवांस बुकिंग थी वो अंदर जा चुके हैं, पहला स्लॉट अंदर जा चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कतारें सुबह से यहाँ तक कि रात से कतारें खड़ी हुई हैं। लोग बिल्कुल खड़े हुए घंटों वेट कर रहे हैं। और आईफोन के बारे में बता दें, दो मॉडल्स लॉन्च हुए हैं जिनके, आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की सीरीज फाइनली आ चुकी है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस बार, सिर्फ लोगों के नंबर की बात नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार जो आईफोन 18 सीरीज के प्राइसिंग है वो कम से कम 20% बड़े हैं। लोगों को 30,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर इस बार आईफोन के मॉडल्स खरीदने पड़ेंगे, जिसके कारण ये भी हो सकता है कि लोगों के जो संख्या है पिछले साल के मुताबिक कम देखने को मिल रही है यहाँ पे। और आईफोन ने उसके रेट्स के बारे में बात करते हैं। आईफोन 18 प्रो जो कि 1,64,900 से स्टार्ट हो रहा है, और प्रो मैक्स 1,79,900 से स्टार्ट हो रहा है। और इन्होंने एक अपना न्यू टू टीयर निकाला है, 2 TB वर्जन भी निकाला है, जिसका प्राइस यहां तक कि 3.5 लाख तक भी जा रहा है। तो एक्चुअली में जो कंज्यूमर्स हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हैं, वो पे किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इन्हांस्ड कैमरा फीचर्स, नए रंग और परफॉर्मेंस के लिए, और एप्पल के न्यू A20 प्रो चिप के लिए, जिसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। रेट्स बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है कि मार्केट में रैम की कमी के वजह से, जो कि कम देखी जा रही थी रैम, उसकी वजह से प्राइजेस बहुत इंक्रीज हैं, साथ ही साथ इम्पोर्ट ड्यूटीज की वजह से। लेकिन वो लोगों की एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी भी लोग पीछे कतारों में खड़े हैं, पहला स्लॉट ऑलरेडी अंदर जा चुका है। बहुत जल्द हम आपको आईफोन 18 सीरीज की भी झलक दिखाएंगे, जो कि 4 नए रंग में है, जो कि सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहे हैं लोगों को। सबसे बड़ी बात ये है कि जो भारत में ये वाली सीरीज आई हैं, थोड़ा ज्यादा उनका दाम है इस समय, पर लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। बिल्कुल लोग आ रहे हैं, गुजरात से आए हैं, रात से खड़े हैं यहाँ पे, सूरत से आने को मिल रहे हैं, अहमदाबाद से आए हैं, काफी लोग कतारों में खड़े हुए हैं। और हम आपको पहली झलक बहुत ही जल्द दिखाएंगे।
0: आईफोन 18 का यहाँ पर दिख रहा है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है आस्था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं एक सावधान करने वाली खबर की। सोनीपत में पिटबुल ने 6 महीने के मासूम पर हमला कर दिया। महिला बच्चे को गोद में लेकर गली से गुजर रही थी और तभी कुत्ता दौड़कर आया, बच्चे पर झपट गया। ये रिपोर्ट देखिए पूरी।
2: तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपको हूबहू नहीं दिखा रहे। ये तस्वीरें देखिए, चीख पुकार मची है, लोग एक काले पिटबुल कुत्ते को डंडे से मार रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन पिटबुल बेकाबू है। स्क्रीन पर जो हिस्सा आपको ब्लर नजर आ रहा है, दरअसल उस हिस्से में 6 महीने का एक मासूम बच्चा है जिस पर पिटबुल लगातार झपट्टा मार रहा है। ये तस्वीर दिल्ली से सटे सोनीपत के सिक्का कॉलोनी की है। यहाँ 6 महीने के मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल का यह हमला तब हुआ जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी। तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। हमले में मासूम और उसकी बुआ घायल हो गए। गंभीर हालत में बच्चे का रोहतक PGI में इलाज चल रहा है।
3: बहुत दिन हाथी काट रखा, सारा मुंह फाड़ रखा है, पेट फाड़ रखा है मेरे पोते का, बहुत ज्यादा उसमें है।
4: बच्ची तो ही आपकी दिन का कुत्ता था, उन्होंने क्या गुस्सा,
3: इन ये नु बोले इतने पैसे थे हमारे पास, 3 लाख रुपया हमने दे दिया, अब हमारा विरोध नहीं है देने का, हम कहाँ था देवे पैसे इतने। मैंने अनुका दी मेरे 2-2 बच्चे काट रखे है भैया, लिहाज तो तुमने करवाना होगा, पैसे तुमने लगाने पड़ेंगे, कहीं से भी लगाओ।
4: किस किस को काटा कुत्ते ने?
3: गुड़िया को भी काट रहा क्या है, पहले गुड़िया काटी है फिर मेरा पोता पकड़ा है इनने,
4: दो दो कुछ किसी ने
3: नहीं छुटवाया है, मेरे घर वाले ने छुटवाऊं छोड़ा नहीं पोता, मेरे घर वाले ने हाथ दे कर मुंह का जो खोला है।
2: आए दिन पिटबुल के हमले की खबरें आती रहती हैं। सवाल कुत्ते के मालिक की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। फिलहाल मासूम का इलाज रोहतक PGI में चल रहा है। पवन राठी, सोनीपत आज तक।
0: चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे महाराष्ट्र के नासिक में अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने पंचायत के चीफ ऑफिसर के दफ्तर में धावा बोल दिया और कुत्तों को ऑफिसर की टेबल पर छोड़ दिया।
5: ये है महाराष्ट्र के नासिक में पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी का दफ्तर। अचानक मुख्य अधिकारी के दफ्तर में शिवसेना UBT की युवा सेना के कार्यकर्ता 3 बोरियां लेकर धावा बोलते हैं। मुख्य अधिकारी अपनी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहे होते हैं, तभी युवा सेना के कार्यकर्ता बोरियां उठाकर टेबल पर खोलते हैं तो उसमें से निकलते हैं कुत्ते, और ये देखिए कैसे कुत्ते टेबल पर दौड़ने लगते हैं। पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी हैरत में पड़ जाते हैं, आखिर ये है क्या, और कुत्ते टेबल पर कोने में जाकर फाइलों पर बैठ जाते हैं। फिर सब कुछ क्लियर होता है। जी हां, नासिक में आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ शिवसेना UBT की युवा सेना का ये बड़ा ही अनोखा विरोध प्रदर्शन था, जिसमें 2 आवारा कुत्ते बोरियों में कैद करके मुख्य अधिकारी की बेस पर छोड़ दिए जाते हैं। शिवसेना UBT की युवा सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि बार बार आवारा कुत्तों के आतंक की शिकायत करने पर भी प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा था, और जब कई बार शिकायत दर्ज कराने पर भी उनकी बातें नहीं सुनी गईं, तो मुख्य अधिकारी के दफ्तर में ही उनकी मेज पर आवारा कुत्ते छोड़ दिए गए। प्रवीण बी ठाकरे, नासिक आज तक।
0: बड़ी खबर अब दिल्ली से है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े जो कॉलेज हैं उनके एक साथ वोटिंग होगी। मॉर्निंग शिफ्ट वाले कॉलेज में सुबह 1:30 बजे 1:30 बजे दोपहर में लगभग वोटिंग होने वाली है और सेकेंड शिफ्ट के कॉलेज में दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक वोटिंग होगी। छात्र संघ चुनाव को लेकर कैंपस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय सिक्योरिटी के अलावा पुलिस सुरक्षा भी तैनात की गई है। 2000 पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने यह बताया है कि कल यानी कि 19 सितंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में भी कल मतगणना होगी। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो कॉलेज हैं उनमें दोपहर लगभग 1 बजे वोटिंग होगी, उसके बाद 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक वोटिंग होगी, सुबह 8:30 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी और लगभग 7:30 बजे तक ये चलने वाली है। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर कैंपस की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। विश्वविद्यालय की जो सिक्योरिटी है उस पर भी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। सुबह 8:30 बजे वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और दोपहर वाले जो कॉलेज है उसमें 3 से 7:30 बजे तक वोटिंग होगी। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर, टीएमसी के नाम और चुनाव निशान पर। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने दोनों गुटों के लिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और फूल घास निशान को फ्रीज कर दिया है। अब दोनों गुट पुराने नाम और निशान से उपचुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आयोग ने दोनों पक्षों से 18 सितंबर यानी कि आज सुबह 11 बजे तक तीन तीन नए नाम और तीन तीन फ्री सिंबल सुझाने को कहा है। इनमें से एक नाम और एक निशान आयोग दोनों गुटों को आवंटित करेगा। ममता गुट ने फैसले पर सवाल उठाए हैं, जबकि ऋतुव्रत गुट ने इसका स्वागत किया है।
6: टीएमसी का नाम गया, टीएमसी का निशान गया। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों के लिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और फूल घास निशान फ्रीज कर दिया है। यानी न ममता गुट टीएमसी के नाम से लड़ेगा और न रतव्रत बनर्जी गुट। नंदीग्राम और रेजीनगर के उपचुनाव में दोनों अब नई पहचान के साथ मैदान में उतरेंगे। आयोग ने दोनों गुटों को 18 सितंबर सुबह 11 बजे तक तीन तीन नाम और तीन तीन फ्री सिंबल बताने को कहा है। इनमें से एक नाम और एक निशान आयोग दोनों गुटों को देगा।
7: निर्वाचन आयोग उन तीन वैकल्पिक नामों और वैकल्पिक चुनाव चिन्हों पर विचार करके दोनों धड़ों को एक एक चुनाव चिन्ह और एक नाम फाइनल कर देगा, जिस पर उनकी सहमति ली जाएगी।
6: ममता गुट ने फैसले को मानने से इनकार किया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, आदेश कानून के मुताबिक नहीं है और इसमें कई कानूनी खामियां हैं। दूसरी तरफ रतव्रत गुट ने आयोग के आदेश का स्वागत किया है। अखरुज्जमान अंसारी ने कहा, फिलहाल अंतरिम आदेश मंजूर है, उम्मीद है अंतिम फैसले में मूल नाम और निशान उनके गुट को मिलेगा। वहीं खुद रतव्रत ने फैसले का स्वागत किया और यहां तक कह डाला कि पार्टी किसी की निजी कंपनी नहीं है।
8: सिंबल फ्रीज हुआ है, नाम भी फ्रीज हुआ है, मगर एक चीज जाहिर है कि जमहूरियत के अंदर कोई तानाशाही का कोई जगह नहीं है।
0: तो वहीं अमेरिका के 100% टैरिफ वाले प्रस्ताव पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। एमईए ने साफ किया है कि भारत अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत वैश्विक बाजार में कीमतों और उपलब्धता के आधार पर अपने फैसले लेता रहेगा और ये जरूर कहा जा रहा है कि नए कानून के पास होने से ट्रंप को कोर्ट या संसद के हस्तक्षेप के बिना भारत पर दबाव बनाने का एक बेहद ही मजबूत कानूनी हथियार मिल गया है।

0: 100% टैरिफ को लेकर जो बयान सामने आया है, भारत ने क्या उस पर जवाब दिया है, चलिए अब वो आपको दिखा देते हैं। भारत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। कहा है कि भारत अपने 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वो अलग अलग स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर और बाजार की बदलती स्थितियों के आधार पर ऐसा करना जारी रखेगा। हाल के महीनों में अमेरिकी अधिकारियों के इस मुद्दे पर उच्च स्तर पर चर्चा भी हुई है। तो अमेरिकी दबाव के आगे भारत नहीं झुकेगा, ये भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है। 100% टैरिफ को लेकर अब भारत ने यह बयान दिया है। और आपको भी बता दें कि ट्रंप का 100% टैरिफ का दाव भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर लेकर आएगा, एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं।
1: आपको बता दें कि अमेरिका के इस टैरिफ में यूरोपीय देशों को राहत मिल सकती है। डेमोक्रेट सेनेटर रिचर्ड ब्लू बेंथल ने कहा है कि ये बिल यूरोपीय सहयोगियों के खिलाफ नहीं है। इसका निशाना सिर्फ वो देश है जो अभी रूस के तेल कारोबार को सबसे ज्यादा आर्थिक सहारा दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि जो रूस से तेल खरीदेगा उसे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का मददगार माना जाएगा। चूंकि भारत अपनी जरूरत का 40% से ज्यादा क्रूड ऑयल रूस से खरीद रहा है, इसलिए उस पर इस टैरिफ का खतरा है। अब सवाल ये है कि ट्रंप के इस टैरिफ का भारत पर कैसे असर होगा। तुरंत कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि टैरिफ ऑटोमेटिक नहीं है। कानून बनने के बाद भी भारत पर 100% टैरिफ तुरंत लागू नहीं होगा। ये राष्ट्रपति ट्रंप को दिया गया एक अधिकार है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी USTR पहले लक्षित देशों की सूची बनाएगा, जिसके बाद उन देशों को रूसी तेल आयात कम करने या अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए 180 दिनों का समय दिया जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा है कि भारत अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत वैश्विक बाजार में कीमतों और उपलब्धता के आधार पर अपने फैसले लेता रहेगा। ये जरूर कहा जा रहा है कि नए कानून के पास होने से ट्रंप को कोर्ट या संसद के हस्तक्षेप के बिना भारत पर दबाव बनाने का एक बेहद मजबूत कानूनी हथियार मिल गया है। आपको बता दें कि रूस के अलावा भारत मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर से तेल खरीदता है। इसके अलावा नाइजीरिया, अंगोला, ब्राजील और अमेरिका से भी कच्चा तेल आयात करता है। आज तक ब्यूरो।
0: चलिए अब बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। आज यानी कि 18 सितंबर से बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हरी झंडी दिखाएंगे। ये 12 दिवसीय यात्रा राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। बीजेपी का दावा है कि राज्य में नशा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं। इस यात्रा के समापन पर 30 सितंबर को जालंधर में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य रूप में शामिल भी होंगे। तो इस यात्रा की आज से शुरुआत होने वाली है। नितिन नवीन इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं और अमित शाह इस यात्रा का समापन करेंगे कुछ दिनों बाद। तो देखिए, आज से राज्य भर में विशाल नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। पंजाब में ये दाव खेला जा रहा है। 12 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है, जिसका नाम है नशा मुक्त पंजाब यात्रा। नशा से मुक्ति के लिए पंजाब में यात्रा चलेगी। यात्रा में 117 विधानसभा सीटें भी कवर की जाएंगी और नितिन नवीन आज हरी झंडी दिखाएंगे। पठानकोट से इस यात्रा की रवानगी होगी। तो ये बड़ा दाव बीजेपी की तरफ से 2027 को लेकर चला गया है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर भी मार्च वहां पर किया जाएगा। बीजेपी की ड्रग्स के खिलाफ एक ये बड़ी मुहिम है, तो बड़ा दाव बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक ये यात्रा पूरे पठानकोट जिले के विभिन्न क्षेत्रों में की जाएगी और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का संदेश इसके जरिए दिया जाएगा।
2: एक यात्रा को हमने शुरुआत की है। इस यात्रा के जरिए हमारी कोशिश रहेगी कि पीड़ित परिवारों से मिलें, जो लोग नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई हो और हम लोग एक समाधान नशे के खिलाफ दे सके। तो केंद्र की सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे तरीके से संकल्पित है कि पंजाब से और देश से नशे को उखाड़ फेंके, और पिछले दिनों गृह मंत्री जी ने ऐसा कहा भी है।
0: तो वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में क्रिकेट का एक ऐसा बवंडर आया जिसके आगे अफगानिस्तान के गेंदबाजों के होश उड़ गए। जी हां, टीम इंडिया के युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने महज 30 गेंदों में शतक ठोककर तहलका मचा दिया। पावर प्ले में उनकी आंधी ऐसी चली कि क्रिकेट जगत के सारे पुराने रिकॉर्ड हवा हो गए।
3: अभिषेक शर्मा, नाम याद रखिए, क्योंकि दिल्ली में इस बल्ले ने सिर्फ रन नहीं बरसाए, रिकॉर्ड्स की बारिश कर दी। सिर्फ 30 गेंद और शतक पूरा, 34 गेंदों में 108 रन की सनसनीखेज पारी, 9 चौके और 11 छक्के। पावर प्ले में ही अभिषेक ने 22 गेंदों पर 76 रन ठोककर अफगानिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ दी। इस पारी के साथ अभिषेक ने टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया और भारत के लिए भी सबसे तेज T20 शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए। रिकॉर्ड तोड़ शतक पूरा करने के बाद अभिषेक मैदान पर ही ऋषि मुनियों जैसी मुद्रा में बैठ गए, आंखें बंद की और भगवान को याद किया। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने आखिरकार उन्हें पवेलियन भेजा, लेकिन तब तक अभिषेक इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिख चुके थे। आज तक ब्यूरो।
0: तो इस सितंबर के दूसरे सप्ताह की शुरुआत के साथ ही पहाड़ों पर मौसम बदलने लगा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी तो पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों की खुशी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनाली, जोजिला पास, कुल्लू, चमोली, गुरेज, जहां पर बर्फबारी हो चुकी है। पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं और इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। और अब सुपर 8 में वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
5: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पंचायत आज तक, 18 सितंबर सिर्फ आज तक पर।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक तो एक
3: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: पापा,
5: सॉरी यार, गलती हो गई है,
6: ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
11: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
12: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
13: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
14: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
15: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
16: लायन डेट नट बाइट्स।
17: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
18: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
19: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
20: सोच बदलो और बैंक भी।
21: और वही, कहाँ गए थे घूमने?
22: जीके मैक्स।
23: वैसे रोहन, पढ़ाई में कैसा है?
22: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
23: जेके वॉल मैक्स
22: बेस्ट पेंट।
23: जेके मैक्स।
22: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
24: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
25: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
26: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
25: स्मॉल बैंक?
26: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज, RDF, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम। जीवन, nothing small about us.
27: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
28: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
27: असली शहद, असली स्वाद।
29: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
30: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
31: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
24: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
32: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
24: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
33: नो मैटर व्हाट योर डे थ्रोज एट यू, स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कूलेस्ट स्पा एट होम।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पंचायत आज तक, 18 सितंबर सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

कोर्ट को झटका। चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक। दोनों से मांगे गए तीन तीन विकल्प 20 बागी सांसदों पर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंजाब में आज से बीजेपी का नशा मुक्त अभियान। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन शुरू करेंगे 13 दिनों तक चलने वाली यात्रा। सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलकर सौंपेंगे पंजाब की रिपोर्ट। यूपी में मिशन 2027 के लिए बीजेपी का संगठन से सरकार तक फीडबैक का दौर। पार्टी प्रभारी विनोद तावड़े

दिल्ली मुंबई से बेंगलुरु तक उमड़े दीवाने, एप्पल स्टोर के बाहर रात से ही कतारें, पहली बार फोल्डेबल आईफोन की एंट्री। बिहार की सियासत, संस्कृति, भविष्य पर बहस का महामंच पंचायत, आज तक बिहार में सीएम सम्राट चौधरी के साथ बड़े मंत्री, सांसद मनोज तिवारी, एक्टर संजय मिश्रा भी होंगे मौजूद, सुबह 10 बजे से लगातार।

बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋत्विक गुट को झटका, चुनाव आयोग ने टीएमसी के सिंबल और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक। आयोग के निर्देशों के मुताबिक दोनों गुटों को आज सुबह 11 बजे तक अपनी अपनी पसंद के तीन नाम और फ्री सिंबल सूची में से तीन चुनाव चिन्ह के विकल्प सौंपने होंगे। टीएमसी के चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद के बीच ऋत्विक बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले को लेकर प्रतिक्रिया दी, कहा कि यह आदेश अस्थायी, भविष्य में निकलेगा समाधान। ऋत्विक बनर्जी ने कहा, राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम नहीं कर सकता और लोकतंत्र में फांसीवाद के लिए कोई जगह नहीं। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजी नगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव, दोनों ही गुटों को नए नाम और नए चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा। 2027 के चुनावों से पहले बीजेपी ने बड़ी राजनीतिक मुहिम शुरू की। बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्राएं नशे की समस्या को उजागर करेंगी, नितिन नवीन आज दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी ने पंजाब में नशे की समस्या के लिए पंजाब सरकार को दोषी ठहराया। बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष ने कहा है कि ये पंजाब का दर्द है और आम आदमी पार्टी सरकार ड्रग्स के मुद्दे पर फेल रही। बीजेपी के आरोप पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, कहा यह पंजाब को बदनाम करने की कोशिश। पंजाब ड्रग्स मामले पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर पलटवार, कहा 2007 से 2017 के बीच ड्रग्स के प्रभावित परिवारों को भी सामने लाए बीजेपी, तब पंजाब में थी एसएडी बीजेपी सरकार। युवा कांग्रेस का मेरी डिग्री का क्या, राष्ट्रीय अभियान शुरू, केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे युवा कांग्रेस नेता। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि देशभर के सभी रिक्त सरकारी पदों को भरा जाए, साथ ही पीएम आवास को घेरने की चेतावनी भी दी। निर्मला सीतारमण आज दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात करेंगी, फाइनेंसिंग से जुड़ी चुनौतियों पर पॉलिसी की प्राथमिकताओं पर होगी चर्चा। यूपीआई चार्ज को लेकर विवाद जारी, हालांकि सरकार के एक अधिकारी का दावा है कि पैनल में शामिल कांग्रेस सांसदों ने इस फैसले को मंजूरी दी थी। टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन, बोर्ड सदस्यों ने पक्ष में किया वोट, तीसरी बार 5 साल के लिए बढ़ा कार्यकाल। मेहसाणा में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर, बाल बाल बचा, बड़नगर के पास गुंजा में उड़ान से पहले आई तकनीकी खराबी। कांग्रेस ने चुनाव चिन्ह को फ्रीज किए जाने पर चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा ईसीआई ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो बीजेपी के हाथों की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। बालाघाट में 30 बच्चों की मौत पर राहुल गांधी ने फिर से एमपी सरकार पर साधा निशाना, कहा मध्य प्रदेश सरकार आज भारत की सबसे भ्रष्ट और सबसे कुशासक सरकार। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी का जो भी निर्माण का काम होता है वो पूरा बाद में होता है, गिरने पहले लगता है। दिल्ली एसआईआर में अनियमितता के आरोपों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 22 सितंबर को सुनवाई। अमेरिकी 100% टैरिफ बिल पर भारत का दो टूक जवाब, कहा ऊर्जा सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं। जेपीसी की पहली बैठक आज दोपहर 2:30 बजे होगी। एमएचए संसदीय पैनल को बिल्स में प्रभावित बदलावों के बारे में जानकारी देगा। भारत में आज से एप्पल आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स की पहली सेल से शुरू, देर रात से ही स्टोर के बाहर लगा लंबा लाइन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग डे, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए वोटिंग का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इवनिंग शिफ्ट के छात्रों के लिए वोटिंग दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगी, नतीजे कल आएंगे। एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के फाइनल आंसर किए जारी, उम्मीदवार अपनी फाइनल आंसर की एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि, कहा एमपी की सियासत में उनका है अमूल्य योगदान। मध्य प्रदेश की सियासत में सफेद शेर के नाम से मशहूर थे श्रीनिवास तिवारी, कांग्रेस थे कमलनाथ, जीतू पटवारी ने भी किया नमन, पौत्र सिद्धार्थ तिवारी हैं और रीवा की त्योंथर सीट से बीजेपी विधायक। जम्मू कश्मीर डीजीपी ने कुपवाड़ा में 2 आतंकियों अब्दुल मजीद कुरैशी और परवेज अहमद कुरैशी की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया। ये आतंकी पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चला रहे। आज भारत को मिलेगा आसमान की त्रिशक्ति, एचएएल सौंपेगा तेजस, ट्रेनर एचटीटी 40 और ध्रुव एनजी

हेलीकॉप्टर। पवन हंस लिमिटेड के बेड़े में शामिल होगा ध्रुव एनजी सिविल हेलीकॉप्टर। बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहेंगे मौजूद। सूरत के महिधरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर सजा भव्य गणेश पंडाल। 25 से 30 किलो सोना चांदी से हुआ बप्पा का दिव्य श्रृंगार। करीब 2 लाख अमेरिकन डायमंड से जड़ित। महिधपुरा का गणपति पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। पंडाल की नक्काशी देती है मैसूर पैलेस की असली झलक। बप्पा के मुकुट, बाजूबंद और हार की कारीगरी बेहद खास। भिलाई में भव्य गणपति पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है पंडाल। अनोखी थीम लोगों को कर रही है आकर्षित। गणपति की भक्ति में रंगा तिरुवनंतपुरम और महागणपति मंदिर में गणेशोत्सव समारोह देखने को मिला। मुंबई में इजराइल के काउंसल जनरल यानिव रेवाच ने लालबाग चौराहा के दर्शन किए, किया बप्पा का आशीर्वाद। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई। बेहद मनमोहक दिखा तीर्थ स्थल का नजारा। बांदीपुरा जिले के गुरेज में तुलाईल घाटी के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी दिखा प्रकृति का सुंदर नजारा। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी। बारालाचा दर्रे से घेपन पीक तक बिछी सफेद चादर। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बारिश और गिरते तापमान से लाहौल स्पीति के मौसम का रंग पूरी तरह से बदला। निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी। लाहौल स्पीति में ड्रिलबुरी कोरा यात्रा के दौरान हादसा। 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हुई, 1 घायल। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया से गई जान। चमोली के रुद्रनाथ में हल्की बर्फबारी के साथ गिरे ओले। हर तरफ बिछी सफेद चादर। कुल्लू में बदला मौसम। रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका। हनुमान टिब्बा और साथ ही व्यास कुंड और खीर गंगा में बिछी सफेद चादर। तापमान में गिरावट। राजौरी में भी बदला मौसम का हाल। जमकर हुई बारिश, तापमान में भारी गिरावट। श्रीनगर ले हाईवे में जोजिला के 0 पॉइंट पर सीजन की पहली बर्फबारी। तापमान में आई भारी गिरावट। गंगटोक में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। सड़क संपर्क बाधित और 1 मकान क्षतिग्रस्त। राजस्थान के अलवर में इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मची अफरा तफरी। आग के लपटे और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया। गोपालगंज में शराब तस्करों के अनोखा कारनामा। एक गाड़ी के बॉडी इंजन और टायर में बना दिया तहखाना। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। नवसारी में कांग्रेस ने विधायक अनंत पटेल की अगुवाई में महंगाई के खिलाफ अनोखा विरोध किया। 40 रुपए किलो के दाम से बेची चीनी। चित्रकूट में मात्र 30 रुपए के विवाद में खूनी खेल। युवक की पीठ में मारा गया चाकू। बीच बचाव करने आया था। तरन तारण में नशा तस्करी और हथियारों के खिलाफ कार्रवाई। सीआईए टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 4 आधुनिक पिस्टल भी बरामद। सोनीपत में पिटबुल का आतंक। 6 महीने के बच्चे पर झपटा खूंखार कुत्ता। सीसीटीवी में कैद खौफनाक वारदात। अस्पताल में मासूम की हालत नाजुक। विकासनगर में सीवरेज के गड्ढे में गिरा बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने युवक को बाहर निकाला। मिर्जापुर में रेलवे अंडरपास में बीजेपी विधायक की कीचड़ में गाड़ी फंसी। ट्रैक्टर से खींचकर ग्रामीणों ने गाड़ी को बाहर निकाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चित्रकूट में एम्बुलेंस को धक्का लगाने का वीडियो वायरल हुआ। मरीज को एम्बुलेंस उतारकर बाइक से ले जाने का वीडियो। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 2 सोसाइटी में गार्ड से मारपीट। वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। नोएडा में फिनटेक कंपनी का सर्वर हैक हुआ। 2,42,00,000 रुपए का फ्रॉड। 497 ट्रांजेक्शन से 58 खातों में भेजी रकम। सतना में 4 सहेलियों ने छात्रा से की बेरहमी से मारपीट। वीडियो हुआ तेजी से वायरल। उधम सिंह नगर में महिला के आग लगने का लाइव वीडियो आया सामने। प्रेम प्रसंग मामले को लेकर परेशान थी महिला। मामले में पुलिस ने 2 गिरफ्तार कर भेजा जेल। गया में प्रेमिका को शादी के लिए मनाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नीचे उतरा। ग्रेटर नोएडा में रोड रेज का खौफनाक मामला। नशे में धुत कार सवारों ने बाइक चालक को टक्कर मारने के बाद की मारपीट। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में दर्दनाक हादसा। बारबेक्यू पर डिनर के दौरान अचानक से आग लगने से नवविवाहिता झुलसी। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन सड़क में धंसी कार। करीब 1 घंटे तक फंसी रही गाड़ी। क्रेन से निकाला गया। दमन में शराब पीकर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। करीब 3 घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़े रहने के बाद सुनिश्चित किया गया और उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। आउटर नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप और नाबालिग लड़की की हत्या के आरोप में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के चक्रधरपुर में युवक ने घर में घुसकर की युवती की हत्या। 4थी मंजिल पर धारदार हथियार से वार काट गला काट डाला और युवक हिरासत में लिया। मथुरा में दर्दनाक हादसा। बोरिंग करने के दौरान 11,000 की लाइन की चपेट में आने की वजह से 3 लोगों की मौत। भोपाल के 4 नामी फूड ठिकानों पर छापा। कहीं कॉकरोच तो कहीं पर सड़ा गला खाना मिला। 20 किलो सड़ा प्याज मौके पर कराया गया नष्ट। पटना के हॉस्टल में बीए की छात्रा का फंदे से लटका हुआ संदिग्ध अवस्था में शव मिला। पुलिस छानबीन में जुटी। आगरा में ताजमहल के पास एक रिजॉर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली और ईमेल आया सामने, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड के खोज के दौरान नहीं मिला कोई भी संदिग्ध वस्तु।
सोनीपत में नाबालिग 6 साल की बच्ची की हत्या के बाद हंगामा, अंतिम संस्कार से परिवार का इनकार। पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट परिवार ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग। तीसरे T20 में अफगानिस्तान को 127 रन से हराया गया। टीम इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर जीता सीरीज। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद में जड़ा सबसे तेज शतक। 34 गेंदों में 108 रनों की खेली तूफानी पारी। संजू सैमसन ने भी खेली धमाकेदार अर्धशतकीय पारी, बनाए शानदार 50 रन। अभिषेक संजू ने खेली 142 रन की ओपनिंग साझेदारी। भारत ने जीत के लिए 222 रनों का दिया था विशाल लक्ष्य। अफगानिस्तान की पूरी टीम 15वें ओवर में ही महज 94 रन पर सिमटी। नीतीश रेड्डी और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट झटके। अक्षर पटेल को मिली 2 सफलता, जसप्रीत बुमराह और यश ठाकुर को 1-1 विकेट। विमेंस एशियन गेम्स, आज भारत और जापान के बीच T20 का क्वार्टर फाइनल। जापान में निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में सुबह 10:30 से मैच होगा। तो वही पहली बार आमने सामने भारत और जापान, मेजबान जापान को हराकर भारत के पास आगे बढ़ने का मौका। कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना करेंगी ओपनिंग। टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 में प्रतिका रावल और श्रियंका पाटिल की एंट्री संभव। प्रतिका के नंबर 3 पर उतरने की संभावना। विमेंस एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में सीधे भारत की एंट्री। महिला क्रिकेट में टीम इंडिया के अभियान की शुरुआत यहीं से होगी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं।

समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, करियर में अभी रुकावट रहेगी, पारिवारिक समस्या का ध्यान दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पी।

मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

दे पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: There is a very famous quote ki history repeat itself.
8: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
9: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
8: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: विधानसभा का चुनाव घोषणा होने के पहले हमने कह रखा है कि 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी के अंदर उपलब्ध करवाएंगे।
1: जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वादों और घोषणाओं की रफ्तार भी जोर पकड़ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए दिन बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, कभी कैबिनेट में लिए गए फैसलों के जरिए तो कभी सार्वजनिक मंच से। यानी कि यूपी में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ सरकार की ओर से ऐलान पर ऐलान हो रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी भी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। संगठन स्तर पर रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और इस हफ्ते उनकी कई मंथन बैठक है। 17 और 18 सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में तावड़े सीधे जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने वाले हैं। चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर होगी। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ आरएसएस भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। यूपी चुनाव में भी संघ एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रहा है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सह सरकारीवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। बीजेपी की चुनावी कामयाबी में उसकी तैयारियों का बड़ा रोल रहा है और इस बार भी यूपी में वो तैयारियों को अभी से देख रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

भारत में सेमीकंडक्टर के मामले में आज की स्थिति ये है कि अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाना पड़ता है। बेंगलुरु नोएडा में कुछ टेक कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन जरूर करती हैं, लेकिन उत्पादन किसी दूसरे देश में होता है। भारत में मोबाइल फोन यूजर करोड़ों में है। मोबाइल की रीढ़ यानी सेमीकंडक्टर विदेश से आती है। सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने सोचना तो बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन असल में काम हुआ साल 2021 में। कहने को साल 2007 में भारत ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति बनाई, लेकिन मिशन मोड में काम शुरू हुआ 2021 में, जब भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की। भारत का विजन और मिशन स्पष्ट है कि सेमीकंडक्टर के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आज के समय में सेमीकंडक्टर की जरूरत लगभग हर तकनीक में है, फिर चाहे मोबाइल फोन हो, वाहन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। भारत को सेमीकंडक्टर की भारी जरूरत है, क्योंकि भारत का बाजार बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। रोजमर्रा के कामकाज में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है, इसलिए भारत को सेमीकंडक्टर की सबसे अधिक जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत को चिप से लेकर शिप तक हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की माने तो सेमीकंडक्टर में भारत के पास पहले से ही कुछ बढ़त है। दुनिया के लगभग 20% चिप डिजाइन इंजीनियर्स भारत में मौजूद हैं। ये इंजीनियर एम्बेडेड सिस्टम और सिस्टम इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हैं। युद्धों और वैश्विक तनावों के बीच उलझी दुनिया में क्रिटिकल रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है। जिन देशों के पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो उसको हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देश सप्लाई चेन को प्रभावित करते हैं, जिससे दुनिया भर में तकनीक महंगी हो जाती है। 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू हुआ था। सेमीकॉन 1 के लिए 76,000 करोड़ का बजट रखा गया। 2022 में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। 2023 के बाद बड़े पैमाने पर फैब पैकेजिंग और टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने लगी। मई 2026 तक देश में 12 फैब पैकेजिंग यूनिट और 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए। फरवरी 2026 में गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर का कमर्शियल उत्पादन शुरू हो चुका है। जुलाई 2026 में सेमीकॉन 2.0 के लिए सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। ORF की रिपोर्ट कहती है कि भारत की असली चुनौती ग्लोबल मार्केट में पहले से मौजूद प्लेयर्स के बीच जगह बनाने की है। सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा हब ताइवान है। दुनिया की दिग्गज कंपनियां अपनी चिप ताइवान में बनवाती हैं। अब सवाल सिर्फ चिप बनाने का नहीं, बल्कि अपनी बनाई चिप को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का है। भारत सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है, जिसमें कच्चा माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक, मैन पावर से ब्रेन पावर तक, सब कुछ भारत का होगा। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बंगाल उपचुनाव से पहले ममतार ऋतव्रत गुटके को झटका। चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक। ममता ने जताया कड़ा विरोध। 20 बागी सांसदों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंजाब में आज से बीजेपी का नशा मुक्त अभियान शुरू। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन शुरू करेंगे 13 दिन तक चलने वाली यात्रा। सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलकर सौंपेंगे पंजाब की रिपोर्ट। यूपी में मिशन 2027 के लिए बीजेपी का संगठन से सरकार तक फीडबैक का दौर। पार्टी प्रभारी विनोद तावड़े अवध पूर्वांचल में जमीनी नब्ज का टोलेंगे। आरएसएस ने थमाई चुनौतियों की लिस्ट। आईफोन 18 प्रो की भारत बिक्री शुरू। दिल्ली मुंबई से बेंगलुरु तक उम्र दीवाने। एप्पल स्टोर के बाहर रात से ही कतार। पहली बार फोल्डेबल आईफोन की एंट्री। और बिहार की सियासत संस्कृति भविष्य पर बहस का महामंच। पंचायत आज तक बिहार में सीएम सम्राट चौधरी के साथ बड़े मंत्री सांसद मनोज तिवारी एक्टर संजय मिश्रा भी होंगे मौजूद। सुबह 10 बजे से लगातार

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। फिर सुर्खियों में आया है पिटबुल का आतंक, सोनीपत में 6 महीने की मासूम पर किया अटैक, पूरी खबर अब से कुछ ही देर बाद। उत्तर प्रदेश मिशन 27 के लिए संघ ने बीजेपी को दिया है कौन सा मंत्र, बुलेटिन में इस पर भी चर्चा करेंगे। पहाड़ों की बात करेंगे जहां पर बर्फीला हो गया है मौसम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से दिखाएंगे बर्फबारी की रिपोर्ट। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं भारत में आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स के क्रेज के साथ, क्योंकि आज से भारत में दोनों फोन की सीरीज की बिक्री शुरू हो गई है। और नए आईफोन के लिए दिल्ली में देर रात थी, लोग लाइन में लग गए। दिल्ली के साकेत में सिलेक्ट सिटी वॉक में एप्पल स्टोर के बाहर रात भर ग्राहकों की लंबी कतार देखी गई। जिन लोगों ने आईफोन के लिए एडवांस बुकिंग कराई है वो लाइन में है, जिनकी बुकिंग नहीं है वो भी लाइन में लगे हैं। यही वजह है कि सभी स्टोर्स में इस वक्त लाइन लगी हुई है। लोग इस उम्मीद में हैं कि शायद नया वर्जन बिना बुकिंग के भी मिल जाए। सिर्फ दिल्ली नहीं, मुंबई बेंगलुरु से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग रात से ही लाइन में लग गए।
1: iPhone 18 Pro आज लॉन्च हो रहा है और देश भर में जो iPhone कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। लोग प्री बुकिंग करा के दिल्ली के अलग अलग स्टोर्स में जहां iPhone 18 Pro अवेलेबल है वहां पहुंच रहे हैं। हमारे साथ समीर हैं। समीर, कितना एक्साइटमेंट है और कब प्री बुकिंग करा ली थी आप?
2: प्री बुकिंग लास्ट वीक करा था, लास्ट सैटरडे मैंने कराया था, आई थिंक 9 को ही करवा दिया था। और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर।
1: मैं देख रहा हूँ दो फोन आप लेके आए हैं।
2: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊंगा।
1: कितने फोन लेने की तैयारी है?
2: दो फोन लेने।
1: तो एक खुद के लिए, दूसरा
2: डॉटर के लिए।
1: डॉटर कितनी बड़ी है अभी?
2: डॉटर 8 ईयर्स की।
1: 8 ईयर्स की बेटी के लिए आप एक अलग से फोन लेके जा रहे हैं, क्या वो भी आईफोन फैन है?
2: उसे पसंद है आईफोन बेसिकली, क्योंकि मेरा लेकर के घूमती है तो मैं सोच रहा हूँ एक उनको दे दूँ, गिफ्ट कर दूँ इसलिए।
1: ओके, और आप?
3: मैं भी आईफोन के लिए ही आया हूँ, देखते हैं।
1: अमित, तो कितना एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत जगह से पिक्चर्स आ रही हैं कि लोग लाइनों में खड़े हैं, आप आराम से आए अपना टाइम पे 8 बजे स्टोर खुला और फोन लेने के लिए पहुंचे।
3: हाँ, प्री बुकिंग ऑलरेडी कर रखी थी तो एज सच अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, देखते हैं। टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं और जो आईफोन यूजर है वो तो खैर हर साल एक नए अपग्रेड के लिए जाते ही है, तो बेसिकली एक तरह का मतलब अपने अंदर एक वो होता है कि हम चलो।
0: मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साइरस मेरे सहयोगी दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक से जुड़ गए हैं, वहीं आस्था मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ गए हैं। सबसे पहले साइरस, आपका रुख करते हुए, क्योंकि इतनी जबरदस्त कीमत है, आसमान छूते दाम है, इसमें तो एक फॉरेन हॉलिडे हो जाता है, उसके बावजूद इतनी लाइन इतनी भीड़ मिल रही है, क्या वाकई ये वर्थ इट है? और दूसरा सवाल मेरा ये कि जिन्होंने प्री बुकिंग कराई है क्या उन्हें सहूलियत है या वो भी उसी लाइन में लगे हैं जिन्होंने बुकिंग नहीं कराई है?
4: सबसे पहले तो नेहा, बात सही है कि कीमतें इस साल आईफोन प्रो जो मॉडल है उनके काफी ज्यादा बढ़ाकर एप्पल ने लॉन्च किया है। जो डिवाइसेज उनको 1,40,000 तक मिलती थी, इस साल 1,65,000 के आसपास है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा भी कम नहीं हुई है। अगर आईफोन 18 सीरीज लॉन्च हुआ होता जो कि अगले साल एक्सपेक्टेड लॉन्च होगा तो शायद भीड़ और ज्यादा होती, लेकिन सिर्फ प्रो मॉडल्स को लॉन्च किया गया है। एंड हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इनकी कीमतें कुछ आसमान छू रही है इस वक्त और इसलिए जो सेंटिमेंट है कस्टमर्स में वो थोड़ा कम पड़ गया है। उनको चाहते हैं कि अगर प्राइसेस थोड़े और कम होते तो शायद वो अपग्रेड करते, लेकिन अब वो अगले फोन का, अगले सीरीज का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे सेंटिमेंट काफी संदेह को मिला है। लेकिन जो 3 लाख का फोन है, जो फोल्डेबल फोन है, वो अक्टूबर में लॉन्च होगा तो उसके अराउंड भी क्या किस तरह की क्रेजीनेस होगी ये देखने को मिलेगा। लेकिन साकेत का एप्पल स्टोर एटलीस्ट एक चीज तो झलकाता है कि जो 17 का क्रेज था, 17 प्रो का क्रेज था, वो थोड़ा क्रेज कम हुआ है, इतनी ज्यादा भीड़ आई नहीं है। लेकिन जो भी लोग आए हैं सेम चीज बोल रहे हैं कि उनको अपग्रेड करना है क्योंकि एप्पल उनको पसंद है, उसका इकोसिस्टम उनको पसंद है, प्राइस उनके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे जो ये फुल कैश में ले रहे हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम में बहुत सारे लोग रहे हैं कि अपना पुराना 17 प्रो मैक्स वापस करें और 18 प्रो पे अपग्रेड करें। तो ऐसे लोगों से हमने बिल्कुल बात की जब स्टोर खुला था। इस वक्त अभी करीबन 9 बज रहे हैं, 8 बजे स्टोर खुला था, काफी भीड़ आई थी। लेकिन सेंटिमेंट मैं यही कहूंगा कि वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं जिनके पास अपग्रेड प्रोग्राम है, पहले से जो आईफोन यूज कर रहे हैं ज्यादातर कस्टमर्स वैसे हैं। लेकिन हाँ, प्राइस एक ऐसी चीज है जिसको लेकर लोगों में सेंटिमेंट थोड़ा यस मायूसी का जरूर रहा है, क्योंकि वो चाहते थे कि प्राइसिंग थोड़ी कम हो, और 18 भी इसी साल अगर लॉन्च हो जाता तो उनके लिए और ऑप्शंस मिल जाते, लेकिन इस साल कोई 18 का लॉन्च नहीं है, वो अगले साल होगा। जिस तरह एप्पल ने बात की है कि एक लाइनअप जो है 3 डिवाइसेस एक साल में वो फोकस करना चाहते हैं, और अगले डिवाइस के लिए वो अगले साल के लिए उस डिवाइस को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो साकेत मॉल में सेंटिमेंट यही है नेहा कि लोग अपग्रेड के लिए आए हैं, कीमतों को लेकर थोड़े कंसर्न जरूर है, लेकिन इंडिया की खूबसूरत बात यही है कि आपको ईएमआई ऑप्शंस मिल जाते हैं, जीरो इंटरेस्ट पे आपको फुल कैश, इतने सारे फाइनेंसेस ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आई डोंट थिंक लोग इतना ज्यादा कंसर्न भी होंगे, वो सेंटिमेंट वही लेके आ रहे हैं कि मुझे तो आईफोन लेना ही लेना है। और कलर्स को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि उनको बर्गंडी कलर बहुत पसंद आ रहा है।
0: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बर्गंडी कलर को लेकर क्रेज है, कई लोगों ने सेल्फीज भी पोस्ट कर दी है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। आस्था मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। आस्था, जो सेंटिमेंट यहाँ दिल्ली में साइरस बता रहे हैं, वही सेंटिमेंट मुंबई में भी दिखाई दे रहा है, तस्वीरों के जरिए भी दिखा सकती हैं आप?
5: बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, जो दिल्ली की रिपोर्ट है वही सेम सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। बर्गंडी कलर का अभी आपने बोला था, हम आपको दिखा सकते हैं, ये झलक है आईफोन्स की, जो चार नए कलर आए हैं यहाँ पे, बर्गंडी, ग्लेजियर, जो ब्लू कलर है, वाइट और ब्लैक, यहाँ पे सेंटिमेंट्स बिल्कुल वैसे हैं। सारे के सारे जो क्यू में कतारों में खड़े हुए थे वो लोग अंदर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सबको अब आईफोन अपने जो प्री बुकिंग थे वो मिल चुके हैं, लोग छः छः सात सात फोन साथ में लेकर जा चुके हैं। जो फीचर, मेन फीचर जो को अट्रैक्ट कर रहा है वो सबसे ज्यादा ये हम आपको दिखाएंगे, ये आईफोन प्रो मैक्स है, इसमें जो सबसे ज्यादा फीचर है वो कैमरे में है, जो वो दिखा रहे हैं सारे नए फीचर्स ऐड हुए हैं यहाँ पे, लेंस अपर्चर, फोकस, शटर स्पीड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। और वीडियो में एक नया फीचर आया है डुअल कैप्चर, जिसमें आप अपनी सेल्फी मोड के साथ सामने वाली पिक्चर क्वालिटी भी ले सकती है, तो ये एक सबसे बड़ा जो एक फीचर है जो इंटरेस्ट कर रहा है लोगों को वो ये है। साथ ही साथ यहाँ पे वेपर कूलिंग सिस्टम इनग्रेड कर चुके हैं, एम्बेडेड कर चुके हैं इस फोन के अंदर। पिछले साल थोड़ी कंप्लेन आ रही थी कि आईफोन 17 ओवर हीट हो रहा था, उसके लिए एक पूरा सोल्यूशन लेकर आई है आईफोन 18 की सीरीज, पूरा कूलिंग सिस्टम जो है वो इस बार इनग्रेव कर चुके हैं इसमें, तो आपका फोन जो है वो ओवरहीट नहीं होगा। लेकिन एक जो चीज एक ये है जो इग्नोर नहीं की जा सकती है वो है प्राइसिंग। बिल्कुल जैसे दिल्ली
0: कुछ लोगों
5: है,
0: से वहां बातचीत करने की कोशिश करिए आस्था, मैं पीछे भीड़ भी देख पा रही हूँ, अगर आप स्टोर का एक राउंड अप कर पाए, कुछ लोगों से बातचीत कर पाए।
5: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जेंटलमैन है जो अभी अभी फोन लिए है उन्होंने। प्लीज आप मुझे बताएं कि आपने कौन सा फोन लिया है, बस बताएं कि कौन सा।
6: 18 प्रो मैक्स।
5: 18 प्रो मैक्स लिया, कौन सा रंग का लिया है आप?
6: बरगंडी।
5: आप कहाँ से आए?
6: नवसारी, गुजरात।
5: तो अभी प्राइस थोड़ा हाई है, लेकिन कैसा क्रेज है आईफोन का आपको लेकर?
6: सही है,
5: अच्छा है, बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं।
6: सही है सही है, उनका ले
5: तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक्साइटमेंट तो है बस लोगों में, बट ये है कि लोग नए कलर, नए फीचर्स को देखकर आ रहे हैं स्टोर में और देख भी रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग छः छः फोन्स लेकर गए हैं, वो भी यही कई होंगे, बट अब देख रहे हैं भीड़ ज़्यादा है, कतारें भी ख़त्म हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट सारे प्री ऑर्डर्स निकाल चुके हैं यहाँ पे लोग देखने को जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट बड़ी है बट उतनी नहीं है जितनी हम आईफोन 17 के टाइम।
0: बीच जबरदस्त क्रेज आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स को देखने को मिल रहा है। अब अगली खबर का रुख करेंगे, ये हैरान और विचलित कर देने वाली खबर है। देश के कई शहरों में आतंक का नाम अब पिटबुल बन चुका है। पिटबुल एक डॉग की कैटेगरी है, एक ब्रीड है, एक बार फिर से ये चर्चा में है क्योंकि दिल्ली के सोनीपत में पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के मासूम पर हमला बोल दिया। लोग पिटबुल के चंगुल से मासूम को छुड़ाने की कोशिश करते रह गए, लेकिन पिटबुल बार बार मासूम पर अटैक करता रहा और इसकी वजह से ये बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।
7: तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपको हूबहू नहीं दिखा रहे। ये तस्वीरें देखिए, चीख पुकार मची है, लोग एक काले पिटबुल कुत्ते को डंडे से मार रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन पिटबुल बेकाबू है। स्क्रीन पर जो हिस्सा आपको ब्लर नजर आ रहा है, दरअसल उस हिस्से में 6 महीने का एक मासूम बच्चा है जिस पर पिटबुल लगातार झपट्टा मार रहा है। ये तस्वीर दिल्ली से सटे सोनीपत के सिक्का कॉलोनी की है। यहाँ 6 महीने के मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल का यह हमला तब हुआ जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी। तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। हमले में मासूम और उसकी बुआ घायल हो गए। गंभीर हालत में बच्चे का रोहतक PGI में इलाज चल रहा है।
8: बहुत जगह से काट रखा है, सारा मुंह फाड़ रखा है, पेट फाड़ रखा है मेरे पोते का, बहुत ज्यादा उसमें है।
9: बच्ची तो आपकी दिन का कुत्ता था, क्या कुत्ता?
8: इन्हें बोले इतने पैसे थे हमारे पास, 3 लाख रुपया हमने दे दिया, आगे हमारा विवेक नहीं है देने का, हम कहाँ था देवे पैसे इतने। मैंने अनु कहा मेरे दो दो बच्चे काट रखे है भैया, लिहाज तो तुमने करवाना ही होगा, पैसे तुमने लगाने पड़ेंगे, कहीं से भी लगाओ।
9: किस किस को काटा कुत्ते ने?
8: गुड़िया को भी काट रखा है, पहले गुड़िया काटी है, फिर मेरा पोता पकड़ा है इन्हें, दो दो नहीं छुटवाया है, मेरे घर वाले ने छुटवाऊ थे, छोड़ा नहीं पोता, मेरे घर वाले ने हाथ देकर मुंह का जो खोला है।
7: आए दिन पिटबुल के हमले की खबरें आती रहती हैं। सवाल कुत्ते के मालिक की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। फिलहाल मासूम का इलाज रोहतक PGI में चल रहा है। पवन राठी, सोनीपत, आज तक।
0: देश के अलग अलग शहरों से पिटबुल के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले महीने 11 अगस्त को पटियाला में एक दंपति पिटबुल के हमले में बुरी तरह से घायल हो गया था। 23 नवंबर को पिछले साल दिल्ली के प्रेम नगर में 6 साल का बच्चा पिटबुल के हमले में जख्मी हो गया था। पिछले साल नोएडा में डॉग शेल्टर का एक कर्मचारी पिटबुल के हमले में जख्मी हुआ था। सबसे खौफनाक घटना 4 साल पहले लखनऊ में हुई। पिटबुल के हमले में एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। हमलावर पिटबुल बुजुर्ग महिला के बेटे का था। वहीं आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ महाराष्ट्र के नासिक में अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन हुआ। आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने पंचायत के चीफ ऑफिसर के दफ्तर में धावा बोला और कुत्तों को अफसर की टेबल पर छोड़ दिया।
10: ये है महाराष्ट्र के नासिक में पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी का दफ्तर। अचानक मुख्य अधिकारी के दफ्तर में शिवसेना UBT की युवा सेना के कार्यकर्ता 3 गोलियां लेकर धावा बोलते हैं। मुख्य अधिकारी अपनी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहे होते हैं, तभी युवा सेना के कार्यकर्ता बोरियां उठाकर टेबल पर खोलते हैं तो उसमें से निकलते हैं कुत्ते। और ये देखिए कैसे कुत्ते टेबल पर दौड़ने लगते हैं। पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी हैरत में पड़ जाते हैं, आखिर ये है क्या, और कुत्ते टेबल पर कोने में जाकर फाइलों पर बैठ जाते हैं। फिर सब कुछ क्लियर होता है। जी हां, नासिक में आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ शिवसेना UBT की युवा सेना का ये बड़ा ही अनोखा विरोध प्रदर्शन था, जिसमें 2 आवारा कुत्ते बोरियों में कैद करके मुख्य अधिकारी की बेस पर छोड़ दिए जाते हैं। शिवसेना UBT की युवा सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि बार बार आवारा कुत्तों के आतंक की शिकायत करने पर भी प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा था, और जब कई बार शिकायत दर्ज कराने पर भी उनकी बातें नहीं सुनी गईं, तो मुख्य अधिकारी के दफ्तर में ही उनकी मेज पर आवारा कुत्ते छोड़ दिए गए। प्रवीण बी ठाकरे, नासिक, आज तक।
0: और इस बीच बड़ी खबर TMC से जुड़ी हुई, जिनके नाम और निशान को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। आज तक कुछ जानकारी मिली है कि TMC ने चुनाव आयोग के फैसले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कल चुनाव आयोग ने अगले आदेश तक TMC के नाम और सिंबल को फ्रीज करने का फैसला किया और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए दोनों पक्षों से नाम और निशान का 3-3 विकल्प देने के लिए कहा है। इनकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है।
7: छह अक्टूबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिससे पहले TMC के नाम और सिंबल को लेकर लड़ाई के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने अगले आदेश तक TMC के नाम और सिंबल को फ्रीज कर दिया है, यानी पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों के उपचुनाव में न तो ममता बनर्जी की अगुवाई वाला धड़ा TMC के नाम और सिंबल का इस्तेमाल कर सकेगा और न ही अरूप रॉय के नेतृत्व वाले बागी गुट के प्रत्याशियों को TMC का नाम या सिंबल मिलेगा।
11: तृणमूल कांग्रेस के नाम और निशान के मामले में आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी, जिसके आसार थे। निर्वाचन आयोग ने फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के दोनों धड़ों को ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और घास पर उगे तीन पत्ती वाले जोड़ा फूल के निशान, इसके प्रयोग पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यानी कानूनी भाषा में कहें तो इस नाम और सिंबल को निर्वाचन आयोग ने फ्रिज कर दिया है। अगले आदेश तक पार्टी का कोई भी धड़ा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। चूंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं दो सीटों पर, लिहाजा इस अंतरिम आदेश की प्रतीक्षा की जा रही थी।
7: इसके साथ ही चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से अपने अपने गुटों के लिए तीन तीन नाम और चुनाव आयोग की फ्री सिंबल लिस्ट से तीन तीन चुनाव चिन्ह का विकल्प देने को कहा है। साथ ही आयोग की ओर से कहा गया है कि अगर वो चाहें तो मूल पार्टी के नाम से जुड़ाव भी दिखा सकते हैं। बंगाल की दो सीटों पर उपचुनाव से पहले आयोग का ये फैसला बेहद अहम है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाला गुट इस पर सवाल उठा रहा है तो बागी गुट आयोग के फैसले का स्वागत कर रहा है।
12: जो मीटिंग हुआ एनटीआईटीसी का, उधर रितुपुत्र बनर्जी प्रेजेंट था। 19 मई जो मीटिंग हुआ है उधर रितुपुत्र बनर्जी प्रेजेंट था। 3 जून जो स्पीकर का पास चिट्ठी लिखा था उसमें बोला था एआईटीसी का ब्लॉक है हम लोग, तो एआईटीसी ब्लॉक मीन्स एआईटीसी इज एग्जिस्टिंग। Whole episode has been started with a Malafi derision because he was not chosen as a opposition leader by the party itself. That is the ground, that is the reason he has done it.
13: कि जमुरियत के अंदर कोई तानाशाही का कोई जगह नहीं है। Political party, political पब्लिक, ये जो narrative चल रहा था ना, ये symbol को लेकर, नाम को लेकर, election commission का जो आज का interim order है इससे साबित है, जाहिर है कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
0: इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, उपचुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में पार्टी सिंबल फ्रीज हो जाना कितना मायने रखता है, इससे चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा?
14: देखिए, ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि ये जो सिंबल है और पार्टी का नाम है ये उन्होंने डिजाइन किया था 1998 में जब तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ था, और उसके बाद उनका जो राजनीतिक करियर रहा है, 3 बार वो मुख्यमंत्री बनी, तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आया पश्चिम बंगाल में, वो सब तृणमूल कांग्रेस और उस सिंबल से जुड़ा फूल जिसे कहा जाता है उसके साथ जुड़ा हुआ था उनका अस्तित्व। तो कहीं ना कहीं उस पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। आज जब इलेक्शन कमीशन ने, हालांकि ये टेम्पररी ऑर्डर है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी के सिंबल को फ्रीज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो रेबल फैक्शन है, जो बागी गुट है, उनका जो क्लेम है उसको भी इलेक्शन कमीशन वो रिस्पॉन्ड कर रही है, और ये कहीं ना कहीं एक तृणमूल कांग्रेस के लिए और ममता बनर्जी के लिए झटका है, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि बागी गुट का जो बयान है, जो रवैया है, जो रुख है, वो बिल्कुल नाजायज है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को वो नहीं लगता। और ये इसलिए इलेक्शन कमीशन ये मानती है क्योंकि 2 गुट बन गई है और दोनों ही गुट इस सिंबल को लेकर लड़ाई झगड़े में फंसी हुई है, और कुछ ही दिनों में बाई इलेक्शन होने वाला है नंदीग्राम और रिजी नगर में, तो जब तक ये विवाद सुलझा नहीं पाती इलेक्शन कमीशन, तब तक कोई भी गुट ये चुनाव चिन्ह और सिंबल और पार्टी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो रितुप्रतो कैंप के लिए कितना बड़ा ये सक्सेस है वो तो आगे के दिनों में देखना लाजमी रहेगा, लेकिन ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि ये सिंबल उनका था, उन्होंने डिजाइन किया था, उन्हीं का पहचान बन चुका था, और वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे बाय इलेक्शन में।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, 2027 में यूपी में क्या होने वाला है, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय बैठक शुरू हो चुकी है। खबर यह है कि आरएसएस ने बीजेपी को वो 5 चुनौतियां बताई हैं जो चुनाव में सबसे बड़ी साबित होंगी।
15: इतनी लूट, इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा।
16: आज यूपी कर्फ्यू मुक्त है, दंगा मुक्त है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है,
15: पूरा उत्तर प्रदेश भरा पड़ा है हत्याओं से और कहीं न्याय नहीं मिल रहा है।
17: अब तो यूपी में चुनावों की घोषणा का इंतजार हो रहा है और उससे पहले ही दोनों बड़ी पार्टियों के खेमों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। यूपी में लगातार बीजेपी और आरएसएस के पदाधिकारियों की मुलाकात हो रही है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी हार गई तो ये कहा गया कि आरएसएस की तरफ से हाथ खींच लिया गया था, लेकिन इस बार आरएसएस और बीजेपी कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं रखना चाहती, इसीलिए चुनावों से पहले ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लखनऊ में अवध और कानपुर प्रांत के पदाधिकारियों के साथ बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक हुई। बैठक में चुनावों से पहले की चुनौतियों, संगठन की तैयारियों और जमीनी स्थिति पर मंथन किया गया। संघ के सरसह कार्यवाह अरुण कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पीएल संतोष ने पदाधिकारियों से जमीनी फीडबैक लिया। बैठक में बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी थे। लेकिन खबर ये नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी की बैठक हुई, बल्कि खबर ये है कि इस बैठक में बीजेपी के नेताओं को आरएसएस की तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो बीजेपी के लिए 2027 के चुनावों में सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। आरएसएस की तरफ से बीजेपी के लिए यूपी में 5 चैलेंज बताए गए हैं। पहला है यूजीसी गाइडलाइंस से सामान्य वर्ग का आक्रोश, दूसरा है पेपर लीक पर सरकार के खिलाफ बना माहौल, तीसरा है रोजगार और शिक्षा, चौथा है निचले स्तर का भ्रष्टाचार और पांचवा है कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होना। यानी बीजेपी ने अगर इन मुद्दों पर काम कर लिया तो आरएसएस को लगता है कि वो 2027 में फिर से जीत जाएगी। ये वो मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द लगातार अखिलेश यादव हमलावर हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, पेपर लीक हो, अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला हो, अखिलेश यादव ने इन्हें लगातार मुद्दा बनाया हुआ है।
15: इतनी लूट, इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। लूट और भ्रष्टाचार, बेईमानी, और यही नहीं, हम और आप लोग तो देख रहे हैं कि बिल्डिंगें खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं। जो सरकार ये कहती है कि उसे पैसा जमा करने के लिए सरकारी एसेट्स बेचनी पड़ेंगी, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए एसेट्स बेच रहे हैं, वहीं एसेट्स का इंतजाम कर रहे हैं।
0: वहीं यूपी में योगी सरकार को लेकर सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कानून व्यवस्था का बताया जा रहा है, और योगी भी अपने हर संबोधन में इसका अक्सर जिक्र भी करते हैं। कानून व्यवस्था एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अखिलेश यादव अभी तक सरकार के खिलाफ वैसा माहौल ही नहीं बना पाए हैं, लेकिन वो कोशिश जरूर कर रहे हैं।
15: राजधानी में हो रही हत्या और जिस हत्या के बारे में आप कह रहे हो, वो थाने से कितनी दूर हुई हत्या, और लखनऊ राजधानी में थाने के सामने हत्या हो गई। और देखिए क्या षड्यंत्र तो साजिश करते हैं कि थाने ने खुद ही तय कर लिया, इनाम अपना इनाम ले लिया। और गोरखपुर में तो इतनी हत्याएं हुई जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। गोरखपुर में हर दिन हत्या हो रही है कोई ना कोई, पूरा उत्तर प्रदेश भरा पड़ा है हत्याओं से, और कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए, कानून व्यवस्था के लिए एनसीआरबी के आंकड़े हैं, क्या महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं? यहां पर जो आंकड़े बता रहे हैं, हत्याएं, लूट, और बिल्कुल करीब में बताओ साइबर क्राइम में उत्तर प्रदेश कहां पहुंच गया है? नंबर वन है उत्तर प्रदेश, महिलाओं के ऊपर अन्याय होने पर नंबर वन है, और पत्रकारों के शोषण में और अन्याय होने में भी नंबर वन है।
16: आज यूपी कर्फ्यू मुक्त है, दंगा मुक्त है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अपराधी या तो जेल में है या दूसरे लोक की यात्रा में जा चुका है, अब वह खुलेआम किसी को धमकी नहीं दे सकता, किसी का अपहरण नहीं कर सकता, किसी बेटी को जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से फिरौती नहीं वसूल सकता। हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा की गारंटी है, हर पर्व और त्योहार को बेहतरीन वातावरण में करने की गारंटी है।
17: अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की सरकार को हर उस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं जिनका जिक्र आरएसएस ने किया है। अखिलेश यादव भ्रष्टाचार, पेपर लीक, खराब कानून व्यवस्था, अयोध्या के चढ़ावा चोरी, महंगाई, बेरोजगारी, हर मुद्दे पर मुखर हैं, और आरएसएस भी बीजेपी को यही बता रही है कि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को विपक्ष के इस नैरेटिव को ध्वस्त करने को कहना है।
18: इस बैठक में आरएसएस के अवध प्रांत के कौशल किशोर, साथ ही साथ कानपुर क्षेत्र के श्रीराम और पूर्वी क्षेत्र के अनिल मिश्रा मौजूद रहे। इसके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित प्रभारी विनोद तांबड़े भी इस बैठक में रहे। की बड़ी बैठक आरएसएस और बीजेपी की है, जिसमें साफ तौर से संदेश था कि बीजेपी द्वारा जो विपक्ष का नैरेटिव है उसको ध्यान नहीं देना है, सीधे ध्यान देना है उन योजनाओं पर और साथ ही साथ जो मिसकंफ्यूजन पैदा किया गया उसको दूर करना, और जिसके लिए ये बैठक काफी अहम हो गई थी। अब सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को साफ तौर से क्षेत्रीय बैठक में निर्देश दे के उनको 2027 खिलाफ फतेह करने को कह दिया गया है।
17: आरएसएस की तरफ से बीजेपी को कहा गया है कि वो विपक्ष के नैरेटिव में न फंसे, अपने मुद्दों और सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने पर जोर लगाएं, विपक्ष के मुद्दों का सटीक और तथ्यात्मक तरीके से जवाब देने पर जोर लगाएं। ये भी डर है कि विपक्ष जातिवाद का मुद्दा बनाएगा तो कहा गया है कि इससे भी बचना है।
0: और बात क्रिकेट की, दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में क्रिकेट का एक ऐसा बवंडर आया जिसके आगे अफगानिस्तान के गेंदबाजों के होश उड़ गए। टीम इंडिया के युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने महज 30 गेंद में शतक ठोककर तहलका मचा दिया। अभिषेक की पारी से भारत ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिए।
19: स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का, कवर के ऊपर से छक्का, गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा छक्कों की बारिश कर रहे थे और अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अभिषेक शर्मा ने 2-4 नहीं कुल 11 छक्के जड़े अपनी तूफानी पारी में। अभिषेक ने 34 गेंदों पर 108 रन की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 11 छक्के और 9 चौके जमाए। उनका शतक सिर्फ 30 गेंदों पर आया। किसी भी टेस्ट खेलने वाले देशों के बल्लेबाज का सबसे तेज T20 शतक का ये रिकॉर्ड है।
20: वो तो देखो अच्छा खेलता है हमेशा, बहुत बहुत बड़ा मजा आया, बहुत तीनों मैचों में बहुत मारा, बहुत इंजॉय हुआ। मस्त, जिस तरह से 3 मैचों की सीरीज पर रखी गई है, हमारा तो पूरा पैसा वसूल है। तीनों मैच देखे मैंने और फुल एंजॉयमेंट।
19: अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी की बदौलत टीम इंडिया ने पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर तक बगैर कोई विकेट के 100 रन बना लिए। T20 इंटरनेशनल में पावर प्ले के अंदर भारत का ये सबसे बड़ा स्कोर है। अभिषेक शर्मा 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर 142 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तो मानो तूफान के बाद की शांति छा गई। अभिषेक के जाने के बाद 10 ओवर 1 गेंद पर भारतीय टीम सिर्फ 79 रन बना सकी और इस दौरान 6 विकेट भी खोए। स्कोरबोर्ड पर 7 विकेट पर 221 रन टांगने के बाद टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 14 ओवर 1 गेंद में 94 रन के स्कोर पर समेट दिया। भारत से नीतीश रेड्डी और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट लिए। भारत ने 127 रन से मैच जीतने के साथ 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिया। आज तक ब्यूरो।
0: बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतुव्रत गुट को झटका। चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक। ममता ने जताया कड़ा विरोध। 20 बागी सांसदों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंजाब में आज से बीजेपी का नशा मुक्त अभियान शुरू। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन शुरुआत करेंगे 13 दिन तक चलने वाली यात्रा का। सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलकर सौंपेंगे पंजाब की रिपोर्ट।

0: यूपी में मिशन 2027 के लिए बीजेपी का संगठन से सरकार तक फीडबैक का दौर। पार्टी प्रभारी विनोद तावड़े अवध पूर्वांचल में जमीनी नब्ज टटोलेंगे। आरएसएस ने थमाई चुनौतियों की लिस्ट। आईफोन 18 प्रो की भारत में बिक्री शुरू। दिल्ली मुंबई से बेंगलुरु तक उमड़े दीवाने। एप्पल स्टोर के बाहर रात से ही कतारें। पहली बार फोल्डेबल आईफोन की एंट्री। और बिहार की सियासत, संस्कृति, भविष्य पर बहस का महामंच पंचायत आज तक। बिहार में सीएम सम्राट चौधरी के साथ बड़े मंत्री, सांसद मनोज तिवारी, एक्टर संजय मिश्रा भी होंगे मौजूद। सुबह 10 बजे से लगातार। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतसर से ये खबर आ रही है जहां पर एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिस पर अब सीएम ने शोक व्यक्त किया है। एएसआई की गोली मारकर हत्या की गई है, ये घटना अमृतसर की, और इस घटना पर सीएम भगवंत मान ने अफसोस जाहिर किया है। असीम बस्सी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। असीम, क्या डिटेल्स हैं?
1: देखिए मैं बताऊँ, ऐसे हरजीत सिंह है और कल रात को लगभग 10:30 और 11 के बीच का वाकया है और ये गेट हकीमा पुलिस स्टेशन है अमृतसर में, वहाँ पोस्टेड हैं और कल ये यूनिफॉर्म में थे। जब कह रहे हैं कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, उसी वक्त अन आइडेंटिफाइड सस्पेक्ट्स ने जो है उनको ऊपर फायरिंग की और उनको गोली लगी और उनकी मौत हो गई। और ये एक बड़ी घटना है क्योंकि पंजाब पुलिस लगातार जो है इस तरह के एलिमेंट्स के रडार पर रही है। पंजाब में कई जगह पे पुलिस स्टेशन के ऊपर भी अटैक हुआ है, पीछे मजीठा में भी एक एएसआई को मार दिया गया था। सो एक बड़ी घटना है और हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने बोला कि ये मार्टियर हैं, वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी उनके ऊपर अटैक हुआ है और ही हैज सैक्रिफाइस हिज लाइफ। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये बड़ी घटना है कि एएसआई हरजीत सिंह, जो कि अमृतसर के गेट हकीमा पुलिस स्टेशन में जो पोस्टेड थे, जब वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो तब उनके ऊपर फायरिंग हुई और वहां पे उनकी मौत हो गई। जी हाँ,
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। बांदीपुरा जिले के गुरेज में तुलाइल घाटी के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, दिखा प्रकृति का सुंदर नजारा। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी, बालालाचा दर्रे से घेपन पीक तक बिछी सफेद बर्फ की चादर। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी, बेहद मनमोहक दिखा नजारा। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, बारिश और गिरते तापमान ने लाहौल स्पीति के मौसम का रंग पूरी तरह से बदल दिया है। लाहौल स्पीति में ड्रिलबुरी कोरा यात्रा के दौरान हादसा, 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत, 1 घायल, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया से गई जान। चमोली के रुद्रनाथ में हल्की बर्फबारी के साथ गिरे ओले, हर तरफ बिछी सफेद चादर। कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढक गया है। हनुमान टिब्बा, व्यासकुंड और खीरगंगा में बिछी सफेद चादर। रजौरी में भी बदला मौसम का हाल, जमकर हुई बारिश, तापमान में भारी गिरावट। श्रीनगर लेह हाईवे में जोजिला के 0 पॉइंट पर सीजन की पहली बर्फबारी, तापमान में आई भारी गिरावट। गैंगटॉक में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, सड़क संपर्क बाधित और 1 मकान क्षतिग्रस्त। बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतुव्रत गुट को झटका, चुनाव आयोग ने टीएमसी के सिंबल और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक। आयोग के निर्देशों के मुताबिक दोनों गुटों में आज सुबह 11 बजे तक अपनी अपनी पसंद के 3 नाम और फ्री सिंबल सूची में 3 चुनाव चिन्ह के विकल्प सौंपने होंगे। टीएमसी के चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद के बीच ऋतुव्रत बैनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले को लेकर प्रतिक्रिया दी, कहा यह आदेश अस्थायी है। ऋतुव्रत बैनर्जी ने कहा राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम नहीं कर सकता और लोकतंत्र में फांसीवाद के लिए कोई जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर 6 अक्टूबर को होना है उपचुनाव। दोनों ही गुटों को नए नाम और नए चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा। 2027 में चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ी राजनीतिक मुहिम शुरू की है। बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्राएं नशे की समस्या को उजागर करेंगी। नितिन नवीन आज दिखाएंगे हरी झंडी। पंजाब में नशे की समस्या के लिए बीजेपी ने पंजाब सरकार को दोषी ठहराया। बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष ने कहा कि यह पंजाब का दर्द है और आप सरकार ड्रग्स के मुद्दे पर फेल है। बीजेपी के आरोप पर आपका पलटवार, कहा यह पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। पंजाब ड्रग्स मामले पर आपका बीजेपी पर पलटवार, का 2007 से 2017 के बीच ड्रग्स से प्रभावित परिवारों को सामने लाई बीजेपी, तब पंजाब में थी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार। युवा कांग्रेस का मेरी डिग्री क्या, राष्ट्रीय अभियान शुरू, केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे युवा कांग्रेस के नेता। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि देश भर में सभी रिक्त सरकारी पदों को भरा जाए। पीएम आवास को घेरने की चेतावनी दी गई है। निर्मला सीतारमण

वह राज्यों के वित्त मंत्रियों से करेंगी मुलाकात। फाइनेंसिंग जुड़ी चुनौतियों और पॉलिसी की प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी। यूपीआई चार्ज को लेकर विवाद जारी है। हालांकि सरकार के एक अधिकारी का दावा है कि पैनल में शामिल कांग्रेस सांसदों ने इस फैसले को मंजूरी दी थी। टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन। बहुत सदस्यों के पक्ष में किया वोट, तीसरी बार 5 साल के बढ़ाव कार्यकाल। मैं सारण महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर बाल बाल बचाव वडनगर के पास गुंजा में उड़ान से पहले आई तकनीकी खराब। कांग्रेस से चुनाव चिन्ह को फ्रीज किए जाने पर चुनाव आयोग पर साधा निशाना। बालाघाट में 30 बच्चों की मौत पर राहुल गांधी ने फिर एमपी सरकार पर साधा निशाना कहा। मध्य प्रदेश सरकार आज भारत की सबसे भ्रष्ट और कुशासित सरकार बन चुकी है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला कहा। बीजेपी का जो भी निर्माण का काम होता है वो पूरा बाद में होता है, गिरने पहले लगता है। दिल्ली एसआईएल में अनियमितताओं के आरोप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 22 सितंबर को होगी सुनवाई। अमेरिकी 100% टैरिफ बिल पर भारत का दो टूक जवाब का, ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जेपीसी की पहली बैठक आज दोपहर 2:30 बजे। एमएचए सदस्य पैनल को बिल में प्रस्तावित बदलावों के बारे में जानकारी देगा। डीयू में आज छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग, डे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए वोटिंग का समय 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इवनिंग शिफ्ट के छात्रों के लिए वोटिंग दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगी, नतीजे कल आएंगे। डीयू छात्र संघ चुनाव को लेकर व्यापक तैयारियां, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपीआई पेमेंट चार्जेस पर केंद्र सरकार के फैसले पर टिप्पणी की है, कहा इससे जेब आम आदमी की कटेगी। एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की फाइनल आंसर शीट जारी की है। उम्मीदवार अपनी फाइनल आंसर की एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर डीजीएफ ने कुपवाड़ा में 2 आतंकियों अब्दुल मजीद कुरैशी और परवेज अहमद कुरैशी की संपत्तियां कुर्क करने का निर्देश दिया है। आज भारत को मिलेगी आसमान की त्रिशक्ति, एचएएल सौंपेगा तेजस ट्रेनर HET-40 और ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर। पवन हंस लिमिटेड के बेड़े में शामिल होगा ध्रुव एनर्जी सिविल हेलीकॉप्टर। बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री रहेंगे मौजूद। सूरत के महीधरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर सजा भव्य गणेश पंडाल। 25 से 30 किलो सोना से किया गया बप्पा का श्रृंगार, करीब 2 लाख अमेरिकन डायमंड से जड़ित है। महीधरपुरा का गणपति पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। पंडाल की नक्काशी देती है मैसूर पैलेस की असली झलक। बप्पा की मुकुट, बाजूबंद और हार की कारीगरी बेहद खास। भिलाई में भव्य गणपति पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है पंडाल, अनोखी थीम लोगों को कर रही आकर्षित। गणपति की भक्ति में रंगा तिरुवनंतपुरम झावंगडी महागणपति मंदिर में गणेशोत्सव समारोह। मुंबई में इजराइल के कौंसल जनरल यानिव रेवाश ने लाल बागचा राजा के किए दर्शन, बप्पा का आशीर्वाद लिया। तिरुपति में रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन पर हाई वोल्टेज ड्रामा, ट्रेन के ऊपर चढ़कर सनकी युवक ने लगाई दौड़, बाल बाल चला बड़ा हादसा। हरियाणा के मशहूर सिंगर दलेर खड़किया की गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, बाल बाल बची सिंगर की जान। फायरिंग करने की जिम्मेदारी पोस्ट डालकर अनिल पंडित ने ली, साथ ही दोबारा जान से मारने की धमकी दी। अमृतसर में पुलिस चौकी के पास युवक की गोली मारकर हत्या, एक्टिवा सवार 2 हमलावर वारदात के बाद फरार। कानपुर में सड़क पर नशे में धुत पड़े व्यक्ति से अमानवीय व्यवहार, वीडियो वायरल। राजस्थान के अलवर में इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, मची अफरा तफरी। गोपालगंज में शराब तस्करों के अनोखा कारनामा, एक गाड़ी के बॉडी इंजन और टायर में बना दिया तहखाना। नवसारी में कांग्रेस ने विधायक अनंत पटेल की अगुवाई में महंगाई के खिलाफ अनोखा विरोध किया, 40 रुपए किलो के दाम से बेची चीनी। चित्रकूट में मात्र 30 रुपए के विवाद में खूनी खेल, युवक की पीठ में मारा चाकू, बीच बचाव करने आया था युवक। तरनतारन में नशा तस्करी और हथियारों के खिलाफ कार्रवाई, सीआईटी में 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 4 आधुनिक पिस्टल्स बरामद। सोनीपत में पिटबुल का आतंक, 6 महीने के बच्चे पर झपटा खूंखार कुत्ता, सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक वारदात। विकासनगर में सीवरेज में गड्ढे में गिरा बाइक सवार, स्थानीय लोगों ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। मिर्जापुर में रेलवे अंडरपास से बीजेपी विधायक की कीचड़ में गाड़ी फंसी, ट्रैक्टर से खींचकर ग्रामीणों ने गाड़ी को बाहर निकाला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चित्रकूट में एम्बुलेंस को धक्का लगाने का वीडियो वायरल, मरीज को एम्बुलेंस से उतारकर बाइक से ले जाने का वीडियो है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 2 सोसाइटी में गार्ड से मारपीट, वीडियो वायरल। नोएडा में फिनटेक कंपनी का सर्वर हैक, 2,42,00,000 रुपए का फ्रॉड, 497 ट्रांजेक्शन में 58 खातों में भेजी गई रकम। सतना में 4 सहेलियों ने छात्रा से की बेरहमी से मारपीट, वीडियो वायरल।
उधम सिंह नगर में महिला के आग लगाने का लाइव वीडियो आया सामने। प्रेम प्रसंग मामले को लेकर परेशान थी महिला। गया में प्रेमिका को शादी के लिए मनाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया प्रेमी, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। ग्रेटर नोएडा में रोड रेज का खौफनाक मामला। नशे में धुत कार सवारों ने बाइक चालक को टक्कर मारने के बाद मार पीट की। पश्चिम बंगाल के कैलमपोंग में दर्दनाक हादसा। बारबेक्यू पर डिनर के दौरान अचानक आग लगने से नवविवाहिता झुलस गई। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन सड़क में धंसी कार, करीब एक घंटे तक फंसी रही गाड़ी। दमन में शराब पीकर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। तीन घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद सुरक्षित नीचे उतारा गया। आउटर नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप और नाबालिग लड़की की हत्या के आरोप में चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, तीन नाबालिग। झारखंड के चक्रधरपुर में युवक ने घर में घुसकर युवती की हत्या की, चौथी मंजिल पर धारदार हथियार से वार काटकर गला काट डाला। मथुरा में दर्दनाक हादसा। बोरिंग करने के दौरान 11,000 की लाइन की चपेट में आने से तीन लोगों की हुई मौत। भोपाल में चार नामी फूड ठिकानों पर छापेमारी, कहीं कॉकरोच तो कहीं सड़ा गला खाना मिला। 20 किलो सड़ा प्याज मौके पर कराया गया नष्ट। पटना के हॉस्टल में बीए की छात्रा का फंदे से लटका संदिग्ध अवस्था में शव मिला, छानबीन कर रही है पुलिस। आगरा के ताजमहल के पास एक रिजॉर्ट में बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने खोज के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई। सोनीपत में नाबालिग 6 साल की बच्ची की हत्या के बाद हंगामा, अंतिम संस्कार से परिवार का इनकार। भारत में आज से एप्पल आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की पहली सेल शुरू। देर रात से ही स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें। दिल्ली से लेकर मुंबई और बेंगलुरु से सुबह स्टोर्स खुलने की तस्वीरें आई सामने। ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी। आईफोन स्टोर्स के कर्मचारियों ने तालियां बजाकर ग्राहकों का स्वागत किया। दिल्ली नहीं, एनसीआर के दूसरे इलाकों में आईफोन का गजब का क्रेज। नोएडा में नए आईफोन की बिक्री पर एप्पल स्टोर में जश्न। मुंबई में जियो वर्ल्ड ड्राइव एप्पल स्टोर पर सुबह से ग्राहकों की भीड़। बेंगलुरु के मॉल ऑफ एशिया में देखने को मिली नए आईफोन की दीवानगी। भीड़ को संभालने के लिए एप्पल स्टोर ने किए खास इंतजाम। तीसरे T20 में अफगानिस्तान को 127 रन से भारत ने हराया। टीम इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर सीरीज अपने नाम की। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में जड़ा शतक। 34 गेंद में 108 रन की तूफानी पारी खेली। संजू सैमसन ने खेली धमाकेदार अर्धशतक की पारी, बनाए शानदार 50 रन। भारत ने जीत के लिए 222 रन का दिया था विशाल स्कोर। अफगानिस्तान की पूरी टीम 15वें ओवर में 94 रन पर ढेर। नीतीश रेड्डी और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट झटके। अक्षर पटेल को मिली 2 सफलता। विमेंस एशियन गेम्स, आज भारत और जापान के बीच T20 का क्वार्टर फाइनल। जापान में निसन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा मैच।

0: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक 18 सितंबर सिर्फ आज तक पर।
1: यार लोन भूल गया मैरी। इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
1: इट। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
4: पापा,
5: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
12: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
13: लायन डेट नट बाइट्स।
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
16: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट।
16: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
17: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
18: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
19: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे
20: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
21: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
22: अब मैं क्या ही बोलूं?
23: परिवार अटूट भरोसा।
24: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
25: सोच बदलो और बैंक भी।
26: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
27: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
26: असली शहद, असली स्वाद।
28: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
29: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
28: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
30: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पंचायत आज तक 18 सितंबर सिर्फ आज तक पर।
3: There is a very famous quote ki history repeat itself.
4: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that history is repeating.
5: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
4: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

तीन दिनों से तबाही मची है, सरकार सफाई देकर परेशान है, पीआईबी ने बताया, वित्त मंत्रालय ने बताया, एनपीसीआई ने कई बार बताया, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले फैक्स दे रहे हैं, दर्जनों डिबेट्स हो गई, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। पहले विरोध किया, फिर विदेशी दबाव बनाया, फिर नियम वापसी की मांग की और अब मनमाने फैसले का आरोप पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार ने अमेरिकी दबाव में फैसला लिया, और गौरव गोगोई कहते हैं कि जब संसदीय समिति की बैठक हुई तो वित्त मंत्रालय के पास यूपीआई पर टैक्स के कोई ठोस प्रस्ताव नहीं थे। मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर की जरूरत पर सवाल पूछा गया लेकिन जवाब नहीं थे। ये गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं और अपने दल के बाकी 5 और सांसदों के साथ वित्त विभाग के संसदीय मामलों की समिति के सदस्य हैं। इस समिति की 32वीं रिपोर्ट के पेज नंबर 23 पर साफ लिखा है कि बिना एमडीआर के यूपीआई चलना मुश्किल है। पेज नंबर 78 पर लिखा है कि यूपीआई के लिए अपना रेवेन्यू मॉडल तैयार करना होगा, और 12 मार्च को ये रिपोर्ट उस समिति ने दी थी जिसमें कांग्रेस की ओर से पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी, किशोरी लाल और के गोपीनाथ, ये सभी सांसद उस कमेटी के सदस्य हैं जिनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने आदेश निकाला है। और रिपोर्ट में खुद स्टैंडिंग कमेटी ने माना था कि सरकारी इंसेंटिव डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की लागत का सिर्फ 11% ही कवर करते हैं। ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड का पता लगाना, सेटलमेंट, केवाईसी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार फंडिंग की जरूरत होती है। तो ये आरोप सच नहीं कि कांग्रेस की जानकारी मंजूरी के बिना 0.4% एमडीआर लागू हुआ। इसके बाद जब लोकसभा में 6 अगस्त 2026 को टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल पर चर्चा हो रही थी तो विपक्षी सांसद शोर मचा रहे थे, ध्वनि मत से बिल पारित हुआ था। इसी तरह 10 अगस्त को भी बिल पर चर्चा के समय विपक्षी आसन के सामने शोर मचा रहे थे और बिल पारित हो गया था। और तभी जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि ये संशोधन बिल यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की 2026 की रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें यूपीआई और रुपए के मुफ्त होने की आलोचना की गई है और उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अमेरिकी पेमेंट प्लेटफॉर्म को बाहर कर दिया है। जयराम रमेश ने सवाल उठाए थे कि क्या ट्रंप के दबाव में यूपीआई को कमजोर करना चाहते हैं और डिजिटल पेमेंट सेक्टर को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना चाहते हैं। अमेरिका की यूएसटीआर की पेज नंबर 272 पर कहा गया था कि एनपीसीआई के रुख से अमेरिकी कंपनियों को बराबरी का मौका नहीं मिल रहा। अमेरिका ने थर्ड पार्टी एप्स को यूपीआई सिस्टम में 30% के कैप का विरोध किया था। हालांकि 30% का कैप अभी तक लागू नहीं किया गया। हाल ये है कि अमेरिका की वॉलमार्ट वाला फोन पे और गूगल वाला गूगल पे भारत की 80% से अधिक यूपीआई पेमेंट मार्केट पर कब्जा कर चुकी है। हालांकि इसमें से कुछ चार्ज वो बैंक भी वसूलेंगे जिनके खाते से पेमेंट हो रहे हैं, और भी अनुमान के मुताबिक 7-8 हजार करोड़ रुपए का सालाना फायदा गूगल पे फोन पे को हो सकता है, और ऐसा ही फायदा पेटीएम जैसी भारतीय पेमेंट ऐप्स को भी हो सकता है। सरकार ये भी दलील देती है कि इन देसी ऐप्स को चलाने के लिए सरकारी सब्सिडी का रेवेन्यू मॉडल नहीं चल सकता, क्योंकि पिछले साल फोन पे का सालाना खर्च 9,394 करोड़ रुपए था जिसमें सर्वर और डेटा सेंटर्स पर 2,800 करोड़ रुपए, बैंकों और गेटवे को 1,688 करोड़ रुपए, बाकी सॉफ्टवेयर, क्लाउड, क्लाइंट सपोर्ट सब मिलाकर 500 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, और ये तब था जब एक तिहाई मार्केट पर फोन पे का कब्जा है। अमेरिका के सामने चुनौती बनी हुई है कि अगर भारत में थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स पर 30% का कैप लग गया तो भारतीय बाजार पर उनका एकाधिकार सीमित हो सकता है और तब वॉलमार्ट और गूगल जैसी कंपनियों का मुनाफा भी एक तिहाई तक सिमट सकता है। इसके साथ ही पेटीएम जैसी भारत की देसी थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स को सर्वाइवल का बड़ा मौका मिल सकता है, क्योंकि अब 0.4% एमडीआर लागू होने का फायदा उन्हें भी मिलेगा। आज तक ब्यूरो।

0: आखिर ये सेमीकंडक्टर है क्या? एक छोटी सी चिप इतनी जरूरी क्यों है? आइए एकदम आसान शब्दों में बताते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए बिजली और उस बिजली को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर चिप इसी काम को अंजाम देती है। ये चिप एक तरह से डिवाइस का दिमाग होती है, जो डिवाइस को बताती है कि कब क्या और कैसे करना है। अब सवाल है कि ये चिप बनती किस चीज से है? तो इसकी शुरुआत होती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में सिलिका और कई खनिजों में पाया जाता है। इसे बेहद शुद्ध करके एक पतली गोल प्लेट बनाई जाती है, जिसे सिलिकॉन वेफर कहा जाता है। यही वेफर आगे चलकर चिप का आधार बनता है। इसको ऐसे समझिए कि सिलिकॉन से वेफर, वेफर से सर्किट, सर्किट से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से चिप और सबसे अंत में टेस्टिंग और पैकेजिंग। इतने स्टेप से गुजरने के बाद सेमीकंडक्टर चिप तैयार होती है। यही वजह है कि चिप बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। चिप बनाने वाली फैक्ट्री में धूल का एक बेहद छोटा कण भी उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन फैक्ट्रियों में बेहद साफ वातावरण और बेहद सटीक मशीनों की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर की पूरी दुनिया को अगर देखें तो चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका इसके बड़े केंद्र हैं। इन देशों के पास चिप बनाने की फैक्ट्रियां, तकनीक और पूरी सप्लाई चेन मौजूद है। लेकिन जब बात सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक चिप बनाने की आती है तो ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनकर सामने आता है। दुनिया के बड़े देश सेमीकंडक्टर को सिर्फ कारोबार का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी तकनीकी और रणनीतिक ताकत मान रहे हैं, क्योंकि आज जिस मोबाइल को हम हाथ में लेकर घूमते हैं, जिस कार में सफर करते हैं और जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उन सब की असली ताकत उस छोटी सी चिप में छिपी है जो ताइवान, चीन या अमेरिका की बनी है। भारत भी अब इन सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत के सेमीकॉन मिशन का विजन है कि पूरा इकोसिस्टम भारत में तैयार किया जाए। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

टीएमसी के नाम और निशान को फ्रीज करने पर बंगाल से दिल्ली तक भूचाल। उपचुनाव में सिंबल पर रोक से भड़की ममता बनर्जी का कड़ा विरोध। राहुल बोले, ये पार्टी चोरी का पुराना पैटर्न। ड्रग्स पर गिरे भगवंत मान के राज में अब कानून व्यवस्था पर भी सवाल। अमृतसर में एएसआई की हत्या से हड़कंप। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पठानकोट से कर रहे हैं नशा मुक्त अभियान का आगाज। जेंजी आंदोलन के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है छात्रों के मूड का पहला टेस्ट। डूसू चुनाव में डाले जा रहे हैं वोट। यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा बेहद सख्त। कल आएंगे नतीजे।

0: एक मुख्यमंत्री के साथ काम करने के बाद पहली बार एक नया मुख्यमंत्री बिहार देखने को मिल रहा है, नए तरीके की सरकार एक तरीके से देखने मिल रही है, एक मामला उलट गया है, जेडीयू बीजेपी तो बीजेपी जेडीयू उस तरीके से है। तो इस बदलाव में काम करते समय आपको कैसे लग रहा है और क्या क्या फर्क महसूस होना चाहिए आपको लगता है?
1: देखिए, ये बिहार हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार किया है और बदलाव का ये स्थल रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब बदलाव हुआ, बिहार की धरती से बदलाव हुआ है और वह बदलाव का क्रम यहां रुकता नहीं है। आजादी के पूर्व, आजादी के बाद, आज भी बिहार के अंदर जो बदलाव है, जो देश के मन मिजाज है उसके अनुकूल वह भाव बिहार के लोगों का निर्णय आता है, उस बदलाव में बिहार के लोगों की भागीदारी और सहमति भी बनती है।
0: नहीं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कई सालों तक बीजेपी ने यहां पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलाई, एक तरीके से जेडीयू इस पूरी सरकार का नेतृत्व कर रहा था, आज की स्थिति में अब बीजेपी इस सरकार का नेतृत्व कर रही है, तो बीजेपी की प्राथमिकताओं में और आपकी प्राथमिकताओं में क्या बुनियादी बदलाव आए हैं, ये सवाल है।
1: देखिए, आपको जानकारी दे दें कि जेडीयू या बीजेपी की सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार में दोनों पार्टी के भावनाओं के अनुकूल बिहार की अराजकता से बाहर निकालना, बिहार के अंदर अंधकार को हटाना, निराशात्मक वातावरण से बिहार को मुक्त करना, ये प्राथमिकता में थी और आप उसका झलक देखे होंगे। आज हमारे बीच श्रद्धेय सुशील मोदी जी नहीं है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी की जोड़ी 2005 से 2010 के बीच में पहला अभियान लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज से के भय से मुक्त करना, लोगों के मन के अंदर एक विश्वास स्थापित करना और वह विश्वास सुशासन का स्वरूप कहलाया।
0: फिर भी एक फर्क तो होता ही है ना कि हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री हो और सहयोगी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, उस लिहाज से अगर हम देखें तो
1: ना, हम तो उनके साथ भी लंबे समय तक काम किए हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के साथ कभी ये अंतर अनुभव नहीं हुआ मिलके काम करने में। और सबसे बड़ी विशेषता एनडीए के नेताओं के अंदर रहता है कि अच्छे काम को लोग प्रोत्साहित भी करते हैं और उनका मार्गदर्शन से वो और बेहतर भी बनता है।
0: सिन्हा जी, मुझे आपके विभाग पर आना है क्योंकि बिहार, जैसे मैंने शुरुआत की कि कृषि प्रथम या कृषि जिसे जहां पर ज्यादातर जनता कृषि में काम करती है या किसान है, ऐसे प्रदेश में हम आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस पर मुझे बात करनी है, लेकिन जरा कुछ राजनीतिक मामले पहले सुलझा ले। आपके पास पिछले सरकार में बड़ी अहम जिम्मेदारी थी, आप राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, अभी आपको एक तरीके से ग्रामीण बिहार की जिम्मेदारी दी गई है ऐसा माना जा रहा है, रूरल बिहार के विकास के लिए आपको कृषि मंत्री बनाया गया है, ये हम मानकर चले, तो इसे हमें किस तरीके से देखना चाहिए कि आपके पास नई जिम्मेदारी के तौर पर या आपकी जिम्मेदारी सीमित करने के तौर पर?
1: देखिए, मैं बता दूं कि हम तो पहले पथ निर्माण मंत्री भी थे, उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष भी थे
0: जी,
1: और माइंस मिनिस्टर भी थे। हर बार हमारा नेतृत्व को जो लगता है कि कौन विभाग इनके जिम्मे दें कि कुछ बेहतर बने, हम उसके विश्वास पर खरा उतरने के लिए अभियान शुरू करते हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर सच्चाई है कि आज बिहार के अंदर नरसंहार की शुरुआत माइंस और राजस्व के कारण हुआ था। माइंस में भी 2021-22 में 1600 करोड़ का राजस्व आता था, मेरे बनने के बाद हमने 3592 करोड़ का व्यवस्था बनाया, ट्रांजिट चलान लागू किया, अवैध खनन लगभग ओवरलोडिंग बिहार के अंदर बंद, 10,000 का इनाम भी घोषित किया, एक परिवर्तन से और उसका असर मेरा राजस्व विभाग पर भी पड़ा। बालू माफिया अपने अवैध कमाई को जमीन में लगाते थे और भूमाफियाओं का जिस तरह से मनोबल बढ़ा था उस भूमाफिया पर मेरी निगाह थी, तो हमने खुल कर करके देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि किसानों को हम प्राथमिकता दें, एग्री स्टैक के माध्यम से फार्मर आईडी बनाना शुरू किया। हर किसान के जमीन का एक पासबुक, और उस पासबुक में उसकी जमीन लिखी रहेगी ताकि आने वाला पीढ़ी को भी वो मिले और मेरे खाद बीज अनुदान सबको उसके हिसाब से मिले, कोई गलत नहीं कर सकी।
0: अगर मैं बिहार के लोगों को पूछूं कि क्या बिहार में बालू की माफिया जो खनन चलता है वो पूरी तरीके से रुक गया है, तो क्या मुझे हाँ जवाब मिलेगा या
1: आप पूछ सकते हैं और आपके चैनल पर
0: कोई माफिया अभी राज नहीं रहा, कोई इलीगल माइनिंग?
1: मेरे पीरियड का मैं बता दूं कि बालू माफिया का अवैध खनन ओवरलोडिंग में, आपको जानकारी दे दूं कि जो भी यूट्यूबर नौजवान या कोई भी फोटो खींच के वीडियो भेजता था 10,000 रुपया मैं देता था पैसा, उसके अकाउंट में नहीं, यूपीआई से, कोई माफिया उसको ट्रेस नहीं कर सकी। और कई लोगों को दिया है और मेरा सड़क पुल पुलिया सब सुरक्षित हुआ है। तो ये अभियान हमने चलाया है, बिहार के किन्हीं भी लोगों से आप पूछ सकते हैं कि ओवरलोडिंग उस पीरियड में बंद था या नहीं।
0: लेकिन उसके बावजूद आपकी एक टीस रही है कि आप परीक्षा की तैयारी पूरी तरीके से कर लेते हैं, मतलब क्योंकि परीक्षा का माहौल है, विद्यार्थियों का माहौल है, तो ये सवाल पूछना जरूरी है कि आप परीक्षा की तैयारी जोरदार करते हैं लेकिन जब परीक्षा देने जाते हैं तो आपका पेपर बदल दिया जाता है।
1: नहीं, ऐसा
0: पेपर ही बदल जाता है आप?
1: देखिए ऐसा है,
0: क्या यही चीज आपके साथ इस विभाग में भी हुई कि आपने परीक्षा की तैयारी की, कहीं पर अटैक करने वाले थे, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई करने वाले थे और फिर आपका विभाग बदल दिया?
1: देखिए राजनीति की संभावनाएं परिस्थिति के अनुसार बदलती है। भूमि राजस्व विभाग के अंदर भी हमने 48 लाख एग्री स्टैक के माध्यम से फार्मर आईडी बनाया, और आज बिहार के किसी भी जिले में जाके पूछ लें कि बिना परेशानी के, बिना झंझट के आम लोगों की समस्या का समाधान हुआ। और आज मैं जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना हूं तो उस अभियान को रोका नहीं हूं, क्योंकि जमीन हमारे किसान का ही है और 2.25 करोड़ के लगभग वो किसान का फार्मर आईडी का अभियान फिर हमने शुरू करवा दिया है। और वो अभियान रुकेगा नहीं, क्योंकि बिहार को बदलना है तो जमीनी विवाद से निकाल करके किसानों के मन के अंदर विश्वास पैदा करना होगा, और हमारा किसान जब जग जाएगा फिर बिहार को कोई रोक नहीं पाएगा।
0: लेकिन क्या फिर भी हम ये मानकर चले कि इस बार आपका पेपर नहीं बदला जाएगा, आप इतनी तैयारी कर रहे हैं तो इसका पेपर नहीं बदला जाएगा, और वो आप किसके बारे में कह रहे थे कि क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते समय आप तैयारी में थे और फिर वो बदल गया पेपर, या आपका एक राजनीतिक तंज था उसमें?
1: देखिये भ्रष्टाचार,
0: लोग कहते कि आपका दर्द निकल।
1: देखिए भ्रष्टाचार और सदाचार ये बहुत गहरी पैठ बना चुकी, हम लोग को बचपन से ही सिखाया गया खुद सुधरो जग सुधरेगा, तो जब हम अपने आप को नहीं सुधार पा रहे हैं तो जग सुधारने की बात कैसे करें। एक प्रयास जरूर करते हैं, एक शिक्षक पुत्र का है तो एक प्रयास करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, परिणाम की बगैर चिंता के, और जो जवाबदेही दी जाती है वक्त जितना भी मिले प्रयास हमारा रहता है कि लोगों के सामने आंख मिलाने में आंख झुके नहीं।
0: लेकिन आपके प्रयास में क्या कामयाबी आपको मिल पा रही, या एन मूवमेंट पर आपको बताया दिया जाता है कि नहीं अभी रुक जाइए अभी?
1: आज तो मैं से विश्लेषक पे ये बैठे हुए लोग हैं, आम लोगों से आपने जो कहा, और आपका चैनल तो पूरे देश दुनिया से सारा रिपोर्ट लेता है। आप बता दें कि जो जो विभाग मिला मुझे मिला, पथ निर्माण हो, माइंस डिपार्टमेंट हो, राजस्व डिपार्टमेंट हो, यहां तक कि कला संस्कृति विभाग, बेस्ट फिल्म नीति ला करके आज 2 दर्जन से ज्यादा मेरा फिल्म बिहार में बन रहा है, और उसमें एक शर्त हमने लगा दिया था कि हम 4 से 5 करोड़ अनुदान देंगे तो 75% बिहारी होगा और 75% बिहार में शूटिंग होगा। हमने मौका नहीं चूका है, खेल के मैदान में बॉल सही मिल गया तो फिर चौका और छक्का तो लगाने की बात नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को निराश नहीं करेंगे।
0: एक और चीज, मैं कल कुछ लोगों से मिल रहा था और उनका यह कहना था कि बिहार में आजकल ट्रांसफर्स का माहौल, अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। बड़े बड़े अधिकारियों को एक एक महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है। ये भी कहा गया है कि आप अगर कोई एक वेबसाइट खोली गई है और उस पे अगर आप कोई शिकायत डाले और अगर कोई कार्यवाही नहीं होगी तो उसको उस पर कार्यवाही की जाएगी। ये कौन सा माहौल चल रहा है छुट्टी पर भेज?
1: देखिए ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन मैं बता दूं इस तरह के हमारे साथ तो कहे कि आज कई विभाग के अंदर जो भी सेक्रेटरी रहा मैं सबके साथ मिलकर काम किया। अब राजस्व विभाग में सीके अनिल जैसा पदाधिकारी बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही लगन से, और हम अच्छे लोग काम करने वाले का सम्मान करते हैं। अब कुछ लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है,
0: लेकिन आप कैसे देखते हैं उसको? एक वक्त था कि जब ब्यूरोक्रेसी इस बिहार में रूल किया करती थी ऐसा माना जाता, आज की स्थिति में ब्यूरोक्रेसी पर इस तरीके से, अब जैसे डीजीपी छुट्टी पर है, बीपीएससी के चेयरमैन छुट्टी, जो अधिकारी है वो छुट्टी पर चले गए, बीपीएसएससी के जो अधिकारी है उनको छुट्टी पर भेज दिया गया, ऐसे कई अधिकारियों के नाम उस पे आ रहे हैं। ये इसके पीछे आपको भी तो लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है।
1: देखिए अब वो पूरी तथ्य, क्योंकि हम लगातार बाहर है, पूरी तथ्य की जानकारी नहीं है, लेकिन ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र है, गृह विभाग उनके जिम्मे है, सामान्य प्रशासन, तो उस तरह की व्यवस्था में कौन सी परिस्थिति के कारण हुआ है हम लोग भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कोई स्पेशल किसी खास परिस्थिति के लिए नहीं बनाई जाती।
0: ठीक है, आपके विभाग पर मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, क्योंकि बिहार में कृषि को लेकर जो स्थिति है, जिस तरीके के साइज का जो बजट था उसमें कृषि विभाग पर कुल जो खर्चा है, व्यय जो है वो 2.6% था। बाकी राज्यों की अगर हम तुलना करें, उसका अगर एवरेज निकाले तो वहां पर 5.7% का होता है। बिहार में इतना कम व्यय रखने का क्या कारण आप मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आवंटन बढ़ाना चाहिए बिहार में कृषि को लेकर?
1: आपने सही कहा कि दो कारण इसका है। पिछले बार से इस बार की बजट हमारी कमी है, और इसका कारण चुनाव और सत्ता परिवर्तन का ये वातावरण प्रभावित किया। जब आपने कहा ठीक है कि कोई पदाधिकारी कोई मिनिस्टर लगातार काम करते हैं तो वो अपना एक विजन बनाते हैं, उस व्यवस्था से वो आगे बढ़ते हैं, परिवर्तन होती है तो फिर मामला ठहरता है। दूसरा, बाढ़ सुखाड़ का प्रभाव का असर भी पड़ता है, और तीसरा कि समय पर आवंटन नहीं होना, ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और आवंटन का कई कारण होता है, हमारा केंद्र का, राज्य का, विभाग के अंदर पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो वो सबसे प्रभावित। हमने इस सारे मामले को लेके बड़ी गंभीरता के साथ हमने आपस में बैठक भी की है, और हमने कहा कि इसको बढ़ाना होगा, किसानों के मन के अंदर एक भाव जगाना होगा कि जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो जमीन तक पहुंचे। इसी के लिए आपको मैं जानकारी दे दूं कि कृषि जन कल्याण संवाद हमने शुरू कर दिया है, अभी गया की धरती से शुरू किया, गोपालगंज, सभी किसान को बुलाते हैं, सारी योजनाओं की जानकारी देना, उसमें कोई उनको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, हमारे सभी बड़े पदाधिकारी बैठते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, और जन कल्याण संवाद में उनकी समस्या का समाधान। इससे मेरा दो फायदा कि प्रचार प्रसार भी है, योजना तेज गति से जमीन पर उतर रही है, और किसानों को जहां बाधा उत्पन्न होती है उसकी समाधान तत्कालिक होता है।
0: लेकिन सरकार आपके विभाग के लिए अगर आवंटन ही कम होगा तो आप किस तरीके से लोगों के काम आ पाएंगे?
1: आवंटन जब हम खर्च ज्यादा करेंगे तो आवंटन बढ़ेगा। होता क्या है कि हमने कोई योजना शुरू की, अभी देखिए फर्टिलाइजर का कितना हंगामा होता था बिहार में, आंदोलन, रेल रोक देता था। पहली बार है जो फर्टिलाइजर की कमी बिहार में नहीं हुआ, जबकि देश में युद्ध चल रहा है, लेकिन बिहार में फर्टिलाइजर की कमी नहीं हो। अब किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अब बिहार में दुकानदार आंदोलन कर रहे हैं। यह परिवर्तन है, और यह परिवर्तन आम लोगों के सहयोग से है, क्योंकि कोई कालाबाजारी नहीं करेगा, सही रेट पर मिले। मैंने सारे कंपनी के लोगों को कह दिया कि जो भारत सरकार का नियम है पहुंचाकर माल देने का, आपको देना पड़ेगा, नहीं तो कोई सहानुभूति आपके साथ नहीं रख पाएगा। तो ये अंतर शुरुआत हुई है, हम लोगों को ही जगा देंगे। आज राजस्व विभाग में जैसे लोग जग गए हैं, अब बहुत ज्यादा दायां बायां लोग कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो पब्लिक तुरंत इंसाफ करेगी।
0: पुराने विभाग की याद तो आपको बहुत आ रही है।
1: नहीं नहीं, इसलिए कि ये एग्रीकल्चर से जुड़ा है। जब तक राजस्व नहीं सलटेगा, फार्मर आईडी नहीं बनेगा, किसान को खाद नहीं मिल पाएगा, बीज नहीं मिल पाएगा, अनुदान नहीं मिल पाएगा। भारत सरकार तो अब कह दिया है कि जिसके पास फार्मर आईडी है उसी को मिलेगा। हमने कहा कि नहीं, बिहार थोड़ा सा पिछड़ गया है, इसलिए हमको अभी कुछ दिन चलाना होगा। इसलिए बार बार उससे, क्योंकि राजस्व से एग्रीकल्चर पूरी तरह से जुड़ा हुआ
0: है। क्योंकि राजस्व के अधिकारी अगर काम करेंगे तभी तो सारी योजनाएं
1: अभी
0: गांव गांव तक पहुंच पाएंगे।
1: अभी परसों ही हमने राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग के साथ एग्रीकल्चर विभाग के ही कार्यालय में बैठक की है और हमने कहा कि तालमेल बना के चलना होगा। हम जिसकी सेवा के लिए संकल्प लिए हैं वो सेवा को जमीन पर उतारना होगा। और इस भाव में दोनों विभाग के माननीय मंत्री जी ने भी पूरी तरह से सहयोग के लिए आश्वस्त भी किए हैं और हम लोग मिलकर काम करेंगे।
0: बिल्कुल। और एक चीज जिसे जिसको लेकर चर्चा काफी होती है कि बिहार के मतलब 2025-26 का वित्तीय वर्ष देखें तो बिहार से कुल निर्यात 18,713 करोड़ का रुपए का निर्यात हुआ है, और इस यानी अगर देश का एवरेज निकाले तो ये 0.48% है महज। हालांकि इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जबकि बिहार से जो आपके विभाग से जुड़ा जा सकता है, एक तरीके से हम कहें कि मखाना की उत्पादन 80% पूरे देश का बिहार से होता है और लीची का उत्पादन 40% बिहार से होता है पूरे देश के, क्या आपको लगता है कि इन दो प्रोडक्ट्स को थोड़ा और पुश करना चाहिए? क्योंकि 0.48% तो आधा भी प्रतिशत नहीं है देश का अगर हिस्सा।
1: आपने बहुत अच्छा ध्यान आकृष्ट किया। हमारा मखाना, हमारा लीची, हमारा आम, हमारा कतरनी चावल उपजाते थे हम और पैकिंग होता था जाकर के मुंबई में। बाहर की कंपनियां अपना ब्रांड लगाते थे, बिहार गौण हो जाता था। अब हमने उसकी शुरुआत किया है क्योंकि बिहार के अंदर भी कई एयरपोर्ट, कई भी एक्सपोर्ट करने का व्यवस्था बिहटा के अंदर शुरू किए हैं और इसका असर 2-3 साल के अंदर दिखाई पड़ेगा कि मेरे बिहार के बैनर पर, मेरे टैग पर अब डायरेक्ट व्यवस्था विदेश जाएगी तो मेरा उत्पादन बढ़ेगा।
0: नहीं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बिहार जैसे राज्य में जो मैंने निर्यात के आंकड़े आपको बताए हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर पेट्रोलियम से बने हुए पदार्थों का है, जबकि फूड प्रोसेसिंग या बाकी सारी चीजें जो है वो बहुत निचले स्तर पर है। तो कैसे बदलेंगे इसको? आप कह रहे हैं कि भाई आप फूड प्रोसेसिंग ये वहां पर फैक्ट्रियां लगाएंगे या बाकी सारी पैकेजिंग की चीजें शुरू हो जाएंगी, लेकिन क्या देर हो चुकी है और क्या कोई समय सीमा है इसके लिए कि अगले चुनाव तक या उससे पहले तक, अगले 2 साल तक 3 साल तक? क्योंकि अभी तो मखाना पूरे देश भर में पहुंच गया है, दुनिया भर में पहुंच गया है।
1: मैं बता दूं कि मखाना ही नहीं, आज पानी में उपजने वाले कई ऐसे फसल हैं, सिंघाड़ा का भी बहुत डिमांड है। ये तो सनातन संस्कृति संस्कार से जुड़ा हुआ राज्य और देश है जिसको डिमांड ज्यादा होता है। सिंदूर का हमारा वातावरण बहुत डिमांडेबल है। ये उपज में जो आपने कहा कि निश्चित तौर पर हमने कृषि रोड मैप बनाया, प्रयास हमारी सरकार ने की है, व्यवस्था बदला है, जिस गति से बदलनी चाहिए वो गति को बढ़ाने के लिए उसके अनुकूल वातावरण। अब हमारा प्राकृतिक आपदा विपदा के साथ जलवायु क्लाइमेट पर भी कई निर्भरता को हमने बदलने का 4th कृषि रोडमैप में शुरू किया है। तो ये सब वातावरण अब इसके अनुकूल हो रहा है। केंद्र सरकार की जिस तरह से नीति बिहार पर फोकस, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार के कृषि मंत्री जी का है, तो निश्चित तौर पर हमारा एग्रीकल्चर देश का ही कल्चर को बदलेगा। बिहार का कल्चर तो उसमें अपने आप ध्वजवाहक बनेगा।
0: नहीं, आप सही कह रहे हैं क्योंकि बिहार के प्रति खास करके किसानों के लिए केंद्र सरकार का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि 2021-22 के नाबार्ड के आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद के आंकड़े हमें मिल नहीं पाए, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बिहार के किसान परिवार की मासिक आय 9,232 रुपये मात्र है, जबकि हरियाणा और पंजाब के भीतर वही किसान परिवार 25,000 के ऊपर की आय रखता है, यानी एक तिहाई से भी कम बिहार के भीतर है। जो नीचे के तीन राज्य है जैसे उड़ीसा हो या त्रिपुरा हो, उसमें भी बिहार से ज्यादा आय दिखी जाती है। उड़ीसा में भी कुछ 10 से 20 रुपया ज्यादा आय यहां पर दिखाई गई है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सरकार आई थी 2014 में, तब इस बात का जिक्र हमेशा किया गया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन 2014 के मुकाबले अगर हम देखें तो बिहार के भीतर मात्र 53% की वृद्धि हो पाई है किसान की आय में, मात्र 53% की। कैसे आप किसान की आय को दुगनी करने की कोशिश करेंगे?
1: देखिए मैं बता दूं, जो आपने कहा कि
0: दुगनी पर तो जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन
1: दूसरे
0: में भी लेकर आए
1: दूसरे राज्य बिहार में,
0: माफ करिए,
1: बिहार में 76% आबादी कृषि पर आधारित है और उसमें से 96% आबादी लघु सीमांत किसान है, छोटे जोत वाले लोग। देश की पॉलिसी जो बनती है वो पूरे समग्र देश को देख करके, हमने इस बार ये आग्रह किया।
0: सीमांत किसान का मुद्दा तो पूरे देश भर में है, आप किसी भी राज्य में जाइए आज की स्थिति में आपको सीमांत किसान मिल जाए,
1: लेकिन इस बिहार में कहीं 96%, इतना ज्यादा कहीं नहीं है। और छोटे जोत के लोगों का आमदनी हम परंपरागत खेती से नहीं बढ़ा सकते। आज हॉर्टिकल्चर पर जो हमने फोकस कर रहे हैं या इससे जुड़े इंटीग्रेटेड फार्मिंग का व्यवस्था हम बना रहे हैं, तो ये वातावरण उसके आमदनी को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। आज हर जिले के अंदर हम सबको, युवा किसानों को जोड़कर सम्मान करने का और उसको प्राथमिकता देने का, प्रशिक्षण देने का ये माहौल जो खड़ा कर रहे हैं, इसका असर दिखाई शुरू हो गया। हम एक ही आज मशरूम की खेती, पहले आप जो आमदनी बता रहे थे कि 10,000 से नीचे है, तो हमारा आर्थिक सर्वे में तो बताया है कि 63% आबादी हमारा 10,000 से नीचे आमदनी की है, 37% से ज्यादा 6,000 से कम आमदनी वाले लोग हैं। लेकिन इसकी आमदनी की गति अगर जो बढ़ानी है तो हमको एग्रीकल्चर पर फोकस कर करके उसको आगे बढ़ाना होगा। उसके लिए नए तकनीक के साथ हमको उस व्यवस्था को जो हम लोग शुरू किए हैं उसका असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आज हॉर्टिकल्चर तात्कालिक फसली विविधीकरण में भी लाभ देता है। हम एक साथ कई फसल को छोटे से जोत में उपजा सकते हैं, यह फायदा बन सकता है। लोग को विश्वास नहीं होता था कि आमदनी बढ़ सकती है। आज मैं जब मंच पर खड़ा करता हूं, लोगों को बताता हूं कि कितनी आमदनी होती है आपको एक एकड़ जमीन में, तो कहता है कि मुझको 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, तो उसकी आमदनी एवरेज 50,000 से ऊपर आ रहा है। यह माहौल बदलने की एक शुरुआत है।
0: कोई वादा कर पाएंगे आप कि आप जब तक कृषि मंत्री रहेंगे अगले 4 साल में, 5 साल में, क्योंकि आंकड़े बहुत ज्यादा लुभावने नहीं है। 2016-17 में बिहार के भीतर किसान परिवार की आमदनी 6,673 रुपया थी, जो आज बढ़कर 9,900 के करीब पहुंच गई है। क्या आप कोई वादा कर पाएंगे कि 5 आंकड़ों में जा पाएगा? क्या आप कोई वादा कर पाएंगे कि इससे आप दुगनी कर पाएंगे? कोई वादा आप इस पे कर सकते हैं? क्योंकि अगर हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, बाकी सारे अगर आपके पास सीमांत किसान 96% तक अगर इतने बड़ी संख्या में है, तो कोई और आमदनी का स्रोत उनके लिए बने, उसके लिए कोई वादा कर पाएंगे आप?
1: देखिए वादा,
0: इसी मंच से अगर कोई वादा,
1: देखिए वादा तो नेता लोग करते हैं, मैं तो कार्य करता हूं और उससे भी बड़ा मैं बिहारी हूं।
0: मैं आपको,
1: मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं भी छोटे जोत के परिवार से आता हूं और हमने गरीबी को बहुत निकट से देखा है। कोई सोने के चम्मच लेकर हमने राजनीति में जन्म नहीं लिया, इसलिए मैं उस बिहारी के आंखों के आंसू को पोंछने का और उसकी आय प्रधानमंत्री का दुगना से बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये असर कम समय में बेहतर दिखाई पड़ेगा। लेकिन आप जैसे लोगों का ये सत्य को स्वीकारने का, और मैंने एक चीज और कहा अभी कुछ दिन पहले, हमने एक ट्वीट किया उन किसानों के आंसू में जो आपने कहा कि कई लोग भूखे रह जाते हैं, हमने कहा कि बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं विकारों से मुक्त होकर, बंधनों में बंद करके, एक बार ईमानदारी से सब मिल करके, बुद्धिजीवी राजनीतिक हो, पदाधिकारी हो या बुद्धिजीवी हो, कि हम अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य निभा रहे हैं, फिर देखिए परिवर्तन कैसे दिखाई पड़ता है। और रोजगार का सबसे बड़ा अवसर कहीं है
2: तो एग्रीकल्चर में हमारे अर्थव्यवस्था में 20% इसकी भागीदारी है। इसको लोग गंभीरता से जिस दिन ले लेंगे ये बदलेगा, लेकिन इस बदलाव में सिर्फ उपज बढ़ाना मेरा मकसद नहीं है। उपज तो हम बढ़ा लेंगे, लेकिन हमारी शारीरिक स्वास्थ्य की व्यवस्था भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। आज आपको एक चीज मैं जानकारी दे दूं कि मैं प्राकृतिक खेती के लिए पूरा आह्वान कर रहा हूं। हम आप उपज बढ़ा लेंगे, आमदनी दुगुना क्या तिगुना कर लेंगे, लेकिन वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का परिणाम है कि हर घर में बड़े बीमारी, कैंसर से लेके लीवर किडनी हट के बीमार लोग बैठे हैं। हमारा कितना आमदनी का पार्ट चला जाएगा उसमें। हमने कहा है कि हर परिवार, जो किसान हो जिसकी जमीन है, बिना फर्टिलाइजर केमिकल का, आप हमारा नेचुरल फर्टिलाइजर, जो परंपरागत मेरा गाय के गोबर का, गौमूत्र का ये व्यवस्था चलता था, हमने इतना तक लोगों का कहा कि पहाड़ पर कोई फर्टिलाइजर और केमिकल नहीं डालते हैं, लेकिन वहां खूब फलता फूलता है। हम प्रकृति के साथ चलेंगे, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन मिजाज भी पुष्ट रहेगा और हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। ये अभियान को हमने सारे विधायक, विधान पार्षद सबको पत्र लिखा और जाके फील्ड में अभियान को शुरुआत कर रहे हैं। इसका असर आने वाला दिन में दिखाई पड़ेगा।
0: अभ्यास तो आपने शुरू कर दिया है, कहीं आपका पेपर तो नहीं बदल दिया जाएगा?
2: उसकी चिंता मुझे नहीं रहती है। बिहार कर्म योद्धाओं का प्रदेश रहा, श्रम में जेते और श्रमिक अब सृजन करता है, निर्माता है, ये विश्वकर्मा का संतान है। इसलिए विश्वकर्मा का संतान, हमारे प्रधानमंत्री भी विश्वकर्मा के संतान के रूप में देश को सजाया, जिनको आशीर्वाद का दिया का कल असर पूरे बिहार में दिखाई पड़ा। इसलिए हम उनके शिष्य हैं, उसकी चिंता नहीं करते हैं।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: एक तो एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: पापा।
8: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया
8: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
9: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
10: ओ बिलोटे चार्ज हुआ यार।
8: ओला बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: बहुत टायर्ड हो गई।
13: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
14: लायन डेट नट बाइट्स।
15: और वही कहाँ गए थे घूमने?
16: जीके मैक्स।

0: की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
1: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: पापा।
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: बहुत टाइर्ड हो गई।
11: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
12: लायन डेट नट बाइट्स।
13: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
16: जेके वॉल मैक्स।
14: बेस्ट पेंट?
16: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब खबर पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। ममता बैनर्जी ने आधी रात को चुनाव आयोग को जवाब भेजकर फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। वहीं कांग्रेस ने भी आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब टीएमसी, हर बार एक ही पैटर्न दोहराया जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर राजनीतिक दलों को तोड़ने और उनके चुनाव चिन्ह छीनने का काम कर रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने दोनों टीएमसी गुटों से आज सुबह 11 बजे तक तीन तीन वैकल्पिक नाम और तीन तीन चुनाव चिन्ह सुझाने की बात कही है। यानी नंदीग्राम और रेजीपुर उपचुनाव से पहले टीएमसी की सियासत में नाम और निशान की नई लड़ाई शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि इस सियासत के कई पहलू हैं। पहले तो इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा फैसला है जिसका झटका टीएमसी को लगा है, क्योंकि चुनाव चिन्ह और नाम पर रोक लग गई, यानी आने वाले उपचुनावों में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

0: मीटिंग हुआ एनटीआईटीसी का, उधर ऋतुपुत्र बनर्जी प्रेजेंट था। 19 मई जो मीटिंग हुआ है, उधर ऋतुपुत्र बनर्जी प्रेजेंट था। 3 जून जो स्पीकर का पास चिट्ठी लिखा था, उसमें बोला था एआईटीसी का ब्लॉक है हम लोग, तो एआईटीसी ब्लॉक में एआईटीसी इज एग्जिस्टिंग। होल एपिसोड हैज बीन स्टार्टेड विद द मैलाफी डिसीजन बिकॉज ही वाज नॉट चोजन एज ए ऑपोजिशन लीडर बाय द पार्टी इटसेल्फ। दैट इज द ग्राउंड, दैट इज द रीजन ही हैज डन इट।
1: जमहूरियत के अंदर कोई तानाशाही का कोई जगह नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पवने, ये जो नैरेटिव चल रहा था ना, ये सिंबल को लेकर, नाम को लेकर, इलेक्शन कमीशन का जो आज का इंटरिम ऑर्डर है, इससे साबित है, जाहिर है कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया।
2: ऊपर वाला विचार सिंदूर आलता है, पद्म फूलेर छवि থাকলে সেটা দোকানে বিক্রি করা যাবে না। উত্তর ২৪ পরগনা জুড়ে, ব্যারাকপুর জুড়ে এই ফতোয়া জারি করেছিল তৃণমূল। আর তৃণমূলের প্রতীক থাকলো কি গেল, তাদের মানুষের কিছু এসে যাবে না, কারণ তৃণমূল বলে কোনো পার্টি নেই। তৃণমূল মৃত, তৃণমূল নির্মূল।
3: और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू। इंद्रजीत, दोनों गुटों के पास सिर्फ 11 बजे तक का वक्त है, क्या पता चल रहा है, क्या दोनों ने अपने अपने सबमिशंस कर दिए हैं नाम और सिंबल के सुझावों को लेकर?
4: देखिए, जहां तक ममता बनर्जी के गुट का सवाल है, कल रात को ही ममता बनर्जी के फैक्शन ने जवाब दे दिया था इलेक्शन कमीशन को, ये कहते हुए कि वो लोग एक कड़ा जो रवैया वो लेना चाहते हैं और उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो इंटरिम ऑर्डर है उसको वो नहीं मानते। हालांकि ये क्वाजी जुडिशियल हियरिंग था और जो उपचुनाव होने वाले हैं 2 सीट्स रेजीनगर और नंदीग्राम के लिए, उससे पहले तृणमूल कांग्रेस अब अपना जो चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उस पर फ्रीज लगा दिया गया है। तो नया चिन्ह और पार्टी का जो नाम वो इस्तेमाल करना चाहते हैं इस बाय इलेक्शन में, उसका प्रपोजल के साथ कल रात को ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना जो दस्तावेज है वो दे दिया है, चिट्ठी दे दिया है। हालांकि जो बागी गुट है, ऋतुव्रत बनर्जी जो विरोधी दल नेता है यहाँ पे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनके खेमे से अब ये खबर आ रही है कि वहां पे वो लोग अपना मीटिंग कर रहे हैं। 11 बजे का समय है, उससे पहले ही वो लोग भी आज कुछ देर में इलेक्शन कमीशन को अपना जो फैसला है वो बता देंगे कि किस तरह का सिंबल उनको चाहिए, जो सिंबल फ्री लिस्ट में है, और उसके साथ साथ क्या नाम वो इस्तेमाल करना चाहेंगे इस बाय इलेक्शन में। दोनों ही गुट के ओर से सूत्रों के हवाले से जो पता चल रहा है, दोनों ही अपने नाम के साथ तृणमूल कांग्रेस को जुड़ा रखना चाहती है। क्या ममता बनर्जी, जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि उस तृणमूल कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी का नाम जुड़ जाए, ये कुछ देर में पता चलेगा जब दोनों ही खेमे का रिस्पांस इसी को पता चल जाएगा, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी दोनों ही खेमे को ये बता देगी कि वो किस सिंबल और किस नाम के साथ इस उपचुनाव में लड़ेगी।
3: जी, आप हमारे साथ बने रहे इंद्रजीत कुंडू, क्योंकि इसकी सियासत का असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। इसे लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, आपको बता देते हैं। वो दरअसल सवाल उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, वो कह रहे हैं कि दरअसल ये सब कोशिश की जा रही है पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने की। उनका कहना है कि पहले ये शिवसेना के साथ हुआ, फिर एनसीपी के साथ हुआ, और अब टीएमसी के साथ किया जा रहा है ये सब, चुनाव चिन्ह छीना जा रहा है, ये उसकी कंस्पिरेसी है। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सियासत बंगाल में तो चल ही रही है इसको लेकर, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर सिर्फ राहुल गांधी के ही जरिए नहीं, पहले से ही आवाज उठाती रही है लगातार, तो अब क्या रवैया है कांग्रेस का?
5: अंजलि, देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, सब कोई ममता बनर्जी के साथ इस वक्त खड़े हैं, जब उनकी पार्टी का नाम और सिंबल जोड़ा फूल दोनों खतरे में आ गया है, क्योंकि उस पर एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने कल उसको फ्रीज कर दिया। अब ममता बनर्जी को नए नाम, नए सिंबल के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देखिए, एक पैटर्न है, एक ट्रेंड सेट हो रहा है, पहले शिवसेना के साथ हुआ, फिर एनसीपी के साथ हुआ, टीएमसी के साथ हो रहा है, और वो इस बात को वोट चोरी वाले नैरेटिव से भी जोड़ रहे हैं कि वोट चोरी देश में हो रही थी, अब पार्टी चोरी हो रही है। तो ओवरऑल एक बड़ा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कि डेमोक्रेटिक जो पूरा हमारा फ्रेमवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर किस तरह से अब खतरा मंडरा रहा है। तो टीएमसी के जरिए एक तरफ टीएमसी को समर्थन, ममता बनर्जी को समर्थन, और दूसरे तरफ जो उनका लार्जर नैरेटिव है राहुल गांधी का, वोट चोरी से लेकर पार्टी चोरी, उस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश राहुल गांधी यहाँ फिलहाल करते हुए दिख रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने भी हमला किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, समाजवादी
3: जी,
5: पार्टी की तरफ से।
3: अमित, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त बिहार बीजेपी अध्यक्ष पहुंच गए हैं पंचायत आज तक में, सीधा वहीं का रुख करते हैं।

0: संतुष्ट आवेदकों से उन्होंने जो है सुनवाई प्रारंभ की। उसके बाद आज शिक्षा के क्षेत्र में आप ले प्रत्येक प्रखंड में सरस्वती विद्या निकेतन प्रारंभ हुआ है और उसमें व्यवस्था की गई है कि जो बच्चे को उसमें रात्रि के 11 बजे 12 बजे भी अगर वो पढ़ाई कर रहा है, उसको कुछ समस्या है, तो एक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन वो आ सकते, सीधे शिक्षक आएंगे, एआई के वाले शिक्षक नहीं, लाइव शिक्षक आएंगे और उनकी समस्या का निदान 12 बजे रात्रि में भी करेंगे। 221 प्रखंडों में, जिस प्रखंड में हमारे डिग्री कॉलेज नहीं है, उस 221 के 221 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले गए और डिग्री कॉलेज ही नहीं खोले गए, वहां पढ़ाई चालू हो गई, शिक्षक की बहाली हुई है और इतनी त्वरित गति से शिक्षकों की बहाली हो जाना ये भी अपने आप में सुशासन स्थापित करने के समान है। उसके बाद
1: तो ये
0: विद्यार्थियों के लिए अलग पोर्टल, अगर विद्यार्थियों के कॉलेज के विद्यार्थियों को कोई समस्या है तो विद्यार्थी पोर्टल हम लोगों ने प्रारंभ किया है, उस विद्यार्थी पोर्टल में कॉलेज से कोई समस्या है, विद्यार्थियों को छात्रावास से लेकर किसी तरह की समस्या, जो कैंपस में वो घूमते फिरते थे उनका नोटिस लेने वाला कोई नहीं था, आज विद्यार्थी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए अलग से पोर्टल और भी कई तरह के काम, शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने 13 ग्रीन फील्ड सिटी बनाने का निर्णय किया, उसका नाम किसी का दरभंगा में खुला है, मिथिला, हरिहरनाथ, पाटलिपुत्रा, अंग, ऐसे जो 13 हम लोगों ने ग्रीन फील्ड सिटी बनाने का निर्णय किया है। और आप लेंगे अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास आंकड़े भी है, पिछले दिनों गृह सचिव और डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था,
1: जो भी छुट्टी पर भेजे गए हैं,
0: नहीं उनके कुछ व्यक्तिगत समस्या होगी, छुट्टी पर आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता
1: हूं, भेजे गए हैं कि चले गए,
0: लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही एकमात्र है जो 25 साल में एक दिन भी छुट्टी पर नहीं गए, और जिस दिन उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ था पूरा देश देख रहा था।
1: नहीं आप मेरे
0: नहीं, आपने छुट्टी की बात की तो मैं छुट्टी की चर्चा नहीं,
1: पहले मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए,
0: मैं बोल रहा हूँ पहले आपको,
1: मैं पहले मैं आपका
0: जी, आप जी बताएं।
1: देखिए बीजेपी के नेताओं का एक अच्छा रहता है, उनके पास पूरी लिस्ट तैयार होती है और वो एक के बाद एक जो आंकड़े बताना शुरू
0: करते हैं, काम तभी आंकड़े रहते हैं, फर्जी आंकड़े तो हमारे पास रहते नहीं है ना, हम तो धरातल पर काम करते हैं।
1: आप जरा ये पांडवों का मुझे ये समझा दीजिएगा, क्योंकि देखिए कैसा हो रहा है ना कि युधिष्ठिर कहता है कि हम यूसीसी लागू करना चाहते हैं और भीम अर्जुन नकुल सहदेव कहते हैं कि भाई यूसीसी के लिए तो हम तैयारी नहीं है, ये कैसे हो रहा है कि भाई युधिष्ठिर तो कह रहे हैं कि हमको तो यूसीसी चाहिए और बिहार के भीतर यूसीसी को लेकर भीम अर्जुन नकुल सहदेव तो तैयार नहीं
0: है। देखिए यूसीसी को हम लोगों ने पार्लियामेंट में पास किया,
1: हाँ
0: किया ना, और पांचों पांडव एक साथ थे कि नहीं थे, थे ना,
1: तो बिहार में आकर क्यों बदल जाते हैं?
0: अभी 29 तक करना,
1: मतलब हस्तिनापुर में अलग और इंद्रप्रस्थ में अलग,
0: ऐसा नहीं है 29 तक करना है, जहां भी एनडीए शासित या भाजपा शासित राज्य है, अभी समय है, चिंता मत करिए। जैसे हम लोगों ने पांचों पांडव ने मिलकर पार्लियामेंट में पास किया, आपस में बात करेंगे, आप कितना भी फंसाएंगे तो हम लोग फंसने वाले नहीं है, आपस में बात करेंगे। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा,
1: समस्या क्या है उनकी?
0: नहीं आप समझिए,
1: क्या समस्या क्या है?
0: आप समझिए, जो भी आज धारा 370 समाप्त किया हम लोगों ने, कभी कल्पना किए थे क्या कि धारा 370, मैं भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा था और श्रीनगर में झंडोत्तोलन करने के लिए कितनी पिटाई या कितनी बार जेल हम लोग गए थे, हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था। और जिस दिन मैं भी टीवी पर था, आप भी टीवी पर था, पूरे देश टीवी पर था, कुछ बड़ा होने वाला है ये हम लोगों को पता था, लेकिन धारा 370 समाप्त आज होने वाली है ये किसी को पता नहीं था। जब टीवी में हम लोगों ने देखा, जब हम लोग नारा लगाते थे कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपनी देश अपनी माटी, और धारा 370 समाप्त किया, ऐसे ही लोग कहते थे धारा 370 देश से समाप्त नहीं हो सकती, 370 समाप्त हुआ, 500 साल का राम मंदिर का मामला चल रहा था, ऐसे ही लोग कहते थे राम मंदिर के मामले पर एनडीए एकजुट नहीं रहेगी, साथ में नहीं रहेगी, सब लोग प्राण प्रतिष्ठा में थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद वहां,
1: तो अदालत से फैसला हो गया ना, उसके बाद तो फिर
0: वो भी हो
1: जाना ही पड़ेगा,
0: जो आप सोच रहे हैं
1: यूसीसी तो पॉलिटिकल फैसला होगा,
0: बोल रहा हूं ना,
1: तो बिहार विधानसभा में आपको यूसीसी पारित कराना होगा,
0: भाई साहब का टेप फंसा हुआ है,
1: लॉ कमीशन को लेकर आपको
0: ऐसे ही कहा जाता था यूसीसी कैसे पार्लियामेंट में पास होगा, अपीलों कहते थे ना, हो ही नहीं सकता। पूरा डिबेट, लंबी लंबी डिबेट चलते थे यूसीसी पर, पार्लियामेंट में पास हो गया और कई राज्य में लगभग लगभग एक आधे राज्य में पास भी हो गया। पास होने की प्रक्रिया में भी आप जान रहे हैं सब चीज। और 21 राज्यों में हम लोग बैठ के बात करेंगे और बात ही नहीं करेंगे। मैंने जब कहा कि पांच पांडव एकजुट हैं तो पांचों पांडव मिलकर सब काम करेंगे, जो सुशासन से लेकर रोजगार से लेकर समृद्धि से लेकर।
1: यानी जेडीयू, जेडीयू में श्याम रजक या बाकी नेता जो चाहे वो कहे, यूसीसी बिहार में आकर रहेगा। आप ये कहने की कोशिश,
0: मैं जो कोशिश कर रहा हूँ आप समझिए, जिस तरह पार्लियामेंट में पास हुआ, हम लोग बैठेंगे ना।
1: नहीं तो आप बता, हम लोग बैठेंगे तो कुछ भी हो जाए बिहार में, यूसीसी आकर
0: जब बैठेंगे ना तो हम लोग बात करेंगे ना। इतनी चिंता ज्यादा
1: आप थोड़ा सा,
0: मैं कह रहा हूँ ना आपको, पार्लियामेंट में भी आप लोग ऐसे ही डिबेट चल रहा था कि नहीं,
1: ठीक,
0: घंटों घंटों डिबेट। अरे तीन चौथाई बहुमत नहीं है, सीधा बहुमत नहीं है, यूसीसी पास नहीं होगा, धारा 370 नहीं होगा, तीन तलाक पास नहीं होगा, सब हो रहा है। और वार्ता से जब बातचीत होती है तो सबका समाधान निकलता है।
1: सरावगी जी, क्या है
0: इसमें भी बातचीत से समाधान निकलेगा, चिंता मत करें।
1: नहीं, ये बहुत बड़ा अलग अप्रोच है कि बिहार के भीतर बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि बातचीत से हम समाधान निकालेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि ये असर जो है वो बाकीपुर का असर है, अगर बाकीपुर नहीं होता तो शायद बातचीत से रास्ता निकालने की नौबत ही नहीं आती, जो कहेंगे वो हो जाता।
0: देखिए,
1: ये असर है बाकीपुर का असर तो नहीं है।
0: देखिए, तीन चौथाई बहुमत एनडीए को यहां है और एनडीए मिलकर जो भी आम जन के हित में हो या विचारधारा का मामला हो या नीतिगत निर्णय हो, हम लोग मिलकर करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने पार्लियामेंट में पास किया, उसी तरह मैं पुनः बोलता हूं, आप पांच बार पूछेंगे तो मेरा जवाब यही होगा, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, शंका का समाधान करेंगे और फिर निर्णय करेंगे।
1: कहा जाता है बीजेपी का समझाने का तरीका अलग होता है।
0: नहीं, मैंने कहा ना, फिर आप, मेरा जवाब वही है, मेरा फिर रिपीट वही है, मेरा आप कितनी बार भी पूछेंगे,
1: ठीक है।
0: तो आज देश में, आज विश्व में 7.8 आज देश का जीडीपी है और बिहार का जीएसडीपी 13.9% है। कभी कल्पना था, कभी कल्पना कर सकते थे? इंग्लैंड लें, जर्मनी लें, यूके लें, यूएस लें, आप जिस देश का चाइना तक उल्टा के देख लीजिए, पूरे देश का, पूरे विश्व का एवरेज कितना है? 3%। और हिंदुस्तान का 7.58% अकेले। और बिहार की आप चर्चा कर रहे हैं, तमिलनाडु के बाद बड़े राज्यों में बिहार सबसे ज्यादा है।
1: तो उसका बेस भी तो कम था ना, तो उसके बाद जो भी ग्रोथ होगी तो वो बहुत ज्यादा दिखेगी। नीतीश कुमार भी क्लेम करते थे कि भाई हम 11% की ग्रोथ पर है, गुजरात का कहां हमारे।
0: मैंने कहा ना, तमिलनाडु के बाद,
1: तो उनका पहले भी दावा उस तरीके से रहा है ना, मैंने जब कंपैरिजन किया जाता था गुजरात का और बिहार का, तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हुए वही दावा करते थे। लेकिन मुझे आपको बांकीपुर पर लेकर आना है क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसका मैंने जिक्र किया। बांकीपुर कितना चुभा है आपको अंदर एज अ पार्टी प्रेसिडेंट?
0: हम लोगों ने वहां हारी है, ईमानदारी से हम लोगों ने हार स्वीकार किया है।
1: कारण आपने उसके, कारण की कुछ मीमांसा की होगी,
0: हम लोगों ने समीक्षा भी की है।
1: क्या निकला उसमें?
0: नैरेटिव, गलत नैरेटिव सेट करके जिस तरह आम जनता को बरगलाया गया, गलत नैरेटिव सेट करके, और भी कई मामले हैं तो आगे। और
1: तीन चार कारण बताइए ना कि आपने कुछ
0: आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे पूरा बिहार ही हम हार गए। भाई, एक विधानसभा, तीन चौथाई बहुमत में एक विधानसभा हम हारे, हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं हारे, कौन नहीं स्वीकार करेगा? और जो लोग बड़ी बड़ी बात करते थे उनका तो जमानत जब्त हो गया।
1: ये तो ऐसा।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स, जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं,
6: या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
11: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
13: Senco se mera nata saalon purana hai. Ye mere liye bas ek brand nahi hai.
14: Ye hai ek legacy. Mere shaadi ke ek kangan Senco se hi liye the.
15: Kyunki aisi barik karigari aur kahan?
16: Isi liye Senco India ka amongst most trusted jewelry brand as nominated by the TRA.
17: Ab main kya hi bolu?
18: Parivar, atoot bharosa.
19: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
20: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
21: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
22: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
23: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपिवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
22: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
24: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
25: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
24: स्मॉल बैंक?
25: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज RDF, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
24: ओके।
25: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
26: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक, 18 सितंबर सिर्फ आज तक पर।
27: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
28: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
29: सोच बदलो और बैंक भी।
30: In association with
31: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
32: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक YouTube.
33: There is a very famous quote ki history repeat itself.
34: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
35: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
34: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं। 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम।
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जी जाते।
0: तो भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
1: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
3: हाँ बिल्कुल है। हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा हैं।
1: क्या बात कर रहे हैं।
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
1: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स,
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: विधानसभा का चुनाव घोषणा होने के पहले हमने कह रखा है कि 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी के अंदर उपलब्ध करवाएंगे।
4: जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वादों और घोषणाओं की रफ्तार भी जोर पकड़ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए दिन बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, कभी कैबिनेट में लिए गए फैसलों के जरिए तो कभी सार्वजनिक मंच से। यानी कि यूपी में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ सरकार की ओर से ऐलान पर ऐलान हो रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी भी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। संगठन स्तर पर रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और इस हफ्ते उनकी कई मंथन बैठक है। 17 और 18 सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में तावड़े सीधे जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने वाले हैं। चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर होगी। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ आरएसएस भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। यूपी चुनाव में भी संघ एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रहा है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सह सरकारीवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। बीजेपी की चुनावी कामयाबी में उसकी तैयारियों का बड़ा रोल रहा है और इस बार भी यूपी में वो तैयारियों को अभी से देख रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: टीएमसी इनाम और निशान को फ्रीज करने पर बंगाल से दिल्ली तक भूचाल, उपचुनाव में सिंबल पर रोक से भड़की ममता का कड़ा विरोध, राहुल बोले ये पार्टी चोरी का पुराना पैटर्न है।
1: ड्रग्स पर घिरे भगवंत मान के राज में अब कानून व्यवस्था पर भी सवाल, अमृतसर में एएसआई की हत्या से हड़कंप, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पठानकोट से कर रहे हैं नशा मुक्त अभियान का आगाज।
0: जेएनसी आंदोलन के बाद डीयू में हो रहा है छात्रों के मूड का पहला टेस्ट, 200 चुनाव में डाले जा रहे हैं वोट, यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा बेहद सख्त, कल आएंगे नतीजे।
1: आईफोन 18 प्रो की भारत में बिक्री शुरू, दिल्ली मुंबई से बेंगलुरु तक उमड़े दीवाने, एप्पल स्टोर के बाहर रात से ही कतारें, पहली बार फोल्डेबल आईफोन की एंट्री।
0: पंचायत आज तक बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा बोले बदलते बिहार का दम देख रहा है पूरा देश, बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी बोले यूसीसी पर सब साथ हैं, आज दिन भर दिग्गजों का जवाब रहा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथ।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं शतक आज तक के साथ। बिहार में सजा आज तक पंचायत का महामंच। पहले सेशन में कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने अपने अभी तक की राजनीतिक यात्रा से लेकर कई मुद्दों पर की बात। अपने काम और विभाग के बारे में बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा, जो भी विभाग मिला मैंने अपना बेस्ट दिया। पंचायत आज तक में कृषि मंत्री विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा सरकार जेडीयू बीजेपी नहीं थी, सरकार एनडीए की है, बदलाव की शुरुआत बिहार से हुई। कल से यूपी में 1,00,000 सरकारी नौकरियों के महाअभियान की शुरुआत। लखनऊ में सीएम योगी चयनित अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। अगले 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य। शिक्षक भर्ती के बाद पुलिस और राजस्व विभाग में भी भर्तियों की तैयारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पंजाब दौरे से पहले बड़ा बयान, बोले वहां की राजनीतिक पार्टियों ने भी सत्ता पाने के लिए नशे का विषय उठाया और सत्ता पाने के बाद उसे अपना उद्योग समझा। बीजेपी के नशा मुक्त अभियान पर भी नितिन नवीन ने दी प्रतिक्रिया, कहा हम इस यात्रा के माध्यम से नशे के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का आंदोलन खड़ा करेंगे। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा समाजवादी के पास न कोई दृष्टिकोण है और न विश्वसनीय नेतृत्व, बीजेपी की हैट्रिक तय। अमृतसर में एएसआई की गोली मारकर हत्या, भगवंत मान सरकार ने किया 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने भी बयान दिया, कहा दुख की इस घड़ी में पंजाब पुलिस उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी।
2: बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतुव्रत गुट को झटका, चुनाव आयोग ने टीएमसी के सिंबल और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक। आयोग के निर्देशों के मुताबिक दोनों गुटों को आज सुबह 11 बजे तक अपनी अपनी पसंद के 3 नाम और फ्री सिंबल सूची से 3 चुनाव चिन्हों के विकल्प सौंपने होंगे। टीएमसी के चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद के बीच ऋतुव्रत बैनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले को लेकर प्रतिक्रिया दी, कहा यह आदेश अस्थायी है, भविष्य में निकलेगा समाधान। ऋतुव्रत ने कहा राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम नहीं कर सकता और लोकतंत्र में फांसीवाद के लिए कोई जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और एजी नगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव, दोनों ही गुटों को नए नाम और नए चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा। 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ी राजनीतिक मुहिम शुरू की, बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्राएं नशे की समस्या को उजागर करेंगी, नितिन नवीन आज दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी ने पंजाब में नशे की समस्या के लिए पंजाब सरकार को दोषी ठहराया, बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष ने कहा कि यह पंजाब का दर्द है और आप सरकार ड्रग्स के मुद्दे पर फेल रही है। बीजेपी के आरोप पर आपका पलटवार, का यह पंजाब को बदनाम करने की कोशिश है। पंजाब ड्रग्स मामले पर आपका बीजेपी पर पलटवार, कहा 2007 से 2017 के बीच ड्रग्स से प्रभावित परिवारों को भी सामने लाए बीजेपी, तब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी। युवा कांग्रेस का मेरी डिग्री क्या, राष्ट्रीय अभियान शुरू, केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे युवा कांग्रेस नेता।
1: युवा कांग्रेस ने मांग की है कि देश भर के सभी रिक्त सरकारी पदों को भरा जाए, साथ ही पीएम आवास को घेरने की भी चेतावनी दी है। निर्मला सीतारमण आज दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात करेंगी, फाइनेंसिंग से जुड़ी चुनौतियों और पॉलिसी की प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। यूपीआई चार्ज को लेकर विवाद जारी है, हालांकि सरकार के एक अधिकारी का दावा है कि पैनल में शामिल कांग्रेस सांसदों ने इस फैसले को मंजूरी दी थी। टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन, बोर्ड सदस्यों ने पक्ष में किया वोट, तीसरी बार 5 साल के लिए बड़ा कार्यकाल। मेहसाणा में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर बाल बाल बचा, बड़नगर के पास गुंजा में उड़ान से पहले आई तकनीकी खराबी। कांग्रेस ने चुनाव चिन्ह को फ्रीज किए जाने पर चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो बीजेपी के हाथों की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं। जेपीसी की पहली बैठक आज दोपहर 2:30 बजे होगी। एमएचए संसदीय पैनल को बिल में प्रस्तावित बदलावों के बारे में जानकारी देगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी, डे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए वोटिंग का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। इवनिंग शिफ्ट के छात्रों के लिए वोटिंग दोपहर 3 बजे से शुरू होगी और शाम 7:30 बजे तक जारी रहेगी। नतीजे कल आएंगे। दिल्ली
2: बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपीआई पेमेंट चार्जेस पर केंद्र सरकार के फैसले पर टिप्पणी की, कहा इसके जेब तो आम आदमी की ही कटेगी। एनटी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की फाइनल आंसर शीट जारी की। उम्मीदवार अपनी फाइनल आंसर शीट को एनटी के आधिकारिक वेबसाइट पर मिलान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर डीजीपी ने कुपवाड़ा में 2 आतंकियों अब्दुल मजीद कुरैशी और परवेज अहमद कुरैशी की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दे दिया है। आज भारत को मिलेगी आसमान की त्रिशक्ति, एचएल सौंपेगा तेजस ट्रेनर, HTT-40 और ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर। पवन हंस लिमिटेड के बेड़े में शामिल हुआ ध्रुव एनजी सिविल हेलीकॉप्टर। बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री रहेंगे मौजूद। सूरत के मैदरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर सजा भव्य गणेश पंडाल, 25 से 30 किलो सोना चांदी से हुआ बाप्पा का श्रृंगार, 2 लाख अमेरिकन डायमंड्स हैं जड़ित। मैदरपुरा का गणपति पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, नक्काशी देती है मैसूर पैलेस की असली झलक, बाप्पा के मुकुट बाजूबंद और हार की कारीगरी बेहद आकर्षक। भिलाई में भव्य गणपति पंडाल बना आकर्षण, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है पंडाल, अनोखी थीम लोगों को कर रही आकर्षित। गणपति की भक्ति में लगा तिरुवनंतपुरम पंजाब अंगड़ी महागणपति मंदिर में गणेशोत्सव समारोह। मुंबई में इजराइल के कौंसल जनरल यानिव रेवाश ने लाल बाग चौराहा के किए दर्शन, बप्पा का लिया आशीर्वाद।
1: तिरुपति में रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन पर हाई वोल्टेज ड्रामा, ट्रेन के ऊपर चढ़कर सनकी युवक ने लगाई दौड़, बाल बाल टला बड़ा हादसा। हरियाणा के मशहूर सिंगर दिलेर खरकिया की गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, बाल बाल बची सिंगर की जान। फायरिंग करने की जिम्मेदारी पोस्ट डालकर अनिल पंडित ने ली, दोबारा जान से मारने की धमकी भी दी। अमृतसर में पुलिस चौकी के पास युवक की गोली मारकर हत्या, एक्टिवा सवार 2 हमलावर वारदात के बाद फरार। कानपुर में सड़क पर नशे में धुत पड़े व्यक्ति से अमानवीय व्यवहार, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के अलवर में इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग मची, अफरा तफरी, आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। गोपालगंज में शराब तस्करों के अनोखा कारनामा सामने आया, एक गाड़ी के बॉडी इंजन और टायर में बना दिया तहखाना, पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। नवसारी में कांग्रेस ने विधायक अनंत पटेल की अगुवाई में महंगाई के खिलाफ अनोखा विरोध किया, 40 रुपए किलो के दाम से बेची चीनी। चित्रकूट में मात्र 30 रुपए के विवाद में खूनी खेल, युवक की पीठ में मारा चाकू, बीच बचाव करने आया था ये युवक। तरनतारन में नशा तस्करी और हथियारों के खिलाफ कार्रवाई, सीआईए टीम ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 4 आधुनिक पिस्टल भी बरामद।
2: नोएडा में फिनटेक कंपनी का सर्वर हैक, 2,42,00,000 रुपए का फ्रॉड, 497 ट्रांजेक्शन में 58 खातों में भेजी गई रकम। सतना में 4 सहेलियों ने छात्रा की बेरहमी से मारपीट की, वीडियो हुआ वायरल। उधम सिंह नगर में महिला की आग लगाने का लाइव वीडियो आया सामने, प्रेम प्रसंग मामले को लेकर परेशान थी महिला, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गया में प्रेमिका को शादी के लिए मनाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। ग्रेटर नोएडा में रोड रेज का खौफनाक मामला, नशे में धुत कार सवारों ने बाइक चालक को टक्कर मारने के बाद मारपीट भी की। पश्चिम बंगाल कैलिमपोंग में दर्दनाक हादसा, बारबेक्यू पर डिनर के दौरान अचानक आग लगने से 9 विवाहिता झुलसी। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन सड़क पर दसी कार करीब 1 घंटे तक फंसी रही, गाड़ी क्रेन से निकाला गया। दमन में शराब पीकर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, 3 घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद सुरक्षित नीचे उतारा गया। आउट नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने गैंग रेप और नाबालिग महिला की हत्या के आरोप में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के चक्रधरपुर में युवक ने घर में घुसकर की युवती की हत्या, 4थी मंजिल पर धारदार हथियार से वार करके गला काट डाला।
1: मथुरा में दर्दनाक हादसा, बोरिंग करने के दौरान 11,000 की लाइन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई, 11,000 वोल्ट की लाइन। भोपाल के चार नामी फूड ठिकानों पर छापा, कहीं कॉकरोच तो कहीं सड़ा गला खाना मिला। 20 किलो सड़ा प्याज मौके पर कराया गया नष्ट। पटना के हॉस्टल में बीए की छात्रा का फंदे से लटका हुआ संदिग्ध अवस्था में मिला शव, पुलिस छानबीन में जुटी। आगरा में ताजमहल के पास एक रिजॉर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप। बम डिस्पोजल स्क्वाड के खोज के दौरान नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान। सोनीपत में नाबालिग 6 साल की बच्ची की हत्या के बाद हंगामा, अंतिम संस्कार से परिवार का इनकार। पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट परिवार ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की। भारत में आज से एप्पल आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की पहली सेल शुरू। देर रात से ही स्टोर के बाहर लंबी लाइनें। आईफोन के शौकीनों में हर उम्र के लोग शामिल। दिल्ली से लेकर मुंबई और बेंगलुरु में सुबह एप्पल स्टोर्स खुलते ही ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा। आईफोन स्टोर्स के कर्मचारियों ने तालियां बजाकर ग्राहकों का किया स्वागत। दिल्ली ही नहीं, एनसीआर के दूसरे इलाकों में भी आईफोन का गजब का क्रेज। नोएडा में भी नए आईफोन की बिक्री पर एप्पल स्टोर में जश्न जैसा माहौल। मुंबई में जियो वर्ल्ड ड्राइव एप्पल स्टोर पर भी सुबह से ही ग्राहकों की भीड़, लोग मॉल के बाहर अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार। बेंगलुरु के मॉल ऑफ एशिया में भी देखने को मिली नई आईफोन की दीवानगी। भीड़ को संभालने के लिए एप्पल स्टोर ने भी किए थे खास इंतजाम।
2: तीसरे T20 में अफगानिस्तान को 127 रन से भारत ने हराया। टीम इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर सीरीज अपने नाम की। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद बजरा शतक, 34 गेंद में 108 रन की तूफानी पारी खेली। अभिषेक ने 9 चौके 11 छक्के लगाए। संजू सैमसन ने खेली धमाकेदार अर्धशतक की पारी, बनाए शानदार 50 रन। अभिषेक संजू ने खेली 142 रन की ओपनिंग साझेदारी। भारत ने जीत के लिए 222 रन का लक्ष्य दिया। अफगानिस्तान की पूरी टीम 15वें ओवर में महज 94 रन पर सिमट गई। नीतीश रेड्डी और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट झड़के। अक्षर पटेल को मिली 2 सफलता, जसप्रीत बुमराह और यश ठाकुर को 1-1 विकेट। अमेरिकी विदेश विभाग ने सऊदी अरब के साथ $24.3 बिलियन के F-35 लड़ाकू विमान सौदे को दी मंजूरी। सऊदी अरब ने रखी थी 48 F-35 खरीदने की मांग। हाल के हमलों में सऊदी अरब में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के 3 पंपिंग स्टेशन हुए तबाह। सऊदी अरब को करती है 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का संचालन। चीन ने ईरान से हुतियों पर लगाम कसने में मांगी मदद। ईरान समर्थित हुतियों के हमले के बाद सऊदी अरब की चीन से अपील के बाद फैसला। यमन की सेना ने ताइज और मोखा में हुती ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। पश्चिमी यमन में हुती विद्रोहियों की सऊदी अरब की सेना ने जारी किया भीषण जंग। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारियों का वीजा किया मंजूर। दोनों देशों के बीच जारी जंग के बीच फैसला।
1: यूएन दल ने ईरान में 2 अमेरिकी सैन्य हमलों में युद्ध अपराध की मानी बात। फरवरी में ईरान के एक स्कूल और खेल परिसर पर हुए थे अमेरिकी हमले। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अलग फिलिस्तीनी राष्ट्र का किया विरोध, जंग जारी रखने की जताई इच्छा। अगले हफ्ते अमेरिका दौरे पर जाएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोलैंड में अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित करने में तेजी की बात कही। अमेरिकी सैन्य अड्डे की जगह का जल्द होगा ऐलान। नाइजीरिया में हिरासत के लिए में लिए गए 33 लोगों की मौत। अवैध खनन के आरोप में हिरासत में लिए गए थे 33 संदिग्ध। इलाके में महामारी की जताई गई आशंका।

0: रात से ही भारत में आईफोन 18 सीरीज के फोन की बिक्री शुरू हो चुकी है। नए आईफोन की दिल्ली में देर रात लोग लंबी लाइंस में नजर आए। दिल्ली के साकेत सेलेक्ट सिटी मॉल में एप्पल स्टोर के बाहर रात भर ग्राहकों की लंबी कतार लगी रही। जिन लोगों ने आईफोन के लिए एडवांस बुकिंग की है वो लाइन में लगे हैं। जिनको बुकिंग नहीं है वो भी लाइन में लगे हुए हैं कि शायद आईफोन का नया वर्जन मिल जाए।
1: सिर्फ दिल्ली नहीं, मुंबई बेंगलुरु से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। लोग रात से ही लाइनों में लग गए हैं।
2: iPhone 18 Pro आज लॉन्च हो रहा है और देश भर में जो iPhone कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। लोग प्री बुकिंग करा के दिल्ली के अलग अलग स्टोर्स में जहां iPhone 18 Pro अवेलेबल है वहां पहुंच रहे हैं। हमारे साथ समीर हैं। समीर, कितना एक्साइटमेंट है और कब प्री बुकिंग करा लेते हैं आप?
3: प्री बुकिंग लास्ट वीक करा था, लास्ट सैटरडे मैंने कराया था, आई थिंक 9th को ही करवा दिया था। और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर। That's it.
2: मैं देख रहा हूँ दो फोन आप लेके आए हैं।
3: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊंगा।
2: कितने फोन लेने की तैयारी है?
3: दो फोन लेने।
2: तो एक खुद के लिए, दूसरा
3: डॉटर के लिए।
2: डॉटर कितनी बड़ी है अभी?
3: डॉटर 8 ईयर्स की।
2: 8 ईयर्स की बेटी के लिए आप एक अलग से फोन लेके जा रहे हैं, क्या वो भी आईफोन फैन है?
3: उसे पसंद है आईफोन बेसिकली, क्योंकि मेरा लेकर के घूमती है तो मैं सोच रहा हूँ एक उनको दे दूं, गिफ्ट कर दूं इसलिए।
2: ओके, और आप?
4: मैं भी आईफोन के लिए ही आया हूँ, देखते हैं। अमित
2: तो कितना एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत जगह से पिक्चर्स आ रही हैं कि लोग लाइनों में खड़े हैं। आप आराम से आए, अपना टाइम पे 8 बजे स्टोर खुला और फोन लेने के लिए पहुंचे।
4: हाँ, प्री बुकिंग ऑलरेडी कर रखी थी तो ऐसा अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, देखते हैं।
2: क्या वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से फर्स्ट डे फर्स्ट फोन लेने का ये रहता है?
4: फीचर्स एज इन मतलब, हाँ, पहले से टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं और जो आईफोन यूजर है वो तो खैर हर साल एक नए अपग्रेड के लिए जाते ही हैं, तो ये बेसिकली एक तरह का मतलब अपने अंदर एक वो होता है कि हम चलो नया एडवांस उसके लिए जाएं, बस यही है।
2: पिछली बार भी आप फर्स्ट कस्टमर्स में ही थे जब लिया था?
4: नहीं, पिछली बार मैं नहीं था, ये थे मगर।
3: मैं रहता हूँ फर्स्ट कस्टमर। ठीक है,
2: हर बार जब आएगा नया वेरियंट तो आप?
3: मैं रहता हूँ, मैं फर्स्ट लेता हूँ, स्टार्टिंग से ही लेता हूँ, फर्स्ट डे वाला बुकिंग पहले से करके रखता हूँ। इवन जबकि मेरा फ्रेंड अभी यूएस से आ रहा है, उसने बोला 1.61 का मिल जाएगा। मैं कहा भाई मैं यहाँ से लूंगा, यूएस से आने में टाइम लगेगा मुझे।
2: महंगा पड़े लेकिन पहले दिन चाहिए।
3: हाँ, कुछ कह सकते हैं आप, थोड़ा क्रेज या पसंद है इसलिए मैं लेता हूँ।
1: हर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: यार लोन भूल गया मैडी।
9: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना,
10: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
8: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
10: small working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
11: There's nothing small about it.
12: Ujjivan, nothing small about us.
13: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
14: GK Max.
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: GK Max. Best पुट्टी?
16: JK Wall Max.
14: Best paint?
17: JK Max.
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
19: जेके मैक्स पेंट्स।
18: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
4: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
1: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
18: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU,
3: सोच बदलो और बैंक भी।
16: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
17: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
16: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: इन एसोसिएशन वे हिंट, एक हिंट तो देते।
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबां केसरी।
4: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक, 18 सितंबर सिर्फ आज तक पर।
5: There is a very famous quote ki history repeat itself.
6: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
7: कुछ left और right wing के लोग history को अलग अलग interpret करते हैं सर, उससे सर social harmony और peace में कुछ दिक्कतें आती हैं देश में।
6: देखो दुनिया में एक subject है इतिहास जिसको किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है, जैसे औरंगजेब, वो बेचारा कबर में कितना करवट बदलता होगा इधर उधर, सुबह से शाम तक इस देश में लोग उसको याद करते हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU सोच बदलो और बैंक भी।
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
5: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते,
6: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
5: विमल बोलो जुबां केसरी।
7: राजस्थान में टूरिज्म का भले ही ऑफ सीजन चल रहा, लेकिन फिर भी वहां रिजॉर्ट और होटल फुल। राजस्थान के पार्षद स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं, तो कहीं परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए सबको रिजॉर्ट में बुला ले रहे हैं। देर रात तक गीत संगीत की महफिल चल रही है। नाली पानी सड़क बिजली के लिए संघर्ष कर रही जनता को पसीने पसीने छोड़कर पुष्कर के रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में मजे कर रहे हैं। ये ब्यावर के कांग्रेस के पार्षद। 9 सितंबर को वोटिंग के बाद से ही इन्हें रिजॉर्ट में बंद कर दिया गया है। दौसा के महुआ नगर पालिका में जीते ये बीजेपी के पार्षद, जो जयपुर के जामवारागढ़ में रिजॉर्ट में महुआ के विधायक राजेंद्र मीणा की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में शरीक हो रहे हैं। इस पार्टी में आशीर्वाद देने बाड़ेबंदी में ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आए। राजस्थान के 309 निकाय चुनाव में से बीजेपी को 85 निकाय में बहुमत मिला है, तो कांग्रेस को 45 निकाय में स्पष्ट बहुमत मिला है। बाकी 5 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 122 नगर पालिकाओं में चाबी निर्दलियों के हाथ में है। 34 निकायों में तो निर्दलियों ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में पार्टी नेताओं को डर था कि कहीं जीतने वाले पार्षदों पर दूसरे दलों की नजर ना पड़ जाए और बोर्ड बनाने के समय कोई खेला ना हो जाए। इसी आशंका के चलते प्रत्याशियों को अलग अलग होटलों में ठहराया गया। मतदान के बाद पार्षद अपने वार्ड में जनता के बीच कम और होटल की चारदीवारी में ज्यादा नजर आए। सबसे ज्यादा खतरा अजमेर के कांग्रेस के पार्षदों को, जिन्हें 4 दिनों में 4 होटल बदलने पड़े और आखिर में इन्हें कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के बेंगलुरु में ले जाना पड़ा। अजमेर के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमारे पार्षदों को तोड़ने में लगी है। होटलों में पार्षदों की आवभगत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लजीज पकवान खिलाए जा रहे हैं, मौज मस्ती का भी पूरा इंतजाम है ताकि वफादारी निभाने के समय ये भाग न जाए। जयपुर में तो बीजेपी ने बहुमत मिलने के बाद भी पार्षदों को 30 किलोमीटर दूर बगलू के होटल में बंद कर रखा है। गेट पर ताला बंद है। किसी की पत्नी प्रसाद लेकर पहुंच रही है, तो किसी का बेटा दवाई लेकर आ रहा है।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं। 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम।
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जी जाते
1: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कह जाएंगे।
3: हाँ ताऊ एथेनॉल।

0: इतनी लूट, इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा।
1: आज यूपी कर्फ्यू मुक्त है, दंगा मुक्त है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है,
0: पूरा उत्तर प्रदेश भरा पड़ा है हत्याओं से और कहीं न्याय नहीं मिल रहा है।
2: यूपी में म्यान से तलवारें निकल चुकी हैं, हमलों की बौछार शुरू हो गई है, रणनीति फाइनल हो रही है, मोर्चाबंदी तेज हो गई है। यूपी में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ सरकार की ओर से ऐलान पर ऐलान हो रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी भी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। यूपी में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और इस हफ्ते उनकी कई मंथन बैठक है। 18 सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में। तावड़े सीधे जमीनी स्तर का फीडबैक ले रहे हैं, चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर हो रही है। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ आरएसएस भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। यूपी में लगातार बीजेपी और आरएसएस के पदाधिकारियों की मुलाकात हो रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी हार गई तो ये कहा गया कि आरएसएस की तरफ से हाथ खींच लिया गया था, लेकिन इस बार आरएसएस और बीजेपी कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं रखना चाहती। आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सहकार्यवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। खबर है कि समन्वय बैठक में आरएसएस ने बीजेपी को 2027 चुनाव की वो बड़ी चुनौतियां बता दी हैं जिनसे बीजेपी को पार पाना है। आरएसएस की तरफ से बीजेपी के लिए यूपी में 5 चैलेंज बताए गए हैं। पहला है यूजीसी गाइडलाइन से सामान्य वर्ग का आक्रोश, दूसरा है पेपर लीक पर सरकार के खिलाफ बना माहौल, तीसरा है रोजगार और शिक्षा, चौथा है निचले स्तर का भ्रष्टाचार और पांचवा है कार्यकर्ताओं की सुनवाई ना होना। यानी बीजेपी ने अगर इन मुद्दों पर काम कर लिया तो आरएसएस को लगता है कि वो 2027 फिर से जीत जाएंगे। ये वो मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द लगातार अखिलेश यादव हमला करते रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, पेपर लीक हो, अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला हो, अखिलेश यादव ने इन्हें लगातार मुद्दा बनाया हुआ है।
0: राजधानी में हो रही हत्या और जिस हत्या के बारे में आप कह रहे हो वो थाने से कितनी दूर हुई हत्या, और लखनऊ राजधानी में थाने के सामने हत्या हो गई। और देखिए क्या षड्यंत्र तो साजिश करते हैं कि थाने ने खुद ही तय कर लिया, इनाम अपना इनाम ले लिया। और गोरखपुर में तो इतनी हत्याएं हुई जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। गोरखपुर में हर दिन हत्या हो रही है कोई ना कोई। पूरा उत्तर प्रदेश भरा पड़ा है हत्याओं से और कहीं न्याय नहीं मिल रहा है।
1: आज यूपी कर्फ्यू मुक्त है, दंगा मुक्त है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अपराधी या तो जेल में है या दूसरे लोक की यात्रा में जा चुका है। अब वह खुलेआम किसी को धमकी नहीं दे सकता, किसी का अपहरण नहीं कर सकता, किसी बेटी को जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से फिरौती नहीं वसूल सकता। हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा की गारंटी है। हर पर्व और त्योहार को बेहतरीन वातावरण में करने की गारंटी है।
2: आरएसएस की तरफ से बीजेपी को कहा गया है कि वो विपक्ष के नैरेटिव में ना फंसे, अपने मुद्दों और सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने के लिए जोर लगाएं, विपक्ष के मुद्दों का सटीक और तथ्यात्मक तरीके से जवाब देने पर जोर लगाएं। ये भी डर है कि विपक्ष जातिवाद का मुद्दा बनाएगा तो कहा गया है कि इससे भी बचना है। कुल मिलाकर बीजेपी को कहा गया है कि वो विपक्ष के नैरेटिव में उलझने के बजाय अपने मुद्दों और लक्ष्यों पर फोकस करें। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: बिहार के उत्तर प्रदेश चुनाव में संघ और बीजेपी का समन्वय देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। कौन से वो सुझाव हैं, जो चुनौतियां हैं जो संघ ने बताई हैं, जिसमें निचले स्तर का भ्रष्टाचार शामिल है? इसके अलावा ये जो मेगा तैयारी चल रही है, इसमें संघ ने कार्यकर्ताओं की सुनवाई ना होना, ये भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर बताया है। यूजीसी गाइडलाइंस पर सामान्य वर्ग का आक्रोश भी एक चुनौती है। इसके साथ ही पेपर लीक पर सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। रोजगार और शिक्षा हमेशा की तरह एक बड़ा और अहम मुद्दा।
1: तो हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आशीष, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर खासतौर पर गौर करने की जरूरत रहेगी योगी सरकार के लिए, और क्या वाकई में आरएसएस और बीजेपी का आप समन्वय वहां बैठता हुआ नजर आ रहा है?
2: बिल्कुल, देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात है 2027 के पहले की ये बड़ी बैठक है, जिसमें आरएसएस के जो कार्यवाहक है अरुण कुमार, इसके अलावा कह सकते हैं बीएल संतोष जो महामंत्री है, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय आरएसएस के नेता है, फिर चाहे श्रीराम हो कानपुर के और लखनऊ के कौशल किशोर, सभी ने बड़ी बैठक की। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया कि जो मिसकंसेप्शन जो अपोजिशन फैला रहा है यूजीसी को लेकर, उसको कार्यकर्ताओं को जाकर जनता के बीच में दूर करना है। और जिस तरीके से पेपर लीक की बात कही जा रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के लिए एक बड़ा कानून बना है और साथ ही साथ बड़ी कार्रवाइयां हुई है, तो उसको जाकर भी जनता के बीच में उस कंसेप्शन को दूर करना है, क्योंकि 2027 में ये नैरेटिव जो भ्रम फैला रहा है ओपोजिशन, उसमें कहीं ना कहीं खरा उतरना है और उसी भ्रम को दूर करना है। क्योंकि नैरेटिव जो है वो, चाहे वो पेपर लीक का हो, यूजीसी का लेकर हो, या इसके अलावा कहा जा रहा है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, लेकिन सभी मुद्दों पर बीजेपी का और साथ ही साथ संघ का, दोनों का एक साथ खड़े होना, ये जरूर दिखाता है कि 2027 की जो तैयारी है वो अपने आप में एक बहुत मजबूत तैयारी है।
0: आपको इस बीच अगली खबर का रुख करना होगा। टीएमसी चुनाव चिन्ह विवाद पर ईसीआई के पास दोनों गुटों ने चिट्ठी भेजी है। ममता बैनर्जी गुट ने कल रात ही चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। सूत्रों के मुताबिक ऋतुव्रत बैनर्जी गुट ने डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस और नेशनल तृणमूल कांग्रेस के दो नाम चुनाव आयोग को सुझाए। इस गुट ने आज सुबह चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी। चुनाव आयोग दोनों गुटों के लिए सिंबल और नाम पर आज फैसला ले सकता है।
1: तो आपको बता दें कि 11 बजे तक का वक्त दिया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा दोनों गुटों को, कि आप अपने अपने मर्जी के नाम और साथ में सिंबल जो फ्री लिस्ट में शामिल है उन्हें चुनकर सुझावों को हमें बताएं, और दोनों गुटों की तरफ से ऐसा कर दिया गया है। और हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ऐश्वर्या, कुछ पता चल रहा है कि क्या क्या सुझाव दिए हैं, नाम क्या सुझाए दोनों गुटों की तरफ से, और टीएमसी का विरोध था, क्या उन्होंने नाम दिए?
3: देखिए, दोनों ही गुटों को नाम देने थे। मैं आपको बता दूं अंजलि जल्दी से कि आखिरकार प्रक्रिया होती क्या है। कल चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया था कि जो सिंबल है टीएमसी का उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि अभी उसके ऊपर कार्रवाई होने में थोड़ा सा समय है, लेकिन क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, तो दोनों ही गुटों ने अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। अब दोनों गुटों ने एक सूची दी है चुनाव आयोग को। फ्री सिंबल्स वो सिंबल्स होते हैं जो किसी भी पार्टी के पास नहीं होते। जब इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है तो चुनाव आयोग वो लिस्ट फ्री सिंबल्स की जो गुट होते हैं उनको देता है और उनको कहता है कि इसमें से अब आप डिसाइड करें कि नाम आप क्या रखेंगे, और इस ये जो लिस्ट आपको दी गई है इसी में से आप डिसाइड करें कि सिंबल जो है वो आप कौन सा चुनेंगे। तो हर पार्टी जो है अपना एक नाम चुनती है और अपना एक सिंबल चुनती है। दोनों पार्टियों ने अपने चुने हुए नाम और अपने चुने हुए सिंबल चुनाव आयोग को दे दिए हैं। लगता है अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर चुनाव आयोग का फैसला आ जाएगा, लेकिन इसके बाद जो लड़ाई लड़ी जाएगी, जब एक बार उपचुनाव खत्म हो जाएगा, इसके बाद असली लड़ाई लड़ी जाएगी कि आखिरकार टीएमसी का नाम और जो टीएमसी का सिंबल था वो किसके पास होगा। वो लंबी प्रक्रिया होती है, दोनों गुटों को कहा जाएगा कि आप अपने सारे दस्तावेज दीजिए और उसके बाद लगभग 3 से 4 महीने के बाद टीएमसी के नाम पर और सिंबल पर फाइनल मोहर इलेक्शन कमीशन लगाएगा। लेकिन उपचुनाव जो आने वाले हैं उनके लिए 1 से 1.5 घंटे के अंदर चुनाव आयोग का फैसला आ जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि कौन सा जो गुट है उसको कौन सा सिंबल और कौन सा नाम दिया गया है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और उधर बीजेपी ने पंजाब चुनाव के लिए अपनी रणनीति तय कर ली है। बाकी मुद्दों के अलावा बीजेपी इस बार भगवान मान सरकार की नशे के सवाल पर सख्त घेराबंदी करेगी। बीजेपी आज से नशा मुक्त पंजाब की यात्रा शुरू करने जा रही है।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज से इस यात्रा का आगाज कर रहे हैं, जबकि अमित शाह खुद इस यात्रा का समापन करेंगे। ये यात्रा पंजाब की सभी 117 सीटों से गुजरेगी और 4000 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी।
4: भारतीय जनता पार्टी
5: आज तो साल पहला मेरी कितने सुनवाई नहीं हुई कितने मेरी मेरे भी दो सेट के गए
6: पंजाब में बीजेपी का मिशन 2027 अब की बार नशे पर चुनावी प्रहार 117 सीटों पर बीजेपी की मेगा यात्रा 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा से मोर्चा बंदी इन तैयारियों को गौर से देखिएगा। ये पंजाब में बीजेपी की चुनावी आगाज की तैयारी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन एक ऐसी यात्रा का शंखनाद करने वाले हैं जो बीजेपी का पंजाब में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है।
7: पंजाब में नशा एक बड़ा मुद्दा है और 2027 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी आज नशे के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन लॉन्च कर रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल चीफ हैं नितिन नवीन, वो यहां पठानकोट से जो एंटी ड्रग यात्रा है, नशा मुक्त पंजाब यात्रा जो है उसको लॉन्च करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। और ये जो यात्रा है 4000 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करेगी, पूरे पंजाब में जाएगी, नशा पीड़ित परिवारों के पास भी जाएगी, ड्रग अवेयरनेस फैलाएगी। और 30 सितंबर को ये जो यात्रा है वो खत्म होगी जालंधर में, जहां यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी पहुंचेंगे। सो 2027 के इलेक्शन से पहले नशा एक बार फोकस में है।
6: क्या है बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा, पहले इसे समझिए। मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि नशे के मुद्दे पर पंजाब की मान सरकार के खिलाफ बीजेपी की बड़ी मोर्चाबंदी है। बीजेपी ने पंजाब की सभी 117 सीटों पर यात्रा निकालने की तैयारी की है। ये यात्रा 18 से 30 सितंबर तक यानी 12 दिनों तक चलेगी। 12 दिनों में ये यात्रा करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय करेगी।
8: ये दर्द वो आ जेड़ा दर्द ना झल्या जावे ना सहा जावे, ये दर्द जेड़ा घर घर पंजाब दे विच अज पहुंचिया। मेरिया भैन, मेरिया मावं, मेरे वीर, जे तुसी खब्बे पासे देखो इत्थे ये सारे बेचारिया, इन्हां दे किसे दा पुत, किसे दा घर आला, ये सारे बेचारे नशे दी भेट चढ़े हुए।
6: बीजेपी ने नशा मुक्त पंजाब यात्रा को धारदार बनाने के लिए इस यात्रा में अपने दिग्गजों को उतारने का फैसला किया है। 18 सितंबर यानी आज नितिन नवीन पठानकोट से यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। 19 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, 20 सितंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, 21 सितंबर को केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी इस यात्रा में शामिल होंगे। 30 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जालंधर में रैली कर यात्रा का समापन करेंगे। जाहिर है बीजेपी ने इस यात्रा में पूरी ताकत झोंक दी है। इन 12 दिनों में बीजेपी के तमाम नेता पूरे पंजाब में घूम घूम कर नशा मुक्ति पर मान सरकार की नाकामियां बताकर चोट करेंगे। साथ ही अगर बीजेपी सत्ता में आई तो नशा मुक्ति की दिशा में क्या कदम उठाएगी बीजेपी, ये भी बताएंगे। असीम बस्सी, पठानकोट आज तक।
1: और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।

एक ऐसा जहाज जो बेहद विशाल है, जो सबमरीन ड्रोन से लैस है और जो बेहद घातक है। जब समंदर की गहराई में क्रू के कमांड वाली पनडुब्बियों को जवाब देने के लिए चीन की बड़ी तैयारी चल रही है, चीन एक अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप बना रहा है। ऐसा अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप जो घातक हथियारों वाले 4 सबमरीन से लैस होगा। ऐसे सबमरीन जो पूरी तरह से अनमैंड होंगे, स्वचालित होंगे, उन सभी को अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप से चीन समंदर में लड़ाई के दौरान इस्तेमाल कर सकेगा। ऐसे समय में जब युद्ध के दौरान ड्रोन का दमखम पूरी दुनिया ने माना है, बगैर सैनिकों की जान गवाए जमीनी और आसमानी लड़ाई में दुश्मन देश को तबाह करने के लिए ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब समंदर की लड़ाई के लिए चीन ड्रोन के घातक इस्तेमाल की तैयारी को अंजाम देने में जुटा है। चीन की समंदर वाली इस बड़ी तैयारी की सच्चाई तब सामने आई जब अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस कंपनी वेंटोर ने एक तस्वीर जारी की। ये तस्वीर है हुडोंग जोंगहुआ शिपयार्ड की, जहां एक लाल जहाज बनते हुए दिख रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा यही लाल जहाज चीन का अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप बताया जा रहा है। ये दुनिया का पहला अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप है। अब तक किसी भी देश को ऐसी कामयाबी नहीं मिली है। डिफेंस एक्सपर्ट चीन के अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप को लेकर हैरान है। उनका अनुमान है कि ये बिना क्रू वाले जहाज हजारों मील तक हथियार ले जा सकते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज अनक्रूड अंडरसी व्हीकल कहा जा रहा है। तमाम देशों की पारंपरिक पनडुब्बियों से हटकर है ये चीन की अनमैन्ड सबमरीन्स। सोचिए, जिस दौर में दुनिया के तमाम बड़े देश क्रू वाली सबमरीन से अपनी सामरिक ताकत पर इतराते हैं, उस दौर में अब चीन का ये नया दांव दुनिया को हैरान करने वाला है। अब आपको बताते हैं कि चीन के अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप की क्या क्या खासियत है। इस जहाज की लंबाई करीब 205 मीटर और चौड़ाई 27 मीटर है। इसके पिछले हिस्से में करीब 55 मीटर लंबा और 13 मीटर चौड़ा वेट वेल है, जिसके जरिए ऑटोनॉमस सबमरीन समंदर में उतर सकेंगी। वेट वेल के आगे बंद हैंगर है, जहां 4 अनमैंड सबमरीन रखी जा सकती है। अनमैंड सबमरीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ड्रोन के अंदर क्रू के लिए जगह लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की जरूरत नहीं। शंघाई के इस शिपयार्ड में चीन इससे पहले विशालकाय युद्धपोत बना चुका है, जो जमीन और पानी दोनों पर आक्रमण कर सकते हैं। अब अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप बनाने वाला चीन पहला देश बन गया है। चीन की इस तैयारी का खुलासा पहली बार पिछले साल जनवरी में ही हो गया था। बड़ी खबर यह है कि चीन ने साउथ चाइना सी के हैनान द्वीप के तट पर मानव रहित पनडुब्बियों का परीक्षण भी कर लिया है, यानी पनडुब्बियां तैयार हैं और अब बस उन्हें विशाल जहाज के अंदरूनी हैंगर में फिट करना बाकी है। जानकार कह रहे हैं कि कोई भी इंसान और कितनी भी बड़ी रिसर्च इस तरह की ड्रोन मदरशिप की कल्पना नहीं कर सकती। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

तीन दिनों से तबाही मची है, सरकार सफाई देकर परेशान है, पीआईबी ने बताया, वित्त मंत्रालय ने बताया, एनपीसीआई ने कई बार बताया, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले फैक्स दे रहे हैं, दर्जनों डिबेट्स हो गई, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। पहले विरोध किया, फिर विदेशी दबाव बनाया, फिर नियम वापसी की मांग की और अब मनमाने फैसले का आरोप पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार ने अमेरिकी दबाव में फैसला लिया, और गौरव गोगोई कहते हैं कि जब संसदीय समिति की बैठक हुई तो वित्त मंत्रालय के पास यूपीआई पर टैक्स के कोई ठोस प्रस्ताव नहीं थे। मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर की जरूरत पर सवाल पूछा गया लेकिन जवाब नहीं थे। ये गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं और अपने दल के बाकी पांच और सांसदों के साथ वित्त विभाग के संसदीय मामलों की समिति के सदस्य हैं। इस समिति की 32वीं रिपोर्ट के पेज नंबर 23 पर साफ लिखा है कि बिना एमडीआर के यूपीआई चलना मुश्किल है। पेज नंबर 78 पर लिखा है कि यूपीआई के लिए अपना रेवेन्यू मॉडल तैयार करना होगा, और 12 मार्च को ये रिपोर्ट उस समिति ने दी थी जिसमें कांग्रेस की ओर से पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी, किशोरी लाल और के गोपीनाथ, ये सभी सांसद उस कमेटी के सदस्य हैं जिनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने आदेश निकाला है। और रिपोर्ट में खुद स्टैंडिंग कमेटी ने माना था कि सरकारी इंसेंटिव डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की लागत का सिर्फ 11% ही कवर करते हैं। ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड का पता लगाना, सेटलमेंट, KYC और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार फंडिंग की जरूरत होती है। तो ये आरोप सच नहीं कि कांग्रेस की जानकारी मंजूरी के बिना 0.4% MDR लागू हुआ। इसके बाद जब लोकसभा में 6 अगस्त 2026 को टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल पर चर्चा हो रही थी तो विपक्षी सांसद शोर मचा रहे थे, ध्वनि मत से बिल पारित हुआ था। इसी तरह 10 अगस्त को भी बिल पर चर्चा के समय विपक्षी आसन के सामने शोर मचा रहे थे और बिल पारित हो गया था। और तभी जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि ये संशोधन बिल US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की 2026 की रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें UPI और रुपए के मुफ्त होने की आलोचना की गई है और उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अमेरिकी पेमेंट प्लेटफॉर्म को बाहर कर दिया है। जयराम रमेश ने सवाल उठाए थे कि क्या ट्रंप के दबाव में UPI को कमजोर करना चाहते हैं और डिजिटल पेमेंट सेक्टर को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना चाहते हैं। अमेरिका की USTR की पेज नंबर 272 पर कहा गया था कि NPCI के रुख से अमेरिकी कंपनियों को बराबरी का मौका नहीं मिल रहा। अमेरिका ने थर्ड पार्टी एप्स को UPI सिस्टम में 30% के कैप का विरोध किया था। हालांकि 30% का कैप अभी तक लागू नहीं किया गया। हाल ये है कि अमेरिका की वॉलमार्ट वाला फोन पे और गूगल वाला गूगल पे भारत की 80% से अधिक UPI पेमेंट मार्केट पर कब्जा कर चुकी है। हालांकि इसमें से कुछ चार्ज वो बैंक भी वसूलेंगे जिनके खाते से पेमेंट हो रहे हैं, और भी अनुमान के मुताबिक 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का सालाना फायदा गूगल पे फोन पे को हो सकता है, और ऐसा ही फायदा पेटीएम जैसी भारतीय पेमेंट ऐप्स को भी हो सकता है। सरकार ये भी दलील देती है कि इन देसी ऐप्स को चलाने के लिए सरकारी सब्सिडी का रेवेन्यू मॉडल नहीं चल सकता, क्योंकि पिछले साल फोन पे का सालाना खर्च 9,394 करोड़ रुपए था जिसमें सर्वर और डेटा सेंटर्स पर 2,800 करोड़ रुपए, बैंकों और गेटवे को 1,688 करोड़ रुपए, बाकी सॉफ्टवेयर, क्लाउड, क्लाइंट सपोर्ट सब मिलाकर 500 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। और ये तब था जब एक तिहाई मार्केट पर फोन पे का कब्जा है। अमेरिका के सामने चुनौती बनी हुई है कि अगर भारत में थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स पर 30% का कैप लग गया तो भारतीय बाजार पर उनका एकाधिकार सीमित हो सकता है, और तब वॉलमार्ट और गूगल जैसी कंपनियों का मुनाफा भी एक तिहाई तक सिमट सकता है। इसके साथ ही पेटीएम जैसी भारत की देसी थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स को सर्वाइवल का बड़ा मौका मिल सकता है, क्योंकि अब 0.4% MDR लागू होने का फायदा उन्हें भी मिलेगा। आज तक देखो।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं। 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम।
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जी जाते।
1: ताओ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कह जाएंगे।
3: हाँ ताओ एथेनॉल फूफा है।
4: हाँ बिल्कुल है। हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
3: क्या बात कर रहे हैं।
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
3: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

टीएमसी के नाम और निशान को फीस करने पर बंगाल से दिल्ली तक भूचाल। उपचुनाव में सिंबल पर रोक से भड़की ममता का कड़ा विरोध। राहुल बोले ये पार्टी चोरी का पुराना पैटर्न। ड्रग्स पर घिरे भगवंत मान के राज में अब कानून व्यवस्था पर भी सवाल। अमृतसर में एएसआई की हत्या से हड़कंप। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पठानकोट से कर रहे हैं नशा मुक्त अभियान का आगाज। जेंजी आंदोलन के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है छात्रों के मूड का पहला टेस्ट। डूसू चुनाव में डाले जा रहे हैं वोट। यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा बेहद सख्त। कल आएंगे नतीजे। iPhone 18 Pro की भारत में बिक्री शुरू। दिल्ली मुंबई से बेंगलुरु तक उमड़े दीवाने। एप्पल स्टोर के बाहर रात से ही कतारें। पहली बार फोल्डेबल आईफोन की एंट्री। और पंचायत आज तक बिहार में बोले कृषि मंत्री विजय सिन्हा। बदलते बिहार का दम देख रहा है पूरा देश। बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी बोले यूसीसी पर सब साथ हैं। आज दिन भर दिग्गजों का जमावड़ा।

0: तृणमूल कांग्रेस का सिंबल फ्रीज किए जाने के बाद अब पार्टी के दोनों गुटों ने चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंप दिया है। चुनाव आयोग ने ममता गुट और बागी गुट से नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर तीन तीन विकल्प मांगे थे, जिस पर दोनों पक्षों ने अपना जवाब दे दिया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद चुनाव आयोग ने एक दिन पहले टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था, जिसके बाद 6 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दोनों ही पक्षों के टीएमसी के नाम और चिन्ह का इस्तेमाल पर अब रोक लग गई थी। अब चुनाव आयोग के दिए जवाब के बाद दोनों पक्षों को नया नाम और सिंबल मिलने की उम्मीद है। चुनाव आयोग को जो जवाब दिया गया है, अब उसके बाद दोनों पक्षों को नया नाम और सिंबल मिलने की उम्मीद है। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, दोनों पक्षों को सिंबल और नाम मिलने की उम्मीद यहां पर है, क्योंकि जवाब इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया गया है। अब इस पूरे मामले में नया अपडेट क्या है?
1: देखिए, 11 बजे का समय दिया गया था आज सुबह, जब तक दोनों ही गुटों को जवाब देना था। कल जो इंटरिम ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने दिया था, जिसमें कांग्रेस का सिंबल और पार्टी के नाम पर फ्रीज लगा दिया गया था, आपको याद होगा, अक्टूबर के 6 तारीख को रेजीनगर और नंदीग्राम, ये दो जगह पे उपचुनाव है और उसकी तैयारियां पुरजोर से इस वक्त चल रही है, और कल नॉमिनेशन विदड्रॉ करने का लास्ट डे है। यही कारण है कि इतने जल्दी इलेक्शन कमीशन ने समय दिया था कि इतने जल्दी दोनों ही गुटों को अपना जो सिद्धांत है वो बताना पड़ेगा कि अल्टरनेटिव कौन सा सिंबल और क्या नाम के साथ वो इस उपचुनाव में लड़ना चाहते हैं। दोनों ही खेमे ने इलेक्शन कमीशन को अपना जवाब दे दिया है और हम ये आशा रख सकते हैं कि कुछ देर में आज इलेक्शन कमीशन अपना फाइनल जो असेसमेंट है वो बता देगा कि ममता बनर्जी कौन से सिंबल और नाम के साथ ये उपचुनाव लड़ सकती है और बागी खेमा वो कौन से सिंबल के साथ इस चुनाव में लड़ेंगे।
0: ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब नया सिंबल और नया नाम भी दिया जा सकता है, इसको लेकर और क्या जानकारी आपके पास आ पा रही है, अब आगे क्या?
2: देखिए बाकी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि प्रक्रिया ये होती है कि जब भी उपचुनाव आने वाला होता है और इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी एक पार्टी के अंदर गुट बने होते हैं, तो जब उपचुनाव आता है तो फिर आप उस सिंबल के ऊपर तो दोनों गुट अपने कैंडिडेट उतारेंगे नहीं जो कि विवादित है। तो ये देखना होता है चुनाव आयोग को कि आखिरकार जो फ्री सिंबल्स होते हैं, एक लिस्ट होती है चुनाव आयोग के पास, फ्री सिंबल्स वो सिंबल्स होते हैं जो किसी भी पार्टी को नहीं दिए गए होते हैं। ये जो लिस्ट है ये दोनों गुटों को कल दे दी गई थी और उनको कहा गया था कि अब आप चुनिए कि कौन सा नाम और कौन से सिंबल के साथ आप ये उपचुनाव लड़ना चाहते हैं, और दोनों गुटों ने ही अपना अपना जो प्रेफरेंस है वो चुनाव आयोग को बता दिया है, जो हमें समझ में आता है अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर चुनाव आयोग का ऑर्डर आ जाएगा। और जल्दी से हिमांशु ये भी बता दूं, ये जो सिंबल है ये सिर्फ और सिर्फ इस उपचुनाव के लिए ही चुनाव आयोग जो है दोनों गुटों को देगा। जो फाइनल लड़ाई है कि आखिरकार तृणमूल कांग्रेस का जो नाम है वो किस गुट के पास रहेगा, उसकी लड़ाई अभी बाकी बची हुई है। उसकी लड़ाई एक बार ये उपचुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद लड़ी जाएगी जब चुनाव आयोग दोनों गुटों को,
0: मतलब वो लंबी प्रोसेस है। शुक्रिया इंद्रजीत, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐश्वर्या, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। देखिए, रिद्बर बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी कंपनी की तरह काम नहीं कर सकती है।
3: कि जमहूरियत के अंदर कोई तानाशाही का कोई जगह नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पवने, ये जो नैरेटिव चल रहा था ना, ये सिंबल को लेकर, नाम को लेकर, इलेक्शन कमीशन का जो आज का इंटरिम ऑर्डर है इससे साबित है, जाहिर है कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
0: तृणमूल कांग्रेस का नाम निशान फ्रीज करने के फैसले पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने से मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से पीएम मोदी को दिया देर रात का बर्थडे गिफ्ट बताया है। यह केसी वेणुगोपाल की तरफ से कांग्रेस महासचिव की तरफ से निशाना साधा गया कि सीसी ज्ञानेश कुमार का मोदी जी को दिया गया देर रात का जन्मदिन का तोहफा है। जो लोग ममता बनर्जी के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ लड़े थे, उन्हें अब ईसीआई की मदद से उनके खिलाफ बगावत करने और दल बदल कर संवैधानिक पाप करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।
4: एनसीपी के साथ हुआ, शिवसेना के साथ हुआ, अब टीएमसी के साथ हो रहा है। पार्टी चुराव अभियान देश के अंदर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन एक खिलौने की तरह इस्तेमाल हो रहा है। पार्टियों, ये लोकतंत्र के लिए तो बहुत घातक है, लोकतंत्र के लिए ये अच्छी चीज नहीं है।
0: और 12 बजे 12 रिपोर्ट में अब अगली जो रिपोर्ट है वो दिल्ली से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। 4 पदों पर हो रहे चुनाव के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। नतीजे कल आएंगे। अब इस बार चुनाव छात्र सुरक्षा, हॉस्टल, वाईफाई, कैंपस सुविधाएं और चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा जैसे मुद्दों की वजह से भी चर्चा में है। साथ ही दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला चुनाव है। ऐसे में इस चुनाव पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। डीयू छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, कल नतीजे आएंगे।
5: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों की वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 2 पाली के अंदर ये पूरा चुनाव होगा। लगभग 1.5 लाख के आसपास छात्र जो है वो इस बार वोट डालेंगे। मुकाबला दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर NSUI और इसके अलावा AVAP के साथ FSAI भी इस बार कड़े मुकाबले में जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं इस बार अगर बात की जाए तो 1.5 लाख छात्रों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से खास तैयारियां जो है वो की गई हैं। 158 बूथ जो है वो तैयार किए गए हैं, 68 ऑब्जर्वर जो है वो लगाए गए हैं और 12 कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 2000 पुलिसकर्मी भी जो है वो तैनात किए गए हैं, जो कि पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई भी घटना जो है वो ना हो। सरकार और प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चुनाव है, क्योंकि बेहद खास मायनों में जो है माना जाता है, पिछले कई दिनों से जिस तरीके से जेंजिस का प्रोटेस्ट देखा गया, प्रधानमंत्री का श्रीराम कॉलेज के अंदर आकर के लेक्चर देना हो या उनकी बात रखनी हो, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम जो छात्रों के मुद्दे हैं, चाहे वो सत्यनिकेतन का मामला हो, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको देखते हुए इस बार छात्र जो है वो अपना वोट देते हुए नजर आ रहे हैं।
0: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली जो रिपोर्ट है वो लखनऊ से है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए RSS और BJP के बीच समन्वय बैठकें शुरू हो चुकी हैं। अब खबर है कि RSS ने BJP को वो 5 चुनौतियां बता दी हैं जो चुनावों में सबसे बड़ी होंगी। पूरी खबर बता रहे हैं लखनऊ से संवाददाता कुमार अभिषेक।
6: 2027 चुनाव के लिए बीजेपी और संघ दोनों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। एक दिन पहले लखनऊ कानपुर रोड पर एक रिजॉर्ट में बाकायदा संघ और बीजेपी संगठन की समन्वय बैठक होती है। अरुण कुमार और साथ साथ BL संतोष इस बैठक में हिस्सा लेते हैं। संघ के तमाम वो पदाधिकारी जो लखनऊ और कानपुर, खासकर अवध और कानपुर क्षेत्र के हैं, ऐसे तमाम RSS के पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होते हैं, जबकि बीजेपी संगठन के सभी बड़े नेता, चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, धर्मपाल सिंह, ऐसे तमाम नेता शामिल होते हैं। और कई सेशन की इस बैठक में जमीनी स्तर पर नैरेटिव बनाने, साथ साथ जो नेगेटिव चीजें इस वक्त सरकार को लेकर और बीजेपी को लेकर चल रही हैं, उसके काउंटर की क्या स्ट्रेटजी होगी, इस पर यह पूरी चर्चा केंद्रित रही है।
0: अब 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब जो बात होगी वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मिशन की, पंजाब की। नितिन नवीन आज पठानकोट से नशा मुक्त पंजाब यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पठानकोट से निकलकर पूरे पंजाब में 4000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जालंधर में 30 सितंबर को खत्म होगी। 4000 किलोमीटर का सफर है।
7: पंजाब में नशा एक बड़ा मुद्दा है और 2027 के इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी नशे के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन लॉन्च कर रही है। जी हां, आज पठानकोट से भारतीय जनता पार्टी के नेशनल चीफ नितिन नवीन जो है वो एक नशा मुक्त पंजाब यात्रा को फ्लैग ऑफ करेंगे। ये यात्रा जो है 4000 किलोमीटर पंजाब में ट्रेवल करेगी और 30 सितंबर को जालंधर में जो है वो खत्म होगी। वहां पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी आएंगे। एक यात्रा आज पठानकोट से शुरू होगी, कल एक यात्रा जो है वो फतेहगढ़ साहब से होगी, अगले दिन फाजिलका से, और उसके बाद बठिंडा, तलवंडी, साबो से शुरू होगी। और ये यात्रा पूरे पंजाब में जाएगी, नशे के खिलाफ अवेयरनेस करेगी और जो नशा पीड़ित परिवार हैं उनके घरों में भी जाएगी। सो 2027 के इलेक्शन से पहले जो ड्रग एक बड़ा इशू पंजाब में बना है और भारतीय जनता पार्टी नशे के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन लॉन्च कर रही है।
0: नशा मुक्त पंजाब यात्रा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं।
8: वहां के राजनीतिक दलों ने भी जिस प्रकार से केवल सत्ता पाने के लिए इस नशे का विषय को उठाया और सत्ता पाने के बाद उसको अपना उद्योग समझ लिया, अपना व्यवसाय का केंद्र बना दिया और सत्ता के संरक्षण में ये जो चीजें चलती रही, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ आंदोलन में उतर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अगस्त को जिस प्रकार से नशा के खिलाफ पूरा जन आंदोलन पूरे देश में छेड़ा है, पंजाब भारतीय जनता पार्टी भी नशे के खिलाफ यात्रा के माध्यम से उन परिवारजनों को लेकर जिन्होंने अपने को खोया है, जिन्होंने इस पीड़ा और दर्द को समझा है, उनके साथ इस यात्रा में हम सब निकलेंगे और इस यात्रा के माध्यम से पंजाब के लोगों के साथ मिलकर इस नशे के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का आंदोलन खड़ा करेंगे।
0: देखिए, चुनावी राज्य में हर मुद्दे पर सियासत होती है। आम आदमी पार्टी ने नितिन नवीन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पर निशाना साधा। चंडीगढ़ में कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
9: देखिए, मैं आज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज जो लोग अपोजिशन में बैठकर पंजाब में नशे के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं नशे के खिलाफ। 2007 से लेकर 2017 के बीच जिस पार्टी ने पंजाब में नशे का कारोबार किया, जिसके मंत्री, जिसके नेता नशे की तस्करी करवाते थे अपनी अपनी गाड़ियों में रख के, वो पार्टी आज कह रही है कि पंजाब को नशे से मुक्त कराना है, किस मुंह से कह रही है।
0: और 12 बजे 12 रिपोर्टर मंगली रिपोर्ट पंजाब के अमृतसर से। अमृतसर के गेट हकीमा में एएसआई हरजीत सिंह की हत्या से सनसनी फैल गई। हरजीत सिंह को रात 2:30 बजे 3 गोलियां मारी गई। तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हरजीत की हत्या ऐसे समय पर हुई जब वो ड्यूटी पर तैनात थे। पंजाब के सीमावर्ती इलाके में 6 महीने के भीतर किसी पुलिसकर्मी की ये तीसरी हत्या है।
10: पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के निशाने में हैं पंजाब के पुलिसकर्मी। पिछले कुछ समय में एएसआई हरजीत सिंह को टारगेट बनाया गया, उसे गोलियों से भून दिया गया और उसकी मौके पे ही हत्या हो गई। उसके बाद सीनियर उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से एक पैटर्न नजर आ रहा है बॉर्डर के इलाके पे, जहां पे अमृतसर गुरदासपुर बेल्ट में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब पिछले कुछ समय में आप बात करें, एएसआई जोगा सिंह, एएसआई जगजीत सिंह, इन सबको टारगेट किया गया और अब एएसआई हरजीत सिंह को। पिछले एक हफ्ते में अगर हम बात करें घटनाक्रम के हिसाब से, अगर बात करें तो एएसआई को टारगेट किया गया और जसवंत सिंह खुद पहुंचे मोटरसाइकिल चला के, बाल बाल बचे। इसी बीच में आपको बता दें कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे ग्रेनेड अटैक्स किए गए हैं, पुलिस स्टेशन को टारगेट बनाया गया है और कानून व्यवस्था पे कई सवालिया निशान अब विपक्षी पार्टियां लगातार उठा रही हैं। उसी बीच में इस तरह की और घटना होना, आपको याद होगा कि गुरदासपुर में भी डबल मर्डर केस हुआ था, वो भी पीआईओ और उस समय तहरीक तालिबान हिंदुस्तान नाम से आया था और खासतौर पर शहजाद भट्टी का लिंक भी उभरा था।
0: और अब बात लगता हूं हिट एंड रन केस की। केस में कई खुलासे हुए और पूरी खबर आपको बता रहे हैं आशीष श्रीवास्तव। देखिए, लखनऊ में आपको याद होगा वो तस्वीर सामने आई थी जब एक गाड़ी से एक लड़की को टक्कर मारने की कोशिश की जा रही थी। लड़की गाड़ी को रोकती है, फिर ये पता चलता है कि शाह नवाज नाम का एक शख्स होता है जो खुद को यश ठाकुर बताता है और युवती से प्रेम करता है, उसको अपने जाल में फंसाता है। हालांकि अब कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं और लव जिहाद से भी इस पूरे मामले को जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट आपके सामने।
11: राजधानी लखनऊ के हिट एंड रन केस मामले में पीड़िता ने आज तक तो कई खुलासे किए हैं। साफ तौर पर बताया है कि उसने किस तरीके से आरोपी ने शहनवाज ने शीशे में का हाथ बंद करके उसको कुचलने की कोशिश की और हत्या की कोशिश की। यह भी खुलासा किया है कि उसने अपना नाम आयुष ठाकुर बताया था और उसके बाद इंस्टाग्राम आईडी जब चेक होती है तब पता चलता है कि उसका असली नाम शहनवाज है। इसके अलावा उसने यह भी बताया कि कई हिंदू लड़कियां उसके संपर्क में हैं, यानी कि पीड़िता ने खुलासा किया है कैमरे पे और इन सभी बातों का जिक्र किया है। खुलासा करते हुए उसने राजनीतिक पार्टियों से संबंध बताया है और यह भी बताया कि कुछ भी नहीं हो सकता है उसका, बेल के बाद छूट जाएगा। यही नहीं, शहनवाज आरोपी के साथ उसके मददगार की भी कहीं ना कहीं खुलासा किया है और ये भी कहा है कि जिस तरीके से और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उसकी मदद कर रहे हैं।
0: अब देखिए, इस पूरे मामले में कुछ वीडियो हैं जो वायरल हो रहे हैं और उनको लेकर अब पीड़ित भी सामने आई है और पीड़ित की तरफ से भी ये कहा गया है कि इनका पूरा एक गैंग था जो लड़कियों को फंसाता था। सुनिए पीड़ित को।
12: अब ये नहीं बताया था कि मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं कहीं भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ, अपनी कसम। इन्होंने ये नहीं बताया था कि मैं लखनऊ से हूँ, इन्होंने ये बताया था मैं आजमगढ़ से हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ, आयुष नाम बताया था। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो हम बात करते रहे, नॉर्मल हमारी मिलना जुलना होने लगा। ठीक है, बात होती रही। उसके कुछ टाइम बाद मुझे ये पता चला, वो भी इन्होंने बताया था मैंने इनका इंस्टाग्राम चेक किया था, तब उस पर दूसरा नाम आया।
0: अब वो खबर जिससे आपको सावधान भी रहना चाहिए, सवाल भी खड़े करना चाहिए, यह खबर आपको विचलित कर सकती है। देश के कई शहरों में आतंक का नाम बन चुका पिटबुल एक बार फिर चर्चा में है। दिल्ली के करीब सोनीपत में पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के मासूम पर हमला बोल दिया। 6 महीना का मासूम जो गोद में था। लोग पिटबुल के चंगुल से उस मासूम को छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पिटबुल बार बार मासूम बच्चे पर हमला करता रहा। इस हमले में बच्चा बहुत गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। देखिए बच्चे की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। आप सोचिए कि 6 महीने का मासूम बच्चा जो गोद में है उस पर पिटबुल कुत्ता हमला कर देता है। कई लोग स्टेटस सिंबल के लिए इन कुत्तों को रखते हैं, लेकिन उसके बाद आप सोचिए कि खामियाजा किस किस को भुगतना पड़ता है। अंशुल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंशुल की रिपोर्ट एक आपको दिखाते हैं।
13: सोनीपत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बार फिर पालतू पिटबुल का आतंक देखने को मिला है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब 6 महीने का छोटा शिशु अपनी एक रिश्तेदार के साथ बाहर आया और तभी पीछे से एक पिटबुल दौड़ता हुआ आता है और उस पर अटैक करता है। अटैक इतना भीषण था कि उसे बहुत गंभीर चोटें आती हैं और जब उसे बचाने लोग भी आसपास आते हैं तो उन पर भी वो पिटबुल अटैक करता है, जिसके बाद जब उसे आसपास के अस्पताल में ले जाया गया तो वहां से उसे PGI रोहतक रेफर कर दिया गया क्योंकि हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। इस वक्त की भी बात करें तो इस वक्त भी नन्हे शिशु की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब बताई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब आसपास के जिलों में पिटबुल जैसे वाइल्ड डॉग्स को रखना पूरी तरीके से बैन है तो सोनीपत में अभी तक ये नियम है वो क्यों नहीं लाया गया?
0: अब 12:12 रिपोर्टर में जो अगली रिपोर्ट है वो है सीधे मुंबई से। मुंबई में FDA का सख्त एक्शन अभी भी जारी है। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन के चलते मुंबई में 3 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। अब इनमें दक्षिण मुंबई के कोलाबा मशहूर ओलंपिया कॉफी हाउस भी शामिल है। FDA की जांच में इन प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आई, जिसके बाद एक्शन लिया गया।
14: महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फिर एक बार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इस बार महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के 3 बड़े रेस्टोरेंट्स और एक हॉस्पिटल के कैंटीन पर रेड करते हुए उनके लाइसेंस को सस्पेंड किया है। हम इस वक्त मुंबई के प्रसिद्ध ओलंपिया रेस्टोरेंट के बाहर है, जहां पर 16 तारीख को FDA ने रेड की थी और कई खामियां पाने के बाद इनका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया था। यहां पर होटल की तरफ से एक नोटिस भी लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है कि कुछ कारणों की वजह से, सुधार करने की वजह से और मेंटेनेंस के काम के वजह से जो है रेस्टोरेंट कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। अगले नोटिस तक ये रेस्टोरेंट बंद रहेगा, लेकिन 16 तारीख को FDA ने रेड की थी, जिसमें उन्होंने कई खामियां पाई थी। पिछले कई दिनों से FDA की रेड लगातार जारी है और इसी कड़ी में ये FDA की रेड हुई है, जिसमें FDA ने मुंबई के प्रसिद्ध कुलाबा में स्थित ओलंपिया होटल का लाइसेंस जो है उसको सस्पेंड किया है।
0: और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार पंचायत आज तक में, जहां अब आप सुनेंगे एक्टर संजय मिश्रा को।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें। इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: See for cat.
1: यहां से शिक्षित करो. मेरी बेटी को छोटी थी, घर में हम लोग आए पाए करते ही रहते हैं. स्कूल से आया कि भाई आपकी बेटी बोलती है मैडम पानी पीना है. तो हम बोले यही बोलेगी मैडम, दीवार चाटना तो बोलेगी नहीं मैडम, दीवार चाटना पानी पीना बोले. नो, शी शुड से इन इंग्लिश ना. हम कहे पहले अपने भाषा पे तो पकड़ हो जाए उसकी. आप उसको सिर्फ शिक्षा के नाम पे इंग्लिश सीखो. आज मेरी, और वो कब पल मेरी बच्ची जो है इंग्लिश बोलने लग गई. अभी वो नैनीताल में है, शेरवुड में.
2: अच्छा.
1: वहां के प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि पल की इंग्लिश सबसे बेहतर है पूरे स्कूल में. और मैडम की क्या शिकायत थी, शी शुड से इन इंग्लिश ना. और छोटी बेटी ऐसा फर्राटा इंग्लिश बोलती है, उसको अगर कुछ चाहिए तो समझ गए. हमसे भी ऊपर चली गई. शिक्षा बहुत अलग चीज होती है, और हम खासकर बिहार में ऐसी शिक्षा की जरूरत है. मैं एक्टर हूं, मैं अपने लोगों को देखता रहता हूं. कितना दबा हुआ, क्यों, वजह क्या है. श्वेता, मैं अभी 3 दिन पहले आ रहा था, बनारस से आ रहा था. वो वहां की भूमि अलग है, वहां बहुत भीड़ होती, बहुत भीड़ मतलब होनी भी चाहिए. बिहार में एंटर किए 7:30 बजे, सन्नाटा. होटल खोले हैं, खाने वाला कोई नहीं. पेट्रोल पंप, मैंने कभी, एक फिल्म थी यू टर्न, उसमें पेट्रोल पंप खाली दिखता था बड़ा, वैसे ही सारे पेट्रोल पंप दिख रहे थे. फिर सोचने लगा वजह क्या है, कुछ डरावना है क्या यहां. हम भी डर गए थे कि भाई इतना सही में कोई नहीं दिख रहे थे. वो देखो स्कूटर वाला दिखा है एक, ऐसा हो गया था. वजह क्या है, वजह कहां गए वो लोग और क्यों गए वो लोग. शिक्षा, कमाने वाले को हमेशा MBBS MA MB नहीं चाहिए. उस सड़क कुछ भी करके तड़ तड़ तड़ तड़ तड़ तड़ तड़ कर खड़ा. बचपन में हम लोग को लोग दोस्त लोग बोलता था, कभी किसी सरदार को भीख मांगते देखे हो. सही में नहीं देखे यार. कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ ठाक, वो शिक्षा चाहिए हमें. आज आपको पता नहीं आता होगा काम, किसको आता होगा अल्फा बीटा थीटा
2: AI.
1: हाँ, हमको तो आज तक काम ही नहीं आया. 40-40-80 होता है मालूम है भाई. उसमें अल्फा थीटा डीटा, हमारा वक्त क्यों बर्बाद किया आपने. उस समय कुछ और सिखाते, कुछ अच्छी चीज सिखाते कि बेटा, हमारे यहां सब चिरकुट ड्राइवर हैं, बुरा मानो भला मानो. रोड सेंस नहीं सिखाया. ऐसे रोड टर्न हो रहा है यहीं पर सब पैसेंजर को. और हम इंसानों की भी आदत है फल्ला मोड़ पर मिलना, और मोड़े पर सब खड़ा है, पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं. भाई हम तो खड़ा है, मामा का लड़का आ रहा है, हमारी क्या गलती है. कोई मामा का लड़का मर रहा है गाड़ी में, एम्बुलेंस में, वो हमें नहीं सिखाया. ये है शिक्षा, बेसिक बेसिक ह्यूमन शिक्षा. उसके बाद ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट कहोगे, बी फॉर बम बोलेना, जो भी बोलना है बोल लो. लेकिन जो बेसिक शिक्षा नहीं दी दोस्त, तो मैं चाहूंगा कि. और देखो हाँ, एक और ख्याल आया था, तो अब तो खाली हो गया बिहार, सारे लोग चले गए, जो बचे हैं आओ उनको मिला करके कुछ बनाते हैं, जो गए वापस आ जाएंगे. अबे यहां तो सब कुछ है, हम काहे को वहां बैठे हुए. और कल से नहीं जा रही है, जनरेशन जा रही है. चंडीगढ़ में शूटिंग करते हुए, जी इतने बहुत बिहारी हैं, बिहारी बहुत हैं जी, हाँ जी बहुत. तो बिहार के बिहारी कहां गए, ज्यादा तो नहीं बोल गया.
2: नहीं नहीं, कुछ कुछ चीजें ज्यादा होती हैं तब भी जरूरी होती हैं. तो संजय जी, वैसे ये कहें कि क्योंकि मेरा पूरा पूरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, और स्कूल से लेके कॉलेज तक.
1: पटना के हो?
2: पटना के हैं.
1: जय
2: हैं वैशाली के, पर पढ़े पटना में.
1: पर
2: सेंट जोसेफ कॉन्वेंट.
1: हम सेंट्रल स्कूल
2: अनिसाबाद. अच्छा. लेकिन उसमें यह है कि लड़कियों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज थे, लड़कों के लिए थोड़ी कमी होती थी, निकलते थे सब बाहर पढ़ने.
1: अच्छा.
2: अब पटना बहुत बदला हुआ दिखता है क्योंकि आपके पास सड़क बहुत बन गई है, अटल पथ है, मरीन ड्राइव है, बहुत सारी चीजें होंगी। अब यही परिवर्तन थोड़ा सा, हम थोड़ा सा बाहर निकल के आपके एक्टिंग करियर पे भी जाते हैं।
1: नहीं, इसी को बात करो ना, एक्टिंग करियर
2: दोनों चीज मिला जुला के। संजय जी, दोनों चीज देखिए, वहां पर क्या होता है कि मरीन ड्राइव पर जब जाते हैं तो देखते हैं सब रील बनाते रहते हैं, इनमें से भी सब सबने बना लिया एक एक बार रील मरीन ड्राइव
1: बनाई,
2: सब सर हिला रहे हैं। आप नए एक्टर्स को देखते हैं, आप उतना एक्टिव हो पाते हैं इंस्टाग्राम पे या
1: आजकल ना लोगों को कैद कर लो, कैद मतलब किसी भी चीज को, आ सुंदर साड़ी क्रैप। एक समय में फुर्सत नहीं होता था यही सब देखने, मेरे बाप ये गंगा जी है। अरे पहले तो गंगा देख लो, या तो अपने को गंगा के साथ देख लो, गंगा जी है, इतना गंगा जी, बाप रे बाप। अब लोग बिकॉज ऑफ मोबाइल कट कट कट कट, वो रील अब है भी रील, और बहुत चंगी चीज है कि दो मिनट में आपको पॉपुलर कर देती है, दो मिनट में पॉपुलर कर देती है, तो हर कोई चाहेगा पॉपुलर हो। हमारा ये सब नहीं था।
2: अच्छा है बुरा है, क्योंकि
1: देखिए आप परिवर्तन की बात, परिवर्तन हाँ। की बात की, परिवर्तन होता है वक्त हाँ। आप परिवर्तित हो गई जब आप पटना में पढ़ी होंगी फिजिकली, मैं परिवर्तित हो गया फिजिकली, तो पेड़ परिवर्तित हो जाते हैं, पौधे से वृक्ष बन जाते हैं, तो बदलाव तो नियम है हाँ। लेकिन बदलाव को अगर बेस से आप पकड़ लेना हाँ। अगर आप मान रहे हैं कि अभी 30 साल के हैं आप ऐसे हैं, बेटा कभी तो 60 के हो गए, तो अभी से प्रयत्न शुरू कर दो कि मैं 60 का हूं। सिर्फ बॉडी परिवर्तन में बदलाव की जो बात कर रहे हैं ना, अभी आते नीचे बिहार में बदलाव कैसा है भैया, हम कहे तू ना बदल नहीं रहे, 10 साल पहले ऐसे थे तुम रे, अभी वो तो हम बदलबे के हैं, लेकिन बिहार का हम कैसे नहीं बदलेगा, बदलाव तो है। तो आप बॉडी आप अपनी जान रही है कि मुझे बदलाव चाहिए, अब चाहिए, अब चाहिए, अब चाहिए, अब नहीं होगा तो देर हो जाएगा हाँ। फिर आप ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, कोई पानी दे दो, शहर का बदलाव भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या आप जैसे अभी हमारे रोड्स हैं पाटलिपुत्रा में, गली वली किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन सोच ऐसी होनी चाहिए ना कि आज से 20 साल बाद यहाँ क्या होगा।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
7: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
8: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
9: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के ये कंगन सेनको से ही लिए थे,
10: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
11: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
12: अब मैं क्या ही बोलूं?
13: परिवार अटूट भरोसा।
14: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
18: Maddie, I need to open a savings account.
19: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
18: स्मॉल बैंक?
19: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account business, maxima business privilege, RDA, there's nothing small about them.
18: Okay.
19: Ujjivan, nothing small about us.

2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव का पीडीए रथ तैयार। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से पूरे यूपी में प्रदेशव्यापी अभियान शुरू करने की तैयारी। अखिलेश यादव के पीडीए रथ पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर जोर। 2027 चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण साधने की तैयारी। पीडीए पर केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले सपा रोज बदल रही पीडीए की परिभाषा, आने वाले समय में सपा ही खत्म हो जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में एससी आरक्षण पर मायावती की यूपी सरकार से मांग, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर आरक्षण के पक्ष में मजबूती से पैरवी करे सरकार। मायावती का यूपीआई शुल्क पर सरकार पर निशाना, बोली आम जनता की जेब पर बढ़ेगा बोझ, स्मार्ट स्कूल से पहले बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त हों। मिशन 2027 को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, आजमगढ़ बस्ती मंडल में हार के कारणों की समीक्षा, चुनावी रणनीति पर मंथन। गोरखपुर में बीजेपी का महामंथन, 12 जिलों के जिलाध्यक्षों और जनप्रतिनिधियों के साथ विनोद तावड़े की अहम बैठक, हार के कारणों पर चर्चा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, डीजीपी को गवाहों के बयान की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने पर विचार करने का निर्देश दिया। दिल्ली एनसीआर की बिगड़ती

यादव और सीएम योगी की सह अध्यक्षता में होगी अहम बैठक। मुजफ्फरनगर में किसानों की पहली रात्रि महापंचायत, गन्ने के दाम बढ़ाने, बिजली एमएसपी कानून और सर्किल रेट बढ़ाने समेत कई मांगों पर मंथन। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत का सरकार को सीधा संदेश, बोले सरकार सुधर जाए नहीं तो आंदोलन की शुरुआत हो गई, हर जिले में होगी महापंचायत। सपा नेता इंद्रजीत सरोज का डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर विवादित बयान, बोले चाहे जितना बड़ा तिलक लगा ले सम्मान नहीं मिलता। केशव मौर्य पर इंद्रजीत सरोज का बड़ा हमला, बोले यूपी में कहीं से भी चुनाव लड़ लें पंडित ठाकुर उन्हें हरा देंगे। राज्य मंत्री रघुराज सिंह के तीखे बयान से यूपी की सियासत गर्म, अखिलेश राहुल पर निशाना, पीएम मोदी को बताया कलयुग का अवतार। यूपी में कल से नौकरियों का महाअभियान, 19 सितंबर से 1,00,000 सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया शुरू। लखनऊ में सीएम योगी कल बांटेंगे नियुक्ति पत्र, 4 विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र। 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य, शिक्षक भर्ती के बाद पुलिस और राजस्व विभाग में भी भर्तियों की तैयारी। मेरठ के आसमान में 19 से 20 सितंबर को दिखेगा सूर्यकिरण का रोमांच, 9 हॉक विमानों के साथ एयर शो होगा। एयर शो की तैयारियों के तहत सूर्यकिरण टीम ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया, मेरठ से जुड़े 3 स्क्वाड्रन लीडर भी शो में शामिल। लखनऊ में गाड़ी से कुचलने के मामले में पीड़िता की आज तक पर बड़े खुलासे, बोली आरोपित ने हिंदू नाम बताकर दोस्ती की, बाद में इंस्टाग्राम से असली नाम शाहनवाज होने का पता चला। पीड़िता का दावा, आरोपित के दोस्तों ने केस वापस लेने की धमकी दी, बोली जेल से छूटने के बाद हत्या का डर, घटना के बाद भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। बलिया में मां बेटी की हत्या से सनसनी, घर में मां का शव तो धान के खेत में मिला 22 साल की बेटी की लाश, सिर पर गंभीर चोट के निशान। बानर में महिला से दुष्कर्म और छेड़छाड़ का आरोप, लिफ्ट देने के बहाने साथी के घर ले जाने का दावा, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। भारत में आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री आज से शुरू, नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में एप्पल स्टोर पर दिखी ग्राहकों की हलचल।

देखिए, उत्तर प्रदेश में सभी दल चुनावी रणनीतियों में जुट चुके हैं। सबसे व्यापक तैयारी बीजेपी की नजर आ रही है। रणनीति से घोषणाओं तक और बूथ मैनेजमेंट से लेकर नौकरियों तक बीजेपी यूपी में बड़े बड़े प्लान पर काम कर रही है और उसमें रोजगार प्राथमिकता है। खबर अब यह है कि अगले 6 महीने में यूपी सरकार 1 लाख सरकारी नौकरियां देने जा रही है।

0: 2,20,000 पुलिस विभाग, 1,50,000 शिक्षा विभाग, 29,000 स्वास्थ्य विभाग, 48,000 यूपी पीसीएस, 54,000 यूपी ट्रिपल एससी, 4,45,000 संविदा भर्ती, 9 साल में 9,00,000 से अधिक नौकरियां यूपी में नौजवानों को मिल चुकी हैं। निजी क्षेत्र की 3.25 करोड़ और संविदा की 4.25 लाख नौकरियों को छोड़ भी दें तो योगी सरकार यूपी में चुनाव से पहले के 6 महीनों में 1,00,000 से अधिक सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोलने वाली है।
1: कल से नौकरियों का महाकुंभ यूपी में लग रहा है। साफ तौर से इसमें से चाहे वो आयुष विभाग हो, होम विभाग हो, इसके अलावा एनएचएम हो, साथ ही साथ बेसिक हो, इसके साथ माध्यमिक हो, हर उस विभाग में नौकरियों की बंपर भर्ती अब की जाएगी। कल 19 सितंबर से लगातार इस पर, क्योंकि कल से ही नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो अलग अलग विभाग में सैकड़ों हजारों की तादाद में नौकरियां दी जा रही हैं।
0: यूं तो सीएम योगी पिछले 3-4 महीनों से तकरीबन हर महीने कहीं न कहीं नियुक्ति पत्र बांटते नजर आ रहे हैं, लेकिन 19 सितंबर से ये अभियान और जोर पकड़ने वाला है, जिसमें पहले 4 विभागों में चयनित नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं।
2: मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1,00,000 सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1,00,000 यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी, यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1,00,000 नौजवान

0: के सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए, सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई।
1: शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों के चुनावी असर को बखूबी समझ रही बीजेपी यूपी में इस मोर्चे को दुरुस्त रखना चाहती है। यही वजह है कि सीएम योगी लगातार नौकरियों की बातें कर रहे हैं और यूपी सरकार के दावों के मुताबिक सरकारी नौकरियों के आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि पुलिस विभाग में 1,00,000, शिक्षा विभाग में 50,000 पद, राजस्व विभाग में 20,000 पद, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 37,000 से अधिक पदों पर भर्तियां प्रस्तावित हैं। इनमें 15,000 टीचर्स की भर्ती का विज्ञापन निकल भी चुका है। 77,000 से अधिक पुलिस विभाग की भर्तियां निकल रही हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी चुनाव में जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा सरकारी पदों की रिक्तियों को भरने की कोशिश कर रही है। वैसे योगी सरकार फिलहाल 1,00,000 सरकारी नौकरियां देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बजट और सरकारी रिपोर्ट की माने यूपी के सरकारी विभागों में कम से कम 2.5 से 3 लाख पद खाली हैं और फिलहाल 17.78 लाख नियमित कर्मचारी और 6.12 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। इन संविदा और आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों के लिए भी सीएम योगी ने मेडिकल से लेकर पीएफ तक की तमाम सुविधाओं की घोषणा इसी महीने की है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: तो देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नौकरियों के दावे कर रही है तो दूसरी ओर लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं और इन्हीं प्रदर्शनों के हवाले से समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है और ये सवाल उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों की भर्ती में खाली बच जाने वाले पदों के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को लेकर है। अखिलेश यादव से मिलने समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंचे ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में होने वाली भर्तियों में जो अभ्यर्थी चयन के बाद दूसरी नौकरी में चले जाते हैं वो पद खाली रह जाते हैं, लिहाजा नतीजे निकालते वक्त वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया रखनी चाहिए।
3: लाख अभ्यर्थी सर प्रभावित हो रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी में वेटिंग लिस्ट को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी में हर जितनी भी वैकेंसी आती है सर, सभी वैकेंसियों में लगभग 200, 300, 1000, 2000 पद खाली चले जाते हैं क्योंकि वो बच्चे कहीं और सेलेक्ट हो चुके होते हैं। कि सर सिर्फ एक ही डिमांड है कि यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट लागू किया जाए। हमारी बहनें आई हुई हैं, हमारे भाई लोग आए हुए हैं सर, बहुत सारी बहनें और भाई हैं जो डीओबी से बाहर हो जाते हैं, 0.25 से सर बाहर हो जाते हैं। अगर वेटिंग लिस्ट यूपी ट्रिपल एससी प्रावधान कर दे तो बहुत सारे परिवार में खुशियां आ सकती हैं सर।
2: तो अभ्यर्थियों की ये मांग थी। अब अखिलेश यादव ट्वीट करके इन अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था की जानी चाहिए। अखिलेश आरोप लगाते हैं कि नौकरी बीजेपी के एजेंडे में ही नहीं है। युवाओं के मुद्दे पर बीजेपी की ज्यादा जोर इसलिए भी है बीजेपी का क्योंकि यूपी में जिस तरह संघ की रिपोर्ट मिली है, यूजीसी से लेकर पेपर लीक और नौकरी रोजगार से लेकर निचले स्तर के भ्रष्टाचार को जमीनी मुद्दे के तौर पर चिन्हित किया गया, अब उससे बीजेपी सतर्क हो चुकी है। खासकर आरएसएस ने बीजेपी को वो 5 चुनौतियां भी बता दी हैं, लेकिन उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनवा देते हैं।
4: मतलब आप ये समझिए कि आपने ऐसा तो देखा होगा, बहुत से नेता होते हैं कि जो वो चीज लिखे नहीं होते जो पढ़ते हैं, या वो तैयार नहीं किए होते जो पढ़ते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, राहुल गांधी जी उसमें बहुत अग्रणी नेता हैं, मगर आपने पहली बार एक ऐसा नेता देखा होगा जो पढ़ता भी नहीं है जो वो लिख देता है। मतलब एनसीपी और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस वर्ड लिखते हुए उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये तो सारा आरोप कांग्रेस के ऊपर आ जा रहा है। और फिर जब वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि इसको निपटा दिया उसको निपटा दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने किसको निपटाया है? अरे राहुल गांधी जी, आपको अपनी पार्टी का नया इतिहास पता हो तो परिवार का इतिहास पता कर लीजिए। 1963 में, अब मैं देख रहा था, मतलब थोड़ी सी मेरी आदत है कई बार चीजों को पुराना ध्यान रखने की, तो अगर आप देखें तो क्या क्या नहीं है, इतनी सारी चीजें हैं 1963 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को। आपकी तो पार्टी अद्भुत है, भारत के इतिहास नहीं शायद दुनिया के इतिहास की इकलौती पार्टी होगी जब 1969 में नीलम संजीव रेड्डी जी के राष्ट्रपति के चुनाव के मुद्दे पे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करवा दिया। मतलब पार्टी का सर्वोच्च नेता अपने खिलाफ वोट करवा दे और उस कुल में उद्भूत, मतलब क्या कहा जाए, वो कुल के क्या है ये निर्णय तो कांग्रेस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। श्री राहुल गांधी जी को यही नहीं पता है कि मेरे परिवार ने क्या क्या कमाल किए हैं। और आपने मजेदार बात देखी होगी, मात्र 3 साल पहले अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे, अभी 2-3 महीने पहले अशोक गहलोत जी का बयान है कि मुझे बनने नहीं दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, निपटा दिया गया। किसने निपटाया? और मजे की बात, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे वो बागी खेमे में हो गए। ऐसे अद्भुत उदाहरण। अब आप देखिए, जनता पार्टी की सरकार बनी चौधरी चरण सिंह जी के साथ, धोखा किसने किया? भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण कि चौधरी साहब को समर्थन दिया और सत्र को फेस करने से पहले समर्थन वापस ले लिया। हरियाणा में 1980 में लोक दल का विलय, आपको याद हो चिमन भाई पटेल 1990 पूरा का पूरा जनता दल अपने अंदर समा ले गए। अरे राहुल गांधी जी अभी राजस्थान में 2009 में और 2018 में आधा दर्जन हाथी निकल गए थे। आप 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के थे, आपको बिना शर्त समर्थन दे रहे थे। मतलब यह भी जरूरत नहीं थी कि आपको अपनी उनका समर्थन लेना था, अपनी समर्थन दे रही पार्टियों को निगल ले गए। और पूरे देश को पता है कि 1983 में जब राजीव गांधी जी हैदराबाद गए थे तो तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री टी अजय्या जी के साथ किस ढंग का अपमानजनक व्यवहार हुआ था, उनके लिए बफून जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। ये सारी बातें मीडिया में और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और उसके बाद जब एनटी रामाराव जी की सरकार बनी, तेलुगु देशम की सरकार, तो जिस समय वो इलाज कराने गए थे उनकी पार्टी को निपटाने का काम किया। और फिर क्या क्या बोला जाए वो बहुत लंबी फेरिस्त हो जाएगी कि 1984 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में विभाजन करा के कांग्रेस ने तोड़फोड़ की, कर्पूरी ठाकुर जी के बिहार का लोकदल का विभाजन कराया, चंद्रशेखर जी की सरकार को वीपी सिंह से अलग होकर चंद्रशेखर जी की सरकार को समर्थन दिया और मात्र 3 महीने में उस सरकार को गिरा दिया 1991 में। फिर असम गण परिषद को जिस प्रकार से डिस्टेबलाइज किया 1990 में। और कुछ एक चीजें तो कांग्रेस ने इतनी महत्वपूर्ण की हैं जो भारत के संवैधानिक इतिहास में अभूतपूर्व बन गई हैं। और राहुल गांधी जी को यदि नहीं पता है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष रहने की तो छोड़िए, कांग्रेस का नेता रहने की योग्यता नहीं रखते, जिसको अपनी पार्टी का इतिहास ना पता हो। एसआर बोम्बई केस 1989 में एसआर बोम्बई जी की सरकार को बर्खास्त किया गया डिस्पाइट ही वाज हैविंग क्लियर मेजॉरिटी। और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजेस की संविधान पीठ ने निर्णय दिया 1994 में कि अब आगे से किस सरकार का बहुमत है यह सिर्फ सदन के पटल पर तय होगा, यह किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं हो सकता, चाहे वह व्यक्ति राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति ही क्यों न हो। भारत के इतिहास में यदि सदन के पटल पर पैसा लेकर वोटिंग करने का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बाकायदा अपराध साबित हो जाने का निर्णय है, तो 1993-94 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों को अपने साथ मिला लिया था पैसा देकर, और बाद में मगर चूंकि उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती थी कि एक न्यायिक इम्यूनिटी है, अब उसको इम्यूनिटी को न्यायालय ने हटाया है। फिर देवगौड़ा जी की सरकार किसने गिराई? कांग्रेस ने। फिर गुजराल साहब की सरकार किसने गिराई? कांग्रेस ने। मतलब चौधरी चरण सिंह जी की सरकार गिराई कांग्रेस ने, चंद्रशेखर जी की सरकार गिराई कांग्रेस ने, देवगौड़ा जी की सरकार बनाई कांग्रेस ने, गिराई कांग्रेस ने, गुजराल जी की सरकार गिराई कांग्रेस ने, बनाई भी इन्होंने और गिराई भी इन्होंने। यानी यह दर्शाता है, और कुल मिलाकर भारत के संवैधानिक इतिहास में अपनी चुनी हुई सरकारों में 1997 तक, जब तक अटल जी की सरकार आई 98 में, उससे पहले सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के किसी दल को अपना कार्यकाल चुनी हुई सरकार को राज्य में पूरा नहीं करने दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए कि अब जिस जमाने के जो आर्काइव्स अवेलेबल हैं, डीक्लासिफाइड आर्काइव्स के जीबी के, उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार की हैसियत नहीं थी कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को डिसमिस कर दे। जब हैसियत थी तो नंबूदरी पाद जी की सरकार को डिसमिस कर दिया था। और 1980 में जब सत्ता में आए नौ राज्यों में विपक्ष की सरकारों को इस आधार पे बर्खास्त कर दिया गया कि आपकी पार्टी केंद्र में चुनाव हार गई है, इसलिए अब उसे राज्य में सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कान खोल के आंख फाड़ के देखें और कान खोल के सुने। आपने नौ गवर्नमेंट से भी इसलिए डिसमिस कर दी कि आप कह रहे हैं क्योंकि सेंटर में हम जीत गए हैं तो आपको स्टेट में रूल करने का अधिकार ही नहीं है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो ऐसे ऐसे लोगों को खाया है। राहुल गांधी जी को पता नहीं है, अच्छा अपने दौर का ही याद रख लेते, कितने तो मुख्यमंत्रियों को खा गए। अगर आप देखें तो केवल राज्यों के सीएम की बात कर रहा हूं, गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे असम के, विजय बहुगुणा जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, एस एम कृष्णा जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के। आप तो अपने नेताओं को भी खा जाते हैं, और यह कांग्रेस की परंपरा आज की नहीं है, यह कांग्रेस की दुर्भाग्यशाली परंपरा, निंदनीय परंपरा बहुत जमाने से है। आजादी के बाद जो भी एक फिल्मों में डायलॉग होता था ना, जो भी नक्सलबाजी दिखाए उसको इतना छोटा कर दो, तो उन्होंने ये क्या करके दिखाया, वहां से शुरू करिए चाहे।
2: और अब आपको लिए चलते हैं सीधे पंजाब पठानकोट, जहां बीजेपी की नशा मुक्त अभियान यात्रा शुरू हो रही है। 4000 किलोमीटर की ये यात्रा सफर तय करेगी, पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी। असीम बसी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। असीम, क्या हो रहा है वहां?
5: जी हाँ, अभी कुछ समय पहले ही जो बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन है वो यहाँ पठानकोट पहुंचे हैं, क्योंकि आज क्योंकि पंजाब में ड्रग बहुत बड़ा मुद्दा है, तो बीजेपी जो है पंजाब में एंटी ड्रग कैंपेन लॉन्च कर रहा है, एक यात्रा लॉन्च कर रहा है जो कि पंजाब भर में 4000 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, ड्रग के खिलाफ अवेयरनेस फैलाएगा और ये अवेयर करेगा भी किस तरह ड्रग का क्या नुकसान है। प्लस इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ड्रग इफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके घर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे इस यात्रा के दौरान, उनको भी साथ में लिया जाएगा। कल जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ड्रग इफेक्टेड फैमिलीज को साथ में लिया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन अब पठानकोट से आज यात्रा रवाना होगी, फ्लैग ऑफ करेंगे नितिन नवीन। कल जो है वो फतेहगढ़ साहब से होगी, तीसरे दिन फाजिलका से होगी, उसके बाद तलवंडी साहब बठिंडा से होगी। ये यात्रा पंजाब भर में घूमेगी और 30 सितंबर को ये यात्रा जलंधर में इसका एंड होगा और वहां पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे, वहां पे एक बड़ा कार्यक्रम होगा। सो ड्रग्स एक बड़ा मुद्दा बन गया है, 2027 के इलेक्शन से पहले बैक इन फोकस है। सो बीजेपी जो है इसको एक बड़ा इशू बनाकर
2: ठीक है, और कोशिश यही की जा रही है कि देखिए पंजाब में चुनाव भी है तो उससे पहले जमीनी स्तर पर भी खुद को मजबूत करना है, और नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा पंजाब में रहा है तो वो मुद्दा इस बार उठता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कहेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफिल जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफिल जूस।
4: In association with
5: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
6: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
7: Patliputr ki pavan dhara se uthega siyasat ka sabse bada shor, janata ke sabse bade sawal, Mukhyamantri Samrat Chaudhary ke saath. Panchayat aaj tak 18 सितंबर सिर्फ आज तक पर।

0: is a very famous quote ki history repeat itself.
1: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
2: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
1: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bichara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
3: विधानसभा का चुनाव घोषणा होने के पहले हमने कह रखा है कि 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी के अंदर उपलब्ध करवाएंगे।
4: जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वादों और घोषणाओं की रफ्तार भी जोर पकड़ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए दिन बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, कभी कैबिनेट में लिए गए फैसलों के जरिए तो कभी सार्वजनिक मंच से। यानी कि यूपी में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ सरकार की ओर से ऐलान पर ऐलान हो रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी भी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। संगठन स्तर पर रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और इस हफ्ते उनकी कई मंथन बैठक है। 17 और 18 सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में तावड़े सीधे जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने वाले हैं। चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर होगी। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ आरएसएस भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। यूपी चुनाव में भी संघ एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रहा है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सह सरकारीवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। बीजेपी की चुनावी कामयाबी में उसकी तैयारियों का बड़ा रोल रहा है और इस बार भी यूपी में वो तैयारियों को अभी से देख रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हमारी जनता कुछ नाराज थी नीट को लेकर करके, जो यूजीसी का रेगुलेशन आया उसको लेकर के। मैं घूम रहा था, मैं आपको ईमानदारी से स्वीकार करूंगा, मुझे लग गया इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और कुछ फॉल्स प्रचार भी किया गया था
1: जिसमें आपकी बात एक सबसे ज्यादा चर्चा।
0: मैं वही आ रहा हूं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूं। और बाद में मैंने अपना ओरिजिनल वीडियो डाला और 2000 उसमें लाइक हुए, उनका कोई जवाब नहीं आया। जहां हमने कहा हमारा अच्छा कार्यकर्ता है, इसका सम्मान है, हम लोग लगकर काम करेंगे, जिताएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, इसका क्या मतलब है? आप जीतिए हारी अलग बात है, आप एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट कम मैनेजमेंट गुरु हैं कम पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, तो आप इस तरह का अस्त्र लगेंगे? उसके बाद मेरे यह ट्वीट आया, उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। और आज मैं आपके चैनल पर, चूंकि आपने पूछा है, तो मैं श्रीमान प्रशांत किशोर की भर्त्सना करता हूं, जो मेरे खिलाफ आपने बेबुनियाद आरोप लगाए थे, उसकी अपेक्षा मुझसे आपसे नहीं थी। मेरे राजनीति का एक स्तर है और रहेगा, और आपने भी वही दावा किया था। लेकिन आप बीजेपी कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर दी, कोई शब्द है क्या? तो आप में और बाकी नेताओं में क्या अंतर है प्रशांत किशोर? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने राजनीति का क्या नया मानक स्थापित किया? पटना में पहली बार लड़ रहे थे आप, नॉट फेयर।
1: तो व्हाट इज फेयर इन पॉलिटिक्स?
0: लिसन टू मी, पहली बार मैं चैनल पर, चूंकि आपने सवाल किया तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैं आपसे ये डिफर करता हूं, राजनीति में सब कुछ अनफेयर है ये कहना ठीक नहीं है। क्षमा करिए, आज जो हमारी पार्टी, हमारे नेता इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, तो जनता ने कुछ फेयरनेस और ट्रस्ट के कारण ही हमें सहयोग किया। और राजनीति में मेरा मानना है, मैं छात्र जीवन से सक्रिय हूं, जेपी का शिष्य रहा हूं, एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स में। जनता आपको ट्रस्ट कितना करती है, और जब आप ट्रस्ट की बात करते हैं तो आप बहुत अनफेयर होंगे तो जनता ट्रस्ट नहीं करेगी, ये मेरी सोच है।
1: एक काउंटर पॉइंट है जिसके बाद हम अगले विषय पर जाएंगे, और वो ये है कि अल्टीमेटली देखिए रविशंकर जी, वो सीट तो जीत गए और बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा सेटबैक भी बन गया कि भाई जो नए नए अध्यक्ष बने थे उनकी सीट हाथ से चली गई। तो इसके पीछे देखिए, कोई भी जब राजनीति करता है, अब आरजेडी कहती है कि जंगल राज, हमें कोर्ट ने नहीं कहा था, एक स्पेसिफिक मामले में कहा गया था जंगल राज, लेकिन बीजेपी जंगल राज के मुद्दे पर पूरी बिसात बिछा देती है हमारे खिलाफ। तो ऐसे में तो अब राजनीति में क्या फेयर है क्या अनफेयर है? सच ये है कि जो जीता वो सिकंदर है।
0: देखिए, पहली बात है, मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया कि उससे पीड़ा हुई है। उस जीत से न सरकार बदलेगी न उनकी सरकार बनेगी, ठीक है? तो उनकी जीत का उनका अभिनंदन करता हूं, मैंने ट्वीट करके बधाई दिया था, आज आपके सामने कर रहा हूं। इस जीत को इतना बड़ा तूफान मत खड़ा कर दीजिए आप। मैं एक ही आपको बैकग्राउंड दूंगा, 2009 के बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले हम लोग 8-8 बाय इलेक्शन हार गए थे, और आप लोगों ने नीतीश कुमार की ओबिचुअरी लिखना बंद शुरू कर दिया था। 2009 में चुनाव हुआ, 2/3 बहुमत आ गया, तो छोड़िए उसको, वो जीत गए हैं अच्छी बात है, काम करें अच्छी बात है, एक सीट से ना कोई फर्क पड़ता है ना कुछ करता है। लेकिन हां, राजनीति में कंसल्टेंट और सलाह देने की भूमिका और जमीन पर उतर कर जनता के बीच काम करना दो होता है।
1: चलिए ठीक है, इस विषय को वहीं पर समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप बार बार नीतीश कुमार का आज जिक्र कर रहे हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, तो अब ये सवाल भी बनता है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, इसी चेहरे के साथ आप लोग सत्ता में आए, अब सम्राट चौधरी पर ये जिम्मेदारी आ गई है भाई, तो ये जो आप लोग के पास एक हुनर है कि सीएम आप लोग बना ही लेते हैं, इस पर कुछ टिप्पणी कीजिए।
0: अच्छा, इसमें आपको परेशानी क्या है ना बता दीजिए हमको। अगर भाजपा के सीएम जनता ना बनाती है जी,
1: अच्छा 25 से 30 नीतीश आप ही ना बोले थे जी।
0: मैं एक मिनट में थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ।
1: हाँ।
0: बंगाल में क्या आपकी कृपा से हम जीते क्या? आसाम में आपकी कृपा से जीते क्या? उड़ीसा में आपकी कृपा से जीते क्या? त्रिपुरा में आपकी कृपा से जीते क्या? दिल्ली में? तो इतना तो आप भी थोड़ा बड़ा हृदय रखिए अंजना जी, जनता के आशीर्वाद से जीतते हैं। मैं कभी अस्वीकार नहीं करूंगा कि नीतीश जी का नाम था, वो मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी बड़े नेता, उनका सम्मान करते हैं। और फिर मैं कहूंगा, बिहार एक एनडीए का बहुत बड़ा कटोरा है।
1: एनडीए का कटोरा,
0: मेरी बात को समझिए। हाँ। इसमें नीतीश जी के भी साथ है, इसमें चिराग पासवान जी हैं, इसमें हमारे मांझी जी हैं, रामविलास जी की परंपरा वो भी साथ रहे हुए हैं, भाजपा बहुत बड़ा उसका घटक है और सब मिलकर चलते हैं और साथ रहते हैं। ये एक बहुत सार्थक प्रयोग बिहार में है। मैं जान के कहा एनडीए का सबसे बड़ा कटोरा जो पिछले 2005 से साथ है, बीच में थोड़ा टुनटान हुआ फिर ठीक रहा, तो चिंता मत करिए आप, ये हम लोग जीतेंगे। 29 में नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बनेंगे और एनडीए की सरकार भी आएगी बिहार में।
1: अब आते हैं इस मुद्दे पर कि आप ही ने कहा कि भाई हम लोग फिर से जीतेंगे और नीतीश कुमार, फोन आ रहा है क्या बार बार?
0: नहीं, बंद कर।
1: हाँ। अच्छा, मुझे लगा लोगों ने टीवी पे देखा होगा तो सोचा होगा रविशंकर जी से कुछ सजेशन दिया जाए कि किस तरह
0: नहीं, मेरे पास सुबह सुबह फोन दिल्ली से आया था कि आपको दिल्ली में प्रेस करनी है।
1: अच्छा।
0: मैंने कहा मैं आज तक की पंचायत में पटना में हूँ
1: जी,
0: तो वो भी बड़ी पंचायत है, तो मुझे पटना में रहने दीजिए
1: जी।
0: तो मुझसे पूछा गया कि कौन आपसे सवाल करेंगे, हमने कहा श्रद्धा मना अंजना ओम कश्यप करने वाली है।
1: तो श्रद्धेय रविशंकर प्रसाद जी, अब अगला वादा ये, अब सवाल जो है वो यही है, वो आपके वादे पर है। एक एक करके जो जो मैनिफेस्टो में हुआ उस पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल तो बनता है कि भाई बीजेपी का सपना पूरा हुआ है ना, बीजेपी का अब सीएम भी बन गया है। कई बातें होती हैं, नीतीश कुमार कितने भी अपने थे, बीच बीच में वो लालू जी के भी हो जाते थे, तो कितना भरोसा करना है, नहीं करना है, कौन से फैसले लेने, अब तो भाई सब कुछ आपके हाथ में है ना, बीजेपी के हाथ में है। नीतीश कुमार की सरकार और सम्राट चौधरी यानी बीजेपी की सरकार, मूलतः कुछ तो अंतर होगा, अगर है तो क्या है?
0: मैं पहली बात बताऊं कि नीतीश जी के साथ अलायंस है तो उनकी सलाह भी है, मैं भी उनसे मिलता हूं, सम्राट जी भी मिलते हैं, मिलना भी चाहिए, वो हमारे बड़े नेता हैं, 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये सलाह के साथ ये बातचीत होती है, काम होता है। मैंने पहले भी कहा ना, डिजिटल गवर्नेंस को जिस तरह से हमारे सम्राट जी प्रमोट कर रहे हैं, मैंने बताया यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हो, नए नए कॉलेजेस खुलें, एआई यूनिवर्सिटीज खुले, ये सारी बातें वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। समय अभी बहुत कम मिला है, इनका इरादा बहुत ही स्पष्ट है और नीतीश जी के साथ मैं देखता हूं कि बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ और हमारे एनडीए के अलायंस के साथ वो चलते हैं, तो अच्छी बात है। देखिए इस बात को आप समझिए, मैं फिर, आपने कहा नीतीश जी अलग चले, बाद में पब्लिकली कहा मैं नहीं जाऊंगा, चार बार बोल चुके हैं, रिकॉर्ड की बात है, आप क्या भी बोला है। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में इस कटोरे के साथ 20 वर्षों से चलना, 21 वर्षों से, और गुड गवर्नेंस देना, डिलीवरी करना, ये छोटी बात नहीं है। बाकी जगह कितना लोग टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, पटक जाते हैं, लेकिन ये है इस कुनबे की सबसे बड़ी साख। और आपने बार बार कहा कि लालू जी कहते हैं जंगल राज क्या था, तो आपके रिकॉर्ड के लिए अंजना जी, लालू प्रसाद को 32 साल की सजा हो गई है चारा घोटाले के केसेस में, और मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, चुनाव अभियान में भी कहा था, बेल पर अलग बात है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन कहने का मतलब क्या है, एक गुड गवर्नेंस आया है, इसको और आगे ले चले गए।
1: अब आते हैं असल मुद्दों पर, जो एक एक करके छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं, अन्य मुद्दे हैं। देखिए हाल में जो छात्रों का आंदोलन हुआ रविशंकर प्रसाद जी, और पटना में भी हमने देखा छात्र सड़कों पर निकले, उन्होंने अपनी मांगे रखी, तो तमाम जो अलग अलग मुद्दे हैं, एक तो पेपर लीक का मुद्दा है बच्चों का, क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार अगर एक सफल एग्जाम नहीं करा सकती है तो पूरी व्यवस्था ही फिर, मतलब जो है डिग्री टाइम पर नहीं मिलना, बिहार में कई जगहों पर आज भी परेशानी बनी हुई है और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। स्कूलों की आप हालत देख लीजिए, कई जगहों पर ऐसी स्थिति है, टीचर्स नहीं है, कई जगहों पर जो मिड डे मील मिलता है उसमें बहुत मूलचूक परिवर्तन करने की जरूरत है। क्या ये सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज नहीं है कि आप नीतीश बाबू की सरकार में 20 साल रहे, अब आपकी सरकार भी आ गई है और छात्र आज नाराज होकर सड़कों पर अपने हक के लिए निकल रहा है, वीडियोस बना रहा है, तब जाकर उनको इंसाफ मिल रहा है?
0: देखिए एक बात को मैं साफ करूं, अगर छात्रों में पीड़ा है तो हमारी पीड़ा होनी चाहिए। मेरा बहुत, मैं भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहा हूं, लाठी भी खाया है, मीसा में जेल भी बंद हुआ हूं और गोली भी खाई है नोखा में, तो नौजवानों की पीड़ा क्या होती है मैं समझता हूं, तो उनसे संवाद होना चाहिए और प्रधानमंत्री ने संवाद किया। दिल्ली में आपने देखा होगा एग्जाम रिफॉर्म्स के लिए बहुत बड़े बड़े काम हुए। एक पीड़ा जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, एग्जाम पेपर लीक में जहां व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों को भी समझदारी बनानी पड़ेगी। मैं बिहार की हूं, मुझे गर्व है, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा होती है कि जब मैट्रिक एग्जाम में किस तरह से काफी पेरेंट्स ऊपर चक्कर चिट भेजते हैं। ये ठीक है क्या? वो हमारे प्रांत के हैं ना, ये पीड़ा होती है। और उस पर नीतीश जी ने बहुत कड़ा काम, सख्त काम किया था। और ये मैं आपके आज के पंचायत के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, अगर पेपर लीक और चोरी को ठीक करना है तो पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है इसको कम करने में। अब जो आपने बात कही व्यवस्था में, आज लगभग 700 स्कूल बने हैं ना, जिनको अपग्रेड किया गया है सरस्वती मंदिर के रूप में। एक जो बहुत अच्छा काम सम्राट जी का है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने बच्चों के लिए ऑनलाइन टीचर्स की व्यवस्था की है। आप जितने स्कूल हैं सेलेक्ट करके लगभग 3.5 लाख बच्चों ने इसको ऑप्ट किया है और रात में 1:30 बजे तक बच्चे पढ़ाई करते हैं उस पर। ये मैं पहले विश्वास नहीं, मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए बच्चों में चाहत क्या होती है। तो अभी आप कभी कभी मुझे मजाक में डिजिटल भैया कहती है ना आप, हाँ। हाँ, कहती है ना, अभी भी है कि भूल गए उसको?
1: नहीं नहीं डिजिटल भैया है, हाँ ना। सरकार आपको भूल जाए, हम लोग थोड़ी भूल रहे।
0: दैट्स गुड वन अंजना,
1: थैंक यू।
0: तो मैं क्या कह रहा था, आईटी मंत्री रहा हूं, तुमने डिजिटल की दुनिया देखी है। आज इतना मोबाइल है, जनधन है, डीबीटी है। जिस दिन बच्चों के मन में अपने मोबाइल पर ऐप से कनेक्ट होकर टीचर से पढ़ने की चाहत है, अभी तक मैंने कल का रिकॉर्ड लिया, लगभग 4 से 5 लाख बच्चे कनेक्टेड हैं उन टीचर्स से। ये बहुत बड़ी बात है। और सम्राट जी की एक और कोशिश है, हम हर जगह तो अच्छे स्कूल नहीं कर सकते जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, एग्जिस्टिंग को इम्प्रूव करना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी में, कंप्यूटराइजेशन में, वो भी बहुत बड़ा काम हो रहा है।
1: मतलब मेरा एक सवाल है, मैं टोक रही हूँ आपको, मुझे पता है आप जब धारा में बोलते हैं टोकने पर आप नाराज होते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ।
0: आपसे कोई नाराज हो सकता है?
1: वो तो शुरू में ही पता चल गया। प्राथमिकता भाई, आपको स्कूल्स को, कॉलेजेस को, जॉब्स को प्रायोरिटाइज करना होगा। उसमें मुझे अभी भी कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखाई देती है रविशंकर जी, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइएगा। मैं तो कहती हूं अगर एक एक सांसद, एक एक विधायक स्कूल, अस्पताल, ये बुनियादी सुविधाओं पर फोकस करने लगे, वो क्यों नहीं जा सकता, स्कूल की हालत क्यों नहीं देख सकता, तो पूरा बहुत मूलचूक परिवर्तन होगा, वहीं पर लैकिंग है।
0: देखिए मैं, आपने बहुत बड़ा सवाल किया, पटना में एम्स कैसे आया मुझे बताइए? अटल जी की सरकार में लड़ कर करके हम ले आए, यहां से लोग दिल्ली जाते हैं, सहयोग करना पड़ता है। लालू जी ने उसको रोका, 10 साल जमीन नहीं दी, आज देखिए वो कितना बढ़िया चल रहा है। पटना में नए अस्पताल बहुत कुछ खुले हैं जिससे मैं इन्वॉल्व हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। स्कूल्स की मैंने कहानी बताई आपको, लेकिन हाँ जो कमियां है उसको ठीक करना पड़ेगा, ये मैं आपसे एग्री करता हूं। देखिए मेरा एक स्वभाव जान लीजिए अंजना, आप मुझे जानती हैं कि जो चीज कमी है उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन वो ठीक हो ये कमिटमेंट होना चाहिए। उस दिशा में मैं आपसे कहूंगा, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे वो अब वो चरवाहा विद्यालय का समय चला गया। देखिए बहुत पीड़ा होती है, मैं यादव समाज की बात करता हूं तो मुझे आप बोलने दीजिए, मैं हरियाणा जाता हूं, मैं हरियाणा जाता हूं, मैं गुजरात जाता हूं, मैं मध्य प्रदेश जाता हूं, वहां के जो उस समाज के लोगों को देखता हूं, उनकी प्रतिभा देखता हूं, उनका स्पोर्ट्स में देखता हूं, तो यहां कहां ले गए? वो बदलाव होना चाहिए। ये
1: तो जनता ने ही परिवर्तन कर दिया भाई, उन्होंने चूज किया, उन्होंने नीतीश कुमार को ऑप्ट ही नहीं किया, री ऑप्ट करते रहे और वहां से लेकर कहानी यहां पर पहुंची है। आज 15 जिलों में जब हम लोग एक 5-स्टार होटल में रविशंकर जी बैठे हुए हैं, 15 जिलों में बाढ़ आई हुई है। और आपको नहीं लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए? मैं कई जगहों के वीडियोस देख रही थी, लोग बोल रहे थे कि अहिया वोट मांगे तब बताइबो। तो ये जो एक चैलेंज है लोगों के लिए, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि साल दर साल यही त्रासदी, वही मतलब ऐसा लगता है कि एक नियति पे हमने अपने माथे पे लिखा लिया है। क्या कोई रोड मैप बतौर सांसद बतौर एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसने बिहार को मतलब कब से देखा है, जेपी के आंदोलन से आप राजनीति में जुड़े और छात्र आंदोलन से लेकर आप यहां तक, क्या कोई हल है इसका? क्या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ ऐसी तैयारी कर सकता है कि लोगों को पानी में डूबकर अपने बच्चों को मतलब भोजन ना दे सके, ऐसी स्थिति में कई दिनों नहीं गुजारना पड़े?
0: देखिए, आपकी इस पीड़ा को बिल्कुल हम ईमानदारी से स्वीकारते हैं, लेकिन आपने पूछा है तो इस विषय का मैं गहराई में अध्ययन किया। गंगा के बारे में मैंने बताया आपको, गंगा बढ़ जाती है तो बिल्कुल बाकी नदियां भी फैल जाती हैं, क्योंकि सबके पानी गंगा में जाते हैं, और सब नेपाल से आती हैं। नेपाल में गड़बड़ी होती है तो पूरा कोशी बैराज को खोलना पड़ता है, अब वहां पर कई समस्या है बांध बनाने में। अब काफी कुछ एग्रीमेंट हुआ है, मैं अभी काठमांडू गया था तो वहां सर्वे शुरू हुआ है, उसको लेकर पॉलिटिकल अपोजिशन बहुत था। तो जो बिहार का और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक लोकेशन है नदियों के मामले को लेकर के, नेपाल को लेकर करके, उसे समस्या होती है। अब बाढ़ आती है तो आती है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं एक जरूर कहूं, जिस तरह से इस बार की बाढ़ बहुत बड़ी चुनौती वाली थी, क्योंकि नेपाल के उसी समय घटना हुई थी, उससे और प्रेशर बढ़ा था। बताइए, वहां से बॉडी बहते हुए पटना तक चली आई थी, हाजीपुर के पास। ये पीड़ादायक है। इस बार मैं आपसे फिर कहूंगा, हम लोग सभी फील्ड में थे, मैं तो पानी में उतर करके घूम रहा था, चाहे वो नाव की व्यवस्था हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, ये सब काफी किया गया। अब तो पानी घट गया है, हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं। लेकिन अब आपने कहा कि हर साल बाढ़ आती है, तो हर साल बाढ़ आएगी, बढ़ेगा, उसको हैंडल करने की व्यवस्था कैसी है ये होना चाहिए। हाँ, अगर नेपाल के ऊपर बांध बन गए और बहुत बिजली निकलेगी वहां से, तब आप थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। कभी मैं गंगा मैया को कहता हूं ना, घूम रहा था, मैंने उनको प्रणाम किया तो लगा कि गंगा मैया भी कहती हैं कि मुझसे कितना पाप धुलाओगे। अब मैं चली उत्तराखंड से, मैं वहां भी प्रभारी रहा हूं, इतने नदियों का जल समेटते समेटते बिहार में आती हूं, तो पुनपुन है, तो दर्दा है, तो सोन है। अभी सोन ने भी बहुत परेशान किया, क्योंकि मध्य प्रदेश से पानी काफी आया था, जबकि उसको उतना पानी नहीं आता है। तो कभी गंगा मैया कहती है, बहुत हो गया भाई, थोड़ा मुझे भी छोड़ दो। तो 10 साल में एक आधार गुस्सा भी जाती है, तो उसको भी हैंडल करना पड़ता है। तो बाढ़, मैं फिर कहूंगा, बाढ़ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का एक बहुत बड़ा कारण है। सरकार इसके लिए ईमानदारी से काम करे, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी देखा, मैं पानी में घूम रहा था, एक जमींदारी बांध था पुनपुन का, वो लीक कर रहा था, प्रेशर नहीं ले पाया, क्योंकि इतना तो मैंने पहला काम किया कि इसको बनवा रहा हूं, मॉनिटर कर रहा हूं, बाकी काम कर रहा हूं। ऐसे काम होता है और ऐसे ही काम करना पड़ेगा, ऐसे ही काम करना पड़ेगा।
1: कितना निवेश आया है बिहार में ये आप लोगों की सरकार बनने के बाद, या उस पर रोडमैप क्या है?
0: मैं फिर कह रहा हूं, अभी मुख्यमंत्री जी गए थे दिल्ली, काफी उद्योग की बात हो रही है। आपको मालूम है बिहार में 8-10 बिस्कुट की फैक्ट्री खुल चुकी है, आपको मालूम है? थोड़ा कभी देख लिया कीजिए ना, कितना अधिक बिहार में लॉजिस्टिक सेंटर कितना खुला है, कभी देखा है आपने? एक बार पटना से बख्तियारपुर बिहार शरीफ जाइए, और मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना अधिक वेयर हाउसेस हब बने हैं। तो पटना बिहार लॉजिस्टिक का एक बड़ा सेंटर बन रहा है। अभी ब्रिक्सवा में मखाना मिल रही कि ना, सबको गिफ्ट में मिला था ना, तो आज मखाना एक बहुत बड़ा टोस्ट बन गया, उसकी इंडस्ट्री बन रही है। बजट में उसका जो पूरा इंडस्ट्रियल नोड गया में खुल रहा है, गया जी में, वो आप देख रही हैं। तो काफी प्रयास हो रहा है कर, और हाँ, जिस तरह से बिहार में एग्रीगेरियन इकोनॉमी के लिए काम हो रहा है, वो भी अच्छा काम है। ठीक है, बड़ी फैक्ट्रियां आए तो खुशी होगी, उसका भी प्रयास चलता रहता है।
1: मैनिफेस्टो में अपने साथ लेकर आई हूं, 1 करोड़ नौकरियों का लिखित वादा किया गया है। ये 5 साल में कितनी नौकरियां, मतलब एक बार 2 करोड़ का वादा किया गया था केंद्र में, क्या उसी तरह का कुछ रह जाएगा? क्योंकि अगर आपको वाकई देना है तो आपके पास तो रोज का टारगेट है 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 365 × 5, कितनी नौकरियां दी गई?
0: दम धरिएगा आप, 5 साल हो ना, देंगे बच्चों को। कल ही तो कार्यक्रम है यहां, हम लोग अब तक 10 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है, सरकारी नौकरी भारत सरकार की, कल भी देने वाले
1: 10 लाख सरकारी,
0: हाँ,
1: नौकरी
0: भारत सरकार की, सिर्फ भारत सरकार की। पोस्टल हो, रेवेन्यू हो, रेलवेज हो, कई बार तो मैं उस कार्यक्रम में जाता हूँ, तो थोड़ा देख लिया कीजिए उसको।
1: और कल कितनी नौकरी है और कहाँ पर है?
0: कल पटना में है, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। हाँ। तो उसमें भी अच्छी संख्या में नौकरी होगी, तो होता रहता है, पीरियोडिक होता रहता है, पूरे देश भर में होता है। लेकिन मैं जब आपसे बात कह रहा हूं, बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, आज हर गांव में बिजली है ना, सड़क बनी है ना, तो उस सबके अंदर कुछ काम के अवसर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मैंने लॉजिस्टिक की बात कही, आप जाके देखिए उस लॉजिस्टिक में कितने लोग काम कर रहे हैं वेयर हाउसेस में। तो मैं इस बात को, नौजवान साथी बैठे हैं, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा, सबको हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, संभव नहीं है, लेकिन रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, हम लोग की कोशिश होगी। आज भारत में, बिहार में स्टार्टअप कल्चर बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि मैं आईटी मंत्री के रूप में उसको बहुत बढ़ाया था। तो ये सब नए, हमारे बच्चे मीडिया में कितना काम करने का भी देखा है, कितने बच्चे आजकल यूट्यूबर बने हुए हैं बिहार में, कभी देखा है? मुझे बहुत खुशी होती है, कुछ लोग टाए टाए भी करते हैं, कुछ अच्छा काम भी करते हैं, उसको रोजगार का अवसर मिला है। हा? मैं बहुत सीरियसली पूछ रहा
1: हूं। उसका श्रेय भी आप ही ले लीजिएगा।
0: तो मैंने नहीं कहा।
1: हाँ, नहीं, ठीक है,
0: वो उनकी अपनी क्षमता है ना।
1: जी।
0: तो मैं रोजगार के नए नए संभावनाएं क्या हैं, हाँ, इसकी चर्चा में,
1: ठीक है। अब चूंकि देखिए, आप रविशंकर प्रसाद जी, आप इस मंच पर आए हैं, तो कुछ सवाल बिहार के हमने किए, कुछ सवाल बाहर के भी कर लेते हैं, क्योंकि जैसा आप ही ने बताया, डिजिटल भैया आपको लोग कहने लगे थे, और जिस तरह से आप,
0: ये नाम आपने दिया हुआ है, पहले करेक्ट कीजिए इसको,
1: ठीक है।
0: चलिए,
1: डिजिटल पेमेंट,
0: जब मैं आईटी मंत्री था तो कई बार इनको मुझे झेलना पड़ता था, ये मुझे झेलती थी, तो उन्होंने ही मेरा नाम डिजिटल भैया रख दिया था। इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं अपने क्षेत्र में।
1: डिजिटल पेमेंट पर आते हैं, अब ये जो एमडीआर लगाया जा रहा है, जो मर्चेंट को अब टैक्स के तौर पर 0.4% 2000 से ऊपर के किसी भी उसमें देना है, उसको लेकर विपक्ष के तीन सवाल हैं जो मैं आपसे सीधा पूछ रही हूं। आपको लगता है कोई व्यापारी अपनी जेब से देगा? वो अल्टीमेटली तो पास ऑन कंज्यूमर पे ही करेगा, किसी ने किसी तरीके से कीमत बढ़ाएगा, कुछ भी बढ़ाएगा। दूसरा, क्या ये छोटे स्मॉल बिजनेस को आप इससे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो एक्स्ट्रा लागत है ये। और तीसरा यही है कि भाई अभी तक फ्री चल रहा था, तो वहां पर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये पैसा लगाना पड़ गया?
0: पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा यूपीआई सिस्टम है, मैं नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं, इसमें 95% कौन लोग हैं जिनके ऊपर कोई नहीं टैक्स लगने वाला, क्लियर, पीपल टू पीपल या अदरवाइज, तो 95% लोग इसके दायरे से बाहर हैं। अब ने 0.4% की बात की, आप मुझे ये बताइए, अगर आज यूपीआई सिस्टम वर्ल्ड का एक लीडिंग सिस्टम बन गया है, तो कुछ खर्चा लगता है कि नहीं मेंटेनेंस में? मैं आपसे बहुत विनम्रता से सवाल पूछ रहा हूं। और जो व्यापारी दाम बढ़ाएंगे, जनता नहीं खरीदेगी, बहुत सिंपल सी बात है, यही तो कंपटीशन है ना। अगर यही सामान मुझे यहां पर 50 पैसे में मिलता है और ये 60 में देंगे, तो नहीं बिकेगा वहां पर,
1: तो वो कैश में पेमेंट शुरू कर देंगे।
0: आपकी बात सुनकर के लगता है कि आशंकाओं से नहीं किया जाता है। जीएसटी आया था तो कितना तबाही का मंजर रखा गया था, आज 1.5 लाख करोड़ रुपया जीएसटी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज ये कैसे लोग फॉर्म भरेंगे? जब डिजिटल इंडिया शुरू किया था तो लोग को, रवि बाबू जानते हैं कि जनता आज देखिए, जब सब्जी वाली डिजिटल पेमेंट करती है और लगा करके, तो मुझे गर्व होता है इस देश पर। तो थोड़ा संयम रखिए, आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। और ये पूरा जो विषय है, अब राहुल गांधी तो बोल दिया अमेरिका के दबाव में किया है, तो मैं राहुल गांधी से कहूंगा, मैं आपसे पॉलिटिक्स नहीं बात कर रहा था, राहुल गांधी कभी कभार तो कोई नई बात, गंभीर बात बोलिए, आप हर समय एक ही बात, तो क्या किया जाए?
1: वो तो कह रहे हैं कि जो कार्ड्स हैं, जो वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ऐसे तमाम लोगों को फेवर करने के लिए डिजिटल पेमेंट पे ये लगाया गया, उसको डिस्करेज करने के लिए।
0: अच्छा, ये बताइए कि अगर भारत का डिजिटल पेमेंट दुनिया का टॉप चला गया है, यूपीआई सिस्टम, भारत पे, एसबीआई, सब तो आजकल पे है ना, तो ये नहीं देखते हैं क्या? और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अंजना ओम कश्यप, किसी के दबाव में काम नहीं करती है, न करेगी, जो जनता के हित में होगा वही करेंगे, ये हम साफ साफ कहना चाहते हैं। और चाहे आपका मास्टर कार्ड हो या छोटा कार्ड हो, नो, जो देश हित में होगा वही काम किया जाएगा।
1: आप रामलला के भी वकील रहे, तो इस वजह से भी ये सवाल आपसे बनता है कि जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा आया तो बतौर वकील उनके आपका दिल कितना दुखा।
0: देखिए
1: मैं चुनाव है,
0: मैं फिर बता रहा हूं, मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगा आपके सामने कि दिल दर्द हुआ, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन विश्वास था हमारे संगठन और सिस्टम पर कि इसका रास्ता निकलेगा। आज उसी ट्रस्ट ने एक एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल जिसने ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त काम किया था उसको सीईओ बनाया है कि नहीं बनाया है, ये सोचती है ठीक करने की चाहत। कुछ लोगों ने कहा वो जेल गए कि नहीं गए, कार्रवाई होगी, पूरा ट्रस्ट को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया कि नहीं किया गया, यही अंतर है। अच्छा बाय द वे, राम मंदिर भयंकर इतना जोरदार बना है तो अच्छी बात है, ये कमियां हुई इसको ठीक किया जाएगा। और एक मैं आपसे एक बात कहूं, कई बार अखिलेश यादव लपक गए इसको लेकर के, याद है ना, उनका अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से सिस्टम चला उसमें कहीं ना कहीं इनसाइड गोल करने का भी संकेत था। ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूं आपसे, अब बाकी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसका,
1: जांच हो रही है, उसमें साफ होएगा, जांच होगी तभी तो पता चलेगा,
0: इसीलिए होने दीजिए, होने दीजिए। और एक बात
1: होना
0: है,
1: नहीं चाहिए था ना,
0: नहीं मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया, पहले ही स्वीकार कर लिया। और आपने देखा होगा उसका एक प्रकार से जिन लोगों के खिलाफ, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अच्छे सीईओ आए कि नहीं आए, प्रभावी आए, उसका नाम आते ही देश में गुस्सा आया, ट्रस्ट को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया कि नहीं किया गया, अच्छी बात है।
1: आखिरी के दो सवाल हैं जो जल्दी जल्दी अब ले लेती हूँ। यूसीसी पर मेरा सवाल है आपसे कि गृहमंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया कि यूसीसी जो एनडीए शासित राज्य है उनमें लागू होगा, उसके बाद से फिर जेडीयू की तरफ से दो तीन नेता आए, श्याम रजक आए, विधायक आए, संजय झा जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मैं गृहमंत्री से बात करूंगा, उसके बाद सन्नाटा इस पर छा गया है। तो जहां पर आपकी चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई देखना पड़ेगा, अभी तो प्रारूप नहीं आया है, आप कानून मंत्री भी रह चुके हैं, तो यूसीसी लागू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जो डेडलाइन दिया है आपने, सवाल का पहला हिस्सा। दूसरा, जेडीयू और एलजेपी को ऑन बोर्ड कैसे लेंगे?
0: इस सवाल का इतना लेट से क्या पूछ रही हैं, हमको तो लग रहा था वहीं से शुरू करती हैं आप। तो देखिए अंजना जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें करना है, क्लियर,
1: तारीख नहीं बताएंगे,
0: जस्ट ए मिनट, राम मंदिर बना, आर्टिकल 370 समाप्त हुआ, तो जो कहते हैं करते हैं, लेकिन अपने सहयोगियों को ऑन बोर्ड लेते हैं, हम चर्चा करेंगे उनसे, अपनी बात कहेंगे। आज मुझे ये बताइए, आर्टिकल 370 के समय जदयू ने तो वॉकआउट किया था, बाद में उन्होंने कश्मीर का जो पूरा बदला हुआ माहौल देखा उनको लगाई तो ठीक बात हुई है। आज जब 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहरता है लाल चौक पर, आतंकवादी पिटते हैं, तो कई उनके समर्थक भी कहते हैं तो ठीक स्टैंड था। उसी प्रकार से पूरा यूसीसी पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे।
1: बैकफुट पर चले गए लग रहा है।
0: देखिए हम ना बैकफुट पर जाते हैं ना फ्रंट फुट पर जाते हैं, हम नेशनल फुट पे खेलते हैं, पहली बात आप जान लीजिए, समझ गए आप, हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में लागू करेंगे तो कई जगह हो गया, आप देख रहे हैं कई जगह हो गया, कई जगह होने की प्रक्रिया है, यूपी में भी प्रक्रिया है, बिहार में हम लोग बातचीत करेंगे, रास्ता निकालेंगे, और आगे फिर कभी इस मंच पे आऊंगा तो रास्ता निकला हुआ रहेगा।
1: चलिए अब एक वादा आज इस मंच से करते चाहिए, आखिरी सवाल है और आपके हवाले मंच है, एक वादा कि भाई अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के सीएम है, तो ये 5 साल में ये तो एक काम हम करके जरूर जनता को देंगे ताकि बच्चे रिकॉर्ड कर लें और फिर वो 5 साल बाद हिसाब मांग पाए।
0: मैं इतना ही कहूंगा कि आप देखिएगा कि आपको बिहारी होने पर गर्व होगा जो गुड गवर्नेंस यहां पर एनडीए की सरकार देगी। हमने बिहार का मान बढ़ाया है और इस मान को और आगे बढ़ाएंगे हर क्षेत्र में, यह मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूं।
1: रविशंकर प्रसाद जी, आप इस मंच पर आए और पंचायत बिहार का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और
0: बहुत,
1: हर
0: बहुत
1: सवाल का उसी तरीके से उसी बेबाकी से जवाब देने के लिए भी बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, अभिनंदन।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
3: AU current account ke saath milta hai free UPI QR overdraft facility aur ek hi app se bank ke sare kaam. AU.
4: Soch badlo aur bank bhi.
5: Aur bhai kahan gaye the ghumne?
6: GK Max.
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: JK Max. Best putty.
8: JK Wall Max.
6: Best paint.
8: JK Max.
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, a premium product from Dilbaugh Group.
10: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफिल जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
10: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफिल जूस।
12: यार लोन भूल गया। मैरी
13: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
14: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
12: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
14: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
15: There's nothing small about them.
12: Ujjivan, nothing small about us.
16: In association with Hint, ek hint to dete.
17: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
16: विमल बोलो जुबां केसरी।
18: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
19: There is a very famous quote ki history repeat itself.
20: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
21: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
20: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
16: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। In association with
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मेगा प्लान लेकर पठानकोट पहुंचे नितिन नवीन, नशा मुक्त पंजाब के लिए निकाली जा रही यात्रा, 30 तारीख को अमित शाह भी जाएंगे। जेंजी आंदोलन के बाद डीयू में हो रहा है छात्रों के मूड का पहला टेस्ट, दूसरे चुनाव में डाले जा रहे हैं वोट, यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा बेहद सख्त, कल आएंगे नतीजे।

0: 95% आम लोग इस बोझ से बाहर हैं। चढ़ावा चोरी पर कहा, ऐसी खबर से तकलीफ हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि निठारी कांड से जुड़ी हुई। इसके मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली ने खुदकुशी कर ली है। सुरेंद्र कोहली बरिंदर सिंह पंडेर की कोठी में काम करता था। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी भी किया था। इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोहली को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। फिलहाल वह हरिद्वार में चाय की दुकान चलाता था और अब खबर आ रही कि उसने सुसाइड कर लिया है। बड़ी खबर इस पूरे मामले में, मुख्य आरोपी जो बरी हो गया था, हरिद्वार में चाय की दुकान चला रहा था, अब उसने आत्महत्या कर ली। अंकित शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंकित, क्या डिटेल्स बता रही है पुलिस?
1: यहाँ जानकारी के बाद अभी प्राथमिक जांच शुरू हो चुकी है और जांच के मुताबिक जो हमारे पास खबर आई है उसमें सुरेंद्र कोहली जो है भूपतवाला में लाल माता मंदिर के पास एक चाय की दुकान चला रहा था और दुकान में ही फांसी के फंदे से खुदकुशी करने की खबर सामने आई। हालांकि पुलिस ने अभी कोई आधिकारिक बयान इसमें जारी नहीं किया है, लेकिन इसकी जांच शुरू हो चुकी है और जो शव को है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और इसके साथ तफ्तीश भी शुरू हो गई। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में इनको बरी कर दिया था निठारी कांड में और पूरा देश जानता है कि कितना नृशंस हत्याकांड था ये, और उसके बाद जिस तरह से बरी हुआ और फिर उसके बाद सुरेंद्र कोहली का किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन बार बार यही कहा जाता था कि हरिद्वार में कहीं है। अब जिस तरह से सुरेंद्र कोहली की आत्महत्या का केस सामने आया है, पुलिस इसमें हर एंगल को जांचने की कोशिश करेगी कि ये वाकई

0: स्पष्ट हो पाएगी। नेहा,
1: किसी और तरह की डिटेल्स, बॉडी पर कोई मार्क्स या फिर किसी तरह का कोई डाउट कि ये वाकई आत्महत्या नहीं, कुछ और भी वजह हो सकती है?
0: नेहा, अभी बिल्कुल शरीर को जो है, शव को जो है, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब पोस्टमार्टम के बाद जैसे रिपोर्ट आती है तो उसमें ये डिटेल्स मिल पाएगी कि क्या कोई ऐसा कृत्य हुआ है कि पहले उसमें हत्या हुई है और फिर सुसाइड दिखाने की कोशिश हुई है, या फिर ये सुसाइड है, ये जांच के बाद पता चल पाएगा।
1: कितने वक्त से ये हरिद्वार में ही रह रहा था? आस पड़ोस में जो लोग काम करते थे उनके हवाले से अगर कुछ जानकारी मिली हो, क्या करता था, क्या फाइनेंशियल कुछ दिक्कत थी इसकी वजह से मौत को गले लगाया?
0: नेहा जी, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि काफी समय से चाय की दुकान चला रहा था और उसका किसी से कोई संपर्क भी नहीं था। आसपास के जो लोग हैं उनको भी शुरू में नहीं पता था और एक करीब एक साल से यहाँ रह रहा था और चाय की दुकान चला रहा था और बहुत कोई बड़ी चाय की दुकान भी नहीं थी, एक छोटी मोटी चाय की दुकान उसने शुरू करी थी और उसके बाद से ही अब क्योंकि ये केस सामने आया है तो ये जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जानकारियां भी सामने आएंगी।
1: इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि क्या अब किसी तरह का कोई मामला इस पे लंबित था या पूरी तरीके से ये बरी हो चुका था?
0: नया जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बरी हो गया था, उसके बाद से कोई ऐसा केस हरिद्वार से और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो यहाँ से नहीं आया था और सुरेंद्र कोहली को लेकर भी कोई ऐसी पब्लिक जानकारी सामने नहीं आई थी कि हरिद्वार में इसका कोई ऐसा केस है या कोई वारदात है। और बताया जाता है कि बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से ये अपनी चाय की दुकान चला रहा था और एक आम जीवन बसर कर रहा था और इसके बाद से ही ये चाय की दुकान को लेकर क्या परेशान था, क्या कोई फाइनेंशियल बर्डन था, ये बात अब धीरे धीरे सामने निकल कर आ पाएगी। नेहा,
1: क्या ये अभी भी अपने मालिक मुनिंदर सिंह पंडेर के संपर्क में था किसी भी तरीके से?
0: नेहा, इस चीज की अभी जानकारी पता नहीं चल पाई है लेकिन जांच में ये पता चल पाएगा कि क्या जो इसका मालिक था वो इसके संपर्क में था या उसकी कोई लोकेशन पुलिस ट्रैक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अचानक इस तरह से ये मामला सामने आता है तो इसमें पुलिस इसको हर तरह से खंगालने की कोशिश करेगी।
1: दो चीजें इसमें बेहद महत्वपूर्ण है, तो कॉल डिटेल्स और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कब तक इसकी उम्मीद की जाए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की घटना है?
0: जी बिल्कुल, इसमें 24 से 48 घंटे का समय लगता है, इसमें पुलिस सीडीआर लोकेशंस और कॉल डिटेल्स और इसके साथ साथ जीपीएस के माध्यम से जो जो संदिग्ध होंगे उनकी लोकेशंस को ट्रैक करेगी और इसके बाद तफ्तीश भी करेगी। जो पूरा प्रोसीजर होता है पोस्टमार्टम के बाद से जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाएगी और उसके अनुसार ही जो धाराएं होती हैं उसके मुताबिक इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
1: इस पूरे मामले पर कुंदन सिंह राणा जो कि एसएचओ हैं उनसे बात की मेरे सहयोगी अरविंद ओझा ने, आपको सुनवाते हैं।
2: जानकारी मिली है आपको?
3: ये जानकारी मिली है कि गुबरटोला क्षेत्र में एक खोखे में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली
2: जी।
3: जब उसके आईडी वगैरह चेक की तो सुरेंद्र कोहली नाम का व्यक्ति वहां फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था।
2: अच्छा, तो ये चाय का खोखा कब खुला था? और
3: तीन दिन पहले।
2: अच्छा, तो क्या ये कंफर्म है कि सुरेंद्र कोहली वही है जो निठारी कांड का आरोपी था?
3: इसके बाद जो आईडी मिली है वही आईडी उसी के नाम की मिली है
2: जी,
3: और फोटो भी उसी की है
2: जो मैच करती है
3: जी। जी
2: कितने बजे की ये कॉल रही होगी, क्या इसके साथ कोई रहता
3: है? 11:30 बजे इसकी सूचना मिली थी।
2: अच्छा, और फांसी किस चीज से लगाई है सर?
3: रस्सी
2: मतलब पंखे से, किस चीज से?
3: रस्सी से ऊपर बात के।
2: अच्छा, शुक्रिया सर। सर नमस्कार, ये क्या जानकारी मिली है आपको?
3: ये जानकारी मिली है कि गुबरटोला क्षेत्र में एक खोखे में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली
2: जी।
3: जब उसके आईडी वगैरह चेक की तो सुरेंद्र कोहली नाम का व्यक्ति वहां फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था।
2: अच्छा, तो ये चाय का खोखा कब खुला था? और
3: तीन दिन पहले।
2: अच्छा, तो क्या ये कन्फर्म है कि सुरेंद्र कोहली वही है जो निठारी कांड का आरोपी था?
3: इसके बाद जो आईडी मिली है वही आईडी उसी के नाम की मिली है
2: जी,
3: और फोटो भी उसी की है
2: जो मैच करती है
3: जी। जी
2: कितने बजे की ये कॉल रही होगी, क्या इसके साथ कोई रहता है?
3: 11:30 बजे इसकी सूचना मिली।

0: अच्छा, और फांसी किस चीज से लगाई है सर?
1: रस्सी से।
0: रस्सी मतलब पंखे से, किस चीज से?
1: रस्सी से ऊपर बात की।
0: अच्छा, शुक्रिया सर। सर नमस्कार, ये क्या जानकारी मिली है आपको?
1: ये जानकारी मिली है कि भूपतवाना क्षेत्र में एक खोखे में एक व्यक्ति ने आत्महत्या।
2: अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, प्रथम दृष्टया क्या मामला लग रहा है? सिर्फ आत्महत्या का मामला है या फिर इसमें कोई और एंगल भी हम तलाशें? क्योंकि अरविंद से संपर्क करेंगे। इस बीच आपको बताया था कि हरिद्वार में सुरेंद्र कोहली का शव बरामद हुआ है। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस हालांकि हर पहलू पर जांच कर रही है। केस में बरी होने के बाद ही वो हरिद्वार शिफ्ट हो गया था और पिछले 2 से 3 दिन पहले उसने अपनी चाय की दुकान खोली थी। उसके बाद आज उसका शव बरामद हुआ है, लटका हुआ रस्सी से, जिसके बाद आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। अरविंद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का ही मामला या कुछ और?
3: देखिए, फिलहाल इसे पुलिस आत्महत्या मानकर चल रही है और जो जो मृतक है उसके पास से आईडी भी रिकवर किया है पुलिस ने। वो आईडी भी आज तक के पास अब आ गई है। जो स्थानीय पुलिस है उसने आईडी आज तक को दी है और वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो मिलान होता है कि वो सुरेंद्र कोहली ही है। उसका आधार कार्ड वो बरामद हुआ है। दरअसल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुरेंद्र कोहली ने 3 दिन पहले ही चाय का खोखा हरिद्वार के कोतवाली इलाके में खोला हुआ था और आज पुलिस को जानकारी मिली कि चाय के खोखे में बैक साइड पे किसी शख्स ने सुसाइड किया है। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो देखा कि एक शख्स वो रस्सी से लटका हुआ है, जिसके बाद उसको उतारा गया। जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी की गई और जब जो बॉडी है उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से एक आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड में सुरेंद्र कोहली नाम लिखा हुआ था, उसकी तस्वीर भी लगी हुई है उसमें और वो कॉपी भी हमने कंफर्म करने के लिए वहां के पुलिस अधिकारियों से ली जो हमारे पास मौजूद है और जिसमें नाम सुरेंद्र कोहली लिखा हुआ है।
2: ये बात खुद एसएचओ भी कह रहे थे जब आपकी उनसे बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात लखनऊ हिट एंड रन मामले की, इसमें 2 दिन पहले हुए मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस केस को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पीड़ित युवती का दावा है कि नाम बदलकर और पहचान छुपाकर आरोपी शहनवास ने उससे दोस्ती की। इस दौरान आरोपी शहनवास कई और लड़कियों से संपर्क करता रहा। पीड़िता की माने तो शहनवास और उसके साथियों के जाल में वो फंस गई। इसमें ज्यादातर लड़कियां हिंदू बताई जा रही हैं जो उसके जाल में फंसी हुई थी। हिट एंड रन का केस दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। पीड़ित के चौंकाने वाले खुलासों के बाद लव जिहाद वाले एंगल से भी जांच शुरू हो सकती है।
4: दो दिन पहले यूपी की राजधानी लखनऊ से आई इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। बीच सड़क शाहनवाज नाम के लड़के ने एक्स गर्लफ्रेंड को कार से कुचलने की कोशिश की, सरेआम उसकी हत्या का प्रयास किया। आरोपित शाहनवाज अब पुलिस की गिरफ्त में है, मामले की जांच जारी है और इस तफ्तीश के बीच जो जो खुलासे हो रहे हैं वो सिर्फ हत्या के प्रयास की एक वारदात का इशारा नहीं कर रहा बल्कि इस घटना के पीछे लव जिहाद वाली साजिश के एंगल का भी पता चल रहा है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूरी वारदात, उसके पीछे की घटनाक्रम और साजिश की एक एक परतें खुली हैं, जिससे आरोपित शाहनवाज और उसके साथियों की लव जिहाद वाले जाल का साफ पता चल रहा है।
5: ज्यादातर इनकी भी जितनी भी दोस्त है, जब भी मैंने देखा सब हिंदू है, कोई ठाकुर है कोई पंडित है।
6: ओके, तो ये अपना नाम क्या?
5: इनका फोन होगा पास में, चेक कर लीजिए, सब प्रूफ मिल जाएंगे आपको।
6: अपने प्रोफाइल और नाम अलग बना के रखते हैं क्या?
5: नाम प्रोफाइल तो इनके इंस्टाग्राम पे है नहीं, फेसबुक का मुझे पता नहीं है। नाम जो मुझे स्टार्टिंग में बताया मुझे अपना खुद का पता है, उनका नहीं पता, बताते या नहीं बताते।
6: यानी कि आपका पूरी तरीके से हत्या का इरादा था जिस दिन ये
5: कल जो घटना हुई है, मुझे ऐसा लगा था कि हम अब बचेंगे नहीं।
4: आज तक से बातचीत में पीड़ित लड़की ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि आखिर आरोपित शाहनवाज, उसका साथी दानिश और उसके ग्रुप के और लोगों का मॉडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे वो पहचान छिपाकर लड़कियों को अपने चंगल में फंसाता था। लेकिन आज तक पर इस पूरे खुलासे से पहले जानिए आखिर घटना के दिन लखनऊ के चनेश्वर मिश्र पार्क के पास ऐसा क्या हुआ कि आरोपित इस लड़की की जान पर उतारू हो गया।
5: जनेश्वर सुबह 4:30, 5:30 या 6 के बीच में हम और मेरी छोटी सिस्टर थी और बुआ जी स्कूटी से चाय पीने गए थे और शहनवाज, मुझे सच में नहीं पता था कि वहां पे ही होगा या आएगा ऐसा कुछ। शहनवाज और इनका एक दोस्त था दानिश, और इनके साथ में दो लड़कियां भी थी, यहाँ तक चाय पी रही थी। ये बहुत टाइम से मेरे साथ रिलेशनशिप में था, ठीक है। तो मतलब दो लड़कियां थी, मैंने इससे पूछना चाहिए कि वो लड़कियां कौन है। इतने में ये मुझसे चिल्लाने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये वो सब बोलने लगा, ठीक है। फिर इसका दोस्त और ये दानिश दोनों जो थे ना, वो कार में बैठ गए आके, ठीक है। और मतलब जो लड़कियां तो थी दोनों, वो अलग पीछे वाले गेट से वो उधर चली गई, ठीक है। दोनों आए तो मुझसे मतलब चिल्लाने लगे, मैंने मतलब भागने लगे कार लेके, तो मैं सामने से इसे रोकना चाहूं कि मुझे बता के जाओ। ये रुका नहीं, उसके बाद ये मुझसे गाड़ी चढ़ा के मेरे ऊपर से, और फिर मेरा हाथ शीशे की तरफ इसने मुझे बुलाया। हाथ में अभी भी चोट है, स्वेलिंग भी है, देख लीजिए आप सब लोग, हाँ निशान पड़ा है। शीशे में मेरा पूरा हाथ दब गया था, मैं ऐसे करके हाथ निकालना चाह रही थी, लेकिन शीशा ऐसे करके लॉक था, वो निकल नहीं पा रहा था,
6: इसने फंसा लिया,
5: फंस गया था, ठीक है। तभी तो मैं घसटी हूँ, एकदम से घसीटते हुए ले गया, फिर अचानक से इसने शीशा ऐसे किया, तब मेरा हाथ निकला, तब हम गिर गए।
4: पीड़ित लड़की के बयान से साफ है कि आरोपित शाहनवाज एक साथ कई लड़कियों के संपर्क में था, जिनमें ज्यादातर हिंदू थी। उसने पूरा जाल इस तरह से बुना था कि किसी भी लड़की को उसकी उस साजिश की भनक तक तलक सके, लेकिन जैसे ही उसकी राज का पर्दाफाश हुआ, उसने जान से मारने की कोशिश कर डाली।
5: इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, ये गाड़ी इनके दोस्त दानिश जो साथ में था, शाहनवाज का दोस्त, उसने ये बोल के बोला है कि इसे आज मार दो, सामने से आया कुछ भी करे मार दो, वहां शीशे में दब गया, दबने दो, मार दो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। इनके दोस्त दानिश ने शाहनवाज को बोला, यो मैंने आ तो, तभी मैं और जिद में आके सामने कहा मार दो, ऐसे किसी को आप मार रहे हैं तो ये गलत चीज है ना।
4: वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपित शाहनवाज को धर दबोचा। इस पीड़ित लड़की ने आज तक के कैमरे पर उसे लेकर जो बड़े खुलासे किए, वो बड़ी साजिश का साफ इशारा कर रहे हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में आरोपी शाहनवाज को 14 दिन की पुलिस रिमांड भेज दिया गया है। कोर्ट का ये फैसला आया जिसमें पुलिस रिमांड 14 दिन की बताई गई है। लखनऊ हिरनगंज मामले में पुलिस ने अब आरोपी शाहनवाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट में भेज दिया। बात अमृतसर की, जहां के गेट हकीमा में एएसआई की हत्या से सनसनी फैल गई। हरजीत सिंह को रात 2:30 बजे 3 गोलियां मार दी गई, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हरजीत की हत्या ऐसे समय हुई जब ड्यूटी पर तैनात वो थे। पंजाब के सीमावर्ती इलाके में 6 महीने के भीतर किसी पुलिसकर्मी की यह तीसरी हत्या बताई जा रही।

0: पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के निशाने में हैं पंजाब के पुलिसकर्मी। पिछले कुछ समय में एएसआई हरजीत सिंह को टारगेट बनाया गया, उसे गोलियों से भून दिया गया और उसकी मौके पे ही हत्या हो गई। उसके बाद सीनियर उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से एक पैटर्न नजर आ रहा है बॉर्डर के इलाके पे, जहां पे अमृतसर गुरदासपुर बेल्ट में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब पिछले कुछ समय में बात करें एएसआई जोगा सिंह, एएसआई जगजीत सिंह, इन सबको टारगेट किया गया और अब एएसआई हरजीत सिंह को। पिछले एक हफ्ते में अगर हम बात करें घटनाक्रम के हिसाब से अगर बात करें तो एएसआई को टारगेट किया गया और जसवंत सिंह खुद पहुंचे मोटरसाइकिल चला के, बाल बाल बचे। इसी बीच में आपको बता दें कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे ग्रेनेड अटैक्स किए गए हैं, पुलिस स्टेशंस को टारगेट बनाया गया है और कानून व्यवस्था पे कई सवालिया निशान अब विपक्षी पार्टियां लगातार उठा रही हैं। उसी बीच में इस तरह की और घटना होना, आपको याद होगा कि गुरदासपुर में भी डबल मर्डर केस हुआ था, वो भी पीआईओ और उस समय तहरीक तालिबान हिन्दुस्तान नाम से आया था और खासतौर पर शहजाद भट्टी का लिंक भी उभरा था।
1: एएसआई की हत्या पर सियासी घमासान है, कांग्रेस और बीजेपी ने आप सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए।
2: पहले भी इंसिडेंट्स हुए लेकिन कल रात को एक इंसिडेंट हुआ जहां एएसआई को पंजाब पुलिस के एक गोली मार दी गई अमृतसर में।
3: बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है साहब कि एक लोगों की रक्षा करने वाले जब खुद सुरक्षित नहीं है तो पंजाब किस उम्मीद के साथ पंजाब में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के अंदर मेरा मानना है कि कल जो ये रात को या आज सुबह एएसआई हरजीत सिंह का कत्ल किया गया है, उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी निभाने की कोशिश की होगी, ड्रग स्मगलर की कोई खेप पकड़ी होगी। तो उसके चलते हुए आज पंजाब के अंदर केजरीवाल साहब की, इनकी आम आदमी पार्टी के शह के ऊपर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि आज नशे से मरने वाले कम हैं और नशे के खिलाफ बोलने वालों का कत्ल ज्यादा किया जा रहा है। गुंडों के अलावा इन लोगों को जेलों से छुड़ा के आज अपने नुमाइंदे के तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपॉइंट किया जा रहा है, तो ये सरेआम लोगों के ऊपर, जैसे आपने भी कहा कि ये पहला नहीं है। सभी से दो तीन महीने पहले मजीठा के अंदर एक एएसआई जोगा सिंह का कत्ल किया गया, उससे कुछ दिन पहले राजा सांसी के अंदर एक इसी तरह उनकी किस्मत ठीक ही, वो बच गए, जानलेवा हमला हुआ, गोलियां चलाई गई और आज ही रवनीत बिट्टू जी उनके ऊपर हमला हुआ।
1: एक छोटे से ब्रेक ले, रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: एयू
8: सोच बदलो और बैंक भी।

ये है महाराष्ट्र के नासिक में पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी का दफ्तर। अचानक मुख्य अधिकारी के दफ्तर में शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ता 3 गोलियां लेकर धावा बोलते हैं। मुख्य अधिकारी अपनी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहे होते हैं, तभी युवा सेना के कार्यकर्ता गोलियां उठाकर टेबल पर खोलते हैं तो उसमें से निकलते हैं कुत्ते। और ये देखिए कैसे कुत्ते टेबल पर दौड़ने लगते हैं। पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी हैरत में पड़ जाते हैं, आखिर ये है क्या, और कुत्ते टेबल पर कोने में जाकर फाइलों पर बैठ जाते हैं। फिर सब कुछ क्लियर होता है। जी हाँ, नासिक में आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की युवा सेना का ये बड़ा ही अनोखा विरोध प्रदर्शन था, जिसमें 2 आवारा कुत्ते बोरियों में कैद करके मुख्य अधिकारी की बेस पर छोड़ दिए जाते हैं। शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि बार बार आवारा कुत्तों के आतंक की शिकायत करने पर भी प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा था, और जब कई बार शिकायत दर्ज कराने पर भी उनकी बातें नहीं सुनी गई तो मुख्य अधिकारी के दफ्तर में ही उनकी मेज पर आवारा कुत्ते छोड़ दिए गए। लोगों का दावा है कि आवारा कुत्तों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काटा है और प्रशासन ने बार बार शिकायत करने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब मुख्य अधिकारी के दफ्तर में इस तरह से कुत्ते छोड़ने पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, और सरकारी काम में रुकावट डालने, कर्मचारियों पर हमला करने और दंगा करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। प्रवीण बी ठाकरे, नासिक, आज तक।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: तीन दिनों से तबाही मची है, सरकार सफाई देकर परेशान है, पीआईबी ने बताया, वित्त मंत्रालय ने बताया, एनपीसीआई ने कई बार बताया, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले फैक्स दे रहे हैं, दर्जनों डिबेट्स हो गई, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। पहले विरोध किया, फिर विदेशी दबाव बनाया, फिर नियम वापसी की मांग की और अब मनमाने फैसले का आरोप पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार ने अमेरिकी दबाव में फैसला लिया, और गौरव गोगोई कहते हैं कि जब संसदीय समिति की बैठक हुई तो वित्त मंत्रालय के पास यूपीआई पर टैक्स के कोई ठोस प्रस्ताव नहीं थे। मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर की जरूरत पर सवाल पूछा गया लेकिन जवाब नहीं थे। ये गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं और अपने दल के बाकी पांच और सांसदों के साथ वित्त विभाग के संसदीय मामलों की समिति के सदस्य हैं। इस समिति की 32वीं रिपोर्ट के पेज नंबर 23 पर साफ लिखा है कि बिना एमडीआर के यूपीआई चलना मुश्किल है। पेज नंबर 78 पर लिखा है कि यूपीआई के लिए अपना रेवेन्यू मॉडल तैयार करना होगा, और 12 मार्च को ये रिपोर्ट उस समिति ने दी थी जिसमें कांग्रेस की ओर से पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी, किशोरी लाल और के गोपीनाथ, ये सभी सांसद उस कमेटी के सदस्य हैं जिनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने आदेश निकाला है। और रिपोर्ट में खुद स्टैंडिंग कमेटी ने माना था कि सरकारी इंसेंटिव डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की लागत का सिर्फ 11% ही कवर करते हैं। ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड का पता लगाना, सेटलमेंट, KYC और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार फंडिंग की जरूरत होती है। तो ये आरोप सच नहीं कि कांग्रेस की जानकारी मंजूरी के बिना 0.4% MDR लागू हुआ। इसके बाद जब लोकसभा में 6 अगस्त 2026 को टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल पर चर्चा हो रही थी तो विपक्षी सांसद शोर मचा रहे थे, ध्वनिमत से बिल पारित हुआ था। इसी तरह 10 अगस्त को भी बिल पर चर्चा के समय विपक्षी आसन के सामने शोर मचा रहे थे और बिल पारित हो गया था। और तभी जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि ये संशोधन बिल US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की 2026 की रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें UPI और रुपए के मुफ्त होने की आलोचना की गई है और उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अमेरिकी पेमेंट प्लेटफॉर्म को बाहर कर दिया है। जयराम रमेश ने सवाल उठाए थे कि क्या ट्रंप के दबाव में UPI को कमजोर करना चाहते हैं और डिजिटल पेमेंट सेक्टर को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना चाहते हैं। अमेरिका की USTR की पेज नंबर 272 पर कहा गया था कि NPCI के रुख से अमेरिकी कंपनियों को बराबरी का मौका नहीं मिल रहा। अमेरिका ने थर्ड पार्टी एप्स को UPI सिस्टम में 30% के कैप का विरोध किया था। हालांकि 30% का कैप अभी तक लागू नहीं किया गया। हाल ये है कि अमेरिका की वॉलमार्ट वाला फोन पे और गूगल वाला गूगल पे भारत की 80% से अधिक UPI पेमेंट मार्केट पर कब्जा कर चुकी है। हालांकि इसमें से कुछ चार्ज वो बैंक भी वसूलेंगे जिनके खाते से पेमेंट हो रहे हैं, और भी अनुमान के मुताबिक 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का सालाना फायदा गूगल पे फोन पे को हो सकता है, और ऐसा ही फायदा पेटीएम जैसी भारतीय पेमेंट ऐप्स को भी हो सकता है। सरकार ये भी दलील देती है कि इन देसी ऐप्स को चलाने के लिए सरकारी सब्सिडी का रेवेन्यू मॉडल नहीं चल सकता, क्योंकि पिछले साल फोन पे का सालाना खर्च 9,394 करोड़ रुपए था जिसमें सर्वर और डेटा सेंटर्स पर 2,800 करोड़ रुपए, बैंकों और गेटवे को 1688 करोड़ रुपए, बाकी सॉफ्टवेयर, क्लाउड, क्लाइंट सपोर्ट सब मिलाकर 500 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, और ये तब था जब एक तिहाई मार्केट पर फोन पे का कब्जा है। अमेरिका के सामने चुनौती बनी हुई है कि अगर भारत में थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स पर 30% का कैप लग गया तो भारतीय बाजार पर उनका एकाधिकार सीमित हो सकता है और तब वॉलमार्ट और गूगल जैसी कंपनियों का मुनाफा भी एक तिहाई तक सिमट सकता है। इसके साथ ही पेटीएम जैसी भारत की देसी थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स को सर्वाइवल का बड़ा मौका मिल सकता है, क्योंकि अब 0.4% MDR लागू होने का फायदा उन्हें भी मिलेगा। आज तंदिरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: In association with
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

टीएमसी के नाम और निशान को फ्रीज करने पर बंगाल से दिल्ली तक भूचाल। ममता के सपोर्ट में खड़े राहुल गांधी पर बरसी बीजेपी। कहा कांग्रेस ने अनगिनत सरकारें गिराई, कई दलों को निगल लिया। ड्रग्स पर भगवंत मान को घिरने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान लेकर पठानकोट पहुंचे नितिन नवीन। नशा मुक्त पंजाब के लिए निकाली जा रही है यात्रा। 30 तारीख को अमित शाह भी जाएंगे। जेंजी आंदोलन के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है छात्रों के मूड का पहला टेस्ट। इस चुनाव में डाले जा रहे हैं वोट। यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा बेहद सख्त, कल आएंगे नतीजे। मुंबई के जीएसबी गणपति मंडल ने कराया सबसे महंगे गणपति का 700 करोड़ का बीमा। सजावट में हुआ है 66 किलो सोना और 300 किलो से ज्यादा चांदी का इस्तेमाल। और पंचायत आज तक बिहार में यूपीआई चार्ज विवाद पर बोले बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद। 95% आम लोग इस बोझ से बाहर हैं। चढ़ावा चोरी पर कहा ऐसी खबर से तकलीफ हुई।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बच्चों के न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर से हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि न्यूज रूम लाइव में आज किन खबरों के बारे में बात होने वाली है। सबसे पहले हम आपके लिए चलेंगे पंजाब। पंजाब के पठानकोट में जहां पर उड़ता पंजाब से निजात दिलाने की तैयारी की जा रही है, और जो ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है, नितिन नवीन पहुंच भी गए हैं वहां पर, वहां की सारी तस्वीर आपको दिखाएंगे। दूसरी तस्वीर जो बड़ी खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। टीएमसी की लड़ाई अब राहुल बीजेपी तक आ चुकी है, क्योंकि चिन्ह की बात चल रही थी, चुनाव चिन्ह की। अब यहां पर एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन लड़ाई यहां पर लंबी होने वाली है। अब उसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से निशाना साधा गया, तो बीजेपी ने तुरंत पलटवार कर दिया, देर नहीं की है। इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर आज तक पर, मेड इन इंडिया ट्रेनर विमान, एचएएल की एक और उपलब्धि। ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट दिए गए, उनकी क्या खासियत है ये हम आपको बताने वाले हैं। और ठीक आधे घंटे बाद हम आपको बताएंगे शौक बड़ी चीज, और ये तो आप जानते ही होंगे, आईफोन 18 के दीवाने हर जगह हैं, तो वो क्या तस्वीर आ रही है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, जैसा हमने आपको बताया, सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। पंजाब से आज बहुत सी बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो उड़ता पंजाब से निजात दिलाने के लिए, यानी नशे के खिलाफ बीजेपी की तरफ से एक बड़ा अभियान चलाया गया है, और उसके लिए नितिन नवीन वहां पर पहुंच चुके हैं, पगड़ी एकदम पहने हुए हैं। तो बीजेपी का नशा मुक्त अभियान, यहां पर 117 सीटों तक ये अभियान चलेगा। 4000 किलोमीटर की यात्रा रहेगी पूरे पंजाब में, ये यात्रा निकाली जाएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही ईएसआई की हत्या पर उबाल का मामला, और साथ ही हिंदू रवनीत बिट्टू के काफिले पर जो हमला हुआ है इसको लेकर भी सियासत तेज हो गई, इस बारे में भी बात की जा रही है। लेकिन अभी आपको सीधे पठानकोट लिए चलते हैं, जहां नितिन नवीन अपनी बात रख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष।
1: लेकिन मैं आज आपके बीच में ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं उस संकल्प को आपके सामने रख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर किसी संकल्प को लेता है तो उसको सिद्धि तक पहुंचाने का, पूरा करने का मादा रखता है। हमने जो लंबे समय तक जो संघर्ष किया, लेकिन हमारे संघर्ष में, हमारे पूरे संघर्ष में संकल्प हमारे साथ छिपा था, और यही कारण था कि 2019 में हमने कश्मीर और जम्मू कश्मीर को 370 धारा से मुक्त दिलाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यश में आतंकवाद को भी कड़े प्रहार किए गए, उसके जड़ों को खत्म करने का प्रयास किया गया, और हमने नक्सलवाद को भी जड़ों से समाप्त किया है। और मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नशा के खिलाफ भी जो अभियान छेड़ा है, 2 अगस्त को उन्होंने पूरे देश में नशा के मुक्त के अभियान को शुरुआत किए, और देश के युवाओं से अपील की थी कि आइए आप नशा को छोड़कर इस देश में नई धारा के साथ, नई अवसर के साथ आप आगे बढ़िए। लेकिन साथ में उन्होंने मुझे एक और संदेश दिया था कि ये लड़ाई की शुरुआत पंजाब की धरती से होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पंजाब का नौजवान, मेरे पंजाब का भविष्य खतरे में है। और मैं आज उन्हीं के संदेश को लेकर आपके बीच में आया हूं। मैं इस बात को इसलिए यहां पे आपके सामने कर रहा हूं क्योंकि सीमाओं की रक्षा हमारे जवान तो कर रहे हैं, पर घर के भीतर पंजाब की जवानी की रक्षा यहां का समाज करेगा, यहां का राज्य के लोग करेंगे। सीमा की रक्षा अगर जवान करेगा तो हमारे नशा के खिलाफ हमारी लड़ाई को हमारा समाज आगे बढ़कर लड़ेगा। मेरे पंजाब के भाइयों, नशा पंजाब की पहचान हो ही नहीं सकती। पंजाब की पहचान उसकी संस्कृति है, पंजाब की पहचान उसकी परंपरा है। पंजाब की ताकत नशा नहीं, पंजाब की ताकत उसकी समृद्धि होनी चाहिए।
0: असीम बसी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। असीम, बताइए इस वक्त वहां पर क्या कार्यक्रम किया जा रहा है और कितनी देर में ये यात्रा निकलेगी जो नशा मुक्ति के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगी?
2: जी हाँ, क्योंकि बीजेपी जो है ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कैंपेन आज लॉन्च कर रही है, तो अभी फिलहाल जो है बीजेपी नेशनल चीफ नितिन नवीन जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। पहले रैली रखी गई है, रैली में एड्रेस कर रहे हैं, और हम बिल्कुल पीछे खड़े हैं जहां यात्रा को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। गाड़ियों की लंबी कतार जो है वो लगाई गई है, और कुछ समय बाद जब नितिन नवीन का एड्रेस जो है वो खत्म होगा उसके बाद वो बाहर आएंगे और उस यात्रा को फ्लैग ऑफ करेंगे। और ये जो नशा मुक्त पंजाब यात्रा जो बीजेपी का इनिशिएटिव है, पूरे पंजाब में जाएगा, 4000 किलोमीटर ये ट्रैवल करेगा, और 30 तारीख को ये जलंधर में खत्म होगी, जहां यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह खुद पहुंचेंगे। सो नशा एक बड़ा मुद्दा है पंजाब में, और भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि 2027 में अभी इलेक्शन है, तो कैंपेन जो है वो टेक ऑफ किया है इस पूरे ड्रग इशू को लेकर, और वो कह रहे हैं कि पंजाब इस तरह की चीजें डिजर्व नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है ड्रग्स को इरेडिकेट करने के लिए पंजाब से। सो आज ये यात्रा पठानकोट से निकलेगी, कल एक यात्रा जो है फतेहगढ़ साहब से, अगले दिन फाजिलका से, और उसके बाद
0: जा रहा था कि जैसे अभी हमने देखा कि जन्मभूमि से कर्मभूमि तक की एक यात्रा निकाली जिसमें 250 बाइक पर 500 लोग सवार थे, तो यहाँ पर भी बाइक से ये काफिला निकलेगा, लोगों की भीड़ निकलेगी, या फिर क्या पूरी प्लानिंग क्या है? जो 4000 किलोमीटर का सफर तय होगा वो कैसे होगा?
2: नहीं, ये देखिए, वो एक रथ बनाया गया है, अगर कैमरा पर्सन दिखाएं, वो देखिए एक सामने एक रथ बनाया गया है जिसमें लीडरशिप भी चढ़ेगी, लोग भी चढ़ेंगे, और यहाँ से क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के लिए अभी बंद किया हुआ है, तो इसके पीछे यात्रा जो है वो चलेगी। आप देख सकते हैं इस तरफ, अगर मैं दिखाऊंगा आपको, ये लाइनअप किए हुए हैं व्हीकल्स, ये जो रथ है वो तैयार किया गया है, इसको नितिन नवीन फ्लैग ऑफ करेंगे, बीजेपी के लोग यहाँ पहुंचे हैं, और ये लाइन ये देखिए, इस तरफ अगर कैमरा पर्सन आएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये जो बड़े बड़े ट्रक हैं इनमें ये यात्रा निकलेगी और पूरे पंजाब भर में जो है वो जाएगी। अगर ये वाला दिखाएंगे तो, और ये आप देख सकते हैं पूरी लाइन जो है वो लगाई गई है एंड तक, और इसमें बीजेपी की लीडरशिप, वर्कर्स जिला जिला गांव गांव घूमेंगे और यहां से एक संदेश देंगे ड्रग्स के खिलाफ। ये कॉन्वॉय तैयार है, लेकिन अब इंतजार है कब नितिन नवीन जो है उनका एड्रेस खत्म हो और उसके बाद वो नीचे आए पिछली तरफ और यहां से फ्लैग ऑफ करें। जी हां,
0: पूरी तैयारियां यहां पर की गई है। अच्छा, ठीक है, लेकिन यहां पर एक और मुद्दा बहुत ज्यादा उठ रहा है, और बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत बिट्टू, और उनका ये कहना है कि उनके काफिले पर हमला किया गया, 100 से ज्यादा लोग आते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बताते हैं किसी ने अंडे टिकली टमाटर फेंके और जान लेने की कोशिश की गई। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला होता है और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि 100 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को निशाना बनाया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। वो तो पंजाब पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं रवनीत बिट्टू। अंडे और टमाटर भी दिखाए जो उनकी गाड़ी पर फेंके गए। इस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर सुरक्षा कर्मियों को सौंपने की कोशिश भी की गई यहाँ पर। अब बिट्टू के मुताबिक उन्हें पहले से ही हमले की जानकारी थी, लेकिन पुलिस की भूमिका पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं।
3: मेरे ते हमला हुए ते मैं दो चार बंदे ते पहुंच गए, आप उठे तो टप्पण लग गया, एक गुरसिख सी, मैनू आप नू इत्थे उहदे कई देख के भी श्री साहब पाई असर भेजता। जो दोबारा इन्होंने हमला फिर किया, फिर देखो हिम्मत, देखो असि अंदर आ गए, आ घर च असी अपना एक तरह का इन सेफ हाउस जिम्मे कहते हैं सेफ हाउस बना के साड़ी सिक्योरिटी ने कवर कर लिया, ये बाहर आके फिर आके हमला करना है।
2: कह रहे हैं कि वो इस यात्रा के लिए आ रहे थे और वहाँ बटाला के पास,
4: ये राजनीति से प्रेरित है साहब, ये जो मर्डर भी हो रहे हैं, ये राजनीतिक लीडर जो बैठे हैं इन्होंने जाते हुए जाते अब इनका सर्कस का तंबू खड़ेगा यहाँ से, पंजाब से आम आदमी पार्टी का, और ये जाते जाते जितना माल समेट सकते हैं, आज गुर्गे जो पड़े हैं इन्होंने जो बदमाशों को लेके आ रहे हैं, तो इसी काम के लिए अभी जित जाता है, जाने वाले 2-4 महीने में जो समेट सकते हैं समेटेंगे।
0: पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, टीएमसी की बात कर लेते हैं। टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला लिया गया, अब उस फैसले के बाद जमकर हंगामा हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी निशाना साध दिया गया है। देखिए, ममता बनर्जी ने आधी रात को चुनाव आयोग को जवाब भेजकर फैसले पर कड़ा विरोध जताया। बागी गुट ने तो सुबह सुबह नाम चिन्ह पर दो विकल्प भी भेज दिया। अब गेंद कहां, चुनाव आयोग के पाले में। कांग्रेस खुलकर ममता के पक्ष में खड़ी हो गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब टीएमसी, हर बार एक ही पैटर्न, पार्टी पर कब्जा करने का, और ये दोहराया जा रहा बार बार। अब पार्टी का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर राजनीतिक दलों को तोड़ने और उनको चुनाव से छीनने का काम कर रहे हैं। हालांकि पलटवार बीजेपी की तरफ से तुरंत कर दिया गया, एसी की तरफ से बड़ा फैसला लिया जाता है, चुनाव चिन्ह पर रोक लगाई जाती है, एक अस्थायी व्यवस्था यहां पर की जाती है, दोनों गुटों का जवाब देने को कहा जाता है और दोनों गुट जवाब भी देते हैं। रिद्वत बनर्जी ने तो सुझाव भी दे दिए दो चिन्हों के साथ। अब इलेक्शन कमीशन पर नाराजगी जताई ममता बनर्जी ने। अब ममता बनर्जी के साथ राहुल गांधी आ चुके हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पैटर्न वही यूज किया जा रहा है पार्टी पर कब्जा करने का, चुनाव चिन्ह पर कब्जे का।
5: তার নিয়ম মেনে সব পক্ষের কথা শুনে করেছি, উনি ওনার দলকে একজোট রাখতে পারেননি, দলের মধ্যে দুভাগ তিনভাগ চারভাগ হয়েছে, তার দায় দায়িত্ব তো ওনার, এরা আমাদের কোনো সরাসরি বিজেপির রোল নেই। তবে আমি বলি, একটা কথা বলি, আমি নির্বাচনের দিন, গণনার দিন রাত্রে হলদিয়াতে মিড নাইটে বলেছিলাম, আর যেই থাকুক এরা থাকবে না,
6: পারবে না। নামার প্রতীক ব্যাপার,
7: এটা উপরওয়ালার বিচার। সিঁদুর আলতায় পদ্ম ফুলের ছবি থাকলে সেটা দোকানে বিক্রি করা যাবে না। উত্তর চব্বিশ পরগনা জুড়ে, ব্যারাকপুর জুড়ে এই ফতোয়া জারি করেছিল তৃণমূল। আর তৃণমূলের প্রতীক থাকলো কি গেল, তাদের মানুষের কিছু এসে যাবে না, কারণ তৃণমূল বলে কোনো পার্টি নেই। তৃণমূল মৃত, তৃণমূল নির্মূল।
0: तो देखिए, अब राहुल गांधी खुलकर सामने आए। राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि ये गलत किया जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जाता है कि ये पैटर्न एक तरह से बार बार वही अपनाया जाता है। अब इसमें आप देखिए, टीएमसी नाम चिन्ह विवाद पर राहुल और बीजेपी में ठंडी, तो बीजेपी ने हम लोग की बौछार कर दी। राहुल गांधी की तरफ से क्या सवाल उठाया गया तो वो आपको बता दिया। बीजेपी की तरफ से तुरंत कह दिया गया कि कांग्रेस का इतिहास ही रहा है पार्टी खाने का, सरकारें गिराने का। अब ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था।
8: भारत की राजनीति के सदा सर्वदा व्याकुल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, तो आज उन्होंने एक अद्भुत ट्वीट किया है। उससे लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी के बारे में भी कुछ नहीं पता है। वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने की प्रक्रिया में यह भी ध्यान नहीं दे पाते कि जिस पार्टी का वो नाम ले रहे हैं वो पार्टियां कौन हैं। उन्होंने आज ट्वीट किया कि पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब तृणमूल कांग्रेस, इन तीन का नाम लेके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी इन पार्टियों को निपटा रही है। अरे, कांग्रेसियों के लिए आदरणीय और अभिनंदनीय और देश के लिए निंदनीय राहुल गांधी जी, आप इतना भी नहीं पढ़ पाते कि एनसीपी का फुल फॉर्म है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। यह कांग्रेस से टूटी हुई है, तृणमूल कांग्रेस के नाम में कांग्रेस है। एनसीपी, शरद पवार जी 1999 में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे विदेशी मूल के नेतृत्व के मुद्दे पे, मगर विदेशी मूल के वारिस राहुल गांधी जी को अपनी पार्टी का मूल ही नहीं पता है।
0: देखिए, ममता बनर्जी की बात की जा रही है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात की जा रही है। एक धड़ा था जो बागी हो गया था, उनकी तरफ से भी मांग की जा रही थी। अब देखिए, अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें। इस पूरे मामले में दोनों की तरफ से मांग की गई थी कि उपचुनाव के लिए चुनाव चिन्ह उनको दिया जाए। और अभी जो खबर आ रही है वो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं कि सबसे पहले डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम रखा गया है जो बागी गुट था, और उनको लिफाफा दिया गया है, जो चुनाव चिन्ह है उनका लिफाफा रहा है। तो दूसरी तरफ एक नाम दिया गया है ममता, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और वहां फुटबॉल प्लेयर को चुनाव चिन्ह रखा गया है। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये दो चिन्ह दिए गए हैं। उपचुनाव में दोनों आमने सामने थे। फिर आपको बता दें, जो सत्यव्रत बनर्जी वाला जो गुट है उनको लिफाफा चुनाव चिन्ह दिया गया है, डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम रखा गया है। और इसी के साथ ही ये भी आपको बता दें, जो संचिता प्रधान, जो कि प्रत्याशी हैं संचिता प्रधान ममता की तरफ से, ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम देते हुए फुटबॉल प्लेयर चुनाव चिन्ह दिया गया। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके, संजय शर्मा हमारे सहयोगी इससे पहले जुड़ चुके हैं। संजय, सुबह ही इस बारे में आपसे बात हो रही थी कि चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लेना है, और अब ये बहुत स्पष्ट हो गया, एक डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस, एक ममता ऑल इंडिया ममता तृणमूल कांग्रेस। तो ऐसे में एक जगह लिफाफा और दूसरी जगह फुटबॉल प्लेयर, और क्या जानकारी आपके पास?
9: जी बिल्कुल, अगर हम ममता बनर्जी गुट की बात करें तो उनको टीएमसी जैसा एब्रिविएशन वो बना सकते हैं, तृणमूल ममता कांग्रेस, और उनका टीएमसी हो सकता है कि अगर वो सही एडजस्ट करें तो सही रहेगा। और आने वाले उपचुनाव में, जो उपचुनाव सिर पे हैं जिनके लिए नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं, तो ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नए नाम और नए निशान के साथ दोनों गुट अब चुनाव क्षेत्र में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे, और एक की किस्मत लिफाफे में बंद है और दूसरा फुटबॉल खिलाड़ी यानी फुटबॉल का नतीजा क्या आता है। अब तक तो हम ये सोच रहे थे कि इलेक्शन महाभारत की तरह होते हैं, लेकिन अभी फुटबॉल का मैच है जिसमें ममता बनर्जी गुट फुटबॉल खिलाड़ी के साथ मैदान में है।
0: मौसमी भी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी है। मौसमी, कई सवाल खड़े किए जा रहे थे राहुल गांधी की तरफ से भी, और ममता बनर्जी तो ऑलरेडी नाराज चल आ रही थी, लेकिन अब जो ये फैसला लिया गया है जिसमें एक तरफ डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ जो होगा नाम वो ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एक तरफ लिफाफा दूसरी तरफ फुटबॉल प्लेयर, इसे कैसे देखते हैं?
10: बड़ा दिलचस्प है देखिए, क्योंकि एक तरफ कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है शिवसेना वर्सेस शिवसेना यूबीटी का, और वही राहुल गांधी का भी जो बयान है वो आ जाता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो सरकार की फेहरिस्त को पूरा कर रहा है, जहां तक जो भी बागी है उनको पार्टी करार कर रहा है और वोट चोरी हो रही है इसी की तर्ज पे। तो ममता बनर्जी गुट को ये जरूर लग रहा होगा कि एक तो ममता बनर्जी खुद फुटबॉल से जोड़ी जाती हैं, लगातार उन्होंने फुटबॉल को अपनी कैंपेन में भी इस्तेमाल किया है, तो फुटबॉल का चिन्ह मिला है उससे भी एक आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये ममता बनर्जी वाला गुट है, और दूसरा ममता उनके नाम में भी उनकी पार्टी जो दी गई है और नाम में भी ममता है, तो उससे जो है एक उनके दल को लगता है, उनके गुट को लगता है कि उससे भी वोटर्स में असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल पूरा ये कश्ती चल रही है और दिलचस्प होगा कि आखिर असल पीएमसी किसको मानता है वोटर।
0: संजय शर्मा जी खुद हमारे साथ अब न्यूज रूम में जुड़ चुके हैं। संजय जी, अब एक तरफ लिफाफा दूसरी तरफ फुटबॉल प्लेयर, जो सुबह हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि जो वोटर होंगे उनके अंदर कैसी कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी, तो आपको लगता है कि अब वो जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा?
11: कंफ्यूजन तो दूर करने की कोशिश दोनों गुट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये इनके लिए राहत की बात है कि उपचुनावों से ये लिटमस टेस्ट हो रहा है। उपचुनाव में ज्यादा टेंशन नहीं है, उसके लिए थोड़ा टाइम भी है और उनको समझा सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसा बदलाव आता है तो पार्टियों के लिए असहज सी स्थिति होती है जिसमें ये समझाना उनको कि नया चुनाव चिन्ह बदल गया है। चूंकि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिस राज्य में मतलब कम पढ़े लिखे लोग, ग्रामीण इलाका ज्यादा है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा मेहनत कश लोग हैं, तो ऐसे लोगों को ये समझाना, अलग अलग हर मतदाता तक पहुंचना चुनौती तो होगी, लेकिन ये सही है कि ममता बनर्जी की टीम के लोग जो उनकी पार्टी उनके गुट के लोग हैं, उनके बड़े बड़े नेताओं का यह कहना था कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये फुटबॉल वाला निशान अपने तीन विकल्पों में रखा और उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को दिया, क्योंकि हम पश्चिम बंगाल में फुटबॉल को लेकर एक अलग तरह का फैसिनेशन है और खास करके युवाओं में फुटबॉल क्लब्स हैं, तो उनको लगा कि इसके जरिए वो जेन जी में अपनी पैठ बढ़ा सकते हैं, आगे कर सकते हैं।
0: अच्छा,
11: और इन्होंने क्या सोचकर लिफाफा रखा है? हाँ, ये थोड़ा जो कई राजनीतिक पंडित हैं उनका मामला लिफाफा बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर।
0: ये ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि ममता बनर्जी की जो नाराजगी थी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर नाराजगी कुछ कम हुई होगी? हालांकि ये अभी वैकल्पिक व्यवस्था है, ये सिर्फ इस उपचुनाव के लिए। हाँ,
11: ये वैकल्पिक व्यवस्था इसलिए भी है कि निर्वाचन आयोग को बहुत सारे सवालों के तीरों का सामना करना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के। मामला शिवसेना बनाम शिवसेना का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन तक लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ ये तीर उछाले और ये फेंके। उन्होंने ये कहा कि आखिर धनुष बाण चिन्ह किसी एक गुट को देने की जरूरत क्या थी, क्योंकि ये पुरानी परंपरा ऐसी रही है कि जब किसी भी दल में फूट होती है और दो फाड़ होते हैं, तीन फाड़ होते हैं, ऐसे में हर एक गुट दावा करता है कि असली पार्टी का नाम और निशान उसके पास रहना चाहिए। इस पर आयोग पहले भी ये करता रहा है कि जो मूल पार्टी का मूल नाम है और निशान है उसे वो फ्रिज कर देता है और बाकी दोनों को कहता है कि आप तीन तीन विकल्प दीजिए, उनमें से कोई एक नाम और एक निशान उन्हें आवंटित होते हैं। फैसला आने में, फाइनल आने में बहुत सारा कई साल लग जाते हैं और तब तक देखा तो यही गया है कि जो जो अस्थाई चुनाव चिन्ह आपको दिए जाते हैं पार्टी को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को।
0: लेकिन इसमें एक चीज जरूर कहा जा सकता है, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये प्रॉब्लम का टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा।
11: टेम्परेरी सॉल्यूशन है लेकिन वो बाद में परमानेंट हो जाता है।
0: ठीक है, यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
14: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
11: AU Savings Account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने।
12: Money, money, money, money, every month.
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
15: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
14: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
16: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
17: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
16: स्मॉल बैंक?
17: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज RD, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
16: Okay.
17: Ujjivan, nothing small about us.
18: In association with
19: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
20: There is a very famous quote ki history repeat itself.
21: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
22: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
21: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara cover mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: जल और थल के बाद अब नभ में भी अमेरिका अपनी ताकत में इजाफा कर चुका है। 21वीं सदी में अब अमेरिका ने अंतरिक्ष तक मोर्चा खोल दिया है। सुपर पावर अमेरिका ने एक ऐलान कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कह दिया है कि उसने अंतरिक्ष में हथियार तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स के मुताबिक स्पेस वेपन्स रक्षा और हमले दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। खुलासे के मुताबिक अमेरिकी हथियार अंतरिक्ष की कक्षा यानी ऑर्बिट में तैनात हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने यह भी कहा है कि ये हथियार अंतरिक्ष में अमेरिकी सैन्य बलों को दुश्मन की कार्रवाई से बचाने और उसका मुकाबला करने के लिए है। चिंताएं कई हैं, सवाल उठना लाजमी है कि आखिर स्पेस में हथियारों की होड़ क्यों, लेकिन अमेरिका ने अभी इसके कई तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। स्पेस फोर्स का कहना है कि उसके पास ऑर्बिट में मौजूद स्पेस कंट्रोल वेपन्स हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य बलों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। हालांकि हथियारों की सही संख्या, उसके प्रकार या उनकी तैनाती की जगह की जानकारी देने से इनकार किया है। अमेरिका के इस कदम के बाद रूस और चीन ने चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, कहा है कि चीन अंतरिक्ष में किसी भी तरह की सैन्य होड़ या उसे युद्ध क्षेत्र में बदलने की कोशिश का कड़ा विरोध करता है। अमेरिका के स्पेस वेपन्स को लेकर कुछ ऐसी ही चिंता रूस ने भी जताई है। रूस ने कहा है कि अंतरिक्ष को किसी भी हथियार से मुक्त रखना चाहिए। तमाम चिंताओं के बीच अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ शुरू होने का नया खतरा है। अमेरिका पहले भी अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने को लेकर लगातार काम करता रहा है। रूस, चीन और भारत समेत कई अन्य देश भी स्पेस में अपनी ताकत बढ़ा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल सैन्य संचार, निगरानी और नेविगेशन से जुड़े सैटेलाइट को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन अब अंतरिक्ष में हथियारों की अमेरिकी तैनाती के बाद फिर से नई चिंता बढ़ा चुका है। आज तक ब्यूरो।

स्मार्टफोन अब सिर्फ जरूरत नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जब इस बेहद जरूरी साथी यानी नया फोन खरीदने जाते हैं तो बढ़ती कीमतें अक्सर बजट बिगाड़ देती हैं। ऐसे में मोबाइल इंडस्ट्री ने फोन सस्ता करने का एक रास्ता सरकार के सामने रखा है। स्मार्टफोन कंपनियों और इंडस्ट्री संगठनों ने मोबाइल फोन पर लगने वाले GST को 18 से घटाकर 5% करने की मांग की है। मार्च 2020 में मोबाइल फोन पर GST 12 से बढ़ाकर 18% किया गया था, लेकिन हाल के दिनों में कंपोनेंट और फ्रेट की लागत बढ़ने से फोन बेहद महंगे हो गए हैं। इसके असर से 10,000 रुपए से कम कीमत वाले फोन की मांग में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। इंडस्ट्री का कहना है कि टैक्स कम होने से फोन की कीमत घट सकती है, जिससे बिक्री बढ़ेगी, ज्यादा लोग स्मार्टफोन खरीद पाएंगे और डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। कंपनियों का दावा है कि ज्यादा बिक्री से सरकार के टैक्स कलेक्शन पर पड़ने वाला असर भी काफी हद तक संभल सकता है। उधर नए स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों का रुख सेकेंड हैंड और रिफर्बिश्ड मार्केट की तरफ करना शुरू कर दिया है। खासकर एप्पल के कई मौजूदा आईफोन मॉडल्स महंगे होने के बाद प्रीमियम सेगमेंट में ये ट्रेंड और मजबूत होता नजर आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल सेकेंड हैंड स्मार्टफोन मार्केट में रिफर्बिश्ड फोन्स की हिस्सेदारी 20% से कम है, जबकि देश में स्मार्टफोन बदलने का औसत समय बढ़कर करीब 4 साल हो गया है। वहीं आईफोन 13, 14 और 15 रिफर्बिश्ड मार्केट में सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। ऐसे में डिमांड बढ़ने और नए फोन के महंगे होने से कुछ रिफर्बिश्ड आईफोन मॉडल्स के दाम 10-15% तक बढ़ सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि नए आईफोन महंगे होने से पुराने प्रीमियम मॉडल्स की मांग बढ़ रही है। यही वजह है कि कई रिफर्बिश्ड मॉडल्स के दाम घटने की जगह बढ़ भी सकते हैं। साथ ही ग्राहक अब लोकल सेकेंड हैंड डीलर से ज्यादा भरोसा वारंटी देने वाली कंपनियों पर कर रहे हैं। वहीं CEIR जैसे सरकारी सिस्टम के जरिए फोन की हिस्ट्री जांचने को भी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। यानी एक तरफ मोबाइल इंडस्ट्री GST घटाकर नए स्मार्टफोन सस्ते कराने की कोशिश में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती कीमतों के बीच रिफर्बिश्ड मार्केट ग्राहकों के लिए प्रीमियम फोन खरीदने का नया विकल्प बनकर उभर रहा है। आदित्य के राडा आज तक।

0: धन्यवाद।
1: क्या बात है। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो रेगुलरली मैथिली जी के गाने सुनते हैं? देखिए कितने सारे बच्चे हैं जिनको।
0: थैंक यू सो मच।
1: मंत्री बनना है कि नहीं बनना है? मन में इच्छा तो होगी?
0: नहीं, मेरे मन में विधायक बनने की भी इच्छा नहीं थी। तो जब मुझे पार्टी आदेश देगी, कोई भी काम देगी, दायित्व देगी, तो मैं पूरे 100% उसको निभाऊंगी।
1: पर जैसे मैं इतना मानती हूँ कि देखन में चोट लगे लेकिन घाव करे गंभीर, वो है आप। आपकी आवाज, मतलब जब तक आप गाती नहीं है तब तक लगता नहीं है कि इतनी ताकत आपकी आवाज में होगी, लेकिन एक बार आप गाती हैं उसके बाद से वो फ्लेयर आपका दिखता है।
0: थैंक यू।
1: तो ऐसे ही मन के अंदर वो उम्मीद भी तो होगी। और आप एम्बिशियस भी कम नहीं है,
0: हल्के में ना ले। बहुत हूँ
1: एम्बिशियस। आप बहुत है।
0: अगर एम्बिशियस में बहुत हूँ तो मंत्री से थोड़ी ना मानूंगी।
1: क्या मांगी? मुख्यमंत्री की कुर्सी ये लीजिए सम्राट चौधरी जी। आज यहाँ पर मंच पर बैठे लोग आपको युवा मुख्यमंत्री कह रहे थे, लेकिन जेनजी आती है।
0: ओ बाबा। नहीं नहीं, मुझे जो काम दिया जाएगा मुझे ये उम्मीद है कि मैं हर एक काम को पूरा कर पाऊंगी।
1: लेकिन मैं मानती हूँ ये कि आपको खास तौर पर मैथिली जी, आपको जब आप चुनाव लड़ रही थी तब भी काफी टारगेट किया गया, और चूंकि कोई भी चुनाव लड़ना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत चैलेंजिंग आजकल हो गया है, तो सोशल मीडिया उसको और भी चैलेंजिंग बना रहा है। क्योंकि भाई एक वीडियो आ गया जिसमें पाग में आपके मखाना था, उसके बाद से कई दिनों तक आपके पीछे लोग पड़े रहे कि आप अपमान कर रही थी मिथिला के पाग का। जो हमने एंटीलिया पर भी आपसे सवाल पूछे, आप वहां पर गई और वो कहते हैं कि भाई जो बीजेपी के उद्योगपति मित्र हैं उनके पास मैथिली ठाकुर जाती है, इस पर आपका क्या रिबटल रहेगा?
0: मुझे जो जहाँ बुलाते हैं मैं वहां जाती हूँ। काफी सारे संत महात्मा लोग कहीं बोलते हैं ब्रज आ जाओ,

0: एंजॉय करते हैं।
1: तो क्या आपका वहां पर कार्यक्रम हुआ भजन का?
0: हाँ, कार्यक्रम हुआ। उसके बाद तो 2 घंटा सिर्फ मिलना जुलना ही हुआ। सब लोग आगे पीछे जिसको देख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि अरे ये भी यहाँ, ये भी यहाँ, सब कोई वहीं पे है।
1: अच्छा, हम अगले सवाल पर आते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि देखन में जैसे भी लगी लेकिन आप घाव जब करती हैं तो गंभीर करती हैं। ऐसे ही आपने स्वरा भास्कर पर भी जौहर वाले मुद्दे पर एक वीडियो बनाया और आपने उनको जवाब दिया। क्या थी इसके पीछे की वजह? क्या आहत हुई थी एक महिला के तौर पर, या फिर आप बीजेपी की हैं और चूंकि
0: आपको टारगेट करना था, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था। एज अ वुमन माई सेल्फ, भारत की एक महिला होने के नाते हमको बहुत खराब लगा कि हम जहाँ पर एक दूसरे के रिलीजन को रेस्पेक्ट देते हैं, ऐसी बात कहते हैं कि हर एक धर्म का सम्मान होना चाहिए, तो पर्टिकुलरली जब हमारी चीज़ों पर बार बार टिप्पणी की जाए, वो भी बेतुके बात बोले जाए, अगर उन्होंने पहले की बातें पढ़ी होती फिर कुछ सोच समझ के बोलती तो बोलने का तरीका उनका अलग होता। तो जिस तरीके से वो बोल रही जा रही थी वो बिल्कुल जम नहीं रहा था हमको, और थोड़ा और रिस्पेक्टफुली और थोड़ा और समझ के साथ कुछ बोलें तो ज्यादा बेहतर रहता।
1: तो आपको क्या टिप्पणी है आपका, अगर हमारे दर्शक अभी समझना चाहें जिन्होंने शायद आपका वो वीडियो नहीं देखा, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था जौहर को लेकर?
0: वो हमारी वीरांगनाओं को कावर्ड बोल रही थी, और क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा जब कोई स्त्री अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जब जौहर करती है तो उस समय वो क्या माहौल हुआ करता होगा। लेकिन हर एक बात पे ऐसी टिप्पणी दे देना जिसमें आप किसी के पर्सनल फेथ पे आघात कर रहे हैं, किसी के धर्म पर आघात कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। हमको भी नहीं करना चाहिए, ना ही उनको करना चाहिए।
1: पिछले दिनों आरक्षण को लेकर आपका एक बयान बहुत वायरल हुआ, और मैं चाहती हूं कि मैं कुछ गलत ना बोलूं इसलिए आपको कोट कर रही हूं। आपका बयान आरक्षण पर था कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं आरक्षण पर खुलकर बोलूं। मैं शब्दशः कोट कर रही हूं। आज हर घर में आरक्षण को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। मैं बहुत क्लियर एंड सिंपल सोचती हूं। हम सभी भारत के युवा, भारत के यूथ, भारत के जेंजी एक साथ खड़े हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम सभी युवा किसी भी तरीके से ऐसा चाहेंगे कि हमारे सरनेम को लेकर हमारे साथ अलग व्यवहार किया जाए। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो जनरल कैटेगरी के, अन्य कैटेगरी के, वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि पॉलिटिकली ये कहना सही है, क्योंकि सदियों तक कई लोगों का उसी सरनेम के आधार पर उत्पीड़न किया गया, तो रिजर्वेशन को लेकर आपकी सोच क्या है?
0: ये एक ऐसा पेचीदा सवाल है, पेचीदा टॉपिक है, जिसपे मैं अगर एक बात कहती हूँ तो उसके भी विपरीत बहुत सारी बातें आती हैं, अगर मैं विपरीत की तरफ से एक बात कहती हूँ तो उसके भी विपरीत बहुत सारी बातें बनती हैं। और इसके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही है, हर एक घर में हम बैठते हैं तो हर एक जगह पर बहुत सारी डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो ये तो केंद्र का मामला है। मैं एक युवा होने के नाते मैं अपनी पर्सपेक्टिव्स रखती हूँ, कई बार मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक विधायक हूँ और मैं एक युवा के तौर पर लोगों से संवाद, बिल्कुल इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ। इसीलिए वो भी उस वक्त मैंने जब बोला तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है, हम लोगों को एक ऐसा समाज बनाना है जहां पर सबके पास अपॉर्चुनिटी है, सबके पास अधिकार है, सबके पास बोलने का, पढ़ने का, हर एक चीज का अधिकार है।
1: आपको लगता है कि ऐसा कुछ काम किया गया है जिसकी वजह से सबके पास समान अवसर मिल पाए? 5 महीने अब सम्राट चौधरी की सरकार हो गई है, क्या है आपके पास गिनाने को?
0: बहुत सारी बातें, जब से क्योंकि मैं पहली बार जब विधायक बनी तो मैंने बहुत ज्यादा एक अच्छा शिफ्ट भी देखा है, मैंने बहुत सारी नई नई चीजें देखी हैं बिहार में। और जब से हम एनडीए के नए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को काम करते हुए देख रहे, तो उनको ऐसे लगातार काम करते हुए देख रहे जिससे हमको बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। सरकारी नौकरियों की बात आए और बहुत सारे शिक्षकों की बात आए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मेरे पास बहुत सारे शिक्षक लेके आते थे कि हमको ये चाहिए, हमारी डिमांड्स ये हैं, हमको ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे चाहिए, और वो सारी बातें मुख्यमंत्री जी सुनते हैं और उस पर काम करते हैं। तो हमको ये लगता है कि बहुत अच्छे लिसनर हैं, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं हमारे मुख्यमंत्री, और जो जैसा चाहते हैं उस पर खुल करके विचार करके फिर उस हिसाब से काम भी करते हैं।
1: मैथिली जी, ये बताइए कि छात्र आए या नहीं आए आपके पास इस दौरान, क्योंकि देश भर में हमने आंदोलन देखा, हमने दिल्ली में देखा, हमने रांची में देखा, झारखंड में, हमने पटना में देखा, हमने सिवान में देखा, हमने बिहार के कोने कोने में आंदोलन देखा। छात्र आते हैं अपनी मांग को लेकर, छात्रों की जो शिकायत है, और आपको तो और भी एसोसिएट करना

0: चाहिए, क्योंकि भाई पेपर लीक अगर एग्जाम ही नहीं सरकार करा पाए तो फिर तो बच्चों का गुस्सा एकदम जायज है कि आप एग्जाम नहीं करा सकते, पेपर लीक हो जाता है, क्या चल रहा है?
1: नहीं, मैं पटना रहती हूँ, मेरे पास काफी लोग तो नहीं आए, मेरे पास टीचर्स लोग आए बहुत, मेरे पास बच्चे लोग बहुत आए जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, जो आगे और काम करना चाहते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे अलग प्रकार के लोग आते हैं। छात्र जैसा आप बोल रहे हैं, वैसे तो कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ मेरा।
0: हाँ, बट आपको क्या लगता है उनकी उनकी समस्याओं को लेकर, पेपर लीक से लेकर, जो बच्चों का कंसर्न है, जॉब्स को लेकर वो ये रहते हैं, उस पर मैथिली जी क्या सोचती हैं? आपको क्या लगता है कैसे ये मुमकिन होगा?
1: अगर अपने राज्य बिहार में मैं सरकारी नौकरियों की बात करें, जैसे जॉब्स की बात करते हैं, तो बिहार इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं और सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स को, सबसे ज्यादा युवा के ओरिएंटेड काम किया जा रहा है, और छात्रों का जो मांग है वो बहुत जायज है, जो छात्र मांग रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री जी ने उनसे संवाद भी किया और उसको लेकर के कार्य भी किया। तो इस प्रकार जो सेंट्रल लेवल की बातें हैं वो सुनी जा रही हैं, और जो बिहार में काम हो रहा है वो तो मैं खुद देख रही हूँ और इससे मैं खुद भी मोटिवेट हो रही हूँ।
0: अच्छा, ये बताइए कि जवाब देना तो हर सवाल का आपको आ गया है, मतलब इतना नाप तोल के आप जवाब दे रही हैं जैसे तराजू पर एक शब्द इधर से गिरे नहीं, उधर से कोई लपके नहीं, कुछ वो ना हो, आपने एकदम मतलब नाप नाप के आप जवाब दे रही हैं, एकदम मिलीमीटर तक नाप रही हैं आज।
1: नहीं मिलेगा आज आपको कंटेंट
0: एक भी शब्द। अच्छा, ये बताइए कि पार्टी के अंदर ही, मैं बाकियों की तो छोड़िए, विपक्ष है वो तो हमला करेगा ही, आप विधायक चुनकर आई हैं तो आप पर जाहिर तौर पर अटैक होगा, पार्टी के अंदर भी कुछ खुर्राट लोग होंगे जो आपको हाथ पैर खींचने की कोशिश करते होंगे, ईमानदारी से बताइएगा?
1: आज तक तो फील नहीं हुआ।
0: पॉलिटिक्स में सर्वाइवल इतना आसान है?
1: देखिए, मुंह पर तो हमसे सब बहुत स्वीट है, मतलब सब बेटी ही मानता है हमको, अब पीठ पीछे कौन क्या सोच रहा है उसमें हम भी नहीं सोचते उसके बारे में, बस ये है कि सामने से कोई मिले तो व्यक्ति अच्छा व्यवहार करे।
0: अच्छा व्यवहार,
1: सब अच्छे हैं,
0: सब अच्छे हैं,
1: सब बहुत अच्छे हैं, सब मुझे बहुत सिखाते हैं। आज मैं यहाँ पे भी आई तो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे, और रेडी हो, अरे अंजना जी से बच के रहना, अरे नहीं नहीं अभी हम जेल के आए हैं, उनको आराम से बोलना। सब बड़े प्यारे लोग हैं, सबको लगता है कि मैं उनकी बेटी हूँ, बिटिया समान हूँ, तो सब एक्स्ट्रा ख्याल लगता है, बहुत पैम्पर करते हैं।
0: चलिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक और कुछ मीठा कुछ भाई अच्छा सा इनका गीत बताइए, क्योंकि मैंने मैथिली जी के ज्यादातर भजन ही सुने हैं, तो बताइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाती हूँ।
0: सबसे अच्छी बात इनकी यही है, कई बार ऐसे गायक स्टेज पर होते हैं जो सामने से ऑडियंस बोले भी तो आज गला खराब है,
1: ना ना हमको,
0: लेकिन मैथिली जी के साथ ऐसा नहीं होता है,
1: हमको बड़ा मजा आता है जब सामने से कोई कुछ बोल रहे तो ये सुनाइए ना ये सुनाइए, तो हमको और सुनाने का मन करता है।

0: है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। थैंक यू।
1: अब जैसे आपने बड़े प्यार से बोला ना ग्लू स्कार्फ, तो उन्होंने तुरंत एकदम गाया है, तो मैं भी एक गाना रखी हूँ, देखती हूँ वो कितने दिल से गाती हैं उसको। लेकिन अब कुछ बड़े सवालों पर भी आते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात है कि भाई मैथिली जी बड़ी अच्छी हैं, मैथिली जी गाती बड़ा अच्छा है, मैथिली जी
2: मजा आएगा।
1: मैथिली जी अपने इलाके में जाके लोगों से बात भी कर रही हैं, जिसको किसी को अस्पताल भर्ती, ये वो ये वो। लेकिन एक पॉलिटिक्स को कहते हैं कि इट्स अ सीरियस बिजनेस, और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी अनुपात में फिर उधर से हमला भी सब कुछ होता है। आप अपने आप को कहां तक आगे जाता हुआ देखती हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि देखिए महिलाओं को जब भी इस क्षेत्र में, मैं ये मानती हूं कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उनके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। पिछली पीढ़ी को भी, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ झेला है ताकि हम इस पीढ़ी की औरतें आगे आए, और आपकी अगली पीढ़ी है मुझसे, तो आप जैसी महिलाओं को जब जिम्मेदारी मिलती है तो आप पर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जिम्मेदारी है कि उन बच्चियों को ऐसा मौका मिले जहां पर उनके साथ कुछ भी गलत व्यवहार किसी भी क्षेत्र में ना हो। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैथिली कैसे देखते हैं कि ये नहीं कि भाई कर रहे हैं अभी MLA हैं देख लेंगे, भाई कुछ बड़ा करना है तो क्या है?
0: एक तो ब्रूटल ट्रूथ है कि किसी भी महिला के लिए एक्सेप्टेंस बहुत नॉर्मली और बहुत नेचुरली नहीं आता है, और मुझे ये बनाने में मुझे लग गए 5-6 महीने लग गए हैं। अपने क्षेत्र में जब जाती थी शुरू शुरू में लोगों को ये विश्वास नहीं होता था कि मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी, इनकी बात सुननी पड़ेगी, तो काफी सारे अधिकारियों के साथ वो समन्वय बिठाने में मुझको थोड़ा समय लगा, लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप होते जाते वो अथॉरिटी भी स्टैब्लिश होते गई। तो ये चीज मैं जितने भी यहाँ महिला यूथ बैठी हुई है उनके लिए कहना चाहूंगी कि कहीं भी किसी भी वर्क प्लेस में यू रियली हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू establish what you want to say, और अपना एक से बनाने के लिए। और दूसरी बात है कि पॉलिटिक्स वाकई में बहुत आसानी से MLA है, मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैंने अपने आप के लिए 1 साल का समय दिया था कि मैं अभी कोई हार्श डिसीजन या हार्श बातें नहीं बोलूंगी, 1 साल तक कम से कम तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों के भाव को समझूंगी। कई बार ऐसा होता है कि घनश्यामपुर प्रखंड की बात करते, मैंने तीनों प्रखंड को धीरे धीरे एनालाइज करना शुरू किया।
3: तो अभी आप मैथिली ठाकुर को सुन रहे थे, और अब बात करेंगे पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की।

0: देखिए, आज तक और दिल्ली सरकार के संयुक्त अभियान में प्रदूषण से निपटने के नए नए तरीकों पर बात लगातार की जा रही है, नए नए आविष्कार सामने आ रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी डिवाइस जो हॉटस्पॉट्स पर प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए साल भर काम कर सकती है।
1: मेरा नाम राजीव चानन है और मैं फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ह्यूमेंडस टेक्नोलॉजीज का, जो 2018 में हम लोगों ने फॉर्म की थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। हम लोगों की टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप एक्सपोजर रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी थ्रस्ट, न्यू पॉलिसीज आर वेरी गुड टू कंट्रोल ओवरऑल एम्बिएंट टू रिड्यूस पोल्यूशन। APS stand for ambient purification system. It is partly meant for particulate matter. An idea behind this is that we are supposed to make a system and technology for outdoor where you install it once and it should continue to run without any attention intervention for 15-20 years. APS mein kisi bhi tarah ka koi bhi filter nahi hai. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आउटडोर में जो सबसे बड़ी समस्या आती है फिल्टर की, कि वो ये 2 या 3 दिन में चोक हो जाते हैं या उनकी परफॉर्मेंस एयर डिलीवरी कम हो जाती है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 15 साल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है सभी पोल्यूशन लेवल पे और सभी वेदर कंडीशन में। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बारिश में इसकी परफॉर्मेंस कम हो गई या समर में बढ़ गई या विंटर में बढ़ गई या कम हो गई, ऐसा नहीं है। इसमें जो प्रिंसिपल हम लोगों ने यूज किया वो बेसिक फिजिक्स का प्रिंसिपल था कि आपका जो पार्टिकुलेट मैटर होता है दैट इज हैवियर देन एयर मॉलिक्यूल्स। तो आप इसमें एयर सक करते हैं इन ए पर्टिकुलर वेलोसिटी विद ए पर्टिकुलर एंगल, सो दैट जो हैवियर मेटल होते हैं, हैवियर पार्टिकल होते हैं PM2.5 एंड PM10, they cannot travel the path of the air being taken into the system. So they tend to get separated from the balance air. So ये इसका, और वो agglomerate भी होते हैं। तो इसमें जो हम लोगों ने wind tunnel design की है उसमें 2 aspect होते हैं, एक तो वो agglomerate करती है और दूसरा उन heavy particle की velocity को reduce करती जाती है और एक जगह पे आके उसकी velocity 0 हो जाती है, वो अपने आप settle हो जाते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है जिसमें हैवी पार्टिकल को बिना किसी फिल्टर के हम सेपरेट कर पाते हैं।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: विधानसभा का चुनाव घोषणा होने के पहले हमने कह रखा है कि 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी के अंदर उपलब्ध करवाएंगे।
1: जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वादों और घोषणाओं की रफ्तार भी जोर पकड़ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए दिन बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, कभी कैबिनेट में लिए गए फैसलों के जरिए तो कभी सार्वजनिक मंच से। यानी कि यूपी में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ सरकार की ओर से ऐलान पर ऐलान हो रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी भी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। संगठन स्तर पर रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और इस हफ्ते उनकी कई मंथन बैठक है। 17 और 18 सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में तावड़े सीधे जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने वाले हैं। चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर होगी। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ आरएसएस भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। यूपी चुनाव में भी संघ एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रहा है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सह सरकारीवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। बीजेपी की चुनावी कामयाबी में उसकी तैयारियों का बड़ा रोल रहा है और इस बार भी यूपी में वो तैयारियों को अभी से देख रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: भारत में सेमीकंडक्टर के मामले में आज की स्थिति ये है कि अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाना पड़ता है। बेंगलुरु नोएडा में कुछ टेक कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन जरूर करती हैं, लेकिन उत्पादन किसी दूसरे देश में होता है। भारत में मोबाइल फोन यूजर करोड़ों में है, मोबाइल की रीढ़ यानी सेमीकंडक्टर विदेश से आती है। सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने सोचना तो बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन असल में काम हुआ साल 2021 में। कहने को साल 2007 में भारत ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति बनाई, लेकिन मिशन मोड में काम शुरू हुआ 2021 में, जब भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की। भारत का विजन और मिशन स्पष्ट है कि सेमीकंडक्टर के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आज के समय में सेमीकंडक्टर की जरूरत लगभग हर तकनीक में है, फिर चाहे मोबाइल फोन हो, वाहन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। भारत को सेमीकंडक्टर की भारी जरूरत है, क्योंकि भारत का बाजार बड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, रोजमर्रा के कामकाज में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है, इसलिए भारत को सेमीकंडक्टर की सबसे अधिक जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत को चिप से लेकर शिप तक हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की माने तो सेमीकंडक्टर में भारत के पास पहले से ही कुछ बढ़त है। दुनिया के लगभग 20% चिप डिजाइन इंजीनियर्स भारत में मौजूद हैं। ये इंजीनियर एम्बेडेड सिस्टम और सिस्टम इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हैं। युद्धों और वैश्विक तनावों के बीच उलझी दुनिया में क्रिटिकल रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है। जिन देशों के पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो उसको हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देश सप्लाई चेन को प्रभावित करते हैं, जिससे दुनिया भर में तकनीक महंगी हो जाती है। 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू हुआ था। सेमीकॉन 1 के लिए 76,000 करोड़ का बजट रखा गया। 2022 में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। 2023 के बाद बड़े पैमाने पर फैब पैकेजिंग और टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने लगी। मई 2026 तक देश में 12 फैब पैकेजिंग यूनिट और 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए। फरवरी 2026 में गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर का कमर्शियल उत्पादन शुरू हो चुका है। जुलाई 2026 में सेमीकॉन 2.0 के लिए सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। ORF की रिपोर्ट कहती है कि भारत की असली चुनौती ग्लोबल मार्केट में पहले से मौजूद प्लेयर्स के बीच जगह बनाने की है। सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा हब ताइवान है। दुनिया की दिग्गज कंपनियां अपनी चिप ताइवान में बनवाती हैं। अब सवाल सिर्फ चिप बनाने का नहीं, बल्कि अपनी बनाई चिप को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का है। भारत सेमीकंडक्टर
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

यूपीआई पेमेंट पर चार्ज की खबर आते ही सीधे सवाल उठता है कि क्या हर पेमेंट पर जेब ढीली होगी। सरकार ने 14 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी करके इस सवाल का एक हिस्सा साफ कर दिया है। इस निर्देश के मुताबिक 2000 तक की यूपीआई पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस रकम तक बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चार्ज नहीं लगा सकेंगे। ये फैसला उस कानून में बदलाव के बाद आया है जिसे संसद ने अगस्त में पास किया था। 17 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद टैक्सेशन और अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2026 कानून बना। इसमें पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की धारा 10A में बदलाव किया गया। इसके बाद सरकार को ये तय करने का अधिकार मिला है कि किन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड पर चार्ज नहीं लगाया जा सकता। 14 सितंबर की अधिसूचना में सरकार ने 2000 रुपए तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन और रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट को इसे नो चार्ज दायरे में रखा है, यानी छोटी रकम के यूपीआई पेमेंट को लेकर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि सरकार ने फिलहाल 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर कोई MDR रेट लागू नहीं किया है और बड़े पेमेंट पहले की तरह किए जा सकते हैं, लेकिन संभव है कि आगे चलकर MDR की सीमा और रेट अलग नियमों से तय किए जा सकते हैं। MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो चार्ज है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा के बदले मर्चेंट से लिया जाता है। UPI पर ऐसा चार्ज लगाने की चर्चा खासतौर पर बड़े मर्चेंट पेमेंट को लेकर हो रही है। 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक 2000 से ज्यादा के P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट UPI पेमेंट सिर्फ करीब 4% थे, लेकिन रकम के हिसाब से इनकी हिस्सेदारी करीब 2/3 थी, यानी संख्या कम है लेकिन बड़ी रकम इन्हीं पेमेंट के जरिए जाती है। इसका मतलब साफ है कि आम आदमी के छोटे UPI पेमेंट पर फिलहाल कोई नई फीस नहीं लगी है। दोस्त या परिवार को पैसे भेजने वाले P2P पेमेंट भी अभी किसी नए चार्ज के दायरे में नहीं आए हैं, लेकिन बड़े मर्चेंट पेमेंट को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सरकार ने कानून में ऐसा रास्ता जरूर बनाया है जिसके जरिए आगे चुनिंदा बड़े मर्चेंट पेमेंट पर MDR तय किया जा सकता है। इसकी सीमा किन कारोबारियों पर लागू होगा और रेट कितना होगा, ये बातें अभी तय होना बाकी है। आदित्य केराड़ा, आज तक।

टीएमसी ममता गुट का चुनाव चिन्ह होगा फुटबॉल खिलाड़ी बागी गुट को मिली लिफाफे का निशान बगावत करने वाले ग्रुप का नाम होगा डेमोक्रेटिक टीएमसी उपचुनावों में दोनों का होगा यही निशान ममता बैनर्जी के समर्थन में आए राहुल गांधी पर बरसी बीजेपी का कांग्रेस ने अनगिनत सरकारें गिराई कई दलों को भी निगला क्या ये राहुल गांधी नहीं जानते ड्रग्स पर पंजाब के सीएम भगवंत मान को घेरने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान लेकर पठानकोट पहुंचे नितिन नवीन नशा मुक्त पंजाब के लिए निकाली जा रही है यात्रा 30 तारीख को अमित शाह भी जाएंगे नोएडा के कुख्यात निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली ने फांसी लगाकर की आत्महत्या केस में बरी होने के बाद उत्तराखंड में चला रहा था चाय की दुकान सुसाइड की पुलिस कर रही है जांच पंचायत आज तक बिहार में यूपीआई चार्ज विवाद पर बोले बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद 95% आम लोग इस बोझ से बाहर आज तक के महामंच पर शाम को आएंगे सीएम सम्राट चौधरी

0: नमस्कार, 3 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आपको दिखाएंगे 100 शहर 100 खबरें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जो पाकिस्तान से आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में बड़ा धमाका हुआ है। जी हां, एक बड़ी खबर मिल रही है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा से ये बड़ी तस्वीरें और बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान यह बड़ा धमाका हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए कि सड़क किनारे किस तरीके से धमाके का इंपैक्ट भी देखा गया है। हालांकि वहां पर अभी विस्फोटकों से लदी गाड़ी पुलिस लाइन में टकरा गई और देखिए जुमे की नमाज के अदा करने के दौरान यह हादसा हुआ। धमाके में अब तक 25 लोगों के घायल होने की खबरें भी मिल रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि कुछ तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकते हैं। धमाके के बाद गोलीबारी की भी खबरें मिली हैं। देखिए कहा जा रहा है कितना ज्यादा बड़ा धमाका ये बताया जा रहा है। देखिए वहां पर मौजूद जो कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहां पर अभी समय 25 लोगों के घायल होने की खबरें मिल रही हैं, लेकिन धमाके के बाद वहां पर गोलियों की खबरें भी मिली है, यानी एक्सचेंज ऑफ फायर भी की खबरें भी मिल रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा से बड़ी रिपोर्ट, बड़ा खबर मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा भी जुड़े हुए हैं। अरविंद ओझा का रुख करते हैं। अरविंद, अब तक क्या जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार ये धमाका किसने किया और क्या इनके टारगेट पर पुलिस लाइन का इलाका ही था?
1: देखिए, ये शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जो खैबर पख्तूनवा का जो कोहाट है, कोहाट इलाका, वहाँ एक ओल्ड पुलिस लाइन है, उसके बाहर जोरदार ये धमाका हुआ है। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 25 से ज्यादा लोग इस पूरे इंसिडेंट में घायल हुए हैं। और जो जानकारी अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है कि विस्फोटकों से भरा एक गाड़ी थी वो ओल्ड पुलिस लाइन के गेट से जाकर टकरा गई। एक पैटर्न है, सेट पैटर्न है। इस सेट पैटर्न के तहत आए दिन, चाहे खैबर पख्तूनवा की बात की जाए और आसपास के इलाकों में इस तरह के धमाके होते हैं। आपको याद होगा कि बीते दिनों पाकिस्तान की जो मेन शहर है कराची, वहां पर भी इस तरह की खबर आई थी, जब जो एक हेडक्वार्टर था पुलिस का, वहां पर जो गाड़ियों से लदा एक विस्फोटक था वो जाकर टकराया था। तो कुछ कुछ उसी से मिलता हुआ ये ब्लास्ट है, ये पैटर्न है, जिसमें जो कोहाट में ओल्ड पुलिस लाइन है वहां पर विस्फोटकों से भरी जो एक गाड़ी थी वो जाकर।
0: बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, देखिए बात यही है, जो आप पैटर्न की बात कर रहे हैं, अरविंद ओझा की एक्सक्लूसिव स्टोरी हम आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से पाकिस्तान में खासतौर पर धमाका नजर आया। और ये पैटर्न जो है वो टीटीपी की तरफ इशारा करता है। पहले भी इस तरीके के अटैक या तो टीटीपी या टीटीपी समर्थित कई ग्रुप पहले भी पाकिस्तान के इलाकों में कर चुके हैं। चलिए वक्त आप खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबरें। पश्चिम बंगाल उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने ममता बैनर्जी के गुट को दिया फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह। उपचुनावों में इसी निशान पर उतरेंगे उम्मीदवार। दिवृत बैनर्जी गुट को मिला लिफाफा चुनाव चिन्ह। निर्वाचन आयोग ने डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस के लिए लिया है अंतरिम आवंटन। टीएमसी विवाद पर राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना। चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलकर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। नेट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने एनटीए के स्थायी ऑफिस जाकर सिस्टम का खुद करेंगे निरीक्षण। एनटीए में सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती कमेटी की सिफारिशें लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रगति को लेकर नया हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है। पंजाब में नशा मुक्ति अभियान के लिए नित्य नवीन दिखाएंगे हरी झंडी। गृह मंत्री अमित शाह भी करेंगे रैली। नशे के खिलाफ बीजेपी का बड़ा अभियान। पठानकोट से नितिन नवीन का नशा मुक्त पंजाब का संकल्प। बोले हर कोने तक पहुंचाएंगे अभियान। नशे और नशा माफियाओं को खत्म करना है। ड्रग्स के खिलाफ अमित शाह का बड़ा ऐलान। दिल्ली में 22 सितंबर को एएनटीएफ सम्मेलन। तस्करी नेटवर्क पर मंथन किया जाएगा। अमृतसर में एसआई की गोली मारकर हत्या। भगवंत मान सरकार ने किया 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने बयान दिया है, कहा है कि दुख की इस घड़ी में पंजाब पुलिस उनके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। बहुचर्चित निठारी कांड से जुड़े सुनंद कौली की हरिद्वार में मौत। भूतवाला में स्थित आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना। पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। हत्यारे कांड के सुरेंद्र कोहली ने हरिद्वार में की आत्महत्या। पिछले कुछ दिनों से भूपतवाला में चला रहा था चाय की दुकान। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी शहनवाज की 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी अब भी जारी है। लखनऊ गाड़ी से कुचलने के मामले में पीड़िता ने आज तक पर बड़े खुलासे किए। बोली, आरोपी ने हिंदू नाम बताकर दोस्ती की थी, उसके बाद इंस्टाग्राम से असली नाम शाहनवाज पता लगा। पीड़िता का दावा है कि आरोपी के दोस्तों ने केस वापस लेने के लिए धमकी दिया। बोली है कि जेल से छूटने के बाद हत्या का डर है। घटना के बाद भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। बिहार में सजा आज तक पंचायत का महामंच। पहले सेशन में कृषि मंत्री विजय सिन्हा अपने अभी तक की राजनीतिक यात्रा को लेकर कई बड़े मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। अपने काम और विभाग के बारे में बात करते हुए कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि जो भी विभाग मिला मैंने अपना बेस्ट दिया है। पंचायत आज तक में कृषि मंत्री विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा कि सरकार जेडीयू बीजेपी की नहीं थी, सरकार एनडीए की है, बदलाव की शुरुआत बिहार से हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बांकीपुर बीजेपी की हार पर प्रतिक्रिया दी है। बोले कि नीट और यूजीसी नियमों को लेकर जनता में नाराजगी थी, जिसका असर चुनाव पर पड़ा है। रविशंकर प्रसाद ने प्रशांत किशोर के आरोपों को भी बेबुनियाद बताते हुए बांकीपुर सीट हारने का कारण भी गिनाया। बिहार की में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया है। पवन खेड़ा ने की बीजेपी और चुनाव आयोग पर बुलाया हमला। कहा कि बीजेपी को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद से पिछले दरवाजे से सत्ता वापस में आ सकती है। केसी वेणुगोपाल राव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बीजेपी के हाथों में कठपुतली से ज्यादा वो कुछ नहीं है। टीएमसी के चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद के बीच ऋतव्रत बैनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि यह आदेश अस्थायी है, भविष्य में निकालेंगे समाधान। ऋतव्रत बैनर्जी ने कहा कि राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह काम नहीं कर सकता और लोकतंत्र में फांसीवादियों के लिए कोई जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजी नगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने। दोनों ही गुटों को नए नाम और नए चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा। 2027 के चुनावों में पहले बीजेपी की बड़ी राजनीतिक मुहिम शुरू कर दी है। बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्राएं नशे की समस्याओं को उजागर करेंगी। नितिन नवीन आज दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी ने पंजाब में नशे की समस्या को लेकर पंजाब सरकार को दोषी ठहराया है। बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष ने कहा है कि पंजाब का दर्द है और आप सरकार ड्रग्स के मुद्दे पर फेल रही है। बीजेपी के आरोपों पर आपका पलटवार, कहा कि यह पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

0: दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ चुनावों के लिए वोटिंग जारी है। डीए कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए वोटिंग का समय सुबह 8:30 बजे से लेकर करीबन 1 बजे रखा गया है। इवनिंग शिफ्ट के छात्रों के लिए वोटिंग दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगी। नतीजे कल आएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए और अर्धसैनिक बलों के जवानों की भी तैनाती की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिटू ने काफिले पर पठानकोट के पास हमला हुआ, बोले 100 आप कार्यकर्ताओं ने किया था अटैक। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि आप बीजेपी से डरी हुई है और इसी वजह से रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला किया गया है। 2027 के चुनावों से पहले अखिलेश यादव ने पीटीए रथ तैयार किया। अक्टूबर से आखिरी हफ्ते में पूरे यूपी में प्रदेशव्यापी अभियान के लिए तैयारी की जा रही है। अखिलेश यादव ने आज पीटीए रथ पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर जोर दिया। 2027 चुनावों से पहले सामरिक समीकरण साधने की तैयारी है। पीटीए पर केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले कि सपा रोज बदलती रहती है, पीटीए की परिभाषा आने वाले समय में सपा ही खत्म हो जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में एससी आरक्षण पर मायावती की यूपी सरकार से मांग, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर आरक्षण के पक्ष में मजबूती से पैरवी कर रही सरकार। मायावती की यूपीआई शुल्क पर सरकार पर निशाना साधा है, बोले कि आम जनता की जेब पर बढ़ेगा इससे बोझ, स्मार्ट स्कूल से पहले बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त हो। मिशन 2027 को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, आजमगढ़ बस्ती मंडल में हार के कारणों की समीक्षा की गई, चुनावी रणनीति पर भी मंथन किया जा रहा है। गोरखपुर में बीजेपी की महामंथन, 12 जिलों के जिलाध्यक्षों और जनप्रतिनिधियों के साथ विनोद तावड़े की अहम बैठक, हार के कारणों का पर चर्चा की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, डीजीपी को गवाहों के बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। दिल्ली एनसीआर की बिगड़ती हवाओं के बीच आज लखनऊ में बड़ी बैठक की गई है। केंद्र और यूपी सरकार प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर समीक्षा कर रही है। लखनऊ में प्रदूषण पर केंद्र और यूपी सरकार का मंथन, भूपेंद्र यादव और सीएम योगी का सह अध्यक्षता पर होगी ये बैठक। मुजफ्फरनगर में किसानों की पहली रात्रि महापंचायत, गन्ने के दाम बढ़ाने और बिजली एमएसपी कानून और सर्किल रेट बढ़ाने पर कई मांगों पर मंथन किया जा रहा है। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत का सरकार को सीधा संदेश, बोले सरकार सुधर जाए नहीं तो आंदोलन की शुरुआत हो गई है, हर जिले में होगी महापंचायत। सपा नेता इंद्रजीत सरोज का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर विवादित बयान, बोले कि चाहे जितना बड़ा तिलक लगा ले सम्मान नहीं मिलता। केशव प्रसाद मौर्य का इंद्रजीत सरोज पर बड़ा हमला, बोले कि यूपी में कहीं से भी चुनाव लड़ ले पंडित ठाकुर उन्हें हरा देंगे। राज्यमंत्री रघुराज सिंह ने तीखे बयानों पर यूपी की सियासत गर्म होगी, अखिलेश और राहुल पर निशाना साधा गया है, पीएम मोदी को बताया कलयुग का अवतार। यूपी में कल से नौकरियों का महाअभियान, 19 सितंबर से 1,00,000 सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लखनऊ में सीएम योगी कल बांटेंगे नियुक्ति पत्र, 4 विभागों की चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र। छह महीनों में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य, शिक्षक भर्ती के बाद पुलिस और राजस्व विभाग में भी भर्तियों की तैयारी है। मेरठ के आसपास में 19 और 20 सितंबर को दिखेगा सूर्यकिरण का रोमांचक, नो हॉक विमानों के साथ होगा एयर शो। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में जुम्मे की नमाज के दौरान ये बड़ा धमाका हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका जहां पर लगातार कहा जाता है कि बहुत ज्यादा टीटीपी और उसके जो दूसरे समर्थित ग्रुप हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय है, और जुम्मे की नमाज के दौरान ये बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 15 लोगों की मौत की खबरें भी मिल रही है। जुम्मे की नमाज के दौरान ये विस्फोटक से भरा एक ट्रक, एक गाड़ी पुलिस लाइन से टकरा गई और उसी के बाद ये धमाका हुआ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाके में अब तक करीबन 15 लोगों की मौत की खबरें मिल रही हैं। कई लोगों के घायल होने की खबरें भी लगातार मिल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा विस्फोटक उस गाड़ी में मौजूद होगा कि पुलिस लाइन के पास मौजूद ये जो कंक्रीट का आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर था बुनियादी, इसको तक हिला दिया। वहां से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा धमाका हुआ जहां पर विस्फोटक से लदी एक गाड़ी पुलिस लाइन से जा टकराई और उसके बाद ये बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 15 लोगों के मौत की खबरें भी मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, अब तक 15 लोगों की मौत की खबरें मिल रही है, कई लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है, क्या इसकी पुष्टि हो पाई है कि आखिरकार किस संगठन ने ये धमाका किया है, किसने इसकी जिम्मेदारी ली है?
1: अभी ये जिम्मेदारी लेने वाली बात सामने नहीं आई है, लेकिन जाहिर सी बात है ये बड़ा अटैक है जो पुलिस लाइन के पास किया गया और 15 लोगों की मौत हुई है। बेहद दुखद है सुमित, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट वही जिम्मेदार है। जिस तरह से मुल्ला मिलिट्री अलायंस के तहत अलग अलग तंजीमों को उन्होंने हवा दी, उनको पाला पोसा, वही आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। असंतोष की भावना कई संगठनों में वहां पर है और शायद उसका नतीजा हो सकता है कि ये जो कुहाट है इलाका खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पर ओल्ड पुलिस लाइन के पास अब तक पुष्टि तो नहीं पाई है, लेकिन ये नेचर फिदाइन अटैक की तरफ इशारा जरूर करता है सुमित, क्योंकि विस्फोटक से लड़ी जो गाड़ी थी वो जाकर अचानक से गेट के पास टकराती है, उसके बाद जोरदार धमाका होता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो 15 लोगों की मौत हुई है उसमें पुलिस कर्मी भी शामिल है, क्या सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। जाहिर सी बात है चूंकि निशाना कहीं ना कहीं पुलिस को ही बनाया गया, जो ओल्ड पुलिस लाइन है उसकी दीवार से टकराया गया है, तो वहां भी जो पुलिसकर्मी है वो हताहत से है जो शुरुआती जानकारी है। लेकिन ये बड़ा हमला जुमे की नमाज के दौरान ही ये विस्फोट हुआ है, जो गाड़ी से लदी हुई विस्फोटक था वो अचानक से जाकर टकराया हुआ है। और ये सिमिलर जैसा हमने आपसे पहले भी बात की थी, पहले टीटीपी ने इस तरह का अटैक पाकिस्तान के एक बड़े शहर में किया था, वो भी पुलिस मुख्यालय था और सीधे सीधे जो पुलिस कर्मी है उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, उस दौरान भी फिदाइन अटैक हुआ था। तो अब और एक चीज और बता देता हूँ कि विस्फोट के अलावा गोलियों के चलने की भी आवाजें सुनाई दी है, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है सुमित। तो ये बड़ा हमला अटैक ये जो कहा जाएगा, अब इसके पीछे कौन संगठन है उसकी जांच जाहिर सी बात से पाकिस्तान करेगी, लेकिन ये दुखद हादसा। लेकिन
0: अरविंद एक बात बताइए, अरविंद आप एक बात बताइए, क्योंकि आप तो इन आतंकवादी संगठनों को बहुत फॉलो करते हैं, लगातार पाकिस्तान में जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, ये पैटर्न हमने अक्सर देखा है टीटीपी का होता है कि अक्सर वो पुलिस लाइन या पुलिस इंस्टॉलेशंस को टारगेट करते हैं और फ्राइडे के दिन ही ज्यादातर उनके अटैक्स किए जाते हैं जब जुम्मे की नमाज अदा की जा रही हो। अभी के जो फुटप्रिंट मिल रहे हैं जिस तरीके से विस्फोटक गए, क्योंकि आपने ये भी बताया कि देखिए जब अटैक हुआ एक्सप्लोजिव फटा तो उसके बाद फायरिंग की खबरें भी मिलने लगी, अभी वहां के ताजा हालात कैसे हैं? क्योंकि देखिए पुलिस लाइन का इलाका तो बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाका होता है, बहुत सिक्योर इलाका होता है, तो ऐसे में वहां के अभी क्या मौजूदा हालात हैं और क्या टीटीपी के कई ऐसे समर्थित गुट भी हैं जो वहां पर सक्रिय रहे हैं पिछले कई दिनों से?
1: बिल्कुल, और देखिए तकरीबन है, इसमें कोई दोराय नहीं है सुमित, आप भी इस इलाके को बेहतर तरीके से देखते आ रहे हैं सालों से, और टीटीपी यहाँ पर बिल्कुल एक्टिव है। और अभी के हालात की बात की जाए तो जाहिर सी बात है अफरा तफरी का माहौल है कुहाट इलाके में, ये बड़ा पुलिस लाइन है जहाँ पर ये अटैक हुआ, और बीते दिनों कई डेवलपमेंट भी आए हैं कि काउंटर करने के लिए बलूच जो लिबरेशन आर्मी है उनको लश्कर को आगे किया गया है, जैसे मोहम्मद को आगे किया है पाक आर्मी ने, इस तरह की भी खबरें खबरें आती रही हैं। तो एक टेररिस्ट संगठन के बनाम दूसरा टेररिस्ट खड़ा करना, इस तरह से काउंटर करने की जो पाकिस्तान
0: बिल्कुल आर्मी, बिल्कुल अरविंद, इस बड़ी खबर पर आपका दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक मध्य प्रदेश से भी एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए आपको बता दें कि एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने की खबरें मिल रही है। देखिए मध्य प्रदेश के सतना में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है और उसके बाद लगातार वहां पर बिल्डिंग में दो बच्चों को निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सतना में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है, दो बच्चों को उस इमारत से निकाल लिया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है और अभी भी कई ऐसी इनपुट लगातार मिल रहे हैं कि आग बहुत ज्यादा भयानक है। देखिए आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सतना में एक बहुमंजिला इमारत में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगने की खबरें लगातार मिल रही हैं। ये देखिए वो तस्वीरें हैं जो हम आपको बता रहे थे कि कैसी भीषण आग इस समय मध्य प्रदेश के सतना में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लग गई है। इस बिल्डिंग से अब तक दो बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अब भी कुछ लोगों के फंसे होने की खबरें हैं। लगातार लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मध्य प्रदेश के सतना से ये बड़ी खबर पहुंच रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए। रवीश पाल सिंह का रुख करते हैं। रवीश, ये इमारत जो है, क्या ये एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, क्या ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है? और अभी वहां पर यह कहा जा रहा था कि दो बच्चों को निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी है?
2: मकान है, सतना के मशहूर तंबाकू कारोबारी है राम नरेश गुप्ता। ये उनका 4 मंजिला मकान है जिसमें आग लगी थी आज दोपहर करीब 1 बजे, और आग बहुत तेजी से फैली, इतनी तेजी से फैली कि ऊपर की मंजिल पे 2 बच्चे मौजूद थे, वो वहां फंस गए थे। लेकिन दमकल की 3 गाड़ियां जो है वो वहां मौके पर पहुंची और उन्होंने वहां पहुंच के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया, और तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को नीचे उतार लिया गया और सुरक्षित है दोनों बच्चे फिलहाल। लेकिन इलाके में अफरा तफरी जरूर इस हादसे की वजह से, इस घटना की वजह से फैल गई थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि निचले मंजिल में शॉर्ट सर्किट की वजह से इस इमारत में आग लगी थी, और उसके बाद बताया जा रहा है कि काफी सामान जो है प्लास्टिक का वो नीचे के, क्योंकि तंबाकू कारोबारी है तो नीचे काफी सामान था जिसने तेजी से आग पकड़ी। और
0: बिल्कुल बिल्कुल रवीश, देखिए लगातार इस बड़ी खबर पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। माफ कीजिएगा आपको बीच में रोकना पड़ रहा है मुझे, लेकिन हम आपको दर्शकों को बता दें कि इस आग पर काबू पा लिया गया जिस तरीके से हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
3: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफ टाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
11: जेके वॉल मैक्स।
9: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
12: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
15: यार लोन भूल गया। मैरी
16: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
17: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
15: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
17: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
18: There's nothing small about
15: us. Ujjivan, nothing small about us.
19: In association with Hint, एक हिंट तो देते।
20: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
19: विमल बोलो जुबां केसरी।
21: There is a very famous quote ki history repeat itself.
22: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
23: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
22: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: विमल बोलो जुबां केसरी।
5: 18 सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में तावड़े सीधे जमीनी स्तर का फीडबैक ले रहे हैं। चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर हो रही है। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ आरएसएस भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। इस बार आरएसएस और बीजेपी कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं रखना चाहती। आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सहकार्यवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। खबर है कि समन्वय बैठक में आरएसएस ने बीजेपी को 2027 चुनाव की वो बड़ी चुनौतियां बता दी हैं जिनसे बीजेपी को पार पाना है। आरएसएस की तरफ से बीजेपी के लिए यूपी में 5 चैलेंज बताए गए हैं। पहला है यूजीसी गाइडलाइन से सामान्य वर्ग का आक्रोश। दूसरा है पेपर लीक पर सरकार के खिलाफ बना माहौल। तीसरा है रोजगार और शिक्षा। चौथा है निचले स्तर का भ्रष्टाचार। और पांचवा है कार्यकर्ताओं की सुनवाई ना होना। यानी बीजेपी ने अगर इन मुद्दों पर काम कर लिया तो आरएसएस को लगता है कि वो 2027 फिर से जीत जाएंगे। ये वो मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द लगातार अखिलेश यादव हमला करते रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, पेपर लीक हो, अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला हो। अखिलेश यादव ने इन्हें लगातार मुद्दा बनाया हुआ है। आरएसएस की तरफ से बीजेपी को कहा गया है कि वो विपक्ष के नैरेटिव में ना फंसे, अपने मुद्दों और सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने के लिए जोर लगाएं, विपक्ष के मुद्दों का सटीक और तथ्यात्मक तरीके से जवाब देने पर जोर लगाएं। ये भी डर है कि विपक्ष जातिवाद का मुद्दा बनाएगा तो कहा गया है कि इससे भी बचना है। कुल मिलाकर बीजेपी को कहा गया है कि वो विपक्ष के नैरेटिव में उलझने के बजाय अपने मुद्दों और लक्ष्यों पर फोकस करें। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में जुम्मे की नमाज के दौरान आत्मघाती धमाका, अब तक 15 लोगों की मौत। विस्फोटकों से लदी गाड़ी पुलिस लाइन से गेट से टकराई। पश्चिम बंगाल उपचुनावों में ममता टीएमसी का चुनाव चिन्ह होगा। फुटबॉल खिलाड़ी बागी गुट का नाम, डेमोक्रेटिक टीएमसी और लिफाफे का निशान। सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिले ममता के नंदीग्राम उम्मीदवार। ममता बनर्जी के समर्थन में आए राहुल गांधी पर बरसी बीजेपी का, कांग्रेस ने अनगिनत सरकारें गिराई, कई दलों को निगला, क्या ये राहुल गांधी नहीं जानते।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बहुत तरीके से पहचान बिहार की हो सकती है, अलग अलग क्षेत्र से हो सकती है, लेकिन कई लोगों की कहानी जो होती है ना उसमें लोग बिहार की कहानी ढूंढ लेते हैं। तो संजय जी उन लोगों में से हैं कि उनकी कहानी में, उनके अभिनय में, उनके किरदार में हम सब बिहार के वो पुट तलाशते हैं, एक आम आदमी कैसे जीता है, कितना किस हद तक क्रोधित हो सकता है, कैसे लड़ सकता है पूरी व्यवस्था से, जब वो मजाक करता है तो किस भाषा में करता है, ये सारी चीजें अनायास हम सब अपने जीवन में साधते जाते हैं। और इसीलिए आपकी फिल्मों के जरिए उस किरदार का थोड़ा सा हिस्सा हम आप में देखते हैं जब हम आपसे बातचीत करते हैं संजय जी। अब सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप बिहार से निकले, बनारस गए, बनारस से बंबई गए, लेकिन बिहार कितना जिंदा रहा आप में?
1: सबसे पहले आवाज आ रही है मेरी? नमन बिहार, वंदन बिहार। कैसे भूल सकता हूं बिहार को भाई, कैसे हटा सकता हूं बिहार को? बहुत सारे पेड़ ठंडे में जन्मते हैं, कुछ अलग जन्मते हैं, हम बिहार में जन्मे तो यहाँ की मिट्टी, हवा, पानी। और मेरी एक आदत है, जो पैदा हुए हो वैसे ही मरना, ग्रो करना, ये नहीं कि वहां वहां करते हुए गए, ग्रो करना। लेकिन जो हो, जिस मिट्टी के हो, जहां के हो, जो तुम में है वही पहचान बनेगी तुम्हारी। तो बिहार मुझ में है तो पहचान बनेगी। बड़ा अजब किस्म का औलाद हूं मैं यशोदा जी, मतलब बनारस ने बहुत पाला, जन्म यहाँ दिया, तो लेकिन है पूर्वांचल ही सब, तो वो हवा है मुझे,
0: गंगा किनारे किनारे है
1: सब। जी जी जी जी।
0: तो लेकिन अब आपके पीछे भी जो हम तस्वीरें लगाए हुए हैं, अब
1: अच्छा
0: है ना,
1: आप बता दिया, थैंक यू।
0: आपके पीछे जो तस्वीरें लगाए हैं उसमें सब में भाव अलग है। किसी में जब संजय जी हंसाते हैं तो वो उस डायलॉग पे आज की पीढ़ी से लेके पुरानी पीढ़ी तक, नई पीढ़ी मीम बनाती है, पुरानी पीढ़ी उस डायलॉग को बोलकर याद करती है। तो फिर हम वध का किरदार भी आपका देख लेते हैं
1: जी,
0: जो एकदम पूरे पूरा स्पेक्ट्रम में पूरा दूसरा ऑपोजिट, दूसरा छोर उसका। लेकिन संजय जी मैं यहां पर उस बात से शुरू करना चाहती हूं कि आपने जिन कारणों से आगे बढ़े होंगे एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर, क्या आप वो हमसे साझा कर सकते हैं इस हिसाब से कि आज भी बिहार के युवाओं को अगर शिक्षा के लिए, देखिए जब एक बेहतर जीवन के लिए आप जाते हैं तो वो अलग होता है, जब विकल्पों के अभाव में जाते हैं बिहार
1: वो अलग होता है, उसमें खाना भी अच्छा बनता है, खाना भी उसमें अच्छा बनता है, नहीं है डालो डालो, देखो कोशिश करते हैं आदमी, बन भी जाता है। हाँ हाँ हाँ, शिक्षा बड़ी अजीब चीज है, कोई एक आदमी बना देता है,

0: क्योंकि उसको आपने अवॉइड कर दिया।
1: पेशाब।
0: महिलाओं को बारे में सोचिए, कितनी दिक्कत होती होगी उनको प्लेन में या स्टेशन पर या ऐसी जगहों पे जहां पुरुष खड़े होकर पेशाब कर देते कमोड में। समझ रही है? शिक्षा वो देनी चाहिए, इससे बेसिक शुरुआत करो। तुम्हारा कंपटीशन ये नहीं है ए फॉर एप्पल बी फॉर बेबी सी फॉर कैट। यहां से शिक्षित करो। मेरी बेटी को छोटी थी, घर में हम लोग आए पाए करते ही रहते हैं। स्कूल से आया कि भाई आपकी बेटी बोलती है मैडम पानी पीना है, तो हम बोले यही बोलेगी मैडम, दीवार चाटना तो बोलेगी नहीं मैडम, दीवार चाटना है, पानी पीना बोल। नो, शी शुड से इन इंग्लिश ना। हम कहे पहले अपने भाषा पे तो पकड़ हो जाए उसकी। आप उसको सिर्फ शिक्षा के नाम पे इंग्लिश सीखो। आज मेरी, और वो कब पल मेरी बच्ची जो है इंग्लिश बोलने लग गई, अभी वो नैनीताल में है शेरवुड में। अच्छा। वहां के प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि पल की इंग्लिश सबसे बेहतर है पूरे स्कूल में। और मैडम की क्या शिकायत थी? शी शुड से इन इंग्लिश ना। और छोटी बेटी ऐसा फर्राटा इंग्लिश बोलती है, उसको अगर कुछ चाहिए तो समझ गए, हमसे भी ऊपर चली गई। शिक्षा बहुत अलग चीज होती है, और हम खासकर बिहार में ऐसी शिक्षा की जरूरत है। मैं एक्टर हूं, मैं अपने लोगों को देखता रहता हूं, कितना दबा हुआ, क्यों, वजह क्या है। श्वेता, मैं अभी 3 दिन पहले आ रहा था, बनारस से आ रहा था, वो वहां की भूमि अलग है, वहां बहुत भीड़ होती, बहुत भीड़ होनी भी चाहिए। बिहार में एंटर किए 7:30 बजे, सन्नाटा, होटल खोले हैं, खाने वाला कोई नहीं, पेट्रोल पंप, मैंने कभी, एक फिल्म थी यू टर्न, उसमें पेट्रोल पंप खाली दिखता था बड़ा, वैसे ही सारे पेट्रोल पंप दिख रहे थे। फिर सोचने लगा वजह क्या है, कुछ डरावना है क्या यहां। हम भी डर गए थे कि भाई इतना सही में कोई नहीं दिख रहे थे, वो देखो स्कूटर वाला दिखा है एक, ऐसा हो गया था। वजह क्या है, वजह कहां गए वो लोग और क्यों गए वो लोग। शिक्षा, कमाने वाले को हमेशा MBBS MA MB नहीं चाहिए, उस सड़क कुछ भी करके तड़ तड़ तड़ तड़ तड़ तड़ तड़ कर खड़ा। बचपन में हम लोगों को लोग दोस्त लोग बोलता था, कभी किसी सरदार को भीख मांगते देखे हो? सही में नहीं देखे यार, कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ ठाक, वो शिक्षा चाहिए। आज आपको पता नहीं आता होगा काम, किसको आता होगा अल्फा बीटा थीटा
2: AI।
0: हाँ, हमको तो आज तक काम ही नहीं आया, 40-40-80 होता है मालूम है भाई, उसमें अल्फा थीटा डीटा, हमारा वक्त क्यों बर्बाद किया। उस समय कुछ और सिखाते, कुछ अच्छी चीज सिखाते कि बेटा, हमारे यहां सब चिरकुट ड्राइवर हैं, बुरा मानो भला मानो, रोड की रोड सेंस नहीं सिखाया, ऐसे रोड टर्न हो रहा है यहीं पर सब पैसेंजर को, और हम इंसानों की भी आदत है फल्ला मोड़ पर मिलना, और मोड़े पर सब खड़ा है, पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं, भाई हम तो खड़ा है, मामा का लड़का आ रहा है, हमारी क्या गलती है, कोई मामा का लड़का मर रहा है गाड़ी में एम्बुलेंस में, वो हमें नहीं सिखाया। ये है शिक्षा, बेसिक बेसिक ह्यूमन शिक्षा। उसके बाद ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट कहोगे, बी फॉर बम भोलेनाथ, जो भी बोलना है बोल लो, लेकिन जो बेसिक शिक्षा नहीं दी दोस्त, तो मैं चाहूंगा कि, और देखो हाँ एक और ख्याल आया था, अब तो खाली हो गया बिहार, सारे लोग चले गए, जो बचे हैं आओ उनको मिला करके कुछ बनाते हैं, जो गए वापस आ जाएंगे। अबे यहां तो सब कुछ है, हम काहे को वहां बैठे हुए, और कल से नहीं जा रही है जनरेशन जा रही है। चंडीगढ़ में शूटिंग करते हो जी, इतने बहुत बिहारी हैं, बिहारी बहुत हैं जी, हाँ जी बहुत, तो बिहार के बिहारी कहां गए, ज्यादा तो नहीं बोल गया?
2: नहीं नहीं, कुछ कुछ चीजें ज्यादा होती हैं तब भी जरूरी होती हैं। तो संजय जी, वैसे ये कहें कि क्योंकि मेरा

0: पूरा पूरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई और स्कूल से लेके कॉलेज तक।
1: पटना के हो?
0: पटना के हैं।
1: धन्यवाद।
0: हैं वैशाली के पर पढ़े पटना में, पर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट।
1: हम सेंट्रल स्कूल
0: अलीसाबाद। अच्छा, लेकिन उसमें यह है कि लड़कियों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज थे, लड़कों के लिए थोड़ी कमी होती थी, निकलते थे सब बाहर पढ़ने।
2: अच्छा।
0: अब पटना बहुत बदला हुआ दिखता है क्योंकि आपके पास सड़क बहुत बन गई है, एक अटल पथ है, मरीन ड्राइव है, बहुत सारी चीजें होंगे। अब यही परिवर्तन थोड़ा सा, हम थोड़ा सा बाहर निकल के आपके एक्टिंग करियर पे भी जाते हैं।
2: नहीं, इसी पर बात करो ना, एक्टिंग करियर
0: दोनों चीज मिला जुला के। संजय जी, दोनों चीज देखिए, वहां पर क्या होता है कि मरीन ड्राइव पर जब जाते हैं तो देखते हैं सब रील बनाते रहते हैं, इनमें से भी सब सबने बना लिया एक एक बार रील मरीन ड्राइव पर। सब सर हिला रहे हैं। आप नए एक्टर्स को देखते हैं, आप उतना एक्टिव हो पाते हैं इंस्टाग्राम पे या
2: आजकल ना लोगों को कैद कर लो, कैद मतलब किसी भी चीज को, सुंदर साड़ी क्रैप। एक समय में फुर्सत नहीं होता था यही सब देखने, मेरे बाप ये गंगा जी है। अरे पहले तो गंगा देख लो, या तो अपने को गंगा के साथ देख लो, गंगा जी है इतना, गंगा जी बाप रे बाप। अब लोग बिकॉज ऑफ मोबाइल कट कट कट कट, वो रील अब है भी रील, और बहुत चंगी चीज है कि 2 मिनट में आपको पॉपुलर कर देती है। हाँ। 2 मिनट में पॉपुलर कर देती है, तो हर कोई चाहेगा पॉपुलर हो। हमारा ये सब नहीं था।
0: अच्छा है बुरा है, क्योंकि
2: देखिए आप परिवर्तन की बात मिलेगा की, नहीं परिवर्तन। हाँ। की बात की, परिवर्तन होता है वक्त। हाँ। आप परिवर्तित हो गई जब आप पटना में पढ़ी होंगी, फिजिकली मैं परिवर्तित हो गया फिजिकली, तो पेड़ परिवर्तित हो जाते हैं, पौधे से वृक्ष बन जाते हैं, तो बदलाव तो नियम है। लेकिन बदलाव को अगर बेस से आप पकड़ लेना, अगर आप मान रहे हैं कि अभी 30 साल के हैं आप ऐसे हैं, बेटा कभी तो 60 के हो गए, तो अभी से प्रयत्न शुरू कर दो कि मैं 60 का हूं। सिर्फ बॉडी परिवर्तन में बदलाव की जो बात कर रहे हैं ना, बब्बी अभी आते नीचे एक बार, बिहार में बदलाव कैसा है भैया? हम कहा तू ना बदल नहीं रहे, 10 साल पहले ऐसे थे तुम रे, अभी वो तो हम बदलबे के हैं, लेकिन बिहार का हम कैसे नहीं बदलेगा, बदलाव तो है। तो आप बॉडी आप अपनी जान रही कि मुझे बदलाव चाहिए, अब चाहिए अब चाहिए अब चाहिए, अब नहीं होगा तो देर हो जाएगा, फिर आप ऐसे हो जाते हैं ऐसे हो जाते हैं, कोई पानी दे दो। शहर का बदलाव भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या आप जैसे अभी हमारे रोड्स हैं पाटलिपुत्रा में, गली वली किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन सोच ऐसी होनी चाहिए ना कि आज से 20 साल बाद यहाँ क्या होगा। गाड़ी तो हम EMI पर दे रहे हैं, सड़कवा किन्ने है भैया, कहां से मुड़ोगे, कहां से टर्निंग, फिर वही आज आप किसी को रोके हुए हैं, कल आप एम्बुलेंस में होंगे, कोई आपको रोका हो। ये शहर का बदलाव, विजन विजन विजन बहुत जरूरी है कि आज से 20 साल बाद ये सड़क क्या होगी, ये मैं नहीं जान रहा हूं, तो आप हमारे नेता नहीं है सर। आपको कोई हक नहीं है कि आप, मालूम ही नहीं है एक एक साइकिल जाएगा, चलो दौड़ा दो, शुक्ला जी तो 400 रुपया देकर और जमीन बढ़ा दिए, तुम भी दे दो बढ़ जाएगा। वो जो जमीन बढ़ाए वो तो गए, बढ़ाने वाले भी गए बढ़वाने वाले भी गए, अब झेल कौन रहा है आज, आज हम इतना झेल रहे। तो बदलाव को बेस से ही पकड़ लेना चाहिए। हमारे फादर पत्र सूचना कार्यालय में थे तो ऐसे ही, यहां तो खैर शीशे का बोतल है, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं कुछ, उनके सामने ऐसे ही बिस्लरी पड़ा था, हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं था बिस्लरी, शायद होता हुआ अंग्रेजों को देखा था कि वो आते थे तो सोडा पीते थे बिकॉज उनको इंडियन वाटर नहीं पच पाता था, तो देखा अबे ये क्या है बे, पानी, पापा जी पानी, वाह यार राजीव गांधी ये पानी पीता है, कमाल है। ध्यान उधर नहीं जा रही है, उसमें प्लास्टिक का बॉटल है, उसी समय उसको रोका गया होता तो आज आप प्लास्टिक बचाओ। एक बड़ा आप कर रही थी तो बेटी का ख्याल आया, बेटी क्यों हम उसको इतनी छोट, बेटी बचाओ बोलने का मतलब आंसू आ रहे हैं मुझे, ये किसका हक है, बेटी बचाओ, ह्यूमन है वो, सिर्फ उसके साथ कुछ बोझ लाद दिया गया है, इसको पढ़ा के क्या करेंगे, दूसरा घर चल जाएगी, संतोष को पढ़ाओ, एक दिन हम ऐसे ही सोच रहे थे बेटी क्यों, क्योंकि क्या होगा कि आज मैं हूं, मेरी वाइफ है, दो बेटियां हैं, कल को अगर मैं ना रहूं बुढ़ापे में वाइफ को देखेगा कौन, अगर वाइफ ना रहे तो मुझे कौन देखेगा। अपना बेटा के घर होते ना तो बात कुछ और होता, दूसरा के बेटा दमा, अरे वजह उसकी शादी में इतना, उस क्यों क्यों उसको बोझ बना रहे, दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाएगा, बेसिक चीजें सुधार देंगी, मैं इतना जानता हूं बेसिक चीजें सुधार देंगी वो। मैं अपनी किताब लिख रहा हूं, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, उस समय होता था 9 भाई में एक मेरी मां बहन थी अकेली, तो उस चैप्टर में मैंने लिखा है नाना नानी ने बेटी की चाहत में मोहल्ला बसा दिया, तो फिर बेटी बचाओ, कुछ ऐसे भी लोग हैं। और कई लोग 8 बेटियों के बाद एक बेटा, क्या कर लोगे?
0: तो जो शिक्षा में जिस परिवर्तन की बात आप चाह रहे हैं वो स्कूली शिक्षा होगी या घर में जो
2: हरेक की शिक्षा, हरेक की शिक्षा। आज कोई भी लीडर है, कैसे है लीडर, किसी को भी जाके दांत दिखवा दोगे क्या तुम, सर पेट में यहां दर्द हो रहा है, आप क्या करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, देख लीजिए ना। उसके लिए एक पर्टिकुलर आदमी होता है, इंसान होता है जिसने उसकी पढ़ाई पढ़ी होती। हम आज तक देश किसको दिए हैं हमें नहीं पता, बुरा ना मानना होली है, हमें नहीं पता हमने किसके हाथ में देश दे रखा है। दूरदृष्टि बहुत जरूरी है देश चलाने के लिए, आज के लिए नहीं कि 2027 का चुनाव क्या होगा, 2016 का चुनाव क्या होगा, 3009 का क्या था, ये सबसे नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि बेसिक शिक्षा ऐसा कीजिए कि सर मेरा बेटा है 3 बार IPS दिया नहीं हो पा रहा, फिल्म लाइन में करवा दीजिए ना। क्या मतलब है IPS के लिए आपने 3 साल दिए और फिल्म लाइन में ऐसे ही ढुकाइएगा, आपकी रुचि होनी चाहिए, तुम्हारे खून में था पत्रकारिता, आई डोंट नो तुम्हारे फादर आई नो, लेकिन एक चीज थी तुम्हारे खून में, उसी हिसाब से तुमने लाइन पकड़ा, खून में आइए ना।
0: नहीं, बिहार में तो अधिकांश होता है कि UPSC नहीं कम्पीट कर पाते हैं तो दूसरा
2: दहेज के लिए। अरे महाराज, हम खुद 10th में पढ़ते थे और वर्मा के लिए इम्तिहान दिलवाए थे चोरी से, हम खुद 10th में पढ़ रहे थे, 12वीं क्लास के लिए मैं इम्तिहान दे रहा था और इम्तिहान देने वाला लड़का कौन था, अरे लिखो जल्दी लिखो बहुत लिखना है, हाँ हाँ, उसको टी लिखना भी नहीं आ रहा था और वो ऐसे ड्राइंग बना रहा था, ऐसे ऊपर वो लाइन वो नीचे ही, हम कहा तू तो लिख ले ले बेटा, वो तो काहे पढ़ा रहे हैं बेटे को, दहेज तनी 2 लाख और झेलेगा कौन, बेटी का बाप, वो पढ़ा नहीं सकता, वो नहीं पढ़ा सकता कि उसकी बेटी BA पास है, MA पास है, उसको दहेज नहीं मिलेगा, है तो बेटी है ना, ये क्यों है, ये वजह है, सोचने की वजह है गुरु।
0: क्या केवल यूपी बिहार की हम बात कर रहे हैं या हम समूचे देश की बात,
2: पूरा देश ही में
0: क्या बिहार एक स्टीरियोटाइप का भी शिकार हो जाता है?
2: होना ही पड़ा, होना ही पड़ा, नौकर कहां का होगा फिल्मों में, बिहार का, कोई चिरकुट पॉलिटिशियन को कहां का होगा, बिहार का, कभी आप नहीं दिखाए, अब बनने लग गई हैं, बड़े IAS IPS बनते हैं, बड़े डॉक्टर्स बनते हैं, डॉक्टर कहां का होगा तो वो कहीं और का, लेकिन डॉक्टर के बगल में जो स्टील का वाल का है वो बिहार का। तो ये शुरू से, और बुरा ना मानिएगा, ये हम लोगों की भी गलती है, हम लोगों की भी गलती है, लगाओगे आम तो कहां से खाओगे, कटहल या क्या बोला पेड़ बबूल का, आम कहां से हुए, तो ये हमारी भी गलती है, अब भी सुधर जाना चाहिए, अब भी सुधर जाना चाहिए, पीछे वालों के लिए नहीं आगे वालों के लिए सुधरना चाहिए। कहते हैं ना, जैसे मैं आर्टिस्ट हूं, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा, मेरा कंट्रीब्यूशन होगा मेरा काम, मुंह नहीं, मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, मेरा काम, मैं दिखाऊंगा जल आपदा। सोचो ना यार, हम जब इतने बड़े थे, शायद उससे भी छोटे, शायद मेरे पापा भी जब इतने बड़े होंगे, तब से बाढ़ की समस्या जूझ है नहीं पा रहे हम, इतने बड़े से। आज सुन, गंडक के बाढ़ है, फलना का बाढ़ है, अरे बाढ़ है महाराज, वो आपकी वजह से आ रहा है, आपने सब कुछ सीमेंटेड कर दिया, सब कुछ कर दिया, जो भी कर दिया वो आपकी वजह से आ रहा है, आपको चाहिए कि उसके पानी को मैं दिशा दे दूं, ताकि फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई किसान भी उससे काम कर सके, सब कुछ का हम दिशा दे दे। हम बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बना चुके हैं, लेकिन एक धारा को मोड़ने का प्रोजेक्ट नहीं बनाए कि वो पानी हमारा राजस्थान कैसे चला जाए, जिसके घर के सामने से जाएगा वो जगह सुंदर भी लगेगी और एक हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।

2,20,000 पुलिस विभाग, 1,50,000 शिक्षा विभाग, 29,000 स्वास्थ्य विभाग, 48,000 UPPCS, 54,000 UPSSSC, 4,50,000 संविदा भर्ती। 9 साल में 9,00,000 से अधिक नौकरियां यूपी में नौजवानों को मिल चुकी हैं। निजी क्षेत्र की 3.25 करोड़ और संविदा की 4.25 लाख नौकरियों को छोड़ भी दें तो योगी सरकार यूपी में चुनाव से पहले के 6 महीनों में 1,00,000 से अधिक सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोलने वाली है। यूं तो सीएम योगी पिछले 3-4 महीनों से तकरीबन हर महीने कहीं न कहीं नियुक्ति पत्र बांटते नजर आ रहे हैं, लेकिन 19 सितंबर से ये अभियान और जोर पकड़ने वाला है, जिसमें पहले 4 विभागों में चयनित नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों के चुनावी असर को बखूबी समझ रही बीजेपी यूपी में इस मोर्चे को दुरुस्त रखना चाहती है। यही वजह है कि सीएम योगी लगातार नौकरियों की बातें कर रहे हैं और यूपी सरकार के दावों के मुताबिक सरकारी नौकरियों के आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि पुलिस विभाग में 1,00,000, शिक्षा विभाग में 50,000 पद, राजस्व विभाग में 20,000 पद, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 37,000 से अधिक पदों पर भर्तियां प्रस्तावित हैं। इनमें 15,000 टीचर्स की भर्ती का विज्ञापन निकल भी चुका है। 77,000 से अधिक पुलिस विभाग की भर्तियां निकल रही हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी चुनाव में जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा सरकारी पदों की रिक्तियों को भरने की कोशिश कर रही है। वैसे योगी सरकार फिलहाल 1,00,000 सरकारी नौकरियां देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बजट और सरकारी रिपोर्ट की माने यूपी के सरकारी विभागों में कम से कम 2.5 से 3 लाख पद खाली हैं और फिलहाल 17.78 लाख नियमित कर्मचारी और 6.12 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। इन संविदा और आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों के लिए भी सीएम योगी ने मेडिकल से लेकर पीएफ तक की तमाम सुविधाओं की घोषणा इसी महीने की है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नी 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम,
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
0: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कह जाएंगे।
1: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
3: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा हैं।
1: क्या बात कर रहे हैं,
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
1: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अखिलेश की चुनावी तैयारी फिलहाल दफ्तर के अंदर और दफ्तर के बाहर ज्यादा नजर आ रही है। दफ्तर के अंदर अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एआई वाले वीडियो दिखाते हैं और दफ्तर के बाहर अब अखिलेश का पीडीए रथ भी तैयार होकर आ चुका है। यही वो समाजवादी रथ है जिस पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल, रूट का खुलासा नहीं किया, लेकिन चमचमाती बसें जरूर पहुंच चुकी हैं। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं, छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है, 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है, लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन। दरअसल ऐसी ही बस में अखिलेश यादव पहले भी चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन इस बार की बस आते ही बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ पीडीए के फॉर्मूले को लेकर मोर्चा खोल दिया, क्योंकि बस पर पीडीए का असली फुल फॉर्म लिखा गया है।
1: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए। पीडीए पूरी तरह से फर्जी है, सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
0: दरअसल अखिलेश की समाजवादी रथ वाली बस में बाई ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है, सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाई ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में ये स्लोगन लिखा है, पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा है। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें। दरअसल समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि इसी फॉर्मूले के साथ संविधान के मुद्दे वाली कॉकटेल ने उन्हें जबरदस्त कामयाबी दिलाई थी और तब 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गई।
2: जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में बी आर अम्बेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे या बीजेपी की संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन संजय के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

की नमाज के दौरान आत्मघाती धमाका, अब तक 15 लोगों की मौत, कई लोग घायल, विस्फोटों से लदी गाड़ी पुलिस लाइन के गेट से टकराई। पश्चिम बंगाल उपचुनावों में बड़ा ट्विस्ट, नंदीग्राम से ममता गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान ने नाम लिया वापस, कुछ देर पहले ही सीएम शुभेंदु अधिकारी से की थी मुलाकात।

पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, 95% आम लोगों को इससे बोझ से बाहर, आज तक के महामंच पर शाम को आएंगे सीएम सम्राट चौधरी।

0: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। रणभूमि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर यह अपडेट मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में उपचुनावों से पहले ममता गुट को एक बड़ा झटका लगा है। नंदीग्राम से ममता गुट की उम्मीदवार ने सीएम से मुलाकात की, शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की और उसके बाद अपना नाम वापस ले लिया है। आपको बता दें कि ममता गुट की प्रत्याशी ने पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की, ये तस्वीरें भी सामने आई और उसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपना नाम चुनाव से उपचुनावों से वापस ले लिया है। संचिता प्रधान ममता बैनर्जी गुट की लगातार वहां से उम्मीदवार थी, एक प्राइमरी टीचर बताया जाता है, और संचिता प्रधान ने सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद अपना नाम वापस ले लिया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, आखिरकार क्या मसला है, क्योंकि संचिता प्रधान कहा जा रहा था एक प्राइमरी टीचर है, एक बड़ा साफ छवि है, महिला है, और नंदीग्राम क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ भी है, तो ऐसे में कहीं इन तमाम परिस्थितियों के बाद ही उन्होंने नाम वापस तो नहीं लिया? देखिए, हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू का एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से एक खबर बता दें कि संचिता प्रधान जो ममता गुट की उम्मीदवार थी नंदीग्राम से, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इससे पहले थोड़ी देर पहले ही वो पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी, उसके बाद वो तस्वीर भी सार्वजनिक हुई और उसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने नंदीग्राम उपचुनावों से अपना नाम वापस ले लिया है। ममता बैनर्जी के लिए, उनके गुट के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नंदीग्राम उपचुनावों को लेकर कहा जा रहा था कि ममता बैनर्जी ने पूरी जान लगा हुई थी और ममता बैनर्जी गुट के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है। संचिता प्रधान की सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात होती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। संचिता प्रधान दरअसल एक प्राइमरी टीचर है, एक साफ छवि वाली उम्मीदवार उनको बताया जा रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी मुलाकात सीएम शुभेंदु अधिकारी से होती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो अपना नाम वापस ले लेती है। और देखिए, आज ममता बैनर्जी के लिए दो बड़े, आप कह सकते हैं सेटबैक है उनके लिए, बड़े झटके। सबसे पहले अगर आप बात करें इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगातार उनके नाम को लेकर या फिर एक चुनाव चिन्ह को लेकर, फुटबॉल के साथ खिलाड़ी, उनको चुनाव चिन्ह दिया गया टेम्परेरी, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो उपचुनाव होने हैं उनमें उनकी मुख्य रूप से जो आप कह सकते हैं जो कैंडिडेट थी संचिता प्रधान, उन्होंने ही अपना नाम वापस ले लिया है। और ये बड़ा झटका इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले वो सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करती हैं, उनसे मिलने के बाद एक लंबी चर्चा करती हैं, तस्वीर भी सामने आती है और तस्वीर सामने आ जाने के थोड़ी देर बाद ही वो अपना नाम वापस ले लेती हैं, यानी उपचुनावों के बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में अब ममता बैनर्जी गुट को एक नए उम्मीदवार की तलाश होगी, लेकिन इस खबर के आ जाने के बाद खासतौर पर जो इसका उपचुनावों पर कैसा असर पड़ेगा यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि ममता बैनर्जी गुट के लिए ये बड़े झटके के तौर पर इस खबर को, उनके नाम वापसी को लेकर देखा जा रहा है।
1: इट इज AI, थ्रू AI दे हैव स्टार्टेड दिस प्रोसेस बिफोर इलेक्शन। ये बहुत दुख का बात है। बिहार में ऐसा लूटा, छत्तीसगढ़ में ऐसा लूटा, हरियाणा में ऐसा लूटा, बंगाल में ऐसा लूटा। एक झूठा बीजेपी पार्टी है, झूठला पार्टी है, जिसका काम देश का प्रगति के लिए नहीं है, जिसका काम है देश को लोकतंत्र को खत्म करना, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना, एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना। इवन द जर्नलिस्ट आर नॉट स्पेयर्ड। कोई उसका खिलाफ में एक भी बात करते हैं तो उसको अरेस्ट करके ले जाता है, उसको फेसबुक बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ट्विटर ब्लॉक कर देता है, डिजिटल ब्लॉक कर देता है। हमारा पहले उद्धव ठाकरे जी का पार्टी को ऐसा ही पार्टी का सिंबल को इलेक्शन कमीशन, आई एम रेस्पेक्ट फॉर चेयर, आई डोंट हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर एनी इंडिविजुअल पर्सन हु इज बिजी ओनली टू सेटिस्फाई द ईगो ऑफ बीजेपी। why this 14,000, I think 4,000 EVM machine is been burned, and why there is no investigation? Can you tell me after the election? What happened? What happened? Number two, पहले उद्धव ठाकरे को पार्टी को तोड़ा, इसका बाद वो एनसीपी को तोड़ा, इसका बाद हम लोगों के पास बहुत सारे थ्रेट आया कि उसको सपोर्ट करने के लिए बीजेपी को, हम लोगों ने नहीं किया, हम देश का इंटरेस्ट में नहीं किया, जनता को इंटरेस्ट में नहीं किया, इसी के लिए वो लोगों ने पहले से प्लान करके झूठा एसआईआर करके झूठा इलेक्शन करके काउंटिंग तो सीआरपीएफ किया, सेंट्रल फोर्सेस सीआरपीएफ किया, काउंटिंग एजेंट को निकाल दिया, तीन चार राउंड का बाद पूरा हाईजैक कर लिया, एंड वी नो हु वाज द मास्टरमाइंड, इट इज अवर कार्टेसी, वी आर नॉट मेंशनिंग द नेम, इफ नेसेसरी वी विल डू दैट इन लेटर ऑन। लेकिन इन्होंने क्या किया, हाईजैक किया है टोटल, इट वाज कंट्रोल फ्रॉम सम ऑफिस टू हाईजैक द ईवीएम मशीन इवन। Instead of that, we never thought that they will seize our symbol and party name. How can they do it? 29 years party, first they freezed our bank account. Why? Even from 98, I have donated from my MP salary. All the MPs, these 29 years, MLAs, councillors, others, party workers, bond. There are so many political parties. Why they are not going to seize that? There are so many Benami political parties where thousands of crores are pending in the name of some so-called political parties. Thousands of crores are pending. And see how BJP is having the money. Much more money. It is what you are seeing, that is the only national level. There are state level. There are district level. There are block level. There are taluka level. There are corporate level. So can you imagine? Lakhs of crores. How many commission came in our time? 155 commission came, 155 guys. Now, I came to know from Dula, I have heard her speech, more than 64 people are murdered within these 4 months. More than 44 girl child and others women are raped. Then raped, tortured, even midnight they are entering the house of the bedroom where they cannot the police. Now police became their number one arms. Police is going and asking them, either you join the BJP supported what we call the rubbish group, or you go to jail. Our 14,000 workers either arrested or facing cases every day. It's a world record. Even this type of atrocities never happened in Africa.
0: और देखिए सिंबल को लेकर ममता बनर्जी कैसे इलेक्शन कमीशन पर भड़क गई। उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए बल्कि बीजेपी पर भी, उनकी पार्टी तोड़ने और संविधान की को लेकर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए। और ममता बनर्जी के लिए दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि उनकी खुद की उम्मीदवार जो उपचुनावों में उतरी थी संचिता प्रधान, उन्होंने भी अपने नाम वापस ले लिया। चलिए खबरों के रुख में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं रणभूमि से आ रही एक बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की भी।
2: ईरान पर होने वाला है विनाशकारी हमला, क्या है ट्रंप के इस बड़े बयान का मतलब? बड़े हमले की बारी या ध्यान भटकाने की तैयारी? हूती के हमलों ने बहाया कोहराम, सऊदी के साथ का दिखावा कर रहा पाकिस्तान, हुर्मुज में हमलों से बढ़ रहा घमासान, इसराइल की एयर स्ट्राइक से हिला लेबनान। एक तरफ बातें हैं, मुलाकातें हैं, संयुक्त राष्ट्र की चिंता है, तो दूसरी तरफ हाहाकारी हमले हैं, बयान हैं और मिसाइलों से बढ़ता घमासान है।
0: और देखिए आपको ईरान, अमेरिका और हूती के बीच में हो रही जंग को लेकर तमाम बड़े अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से बड़ा अपडेट मिल रहा है, वो ये कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में एक बड़ा धमाका हुआ है। देखिए आपको बताया कि खैबर पख्तूनवा में पुलिस लाइन के पास ये धमाका हुआ है, जिसमें 15 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ये धमाका तब हुआ जब वहां पर जुम्मे की नमाज अदा की जा रही थी। कहा जा रहा है कि पुलिस लाइन के आउटर पेरिफेरल के अंदर एक, आप कह सकते हैं कि एक्सप्लोजिव के साथ भरी एक गाड़ी आती है, पुलिस लाइन से टकराती है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो जाती है। विस्फोटों से लदी गाड़ी पुलिस लाइन से टकराई और ये बड़ा, आप कह सकते हैं, इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि देखिए कुछ लोगों के इसमें घायल होने की खबरें भी मिल रही हैं, लेकिन 15 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि हो चुकी है। कोहाट में आत्मघाती धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई है, इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप समझ सकते हैं इनको देखकर कि आखिरकार धमाका कितना ज्यादा भयानक, कितना ज्यादा तेज रहा होगा कि वहां के आसपास के मोटे मोटे कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स को भी उसने भारी नुकसान पहुंचाया। देखिए तस्वीरें इस समय खैबर पख्तूनवा के इलाके की है, कोहाट इलाके की है, जहां पर इस घटना में, इस आत्मघाती घटना को अंजाम दिया गया है। और देखिए खैबर पख्तूनवा वो इलाका है जहां पर अक्सर पाकिस्तान के इन इलाकों में हम इसी तरीके के अटैक पहले भी देखते हैं। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कराची में भी इसी तरीके का एक धमाका हुआ था और उसकी जिम्मेदारी भी टीटीपी के एक समर्थित गुट ने ली थी, लेकिन उसी तरीके का, उसी पैटर्न का एक तरीके का आत्मघाती हमला इस समय हम खैबर पख्तूनवा के कोहाट इलाके में देख रहे हैं, जहां पर पुलिस लाइन के गेट पर उसकी दीवार से एक एक्सप्लोजिव से भरा ट्रक, एक गाड़ी आकर टकराती है और उसके बाद बड़ा धमाका होता है जिसमें 15 लोगों की मौत हो जाती है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी भी हमारे साथ जुड़ गए। शिवानी, अभी क्या ताजा अपडेट है, क्या वहां पर, क्योंकि 15 लोगों की मौत हुई है, पुलिस लाइन का ये इलाका है, क्या वहां से अपडेट मिल रहा है?
3: देखिए आपको बता दूं सुमित के ये जो धमाका हुआ है इसमें 15 लोगों की जान गई है और ये भी बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी हैं। और ये लगातार दूसरा दिन है पाकिस्तान में इस तरह के एक बड़े हमले का। कल भी ऐसा ही एक हमला हुआ था और इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो घायल हुए हैं, लगभग 50 लोग इसमें घायल हैं, उन्हें अस्पतालों में भेजा जा रहा है, उनका इलाज कराया जा रहा है। और खैबर पख्तूनवा का ये कोहाट इलाका है जहां पर जुमे की नमाज के दौरान ये एक आत्मघाती हमला हुआ, एक व्हीकल बॉर्न एक्सप्लोजिव के साथ ये धमाका हुआ है। और सुमित लगातार इस तरह के अलग अलग धमाकों में अब तक 1000 सुरक्षा कर्मियों की जाने जा चुकी हैं। अगर इस साल की हम बात करें तो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद का
0: एक और बात झेल रहा है, क्योंकि
3: हर दिन अलग अलग प्रांतों में इस तरह के हमले हो रहे।
0: बिल्कुल शिवानी, एक और बात, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के हमले देखते हैं, सेट पैटर्न होता है, जब भी किसी पुलिस लाइन पर, किसी इंस्टॉलेशन पर अटैक होता है तो उसकी अक्सर जिम्मेदारी या तो टीटीपी लेता है या टीटीपी के समर्थित गुट लेते हैं। अभी क्या इसकी जिम्मेदारी किसी ने ली है? क्या ये जो पैटर्न है अटैक का उसी तरीके का है जिस तरीके के अटैक टीटीपी करता आया है?
3: बिल्कुल सुमित, आप ठीक कह रहे हैं। जो शुरुआती जांच है उसमें इसी तरह का इशारा मिल रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के तरह का उसी पैटर्न का ये एक अटैक है, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि एक अफगानी जो गुट है उसका भी हाथ इसमें हो सकता है, जो आतंकी गुट है उसका भी इसमें हाथ हो सकता है, और लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। हालांकि जब भी इस तरह का हमला होता है कुछ देर बाद कोई ना कोई गुट इसकी जिम्मेदारी लेता है, उस तरह की घटनाओं की पुष्टि होती है, लेकिन फिलहाल इस पूरे धमाके के बाद अभी भी किसी गुट ने ना इसकी जिम्मेदारी ली है, ना ही साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये टीटीपी का काम है या फिर किसी और संगठन का, लेकिन लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस तरह के धमाकों में पाकिस्तान के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके जो मारे जाने की संख्या है उनमें भी इजाफा हो रहा है।
0: बिल्कुल शिवानी, एक और खबर मिल रही थी जब ये इसकी पहली रिपोर्ट मिली कि वहां पर जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ, वहां पर ऑलरेडी कोई लोग मौजूद थे जिनके साथ पुलिस का एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, क्या इसको लेकर भी कोई और पुख्ता जानकारी मिल पाई है?
3: देखिए, ये पता चल रहा है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जब ये धमाका हुआ उस धमाके में जो आग लगी उसके बीच में कुछ फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी, और आमतौर पर जब भी इस तरह के हमले होते हैं और खासतौर पर जो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट हो, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट हो, जब वहां पर हमले होते हैं तो रिटेलिएशन होता है और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जो संदिग्ध हमला करने वाले लोग थे उनके ऊपर फायरिंग की गई है, इस तरह की खबरें भी मिल रही हैं, इस तरह की जानकारी भी मिली है। यानी कि कहीं ना कहीं एक गन फाइट हुई है जो हमलावर थे उनके बीच और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, और पाकिस्तान में यह पहली बार नहीं है सुमित जब किसी पुलिस लाइन के पास या किसी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के पास इस तरह का हमला हुआ है। लगातार इस तरह के हमलों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और यह भी सेम पैटर्न का एक हमला था जैसा हमने पहले भी देखा, टीटीपी इस तरह के हमले करती आई है। और आप ठीक कह रहे हैं कि जब यह धमाका हुआ जुमे की नमाज के वक्त बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे थे, ओल्ड पुलिस लाइन का यह इलाका था, और सीधे वहां पर यह धमाके के साथ जो आवाज आई उसके बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी। यानी कि शुरुआत की जो रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रही हैं कि एक गन फाइट हुई होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिवानी, खबरें लगातार वहां से मिल रही है, आपका दोबारा से रुक करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से एक बड़ा अपडेट दे दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके के अंदर एक बड़ा आत्मघाती हमला या फिर आप कह सकते हैं बड़ा अटैक किया गया, जिसमें एक गाड़ी एक्सप्लोजिव भरी गाड़ी जाकर पुलिस लाइन से टकराई, उसके बाद धमाका हुआ, 15 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा घातक यह हमला होगा, कितना ज्यादा भयावह यह हमला होगा कि जब यह अटैक हुआ, जब यह एक्सप्लोजिव फटा तब उसने नुकसान कैसा पहुंचाया कि आसपास के कंक्रीट के स्ट्रक्चर को भी पूरी तरीके से इसने बर्बाद कर दिया। और चलिए रणभूमि में इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Maddie, I need to open a savings account.
7: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
6: स्मॉल बैंक,
7: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
6: Okay.
7: Ujjivan, nothing small about us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
7: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
8: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
9: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
10: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
11: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
12: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंग्स मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
13: अब मैं क्या ही बोलूं?
14: परिवार अटूट भरोसा।
15: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
18: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
19: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
20: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटी जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
19: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटी जूस।
21: In association with
22: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
23: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
24: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
2: There is a very famous quote ki history repeat itself.
3: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
4: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
3: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
5: जल और थल के बाद अब नभ में भी अमेरिका अपनी ताकत में इजाफा कर चुका है। 21वीं सदी में अब अमेरिका ने अंतरिक्ष तक मोर्चा खोल दिया है। सुपर पावर अमेरिका ने एक ऐलान कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कह दिया है कि उसने अंतरिक्ष में हथियार तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स के मुताबिक स्पेस वेपन्स रक्षा और हमले दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। खुलासे के मुताबिक अमेरिकी हथियार अंतरिक्ष की कक्षा यानी ऑर्बिट में तैनात हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने यह भी कहा है कि ये हथियार अंतरिक्ष में अमेरिकी सैन्य बलों को दुश्मन की कार्रवाई से बचाने और उसका मुकाबला करने के लिए है। चिंताएं कई हैं, सवाल उठना लाजमी है कि आखिर स्पेस में हथियारों की होड़ क्यों? लेकिन अमेरिका ने अभी इसके कई तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। स्पेस फोर्स का कहना है कि उसके पास ऑर्बिट में मौजूद स्पेस कंट्रोल वेपन्स हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य बलों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। हालांकि हथियारों की सही संख्या, उसके प्रकार या उनकी तैनाती की जगह की जानकारी देने से इनकार किया है। अमेरिका के इस कदम के बाद रूस और चीन ने चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, कहा है कि चीन अंतरिक्ष में किसी भी तरह की सैन्य होड़ या उसे युद्ध क्षेत्र में बदलने की कोशिश का कड़ा विरोध करता है। अमेरिका के स्पेस वेपन्स को लेकर कुछ ऐसी ही चिंता रूस ने भी जताई है। रूस ने कहा है कि अंतरिक्ष को किसी भी हथियार से मुक्त रखना चाहिए। तमाम चिंताओं के बीच अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ शुरू होने का नया खतरा है। अमेरिका पहले भी अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने को लेकर लगातार काम करता रहा है। रूस, चीन और भारत समेत कई अन्य देश भी स्पेस में अपनी ताकत बढ़ा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल सैन्य संचार, निगरानी और नेविगेशन से जुड़े सैटेलाइट को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन अब अंतरिक्ष में हथियारों की अमेरिकी तैनाती के बाद फिर से नई चिंता बढ़ा चुका है। आज तक ब्यूरो।

निकाली जा रही है यात्रा। 30 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भी जाएंगे। नीट विवाद में सुप्रीम कोर्ट के जजों का बड़ा फैसला। एनटीए हेडक्वार्टर का करेंगे दौरा, खुद सुधार प्रक्रिया का करेंगे निगरानी।

0: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, 95% आम लोग इस बोझ से बाहर, आज तक के महामंच पर शाम को आएंगे सीएम सम्राट चौधरी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसे।

0: ब्रेक के बाद रणभूमि में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 6.5 महीने बीत चुके हैं और कई बार स्थायी सीज फायर के संकेत भी मिले, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई डील फाइनलाइज नहीं हो पाई है। ईरान तो अपने नुकसान को उभरने में लगा हुआ है, वहीं अमेरिका भी भारी खर्च की वजह से और चुनावी माहौल के बीच ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। यही वजह है कि ट्रंप हर दूसरे दिन अपना बयान बदल रहे हैं और यू टर्न ले रहे हैं। फिलहाल उनका जो बयान सामने आ रहा है वो इस साफ इशारा कर रहा है कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका लगा हुआ है। इस बीच हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए कोशिशों के बीच ईरान ने एक बार फिर से तेल टैंकरों पर हमले तेज कर दिए और अपने कब्जे में एक ऑयल टैंकर को भी लिया है। फिलहाल ये महायुद्ध एक बार फिर से कई देशों की सरहदों के पार पहुंच चुका है, जिससे हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसराइल दक्षिणी लेबनन पर लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, तो ईरान के समर्थित हुती भी सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ हमलों से उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सब के बीच ट्रंप और नाटो का झगड़ा भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने यूरोप में तैनात अपनी सेना का 50% हिस्सा वापस बुलाने पर गंभीर चर्चाएं चल रही हैं और जल्दी इसका ऐलान भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जंग रुकेगी या बड़ा हड़कंप ऐसे ही मचता रहेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि ईरान ने किया है तेल टैंकर पर हमला। आपको जिस तरीके से हम बता रहे थे कि IRGC ने शुक्रवार को दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज में टोगो के झंडे के नीचे चल रहे एक तेल टैंकर पर हमला किया, इसके बाद इलाके में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यह जानकारी ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने दी है और ईरान का दावा है कि टोगो के झंडे वाले तेल टैंकर ट्रेड को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो हॉर्मुज पर अवैध तौर पर गुजरने की कोशिश कर रहा था, यानी ये उस रूट से नहीं जा रहा था जिसे ईरान ने बाकी के ऑयल टैंकर्स के लिए निर्धारित किया हुआ है। और जब भी ऐसा होता है ईरान उन ऑयल टैंकर्स पर अटैक करता है जो साउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करते हैं। और युद्ध की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर भारत के लिए भी है, भारत की वायुसेना की और उसकी बढ़ती ताकत की एक बड़ी खबर। कुछ ही देर में भारतीय वायुसेना को सौंपे जाएंगे 3 प्लेटफॉर्म्स। इसमें शामिल है HTT-40 का पहला बैच, इसके अलावा HAL का दूसरा प्लेटफॉर्म, LCA-FOC ट्रेनर भी, यह तेजस MK-1 FOC लड़ाकू विमान का 2-सीटर वाला ट्रेनर वर्जन है जो दिया जाएगा। इसके साथ ध्रुव NGHAL के एडवांस लैंडिंग हेलीकॉप्टर भी हैंडओवर किए जाएंगे। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर को नागरिक उड़ान मंत्रालय महानिदेशालय यानी DGCA से टाइप सर्टिफिकेट भी मिल गया है। और इस बीच सवाल ये उठता जा रहा है कि तेजस की डिलीवरी में देरी क्यों होती रही। इस सवाल का जवाब खोजती हमारी कोशिश है कि हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार इसमें देरी क्यों हुई है।
1: अब नहीं होगी देरी, तेज होगी तेजस की डिलीवरी। स्वदेशी हथियारों से भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। MK-1 के बाद MK-1A का दिखेगा दम, दुश्मन की बढ़ेगी टेंशन। तेजी से बदलते वॉर प्लान और सरहदों को और सुरक्षित रखने के लिए भारतीय वायुसेना हर मोर्चे पर मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रही है। इन्हीं में से एक अहम मोर्चा है ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल करते रहना। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारतीय वायुसेना का एक अहम एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना की योजना तेजस के MK-1 वर्जन के बाद MK-1A वर्जन पर तेजी से काम करने की थी, लेकिन MK-1 डिलीवरी में देरी से रक्षा मंत्रालय न सिर्फ नाराज था बल्कि कुछ महीने पहले तक इसे बनाने वाली कंपनी HAL पर जुर्माना लगाने के लिए भी तैयारी कर रहा था। दरअसल तेजस MK-1A कार्यक्रम में देरी का सबसे बड़ा कारण GE एरोस्पेस द्वारा F404IN-20 इंजन की सप्लाई में देरी माना जा रहा है। HAL इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट के तहत पेनल्टी के विकल्पों पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा इजरायली AESA रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इंटीग्रेशन से जुड़े तकनीकी मुद्दों ने भी कार्यक्रम को प्रभावित किया है। इस महीने HAL और भारतीय वायुसेना के बीच तेजस MK-1A कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक होने की संभावना है। तो क्या है डिलीवरी की तैयारी? बेंगलुरु में आज तक ने जानने की कोशिश की एचएएल के सीएमडी रवि के से।
2: एलसीए तेजस लड़ाकू विमान की देरी को लेकर

0: अपने पीछे 7 से 8 एलसीए तेजस मार्क 1 ये देख रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल काफी समय से उठता रहता है कि भारतीय वायुसेना के पास स्क्वाड्रन की संख्या घट रही है, आप बताइए क्या स्थिति है डिलीवरी को लेकर एलसीए मार्क 1 की?
1: अभी एलसीए मार्क 1 व्हाट एवर वी आर मैन्युफैक्चरिंग हियर, देयर आर फ्यू इंटीग्रेशन इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू रडार एंड वेपन इंटीग्रेशन विच इज स्टिल पेंडिंग फ्रॉम एचएएल. Other than the engine delay, which everybody are talking about, so we are working very closely with our design agency and the certifying agency to make sure that we reach the specification what the services are looking for in the radar and the weapon integration. Notwithstanding, we are continuously involved in making the structures. More than 25 to 27 structures we have already made. I got 10 engines. Everybody knows that now we have 10 engines now. So I am confident that we should be able to deliver whatever engines I get this year, and we should be able to deliver this to get the certification, clear all the certification requirement as per the requirement of the services, and deliver the aircraft.
2: यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर भारतीय वायुसेना को और मजबूत करने वाले ये एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया के फॉर्मूले पर कितना खरा उतर रहे हैं.
0: एक सवाल जो इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं देश दुनिया में युद्ध का माहौल है, जो वेपन है खासतौर से, इसमें अगर हम एलसीए मार्क 1 की बात करें, जो आर्मर है, वेपन है, और इसका जो इंडिजनाइजेशन वो कितना आप उसको लेकर बता सकते हैं, कितना स्वदेशी है?
1: इसमें देखिए, नाउ वी हैव आई थिंक नाउ अराउंड 60% अराउंड है, बिकॉज इंजन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, सो द इंडियनस परसेंटेज इज अराउंड देयर. स्लोली वी आर इंक्रीजिंग इन द नेक्स्ट कमिंग 97 एयरक्राफ्ट वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट टू मोर देन 65 to 70%. And the capability of the aircraft is contemporary with whatever aircraft we have. We have the capability because it's already, this has been designed by aeronautical agency, aeronautical development agency, to have these capabilities, whether it is air-to-air refueling or the weapons or the sensor or the radar. It has already been designed, and accordingly we are manufacturing the aircraft.
2: रणभूमि में सेनाओं के जिस शौर्य पर पूरा देश नाज करता है, तकनीक के मोर्चे पर हथियार बनाने वाली कंपनियों की तेजी और सटीकता भी किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होती. उम्मीद यही है कि एचएएल की युद्ध स्तर पर चल रही तैयारियां उसे ये इम्तिहान आसानी से पास करा देंगी.
0: एचएएल की कोशिश है कि बड़ी संख्या में तेजी के साथ एलसीए मार्क 1 लड़ाकू विमानों की सप्लाई की जाए. इस वक्त हम बेंगलुरु में एचएएल के हैंगर में मौजूद हैं, जहां पर आपको हम दिखा रहे हैं 8 से 9 विमान यहां पर तैनात हैं, तैयार हो गए हैं. और अगर हम इसकी मारक क्षमता को देखें, जिस तरह से खासतौर से इसमें स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, इसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बेहतर एवियोनिक्स, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसी क्षमताओं से लैस किया गया है. कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मंजीत नेगी, बेंगलुरु आज तक.
3: और एचएएल भारतीय वायुसेना को HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का पहला बैच भी सौंपेगा. इस बैच में कुल 3 विमान शामिल होंगे. इसमें से 2 विमान खास तौर पर बेंगलुरु में बनाए गए हैं और 1 विमान नासिक में तैयार किया गया. ये विमान वायुसेना के पायलटों की शुरुआती ट्रेनिंग जरूरतों को पूरा करेगा और इसे डेवलप भी किया जा रहा है. इसका उद्देश्य वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे स्विट्जरलैंड के निर्मित पिलाटस PCC-7 और MKI जैसे विमानों को दिखाना होगा. लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन विमानों में क्या खासियत, आखिरकार इन विमानों की खासियत आप एक बार नजर मारते हैं. बड़ी स्क्रीन पर आपको लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, कुल 3 विमान इसमें शामिल है. जैसा हमने आपको बताया कि 2 विमान बेंगलुरु में बनाए जा रहे हैं और 1 नासिक में एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है. इससे कैसे मदद मिलेगी? देखिए, लगातार अब तक जो भारत अभी तक ऐसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है जो भारत के बाहर बनते थे, लेकिन अब अपने एयरक्राफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा. एचएएल को एक ऐसे कुल 70 विमान तैयार कर रहे हैं जो लगातार इंडियन एयरफोर्स को देने, ताकि ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी, देखिए पायलट की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है और ऐसे में उन विमानों की जरूरत पड़ती है ट्रेनर एयरक्राफ्ट की. वायुसेना के पायलटों की ट्रेनिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए ये 70 विमान तैयार करेगा एचएएल, जिसके 3 विमान हम आपको बता रहे हैं कि दिए जा रहे हैं पहले बैच में. उसके बाद लगातार फेज वाइज तरीके से ये विमान दिए जाएंगे. अब इसके अलावा LCA FOC ट्रेनर भी यानी तेजस MK1

0: लड़ाकू विमान को 2-सीटर में तब्दील किया गया है और यह विमान भी लगातार दिया जाएगा। इस सबसे खास बात हम आपको ये बता रहे हैं कि इससे इंडियन एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज है उनके पास बेहतर और अच्छे एयरक्राफ्ट आ पाएंगे और कुल 40 तेजस MK1 विमानों का ऑर्डर होगा इससे पूरा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट के साथ साथ जो भारतीय वायुसेना को जो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए उनकी भी कमी को पूरा करने के लिए कैसे HAL काम कर रहा है और कैसे भारत में निर्मित ट्रेनर एयरक्राफ्ट से लेकर फाइटर एयरक्राफ्ट तक सब HAL की तरफ से बनाए जा रहे हैं। 2 सीटों वाले 8 ट्रेनर विमान इसमें शामिल है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि 2 सीटों वाले 8 ट्रेनर विमान इस समय इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे और ये फेज वाइज तरीके से और भी इस तरीके के काम किए जाएंगे। आप इसके अलावा अगर आप बात करें ध्रुव NG सिविल हेलीकॉप्टर भी सिविल एविएशन के लिए ये अहम प्लेटफॉर्म है। सिविल हेलीकॉप्टर्स का भी काम पूरा HAL ने किया है और ये हेलीकॉप्टर्स भी लगातार दिए जाएंगे। इसके साथ ही सिविल हेलीकॉप्टर बाजार में HAL की वापसी होगी। यानी अब से पहले हम देख रहे थे कि हम लगातार बाहर से हेलीकॉप्टर्स को लाते थे, उन्हें खरीदते थे, लेकिन अब HAL जो है वो सिविल एविएशन के या फिर सिविल सेक्टर के अंदर भी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ेगा। अब इनका VVIP ट्रांसपोर्ट, एयर एम्बुलेंस सेवाओं और तीर्थ यात्राओं में भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी तीर्थ यात्रा यानी जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं उनके अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। VVIP मूवमेंट्स के लिए, एम्बुलेंस सेवाओं के लिए लगातार इस्तेमाल किया जाएगा। ये तमाम चीजें मैंने आपको इनकी खासियत बताई, आखिरकार इनका क्या इसका जरूरत होगी। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिरकार वायुसेना के पायलटों की शुरुआती ट्रेनिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें डेवलप किया गया। इनका उद्देश्य वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे स्विट्जरलैंड निर्मित पिलाटस PC-7 और MK-2 ट्रेनर विमानों को चरणबद्ध तरीके से रिप्लेस करना है। आपको मंजीत नेगी की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: इस वक्त मैं ध्रुव हेलीकॉप्टर के कॉकपिट पर मौजूद हूं। अभी तक HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर सेनाओं के लिए तैयार करता है, यानी कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाए जाते हैं, लेकिन पहली बार HAL ने ध्रुव NG यानी कि सिविल में इस्तेमाल के लिए इसका सिविल वर्जन तैयार किया है और ऐसे पहले 4 ध्रुव NG जो हेलीकॉप्टर हैं वो पवन हंस हेलीकॉप्टर कंपनी को दिए जा रहे हैं जिनका सिविल में इस्तेमाल होगा। और ये इसका इस्तेमाल की हम बात करें तो VIP मूवमेंट के लिए, यानी कि चुनाव रैली हो या बाकी जगह इस्तेमाल हो उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो भारत सरकार की उड़ान स्कीम में दूरदराज के इलाकों में लोगों की आवाजाही में इस्तेमाल होता है उस पर इस्तेमाल हो सकता है। अब इसके कॉकपिट को हम आपको दिखाते हैं किस तरह का ये आधुनिक कॉकपिट है और कितने लोग इसमें आ सकते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये 11 पैसेंजर्स में एक बार में सवार हो सकते हैं। उसके अलावा 2 पायलट और को पायलट के लिए 2 सीटें अलग हैं, लेकिन ये 11 जो पीछे की 11 सीटें हैं ये VIP मूवमेंट के हिसाब से या फिर दूसरे इस्तेमाल से इनको चेंज किया जा सकता है। तो इस तरह से ये एक सिविल हेलीकॉप्टर HAL ने तैयार किया है और क्योंकि इस वक्त भारत में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सिविल क्षेत्र में चाहे यात्राओं के लिए हो, धार्मिक यात्राएं हो, 4 धाम यात्रा से लेकर वैष्णो देवी यात्रा, हर जगह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। ऐसे में ये एक बड़ी संभावना सिविल में ध्रुव हेलीकॉप्टर की हो सकती है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मंजीत नेगी, बेंगलुरु आज तक।
0: दरअसल आपको याद होगा कि ना सिर्फ भारतीय वायुसेना बल्कि सिविल एविएशन के अंदर भी लगातार कम होते एयरक्राफ्ट को लेकर कई लंबे सवाल खड़े होते रहे, लेकिन अब HAL लगातार इसको भरपाई करता जा रहा है या इन कमियों को पूरा करता जा रहा है। ऐसे में ना सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर लीजिए, ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात कर लीजिए, बल्कि सिविल एविएशन के अंदर इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी बहुत तेजी से उनका प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसको लेकर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: देश और दुनिया में युद्ध के हालात के बीच भारतीय वायुसेना को तेजी के साथ जो लड़ाकू विमान है देश का बना हुआ LCA तेजस Mk1 की दरकार है और ऐसे में उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए तेजी के साथ इस लड़ाकू विमान पर जो पायलट हैं वो ट्रेनिंग कर पाए उसके लिए LCA तेजस Mk1 जो FOC ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो अब तेजी के साथ भारतीय वायुसेना का में शामिल हो रहे हैं। ऐसे 2 नए ट्रेनर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन रहे हैं और अब तक ऐसे कुल मिलाकर 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा हो जाएंगे क्योंकि बदलते हालात के बीच बड़ी संख्या में LCA और LCA तेजस Mk1 जो लड़ाकू विमान है वो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। ऐसे 180 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को मिलने हैं और इसीलिए उसी तेजी के साथ भारतीय वायुसेना को ऐसे ट्रेनर की भी जरूरत है जिस पर तेजी के साथ जो पायलट हैं वो ट्रेनिंग कर सकें। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मंजीत नेगी, बेंगलुरु आज तक।
0: एचएएल भारतीय वायुसेना को HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का पहला बैच भी सौंपेगा। इस बैच में कुल 3 विमान शामिल है। हमने आपको जैसे पहले भी बताया था कि ये इसमें से 2 विमान बेंगलुरु में बनेंगे और 1 नासिक में तैयार किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पायलट के लिए एक अच्छी खबर है कि उन्हें अब देश में बना स्वदेशी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 मिलने जा रहा है। ऐसे 3 एयरक्राफ्ट का पहला बैच भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है। और सबसे खास बात, अभी तक भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं, लड़ाकू विमान पायलट हैं, उन्हें विदेशी विमान पिलाटस पर बेसिक ट्रेनिंग करनी होती है और उसके बाद उन्हें जो लड़ाकू विमान है वो उड़ाने का मौका मिलता है। लेकिन अब ये पहला एचएएल ने तैयार किया है स्वदेशी बेसिक ट्रेनर विमान HTT-40 जो भारतीय वायुसेना की जनरल विमान पायलट हैं उन्हें ट्रेनिंग देगा। और ऐसे 40 बेसिक ट्रेनर HTT-40 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने जा रहे हैं यहां बेंगलुरु से। और इसके अलावा नासिक जो फैसिलिटी है एचएएल की, वहां पर ये HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान तैयार किए गए हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मंजीत नेगी, बेंगलुरु आज तक।
0: और देखिए मंजीत नेगी की आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर खासतौर पर युद्ध के मैदान से भी आ रही है। जी आपको बता दें कि लगातार जॉर्डन पे जिस तरीके से अटैक अमेरिका के बेसिस पे किए जा रहे थे, उसके बाद अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजीज में बदलाव किया। खबरें यह मिल रही है कि अमेरिका अब जो है इराक से अपने कई इक्विपमेंट को जॉर्डन शिफ्ट कर रहा है। इराकी लगातार जो बेसिस हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने सारा फोकस जॉर्डन की तरफ कर दिया है। और इसी बीच इराक से जाने वाले कई इक्विपमेंट की तस्वीरें भी सामने आई है। और ये कहा जा रहा है कि इराक से सारे के सारे ये इक्विपमेंट करीबन 23 साल के बाद 30 सितंबर तक अमेरिका वहां से खींच लेगा। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: दो दिन पहले यूपी की राजधानी लखनऊ से आई इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। बीच सड़क शाहनवाज नाम के लड़के ने एक्स गर्लफ्रेंड को कार से कुचलने की कोशिश की, सरेआम उसकी हत्या का प्रयास किया। आरोपित शाहनवाज अब पुलिस की गिरफ्त में है, मामले की जांच जारी है और इस तफ्तीश के बीच जो खुलासे हो रहे हैं वो सिर्फ हत्या के प्रयास की एक वारदात का इशारा नहीं कर रहा बल्कि इस घटना के पीछे लव जिहाद वाली साजिश के एंगल का भी पता चल रहा है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूरी वारदात, उसके पीछे की घटनाक्रम और साजिश की एक एक परतें खुली हैं, जिससे आरोपित शाहनवाज और उसके साथियों की लव जिहाद वाले जाल का साफ पता चल रहा है। आज तक से बातचीत में पीड़ित लड़की ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि आखिर आरोपित शाहनवाज, उसका साथी दानिश और उसके ग्रुप के और लोगों का मॉडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे वो पहचान छिपाकर लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाता था। लेकिन आज तक पर इस पूरे खुलासे से पहले जानिए आखिर घटना के दिन लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क के पास ऐसा क्या हुआ कि आरोपित इस लड़की की जान पर उतारू हो गया।
1: जनेश्वर सुबह 4:30 या 6 के बीच में हम और मेरी छोटी सिस्टर थी और बुआ जी स्कूटी से चाय पीने गए थे और शहनबाज, मुझे सच में नहीं पता था कि वहां पे ही होगा या आएगा ऐसा कुछ। शहनबाज और इनका एक दोस्त था दानिश और इनके साथ में दो लड़कियां भी थी, यहाँ तक चाय पी रही थी। ये बहुत टाइम से मेरे साथ रिलेशनशिप में था, ठीक है, तो मतलब दो लड़कियां थी। मैंने इससे पूछना चाहिए कि वो लड़कियां कौन है, इतने में ही मुझसे चिल्लाने लगा तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये वो सब बोलने लगा, ठीक है। फिर इसका दोस्त तो ये दानिश दोनों जो थे ना वो कार में बैठ गए आके, ठीक है, और मतलब जो लड़कियां तो थी दोनों वो अलग पीछे वाले गेट से वो उधर चली गई, ठीक है। दोनों आए तो मुझसे मतलब चिल्लाने लगा, मैंने मतलब भागने लगे कार लेके, तो मैं सामने से इसे रोकना चाहूं कि मुझे बता के जाओ, ये रुका नहीं। उसके बाद ये मुझसे गाड़ी चढ़ा के मेरे ऊपर से और फिर मेरा हाथ शीशे की तरफ इसने मुझे बुलाया, हाथ में अभी भी चोट है, स्वेलिंग भी है, देख लीजिए आप सब लोग, हाँ निशान पड़ा है, शीशे में मेरा पूरा हाथ दब गया था। मैं ऐसे करके हाथ निकालना चाह रही थी लेकिन शीशा ऐसे करके लॉक था वो निकल नहीं पा रहा था,
2: इसने फंसा लिया,
1: फंस गया था, ठीक है। तभी तो मैं घसटी हूँ, एकदम से घसीटते हुए ले गया, फिर अचानक से इसने शीशा ऐसे किया तब मेरा हाथ निकला, तब हम गिर गए।
0: पीड़ित लड़की के बयान से साफ है कि आरोपित शाहनवाज एक साथ कई लड़कियों के संपर्क में था जिनमें ज्यादातर हिंदू थी। उसने पूरा जाल इस तरह से बुना था कि किसी भी लड़की को उसकी उस साजिश की भनक तक न लग सके, लेकिन जैसे ही उसकी राज का पर्दाफाश हुआ उसने जान से मारने की कोशिश कर डाली। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपित शाहनवाज को धर दबोचा। इस पीड़ित लड़की ने आज तक के कैमरे पर उसे लेकर जो बड़े खुलासे किए वो बड़ी साजिश का साफ इशारा कर रहे हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।

0: विधानसभा का चुनाव घोषणा होने के पहले हमने कह रखा है कि 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी के अंदर उपलब्ध करवाएंगे।
1: जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वादों और घोषणाओं की रफ्तार भी जोर पकड़ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए दिन बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, कभी कैबिनेट में लिए गए फैसलों के जरिए तो कभी सार्वजनिक मंच से। यानी कि यूपी में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ सरकार की ओर से ऐलान पर ऐलान हो रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी भी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। संगठन स्तर पर रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और इस हफ्ते उनकी कई मंथन बैठक है। 17 और 18 सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में तावड़े सीधे जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने वाले हैं। चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर होगी। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ आरएसएस भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। यूपी चुनाव में भी संघ एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रहा है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सह सरकारीवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। बीजेपी की चुनावी कामयाबी में उसकी तैयारियों का बड़ा रोल रहा है और इस बार भी यूपी में वो तैयारियों को अभी से देख रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

सीएम से मुलाकात के बाद नंदीग्राम से ममता की उम्मीदवार संचिता प्रधान ने अपना नाम लिया वापस। बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी, अब कांग्रेस प्रत्याशी को करेंगी समर्थन।

सागर में पाकिस्तानी नेवी की हिमाकत पर विदेश मंत्रालय की दो टूक, कहा हम उनके जवाब और आरोपों को करते हैं खारिज। भारत के जहाजों से टकराया था पाकिस्तान का जहाज।

खैबर पख्तूनवा में जुम्मे की नमाज के दौरान आत्मघाती धमाका, अब तक 15 लोगों की मौत, कई लोग घायल। विस्फोटों से भरी गाड़ी पुलिस लाइन से टकराई।

बिहार में यूपीआई पेमेंट विवाद पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, 95% आम लोगों को इस बोझ से हैं बाहर। आज तक के महामंच पर शाम को आएंगे बिहार के सीएम सम्राट चौधरी।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल तृणमूल कांग्रेस में पड़ी फूट को लेकर होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में एक बार फिर फूट पड़ गई है और उसके बाद जो हम देख रहे हैं वही चीज हमने इससे पहले भी कई बार देखी थी। इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के फूट पर फिलहाल तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को जो झटका दिया है, दोहरा झटका दिया है। पहला झटका तो यह मिला है कि 18 साल से ममता ने जिस दल को सींचा, 15 साल तक जिस दाम मिशन के साथ उन्होंने सत्ता चलाई, वो चुनाव आयोग के हत्थे अब चढ़ गया है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और उसका जो चुनाव चिन्ह था जोड़ा फूल का, वह फ्रीज हो गया, यानी ममता बनर्जी की पार्टी का नाम और चिन्ह फ्रीज हो गया। ममता ने चुनाव चिन्ह और नाम फ्रीज करने को दुर्भावना से प्रेरित एक फैसला उसको करार दिया और कल के दिन को काला दिन करार दिया है। वैसे नंदीग्राम और रजीनगर में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है पश्चिम बंगाल के भीतर, और उसके लिए ममता बनर्जी की पार्टी को नया नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये नाम उनको मिल चुका है, और चुनाव चिन्ह के तौर पर फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी, ये उनको चिन्ह दिया गया है। जबकि तृणमूल कांग्रेस का जो बागी गुट है जिसे डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस, ये नाम उसको दिया गया है और बंद लिफाफा इसे चुनाव चिन्ह मिला है। लेकिन ममता तो चुनाव से पहले दूसरा झटका तब लगा जब नंदीग्राम से ममता बनर्जी की उम्मीदवार, जो उन्होंने उम्मीदवार बनाई थी संचिता प्रधान डे, दोपहर में मुख्यमंत्री सुवेंदु से मिली और उसके बाद खबर आई कि संचिता प्रधान ने अपना नामांकन वापस ले लिया। और इसी वक्त एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। क्योंकि ममता बनर्जी का उम्मीदवार संचिता डे, उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया और इसे उलट फिर दरअसल नंदीग्राम के चुनाव में हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी के उम्मीदवार ने सीएम सुवेंदु से मुलाकात के बाद नाम वापस ले लिया था। ममता ने कांग्रेस की उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर यह चुनाव लड़ाई लड़ने की बात भी उन्होंने कही है। हालांकि बंगाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। ममता ने कहा है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कल भी फोन किया था और इस पर उनको समर्थन भी जाहिर किया। सुनते ममता बनर्जी ने क्या कहा।
1: I am not giving you any other reply regarding this, whatever I have said after the election date, the counting date. I am meeting you today. So, please allow me to speak whatever I have decided. Don't try to do any narrative or negative. This is my humble request.
0: ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है, और जबकि कल चुनाव आयोग ने जो फैसला चुनाव सुनाया है उसमें चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत जो 15 उसका नियम है उसके तहत विवाद की स्थिति में नाम और निशान फ्रीज किया जाता है। हालांकि अंतरिम आदेश है क्योंकि दो दिन पहले शिवसेना वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि जब स्थिति स्पष्ट नहीं थी तो शिंदे गुट को नाम और निशान कैसे दे दिया, तो इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया है। लेकिन यह इंतरिम आदेश है, इस पर सुनवाई जारी रहेगी। विपक्ष के हमले अब और तेज हो गए हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि यह अंतरिम आदेश जरूर है लेकिन पार्टी का नाम और निशान जो है वो लाने के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ेगी, ये भी उन्होंने कहा है। एक और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बगावत के विवाद में टीएमसी का नाम निशान फ्रीज करना क्या असंवैधानिक है, ये हमारा सवाल इस पर रहेगा। लेकिन इस बीच बाकी खबरें भी हम देखते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में ममता बनर्जी का जो नाम और चिन्ह फ्रीज हो गया है उसके बाद अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं आ रही है और उसके साथ साथ शिवसेना के नाम और निशान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट में वो जरा एक बार देखते हैं।

0: 2021 एलजेपी के दो टुकड़े, 2022 एनसीपी के दो टुकड़े, 2023 शिवसेना के दो टुकड़े और तीन साल बाद 2026 के बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी पर बगावत का ऐसा हथौड़ा पड़ा कि 18 साल की बुनियाद और 15 साल की हुकूमत की निशानी जोड़ा फूल फ्रीज हो गया।
1: But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic and totally political bias vendetta.
2: হিন্দু ধর্মকে গন্ডা ধর্ম বলা, মহাকুম্ভকে মৃত্যু কুম্ভ বলা, আর রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম মন্দির মানি না বলে মিছিল করা, আছেন তো ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপেই সব ধ্বংস হয়ে গেছে।
0: চুনাব আয়োগ কি ফুল বেঞ্চ নে টিএমসি পর দাবা কর রহে দোনো ধড়ো কি দলিলো কি সুনওয়াই কি और आयोग ने 14 पन्नों के आदेश में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह दोनों फ्रीज कर दिए। आयोग ने कहा कि यह अंतरिम कदम पार्टी के नाम और प्रतीक का अंतिम फैसला चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के पैरा 15 के तहत नाम और निशान पर रोक रहेगी और फैसला विस्तृत जांच और सुनवाई के बाद लिया जाएगा।
3: इंटरिम ऑर्डर से साबित है, जाहिर है कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
0: 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद टीएमसी में बगावत हुई, दोनों धड़े पार्टी का दावा लेकर आयोग पहुंचे। इसी बीच सुवेंदु अधिकारी की खाली सीट नंदीग्राम और हुमायूं कबीर की खाली सीट रेजी नगर पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव है। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह में खींचतान को देखते हुए आयोग ने दोनों दलों से तीन तीन पसंदीदा विकल्प पूछे थे, उसी के आधार पर ममता बनर्जी के गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम और फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी निशान मिला, जबकि बागी धड़े को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम और लिफाफे का निशान दिया। ये नाम और निशान 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए लागू रहेंगे।
4: कारण तृणमूल बोले कोनो पार्टी नहीं, तृणमूल मृतो, तृणमूल निर्मूल,
5: ये हमारा कोई चिंता का बात नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को भी तीन सिंबल उनका हिस्ट्री में है।
0: विवाद की वजह विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद नजर आई। जब बीजेपी जीत गई, तो टीएमसी के 58 विधायक ऋतव्रत बनर्जी के साथ मिलकर बागी हो गए। उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता चुन लिया, स्पीकर ने मान्यता दे दी। ऋतव्रत बनर्जी गुट ने अरूप रॉय को पार्टी अध्यक्ष और अखरुजमा को मुख्य सचेतक चुन लिया। उधर लोकसभा में टीएमसी के 28 में से 20 सांसद टूटकर एनसीपीआई में चले गए। राज्यसभा में 13 में से 3 सांसदों ने इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ली। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा से लेकर चुनाव आयोग के पास अब भी टीएमसी पार्टी और ममता अध्यक्ष है। एक तो टीएमसी के अंदर ममता के परिवारवादी राजनीति के खिलाफ बगावत का विवाद है, दूसरे केंद्र से लेकर राज्यों तक विपक्ष के आरोप हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से किया जा रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, पार्टी और जनादेश की चोरी में मदद कर रहा है।
6: ये जो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का फ्रंटल सेल बन के काम करता है ना, और बीजेपी के फेवरेटिज्म में काम करता है, बीजेपी को फेवरेट बना के रखा है। ये जो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का फ्रंटल सेल बन के काम करता है ना, और बीजेपी के फेवरेटिज्म में काम करता है, बीजेपी को फेवरेट बना के रखा है।
0: विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कभी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके, कभी ईवीएम में गड़बड़ी करके, कभी एसआईआर में गड़बड़ी करके चुनाव चोरी हो रही है। और जहां विपक्ष सत्ता में आ रहा है, वहां नेता, विधायक, सांसद साम दाम दंड भेद से तोड़े जा रहे हैं, और तो और पार्टी भी तोड़ी जा रही है।
1: टू सेटिस्फाई द ईगो ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, ऑलरेडी आपने आपका पता है कि उन्होंने बोला था पहले, नाम भी नहीं रखने दूंगा, निशाना भी नहीं रखने दूंगा, पहले ही बताया था। कौन है ये लोग, आज पावर में है, कल नहीं रहेगा।
0: और हालात ये हैं कि शिवसेना के दो टुकड़े हुए, नाम निशान बागियों को मिल गया। एनसीपी दो टुकड़े हुई, नाम निशान बागियों को मिला, और दोनों ही मामलों में चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती मिली है।
7: शिवसेना का नाम हमें दिया गया है और शिवसेना का सिंबल भी शिंदे साहब के नेतृत्व में हमें दिया गया है, और इस फैसले में कोई बदलाव सुप्रीम कोर्ट से नहीं होना चाहिए।
0: और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे हैं, उनके जवाब आसान नहीं है। शिवसेना वाले मामले में अदालत ने एक दिन पहले ही चुनाव आयोग से पूछा है कि जब दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट पैमाने तय नहीं थे तो चुनाव आयोग ने शिवसेना के मूल तीर कमान को फ्रीज क्यों नहीं किया। क्या आयोग ने मूल असली दल और सदन के भीतर के विधायी दल के फर्क पर ठीक से विचार किया? क्या आयोग ने फैसला लेते वक्त सोचा कि वोटर ने पार्टी को वोट दिया था या विधायक को निजी हैसियत पर? कोर्ट ने पूछा कि विधायक सांसदों की संख्या से दल के अंदर भी बहुमत का पैमाना कैसे मान सकते हैं? क्या आयोग ने विचार किया कि मूल संगठन का नियंत्रण किसके पास है? बागियों के खिलाफ मामला लंबित था तो संख्या बल को निर्णायक कैसे मान लिया गया? अब चुनाव आयोग को इन सवालों के जवाब 22 सितंबर से पहले दाखिल करने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख 22 सितंबर है, जिस पर शिवसेना ही नहीं एनसीपी से लेकर टीएमसी तक टूट फूट से पीड़ित सभी दलों की नजर है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
8: ये 2022 में भी हमने देखा हुआ है, जब महाराष्ट्र के भीतर एक उपचुनाव हो रहा था और शिवसेना शिंदे गुट इलेक्शन कमीशन के पास गया। उन्होंने मांग की कि हमें सिंबल दूसरा गुट शिवसेना का असली नाम और चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सिंबल फ्रीज किया गया, लेकिन उसके बाद जब अंतिम आदेश चुनाव आयोग का आया उसके बाद चुनाव चिन्ह और शिवसेना ये नाम एकनाथ शिंदे को बहाल किए गए, जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के भीतर चल रही है। क्या तृणमूल कांग्रेस भी इसी रास्ते पर जाते हुए नजर आ रही है? फिलहाल ये अंतरिम आदेश है। क्या सुप्रीम कोर्ट, जिस तरीके से विपक्ष का आरोप है भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, तमाम सवाल इससे जुड़े हुए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कृष्णा मित्रा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगी। ये कौन सा गुट है वो जरा उनसे समझना होगा। थोड़ी देर में मीता चक्रवर्ती कांग्रेस की प्रवक्ता भी इस चर्चा में आएंगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी को अब नंदीग्राम से चुनाव मैदान में तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी की तरफ से समर्थन दिया गया। अखिल चित्रे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता इस चर्चा में आ रहे हैं। शाइना एनसी शिवसेना शिंदे या शिवसेना की प्रवक्ता के तौर पर इस चर्चा में आ रही है। तीन सवाल इस पैनल के सामने मैं रखना चाहूंगा। पहला सवाल, नंदीग्राम में जिस तरीके से समर्थन मिला है, लेकिन उससे पहले नाम और निशान फ्रीज करके दरअसल जो विवाद पैदा हुआ है, क्या यह करना असंवैधानिक है? हालांकि यह इंतरिम फैसला है, अंतिम फैसला नहीं है, अंतरिम फैसला है, लेकिन क्या यह करना असंवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल भी इस पर उठाए हुए हैं। दूसरा सवाल, क्या एमपी और एमएलए की बगावत को मूल पार्टी में बगावत मानकर फैसला देना किसी भी तरीके से सही है? सुप्रीम कोर्ट इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। जो ट्रिपल टेस्ट में क्या सिर्फ विधायक और सांसद टूटने की वजह से पार्टी में बगावत मानकर उसे उसमें टूट मानना यह सही है क्या? इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। और तीसरा सवाल, नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन का ऐलान करके ममता ने फिर से कांग्रेस से क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है? क्योंकि जब पश्चिम बंगाल के भीतर चुनाव हुए थे तब कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन आज स्थिति बदल गई है, राजनीति बदल गई है और अब साथ में चुनाव लड़ने की बात इसमें की जा रही है। शुरुआत करेंगे कृष्णा मित्रा, क्यों आपको ऐसा लगता है कि यह पूरी तरीके से असंवैधानिक फैसला है? ममता बनर्जी क्यों कह रही है कि यह काला दिन है? और उसके बाद सिद्धार्थ यादव उसका जवाब देंगे। कृष्णा मित्रा,
9: देखिए पहली बात यह है कि 10th शेड्यूल में हमारे संविधान में साफ तौर पे जिक्र है कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी होता है और पार्लियामेंट्री पार्टी, ये पार्टी का एक छोटा सा अंश होता है, ये पूरा पार्टी नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, जिसका चुनाव चिन्ह, जिसका नेता, जिसका प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सब होता है, ये लेजिस्लेटिव पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी से तय नहीं होता है। हमारी एक भारत के संविधान के इस 10th शेड्यूल के अनुसार निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड और एक स्वीकृत पॉलिटिकल पार्टी हमारा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और वो आज से नहीं 1998 से है। तो इसके बाद हमारे पार्टी के अंदर भी चुनाव हुए और जो बाहर जो सार्वजनिक चुनाव हमने लड़े वो भी इसी के नियम के अनुसार हमने लड़े। अभी जो चुनाव के बाद 4 मई के बाद जो हुआ है उसमें भी जो दावा है वो भी बीजेपी के प्रभाव में कुछ हमारे लोग जाके निर्वाचन आयोग में भी जाके ये दाखिला कर दिया, कोर्ट में भी केस कर दिए एक ही विषय में। या तो आप कोर्ट में रिट करें या चुनाव आयोग में अपना पक्ष रखें, यहाँ पर दोनों हो रहा है। एक तो कोर्ट में रिट चल रहा है जिसमें अभी आदेश आना बाकी है, उस पर चुनाव आयोग कैसे हियरिंग कर रही है, और वो हियरिंग कर रही है, हमने अपना पक्ष पूरा रखा उसके बावजूद भी लगभग 70-80 दिन तक ये चुप बैठे थे जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई। रितोब्रतो बनर्जी वाले गुट को अपना पक्ष रखना था, उन्होंने क्या रखा नहीं रखा, उन्होंने क्या दस्तावेज दाखिल किए, इसे हमारे साथ साझा नहीं किया गया। जबकि उनका पहला कहना था कि हमारे तथ्य उनके साथ साझा किए जाएंगे, हमारे तथ्य और उनके तथ्य हमारे साथ साझा किए जाएंगे, जबकि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी 70-80 दिन चुप बैठने के बाद अचानक निर्वाचन आयोग को ये 2 दिन पहले ये ख्याल आया और उन्होंने 2 दिन में ये कर दिया। ये पूरी तरह भयभीत है क्योंकि एट द एंड ऑफ द
8: सिद्धार्थ यादव इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। देखिए, दो जगह पर उपचुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल के भीतर। चुनाव आयोग को यह फैसला करना था कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के पास तो कोई समय सीमा है नहीं कि किसी स्पेसिफिक समय सीमा के भीतर उन्हें यह फैसला लेना है, लेकिन चूंकि उपचुनाव अब सामने आए हुए हैं, दो गुट उनके सामने आकर कह रहे हैं कि हम असली तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के मामले में जिस तरीके से शिवसेना या एनसीपी के मामले में हुआ था, खास करके शिवसेना के मामले में उपचुनाव था मुंबई के भीतर और चुनाव आयोग ने कहा कि फिलहाल हमारा फैसला तय नहीं हुआ है, तब तक जो उपचुनाव अगर आपको लड़ना है तो आप किसी और सिंबल पे लड़िए और फिलहाल के लिए आप एक अलग नाम लेके चुनाव मैदान में उतरिए, वही फैसला इस मामले में भी किया हुआ है। अभी तक तो अंतिम फैसला आना बाकी है ना कृष्णा जी?
9: अरे ये तो हम सबको समझ में आ रहा है, आपको भी शायद समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा पता नहीं। ये चुनाव आयोग का फैसला तो ये तो निरंतर चल नहीं सकता है। उस दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में ये कहा था कि एक तय समय के अंदर चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेना है। ये तो देख रहे हैं बीजेपी के राज में तो गवर्नर भी अपना फैसला रोक के रखते हैं अगर विरोधी का सरकार होता है, चुनाव आयोग भी वो तय नहीं कर पा रहे हैं, वो सारा तो तय नहीं कर पा रहे हैं, भाजपा भी कुछ नहीं तय कर पा रही है, मोदी जी भी तय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो एक हथकंडा है, वो तो साफ पता चल रहा है। और अगर ये जीते हैं तो चुनाव लड़े, फिर से जीते है तो उनका यही पर है ना, क्योंकि जनादेश तो उन्हें कभी मिला नहीं, ज्ञानादेश के भरोसे उन्होंने सत्ता हथियाया है, तो ज्ञानादेश तो बार बार मिल नहीं सकता है। अब लोगों को 4 महीने में पता चल गया कि इनका राज कैसा होता है, जो हमने बोला था कुछ लोग को बरगलाने में वो सफल थे, आज वो लोग भी
8: सिद्धार्थ यादव
9: समझ में आ रहा है उनको।
8: आरोप ये लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने मौका ढूंढा और आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मामले पर टिप्पणी की हुई है कि विधायक दल में अगर कोई टूट हुई है तो उसे पार्टी के भीतर टूट नहीं मानना चाहिए। ऋतप्रता बैनर्जी के साथ में 58 विधायक जरूर होंगे, लेकिन क्या पार्टी उनके साथ में है? उससे पहले उसे टूट मानकर, पार्टी के भीतर स्प्लिट मानकर विधायकों के गुट को एक अलग चिन्ह देना, स्प्लिट को मान लेना और चिन्ह को फ्रीज करना, सिंबॉल को, इलेक्शन सिंबॉल को, ये किस हद तक आप सही मानेंगे?
9: कि सही मानने का तो कोई कारण ही नहीं है। इसके बाद चुनाव के बाद
8: सिद्धार्थ यादव को सवाल पूछा है कृष्णा जी, सिद्धार्थ यादव को सवाल पूछा है। सिद्धार्थ यादव,
10: हाँ जी, देखिए साहिल जी, तृणमूल कांग्रेस के अंदर स्प्लिट है, ये मेरे मानने या नहीं मानने से नहीं होगा, ये स्प्लिट है, उनके सांसदों में स्प्लिट है, उनके विधायकों में स्प्लिट है, जो उनके विधायकों ने स्प्लिट होने के बाद अपना प्रतिपक्ष का नेता चुन लिया, ये फैक्ट है, इसको मानने नहीं मानने से झुटलाया नहीं जा सकता, ये पहली बात। दूसरी बात, देश में चूंकि ये मामला भी एडजुडिकेशन में भी है और कोर्ट में भी लंबित है, आज चुनाव आयोग ने भी अपना अंतरिम आदेश दिया। चुनाव आयोग ने आदेश क्या दिया? जिन लोगों को चुन करके विधायक बनाया गया, जो लोग चुनाव लड़े, पार्टी जिन लोगों ने जिनके सिंबल पर चुनाव लड़े, जिनको लोगों ने वोट दिया, वो लोग पार्टी से अलग होकर के अपने आप को अलग क्लेम कर रहे हैं, और अलग क्लेम अगर वो करेंगे तो कौन सिंबल का इस्तेमाल करेगा? चुनाव आयोग ने केवल अंतरिम आदेश में कहा कि सिंबल का अभी इस्तेमाल दोनों गुट नहीं करेंगे। ये तो जब तक मामला एडजुडिकेट नहीं किया जाएगा, इंटरिम आदेश तो यही होगा, नहीं तो जिन लोगों के पास विधायक नहीं, जिनके पास सांसद नहीं, पीपल्स मैंडेट नहीं, अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में साहिल जी आप लोगों का मैंडेट किससे मानेंगे? जो सीटें आई हैं, चुन के लोग आए, उन्हीं से तो मानेंगे। जिनको जनता का मैंडेट प्राप्त है वो लोग भी नहीं सिंबल को इस्तेमाल कर सकते, और जिनको नहीं प्राप्त वो भी नहीं कर सकते। अब ये हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है, लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट इसमें दे रही है। 71 का तो सादिक अली टेस्ट हमारे सामने है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था 3 चीजों को हमको देखना है, उद्देश्य, लक्ष्य, स्प्लिट क्यों हुआ, नंबर्स कि वो क्या थे, और अब जो गठ है उनके पास क्या चीज, कितनी दल का जो संविधान है वो क्या कहता है, ये तीन चीजें। तो दल के संविधान को भी चेक किया जाएगा, जो उद्देश्य था उसको भी चेक किया जाएगा, और नंबर्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहली बात हुई। दूसरी बात साहिद जी, मुझे लगता है कि इस पर जो जिस प्रकार से एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम किया जा रहा है, जो मूल विषय है उस पर भी जाना चाहिए। लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी और भतीजे की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया, और एब्सोल्यूट रिजेक्ट किया, सत्ता से उखाड़ करके 200 से ऊपर सीटों वाली एब्सोल्यूट सरकार चलाने वाले 80 पर आ गए, और आज उसमें से लगभग 50 अपना गुट अलग बना रहे हैं। ये लोगों का मैंडेट है, और देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर लोगों के मैंडेट से ऊपर कोई नहीं होता। तो क्या नैतिक अधिकार होगा एक ममता बनर्जी और उनके भतीजे
8: को, चीजों में आपको मैं रोकना चाहूंगा,
10: नहीं चुनेगी, कोई नहीं चुनेगा, फिर भी सिंबल हम रखेंगे।
8: आप पढ़े, आप संविधान को पढ़ने वाले प्रवक्ता है, मैं आपको दो चीजें, आपके आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसमें दो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने दो चीजों का जिक्र किया। पहला जिक्र आपने इस बात का किया कि जो मैंडेट दिया हुआ है वो मैंडेट उनसे खिसक गया है, बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी हुई है। चुनाव में कोई जीतता है कोई हारता है, जो जीतता है उसे जनता मैंडेट देती है, वो सत्ता में जाकर बैठा है, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी आज वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दूसरी जो बात है, आपने सादिक अली जजमेंट का जिक्र किया, उसके बाद 10th शेड्यूल संविधान के भीतर इंक्लूड किया गया है, उसी 10th शेड्यूल में कुछ सुधार किए गए हैं, और लास्ट अमेंडमेंट के तहत पार्टी के भीतर विधायक दल में अगर कोई टूट होती है तो वह पार्टी की टूट नहीं मानी जा सकती, वह विधायक दल की टूट होगी और उन्हें टूट का जिम्मेदार की मान्यता नहीं मिलेगी, उन्हें किसी और पार्टी में जाकर अपने आप को विसर्जित करना पड़ेगा या फिर उनकी सदस्यता खो देगी। ये विधायक दल के भीतर टूटे, भले जनता ने उनको जीत कर दिया हुआ है, संविधान के हिसाब से तो वो टूट नहीं माननी चाहिए ना, चुनाव आयोग कहां से इस टूट को मान्यता दे रहा है, यही तो सवाल उठाया जा रहा है, किस आधार पे इस प्लेट को मान्यता देने की कोशिश कर रहा है। विधायक दल का एक गुट जाकर वहां पर कहता है कि आम पार्टी है, ये सवाल उठाने की कोशिश हो रही है।
10: देखिए साहिल जी, पहली बात तो अभी ये एडजुडिकेट होना है, इस पर कोई एब्सोल्यूट फाइनल जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, सभी के मैटर्स जो पुराने भी मैटर्स थे वो भी लंबित हैं। पर मेरा आपको पूछना यह है कि अगर दोनों गुटों को जो सिंबल है उसको इस्तेमाल करने से रोका जाए, क्योंकि मामला अभी कोर्ट के सामने है, तो ये मान्यता देने का मामला थोड़ी हुआ, ये तो दुरुपयोग को रोकने का मामला हुआ। मैं छोड़ देता हूं मॉरल क्वेश्चन को, मैं छोड़ देता हूं कि क्या एक ममता बनर्जी और उनके भतीजे को अधिकार है या नहीं है। आप साहिल जी बताइए, आपने एक पार्टी बनाई, पार्टी में बहुत लोग साथ आए, सब लोग चुनाव लड़े, सब लोग एक साथ गए, क्या अब वो पार्टी आपकी जागीर हो चुकी, क्या ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है कि अब हम, मैं ममता बनर्जी और मेरा भतीजा अभिषेक बनर्जी, अब ये हमारी जागीर है, अब कोई हम कोई सब लोग मेरे से असहमत है, सब लोग जो चुनाव जीत के आते हैं, पार्टी हारी है पर 80 विधायक जीत के आए, जितने लोग जीत करके आए वो कह रहे हैं हम इनका नेतृत्व तो स्वीकार नहीं करते, पर आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं, किस बात की दुहाई कि नहीं नहीं हम तो ये जागीर हो चुकी, हम इसको छोड़ने नहीं देंगे, ये भी लोकतांत्रिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और इसीलिए
8: जब तक 10th शेड्यूल आपके संविधान में है तब तक तो उसकी दुहाई देनी पड़ेगी। सिद्धार्थ यादव जी, जब तक 10th शेड्यूल आपके संविधान में है, भारत के संविधान में है, तब तक तो उसकी दुहाई तो देनी पड़ेगी ना। अगर वो 80 विधायक कल खड़े होकर कह दे कि हमें ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, 10th शेड्यूल के तहत उन्हें वो अधिकार है, और 10th शेड्यूल के तहत वो दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, वो अपनी सदस्यता छोड़ सकते हैं या दूसरे पार्टी में जा सकते हैं,
10: और उनके पास अधिकार है। 10th शेड्यूल में उनको अधिकार दिया हुआ है।
8: चुनाव आयोग किस आधार पर स्प्लिट मान रहा है?
10: ये आज का आदेश 10th शेड्यूल के खिलाफ नहीं है। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूं साहिल जी, आज का आदेश 10th शेड्यूल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि आदेश ने दोनों ही गुटों को जो सिंबल और नाम है उसके दुरुपयोग से रोका है, किसी को मान्यता नहीं दी, ये इंटरिम आदेश है, दोनों गुटों को रोकना पड़ेगा, नहीं तो आप जो जजमेंट आएगी, कोई कोर्ट गया हुआ है, फिर तो उस निर्णय का आप करेंगे क्या, अगर 3 साल में 5 साल में उस सिंबल का दुरुपयोग हो जाएगा, तो ये तो रोकना पड़ेगा ना, इंटरिम आदेश ले, और ये मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का, मान्यता इलेक्शन कमीशन देता है, इसलिए अगर इंटरिम आदेश में इलेक्शन कमीशन ने ये कोई रोक दोनों पर लगाई है, तो मुझे नहीं लगता ये किसी का भी उल्लंघन है, और जिन लोगों ने हमारे लोकतंत्र को सदैव तार तार किया है,
8: ये पार्टियों को विभाजित
10: किया है, पार्टियों को तोड़ा है,
8: भारत के भीतर जब भी पार्टियों के बीच में विभाजन को लेकर चर्चा हुई है तब पहली बार इस तरीके की बहस हुई और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है शिवसेना बनाम शिवसेना ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे ये जो मामला चल रहा है उसमें कपिल सिब्बल ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे कि कल उन छोटी पार्टियों का क्या होगा जिनके 5 विधायक होंगे, 3 विधायकों के बल पर पार्टी पर कब्जा किया जा सकता है और यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच ने 5 सवाल इसमें चुनाव आयोग के सामने रखे हुए हैं। वो सवाल भी आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल उन्होंने ये रखने की कोशिश की है कि जब दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट पैमाने तय नहीं थे तो चुनाव आयोग ने शिवसेना के मूल तीर कमान को फ्रीज क्यों नहीं किया, अगर तीनों पैमाने साफ नहीं थे तो ट्रिपल टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल, क्या आयोग ने मूल असली दल और सदन के भीतर विधायक दल के फर्क पर ठीक से विचार किया या नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट में भी इसका विचार किया गया है। और तीसरा सवाल, क्या आयोग ने फैसला लेते सोचा कि वोटर ने पार्टी को वोट दिया था या विधायक को निजी हैसियत पर वोट दिया था, जो विधायक कह रहे हैं ना कि हम ही पार्टी है हमें वोट दिया गया है, पार्टी को वोट दिया था या विधायक को निजी स्तर पर वोट दिया था, यह भी सवाल उस पर पूछा गया है। चौथा सवाल, कोर्ट ने पूछा था कि विधायक सांसदों की संख्या से दल के अंदर भी बहुमत का पैमाना कैसे मान ले ट्रिपल टेस्ट। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल चुनाव आयोग के सामने रखा है। और आखिरी सवाल, क्या आयोग ने विचार किया कि मूल संगठन का नियंत्रण किसके पास है, बागियों के खिलाफ जब मामला लंबित था 10 शेड्यूल के अंडर तो क्या संख्या बल के आधार पर निर्णायक फैसला कैसे दिया गया। ये 3 सवाल सिद्धार्थ यादव जी पूछे गए। लेकिन चाइना इनसी, चूंकि यह मामला आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो हो रहा है, शिवसेना के भीतर जो हुआ था, एक समान था क्या? आप इस सिद्धार्थ यादव जी, आप आपकी बात खत्म करिए, फिर चाइना इनसी बोलिए।
10: मैं साहिल जी इसमें एक ही जवाब दे रहा हूं, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। उसमें स्पष्ट ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शिवसेना के केस में कि आपने फ्रीज क्यों नहीं किया, यहां इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज कर दिया, तो अब ये गलत कैसे हुआ? आपको जब तक ये निर्णय नहीं होगा सिंबल को फ्रीज करना पड़ेगा ताकि दुरुपयोग ना हो, तो इस पर राजनीति का जो कारण बनाने की कोशिश की जा रही है मुझे नहीं लगता उसकी आवश्यकता है।
11: साहिल जी, मैं इस सवाल का जवाब,
8: क्या बड़ी दिलचस्प बात आपने कही, मैं इसका इसका इसका इसका, इसका जवाब मैं शाइना एनसी से लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक मिनट शाइना जी, इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये फैसला चुनाव आयोग के अंतिम फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और चुनाव आयोग के आदेश में चुनाव आयोग ने लिखा है कि पहले जो टेस्ट जिसका जिक्र आपने किया था सिद्धार्थ यादव जी, वो टेस्ट हम लागू नहीं कर सकते, इसीलिए सिर्फ विधायकों की संख्या के आधार पर हम नाम और चिन्ह दूसरी पार्टी को दे रहे हैं। ये फैसला उनका था और इसी पर टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। शाइना इनसी आपकी बात रखिए, उसके बाद अखिल चित्रे।
11: देखिए, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा में हमारे पास 40 आमदार थे, आज एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 60 आमदार है, 13 सांसद है, 100 से ज्यादा नगर सेवक है और सभी 2/3 मार्जिन मेजोरिटी की जो बात है वो हमने सिद्ध किया। इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, मेजोरिटी देखी है, तब फैसले दिया है। तृणमूल कांग्रेस में 1-2-3 नेताओं के झगड़े के बीच में इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, ये इंटरिम ऑर्डर में सिंबल को फ्रीज किया है, तो बायस कैसे है? इलेक्शन कमीशन ने कानून का पालन किया है। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन का भूत ही दिखता है उनको। शिवसेना के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि अगर एक बीजेपी इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बी टीम होती तो तृणमूल कांग्रेस को, ममता जी को भी सिंबल नहीं मिला, उनका भी फ्रीज हुआ है, तो बंगाल में बीजेपी का फायदा किसको? इलेक्शन कमीशन सबके लिए एक कानून रखता है, जिसके पास मेजॉरिटी है उसके पास पार्टी है। एकनाथ जी शिंदे ने पार्टी इसलिए बचाया,
8: किस चीज की मेजॉरिटी किस चीज की मेजॉरिटी क्या, कौन से ट्रिपल टेस्ट की बात करें, जरा बताइए ट्रिपल टेस्ट चुनाव आयोग ने कौन सा ट्रिपल टेस्ट लागू किया था, जरा बताइए शाइना एनसी, जरा बताइए ना कि आपने चुनाव आयोग का तो आदेश पढ़ा होगा, जरा बताइए कौन सा ट्रिपल टेस्ट लागू की गई थी शिवसेना वाले मामले में।
11: साहिल जी, इलेक्शन कमीशन का टेस्ट क्या है? 3 टेस्ट होता है, एक है लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, एक है पार्टी का जो संगठन और ऑर्गेनाइजेशन, और एक है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ पहले फ्रीज किया फिर दिया, क्योंकि दिया क्योंकि लोकप्रियता और सबको पता है कि नंबर्स जो शिंदे फैक्शन के पास है धनुष बाण और मेजोरिटी, और ये मेजोरिटी संविधान आपको
10: यही
11: देता
10: तो
11: है।
10: सवाल सुप्रीम कोर्ट आज उठा रहा है ना शाइला जी,
11: मामला है
10: लेकिन यही तो सवाल सुप्रीम कोर्ट आज उठा रहा है ना कि सिर्फ विधायकों की संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर विधायकों की संख्या को देखा, यही तो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट उठा रही है ना आज। आज आपने आपने हियरिंग तो सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के सवाल तो आपने सुने होंगे ना उसमें जो मैंने आपको पढ़कर बताया।
11: एक बात है, जब नेता कार्यकर्ताओं को छोड़कर परिवारवाद को बढ़ाते हैं तो पार्टी टूटती है, ये स्वाभाविक है। ममता जी ने अभिषेक को जो आगे लाया और फिर पुराने यहाँ पर पुराने सैनिकों को कैसे नजरअंदाज किया। हमारे लिए एक चीज जो संविधान कहता है कि जहां आपके नंबर्स हैं तो आपके पास पार्टी है, लेजिस्लेटिव मेजोरिटी है तो आपके पास पार्टी है, संगठन
10: संविधान
11: है, तो आपके पास पार्टी है।
10: संविधान संविधान
11: शाइनाइन सी
10: शाइनाइन सी आप मुझे आप संविधान को कोट कर रही है शाइना एनसी आप संविधान को कोट कर रही है, मुझे आप संविधान की धारा बता दीजिएगा, आर्टिकल बता दीजिएगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि विधायकों की संख्या जिसके पास ज्यादा उसके पास पार्टी है, ये मुझे संविधान आप दिखा दीजिए मुझे।
11: मैं जवाब दे रही हूँ तो सुनिए ना, जब
10: दिखा दीजिए मुझे
11: इलेक्शन,
10: मैं आपको जवाब दीजिए।
11: दो राइवल ग्रुप्स है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के, तब एक ममता बैनर्जी एक अरूप रॉय, तो उन्होंने
10: संविधान
11: फाइनल हियरिंग पैरा 15
10: शाइना जी संविधान संविधान में लिखा हुआ है, आप कह रही है आप कह रही
11: पैरा 15 ऑफ द सिंबल्स ऑर्डर के निमित्त ये निर्णय लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो एक
10: पैरा 6 पैरा 15 ऑफ द सिंबल ऑर्डर में कहां लिखा है कि विधायक
11: इलेक्शन कमीशन को
10: शाइना एनसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप पहले संविधान कह रही है शाइना एनसी आप शाइना एनसी शाइना एनसी शाइना एनसी शाइना एनसी शाइना एनसी शाइना एनसी एक बार फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं सिंबल ऑर्डर के पैरा 15 में आप मुझे दिखा दीजिएगा कहां पर यह लिखा है कि विधायकों की संख्या के आधार पर पार्टी और सिंबल उस गुट को देना चाहिए जिसके पास विधायकों की संख्या और सबसे ज्यादा होती है, ये सिंबल ऑर्डर में कहां लिखा है उस आधार पर आप मुझे लिखा।
11: इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल का नाम जो इंटरिम ऑर्डर के निमित्त फ्रीज किया है फॉर द फाइनल हियरिंग which will
10: चलिए,
11: be held where both segments will be able to present their cases on para 15 on the symbols order। ये मैंने कहा
10: पार्टी के भीतर अगर पार्टी के नेतृत्व पर किसी को सवाल है तो पार्टी के भीतर अगर परिवारवाद से पार्टी चलाई जा रही है तो उसपे बगावत करने का अधिकार सभी को है, लेकिन क्या पार्टी के भीतर संविधान के आधार पर इस तरीके की स्प्लिट को मान्यता देना क्या चुनाव आयोग सही कर रहा है? अखिल चित्रे आप जवाब दीजिएगा। अखिल चित्रे
12: जी मुझे पता नहीं है कौन सा संविधान ये पढ़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों से, क्योंकि मुझे लगता है जो संविधान बदलने के लिए जो मेजोरिटी चाहते थे मुझे लगता है उसमें ये सब चेंजेस लाने वाले थे शायद, तो उनको ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। अभी आप मुझे एक बात बताइए, एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें सिर्फ एक ही सांसद चुन के आया है या एक ही एमएलए चुन के आया है विधायक चुन के आया है तो क्या वो विधायक चला जाएगा? और लाखों कार्यकर्ता उस पार्टी में है, बहुत सारे हजारों पदाधिकारी उस पार्टी में है, तो क्या वो एमएलए की पार्टी हो जाएगी, क्या उस सांसद की वो पार्टी हो जाएगी? सिंपल है, नहीं हो सकता है। क्या है जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ये एक स्वायत्त संस्था थी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी, पर जिस प्रकार से वो काम कर रही है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को नाकार दिया है वेस्ट बंगाल ने, हाँ माना ना नाकार दिया, उनको विरोधी पक्ष में बैठने का उन्होंने मैंडेट दिया, 80 एमएलए उनके चुन के आए, वो किसके अंडर चुन के आए, किसके लीडरशिप में चुन के आए, ममता बनर्जी के लीडरशिप में चुन के आए, तो उसमें से 50 अगर गए और उनको अगर पहले ऐसे लगता था कि परिवारवाद है तो उन 50 लोगों ने लड़ना ही नहीं चाहिए था ना उस पार्टी से। जिस प्रकार एकनाथ शिंदे और उनके गुट को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन शिवसेना की नहीं थी, तो एकनाथ शिंदे जो खुद नेता बने या एकनाथ शिंदे का जो एबी फॉर्म है ना उसपे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे के सिग्नेचर थे, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सके। ये सब चीजें जिसकी लाठी उसकी भैंस।
8: ये आपके भैंस सुप्रीम कोर्ट के भीतर चल रही है,
12: गैर वापस कर रहे हैं।
11: गिफ्ट नहीं है
12: सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है, जिसका उल्लेख आपने भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दोनों दोनों फ्रीज कर देना चाहिए था। अगर है इतना चिन्ह के गुट में, उन्होंने एक नया सिंबल लेके लड़ना चाहिए था। हमने तो एक अलग नाम शिवसेना उद्धव वाला से ठाकरे एक नया चिन्ह मशाल लेके भी हमने महाराष्ट्र में सांसद
8: दोनों को दिखाई है।
12: एक नाथ शिंदे जी में और उनके बूट में अगर हिम्मत है तो उन्होंने अलग नया सिंबल जिस हिसाब से
8: ठीक है मुझे सिद्धार्थ यादव के पास इस बहस को लेकर जाना ठीक है। अखिल चित्रे शायना इनसे जरा थोड़ा सा
11: कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में
8: थोड़ा सा शांति शांति शांति अपने अपने समय पे सिद्धार्थ यादव जी एक इंटरेस्टिंग मुद्दा यहां पर अखिल चित्रे उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जरा इसका जवाब दें। मैं आपकी बात मानता हूं कि देखिए विधायक जीत कर जाते हैं अगर उन्हें लगता है कि परिवारवाद चल रहा है पार्टी के भीतर, सही नहीं चल रहा है पार्टी के भीतर, पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से भटक रही है, तो उन विधायकों को उसके खिलाफ जाने का पूरा अधिकार है। इस पे कोई संशय नहीं है। हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं और उसी डेमोक्रेसी के तहत 10th शेड्यूल संविधान के भीतर लागू कर दिया गया है और 10th शेड्यूल के तहत जो नियम है उस नियमों के तहत यह तय होता है कि उस स्प्लिट का क्या करना है। वो विधायक दल की स्प्लिट मानी जाती है या पार्लियामेंट्री पार्टी की स्प्लिट मानी जाती है। लेकिन जो अखिल चित्र यहां पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर किसी पार्टी का एक ही विधायक है और अगर वो टूट जाता है और इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर बोलेगा मैं अकेला विधायक हूं, मैं स्प्लिट हो चुका हूं, मेरे हाथ में पार्टी दे दीजिएगा, स्प्लिट मानकर क्या दो गुटों का सम्मान करते हुए इलेक्शन कमीशन उस सिंबल को फ्रीज करेगा तो ठीक रहेगा क्या? जैसे बहुजन समाज पार्टी एक ही विधायक है आज उनका, कल वो जाकर कहेंगे कि मायावती की पार्टी नहीं है मेरी पार्टी है, क्या होगा बताइए जरा सिद्धार्थ यादव जी। बड़े इंटरेस्टिंग है ये बात और इस पर बहस होनी चाहिए।
10: साहिल जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इंटरेस्टिंग है और इसीलिए इस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट देश में चल रही है। इसको क्वालिटेटिवली आपको देखना पड़ेगा, इसका एब्सोल्यूट टेस्ट नहीं है, इसका क्वालिटेटिव टेस्ट है। जैसे आपने एक उदाहरण दिया, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो लोग टीएमसी से अलग हो रहे हैं वो ममता बनर्जी के साथ डे वन से थे, डे वन जिस दिन पार्टी बनी पहले दिन से सांसद भी थे, विधायक भी थे, मंत्री भी रहे। अब ममता बनर्जी ने तय कर लिया कि उनमें से कोई नहीं, मेरे परिवार का मेरा भतीजा आगे आएगा। वही लोग जो पार्टी के साथ पहले दिन से अपना खून पसीना बहा रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं हम इस पार्टी को क्लेम करते हैं। तो क्या ममता बनर्जी का ये कहना कि नहीं मेरा भतीजा नहीं और कोई और नहीं आएगा वो संवैधानिक है? क्या संवैधानिक है? यू हैव टू लुक एट इट कॉन्स्टिट्यूशनली एंड क्वालिटेटिवली। आपको इसको देखना पड़ेगा कि वास्तव में पार्टी, और इसीलिए जिस ट्रिपल टेस्ट की बात की जाती है उस ट्रिपल

0: क्या समस्याएं थी उनकी, उनका पार्टी का संविधान क्या कहता है। अब पार्टी के संविधान को बदलकर साहिल जी आप ये तय कर दें कि ममता बनर्जी आजीवन पार्टी की अध्यक्ष रहेंगी, उद्धव ठाकरे आजीवन पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे, वो जाएंगे तो आदित्य ठाकरे आएंगे, आजीवन वो रहेंगे, कोई भी पार्टी आप उठाइए, आप संविधानों को तो बदल दें और अपने परिवार की जागीर उसको बना दें। जो नेता आपके साथ डे वन से लगे हुए हैं, जो भी पॉपुलर लीडर्स हैं, जिनको भी वहां की जनता चुनती है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर क्वालिटेटिवली सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है वही विश्लेषण हो रहा है, पर उसका और आज के निर्णय का दोनों का कोई मेल नहीं है, क्योंकि आपको अगर इस पर निर्णय करना है तो आपको सिंबल फ्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो कौन सा मौलिक अधिकार ममता बनर्जी के पास है कि ना सांसद होना, ना विधायक होना, ना जनता का मैंडेट होना, कुछ भी ना होना, कार्यकर्ता भी छोड़कर गए हैं।
1: सिद्धार्थ यादव ने यहां पर रखी हुई है, यह बात ठीक है कि पार्टी के भीतर डेमोक्रेसी को लेकर, पार्टी के भीतर डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि होनी चाहिए उस पर एक अलग से डिबेट छिड़ी जाएगी, उस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन कृष्णा जी जरा यह बात बता दीजिएगा कि ऋतव्रत बैनर्जी जो ये बागी गुट के नेता है, वो कब से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और क्या जो सिद्धार्थ यादव यहां पर एक बहस के लिए, क्वालिटेटिव बहस के लिए जो मुद्दा रख रहे हैं, उस पर आपकी भूमिका।
2: देखिए, बीजेपी अपने स्वभाव के अनुसार इसको भटकाना चाहती है, क्योंकि उनको तो अपना काला चेहरा और काला कारनामा ढांकना है। बीजेपी और उनके सहयोगी दल इसको उसी ओर ले जा रहे हैं। पहली बात तो ऋतुव्रत बनर्जी 2016 या 17 में हमारे दल में आए, हमारे पक्ष से जो विरोधी दल के सदस्य चुने गए हैं शोभन देव चटर्जी, वो पहले दिन से ममता बनर्जी के साथ है और आज भी है, 10 times MLA है, 10वीं बार वो चुने गए हैं इस बार। तो ये कृपया बीजेपी का वक्तव्य, संजय जोशी बीजेपी में क्यों नहीं, अगर उसमें मैं पूछना लगू, उसको मैं मुद्दा बनाऊ तो जैसे बेवकूफ लगूंगा, उसी तरह ये परिवारवाद का क्या, हमारे संविधान में परिवारवाद का डेफिनेशन क्या है, कहां पर है, किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में। अरे ममता बनर्जी पार्टी का फाउंडर है, आज भी ममता बनर्जी चेयरपर्सन है, इसमें परिवार कहां से आ, ये बीजेपी तय करेगी कि हम अपना सांसद विधायक नेता किसको बनाए, बीजेपी और एनडीए। अरे ममता बनर्जी हमारे फाउंडर है, नेत्री है और आज भी है, तो आज जो हमारे बागी है वो ममता बनर्जी को नकार रहे, तो ये दोनों को प्लीज दोनों को मिलाइए मत। आपने बाबा साहब के साथ विश्वासघात किया, क्या क्या किया, मैं सुनने नहीं जा रहा
1: हूँ। चाइना जी आप जरा संविधान का मुझे आर्टिकल बता दीजिए, पहले आपने पहले कोट किया था उसके बाद बीच में आइए, प्लीज प्लीज चाइना जी प्लीज अपने समय पे।
2: ये यही बोल रहे हैं ना,
1: गीता चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता,
2: तरीका भी नहीं है कि भाई कब बोलना है कब नहीं बोलना है। ममता बनर्जी इज आवर पार्टी
1: मीता चक्रवर्ती, ठीक है कृष्णा जी मीता चक्रवर्ती, अब आखिरकार तृणमूल कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है, जो भी उम्मीदवार है, उनको हम समर्थन देंगे, आपके साथ आ गए आप, और एक वक्ता के अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि कांग्रेस की कब्र पर खड़ी हुई है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और अब कब्र से बाहर निकलकर कांग्रेस को समर्थन दे रही है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। बड़ी दिलचस्प चल रही है लड़ाई नंदीग्राम के भीतर।
3: देखिए, इसके ये जवाब देने के पहले मैं सिर्फ ये चीज बता दूं कि 4 May 2026 के पहले ये जो तमाम विधायक और सांसद आज कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर परिवारवाद चल रहा था, अभिषेक बनर्जी अच्छे लीडर नहीं है, करप्शन चल रहा था, ये तमाम चीजें क्या इन लोगों को पहले नहीं पता था? 4 May 2026 पहले के पहले यही लोग अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद बोलते रहते थे, पर अभी उसको सडनली कॉन्शियस में जाग उठा कि ये लोग परिवार, यहाँ पर परिवारवाद हो रहा है, यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, या अभिषेक बनर्जी करप्ट है। दूसरी बात, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन में जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे पहले वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन होता था, वोट चोरी होता था, पीछे के दरवाजे बैकडोर से आके एमएलए को खरीद लिया जाता था और गवर्नमेंट को गिराया जाता था, पीपल मैंडेट के साथ मौकरी हुआ करता था। अब तो यहाँ पर पूरा की पूरा पार्टी चोरी हो रहा है, पहले वोट चोरी, फिर सरकार चोरी, अभी पूरा का पूरा पार्टी चोरी हो रहा है। Is this a democracy or is this mockery of democracy? देखिए, ममता बनर्जी के हजार चीजों के ऊपर हम लोगों ने भी पॉलिटिकली उनको प्रोटेस्ट किया है, उनके करप्शन के खिलाफ, उनकी पॉलिटिकल वायलेंस का जो कल्चर है, कल्चर हुआ करता था, अभी भी है वेस्ट बंगाल में, उसके खिलाफ, पर वो पॉलिटिकली हमने प्रोटेस्ट किया है, पॉलिटिकली वी हैव फॉट द बैटल। पर इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जैसे पहले एनसीपी के साथ हुआ, पहले शिवसेना के साथ हुआ, जैसे डेमोक्रेट

0: जी का मौकरी बनाया जा रहा है, जैसे पूरा पार्टी को खत्म किया जा रहा है। ये जो
1: रिपीट हो रहा है सिद्धार्थ यादव,
0: और जो अभी सीधा बीजेपी और जो
1: आरोप ये लगाया जा रहा है,
0: सिर्फ 30 सेकंड्स मोर,
1: सिद्धार्थ
0: ये तमाम लोग क्या इंडिपेंडेंटली जीत सकते
1: हैं? समय खत्म हो रहा है आखिर में। सेम स्क्रिप्ट
2: साहिल जी, मैं
0: ममता बनर्जी का
2: सिद्धार्थ यादव साहिल जी, राजस्थान के अंदर बीएसपी के विधायकों को अपने में शामिल करा लिया, वो कौन सी
1: स्क्रिप्ट?
2: उत्तराखंड के अंदर बसपा के सारे विधायकों को पार्टी में विलय, कांग्रेस पार्टी ने अपने में शामिल करा लिया, कौन सी स्क्रिप्ट थी? हरियाणा के अंदर हजका नाम की पार्टी थी, चार विधायक जीत के आए, कांग्रेस ने अपने में शामिल करा लिया, पूरी पार्टी का विलय करा लिया, कौन सी स्क्रिप्ट थी? बिहार के अंदर एमआईएम के जितने जीत के आए सबको अपने में शामिल करा लिया, कौन सी स्क्रिप्ट थी? चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का विभाजन करना हो, जगनमोहन रेड्डी का विभाजन करना हो, जनता दल का विभाजन करना हो, जेडीएस सेक्युलर कराना हो, ये अपने में करेंगे? अच्छा अच्छा गप गप, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है साहिल जी, हमने संविधान का दुरुपयोग करके पार्टियां नहीं तोड़ी है इस देश में। कांग्रेस पार्टी संविधान का दुरुपयोग करके देश में पार्टियों का विभाजन करती आई है, और चाहे फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का विभाजन करना हो, और फिर फारूक अब्दुल्ला के बहनों को मुख्यमंत्री बना देना हो,
1: आज के तारीख में इस देश में चल रही है। पहले जब पार्टियां टूटी थी तब टूटे हुए गुट को नया नाम और पार्टी का एक नया सिंबल मिल जाता था, अब टूटी हुई पार्टी को ही पार्टी का असली नाम और सिंबल मिल रहा है। जब 10th शेड्यूल लाया गया था तब यही कहा गया था कि इससे होलसेल विधायकों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, और आज की तारीख में वही दिखाई दे रहा है। ये कब तक चलेगा ये सबसे बड़ा फैसला रहेगा। चलिए इस पर नजर बनाए रखेंगे, फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
8: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: यार लोन भूल गया। मैरी
6: इट्स
5: जस्ट अ गुड बैंक ना।
7: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
5: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
7: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
8: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
5: अस। उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
9: इन एसोसिएशन विद हिंट। एक हिंट तो देते।
10: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
9: विमल बोलो जुबां केसरी।
11: There is a very famous quote ki history repeat itself.
12: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
13: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
12: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
14: समाजवादी पार्टी के 2027 के चुनावी रथ तैयार है और उसमें पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर के सर पीडीए को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
15: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
14: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
15: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है। सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
14: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
15: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
14: तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का चलने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

भारत की राजनीति के सदा सर्वदा व्याकुल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, तो आज उन्होंने एक अद्भुत ट्वीट किया है। उससे लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी के बारे में भी कुछ नहीं पता है। वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने की प्रक्रिया में यह भी ध्यान नहीं दे पाते कि जिस पार्टी का वो नाम ले रहे हैं वो पार्टियां कौन हैं। उन्होंने आज ट्वीट किया कि पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब तृणमूल कांग्रेस, इन तीन का नाम लेके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी इन पार्टियों को निपटा रही है। अरे कांग्रेसियों के लिए आदरणीय और अभिनंदनीय और देश के लिए निंदनीय राहुल गांधी जी, आप इतना भी नहीं पढ़ पाते कि एनसीपी का फुल फॉर्म है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। यह कांग्रेस से टूटी हुई है, तृणमूल कांग्रेस के नाम में कांग्रेस है। एनसीपी, शरद पवार जी 1999 में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे विदेशी मूल के नेतृत्व के मुद्दे पे, मगर विदेशी मूल के वारिस राहुल गांधी जी को अपनी पार्टी का मूल ही नहीं पता है।

आईफोन 18 की सीरीज भारतीय बाजार में दस्तक दे चुकी है। देश के प्रमुख शहरों के एप्पल स्टोर्स पर आईफोन प्रेमियों की कतारें दिखीं। फोन भले ही महंगा हो, लेकिन इसका क्रेज अलग ही लेवल का है। एप्पल हमेशा अपने फोन में कुछ नए फीचर्स लेकर आता है और यही बात उसे बाकी मोबाइल फोन से अलग बनाती है। पहली नजर में आईफोन 18 प्रो को देखकर शायद आपको लगे कि ये पिछले मॉडल से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन इसकी असली ताकत फोन के अंदर छिपी है। एप्पल ने इस बार खास तौर से चार चीजों पर फोकस किया है, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर। नए आईफोन के फीचर्स में सबसे ज्यादा चर्चा है इसके कैमरे की। आईफोन 18 प्रो में 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया गया है, लेकिन इसकी खासियत सिर्फ 48 मेगापिक्सल तक सीमित नहीं है, फीचर्स इससे आगे तक हैं। इस बार आईफोन में एप्पल ने मेन कैमरे में वेरिएबल अपर्चर दिया है। ये फीचर मेन कैमरे से ली गई तस्वीरों को और बेहतर बनाने में मदद करता है, यानी फोटोग्राफी में यूजर को पहले से ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। खास तौर पर कम रोशनी में तस्वीरें लेने, पोर्ट्रेट शूट करने और वीडियो बनाने वालों के लिए ये कारगर साबित हो सकता है। आईफोन 18 सीरीज को पहले के फोन से अधिक ताकतवर माना जा रहा है। इस फोन में नई A20 प्रो चिप दी गई है। इसको लेकर दावा है कि पिछली पीढ़ी के आईफोन चिप के मुकाबले ये ज्यादा तेज परफॉर्मेंस देती है। इसका फायदा गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो प्रोसेसिंग और AI जैसे भारी कामों में देखने को मिल सकता है। किसी भी डिवाइस में सिर्फ प्रोसेसर तेज करना ही काफी नहीं होता, फोन गर्म होने लगे तो परफॉर्मेंस भी गिर सकती है। इसलिए एप्पल ने इस बार कूलिंग सिस्टम पर भी खास काम किया है। आईफोन 18 प्रो में नया वेपर चैम्बर दिया गया है, जो फोन के अंदर पैदा होने वाली गर्मी को मैनेज करने के लिए डिजाइन है। मतलब लंबे समय तक गेमिंग या वीडियो एडिटिंग करने वालों के लिए लगातार बेहतर परफॉर्मेंस का फायदा मिल सकता है। कंपनी दावा करती है कि फोन का वेपर चैम्बर इसके परफॉर्मेंस को मजबूती देता है। आईफोन 18 प्रो में एक से एक फीचर्स हैं और अब बात उस फीचर की जो आने वाले समय में हर स्मार्टफोन की पहचान बनने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। एप्पल का एडवांस्ड AI फीचर आईफोन 18 प्रो को सबसे अलग करता है। नए आईफोन में AI के लिए पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है। iOS 27 के साथ आईफोन ने सीरी और एप्पल इंटेलिजेंस पर काम किया है। इन फीचर्स को पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाया गया है, यानी आपका फोन सिर्फ आपके सवाल का जवाब देने वाला डिवाइस नहीं रहेगा। कोशिश ये है कि वो आपकी बात के संदर्भ को समझे और ज्यादा उपयोगी तरीके से प्रतिक्रिया दे। हालांकि AI के सभी फीचर्स हर भाषा और हर देश में एक जैसे उपलब्ध हों ये जरूरी नहीं है। फोन जितना पावरफुल होगा उसे उतनी ही शक्तिशाली बैटरी की जरूरत होती है। अगर बैटरी कमजोर होगी तो लाख फीचर्स हों किस काम के। एप्पल का दावा है कि आईफोन 18 प्रो की बैटरी लाइफ में सुधार किया गया है, खास तौर से आईफोन 18 प्रो मैक्स में। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर वीडियो प्लेबैक 45 घंटे चल सकता है। करीब 15 मिनट में फोन को 50% तक चार्ज किया जा सकता है, यानी जिन लोगों का फोन पूरे दिन लगातार इस्तेमाल होता है उनके लिए बैटरी का ये अपग्रेड काफी उपयोगी साबित हो सकता है। जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनके लिए आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स एक ऐसा स्मार्टफोन साबित हो सकता है जो कैमरा भी है, कंप्यूटर भी और AI असिस्टेंट भी। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
2: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बंगाल उपचुनाव में बड़ा ट्विस्ट, सीएम से मुलाकात के बाद नंदीग्राम से ममता की उम्मीदवार ने नाम वापस लिया। बीजेपी पर भड़की ममता, अब कांग्रेस प्रत्याशी को देंगी समर्थन। बीजेपी पर पार्टियां तोड़ने के आरोप पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस से एक भस्मासुर, साथ आने वाले सभी दलों को जलाने का करती है काम। उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख का जेनजी को संदेश, बोले भागवत, भारत के युवा पूरी दुनिया में न सिर्फ यशस्वी बल्कि सार्थक भी। अरब सागर में पाकिस्तानी नेवी की हिमाकत पर विदेश मंत्रालय की तोड़फोड़, हम उनके जवाब और आरोप को करते हैं खारिज, भारत के जहाज से टकराया था पाक का जहाज। ऑस्कर के लिए जाएगी मराठी थ्रिलर फिल्म गोंधल, भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री, रेस में 30 से अधिक फिल्मों को पछाड़ा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: सीडीएमएल के पीड़ित मिलके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ।
1: समाजवादी पार्टी ने माल वही है, पैकेजिंग नहीं है। पीडीए के अंदर वही माल है जो पुराना इनका MY समीकरण है।
2: जाति गणना के साथ साथ पीडीए का साथ लेकर के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम हम सब मिलकर के करेंगे।
3: पीडीए पूरी तरह से फर्जी है, सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस वक्त बिहार में हम मौजूद हैं क्योंकि पंचायत बिहार चल रहा है, लेकिन आज बात उत्तर प्रदेश की सियासत की होगी, सियासी उस सफर की होगी जहां 2027 की सत्ता का रास्ता आखिर कैसे तय होगा। अखिलेश यादव अपना पीडीए रथ निकालने वाले हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव से लगातार 2024 के चुनाव से पहले वो पीडीए पर, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अगले महीने अखिलेश यादव की सामाजिक पीडीए यात्रा निकलने वाली है। अभी इसका दिन और रूप तय नहीं हुआ है, लेकिन यूपी में कई क्षेत्रों से होकर ये गुजरेगी। अखिलेश यादव पहली बार राजनीतिक बस यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन अब की बार उनकी बस पर पीडीए का संदेश है। बस की एक ओर लिखा है, सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। तो दूसरी ओर स्लोगन है, पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। हाई फाई बस पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा जैसे नेताओं की तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव की ये चुनावी तैयारियां ऐसे समय में सामने आई हैं जब हमने देखा कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यूपी समेत देश भर में आशीर्वाद का दिया जलाया। वाराणसी से बाइक यात्राएं निकाली गई हैं। यूपी को लेकर आरएसएस के साथ बीजेपी संगठन की कोऑर्डिनेशन बैठकें भी हुई हैं। आरएसएस बीजेपी को विपक्ष के नैरेटिव में न फंसने की सलाह दे रहा है। सवाल है कि क्या बीजेपी का हिंदुत्व का कोर मुद्दा ही अखिलेश के पीडीए का जवाब होगा? अखिलेश की तैयारी पीडीए है सवारी। जातियों का फैक्टर 2027 की टक्कर में कितना काम आएगा? क्या पीडीए रथ पर यूपी होगा सवार? हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे, पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मिजाज को नापना हो तो बस जैसी सवारी भी चाहिए और धारदार स्लोगन भी। ये अखिलेश यादव की पीडीए बस है, जो बस अभी हवा पानी सब दुरुस्त कर तैयार कर ली गई है। अक्टूबर से इस पर सवार होकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलने वाले हैं। बस पर लिखे नारों से सामाजिक न्याय का संदेश दिया गया है, यानी 2027 को लेकर पीडीए का बड़ा एजेंडा तैयार है। लेकिन अखिलेश बस यात्रा पर निकले उससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2027 ही नहीं 2047 तक अखिलेश के सत्ता में नहीं आने की गारंटी जारी कर रहे हैं।
1: पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
2: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
1: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है। सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
2: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
1: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
0: अखिलेश यादव 2024 के चुनाव के समय से ही पीडीए का दांव चल रहे हैं। पहले पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया गया था। बाद में पीडीए में पंडित, अगड़ा, आधी आबादी, आदिवासी सभी के शामिल होने की बात की गई। 2024 में यूपी में बीजेपी से ज्यादा लोकसभा सीटें पाने के बाद अखिलेश इसे जीत का महामंत्र मानकर चल रहे हैं।
3: जाति गणना के साथ साथ पीडीए का साथ लेकर के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम हम सब मिलकर के करेंगे।
0: अखिलेश के इस पीडीए रथ में सोफा लगा है, 6 लोग एक साथ बैठक कर सकते हैं। बस में वॉशरूम, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं। अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक यात्राओं के लिए 2016-17 और 2021 में इसी बस का इस्तेमाल किया था। बस अब नए डिजाइन और पीडीए के संदेशों के साथ समाजवादी पार्टी मुख्यालय पहुंच चुकी है।
4: समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश की जनता और पीडीए समाज में बड़ा उत्साह है रथ यात्रा को लेकर, आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुनने और देखने को लेकर कि किस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी आएंगे और जनता से वादे भी करेंगे, जनता से अपनी बात को भी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसने 10 साल से परेशान किया है, जिसने 10 साल से पीड़ित किया है, सब पीडीए मिलके, पीड़ित मिलके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे।
5: समाजवादी पार्टी ने माल वही है, पैकेजिंग नहीं है। एमवाई के समीकरण पर एक्सपोज हो चुके थे, सब उनके इस एमवाई के समीकरण को समझते हैं, इसीलिए अब ये पीडीए के नाम पर नया सिगुफा लेकर आए। वो जानते हैं कि पीडीए एक नई पैकेजिंग केवल है, इसीलिए रोज पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। लेकिन पीडीए के अंदर वही माल है जो पुराना इनका एमवाई समीकरण है, लेकिन ये जाति मजहब के आधार पर चुनाव नहीं होगा।
0: पीडीए पर राजनीतिक वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन असल सवाल है राजनीतिक संदेशों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने आशीर्वाद का दिया जलाया है। उधर योगी आदित्यनाथ विकास के साथ साथ हिंदुत्व के अपने एजेंडे पर कायम है, साथ ही यूपी में कानून का राज होने का दावा कर रहे हैं।
6: आज यूपी कर्फ्यू मुक्त है, दंगा मुक्त है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अपराधी या तो जेल में है या दूसरे लोक की यात्रा में जा चुका है।
0: विकास और कानून व्यवस्था पर पक्ष विपक्ष के दावों के बीच सच्चाई ये भी है कि चुनावी समीकरण आखिर में जातियों पर आने की ही संभावना है। अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा से इसकी राजनीति और आगे बढ़ सकती है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, आशुतोष वर्मा जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं और राघवेंद्र द्विवेदी एसबीएसपी की तरफ से हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ निशा चौधरी भी जुड़ रही हैं जो कि आरएलडी का पक्ष रखने वाली हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं प्रेम शुक्ला जी, पीडीए की सवारी निकल रही है, क्या आप लोगों को इस बात का एहसास है कि पीडीए के साथ ही 2024 के चुनाव के पहले सबसे ज्यादा अखिलेश यादव गए थे और इस मुद्दे ने उनका जो ये पीडीए का नारा था वो सफल हुआ, क्योंकि भाई 33 सीटें आपकी आई, 37 सीटें लोकसभा में उनकी आई, उसी पीडीए को एक बार फिर से अपनी गाड़ी की सवारी उसकी लेकर निकल रहे हैं अखिलेश यादव?
7: देखिए अंजना जी, हर कोई जानता है कि पीडीए का मतलब है पीट देगा अपराधी, और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस तरह से अपराधियों का राज चलता था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया चलता था। जितना ये पीडीए का रथ लेकर निकलेंगे उतना ही पूरे प्रदेश के जनता के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि अपराधी फिर से राज में आने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक बात है लोकसभा के चुनाव की, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के बाद जिन जिन राज्यों में, बंगाल में तो आपको ध्यान होगा 29 सीटें जीती थी तृणमूल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई थी 8 सीटों पर, और उस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें जीती है। इसी तरह महाराष्ट्र का परिणाम आपको ध्यान होगा, हरियाणा का परिणाम ध्यान होगा, जितने भी चुनाव हुए लोकसभा चुनाव के बाद, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह परचम लहराया भारतीय जनता पार्टी का। तो लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में जहां जहां भी आप परिणाम देखेंगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड जनादेश देने का काम प्रदेशों की जनता ने किया है, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के पक्ष में आना निश्चित है। इस बात को भलीभांति श्रीमान अखिलेश यादव भी जान रहे हैं और पीट देगा अपराधी का उनका नारा भी जान रहा है।
0: चलिए वर्मा जी, अब आप इसका जवाब दीजिए। वो सीधा कह रहे हैं पीडीए तो पीट देगा अपराधी है, यानी वो एक तरह से एक बार फिर से वही उनका ये कहना है कि अपराधों का बोलबाला चलता है समाजवादी पार्टी में, तभी पीडीए का उन्होंने कॉइन किया है पीट देगा अपराधी।
8: धन्यवाद अंजना जी। देखिए बात नेगेटिविटी से ना शुरू की जाए, हम लोग एक अच्छी यात्रा शुरू कर रहे हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी ने समाजवादी विकास यात्रा विकास रथ निकाला था, समाजवादी विजय यात्रा निकाली 2022 में, और अब पीडीए यात्रा। पीडीए के फॉर्मूले को लेके जैसा आपने कहा, समाजवादी पार्टी ने बहुत मेहनत करी है और 2024 में परिणति पूरे देश ने देखी है। भारतीय जनता पार्टी का यह दम्भी सरकार को अगर कोई हिला पाया है तो उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के गठबंधन के द्वारा ही पूर्व बहुमत को रोका गया है। ये बात बिल्कुल ठीक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में क्या क्या चल रहा है। हमारी तो बहुत साफ साफ बात है कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करेगी, और जो पिछले 11 साल से उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा है, उसकी बात ये जाएगी और ये रथ हमारा करेगा। इनकी परेशानी इस बात से नहीं है कि हमारा रथ कैसा है, इनकी परेशानी उस पर लिखा हुआ पीडीए ही परिवर्तन लाएगा इससे है, क्योंकि इनका अंदर जो एक जाति वर्चस्व इनका कायम कर रखा है उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश में शामली से लेके आप बलिया तक चले जाइए, गाजियाबाद से गाजीपुर तक चले जाइए, हर जगह एक अजीब तरीके से एंटी पीडीए मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी चला रही है। चाहे आप दलितों की बात कर लीजिए, चाहे आप पिछड़ों की बात कर लीजिए, चाहे उनके आरक्षण की बात कर लीजिए, चाहे अल्पसंख्यकों की तो बात ही मत करिए, उनकी स्थिति तो बद से बदतर हो गई है। तो उन सब की सामाजिक न्याय की यात्रा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ ही दिन में शुरू करने वाले हैं, उससे घबराई है और 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा था उससे अभी तक उबर के नहीं आ पाई है।
0: ठीक है अखिलेश जी, अब आप मोर्चा संभालिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो काट खोज रही है वो हिंदुत्व का कोर एजेंडा अपना आगे ले जाना चाहती है, और अखिलेश यादव ने देखा है कि 24 के चुनाव में ये पीडीए का फॉर्मूला उनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ, तो वो तो यही है, तू जात जात में धर्म धर्म।
9: देखिए अंजना जी, ये जो एनडीए है ना, नेशनल डिजास्टर अलायंस, इसको देश की जनता, प्रदेश की जनता पहचान चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के लोग खुद ही अपना जंग हार चुका मान रहे हैं, खुद हतोत्साहित हैं। कोई एक मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास जिस पे वो जनता के बीच में बात कर सकें। आप खुद कह रही हैं कि वो कम्युनल एजेंडे पे आना चाहते हैं, उनके पास कोई दूसरा एजेंडा भी नहीं है। आप अंजना जी, हमारे जो भाजपा के लोग हैं, सीएम पीएम, ये लोग कितने प्रचार जीवी हैं, और उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम महोदय और जो सूचना विभाग है उसने पिछले 5 वर्षों में 22 से लेकर 27 तक 7,337 करोड़ रुपया, सुनिएगा, 7,337 करोड़ रुपया खर्च किया है सिर्फ 5 सालों में। रोजाना 4 करोड़ रुपया सूचना विभाग इस सरकार के सीएम और सरकार का मुखौटा चमकाने में खर्च कर रही है। कितनी योजना इसमें आई होती, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हर वादे झूठे साबित हुए हैं। जब सत्ता में आए तो बोले थे कि हम जो है 22 तक यूपी की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन कर देंगे, फिर वो डेट बढ़ा के कहे कि अब हम 27 तक करेंगे, फिर डेट बढ़ा के कहने अब 29 में करेंगे, अब फिर इधर लेटेस्ट डेट बढ़ा दिए कि हम 30 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। एक जो इनके 37 माफिया घोषित हैं, जो क्रिमिनल मोस्ट क्रिमिनल लिस्ट जो है, जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक के इनामी हैं, उसमें से कितनों को ये 10 साल में पकड़ पाए हैं, क्या कर पाए हैं। 63 जो और चिन्हित माफिया अपराधी हैं, इन्हीं की सरकार के द्वारा जारी हुई है मंडलवादी सूची है, उसमें कितने के ऊपर कार्रवाई कर पाए, पकड़ पाए हैं, क्योंकि वो सब सत्ता में बैठ करके सत्ता सुख उठा रहे हैं, मुख्तार हो गए हैं, माफिया जितने हैं मुख्तार हो गए हैं सरकार में। क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का बारे में बच्चे बच्चे का ये अवधारणा बन गई है, जिले से लेकर के प्रदेश तक आप आ जाइए, पहले कमीशन तब परमिशन, हर जगह इनके विधायकों के वीडियो आउट हो रहे हैं कि मुझे इतने पसंद
0: राजेंद्र जी, आप इसी का जवाब दीजिए,
9: काम दूंगा। तो ये
0: वो कहले
10: अंजना जी,
0: पहले कमीशन फिर परमिशन, राघवेंद्र जी ये चल रहा है क्या? हाँ
10: नहीं अंजना जी, अखिलेश जी भी पुराने सरकार में ही जी रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि केंद्र में 2014 से एनडीए की सरकार है और राज्य में 2017 से एनडीए की सरकार है। मैं पहले पीडीए पे आता हूँ। पीडीए का फुल फॉर्म वास्तव में क्या है? पी फॉर पहली बार यात्रा जो थी वो 17 में थी, जनता ने हवा निकाल दी। जी से दूसरी बार 22 में जनता ने हवा निकाल दी दूसरी यात्रा की, और ए फॉर अब की बार 27 में जनता, तो अब 17 मीटर की हो, 15 मीटर की हो, 50 मीटर की हो, जनता को कहिए चाहिए क्या? जनता को लग्जरी रथ की सवारी नहीं चाहिए, जनता को उत्तर प्रदेश में सुरक्षित माहौल चाहिए और माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए। इसके लिए समाजवादी पार्टी के पास और कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। रथ लाके, रथ की बनावट दिखा के जनता से सपोर्ट नहीं ले पाएंगे। आपका रंग बदलने से आपका चाल और ढाल और चरित्र नहीं बदल जाएगा। जनता जानती है कि आपकी यात्रा 2017 में भी
0: निकली थी। राघवेंद्र जी, आपके हिसाब से क्या उनको बैलगाड़ी पे चलना चाहिए?
10: अरे नहीं, चलना तो चाहिए
0: बैलगाड़ी पे।
10: अरे कुछ तो परिवर्तन करते। 17 में धराशायी हो गए, 22 में धराशायी हो गए। अरे कम से कम कोई अच्छा, जैसे अपने पिताजी के बर्थडे में बग्गी मंगाए थे बिलायत से, वैसे कुछ मंगाते कि कम से कम मीडिया की टीआरपी मिलती। ये तो लगातार 17, 22, 27 ये कितना हारेंगे, और एक बार कांच की हांडी अंजना जी चढ़ जाए तो उसको बार बार नहीं चढ़ाया जाता। ये संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे उत्तर प्रदेश में एक बार अपना सांसद बना लिए, लेकिन उस सांसद जो बने हैं उन सांसद के क्षेत्र की स्थिति देख लीजिए क्या है, जनता खोज रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए पीडीए केवल जाति के आधार पर आप सरकार बना ले, उत्तर प्रदेश में एक तरफ एनडीए की सरकार है, ये कोई भी योजना लाती है तो सबके लिए लाती है, ऐसा नहीं है कि आवास आया है तो आवास केवल मुस्लिम और यादव के लिए रहेगा जैसे इनके सरकार।
0: इसका जवाब आप दीजिए वर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं निशा जी के पास जाऊंगी। वर्मा जी
8: नहीं देखिए
0: कह रहे हैं कि बग्गी उग्गी कुछ लाते वही लग्जरी बस और ये सब पर टिप्पणी कर रहे हैं।
8: देखिए 2022 में ये राघवेंद्र जी नए नए अभी आए हैं, तब तभी इनकी पार्टी हमारे साथ ही थी, तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने 403 एलईडी प्रचार रथ चलाए थे और एलईडी स्क्रीन वाली जो है मोटराइज्ड कैंपेन व्हीकल थी वो, आपको पता है उस समय। तो टेक्नोलॉजी बीजेपी के लिए अगर मॉडर्न इलेक्शन कैंपेन होता है तो विपक्ष के लिए अय्याशी कैसे हो जाती है। 2017 में बीजेपी ने करोड़ों रुपए के चुनाव अभियान चलाए जिसमें लखनऊ से 1650 मोटरसाइकिलों पर लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च किया, इंडियन एक्सप्रेस की बड़ी रिपोर्ट थी। अभी हाल ही में 2023 में एक आरटीआई हुआ कर्नाटक की, एक दिन की मोदी जी की रैली के ऊपर 33 करोड़ रुपए खर्च हुए और मजेदार बात है कि वहां 1800 बसों के ऊपर 4.5 करोड़ रुपए का खर्च आरटीआई में दर्ज है, भगवान जाने कितना होगा। और पंजाब में अभी जब आप बात कर रहे हो कल नशा मुक्ति यात्रा रथ के साथ निकाल रहे हैं 100 कॉन्वॉय के साथ, उसके बीच में वहां के प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे। तो रथ जो है, रथ की राजनीति भाजपा के लिए जनसंपर्क और समाजवादी पार्टी के लिए अय्याशी अपराध, ये कैसे चलेगा? हमारी लड़ाई इसकी है नहीं।
0: ठीक है निशा जी, इसका जवाब लड़ाई ये कैसे चलेगा निशा जी? हाँ निशा जी, कैसे कैसे चलेगा ये?
11: अंजना जी आपकी आवाज नहीं है। हेलो अंजना जी आवाज नहीं है।
0: आपने अगर सवाल नहीं सुना तो मैं दोहरा लेती हूँ, क्योंकि इस बात पर चर्चा हो रही थी कि राघवेंद्र जी ने कहा कि भाई ये लग्जरी बस में क्या होता है, आप चलिए बग्गी पे चलिए इस पे चलिए, तो उन्होंने फिर गिना दिया कि भाई भाजपा भी तो इतना इतना खर्च करती है, तुम करो तो टेक्नोलॉजी, हम करें तो अय्याशी।
11: ऐसा है अंजना जी, राष्ट्रीय लोकदल शरदे चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा वाली पार्टी है, जिसमें अगर पीडीए पिछड़े दलित का मैं मतलब समझूं तो उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, देश भर में अगर आज हम उत्तर प्रदेश पर चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी कहां से उठ के 13 लाख करोड़ से लेकर के 30 लाख करोड़ तक पहुंच गई। 4 या 5 सिर्फ 2 हाईवे थे, एक्सप्रेस वे थे, आज लगभग 20-22 एक्सप्रेस वे हो गए। किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ गया, किसानों के गन्ने का भुगतान आज की सरकार में पूरा दे दिया। आज मेरठ से कनेक्टिविटी आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश की कनेक्टिविटी आज राजस्व 4 गुना हो गया। तो जो प्रदेश को लेकर के तरक्की हो रही है उसको देख करके जनता वोट करेगी। जो सही मायने में आज योगी सरकार में एनडीए सरकार में हो रहा है कि जितनी भी योजनाएं हैं, खासकर मैं महिलाओं की योजनाओं की बताऊं तो आज लखपति दीदी गर्व से कहती हैं कि हम इस सरकार में आ करके खुद से अपने हाथ में पैसा रखती हैं और पैसा कमाती हैं और फिर उस पैसे का यूटिलाइज अपने परिवार की समृद्धि में करती हैं, अपने निर्णय लेती हैं। तो आज इस सरकार में जिस तरीके से योजनाएं आई, मुझे लगता है वो अल्पसंख्यक है, किसी भी समाज के अल्पसंख्यक हो, हाँ सभी को उसका फायदा मिला है, चाहे वो ऐसी समाज है, दलित है, कोई भी समाज ऐसा नहीं जिसको उन योजनाओं का लाभ ना मिला हो। अगर सिलेंडर और बांटे गए उज्ज्वला योजना में तो गरीबों को मिले, प्रधानमंत्री जी ने मकान बनवाए तो गरीबों के लिए बनवाए, आज योजनाएं अगर बसों में फ्री होगा तो वो योजनाएं गरीबों के लिए लगी, दलित के लिए गई, पिछड़े के लिए गई। यदि स्वास्थ्य में आयुष्मान योजना का लाभ मिला, जो शायद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मेरे पास महीने में कम से कम 20 ऐसे लोग आते हैं बुजुर्ग जो कहते हैं बेटा कितना आशीर्वाद दें हम मोदी जी को, योगी जी को, कि हमारा इलाज करने के लिए जब बच्चों के पास नहीं होता सहारा, नहीं होते फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग, जब उनको इलाज 5 लाख का इलाज आप सोचिए थोड़ा नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन, बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज आयुष्मान योजना के तहत हमारे बड़े बुजुर्गों को मिल रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं हैं जिनको लेकर के हम जनता में जाएंगे। तो अंजना जी आज जो पीडी का असली काम है ना वो यही सरकार कर रही है, इसलिए जनता के हम सिर्फ डिबेट पे बैठ के या टीवी चैनलों पे या बसों में घूमते हैं, बात नहीं कर रहे हैं।
0: ठीक है अखिलेश जी एक बार बोलिए, फिर प्रेम शुक्ला जी अखिलेश जी को दिखा दीजिएगा। अखिलेश जी वो ये कह रहे हैं कि वो बसों में घूमने की बात नहीं हो रही है, किसी किसी जाति को टारगेट करके इलेक्शन के मद्देनजर नहीं हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि काम हो रहा है और वो काम सबको पहुंच रहा है।
9: देखिए काम क्या हो रहा है,

0: है, मोदी जी ने एक जुमला दिया था जब सत्ता में आए थे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। दोनों जगह मंत्रिमंडल में जितने पद हैं उतने लोग मंत्री हैं। यूपी में 60 मंत्री हैं, पद है 60ों मंत्री हैं। दिल्ली में 71 मंत्री पद है, 71ों मंत्री हैं। इनका हर पद पे, राजनीतिक पद पे बीजेपी के लोग का बैठे हुए हैं, राज्यमंत्री कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेकर के। लेकिन नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है। केंद्र सरकार में 9 लाख से ऊपर पद रिक्त हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कई लाख पद रिक्त हैं। जब से ये बीजेपी की सरकार है सिर्फ आउटसोर्सिंग से भर्तियां कर रही हैं। इनको अपना पद परमानेंट चाहिए, 100% चाहिए। नौजवानों का पद रिक्त रहेंगे। बीजेपी अब बात क्यों नहीं करती है नौकरी की? तीन प्रवक्ता बोले हैं अभी, किसी ने नौकरी की बात नहीं की बीजेपी के, न रोजगार की बात की, न महंगाई की बात की, न अयोध्या की बात की, न शिक्षा परीक्षा की बात की। क्योंकि इन सब में धोखा दिया इस देश की जनता को बीजेपी ने। और यही मुद्दे हैं, यही मुद्दे हैं। आप नौकरी दे नहीं रहे हो। इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं आयोग के कि 9 करोड़ लड़कों के पास, 18 से 28 साल के बच्चों के पास न पढ़ाई है, न लिखाई है, न शिक्षा, न नौकरी है, कोई काम तक नहीं है। महंगाई आसमान पे है। हर परीक्षा और शिक्षा, शिक्षा और परीक्षा हर लीक हो रहे हैं। चाहे केंद्र का हो, प्रदेश का हो, सब मिले बैठे हैं बीजेपी आरएसएस के लोगों के पद पे। महंगाई कहाँ पहुंच गई?
1: प्रेम शुक्ला जी,
0: कितनी जबरदस्त हो रही है।
2: झूठ
0: कहाँ पहुंच गया?
2: झूठ
1: जी कह रहे हैं असल मुद्दे रोजगार के, महंगाई का, ये सब मुद्दा है।
2: झूठ की दुकान को, झूठ की दुकान जो है वो झूठ बोलने के अलावा कुछ। जब 2004 से 2014 तक केंद्र में जब श्रीमान अखिलेश प्रताप सिंह की कांग्रेस की सरकार थी तो मुद्रास्फीति की दर 10% ज्यादा थी। 10% अधिक महंगाई दर, वो महंगाई थोड़ी थी, वो तो सस्ता था भाई। क्योंकि 10% की दर से महंगाई लादे पड़े थे और महंगाई ढाई खाए जाते ये गीत जो है तब इनको पूछ जाते थे, लेकिन महंगाई नहीं थी। और 4% के नीचे कोरोना के भयंकर महामारी के काल के बावजूद महंगाई को नियंत्रित रखने में अगर किसी को सफलता मिली तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मिली। पूरे 91 से लेकर 96 और 2004 से लेकर 2014 ईपीएफओ के आंकड़े बता दीजिए। 1.5 करोड़ के ऊपर ईपीएफओ में जो है, जो संगठित क्षेत्र में रोजगार देने का आंकड़ा है, 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं जाता कांग्रेस के कार्यकाल में। 91 से 96 और 2004 से 2014 के कुल आंकड़े निकालकर जोड़कर भी रख दे तो भी, और 6.5 करोड़ लोगों को सिर्फ ईपीएफओ, ईपीएफओ में अगर कोई किसी का प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट करेगा तो जब तक रोजगार नहीं देगा तब तक ईपीएफओ में नहीं डिपॉजिट करेगा। 2019 से 2025 के बीच के जो आंकड़े हैं वो 6.5 करोड़ का आंकड़ा ईपीएफओ का है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि रोजगार सृजन बहुत जबरदस्त ढंग से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ, क्योंकि विश्व में सबसे तेजी से चलने बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत संस्थापित हुआ। 7.8% की आज की पिछली तिमाही में भी जो जीडीपी की वृद्धि दर है वो 7.8% है। श्रीमान मनमोहन सिंह के कार्यकाल में फ्रेजाइल फाइव की उपमा अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने और पॉलिसी पैरालिसिस की बात अंतरराष्ट्रीय जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी वो पॉलिसी पैरालिसिस की बात करती थी, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सिर पर श्रीमती सोनिया गांधी ने जिस तरह से एक असंवैधानिक सरकार बैठा रखी थी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के नाम पर, उसके कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार थे। तो आपकी पॉलिसी पैरालिसिस, आपका रोजगार सृजन पूरी तरह से शून्य था, आप महंगाई 10% से ज्यादा थी। आप क्या बातें कर रहे हैं भाई, ये तो सामने आंकड़ा भी उत्तर प्रदेश का ही आंकड़ा, 6% से अधिक बेरोजगारी दर थी, आज 3.6% बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 9.3 लाख लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में मिली है, और 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो चुनाव शुरू होने के पहले जिसको 1 लाख नियुक्ति पत्र जारी करने का आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने संकल्प लिया है वो संकल्प भी पूरा होगा। तो 10.3 लाख नौकरियां आदरणीय सिर्फ सरकारी नौकरियां,
1: आशुतोष जी,
2: ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि बेरोजगारी से हमने जो है निर्णायक युद्ध लड़ा है और सफलता पाई है।
1: आ रहे हैं अखिलेश, एक बार आशुतोष जी बोल रहे हैं। आशुतोष जी इसका जवाब दीजिए ना, देखिए बीजेपी इससे इनकार कर रही हो, लेकिन सब जानते हैं कि भाई

0: रोजगार एक मुद्दा है, एक सेकंड सवाल तो सुनिए, रोजगार मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा अखिलेश जी याद दिला रहे हैं, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन बस पर क्या लिखा जाएगा? पीडीए। सवाल है कि आप क्या पूरी यूपी की जनता के लिए मुद्दे उठाने में ये आपको अब लगता है कि अभी भी जनता को वही जाति कार्ड चाहिए तभी आपको वोट मिलेगा?
1: नहीं जनता जी, बात सॉरी अंजना जी, बात ऐसी नहीं है। बात मैं उसको सही कर दूं, क्यों ये लिखा जा रहा है। पहले तो मैं प्रवक्ता जो आरएलडी की बोल रही थी कि वो आयुष्मान योजना की बात कर रही थी, तो इसके क्योंकि मैं चिकित्सक हूं तो मुझे बिल्कुल ये बहुत टच्ची लगती है जो लोग गलत बताते हैं। इस योजना की शुरुआत 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार में हुई थी, उस समय उसका नाम आरएसबीवाई था, राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें जयंत चौधरी भी सरकार के हिस्सा थे। जाइएगा पहले पढ़िएगा। उसका नाम बदल के 2018 में आयुष्मान भारत योजना किया गया था, पीएम जन आरोग्य योजना। तो उसको समझिए कि कहाँ की शुरुआत हुई है। खैर, आपने जो बात की जातियों की, देखिए जब हम बात करते हैं कि सरकारों में क्या हुआ, ये एक दिन की बात नहीं है। योगी सरकार 2017 में आई और 2018 में हमको कासगंज में वो याद आती है कि जब एक दलित युवक था संजय जाटव, वो अपनी शादी में घोड़ी पे जा रहा था तो पूरे के पूरे वहां पे सामंतवादी लोगों ने उसको कहा कि ये दलित जाति का है और ये घोड़े पे नहीं निकल सकता। आप सबको याद है कितनी बड़ी बहस हुई थी, 150 पुलिस वालों के संगीन साये में उसको निकलना पड़ा। दूसरी बात हमको याद आती है उम्भा की यूज, उम्भा सोनभद्र में 2019 में, जहां पे 10 SC ST भाई बहनों की हत्या कर दी गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। NHRC ने इस पे संज्ञान लिया और योगी सरकार को फटकारा। हम याद करते हैं बार बार, अभी कल ही परसों की बात है कि जब निषाद भाई की हत्या कर दी गई और भारतीय जनता पार्टी का क्या, भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के लोग जाके उसके लिए बैठे रहे मॉर्चरी में, उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, FIR नहीं लिखी जा रही थी। क्या किया था उसने, वहां पे जो बहुत दम्भी लोग हैं उनके खिलाफ कुछ लिखा। जब ये सब बातें आती हैं, 69,000 भर्ती के बच्चे 6 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिला मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम से, लेकिन आरक्षण विरोधी वालों को डिप्टी सीएम तुरंत अपने वहां बुला के कहते हैं हम तुम्हारी बात दिल्ली में रखेंगे। 27% आरक्षण को 4% आरक्षण दिया गया और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। तो जब ये आरक्षण का लूट हो रही है, दलितों को आप मार रहे हैं, अल्पसंख्यकों को तो आपने
0: राघवेंद्र
1: पूरे
0: जी,
1: छोड़
0: इसका
1: दिया है,
0: स्पेसिफिक जवाब
1: तब
0: आप
1: हम बात
0: दीजिए,
1: कर
0: फिर
1: रहे
0: मैं
1: हैं।
0: जाऊंगी
1: और
0: अखिलेश जी के पास।
1: इसी
0: ठीक
1: सरकार
0: है
1: में
0: राघवेंद्र
1: हाथरस
0: जी,
1: हुआ है,
0: इसका एक डायरेक्ट जवाब
1: अंजना
0: दीजिए।
1: जी। में ललिता गौतम की
0: अंजना जी,
1: हत्याकांड हुआ
0: समाजवादी
1: है।
0: पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि इनके सरकार में क्या होता था या एनडीए सरकार में क्या होता था। मैं बहुत छोटी सी बात एक बता रहा हूँ। बहन मायावती जी की सरकार थी 2007 से 2012 तक, और उस समय अमेठी का जो पूर्व नाम था छत्रपति साहू जी महाराज का नाम किसने चेंज किया? देखिए, दलितों के
1: अरे
0: नाम पर, दलितों
1: अरे
0: के पुरुषों के नाम पर, जो उनके पहले के जो योग्य पुरुष रहे हैं उनके नाम पर राजनीति करके आप एक बार वोट ले सकते हैं। जनता जानती है आशुतोष जी कि बार बार आप ले सकते हैं। आपके ही पार्टी के पूर्व मंत्री हैं आजम खान जी, उनका कहिए बयान में दिखा दूं, उन्होंने कहा है मंच से कि ये जो मूर्ति उंगली दिखा रही है ये तो जमीन कब्जा कर ली है, लेकिन सामने वाले जमीन भी बता रही है कि हमारी जमीन है, ये कब्जाधारी। ऐसे लोगों को आपके शिवपाल जी कह रहे हैं कि हम गृह मंत्री बनाएंगे, वैसे
1: मैं
0: शिवपाल जी
1: इसका
0: जिनका
1: जवाब दे
0: ट्रस्ट
1: देता
0: में
1: हूं।
0: खुदे अध्यक्ष कुर्सी छीन गया, अब ट्रस्ट में पीडीए की बात नहीं कर रहे। देखिए अंजना जी, जब भी चुनाव होता है, चुनाव किस पे होता है? जनता के मुद्दों पर सरकार के जो विशेष योजनाएं होती है उसको घेरने के लिए होता है। आप बस पे लिखवाते हैं कि महंगाई की मार, या सड़क, या रोजगार, या आप केवल टीवी डिबेट पे कर रहे हैं, आपके बस पे क्या दिख रहा है? केवल पीडीए। यानी कि ये आप मान लिए हैं कि पीडीए ही एकमात्र आपके पास शस्त्र बचा है जिसके वजह से हम सरकार में वापस आ जाएंगे। जनता से मुद्दा, जनता से संबंधित कोई मुद्दा समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी वो
1: पास
0: क्या
1: या
0: गलत
1: अखिलेश
0: कह
1: जी
0: रहे
1: के
0: हैं?
1: पास,
0: ठीक है
1: कांग्रेस के पास कोई
0: अखिलेश जी,
1: कुछ
0: वो
1: नहीं
0: क्या
1: बचा।
0: गलत कह रहे हैं?
2: अंजना जी,
0: ठीक है
2: अभी
0: अखिलेश जी, वो
2: आपने
0: क्या गलत कह
2: जो
0: रहे हैं? आप लोग
2: बीजेपी
0: बीजेपी पर
2: के
0: आरोप लगाते हैं और ये
2: बता रहा
0: सवाल
2: हूं,
0: उठता है कि भाई ये बार बार,
2: बता
0: सवाल
2: रहा
0: सुनिए सर, सवाल सुनिए, हिंदू हिंदू धर्म को लेकर वो उठाते रहते हैं और हिंदुत्व के इर्द गिर्द अपना पूरा चुनाव जो है सांप्रदायिक मुद्दे पर गढ़ते हैं, लेकिन क्या ये सीधा सीधा जातिवाद नहीं है? जो आप मुद्दे आप भी गिना रहे थे, महंगाई से लेकर बेरोजगारी, स्कूल शिक्षा, ये सब बस पर लिखवाते हैं।
2: ये उसमें सब शामिल है। आज
0: हाँ
2: देखिए, अभी मैंने बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के अलायंस पार्टी के प्रवक्ता को सुना, जिन्होंने व्हाट्सएप का ज्ञान बताया। मैं सरकारी ज्ञान बताता हूँ। सरकारी ज्ञान ये है कि उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जी के राज में 28,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए हैं और लाखों मदिरालय और खुल गए हैं। कंपोजिट विद्यालय बंद हो गए हैं और कंपोजिट मदिरालय खुल गए हैं, खूब ठीक से खुल गए हैं। 9.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर ज्यादा यूपी में कर्जा हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में 9 लाख करोड़ का बजट ही बजट है। आपके कई 100 इंजीनियरिंग कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेज यूपी में बंद हुए हैं, आईआईटी आईएम में प्लेसमेंट नहीं हो रहा। हम कुछ भी गलत बोल रहे हो तो आप अंजना बीच में टोक दीजिएगा, आपको भी सारी जानकारियां रहती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए, आईएम आईआईटी तक में प्लेसमेंट 100% नहीं हो पा रहा है।
3: विद्यालय बंद नहीं हुए, मर्जर
2: जो जो जो प्राथमिक विद्यालय है अभी भी
3: विद्यालय बंद होने में अंतर होता है। आप एक झूठ तो यही बोल रहे हैं,
2: बता दिए भाई मर्जर और
3: एक झूठ तो आप यही
2: विद्यालय तो बंद हुआ ना,
3: मर्जर होना
2: देखे देखे
3: और विद्यालय बंद होना दोनों बहुत अंतर होता है। एक झूठ आप यही सरासर झूठ बोले जा रहे हैं। और कौन से आईआईटी में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, नहीं मुझे बताइए ना किस आईआईटी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है।
2: अंजना जी ये गलत बात है, मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ।
3: अब आप ही बोल रहे थे ना,
2: किसी के बीच में मैं बोलता नहीं हूँ,
3: टोकने के लिए कह रहे थे।
2: अंजना जी से मैंने कहा, आपको नहीं बोला था, मैंने अंजना जी को बोला था, मैंने अंजना जी को बोला था, मैंने अंजना जी को बोला था।
4: आज तीसरी जगह पर हूँ,
2: सुनिए सुनिए,
4: आज मैं भी तीसरी, एक सेकंड एक सेकंड, आवाज सबका ऑडियो नीचे कीजिए। आज मैं भी तीसरी जगह पर हूँ, पटना में हूँ, तो मुझे मुझे नहीं, वो कह रहे हैं कि और ये सरकार का भी पक्ष है, योगी जी हम लोगों के भी कॉन्क्लेव में आए थे, उनका ये कहना है कि मर्जर्स हो रहे हैं, जो स्कूल आप लोग बंद कह रहे हैं वो कह रहे हैं हम 12 तक उसको कर रहे हैं।
2: आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, मैं बता दे रहा हूं, अगर बीजेपी कल शिवसेना में मर्ज हो जाए तो क्या कहेंगे, बीजेपी है कि खत्म हो गई। अगर आज तक आज तक चैनल दूसरे कई चैनल, अरे सुनिए भाई, नीचे मत बोलिए, ये कोई बात, ये कोई बात नहीं है।
4: आप
2: वो विद्यालय की बिल्डिंग खाली हो गई,
4: से मैं जवाब ले लूंगा। शुक्ला जी आपको वादा कर रही
2: हूं,
4: पहले जवाब पूरा करना
2: जी। जो विद्यालय बंद हुए हैं, वो विद्यालय की बिल्डिंग खाली हो गई, वहां बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वहां के टीचर दूसरे विद्यालय में मर्ज हुए हैं। ये जो गुमराह करने का तरीका है, पूरे देश में 1 लाख इस तरह से हुए हैं, छात्रों की संख्या घट गई, जो चल रहे हैं उसमें 1 से 5 तक के छात्रों में किसी में भी 100 से ज्यादा बच्चे नहीं है, पांचों क्लास मिलाकर के, वो भी पेपर पे। आप जाइए वेबसाइट पे, भारत सरकार की आंकड़े में बता रहा हूं, किसी और के आंकड़े नहीं बता रहा हूं। योगी जी के 13 वीडियो हो गए निकाल के, जो जो कहा था कि मैं 1 ट्रिलियन, देखिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को कई बार इन्होंने कहा था,
3: भारत सरकार की किस संस्था का, भारत सरकार कोट कीजिए, कोट कीजिए।
2: अरे आपका जब बारी आएगी तो बात में करिएगा,
3: चले जाइए, झूठ बोल रहे हैं, जो
2: टेक्निकल डिपार्टमेंट में चले जाइए, उस पे है, अरे उसकी वेबसाइट पे, टेक्निकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, अरे झूठ
3: चिड़ रहे हैं,
2: झूठ बोलना बीजेपी के नाम है, बड़ी झूठी पार्टी, बड़ी झूठी
3: पार्टी, झूठे कांग्रेस,
2: राम को लूट
3: लिए
2: ये लोग, भगवान को लूट लिए। मैं इस तरह बात नहीं करता भाई, मैं इस तरह बात नहीं करता।
4: ओहो हो हो,
2: मैं इस तरह बात नहीं करता।
4: अरे बाप रे, पूरा करने दीजिए ना शुक्ला जी, हम आ रहे हैं ना, क्या ये सब अच्छा बात
2: करा दिए तो मैं बोलूं।
4: अरे शुक्ला जी लेट हिम कंप्लीट, दो लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए फिर उनसे जवाब लेंगे। हाँ,
2: योगी जी मोदी जी बोले थे गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, काशी को क्योटो बनाना है, बन गया क्योटो, गोरखपुर को स्पेन बता रहे हैं, गंगा मैया साफ हो ही गई, डीजल पेट्रोल जमीन पे आ ही गया,
4: स्कूल पर, कॉलेज पर, क्योटो पर, सब पर जवाब दीजिए।
2: एक सेकंड, सबको 15-15 लाख खाते में मिली गए, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली गई। अरे जोगी जी या बीजेपी का कोई नेता बता दे कि इस डिपार्टमेंट में इतने परमानेंट पद पे नियुक्ति हुई है, आउटसोर्सिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जो 10 महीने 11 महीने
4: का जवाब दीजिए शुक्ला जी,
2: 12,000 नौकरी बता दो, किस विभाग में चुनौती के साथ बता दें कि किस विभाग में कितनी परमानेंट नौकरियां दी हैं, सूची जारी कर दें, सूची जारी कर दें,
3: चिल्लाइएगा मत, सुनिए,
2: सूची कहिए जारी कर दें,
3: धैर्य से सुनिएगा।
2: एयरपोर्ट में 6 एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं,
3: जवाहरलाल नेहरू गरीबी हटा रहे थे,
2: 6 एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं,
3: गरीबी हटा रही थी इंदिरा गांधी, गरीबी नहीं हटी, गरीबी हटा रहे थे राजीव गांधी, गरीबी नहीं हटी, गरीबी हटा रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, गरीबी नहीं हटी, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में
2: बीजेपी
3: 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से
2: देखिए करोड़ रुपया
3: अभी तो बहुत चिढ़ रहे थे, अंजना जी अभी तो बहुत चिढ़ रहे थे, गरीबी हटाई ना हमने, हमने गरीबी हटाई, वर्ल्ड बैंक ने कहा 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले,
2: बीजेपी का 7
3: 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले।

0: लीजिए अब आप भी, मैंने उनको चुप किया, आप भी चुप हो जाइए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे
1: हैं। में बीजेपी का 7 स्टार कार्यालय ये गरीबी
2: बीजेपी है, अभी तो मुझे भाषण देना चाहिए, अब इनको क्या हो गया अखिलेश जी क्या हो गया, मैं तो मुझे बुरा नहीं लगा, सिर्फ आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ है, कहीं आप बीमार न पड़ जाए।
0: कह रहे हैं कि आपका आवाज नीचे कीजिए,
2: मुझे चिंता है।

0: अरे शुक्ला जी कह रहे हैं आपका खीर आप ही को खिला रहे हैं वापस। शुक्ला जी कह रहे हैं आपका खीर आपको वापस खिला रहे हैं, अभी आपने उनको खिलाया था ना बीच में। चलिए अब बोलने दीजिए हमारी बारी से। हाँ बोलिए शुक्ला जी।
1: हाँ नहीं, गरीबी गरीबी कब खत्म हो रही थी? नेहरू जी खत्म कर रहे थे,
0: बोले
1: इंदिरा जी खत्म कर रही थी, गरीबी खत्म नहीं कर पाए। गरीब गरीबी के नाम पे जो है दुनिया भर का धन लूटकर स्विस बैंक के खातों में भर दिया, लेकिन गरीबों को गरीबी दूर करने का काम नहीं कर पाए। 25 करोड़ को गरीबी से निकालने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। ये मेरा दावा नहीं है, ये विश्व बैंक का दावा है। तो गरीबों गरीबों को शौचालय दिया नरेंद्र मोदी ने, गरीबों को आयुष्मान भारत दिया नरेंद्र मोदी ने, गरीबों को बिजली दिया नरेंद्र मोदी ने, गरीबों को मकान दिया नरेंद्र मोदी ने। आपने क्या दिया था?
0: ठीक है, गरीबों को क्या दिया था? वेट कीजिए, पूरा कीजिए।
1: गरीबों को झुंझुना देने के अलावा कुछ नहीं कर पाए।
0: सवाल यह ना कि शुक्ला जी,
1: जी
0: अगर अगर अगर ये आरोप लगेगा कि पीडीए, सुनिए सवाल सुनिए, कि पीडीए के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं भाई, जाति का कार्ड खेल रहे हैं, तो आपकी पार्टी तो धर्म का कार्ड खुलकर खेलती है।
1: नहीं, हम तो सब
0: क्या दिक्कत है, मतलब आपको तो इस पर नाराजगी नहीं होनी चाहिए भाई। आप धर्म खेले तो ठीक है, वो खेले तो दिक्कत है।
1: नहीं, वो तो माई के बाहर नहीं निकलते थे, माई से बाहर निकलने लगे। और आज भी जो कह रहे हैं, सबसे अधिक दलितों का उत्पीड़न करने का काम समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने किया। आज भी आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए उत्तर प्रदेश का, तो सबसे अधिक दलितों को उत्पीड़ित करने का काम माई फैक्ट्री कर रहा है, सबसे अधिक। और ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, श्रीमान मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में प्रमोशन से आरक्षण छीन लिया गया था, और जो लोग प्रमोट हुए थे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, जो प्रमोट हुए थे उनको डिमोट करने का काम, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग प्रमोट हुए थे उनको डिमोट करने का काम श्रीमान मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया था। और जो मायावती के साथ किया वो तो कोई बता ही नहीं सकता, भूल ही नहीं सकता कि सुश्री मायावती का किस तरह से चीरहरण श्रीमान मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर हुआ था, ये तो पूरे देश ने देखा था और कोई भूल नहीं सकता है। तो आपने किस तरह से दलित उत्पीड़न का काम आज भी आप देख लीजिए। और जब जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हर थाने में यादव बैठ गया था, हर थाने में एक जाति विशेष का, उसके अलावा कोई दूसरी जाति का बैठ नहीं सकता था। पीसीएस परीक्षाओं में एक ही जाति के लोग मेधावी हो गए थे,
0: आशुतोष जी को
1: दूसरी जाति के लोग नहीं आते थे। और अनिल यादव के खिलाफ किस तरह से हाईकोर्ट की टिप्पणी आई थी कौन भूल सकता है। और उनकी नियुक्ति के लिए जो है उनका एप्लीकेशन समाजवादी पार्टी के दफ्तर से गया था कौन भूल सकता है इसको। तो हाईकोर्ट तक ने अनिल यादव की नियुक्ति पर जिस तरह से विपरीत टिप्पणी की थी वो पूरा देश भलीभांत जानता है, इनके कार्यकाल को कौन भूल सकता है।
0: ठीक है वर्मा जी, इसका जवाब दीजिए वर्मा जी। और देखिए ये बीजेपी का हमेशा से इलेक्शन प्लैंक भी रहा है, वो कहते हैं कि यादव समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का वर्चस्व हो जाता है अपराध, जैसा वो कह रहे हैं कि भाई डंडा मारेंगे अपराधी, ये है।
2: नहीं देखिए अंजना जी, हम तो इनसे बार बार बोलते हैं कि जो फॉल्स नैरेटिव आपने 2017 में बनाया कि 86 में 56 यादव डीएम हो गए, हमको बताओ तो, हमको बता दो कौन से था जबरदस्ती का उसको। देखिए मैंने सवाल जो पूछा था वो बहुत साफ साफ था कि जब लड़के को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया क्या आपकी सरकार ने संज्ञान लिया था? अभी 2025 में रामपाल लखनऊ में, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, उसको दलित को पेशाब पिले हुए चटाई इन्होंने और सरकार की तरफ से कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक दलित था।
1: मैं बात करना चाहता हूँ
2: एक बीच में, शुक्ला जी मैं आपकी तरह नहीं, बीच मत बोलिए, सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों पे कुछ होता है तो आपकी सरकार को एकदम से दही क्यों चाट लेते हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि अपने लोगों को बचाना होता है। और जहां तक अखिलेश यादव की बात, अंजना जी आपने बोली कि पीडीए क्यों लिखा, ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने 18 लाख लैपटॉप 2012 में बांटे थे, जिन्होंने सैमसंग एचसीएल का इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया है, जिन्होंने लखनऊ मेट्रो दी है, जिन्होंने वुमेन पावर लाइन दी है, जिन्होंने 1008 एम्बुलेंस दी है, जिन्होंने डायल 100 दिया है, पुलिस हेडक्वार्टर दिया है, कैंसर हॉस्पिटल दिया है।
0: तो वर्मा जी हम पूछ रहे थे, वर्मा जी इसीलिए हम पूछ रहे थे, इसीलिए हम पूछ रहे थे कि क्या अब आप लोगों को भी ये बात समझ में आ गई है कि काम काज और ऐसे जो मुद्दे होते हैं उसको कई बार वो ड्राई बन जाते हैं भाई। अल्टीमेटली हमको कास्ट कार्ड खेलना है, हमको रिलीजन कार्ड खेलना है, तभी हमको वोट मिलेगा, नहीं तो फिर इन ये लिखते ना बस पर रोजगार,
2: ऐसा नहीं है,
0: महंगाई
2: ऐसा नहीं है,
0: ये लिखते ना।
2: मैं बता रहा हूं जना जी, जब आपके सामने जिससे आपकी लड़ाई हो रहा है,
0: वक्त इतने की इजाजत देता है, वरना ये

बहस तो अभी अनंत चलती रहेगी। अभी तो तमाम पार्टियां इस चर्चा में शामिल हो ही रही हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव आते आते तक देखिए अभी मामला कैसे और सियासी गर्म होता चला जाता है। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
12: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
13: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
14: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
15: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRF।
16: अब मैं क्या ही बोलूं?
17: परिवार, अटूट भरोसा।
18: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
19: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
13: लायन डेट नट बाइट्स।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
12: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
10: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
12: स्मॉल बैंक,
10: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business edge current account, business maxima business privilege RDF, there's nothing small about them.
12: Okay.
10: Ujjivan, nothing small about us.
6: In association with
15: Anmol biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: There is a very famous quote ki history repeat itself.
19: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
20: कुछ left और right wing के लोग history को अलग अलग interpret करते हैं सर, उससे सर social harmony और peace में कुछ दिक्कतें आती हैं देश में।
19: देखो, दुनिया में एक subject है इतिहास, जिसको किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है। जैसे औरंगजेब, वो बेचारा कबर में कितना करवट बदलता होगा इधर उधर, सुबह से शाम तक इस देश में लोग उसको याद करते हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
7: चौल में घर छोटे होते थे बट लोगों के दिल बहुत बड़े होते थे। जिस बच्चे की माँ दूसरों के घर पे काम करके जीवन निर्वाह कर रही थी, उस बच्चे को पैसों के बारे में समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
8: शॉर्टकट्स होते हैं क्या पैसा कमाने?
7: वॉरेन बफेट का एक रूल याद कर लिया। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। हमने जो अनुभव किया है ट्रेडिंग करके लोगों के घर टूटते हुए देखे हैं, ट्रेडिंग करके घर बनता हुआ बहुत कम देखा है। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है।

0: उत्तर प्रदेश के मिजाज को नापना हो तो बस जैसी सवारी भी चाहिए और धारदार स्लोगन भी। ये अखिलेश यादव की पीडीए बस है, जो बस अभी हवा पानी सब दुरुस्त कर तैयार कर ली गई है। अक्टूबर से इस पर सवार होकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलने वाले हैं। बस पर लिखे नारों से सामाजिक न्याय का संदेश दिया गया है, यानी 2027 को लेकर पीडीए का बड़ा एजेंडा तैयार है। लेकिन अखिलेश बस यात्रा पर निकले उससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2027 ही नहीं 2047 तक अखिलेश के सत्ता में नहीं आने की गारंटी जारी कर रहे हैं।
1: पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
2: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
1: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है। सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
2: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
1: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
0: अखिलेश यादव 2024 के चुनाव के समय से ही पीडीए का दांव चल रहे हैं। पहले पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया गया था। बाद में पीडीए में पंडित, अगड़ा, आधी आबादी, आदिवासी सभी के शामिल होने की बात की गई। 2024 में यूपी में बीजेपी से ज्यादा लोकसभा सीटें पाने के बाद अखिलेश इसे जीत का महामंत्र मानकर चल रहे हैं।
3: जाति गणना के साथ साथ पीडीए का साथ लेकर के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम हम सब मिलकर के करेंगे।
0: अखिलेश के इस पीडीए रथ में सोफा लगा है, 6 लोग एक साथ बैठक कर सकते हैं। बस में वॉशरूम, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं। अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक यात्राओं के लिए 2016-17 और 2021 में इसी बस का इस्तेमाल किया था। बस अब नए डिजाइन और पीडीए के संदेशों के साथ समाजवादी पार्टी मुख्यालय पहुंच चुकी है। पीडीए पर राजनीतिक वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन असल सवाल है राजनीतिक संदेशों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने आशीर्वाद का दिया जलाया है। उधर योगी आदित्यनाथ विकास के साथ साथ हिंदुत्व के अपने एजेंडे पर कायम है, साथ ही यूपी में कानून का राज होने का दावा कर रहे हैं।
4: आज यूपी कर्फ्यू मुक्त है, दंगा मुक्त है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अपराधी या तो जेल में है या दूसरे लोक की यात्रा में जा चुका है।
0: विकास और कानून व्यवस्था पर पक्ष विपक्ष के दावों के बीच सच्चाई ये भी है कि चुनावी समीकरण आखिर में जातियों पर आने की ही संभावना है। अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा से इसकी राजनीति और आगे बढ़ सकती है। आज तक ब्यूरो।
4: विधानसभा का चुनाव घोषणा होने के पहले हमने कह रखा है कि 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी के अंदर उपलब्ध करवाएंगे।
5: जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वादों और घोषणाओं की रफ्तार भी जोर पकड़ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए दिन बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, कभी कैबिनेट में लिए गए फैसलों के जरिए तो कभी सार्वजनिक मंच से। यानी कि यूपी में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ सरकार की ओर से ऐलान पर ऐलान हो रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी भी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। संगठन स्तर पर रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और इस हफ्ते उनकी कई मंथन बैठक है। 17 और 18 सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में तावड़े सीधे जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने वाले हैं। चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर होगी। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ आरएसएस भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। यूपी चुनाव में भी संघ एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रहा है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सह सरकारीवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। बीजेपी की चुनावी कामयाबी में उसकी तैयारियों का बड़ा रोल रहा है और इस बार भी यूपी में वो तैयारियों को अभी से देख रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक में। हम अगले आधे घंटे में इस शो में दिन भर की सभी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस समय की हेडलाइंस पर। बंगाल उपचुनाव में ट्विस्ट, पहले नंदीग्राम से ममता के उम्मीदवार ने नाम वापस लिया तो एक पुराने मामले में कांग्रेस प्रत्याशी मिनल प्रधान गिरफ्तार, बीजेपी पर भड़की ममता। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोप पर मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस एक भस्मासुर, साथ आने वाले दलों को जलाने का करती है काम। उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख भागवत का जेनजी को संदेश, कहा भारत के युवा पूरी दुनिया में न सिर्फ यशस्वी बल्कि सार्थक भी बने। पठानकोट में बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा के दौरान आप कार्यकर्ताओं से झड़प, नशे के पीड़ित परिवारों से मिले नितिन नवीन, कहा उनके आंसुओं ने झकझोर दिया। ऑस्कर के लिए जाएगी मराठी थ्रिलर फिल्म गोंधल, भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री, रेस में 30 से अधिक फिल्मों को पछाड़ा। और अब खबरें विस्तार से, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है नंदीग्राम से, जहां बंगाल पुलिस ने नंदीग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार मिनल प्रधान को एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया। प्रधान को नंदीग्राम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इससे पहले आज ही नंदीग्राम में ममता की प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया था, जिसके बाद ममता बैनर्जी ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था और मिनल प्रधान को ही उन्होंने समर्थन दिया था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। नंदीग्राम में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। यह सीट मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी के हटने के बाद खाली हुई, जिन्होंने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव जीता था, जिसके बाद नंदीग्राम वाली सीट शिवेंदु अधिकारी ने छोड़ दी, जिस पर उपचुनाव होना है। नंदीग्राम में जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा इस समय देखने को मिल रहा है, जहां आज ममता बैनर्जी से पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छीन लिया गया, जिसके बाद ममता बैनर्जी जबरदस्त गुस्से में नजर आईं।
1: 2026 के बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी पर बगावत का ऐसा हथौड़ा पड़ा कि 18 साल की बुनियाद और 15 साल की हुकूमत की निशानी जोड़ा पूल फ्रीज हो गया।
2: But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic and totally political bias vendetta.
3: Hindu dharma ke ganda dharma bola, Mahakumbh ke mithu kumbh bola. আর রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম মন্দির মানি না বলে মিছিল করা, আছেন তো ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপেই সব ধ্বংস হয়ে গেছে।
1: সুবেদু অধিকারী কি খালি সিট নন্দীগ্রাম ও হুমায়ুন কবীর কি খালি সিট রেজিনগর পর 6 অক্টোবর কো উপচুনাব হ্যায়। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह में खींचतान को देखते हुए आयोग ने दोनों दलों से 3-3 पसंदीदा विकल्प पूछे थे। उसी के आधार पर ममता बनर्जी के गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम और फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी निशान मिला, जबकि बागी धड़े को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम और लिफाफे का निशान दिया गया। ये नाम और निशान 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए लागू रहेंगे।
4: इंटरिम ऑर्डर इससे साबित है, जाहिर है कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
1: इस बीच नंदीग्राम उपचुनाव में नया ट्विस्ट आ गया, जहां ममता बनर्जी की उम्मीदवार संचिता प्रधान सुबेंदु अधिकारी से मिलने पहुंची और फिर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब नंदीग्राम में नामांकन की तारीख निकल गई है। ऐसे में अब ममता ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है।
2: इन्होंने क्या किया, हाईजैक किया है टोटल, इट वॉज कंट्रोल फ्रॉम सम ऑफिस टू हाईजैक द ईवीएम मशीन। इवन
1: पश्चिम बंगाल में भले ही लड़ाई उपचुनाव की हो, लेकिन घमासान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल से रुख पंजाब का। पंजाब में भी चुनाव से पहले जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। आज बीजेपी ने पंजाब में नशे के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत की, तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री मान और उनकी सरकार को घेर रहा है।
5: पंजाब की इन तीन तस्वीरों ने सियासत की नई स्क्रिप्ट शुरू कर दी है। एक ओर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नशा मुक्त यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं पूर्व मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमले की तस्वीर सामने आई। इस बीच एएसआई के मर्डर ने एक बार फिर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में नशा मुक्त यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो नशे को लेकर मान सरकार पर जोरदार हमला किया।
6: मैं आज यहां के सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने केवल नारा गिरा था, आप लोगों ने केवल सत्ता की चाबी समझी थी, आपने कभी नशा का दर्द नहीं समझा। और जिस परिवारों ने अपने को खोया उनसे मिलने के बजाय, उनके पीड़ा को समझने के बजाय उनको सुसाइड करने के लिए, उनको आत्महत्या करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं।
7: वो किस मुंह से बात कर रहे हैं नशे के खिलाफ? 2007 से लेकर 2017 के बीच जिस पार्टी ने पंजाब में नशे का कारोबार किया, जिसके मंत्री जिसके नेता नशे की तस्करी करवाते थे अपनी अपनी गाड़ियों में रखे, वो पार्टी आज कह रही है कि पंजाब को नशे से मुक्त कराना है, किस मुंह से कह रही है?
5: पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला हो गया। बिट्टू अमृतसर से पठानकोट यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जा रास्ते में हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उन पर टमाटर और अंडे फेंके गए।
8: कई चीजें केजरीवाल जैसे, आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। मैं पंजाब पुलिस को भी हमेशा बहुत अच्छी पुलिस समझता था।
5: वहीं मान सरकार के मंत्री पर हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। अमृतसर में हमलावरों ने एक एएसआई को निशाना बनाया, जिसे बेहद करीब से गोली मारी गई और हमलावर वहां से फरार हो गए।
9: 12:30 बजे का इंसिडेंट, 9:30 बजे रात और ड्यूटी ली ये ठकीबा थाने तो इतने दाना मंडी से शूट की गई थी, मेरा पिस्टल हैगा वो यूज करके क्लोज रेंज से शूटिंग हुई है।
5: पंजाब में चुनाव से पहले नशा और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर विपक्ष मान सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। असीम बस्सी के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।
0: इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। पठानकोट में बीजेपी की नशा मुक्त यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा था और दोनों कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यात्रा के दौरान काले झंडे लेकर खड़े थे, जिसके बाद तनाव बढ़ गया, सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे काले झंडे दिखाकर, जिसके बाद बीजेपी और आपके कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, आमने सामने आ गए और दोनों के बीच झड़प हुई। हालांकि दोनों को शांत करवा दिया गया। एक चौंकाने वाली खबर, नोएडा के निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली की आत्महत्या की खबर आई, जिस कोहली को कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी उसने नहीं दे पाई, वही कोहली ने खुद को फांसी के फंदे से लटका लिया।
5: नोएडा के जिस निठारी कांड ने पूरे देश को चौंका दिया था, आज उसी निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। हरिद्वार में इस चाय की दुकान के अंदर सुरेंद्र कोहली का शव फंदे से लटका मिला। 3 दिन पहले ही सुरेंद्र कोहली ने यह दुकान ली थी। जब पुलिस ने शव की तलाशी दी तो आधार कार्ड से पता चला कि ये शव सुरेंद्र कोहली का है।
10: पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाएगा, यह सब होगा और जानकारी की
5: जाएगी। सुरेंद्र कोहली इससे पहले हरिद्वार में ही एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था, जिसके बाद उसने ये चाय की दुकान ली। सबसे बड़ी बात ये कि सुरेंद्र ने अपना नाम सदाराम बताया था। ऐसे में किसी को शक ही नहीं था कि ये नोएडा निठारी कांड वाला सुरेंद्र है।
11: सुबह आए यहाँ पे तो कहने लगे यहाँ पे तो दीवान जी बैठ रहे यहाँ पे, मैं नहीं जानता हूँ, चाय के लिए कहने लगे कि चाचा ने आज दुकान नहीं खोली चाय, तो मैंने आवाज मारी दूसरी बार शटर में तो कुछ

0: शटर का थोड़ा लोग ढीला था तो शटर अपना उठ गया, तो देखा तो 5 लाख पड़े थे।
1: सबसे पहले आप ही ने देखा उनको?
0: हाँ वहां पे उन्होंने देखा, सबने देखा, 2-3 बंदे थे यहाँ पे।
2: अब सवाल यह है कि अगर ये सुसाइड है तो आखिर सुरेंद्र ने सुसाइड क्यों किया? दुकान मालिक का कहना है कि वो बड़ी परेशानी की हालत में उसके पास आया था, जहाँ उसने बच्चे के जन्मदिन की बात कहकर 2,000 रुपए भी लिए थे।
0: डिप्रेशन में थे, किसका बर्थडे था कल इनके किसी बच्चे बच्चे का, तो उसमें कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है तो फोन पे बात करते, उनसे चिल्ला चप्पी उड़ गई।
2: 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी इलाके में मनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से 8 बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इसके बाद घर के आसपास के नालों की तलाशी और खुदाई की गई, जिसमें कई और कंकाल मिले। इस मामले में मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। पंडेर को इनमें से 2 मामलों में सजा हुई, जबकि सुरेंद्र कोहली को निचली अदालत ने कुल 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन 2025 में कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। ये नोएडा के निठारी की वही D5 कोठी है जो अब सुनसान पड़ी हुई है। निठारी कांड की पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार सुरेंद्र की मौत के पीछे साजिश का शक जता रहे हैं।
3: कोहली ने सुसाइड नहीं किया, करना होता ना तो जेल में कर लेता, वो जेल में क्यों नहीं किया? अब छूट के आ गया था, तो बता रहे तुम्हें लोग बता रहे हो कि चाय की दुकान चलाता था। अब चाय की दुकान चलाता था तो खुद तो कमाता होगा, अभी भी बच्चों के साथ रहता था। यही मैं मारा होगा, पंडेर के अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता इसमें।
4: इसने मतलब जो है लोगों ने कुछ कहा होगा, कोई खुलासा वो करने वाला होगा, कोई खुलासा करने वाला होगा, या इसको कहा होगा इतना नहीं इतना देंगे तुम्हें, और वो नहीं तो वो कहा होगा हम बता देंगे।
2: बहरहाल सुरेंद्र कोहली की मौत से हर कोई हैरान है, और सवाल ये कि 19 साल जेल में रहने के दौरान जिस शख्स ने सुसाइड नहीं किया उसने जेल से बाहर आने के बाद अपनी जान क्यों ली? आज तक ब्यूरो।
5: और अब एक हैरान और विचलित कर देने वाली खबर। हमारे देश के कई शहरों में आतंक का नाम बन चुका पिटबुल एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली के करीब सोनीपत में पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। लोग पिटबुल के चंगुल से मासूम बच्चे को छुड़ाने का प्रयास करते रहे, लेकिन पिटबुल बार बार मासूम बच्चे पर हमला करता रहा। इस हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।
2: तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपको हूबहू नहीं दिखा रहे। तस्वीरें देखिए, चीख पुकार मची है, लोग एक काले पिटबुल कुत्ते को डंडे से मार रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन पिटबुल बेकाबू है। स्क्रीन पर जो हिस्सा आपको ब्लर नजर आ रहा है, दरअसल उस हिस्से में 6 महीने का एक मासूम बच्चा है जिस पर पिटबुल लगातार झपट्टा मार रहा है। यह तस्वीर दिल्ली से सटे सोनीपत के सिक्का कॉलोनी की है। यहाँ 6 महीने के एक मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल का यह हमला तब हुआ जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी। तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। हमले में मासूम और उसकी बुआ घायल हुए हैं। गंभीर हालत में बच्चे का रोहतक PGI में इलाज चल रहा है।
6: पिटबुल ने उसको कितनी जगह से काटा?
7: उसका मुंह छील रखा है पूरा, जैसे उसने गली में उसको छिजोड़ा था ना, तो उसको काफी सारी चोट आई हुई है, पेट वगैरह पे, हाथ वगैरह पे, बहुत सारी जगह चोट आई है।
6: कभी पहले भी देखा गली में घूमता?
7: एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन बच्चा बच गया था, उनके बच्चे को काट रही थी वो उस दिन में, लेकिन उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं था।
2: सोनीपत में पिटबुल हमले के बाद प्रशासन जागा, मेयर और पुलिस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एक्शन का भरोसा दिया।
8: इस तरह के जो कुत्ते पालने वाले हैं लोग, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जो है सरकार की तरफ से किया गया, उसका भी अभियान चलाया जाएगा। और अगर जो है कोई व्यक्ति प्रतिबंधित जो है डॉग पालने का काम करता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
2: आए दिन पिटबुल के हमले की खबरें आती रहती हैं। सवाल कुत्ते के मालिक की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। प्रशासन का कहना है कि शिकायत के बाद एक्शन लिया जाएगा। पवन राठी, सोनीपत, आज तक।
5: आईफोन ने भले ही अपने दाम बढ़ा दिए हों, लेकिन आईफोन का क्रेज कम होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। हमारे देश भारत में आज से नया आईफोन लॉन्च कर दिया गया, जहां कल देर रात से स्टोर के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी रही।
9: दुर्गा पूजा गिफ्ट फ्रॉम मी टू मी।

0: ये आईफोन की दीवानगी है। एप्पल का आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स भारतीय बाजार में जैसे ही आया, आईफोन के दीवाने दौड़ पड़े इसे अपना बनाने।
1: और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर। That's it.
2: मैं देख रहा हूँ दो फोन आप लेके आए हैं।
1: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊँ।
0: 18 सितंबर से आधिकारिक तौर पर आईफोन 18 सीरीज के फोन भारत के बाजार में बिकने लगे। देश के चुनिंदा शहरों में ही अभी एप्पल के स्टोर हैं और ये फोन अभी सिर्फ एप्पल के आधिकारिक स्टोर पर ही उपलब्ध हैं। इसलिए आईफोन प्रेमियों ने पहले से ही अपनी बुकिंग कर रखी थी ताकि स्टोर पहुंचने पर आसानी से खरीदारी हो सके, लेकिन स्टोर के बाहर तो लंबी लाइनें लगी थी। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां साकेत में एप्पल का स्टोर है। देर रात से ही लोग स्टोर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे, इंतजार करने लगे सुबह के 8 बजने का, क्योंकि स्टोर में एंट्री सुबह 8 बजे ही शुरू होती है। जैसे ही लोगों ने स्टोर में प्रवेश किया तो तुरंत प्री बुकिंग के हिसाब से फोन को अपना बना लिया।
3: मैं दिल्ली रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। आईफोन 18 प्रो बरगंडी कलर, बढ़िया लग रहा है। अच्छा फील हो रहा है आईफोन 18 लेके। फीचर्स तो वही है, जैसे अगली जनरेशन आवे तो उसके हिसाब से, जैसे कैमरा वगैरह में भी मतलब एक बढ़िया क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का कैमरा है, बढ़िया लग गया।
0: आईफोन प्रो की शुरुआती कीमत 1,64,000 रुपए है, जो 3,14,000 तक आती है, तो वहीं प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,000 रुपए है, जो 3,29,000 तक जाती है। इस बार के आईफोन काफी महंगे हैं। कीमतों को लेकर लोग शिकायतें तो करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि खरीदना तो है ही। आज तक देरो।
4: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 20 अंक टूटकर 74,295, निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर बंद हुआ। कच्चे तेल के दामों में नरमी और एशियाई बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेतों से बाजार को सपोर्ट मिला। हालांकि आईटी शेयर्स और टाटा ग्रुप के कुछ शेयरों में कमजोरी से सेंसेक्स दबाव में रहा। बड़े आईपीओस की तरह लिक्विडिटी जाने से भी बाजार की तेजी सीमित रही। शेयर बाजार में मिले जुले व्यापार के बीच रुपया 2 पैसे कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले 95.91 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सराफा बाजार में सोने और चांदी में तेजी रही। सोना 1,809 रुपए चढ़कर 1,53,658 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि चांदी 6,474 रुपए की बढ़त के साथ 2,36,116 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स की वेबसाइट के अनुसार पिछले कारोबारी दिन के पीएम रेट के मुकाबले सोने और चांदी दोनों के दामों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। मराठी फिल्म गोंधल को 99वें अकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर 2027 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री चुन लिया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसका ऐलान कर दिया। गोंधल एक थ्रिलर फिल्म है जो ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेगी। इस बार ऑस्कर के रेस में भारत की तरफ से कुल 33 फिल्में शामिल हुई, जिनमें से चयन समिति ने गोंधल के नाम पर अपनी मोहर लगाई। इसमें अलग अलग भाषाओं के अलावा हिंदी की मैं वापस आऊंगा, बॉर्डर 2, धुरंधर जैसी फिल्में शामिल थीं, जिन्हें पछाड़ते हुए गोंधल ने बाजी मारी। 2 घंटे के रन टाइम वाली ये मराठी फिल्म ग्रामीण महाराष्ट्र की लोक परंपरा और धार्मिक अनुष्ठान गोंधल पर आधारित एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। गोंधल का लेखन और निर्देशन संतोष डावखर ने किया है। फिल्म की कहानी नवविवाहिता और नवविवाहित जोड़े आनंद और सुमन के घर पर आयोजित रात भर चलने वाले गोंधल अनुष्ठान के इर्द गिर्द घूमती है। पूजा पाठ और उत्सव के दौरान गांव के लोगों के बीच दबे हुए पुराने विवाद, आपसी रंजिशें, राजनीतिक तनाव बाहर आने लगते हैं।
5: लाडली बेटी की शादी हो गई है।
4: और अब खबर पहाड़ों पर अचानक से बदल गए मौसम की। बीते सितंबर ही पहाड़ों पर मौसम बदलने लगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी तो पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों की खुशी भी काफी बढ़ गई।
0: चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है, पेड़ों पर कुदरत ने श्रृंगार किया है। सितंबर के दूसरे सप्ताह के साथ ही पहाड़ कुदरत के सफेद गहनों

0: से सज गए हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर लेह हाईवे पर जो जिला के जीरो पॉइंट की है। यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के साथ ही सर्दियों ने दस्तक दे दी है।
1: कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
0: अब मनाली की तस्वीरें देखिए, मनाली के ऊपरी हिस्सों में देखिए कितना सुंदर नजारा है। यहाँ भी सीजन की पहली बर्फबारी ने मनाली को मोहक बना दिया है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही होटल व्यवसायियों की आंखों की चमक बढ़ गई है क्योंकि होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है।
2: सब जगह पता लग गया है कि आज पहली बर्फबारी जो है वो सर्दियों की शुरुआत की आज से हो गई है और इस बर्फबारी से जैसे ही बर्फबारी हुई और सवेरे खबरें फैली तो होटलों में बुकिंग आना शुरू हो गई है।
0: मनाली के पहाड़ों पर ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने चांदी लपेट दी। मौसम खुशगवार है लेकिन यही मौसम कुछ लोगों के लिए काल बन गया। दरअसल पहाड़ पर एकाएक मौसम बदला जिसकी वजह से लाहौल स्पीति में पवित्र ड्रिलभुरी कोरा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक मौसम बदलने और भारी बर्फबारी के बाद हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया की वजह से दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं एक श्रद्धालु के पैर की हड्डी टूटने से वह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए केलांग क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनाली के बाद कुल्लू की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी आसमान से बर्फ बरसी है। रुई के फाहों जैसी बर्फ इस बर्फबारी ने पर्यटकों को प्रसन्न कर दिया है। अब उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी मौसम बदला है। बरसात के बाद हल्की बर्फबारी ने तापमान में गिरावट की है। रुद्रनाथ में हल्की बर्फबारी के साथ गिरे ओले, पहाड़ों पर बिछी सफेदी और बारिश के बीच बदलता मौसम। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब भी सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सफेद रंग में रंगा नजर आया। चारों तरफ बर्फ और उसके बीच नजर आता पवित्र धाम का खूबसूरत नजारा। कुल मिलाकर पहाड़ों पर सर्दियां दस्तक दे रही हैं। कुदरत अपना सबसे खूबसूरत रंग बिखेर रही है। आज तक ब्यूरो।
3: उधर बिहार में भी बाढ़ ने इस बार जमकर तबाही मचाई, जिसके बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के राहत कोष अपनी 3 महीने की सैलरी दान की। पार्टी के अनुसार बिहार में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्यसभा सांसद के तौर पर नितिन नवीन ने अपनी 3 महीने की सैलरी दान कर दी। नितिन नवीन ने यह भी विश्वास दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार इस संकट में बिहार के बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब से कुछ ही क्षणों में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज तक पंचायत बिहार में आपके साथ होंगे। देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो एक
3: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
4: हाँ।
5: ला, ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
7: ला बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
10: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
11: Take a date, not bites.
12: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
17: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी तबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
18: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
19: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
19: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
19: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
19: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
4: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
5: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
4: असली शहद, असली स्वाद।
17: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
20: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
7: ओले बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी तबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
16: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट,
16: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
17: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
20: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
21: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
20: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
22: यार लोन भूल गया। मैरी
23: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
24: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
22: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
24: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
25: There's nothing small about
22: us. Ujjivan, nothing small about us.

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
3: There is a very famous quote ki history repeat itself.
4: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
5: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
4: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बंगाल उपचुनाव में ट्विस्ट पे ट्विस्ट, पहले नंदीग्राम से ममता की उम्मीदवार ने नाम लिया वापस, तो कांग्रेस का दावा हमारे प्रत्याशी मिनल प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बीजेपी पर भड़की ममता। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोप पर किरण रिजिजू का पलटवार, कांग्रेस एक भस्मासुर, साथ आने वाले दलों को जला देती है। उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख का जेनजी को संदेश, बोले भारत के युवा दुनिया में न सिर्फ यशस्वी सार्थक भी बने। पठानकोट में बीजेपी नशा मुक्त यात्रा के दौरान आप कार्यकर्ताओं से भिड़ंत, पीड़ित परिवारों से मिले नितिन नवीन, बोले आंसुओं ने झकझोर दिया। वायुसेना को HAL से मिला तेजस का ट्रेनर विमान, पवनहंस को भी 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। विशेष में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के पावर प्ले की। बस चुनावों में कुछ ही महीनों का समय बचा है, तैयारियां दोनों ही खेमों में भरपूर हैं। अखिलेश यादव पीडीए के सहारे हैं, बीजेपी सनातन के भरोसे। सवाल ये कि जनता ने क्या सोचा है। लखनऊ में अखिलेश का पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रथ तैयार हो चुका है और इसी रथ के सहारे अखिलेश यादव अब चुनावों से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग करेंगे। लेकिन उनकी पिछली दो बार की ये कोशिश असफल हो चुकी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
1: अखिलेश यादव ने यूपी जीतने के लिए दोनों बार रथ यात्राओं का सहारा लिया। यही हाईटेक रथ 2017 में भी था जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे, और फिर 2022 के चुनावों से ठीक पहले उन्होंने विजय रथ यात्रा शुरू कर दी थी। कोशिश यही थी कि वो दोबारा यूपी जीत पाएंगे, लेकिन न 17 में सफल हुए न 22 में। अब 27 से पहले उनका रथ फिर से तैयार है। रंग वैसा ही है लाल, वैसा ही हाईटेक है। रथनुमा इस लग्जरी बस में सारी सुविधाएं हैं। बस नारे बदल गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जब अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी की यात्रा पर निकलेंगे तो क्या होगा। इसकी कुछ झलक आपको 5 साल पहले की इन तस्वीरों से दिखाते हैं। 2022 में यूपी में चुनाव होना था और उससे पहले ही नवम्बर 2021 में अखिलेश यादव की कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। तब भी उनके चुनावी रथ को यूपी में समर्थन तो बहुत मिला था। जहां से गुजरते थे वहीं लोगों की भीड़ लग जाती। ऐसे ही रथ के ऊपर खड़े होकर वो हाथ हिलाते, लोगों के उपहार और फूल मालाएं स्वीकार करते थे, लेकिन नतीजा उनके फेवर में नहीं रहा। 2017 में उनके रथ पर नारा लिखा था समाजवादी विकास रथ, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद भी यूपी के लोगों ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया, चुनाव हार गए। 2022 में फिर रथ का नारा बदला गया, लिखा गया यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। लेकिन 5 साल के बाद भी यूपी वालों ने अखिलेश को जनादेश नहीं दिया, फिर से हार गए। अब 2027 की बारी है, रथ फिर तैयार है और रथ पर नया नारा चिपका दिया गया है। अब लिखा है समाजवादी पीडीए यात्रा। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम। अब नए रथ का नारा क्या अखिलेश की 10 साल के बाद वापसी कराएगा, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस बार अखिलेश यादव के रथ में क्या बदलाव हुआ है। अखिलेश के समाजवादी रथ वाली बस में बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाईं ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में स्लोगन लिखा है पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा है। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पीडीए के इस मुद्दे में बड़ा दम दिखता है। वो भले ही पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हो, मौका भांपते ही वो पी को पिछड़ा से पंडित भी करते हैं, लेकिन पीडीए का असली मतलब उनके चुनावी रथ पर ही लिखा है पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इसमें कोई कंफ्यूजन न हो तो अल्पसंख्यक के बाद डैश लगाकर मुसलमान भी लिखा है।
2: ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं। आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं।
1: बीजेपी का तो पूरा प्रयास यही है कि पीडीए का ये नारा किसी भी तरह से ध्वस्त करना है। इसीलिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि पीडीए

समीकरण है कि अगर वो चुनावों में चला तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव में पीडीए के चलने का मतलब है चुनाव जाति पर शिफ्ट हो गया, और बीजेपी चाहती है कि चुनाव जाति पर नहीं सनातन पर हो।

0: करके डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
1: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
0: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
1: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है। सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
0: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
1: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
2: इसी समाजवादी रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल और रूट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन चमचमाती बस पहुंच चुकी है। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं। छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है। 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है। लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी की भी सुविधा है।
3: अक्टूबर के अंत में सूत्रों के मुताबिक ये रथ मैदान में उतरेगा और चुनावी कैंपेनिंग करेगा। अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद पीडीए इस बार 27 की सत्ता तक पहुंचाएगा। अब बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और इसे नई बोतल और पुरानी शराब करार दे रही है। यानी कि बीजेपी का कहना है कि कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं बल्कि MY समीकरण की रीपैकेजिंग है। जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में B.R. अंबेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे या बीजेपी कई संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी, ये वक्त बताएगा।
2: यूपी में पहले चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए MY समीकरणों का हवाला दिया जाता था। M का मतलब मुसलमान और Y का मतलब यादव। अखिलेश ने इसी समीकरण को बड़ा कर दिया है। मायावती चुनावों में पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में वो लगभग सरेंडर के मोड में रही, इसीलिए अखिलेश यादव मायावती के दलित वोट को भी अपनी तरफ करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि पीडीए वही MY है।
4: समाजवादी पार्टी ने माल वही है, पैकेजिंग नहीं है, MY के समीकरण पर एक्सपोज हो चुके थे। सब उनके इस MY के समीकरण को समझते हैं, इसीलिए अब ये पीडीए के नाम पर नया सिगुफा लेकर आए हैं। वो जानते हैं कि पीडीए एक नई पैकेजिंग केवल है, इसीलिए रोज पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। लेकिन पीडीए के अंदर वही माल है जो पुराना इनका MY समीकरण है। लेकिन ये जाति मजहब के आधार पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो विकास के मुद्दे पर होगा और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी फिर फेल होगी।
2: अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर ही 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी के अंदर बीजेपी को रोका है। बीजेपी 240 पर सिमटी तो इसके लिए यूपी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जहां अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बड़ी रिकॉर्ड सफलता पाई। 2024 में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गईं। SP के सहयोगी कांग्रेस की सीटें भी 2024 में 1 से बढ़कर 6 हो गईं। और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में 403 में से 224 विधानसभा सीटों पर आगे था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लगभग बराबर वोट मिले। बीजेपी को 3,83,00,000 और समाजवादी पार्टी को 3,81,00,000 वोट मिले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों और पिछड़ों के साथ दलितों के वोट भी हासिल किए थे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि 2027 से पहले वो एक बार फिर से 2024 जैसा माहौल खड़ा कर देंगे।
5: यूपी में सभी दल चुनावी रणनीतियों में जुट चुके हैं। सबसे व्यापक बीजेपी की तैयारी, रणनीति से घोषणाओं तक बूथ मैनेजमेंट से नौकरियों तक बीजेपी बड़े प्लान पर काम कर रही है, रोजगार उसकी प्राथमिकता है। खबर यह है कि अगले 6 महीने में यूपी सरकार

0: 1,00,000 सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में देने जा रही है।
1: हजार पुलिस विभाग, 1,50,000 शिक्षा विभाग, 29,000 स्वास्थ्य विभाग, 48,000 यूपी पीएससी, 54,000 यूपी ट्रिपल एससी, 4,45,000 संविदा भर्ती। 9 साल में 9,00,000 से अधिक नौकरियां यूपी में नौजवानों को मिल चुकी हैं। निजी क्षेत्र की 3.25 करोड़ और संविदा की 4.25 लाख नौकरियों को छोड़ भी दें तो योगी सरकार यूपी में चुनाव से पहले के 6 महीनों में 1,00,000 से अधिक सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोलने वाली है।
2: कल से नौकरियों का महाकुंभ यूपी में लग रहा है। साफ तौर से इसमें से चाहे वो आयुष विभाग हो, होम विभाग हो, इसके अलावा एनएचएम हो, साथ ही साथ बेसिक हो, इसके साथ माध्यमिक हो, हर उस विभाग में नौकरियों की बंपर भर्ती अब की जाएगी। कल 19 सितंबर से लगातार इस पर, क्योंकि कल से ही नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो अलग अलग विभाग में सैकड़ों हजारों की तादाद में नौकरियां दी जा रही हैं।
1: यूं तो सीएम योगी पिछले 3-4 महीनों से तकरीबन हर महीने कहीं न कहीं नियुक्ति पत्र बांटते नजर आ रहे हैं, लेकिन 19 सितंबर से ये अभियान और जोर पकड़ने वाला है, जिसमें पहले 4 विभागों में चयनित नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं।
3: मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1,00,000 सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
6: यार लोन भूल गया। मैरी
7: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना,
8: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
6: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
8: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
9: There's nothing small about
6: us. Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: पंजाब में बीजेपी का मिशन 2027 अब की बार नशे पर चुनावी प्रहार 117 सीटों पर बीजेपी की मेगा यात्रा 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा से मोर्चा बंदी इन तैयारियों को गौर से देखिएगा। ये पंजाब में बीजेपी की चुनावी आगाज की तैयारी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन एक ऐसी यात्रा का शंखनाद करने वाले हैं जो बीजेपी का पंजाब में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। क्या है बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा, पहले इसे समझिए। मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि नशे के मुद्दे पर पंजाब की मान सरकार के खिलाफ बीजेपी की बड़ी मोर्चाबंदी है। बीजेपी ने पंजाब की सभी 117 सीटों पर यात्रा निकालने की तैयारी की है। ये यात्रा 18 से 30 सितंबर तक यानी 12 दिनों तक चलेगी। 12 दिनों में ये यात्रा करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। बीजेपी ने नशा मुक्त पंजाब यात्रा को धारदार बनाने के लिए इस यात्रा में अपने दिग्गजों को उतारने का फैसला किया है। 18 सितंबर यानी आज नितिन नवीन पठानकोट से यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। 19 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, 20 सितंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, 21 सितंबर को केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी इस यात्रा में शामिल होंगे। 30 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जालंधर में रैली कर यात्रा का समापन करेंगे। जाहिर है बीजेपी ने इस यात्रा में पूरी ताकत झोंक दी है। इन 12 दिनों में बीजेपी के तमाम नेता पूरे पंजाब में घूम घूम कर नशा मुक्ति पर मान सरकार की नाकामियां बताकर चोट करेंगे। साथ ही अगर बीजेपी सत्ता में आई तो नशा मुक्ति की दिशा में क्या कदम उठाएगी बीजेपी, ये भी बताएंगे। असीम बस्सी, पठानकोट, आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का स्वागत करें तालियों के साथ।
1: तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज हम लोगों के साथ हैं और पंचायत बिहार में मेरा पहला प्रश्न यही होगा कि बीजेपी इस बात पर बहुत खुश है कि अंग बंग कलिंग अब तीनों जगह भाई हमारा अपना सीएम हो गया। बिहार एकमात्र हिंदी पट्टी का राज्य था जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। बीजेपी का सपना तो पूरा हो गया लेकिन जनता का सपना पूरा करने में 150 दिन के इस सफर में आपने क्या ऐसा किया है जो आप जनता को आज बता सके? अपना 100 दिन तो नहीं 150 दिन वाला रिपोर्ट कार्ड पेश करें।
2: मैं आज तक को पंचायत बिहार के इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बधाई और धन्यवाद भी देता हूं कि आप बिहार के विकास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। जनता की आकांक्षा बहुत बड़ी होती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन पिछले 2-3-4 महीने में लगातार विकास के काम को आगे बढ़ाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन लगातार हमें मिलता रहा है और आज मैं बता सकता हूं जरूर कि नीतीश जी ने बिजली और सड़क पर बहुत काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किए, उसको अब तेज गति से बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। हमारे साथी मंत्री वगैरह आपके बीच में आए होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे, यहां पढ़े, यहां रोजगार मिले और यहीं पर अपने जीवन को उन्नति का रास्ता दे। और इसका एक उदाहरण मैं बताता हूं कि पिछले 150 दिनों में मैंने 700 मॉडल स्कूल बनाए और उस मॉडल स्कूल में जो संरचना खड़ा किया वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जो लगभग 3.5 लाख बच्चे उस मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका सपना होता था कि हम नेतरहाट में पढ़ाई करें, हम सैनिक स्कूल में जाकर पढ़े, हम देवघर में रामकिशन मिशन स्कूल में पढ़े और अभी सिमरतल्ला में हमारा सबसे बेस्ट स्कूल है वहां जाकर पढ़ने का काम करें। हम उस व्यवस्था को हम लोगों ने मॉडल स्कूल में शिफ्ट किया, वहां अच्छे टीचर्स की पोस्टिंग की, साथ ही साथ हमने 2-3 फॉर्मूला वहां क्रिएट कराया। एक, जो बच्चे बाहर जाते थे नीट की तैयारी करने, जेई की तैयारी करने, उनको पूरी व्यवस्था वहां देना शुरू किया और रात के 12 बजे यदि हमारा कोई बच्चा, मॉडल स्कूल पढ़ने वाला बच्चा, यदि चाहे कि हमको रात के 1 बजे टीचर हमको ट्यूटर की व्यवस्था करे, तो सरकार ने विद्यार्थी साथी ऐप दिया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एवरेज रात के 1 बजे 1.5 लाख बच्चे उससे पढ़ाई कर रहे हैं 1 बजे रात में, और संडे के दिन वही बढ़कर 2 लाख बच्चे उससे अटैच हो जाते हैं।
1: रियल डेटा ट्रैक हो रहा है,
2: इसलिए मैं उसका भी पूरा एक मैकेनिज्म हमने बनाया कि वो ओटीपी के माध्यम से उसका पूरा सिस्टम क्रिएट किया है। जब बच्चा उसको ऐप पे जाएगा तो उसको ओटीपी आएगा और 1 मिनट के अंदर उसको शिक्षक उपलब्ध होंगे, ये 24/7 उनको शिक्षक उपलब्ध होते हैं। तो ये पूरी संरचना क्वालिटी एडुकेशन देने का प्रयास हम लोगों ने किया है। और दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में रिकॉर्ड टाइम में बिहार में शिक्षक की कमी रही, जबकि नीतीश जी ने लगभग 7 लाख शिक्षकों की बहाली किया, इसके बावजूद जब हम लोगों ने देखा कि डिग्री कॉलेज ब्लॉक में नहीं थे, हमारे पूरे बिहार में 272 डिग्री कॉलेज आजादी के 80 वर्ष में थे, मैंने 15 जुलाई को लॉन्च किया और एक दिन में 211 डिग्री कॉलेज खोला पूरे बिहार में। और उसमें जो समस्या होती थी कि टीचर नहीं होंगे, तो हम लोगों ने एक महीने के रिकॉर्ड टाइम में 25 जून को इस पूरी व्यवस्था को शुरुआत किया और एक महीने के रिकॉर्ड टाइम में सभी शिक्षकों की बहाली करके उसको पोस्टिंग देकर, और जब मैं स्वयं गया उनसे मिलने, उन शिक्षकों से, तो मुझे खुशी उस दिन हुई कि कोई दिल्ली से, कोई बैंगलोर से, कोई बॉम्बे से नौकरी छोड़कर बिहार आए।
0: सुनने में भी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि बिहार की भूमि में शिक्षा का महत्व इतना है। आपके शिक्षा मंत्री भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बताया कि कैसे जो भवनहीन स्कूल हैं उन लोगों के लिए भी आप लोगों का एक प्लान है। लेकिन मैं यहाँ पर एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले हमेशा ऐसा कहा गया कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से ढाई कदम पीछे चलते हैं, तो एक तो ये कि ढाई कदम क्यों? लेकिन नीतीश कुमार को जब अपना उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई तब भी बताया गया कि वो चाहे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहें बिहार के। अब एक 20 वर्ष का शासन एक ऐसे व्यक्ति का हम देख रहे हैं जिनको सुशासन बाबू कहा गया। आखिर में सवाल भी उठे बहुत सारे, सम्राट चौधरी अपने नेतृत्व में बिहार में ऐसा क्या करना चाह रहे हैं कि ये सम्राट अध्याय रहे, नीतीश अध्याय का एक्सटेंशन नहीं?
2: नहीं, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं श्वेता जी, बिहार के निर्माण में श्री बाबू कपूरी ठाकुर और नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान रहा है, इसे मैं डिफर नहीं कर सकता। श्री बाबू ने पूरी संरचना खड़ा किया, उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री आए और गए, नीतीश कुमार जी ने डेवलपमेंट का भी काम किया, सामाजिक न्याय का भी काम किया। नीतीश कुमार जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, आज लोग घूम सकते हैं बिहार में, काम कर सकते हैं बिहार में, बिजली गांव में है, पानी गांव में है, सड़क गांव में है। अब क्या है कि हमको तेज गति से बढ़ना है। हम कैसे महाराष्ट्र की गति को प्राप्त करें, हम दिल्ली की गति को प्राप्त करें, कर्नाटक की गति को प्राप्त करें, इसके लिए इंडस्ट्री के सेक्टर में, एडुकेशन के सेक्टर में, और अभी तक राज्य सरकार का लक्ष्य ही नहीं था कि इंडस्ट्री के लिए हम जमीन उपलब्ध करा पाते। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 150 दिन में लगभग 950-1000 के आसपास इंडस्ट्री को जमीन उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया था। और हमारा लक्ष्य है, क्योंकि ये काम जब मैं उप मुख्यमंत्री था, नीतीश जी के साथ काम कर रहा था, तो वित्त मंत्री की हैसियत से ये हमें थोड़ा काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने इंडस्ट्री के लिए लगभग 13,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करना शुरू किया। क्योंकि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट मान सकता हूं मैं, क्योंकि हमसे पीछे छूट चुका बांग्लादेश, हमसे पीछे छूट चुका इंडोनेशिया, हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन में 14 करोड़ की आबादी है, हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं था। मैं पहली बार विधायक जब बना तो बिहार में 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, 13% रेवेन्यू यहां से आता था। मैं जब बजट पेश किया श्वेता जी, वो मेरे लिए सबसे गौरव का दिन था, जब मोदी जी और नीतीश जी के आशीर्वाद से मैं उप मुख्यमंत्री था और बजट पेश कर रहा था, जिस झारखंड में 87% रेवेन्यू, उस झारखंड में का बजट 1,39,000 करोड़ का था और बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का। ये बदला हुआ बिहार है। आज हम देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाला राज्य है। सिर्फ बिजली सेक्टर को आप देख लीजिएगा, 23,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी देते हैं बिहार के गरीबों, और हमने कभी नहीं देखा कि ये लालू जी को हम सब्सिडी दे रहे हैं, कि तेजस्वी जी को दे रहे हैं, या बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं। हम 2,22,00,000 लोग यहां बिजली कनेक्शन लिए, उसमें लगभग 1,92,00,000 डोमेस्टिक यूजर है, 1,92,00,000 परिवार को, हम सबको हम 125 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। और इसके साथ साथ लगभग 6,000 करोड़ रुपया बिहार के किसानों को उनके कृषि फीडर के तौर पर मात्र 55 पैसा के रेट से हम बिजली उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम सब्सिडी के माध्यम से किसानों को भी मदद करते हैं, गरीबों को भी मदद करते हैं।
3: लेकिन मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार की एक लेगेसी रही है, और खासकर जब तक वो मुख्यमंत्री रहे 15 साल, खासकर पहले जब जनता दरबार किया करते थे, लोगों से मिलते थे, पटना आते थे लोग उनसे शिकायतें लेके, आपने ऐसा क्या अलग कुछ किया है पिछले 150 दिनों में ताकि जनता की समस्याएं जो है वो कम हो सके? क्योंकि बहुत सारी समस्या आज भी है, लोगों के पास शिकायतें आज भी है।
2: इसमें भी एक अच्छा मैकेनिज्म मैंने लाया। मैं नीतीश जी के साथ काम करता था तो मैं देखता था, एक व्यक्ति उनसे साल में 5 बार मिलता था और एक ही काम लेकर आता, और वो पत्र नीचे जाता था। मैंने एक सहयोग कार्यक्रम शुरू किया, और वो भी प्रेरणा तब मिली हमको जब मैं मुख्यमंत्री हुआ। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद 4-5 दिन तो लोग बधाई दिए, 5वें-6वें दिन एक एक कागज थमाते गए, और मैंने देखा कि 5 दिन में मेरे पास लगभग 20,000 लोगों का आवेदन था। ये मेरे लिए चैलेंज था। मैंने एक कार्यक्रम की कल्पना की, सहयोग कार्यक्रम। पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चलाया जाता है, और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक लगभग 8.5 लाख आवेदन आए हैं हमारे राज्य में, और 8.5 लाख आवेदन में से 96% आवेदन का निष्पादन हमने किया। और उस आवेदन में क्या कार्रवाई है, यह सबसे मिराकल है। जैसे आपने कोई आवेदन दिया कि हमारे घर में बिजली कनेक्शन नहीं है, पानी कनेक्शन नहीं है, हमारा जमीन का डिस्प्यूट है, 10 दिन तक यदि ऑफिसर ने कार्रवाई नहीं किया, मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से 11वें दिन एक नोटिस जारी होता है उस पदाधिकारी को, उस कर्मचारी को, कि इसका आदेश पारित कीजिए आप। उनको मैं सलाह नहीं देता हूं, उनको कहता हूं कि आप आदेश पारित करें। 20 दिन तक यदि उसने आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया, हम दूसरा नोटिस मुख्यमंत्री कार्यालय से देते हैं।
1: चलिए ठीक है, अब इससे तो जनता से बात करेंगे कि कितना
2: पूरा कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा 25 दिन के ऊपर उसका तीसरा नोटिस आता है, और अभी तक लगभग 12,000 लोगों को नोटिस गया, लेकिन कोई पदाधिकारी कर्मचारी ऐसा नहीं मिला हमको जो 30 दिन पार करे, क्योंकि 30 दिन के बाद वो स्वतः निलंबित हो जाएगा किसी को आदेश देने।
1: मुख्यमंत्री जी, अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है बिहार में, तो क्या वजह रही कि जो सीट 3 दशक से ज्यादा के वक्त से बीजेपी के पास थी, जो आपके मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन जी की सीट है, बांकीपुर सीट ही बीजेपी हार गई, जबकि सारे लोगों ने ताकत झोंकी। अब विपक्ष कह रहा है कि ये रेफरेंडम है, सम्राट चौधरी पर रेफरेंडम है बांकीपुर की
2: जनता, ये तो जनता तय करती है। 243 सीट पर चुनाव हुए, 202 सीट हम जीत कर आए, चाहे वो अररिया जिला का वोट हो, भागलपुर जिला का वोट हो, बक्सर जिला का वोट हो, सासाराम का हो, हाजीपुर का वोट हो, ये तो जनता तय करती है। एक सीट चुनाव तय नहीं करता है, लेकिन विधायक जी है, विधायक काम करें, इसमें क्या दुमत है। 243 विधायक है, सबको काम करने का अधिकार है, सब काम करें।
1: लेकिन वो क्या रही बांकीपुर की, आपको क्या लगता है?
2: देखिए, समय और परिस्थिति, कुछ हो सकता है हम लोगों के निर्णय गलत हुए हों, इससे मैं डिफर नहीं करता।
1: जैसे
2: मैंने कहा, ये समीक्षा का विषय है। मेरा ये मानना है कोई डिसीजन हम लोगों से गलती हुई होगी, जनता को लगता होगा कि इससे अच्छा डिसीजन करना चाहिए था। जनता जो मालिक है, उसको कुछ अच्छे नहीं लगे होंगे, इसलिए हो सकता है।
0: यूजीसी का मुद्दा बैकफायर कर रहा है, लग रहा है।
2: मैं इस पर तो नहीं कह रहा हूँ, मेरा यह मानना है ये जनता मालिक है, कभी जिताती है कभी हराती
0: नहीं। पर आप ये महसूस कर रहे हैं ना कि जिस अगड़ी जाति को आपका वोट बैंक कहा जाता था, उनमें नाराजगी रही?
2: भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर तो राजनीति नहीं करती है, लेकिन बिहार की जनता का आशीर्वाद एनडीए को मिला, इससे मैं डिफर नहीं हूं।
3: नहीं तो क्या बांकीपुर सम्राट चौधरी के शासनकाल पर आपके गवर्नेंस में रेफरेंडम था या नहीं?
2: देखिए एक चीज समझिए, किसी एक व्यक्ति या किसी के कहने से कुछ होता नहीं, ये लोकतंत्र है।
3: वो दिन भर आप ही पर कहते रहते हैं
2: भाई, ठीक है, उसको व्यक्तिगत मेरा कोई मामला नहीं है, ना हमको जवाब देने का जरूरत है। 243 विधायक है, कितना का जवाब दूंगा मैं। मेरा ये मानना है बिहार लोकतंत्र की धरती है, यहां जिसके पास 122 एमएलए होंगे वही सरकार चलाएगा। एक व्यक्ति के खिलाफ करने से बिहार की राजनीति नहीं बदलती। बिहार 122 हम लोगों को, हमारी गठबंधन की सरकार को समर्थन प्राप्त है, हम लोग जनता का काम कर रहे हैं।
1: लेकिन मुख्यमंत्री जी बांकीपुर पर अभी एक दो सवाल और है, छोटा सा ही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की जीत वहां बिहार में एक नई दस्तक दे रही है? वजह क्या है कि भाई अलग अलग जगहों पर आंदोलन हुआ?
2: देखिए मेरा स्पष्ट मानना है, मैंने फिर कहा, ना व्यक्तिगत मेरे इशू है ना मेरी कोई लड़ाई है। बिहार की जनता के बीच में मोदी जी, नीतीश जी, एनडीए के लोगों ने काम करने का मौका दिया है, काम करना है। 2030 में फिर चुनाव होगा, फिर पूरी बिहार की जनता देखेगी।
4: पर इत्तेफाक नहीं हो सकता है, जेंजी प्रोटेस्ट उसी समय चलता रहा, छात्रों की नाराजगी एक तरफ नजर आती रही, आंदोलन अलग अलग जगहों पर हो रहा था, उसके बीच में आया तो सबने कहा छात्र नाराज है, युवा नाराज है, आगरे नाराज है।
2: जिस तरह प्रधानमंत्री जी पूरी तरह हमारे जो नौजवान साथी है उसके साथ खड़े है, पूरी सरकार खड़ी है। मैं तो सबसे पहला मुख्यमंत्री था जिसने तुरंत उनके ऊपर जितने FIR हुए सबको मैंने वापस लिया।
3: लेकिन सम्राट जी ये बताइए, क्योंकि आप नीतीश कुमार के साथ भी आपने काम किया हुआ है, एक लंबी लकीर उन्होंने खींची है विकास की पिछले 20 सालों में, सम्राट चौधरी को क्या कोई प्रेशर महसूस होता है क्या कि उस लंबी लकीर को मैं कैसे और बड़ा करूं, और क्या आज भी सम्राट चौधरी इस दबाव में है कि भाई मेरे ऊपर भी कोई सुपर CM है?
2: नहीं, हमारे नेता रहे नीतीश कुमार भाई, इसे कैसे मैं डिफर कर सकता हूं। आज भी एनडीए के सबसे बड़े नेता वो हैं बिहार के स्तर पर, इसे मैं डिफर नहीं कर सकता। उनका कोई सलाह आएगा तो मैं जरूर सुनूंगा, इसमें कहां दो मत। लेकिन हमारी पार्टी की जो संरचना है और एनडीए का जो स्वरूप है, सब मिलकर काम करते हैं। दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा होकर काम कर रहा है, और नीतीश जी 1996 से लेकर 2026 तक भाजपा के सहयोग से बड़े नेता के तौर पर कभी रेल मंत्री कभी मुख्यमंत्री लगातार बनते रहे। और नीतीश जी ने एक मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को कि अपना मुख्यमंत्री बनाए, तो भाजपा ने तय किया तो मैं मुख्यमंत्री बना।
1: सम्राट जी मैं मानती हूं कि यह संयोग नहीं है कि आपने आज अपने काम की शुरुआत में ही छात्रों की चर्चा बहुत की, क्या इसके पीछे छात्र आंदोलन है? 3 सवाल इससे जुड़े हुए हैं, स्पेसिफिक हैं। एक तो अभी ही छात्रों का आंदोलन हुआ BPSC एग्जाम को, वो चाहते हैं रिव्यू हो, जो सब इंस्पेक्टर के लिए BPSSC एग्जाम है उसका भी वो रिव्यू चाहते हैं। इससे पहले भी छात्र आंदोलन पटना में हुआ, उस वक्त पर ज्यादतियों को लेकर सवाल खड़े हुए सिवान में, तो AK-47 के इस्तेमाल को लेकर पूरे देश में एक चर्चा हुई कि भाई छात्र थे, हमारे बच्चे थे, उनको पेपर लीक से समस्या है, उनको एग्जाम करने की पद्धति से, भ्रष्टाचार से समस्या है, हम हल न देकर।
2: इसलिए अंजना जी, मैं पहला राज्य हूं जिस राज्य में मैंने सिटिंग जज, मैंने रिटायर्ड जज के लिए विशेष तौर पर चीफ जस्टिस साहब से आग्रह किया कि एक सिटिंग जज हाईकोर्ट के, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाया कि इस पूरे मामले का रिव्यू, कहीं जो भी गलत जिसने भी किया सब पे कार्रवाई हमारी सरकार करेगा, इसे मैं पीछे नहीं।
1: BPSC एग्जाम पर
2: किसी भी जो भी रिपोर्ट वो देंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी तरह नौजवानों के साथ खड़ी है, पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर तौर पर नौजवान जो चाहेंगे वो आवेदन दे, और जो कमेटी बनी है वो जो आदेश करेगा उसके साथ सरकार 100%।
1: ये कमेटी आप किस पर बता रहे हैं, BPSC एग्जाम पर या AK-47?
2: मैंने दोनों चीजों पर नहीं, उस पर तो जो कार्रवाई करना था उस पर कार्रवाई, उनको नहीं जाना था, जिनको नहीं जाना था वैसे पदाधिकारी कर्मचारी वहां गए, सब पे कार्रवाई हुई। लेकिन जो परीक्षा का सवाल है या किसी भी स्तर पर कोई भ्रष्टाचार का इशू है जो परीक्षा से संबंधित, उसके लिए विशेष कमेटी का गठन मैंने किया है जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
4: सम्राट जी, एक युवा की बात और उठनी लाजमी हो जाती है और वो युवा भरत तिवारी। एक ऐसा एनकाउंटर जो हुआ बिहार में, लेकिन उसकी चर्चा भारत के कोने कोने तक हुई। जो बातें उसके द्वारा कही गई थी, जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, उन चीजों को लेकर आपको लगता है वो रोष, वो गुस्सा उन नौजवानों में है अभी भी?
2: मेरा ये मानना है, मैंने 48 घंटे में उस पर न्यायिक कमेटी बनाई और न्यायिक कमेटी ने कहा कि पुलिस से वहां चूक हुई और हमने तुरंत उस परिवार के सहयोग के लिए भी खड़ा हुआ, परिवार से मैं मिला भी उनकी माताजी से, और जो दोषी पदाधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया गया, जेल में भी डाले गए और तमाम चीजों के लिए अब न्यायालय तय करे कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करके उसको सजा भी देनी।
1: मुख्यमंत्री जी, अगर आपने वो रिपोर्ट देखी है, क्योंकि आप ही ने बताया कि पुलिस लैप्स दिख रहा है, किसने ऑर्डर किया था, शूट का ऑर्डर किसका था, क्यों ऐसा हुआ?
2: कोई भी चीज, मेरा स्पष्ट मानना है कि अपराधी किसी भी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो पुलिस को चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन यदि पुलिस कोई गलती करती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसलिए मैंने न्यायिक आयोग बना, जुडिशियल कमीशन बनाया। जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आया उस परिवार के साथ पूरी संवेदना व्यक्त किया, सरकार ने कार्रवाई किया, उस परिवार को के जीवन यापन के लिए हम लोगों ने कहा कि उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, आर्थिक सहयोग किया जाएगा। इसका मतलब ही है कि सरकार ने गलती मानी।
4: पर कानून व्यवस्था को आप अपना स्ट्रेंथ बताते हैं। ये कहा जाता है कि अब जीरो टॉलरेंस फॉर ऑल क्राइम सब तरह के अपराध के लिए बिहार में है, पर जो कुछ इंसिडेंट्स एक सेना के जवान को लेकर जो मामला अभी आया, इस तरह की चीजों को लेकर आप कैसे हैंडल, क्या हैंडल करना चाहते हैं? सम्राट चौधरी का क्राइम को लेकर, अपराध को लेकर क्या?
2: मेरा मानना है कि कार्रवाई लगातार होती रहनी चाहिए। सुशासन तभी स्थापित होगा जब रूल ऑफ लॉ होगा, अपराधी को सजा दिलाया जाए, और यदि कोई जघन अपराध है उस पर तुरंत अपराध पर कार्रवाई हो और उसको सजा एक टाइम फ्रेम में हो। हम लोगों ने इसके लिए गुंडा एक्ट में पूरा प्रावधान किया। अभी आप कह रही थी ना परीक्षा सुधार के, हमने कहा है कि एक से दो बार यदि कोई व्यक्ति चार्जशीटेड हो इस परीक्षा के हेर फेर करने में, उसको एकदम गुंडा एक्ट में बंद करके 1.5 साल रखना चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो कानूनी तौर पर अपराध को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई।
1: आजकल एक सेकंड रोहित, जल्दी से एक सवाल इसी टॉपिक पे चुकी मन में आया। कहते हैं आजकल 3 सीएम में रेस लगी हुई है, योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी और शुभेंदु अधिकारी।
2: नहीं नहीं, मैं तो रेस में ही नहीं,
1: बुलडोजर एनकाउंटर,
2: मैं तो रेस में ही नहीं हूँ। मैं तो रेस में ही नहीं हूँ, कहा अंजना जी आप हमको
1: बुलडोजर एनकाउंटर का बोलबाला, माफिया का अंत करना है, पुलिस एकदम ट्रिगर हैप्पी हो जाए तो हो जाए।
2: नहीं, अपराध जेल में, अपराध के खिलाफ होना चाहिए। मैं ना, मेरी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई है ना कोई व्यक्तिगत झगड़ा है, कहाँ मैं इस चक्कर में पड़ूं। मेरा काम है शासन को ठीक से चलाना, पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड छोड़ देना।
3: तो मुख्यमंत्री जी, एक चर्चा अभी पिछले कुछ दिनों से चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने जो यूसीसी को लेकर जब अपनी बातें रखी हैं कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए शासित या बीजेपी शासित सभी राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा, बिहार में हम देख रहे हैं कि इसको लेकर कहीं ना कहीं जेडीयू ने इस पर सवाल उठाए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं, तो बिहार में सम्राट चौधरी का स्टैंड क्या है या बीजेपी का स्टैंड क्या है यूसीसी को लेकर, और जेडीयू और एलजेपी जो सवाल खड़े कर रहा है इस पे, एक तरीके से कहें तो विरोध में है, उसको फिर कैसे आप लोग मनाएंगे?
2: नहीं नहीं, स्वाभाविक है, हम सबसे बात करेंगे, सबसे चर्चा करेंगे, तब कोई डिसीजन करेंगे।
3: बिहार में लागू होगा यूसीसी?
2: मैंने क्या कहा कि सबसे चर्चा करेंगे तब डिसीजन करेंगे।
4: आरजेडी ने तो न्योता दे दिया है जेडीयू को कि छोड़ दो उनको, यूसीसी ले आएंगे ये।
2: हमने कहा कि हम चर्चा करेंगे, आरजेडी क्या कहता उससे हमको क्या लेना देना।
4: जेडीयू से कह रहे हैं वैसे भी।
2: मेरा ये मानना है श्वेता जी, मैं अपने गठबंधन को जानता हूं, गठबंधन के सहयोगी के साथ वार्ता करूंगा, चर्चा करूंगा, तब कोई डिसीजन करूंगा।
1: ऐसा लगता है कि गृहमंत्री जी ने यूसीसी का ऐलान तो कर दिया लेकिन आप लोग सब बैकफुट पर चले गए, सही असेसमेंट है?
2: नहीं, ये कोई बैकफुट या फॉरवर्ड खेलने की बात नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है ये एनडीए की सरकार है, हम सबसे मिलकर बात चर्चा करके आगे बढ़ेंगे।
4: सम्राट जी, एक चीज जो इस समय बिहार जिससे जूझ भी रहा है, बाढ़। मतलब कभी कभी लगता है कि नियति बनकर लोग स्वीकार कर ले रहे हैं। क्या बिहार में बाढ़ का कोई इलाज नहीं हो सकता? क्यों हर साल बाढ़ से पीड़ित होना पड़ता है बिहार को?
2: बेसिकली क्या है श्वेता जी, ये अपना पानी नहीं है। उत्तर प्रदेश से 6.5 लाख क्यूसेक पानी आता है, मध्य प्रदेश झारखंड से लगभग 11.5 लाख क्यूसेक पानी आता है, नेपाल के तराई से कोई लिमिट नहीं है, कभी भी 1 लाख क्यूसेक पानी आएगा और कभी 10 लाख क्यूसेक पानी आएगा। ये नेपाल में तय करना है कि नेपाल में कितनी बारिश हुई, वो बेचारे को भी पता नहीं होता है इतनी बारिश का पानी हमारे यहां आता है। अब है कि सबका जंक्शन बिहार है और जो सबसे बड़ा ड्रेन है वो माँ गंगा है। इस गंगा में एक तरह से गाद बहुत बढ़ गया है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब बिहार के बॉर्डर पर बक्सर में माँ गंगा आती है, वहां पे मात्र 6 किलोमीटर का चौड़ाई है, और यही जब आप बिहार से झारखंड के लिए हम डिस्चार्ज करते हैं वहां पर लगभग 32 किलोमीटर का ड्रेन है, भागलपुर में 26 किलोमीटर, खगड़िया और मुंगेर में वो 22 किलोमीटर, ऐसे करते हुए पूरे हमारे जमीन को तबाह करते हुए ये पानी समुद्र में जाता है। हमारे लिए चिंता का विषय है, ये बात सही है। अभी तक हम डरते थे कोसी से, कोसी में 6.5 लाख क्यूसेक पानी आते थे तो हमारी डर रात की नींद उड़ जाती थी। इस बार सिर्फ गंगा में 17 लाख क्यूसेक पानी छोड़ेंगे, 17 लाख। आप सोचिए उसको कंट्रोल करने में हाईएस्ट लेवल तक का पानी इस बार गया। एचएफएल जो है अभी तक 16 में आया था 1922 के बाद, और 16 के बाद 10 साल के बाद इस बार हाईएस्ट लेवल पर लगभग 1 फीट अधिक पानी, जो 2016 में आया उससे अधिक पानी आया।
4: तो कुछ नहीं हो सकता है?
2: नहीं, इसको करना है।
4: किसी की भी सरकार है, कुछ हुआ ही नहीं।
2: मैंने इसका वर्कआउट शुरू किया है, कोसी और गंडक पर भी काम शुरू किया था कि नेपाल के तराई में एक जमाना था कि 1.5 लाख क्यूसेक पानी भी आते थे 2008-09 में, तो बिहार के लगभग 7 से 8 जिले पानी पानी हो जाते थे, चाहे वो कोसी हो चाहे वो मथिला का इलाका हो। गंडक में 3 लाख क्यूसेक पानी आता था, पूरा चंपारण और सारण डूब जाता था। अब धीरे धीरे इसको ठीक किया है हम लोगों ने। जहां बिहार में मात्र 21 लाख हेक्टर जमीन सिंचित हुआ करता था, आज वो बढ़कर 44 लाख हेक्टर जमीन सिंचित हो गया है। लेकिन अब जो चुनौती आप कह रही है, हमको हर हालत में, हमने नीदरलैंड भी टीम भेजा था, सबसे ज्यादा नदियों पर काम वहीं हुआ, हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है। कोसी से हम शुरू करेंगे और गंगा को हर हालत में बांधने का काम हमारी सरकार करेगा।
1: मुख्यमंत्री जी, एक पूजा देवी है कटिहार की, उनका एक वीडियो है आपके नाम, अगर आपका ये हो तो जरा चला देते हैं, आप उनकी बात सुनिएगा। क्योंकि बाढ़ एक ऐसी विभीषिका है जिस पर हम लोग इतना क्यूसेक पानी, उतना क्यूसेक पानी सब बात कर लेते हैं, साल दर साल कुछ बदलता नहीं है। 15 जिलों में उन घरों में शाम का दिन का खाना नहीं बन रहा है कई दिनों से, तो उनको जो समस्या है एक बार सुनिए। हो क्या
5: दुकान दौड़ी सब कुछ रास्ता बंद छे तो जेबे कथी से, यहाँ वोट मांगे तोरा वोट देबो, देख पानी हमरा देख, देख हमरा कल कोई पानी पी लेता ही पानी तू सब कलर पानी पिए हम असने ही पानी पिए कल डूबी गए
1: ये जो समस्या
2: देखिए ये कष्ट तो है
1: बहुत कष्ट
2: मैं तो ऐसे विधानसभा से पहले जीतता था जिस विधानसभा में तीन नदी गुजरती थी यहाँ दो मेरे साथी बैठे हैं बगल के सीटों पर चुनाव लड़ते रहे कोसी माँ गंगा और बूढ़ी गंडक तीन नदी से घिरा हुआ हमारा विधानसभा होता था उस पीड़ा को मैं जानता हूँ इसमें कहीं तो मत प्रत्येक साल जो पीड़ा होती है इसी पीड़ा के लिए मैंने कहा इसको हर हालत में बांधना होगा अब इसका परमानेंट सोल्यूशन करना होगा और इस लक्ष्य को हम लोगों ने कबूला है इसको आगे बढ़ाने का काम होगा।
3: एक सवाल मेरा मुख्यमंत्री जी है क्योंकि बिहार की समस्या वर्षों से रही है पलायन और बिहार में नौकरी क्यों नहीं है रोजगार क्यों नहीं है। चुनाव के वक्त आप लोगों ने 5 करोड़ रोजगार देने का या सरकारी नौकरी देने का वादा किया था 5 सालों में उसको लेकर क्या हो रहा है क्योंकि देखिए उद्योग की बात आप लोग करते हैं कि उद्योग लगाएंगे लेकिन अभी कुछ लगा नहीं है। आज भी पलायन हजारों लाखों की संख्या में रोजाना बिहार से हो रहा है तो ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं कि रोजगार का जो 1 करोड़ का टारगेट था उसको आप पूरा करें लोग जो बाहर काम कर रहे हैं पटना से या बिहार से बाहर वो वापस आए यहां पर।
2: एकदम रोहित जी एकदम सही समय है आ अब लौट चले बिहार वाला स्थिति इसलिए मैंने कहा कि बिहार में 2020 के चुनाव में हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी 10 लाख रोजगार देंगे जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो 2025 के चुनाव में जब हम जा रहे थे तो हम लोगों ने हिम्मत बढ़ गया जब देखा कि बिहार की सरकार ने लगभग 43 लाख लोगों को रोजगार दिया और लगभग 11.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। अब इस बार इसलिए हम लोगों ने टारगेट किया कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे और यह लगातार काम चल रहा है इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करा रही हम 25 चीनी मिल लगाने का टारगेट हम लोगों ने शुरू किया अभी तक 10 चीनी मिल बिहार में चालू हुआ नीतीश जी के नेतृत्व में अब हम लोगों ने टारगेट और लिया है अभी 5 चीनी मिल को जमीन उपलब्ध कराना शुरू किया अभी चाहे वो आपको रिहाम हो सकरी हो सासा मूसा का गोपालगंज हो अभी हम मोतिहारी में जमीन दे रहे हैं अगले ही कुछ दिनों में आप देखेंगे कि हम नवादा में लगभग 100 एकड़ जमीन दे रहे हैं।
4: सम्राट जी इसी पे छोटा सा कई शुगर मिल तो बंद भी पड़े हैं
2: वही उसी को टेक ओवर कर रहा हूँ
4: उसको टेक ओवर करके
2: जो
4: वापस
2: उस समय की तत्काल सरकार ने बेच दिया था कई चीजों को हम टेक ओवर कर रहे हैं। अशोक पेपर मिल बंद है उसको भी हमने कहा टेक ओवर करो और उसको टेक ओवर करके वहां एक बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करना। ये जो सकरी का जमीन मैं बोल रहा हूँ सकरी में भी पहले शुगर मिल ही था रिहाम में भी पहले चीनी मिल ही था सासा मूसा में भी पहले शुगर मिल ही था इन तमाम चीजों को फिर से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसको करके उसमें हम इंसेंटिव भी दे रहे हैं कि हमारे यहाँ रोजगार करने आइए हम इंसेंटिव भी देंगे और फैक्ट्री लगाकर बिहार के लोगों को किसानों को रोजगार मिल सके।
1: सम्राट जी मैं चूंकि मैं ये मान रही हूँ कि बाढ़ की स्थिति अभी जो है वो बहुत भयावह है उसी से जुड़ा एक सवाल रह गया था मेरा 10,000 करोड़ का ये जानकारी बाहर आई कि 10,000 करोड़ के नुकसान का अंदेशा आपने जब शिवराज सिंह चौहान यहां पर आए थे तो आपने इतना डैमेज की रिपोर्ट दी है इस पर अपडेट क्या है आपको सहायता और कब तक मिलेगी इन लोगों को पूजा देवी जैसे लोगों को क्योंकि एक मानवीय चेहरा होता है बाढ़ का जो हम आंकड़ों में भूल जाते हैं ऐसे घरों में पैसा राहत पहुंचे नाव पहुंचे किसी तरह से उन तक सामान पहुंचे ये कैसे सुनिश्चित होगा।
2: देखिए एक तो लगभग 50 लाख परिवार के बीच में हम लगातार हमारे सभी जनप्रतिनिधि से लेकर सरकारी कर्मचारी तक पहुंच रहे हैं लगभग 2 करोड़ लोगों को सिर्फ खाना हम लोगों ने खिलाने का काम किया रसोई कम्युनिटी हम लोगों ने किचन चलवाया उसके बाद इसका लगातार मॉनिटरिंग मैं स्वयं भी करते रहा मैं स्वयं भी जमीन पर जाते रहा और अभी हम लोगों ने लगभग 8.5 लाख परिवार सीधा उनके खाते में 7,000 रुपया देने का काम कर चुके अब हम पूरी तरह
1: परिवारों को
2: लगभग 8.5 लाख परिवार को ये मतलब हो गया लगभग 30 लाख से अधिक व्यक्ति आप जोड़ सकती है। हम उन परिवारों को आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं। अब इसको हम एक्सरसाइज करेंगे कि उनके खेत में क्या दिक्कत आई, तो हम बिहार में कृषि इनपुट भी देते हैं, हम अलग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी हम लोगों ने इसी साल जुलाई महीने में लॉन्च कर दिया है, उसके तहत भी मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय शिवराज जी को यहाँ भेजा गया कि आप एक बार वहां जाकर जमीन पर देख कर आए। उन्होंने स्वयं देखा कि केला का फसल, मकई का फसल कैसे डूब गया, बर्बाद हो गया, भागलपुर के इलाके में कहीं धान खराब हो गया, कहीं केला खराब हो गया, कई जगह वो स्वयं गए। तो उन्होंने स्वयं कहा कि जो घर गिर गए इनको तुरंत हम लोग सहयोग करेंगे, जिस इलाके में सड़क टूट गई इसके मरम्मती के लिए भी हम सहयोग करेंगे, और हम जो किसान के एक तरह से जो बीज है वो उपलब्ध कराएंगे, कि क्योंकि छोटे छोटे फसल हुए थे उसी पर पूरा पानी आ गया, डूब गया, तो वो नष्ट हो गया। हम बीज भी देने का काम भारत की सरकार करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने विशेष तौर पर उनको भेजा, पूरी समीक्षा हुई है, हम रिपोर्ट पूरी तरह डिटेल बनाकर अगले 15 दिनों में देंगे भी, क्योंकि अभी पूरा एक्सरसाइज हमने पूरा नहीं किया। ये प्रथम दृष्टिया हम लोगों ने एक एक्सरसाइज करके आग्रह किया है, लेकिन ये पूरा एक्सरसाइज करके हम लोग रिपोर्ट दुर्गा पूजा के पहले उनको देंगे।
4: सम्राट जी, मुझे तो कोसी बाढ़ याद आता है, जब पहली बार एक मुख्यमंत्री को मैंने जमीन पे देखा था, जब पूर्णिया वगैरह उत्तर बिहार के क्षेत्र में नीतीश जी गए थे। इस बार सरकार दिख तो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो त्रासदी मैं बचपन से देखती रही कि कभी स्कूल छोड़कर दूसरी जगह रहो क्योंकि बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, बाढ़ आ गई, वो आज भी न हो, नंबर वन। क्या जो हमारा फरक्का बराज का इशू है और हमारी संधि है जो दिसंबर में खत्म होने वाली है, उसको लेकर वहां से कोई समाधान आने वाले?
2: उसके दो उपाय हैं। इंटरनेशनल टीटी जो बांग्लादेश के साथ है उसमें है कि हमको 4 महीने ही पानी यूज करने का अधिकार है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जिस समय बिहार के पास पर्याप्त पानी होता है। इस समय पानी हमको मांगने की जरूरत गंगा मैया से नहीं है, हम तो उल्टा डिस्चार्ज करना चाहते हैं कि जल्दी से निकले। हम इंटरनेशनल टीटी में हमने यही आग्रह किया है विदेश मंत्री जी से, हमारा पक्ष सुना जाए, राज्य सरकार का पक्ष सुना जाए। राज्य सरकार के 3 मुद्दे हैं। एक, हमको पानी पीने के लिए कभी नहीं रोका जाए, साल के 12 महीने पानी पीने और खेत में पानी देने के लिए हमको कभी नहीं रोका जाए। आप एकदम बांग्लादेश को पानी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, पानी जाएगा ही, हम जाए, हमको कोई उससे रोक नहीं। हमको ये अधिकार रहे कि जब हम कष्ट में रहें तो हमको पानी पीने के लिए, जो हमारा साउथ बिहार का पूरा इलाका है, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, इधर सासाराम का इलाका, इस पानी को यूज करने का अधिकार, हमारे खेतों को जब जरूरत हो तब हम पानी ले सके, नहीं तो हम जिएंगे कैसे। और तीसरा, उद्योग लगाने के लिए टाइम आप फिक्स कर सकते कि इस समय पानी ले, क्योंकि बिहार में उद्योग नहीं लगेगा तो बाहर हम प्लान करने जाएंगे। आज दुनिया में सेमीकंडक्टर लग रहे हैं, हमारे यहां लगेगा, हमको सबसे पहले पानी चाहिए, और पानी जो सहायक नदियां हैं इसी से पानी आएगा। हमारे पास मात्र 350 क्यूमटेक पानी आपको उत्तर प्रदेश से आता है और हम डिस्चार्ज करते हैं 1500 क्यूमटेक पानी। आप सोचिए कि हम 5 गुना पानी छोड़ रहे हैं, ये पानी तो मेरा होना चाहिए, दुगुना ले लीजिए आप, तिगुना ले लीजिए, 2 गुना तो मेरे लिए छोड़ दीजिए, इस बिहार के लिए छोड़ दीजिए। दूसरी बात, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने फरक्का उठाया, फरक्का इस बार हम लोगों ने शिवेंदु अधिकारी जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को मैंने फोन किया। आप सोचिए कि 106 गेट में 97 गेट, मतलब इतिहास के पन्ने में पहली बार है कि जब नेपाल की त्रासदी हुई तो सारे गेट खोल दिए गए और सारा डिस्चार्ज पानी हमारा हुआ। आज भी फरक्का से हमें जो कष्ट है वो मैं बताता हूं। जब फरक्का में पानी रोके जाते हैं तो ऑटोमेटिक रिवर्स होता है पानी, और ये भागलपुर तक तेल तक हमारे पानी रिवर्स होते हैं और वहां गाद जमना शुरू हो जाता है। मैंने CWC के तमाम ऑफिसर्स को कहा कि आप हमको एक इंजीनियरिंग समझाइए जिससे कि हमको लॉस नहीं हो। इसलिए मैंने शुरू में आपको बताया कि कहीं 6 किलोमीटर का चौड़ाई है और कहीं 30 किलोमीटर का चौड़ाई है, इसलिए कि गाद जमते हैं तो पानी दोनों तरफ डाइवर्ट हो जाता। हमको गाद की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। हमने गाद नीति परसों पिछले कैबिनेट में मैंने पास किया और कहा है कि अब गंगा में, माँ गंगा या नॉर्थ बिहार के किसी भी नदी में कोई व्यक्ति अपने खेत से मिट्टी काटेगा, 1 मीटर क्यूबिक यदि आप खेत से मिट्टी काटेंगे और जमीन को बेचेंगे तो आपको 300 रुपया मिलेगा। मैंने कहा 10 रुपया में गंगा जी मैया का मिट्टी ले जाओ, 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी ले जाओ, तुमको हम 10 रुपया में देने का काम करें। इसलिए कि गंगा की सफाई करना हमारे लिए बड़ी चुनौती है, इसको भी हमने गाद नीति में लाया। इसलिए दो सब्जेक्ट है, फरक्का एक अलग सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल TT अलग है।
1: तो इंटरनेशनल TT आप चाहते हैं कि उस
2: दोनों में दोनों
1: संधि को रोका जाए?
2: नहीं, संधि को रोका मैंने रोकने नहीं कहा। मैंने कहा बांग्लादेश को पानी मिले लेकिन जितना पानी हमको मिलता है बक्सर में उसके दुगना तिगुना तक जाइए, 2 गुना तो मेरे लिए रहने दीजिए, 5 गुना हम पानी दे रहे हैं, हमको 1/3 हिस्सा दे दीजिए, बिहार के किसान का जीवन बदल जाएगा।
1: अगला सवाल आ रहा है, जो सबसे बड़ा चैलेंज अब दिखाई देता है बिहार में वो ये है कि आप निवेश कैसे लाएंगे, आप निवेश करने वालों निवेशकों का आप विश्वास कैसे वापस लाएंगे, जो लंबे वक्त तक खोया रहा सम्राट जी से इनकार करने में, मतलब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे राज्य हैं जो बड़ी तेजी से आगे बढ़े, आज सोचिए कि 80% मखाना यहाँ, 40% लीची यहाँ, लेकिन एक्सपोर्ट में बिहार का कितना योगदान है, 0.5% के आसपास। इसको आप कैसे परिवर्तित करेंगे? सम्राट चौधरी BJP का मुख्यमंत्री ऐसा क्या नया करेगा जिसकी वजह से निवेशक यहाँ पर आए, और अभी तक आप कितनों को लाने में?
2: देखिए, अभी तक मैंने पहले भी बोला कि आपको लगभग 1000 इंडस्ट्री को हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया, और इसके साथ साथ अभी तक इंटरनेशनल मार्केट हमारे पास नहीं थे, इंटरनेशनल विंडो नहीं था। अभी हम दरभंगा के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल मानक पर ले जा रहे हैं, हम पूर्णिया के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल मानक पर ले जा रहे हैं, पटना के एयरपोर्ट पर VGF देकर हम प्रमोट कर रहे हैं, हम गया जी के एयरपोर्ट को VGF देकर, क्योंकि हमारा छोटा रनवे होता था जिसके चलते उनको कुछ सीटें खाली रखना पड़ता था, इंडोनेशिया नहीं जा सकते, यहां से दुबई नहीं जा सकते, गल्फ नहीं जा सकते, तो हमने यहां पर एक मैकेनिज्म किया कि VGF देना शुरू किया। हमने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट यहां से उड़ाइए, हम दुनिया के मार्केट में जाना चाहते। आज मखाना आप देखिए 20 टन मैट्रिक टन जो है हमारे यहां से मखाना ऑस्ट्रेलिया जाना शुरू कर दिया यहां के डायपोर्ट से। हम इसी तरह के 12 टाउनशिप हम बना रहे हैं, हमने कहा है कि 12 टाउनशिप में हम डायपोर्ट बनाएंगे जिससे कि दुनिया के मानक के हिसाब से हम एक्सपोर्ट करने का रास्ता खोल पाए।
4: लक्ष्य इतना बड़ा है आपका, आपने टाइमलाइन दे दिया है 2029 30 पलायन रोकने के लिए।
2: देखिए, मैंने इसलिए कहा कि बिहार के लोग जो गरीब हैं, जब वन नेशन वन राशन कार्ड आया तो भारत में आप जैसे लोग भी यहां से पलायन किए हैं, लेकिन आप समृद्धि के ओर रास्ते की ओर गई।
4: मैं कह रहा हूं
2: आप बाहर गई तो आप हमारी प्रतीक हैं कि आप अच्छे करने गई, लेकिन जो मजदूरी करने गए हैं उनको हम चाहते हैं कि वो बिहार में रहें, मजदूरी करने बाहर हम लोग। वैसे 5 लाख लोग हैं पूरे भारत में जो बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं, क्योंकि जो राशन कार्ड है वो अनाज उठा रहे हैं दूसरे राज्य में, ये हमारा पैरामीटर है। और लगभग 7 लाख मजदूर हैं जो हमारे यहां लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब 12 लाख लोग, दोनों को जोड़ता हूं मैं, तो 12 लाख लोग बाहर हैं, हमको इसी को तो वापस लाना है। जो अच्छा करने गए अनिल अग्रवाल जी, वेदांता के मालिक है, तो उनको बुला के क्या करूंगा, वो आए इंडस्ट्री लगाए, आप अच्छी एंकर हैं, आप अच्छा दिल्ली में आज तक में कर रही हैं, तो मैं थोड़े चाहूंगा कि आप पटना आ जाए, आप वहां अच्छा करें, आप जो अच्छा करने गए हैं उनको वापस नहीं बुलाऊंगा।
1: अब आइए जड़ पर, क्यों जाना पड़ा मुख्यमंत्री जी, जहां टाइम पर डिग्री नहीं मिले, जहां पर नौकरी के अच्छे साधन नहीं मिले, तो आदमी जाता है, कोई खुश होकर थोड़ी अपना घर छोड़ के जाता है। एक आदमी मुझे मिला जो खुश होकर गया हो कि हम
2: नहीं, नहीं, एकदम छोड़ के जा रहे हैं। एकदम आप, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसे कहां दो मत है। पूरी तरह यदि हम लोगों ने सभी काम किए होते तो हम भी बॉम्बे की तरह राज करते होते, हम भी दिल्ली की तरह राज करते होते, चंडीगढ़ के तरह हमारा लेगेसी है सब चीजों में, आप जान के आपको आश्चर्य होगा, एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी था कंकड़बाग, एशिया का, आज हमारे पास लेगेसी नहीं है। इसलिए मैंने टाउनशिप की बात किया, 12 टाउनशिप और 12 ऐतिहासिक तौर पर, पटना का नाम पाटलिपुत्रा था, मैंने लगभग 80,000 एकड़ जमीन पर नया टाउनशिप बनाने के लिए कहा, और तीन फॉर्मूला में, कई किसानों को मैं देखता हूं चिंतित भी होते हैं हमारे खेत चले जाएंगे, 55% जमीन मैं वापस उनको डेवलप करके दे रहा हूं, देश में ऐसा कहीं नहीं है।
1: बड़ी कंपनियां कौन सी आई है निवेश करने?
2: नहीं, सब है, आप देख लीजिए, बेवरेज में इंडिया के सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट बिहार में लगा है, आप चले जाइए बेगूसराय, आप चले जाइए बक्सर, कई सीमेंट फैक्ट्री आए। देखिए धीरे धीरे मैं कह रहा हूं कि मेरा टारगेट ही नहीं था, बेसिक नीड ही हम पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन 2024-25 के बाद इन चीजों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, आगे इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस होकर कह रहा हूं कि 2030 तक बिहारी मजदूरी कर

0: आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हूं, एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर कह सकते।
1: सम्राट जी एक चीज ये बताइए, आरोप ये लगता है कि सरकार के पास वित्तीय संकट है, पैसे नहीं है, तो ऐसे में चर्चा होती है कि शराबबंदी को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता है, क्योंकि खत्म अगर कर देंगे तो 30-40 हजार करोड़ का आपको रेवेन्यू सालाना मिलना शुरू हो जाएगा।
2: 100% लागू भी नहीं कर पाते सर, कहीं पर नकली शराब, कहीं पर नकली शराब
0: अंजना जी,
3: और कहीं तस्करी।
0: श्वेता जी मैं दो चीज बता देता हूँ,
2: शराब ऑन फोन,
0: शराब बंदी हर हालत में बंद रहेगा, पहला, इसमें कहीं दो मत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन दो चीजें जरूर मैं बताता हूं। बिहार की महिलाओं के आग्रह पर यह डिसीजन हुआ है, 2025 में भी मैंने इसका मैंडेट कराया, लगभग 1.5 लाख जगह पर महिला समूह से हम लोगों ने बात कराया, ऑन रिकॉर्ड हमारी महिलाओं ने कहा शराबबंदी बिहार के लिए ऐतिहासिक फैसला,
3: पर कड़ाई से लागू तो करवा दीजिए सम्राट जी।
0: मैं मेरा ये मानना है शराबबंदी जारी रहेगा, कार्रवाई जारी रहेगी, और बिहार के रेवेन्यू के चक्कर में हम महिलाओं के अस्मिता के साथ नहीं खेल सकते।
2: तो रेवेन्यू कहाँ से होगा, आखिरी सवाल है, रेवेन्यू का जेनरेशन का आपका मॉडल क्या है? 125 यूनिट फ्री बिजली आप इतने परिवारों को दे रहे हैं, आपने 10-10 हजार रुपया उस वक्त महिलाओं को दिया, और अब आप 2-2 लाख का वादा है जो आपको देना है इतनी महिलाओं, कितनों को दे दिया?
0: 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ दूंगा, 1 करोड़, आप लिख के जाइए, 1 करोड़ महिला 2030 तक बिहार में लखपति होंगी, 1 करोड़ महिला।
2: आपका मैं संकल्प पत्र लेकर आई हूँ, आपका संकल्प पत्र जो है इसमें सबसे पहला वाला ही पढ़ के आपको सुनाते हैं, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी।
0: मैं तो 1 करोड़ महिला बोल दिया, 1 करोड़ महिला बोल दिया, युवा तो अलग है, 1 करोड़ सिर्फ महिला होगी जिसको लखपति बनाएंगे।
2: सर हिसाब लगाइए, प्रतिदिन आपको कितनी नौकरी देनी है, 365 × 5
0: महीने
2: 1 करोड़।
0: अंजना जी गणित आप जोड़ते रहिए, मेरा काम है बिहार की जनता के लिए काम करना, मेरा स्पष्ट मानना है कि आज लगभग नीतीश जी ने बहुत तेजी से काम किया, 43 लाख महिलाएं लखपति है, और ये टारगेट है हमारा। अभी हम लोगों ने पशु दीदी के तौर पर भी, पशु सखी के तौर पर दीदी को जोड़ना शुरू किया, हम दूध उत्पादन में बढ़ रहे, हम उनको अभी जितने पहले सभी के अकाउंट में पैसा जाता था कि हमारे जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति के तौर पर, उनको पोशाक के लिए पैसा जाता, हमने कहा नहीं जीविका दीदी को दीजिए, ये रोजगार का कंसेप्ट है। हम यहाँ पर टेक्सटाइल हब भी बनाएंगे और उस कपड़े को जीविका दीदी के माध्यम से ड्रेस भी सिलाई करके हम सीधे स्टूडेंट को देने का काम।
2: मुख्यमंत्री जी मेरा सवाल ये तो था ही नहीं कि आप क्या तो क्या करेंगे, मैं कह रही हूँ इसका रेवेन्यू, इसका पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि 1 करोड़ नौकरियों की बात है, उसके बाद से 2 लाख तक की सहायता जो सुना बाबू जरा एक सुनिए तो भाई, आपने लिख के दिया है, लिखित है, कोई हम बना के थोड़ी बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये है, अब उसके बाद से 2 लाख तक की सहायता आप देंगे, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, किसान सम्मान निधि में शुरुआत करके किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 कुल 9,000 देंगे, 1 लाख करोड़ का निवेश व पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों पर,
0: जितने चीज लीक के दिए हैं वो जनता को जवाब देना है, इसमें कहीं दो मत नहीं। मैंने स्पष्ट कहा, अब बिजली में भी मैं आता हूँ, बिजली कैसे मैं इसको ठीक करूंगा, बिजली में अभी हम लोगों ने पूरा एक सिस्टम बनाया है, अभी 23,000 करोड़ रुपया हम सीधे सब्सिडी में देते हैं, और आज हम सीधा थर्मल पावर से बिजली देने का काम करते हैं। अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है, लगभग सिर्फ कृषि फीडर को यदि हम सोलर युक्त कर दें तो 5,000 करोड़ रुपये का बेनिफिट हमको अगले 1 साल में होगा, मतलब ये प्रत्येक साल हमको देना है, ये 5 साल हम बचाएंगे। दूसरा, इंडिविजुअल हाउसेस पर पीएम सूर्यघर योजना के तहत लगभग 5 लाख घरों को पीएम सूर्यघर योजना के तहत, और लगभग हम लोन लेकर इसलिए लोन लेंगे कि हमको पैसा बचेगा, हम

0: अगले 31 दिसंबर 2027 तक 25 लाख घरों पर सोलर युक्त बिजली देंगे और सोलर युक्त बिजली देंगे 125 यूनिट तक उसका मुफ्त रहेगा और 126वां यूनिट जैसे आएगा उसके अकाउंट में पैसा जाना शुरू कर देगा। हम धीरे धीरे अपने खर्चे को कंट्रोल भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बढ़ रहे हैं, हम एक तरह से हम वहां से लगभग 10,000 करोड़ रुपया का भार धीरे धीरे घटाना भी शुरू करेंगे, क्योंकि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है इसमें इंडस्ट्री नहीं है तो इंडस्ट्री को फोकस किया है, इंडस्ट्री के साथ साथ अब हम अपने खर्चे को भी लिमिट में लाएंगे।
1: स्कूलों का भवन बन जाएगा जो कहीं मंदिर में कहीं खटाल में चल रहा है, जहां जर्जर है
0: रोहित जी ने, रोहित जी ने एक न्यूज चलाया था, मैंने तुरंत उसको ऑपरेट भी किया, पता चला कि टीचर का घर था उस गांव में, वो जाकर अपने घर के पास चला रहा था और स्कूल कहीं और था, मैंने तुरंत उस शिक्षक पर सस्पेंड भी किया, वैसे डीओ पे भी कार्रवाई किया और कहा कि स्कूल में पढ़ाई होती, और मैंने एक योजना चलाया है सेवा संकल्प और कायाकल्प। अभी आप देखिएगा दीपावली तक हम लोगों ने टारगेट दिया है, वैसे ये अभियान 30 नवंबर तक चलेगा, लेकिन अभी मैंने सब पदाधिकारी से आग्रह किया कि गांव में स्कूल है, क्योंकि मैं अनुभव से ये कह रहा हूं, मेरे पास सहयोग कार्यक्रम में कई लोगों ने आवेदन दिए हैं कि मेरे स्कूल के बाथरूम में छिटकिनी नहीं है, किसी ने कहा गेट नहीं है, किसी ने कहा कि बाउंड्री टूटा हुआ, तो मैंने कहा अभी लगभग 20,000 करोड़ रुपया अगले 2 वर्षों में हम खर्चा करेंगे विकसित भारत जी राम जी में और 16 फाइनेंस के पैसा में लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। हमने कहा कि उनसे विशेष तौर पर यह अभियान चलाएंगे, हम स्कूल को पूरी तरह व्यवस्थित करेंगे, स्कूल के बाथरूम को ठीक करेंगे, उनके रंगाई पोताई करेंगे, गांव में सामुदायिक भवन की जरूरत है उसको करेंगे।
1: कितना दिन?
0: एकदम, हमने कहा 30 नवंबर ये टारगेट दिया है पहला,
1: अच्छा,
0: और 31 मार्च तक मैंने दिया है जहां नया कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन जहां नया होगा वहां 3 महीना 4 महीना चाहिए, जो टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए कहीं पर गेट लगाना है, कहीं बाउंड्री ठीक करना है, रंगाई पुताई करना है, इसको 30 नवंबर तक।
2: सम्राट जी,
3: हाँ, 30 नवंबर के बाद फिर रोहित जाकर एक बार फिर पूरा फैक्ट चेक करेंगे।
0: इसीलिए रोहित जी को कोट किया, मैंने तुरंत इनको ऑर्डर भी भेजा, पूछ लीजिए,
2: नहीं नहीं,
0: मैंने इनको कहा कि आपने जो रिपोर्ट चलाया उसके आधार पर, मैंने इनको, मेरा भाई है।
1: लेकिन सम्राट जी एक स्टोरी, वो मैंने भी एक स्टोरी की थी, उस पर एक्शन सरकार की तरफ से किया गया है, 62 से मंदिर में स्कूल चल रहा था,
0: वो भी मैंने एक्शन किया,
1: आपने एक्शन किया है,
0: तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, आप देखिए आप स्वतंत्र प्रहरी है,
1: पर अब हम
0: आपका
1: उसको
0: काम ही है,
1: करेंगे
0: आप जितना करेंगे उतना अच्छा होगा हमारा, उतना भला होगा मेरा।
2: अच्छा, एक सवाल मैं लाद, मेरे तरफ से आखिरी सवाल है,
0: जो काम विरोधी नहीं कर पा रहा है वो आप कीजिएगा तो अच्छा लगेगा ना।
2: चलिए, एक सवाल मेरा आखिरी मेरे तरफ से सम्राट जी, क्योंकि आप पर कहा जाता है कि भाई आप इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सीएम है, तो 2030 तक तो आप बने रहेंगे ना मुख्यमंत्री, कोई
0: देखिए 1952 के बाद एक आदमी इलेक्टेड सीएम बता दीजिए, नाम बोलिए जो इलेक्टेड हो, एक नाम बताइए, सब सिलेक्टेड होते हैं पहला। और जिस भाई ने कहा उनको पूछिए, उनके पिताजी एक दलित रामसुंदर दास जी दलित समाज से आते, हाजीपुर के रहने वाले थी, श्वेता जी उसी इलाके से, आप पूछिए दलित समाज का हिस्सा रोक कर लालू जी मुख्यमंत्री बन गए, पूरे राष्ट्रीय जनता दल में कौन जानता है कि राबड़ी देवी कहां से मुख्यमंत्री हो गए, बता दीजिए 2005 का एक घोषणा बता दीजिए जिसमें यह कहा गया हो कि लालू जी या लालू जी की पत्नी को छोड़कर उनका बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। ये देखिए पार्टी का निर्णय होता है, हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं और हमारे एनडीए के यहां सम्मान नेता नीतीश कुमार है। सबने तय किया, 202 विधायकों ने समर्थन दिया, गवर्नर साहब ने हमको वोट कराया।
2: 2030 तक कोई बदलाव तो नहीं होगा?
0: नहीं, ये तो पार्टी को तय करना, मैं तो छोटा आदमी हूं, मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, कहां आप इसमें फैसला मैं नहीं कर सकता। मेरे को जो जिम्मेदारी मिली है, आप देखिए, मैं विरोधी दल का नेता रहा, पार्टी का अध्यक्ष रहा, पार्टी ने दो दो बार उप मुख्यमंत्री बनाया, 50 साल के बाद मैं गृह मंत्री बना, भाजपा ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, इससे बड़ा गौरव मेरे लिए क्या हो सकता है। पूरे एनडीए ने मुख्यमंत्री मेरे को बनाया।
4: सम्राट जी, मेरे दो सवाल है एक्चुअली। एक तो ये कि आपने श्वेता का जिक्र किया कि वो दिल्ली गई और बड़े चैनल में काम करे, उसी तरीके से नीतीश जी भी बड़े सदन में गए, तो आप तो चाहते नहीं है कि वो सारे लोग वापस आ जाए जिस तरीके से ये है?
0: नहीं नहीं, नीतीश जी, नीतीश जी बड़े नेता, नीतीश जी ने स्वयं छोड़ा सत्ता,
4: वही बात,
0: तो वो उन्होंने सत्ता छोड़ा, हमने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमें मुख्यमंत्री बनाया था, आप देख लीजिए उनके वीडियो निकाल कर, मैं तो उनके मंचों पर साथ रहा, वो बार बार कहते थे कि अटल जी ने हमें जो मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि इसलिए वो कहते थे कि जब उनके पास 32 विधायक थे और 70 विधायक बीजेपी के पास था, तब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, वो कहते थे कि हमको बनाया था, मैंने इनको बनाया।
4: दो सवाल मेरे ये है जो अंजना बार बार आपसे पूछ रही थी कि रेवेन्यू कहां से आएगा, पैसे कहां से आएंगे, तो बाढ़ को लेकर भी और पैसे को लेकर भी, क्या कोई स्पेशल असिस्टेंस की मांग आप केंद्र से करेंगे? क्योंकि विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि बाढ़ को लेकर राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की जाए, क्या उसकी मांग? एक तो आप
0: देखिए, लगातार प्रधानमंत्री जी के तरफ से पैकेज भी मिलता रहा, 1,65,000 करोड़ रुपया हमको 2015 में मिला, आज भी 2024 के भी बजट में हमको लगभग 65,000 करोड़ रुपया मिला, आज भी लगभग 2025 के बजट में भी हमको लगभग 13,500 अलग से मिला, और आज कई एक्सप्रेसवे हमको ये तय किया गया है जिसमें लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार देगी।
4: बाढ़ के लिए अलग से मांगे गया?
0: बाढ़ के लिए हमको 13,500 करोड़ रुपया मिला, कोसी मेची लिंक के लिए 11,500 करोड़ रुपया मिला, सिर्फ कोसी मेची लिंक के लिए, और इसके साथ साथ बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने का काम हम लोगों ने पूरा किया। अभी हमने आग्रह किया है कि अभी हम फल्गु नदी, जो माँ सीता का लोग कहते हैं कि शराब था और वो नदी सूख जाती है, हम सोन नदी, अभी जो आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ समझौता हुआ बिहार और झारखंड का, उस पानी को फल्गु नदी में लाने का काम, इसके लिए 1,000 करोड़ रुपया हमने भारत सरकार से
3: मांगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम अंत करते हैं इंटरव्यू का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, चुनौतियां बहुत सारी हैं, बिहार के एक बड़े हिस्से में बाढ़ है, स्कूलों की जो व्यवस्था है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, छात्रों का कई जगहों पर आंदोलन हो रहा है, आपके पास गठबंधन का भी चैलेंज है, यूसीसी की भी तलवार लटकी हुई है, आपको ऐसे में
0: सबको सबको मिलाकर साथ ले जाकर इस बिहार को समृद्ध बनाना है। प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत, बिहार का सपना है समृद्ध बिहार बनाना, इस काम को आगे।
4: सर, आखिर में एक आपसे, 35 साल से बिहार में जब भी बात होती है तो हमें जोड़ी की याद आती है, लालू नीतीश या नीतीश लालू, अब तो सम्राट चौधरी आ गए, तो सम्राट की जोड़ी ऐसी कोई
0: नहीं? नहीं, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, भाजपा ने सबको सहयोग किया, लालू जी पहले बार जब मुख्यमंत्री बने तो लालू जी के कृपा से बने, लालू जी ने को मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, संघ कार्यालय में सबसे पहले जाके उन्होंने समर्थन मांगा था, नीतीश जी को भी सहयोग किया, नीतीश जी ने पूरे बिहार को बदला, आज नीतीश जी के साथ इसी के लिए गठबंधन है और हम लोग नीतीश जी के साथ खड़े हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट चौधरी जी, हमारे साथ मंच पर आकर हर एक सवाल का जवाब आपने दिया है, लेकिन हम फॉलो अप करते रहेंगे कि कितना हुआ। धन्यवाद,
3: तालियों के साथ थोड़ा अभिनंदन कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुख्यमंत्री।
5: बड़ी खबर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पंचायत आज तक बिहार में यूसीसी पर बोले हैं, सभी दलों से राय मशवरा करके हम चर्चा करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। गठबंधन के सभी साथियों के साथ बातचीत होगी क्योंकि चिराग पासवान और जेडीयू दोनों ने सवाल उठा दिया था, अब जवाब दिया है पंचायत आज तक बिहार के मंच पर सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी हमारे सहयोगियों से बातचीत करने के बाद हम यूसीसी पर चर्चा करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बिस्किट खाने।
1: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
2: आगे आगे,
3: अरे उधर
2: उधर किधर,
3: करेक्ट करेक्ट,
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
4: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
5: Papa.
6: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
6: छक्का
5: सब कैशलेस हो गया
6: है हां ओ ला भाई मेरा बैट वो अभी तो ठीक हुआ तू
7: ओ अभी तो चार्ज हुआ यार
8: ओ बैट किसका है
9: टाटा AIG है तो भरोसा है
10: ओए जाके दे घड़ी की
11: पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है
10: और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है तूने यहां गाड़ी कैसे खड़ी कर दी
11: क्या
12: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स इतना बटरी कि दिल पिघल जाए
10: कहीं भागी यार कहीं भी लगा ले
13: और भाई कहाँ गए थे घूमने
14: जीके मैक्स
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
16: जेके वॉल मैक्स
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको आईफोन के लिए लगी लंबी लाइनें दिखाएंगे। लोग रात से ही लाइनों में आकर खड़े हो गए हैं। दिल्ली, मुंबई, नोएडा, बेंगलुरु, हर जगह एप्पल स्टोर के बाहर का नजारा देखकर लग रहा है फोन नहीं अमृत बट रहा हो। 17 प्रो मैक्स जेब में है, फिर भी 18 प्रो मैक्स के लिए रात 10 बजे से ही इंतजार करने लगे। दीवानगी का आलम तो देखिए, कोई नासिक से मुंबई भाग रहा है तो कोई पंजाब से गाड़ियां दौड़ाते हुए नोएडा पहुंचा है। किसी के लिए ये रक्षाबंधन और दिवाली से भी बड़ा त्योहार है तो कोई अपनी पत्नी को आईफोन दिलाने के लिए घर का सोना तक बेच आया है।

0: एक्चुअली निकला हूँ सूरत से, समझो रात को 10 बजे के करीब मैं पहुँचा हूँ यहाँ, 2-3 बजे।
1: मैं पंजाब से आऊँ, सुबह 6 बजे से लाइन लगा हूँ।
2: मैं नासिक से आया हूँ और रात को 10-10:30 बजे से हम लाइन में खड़े हुए हैं।
3: गोल्ड पहले से ही काफी है दादी परदादियों का, वो बेच के लेने आए।
4: अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई। दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से बढ़ाकर 7% रहने का अनुमान जताया है। लेकिन इस रफ्तार के बीच मूडीज ने बड़ी चेतावनी जारी की है। एजेंसी का मानना है कि खाद्य पदार्थों की जो कीमतें बढ़ रही हैं और जो महंगाई है वो अर्थव्यवस्था का स्वाद बिगाड़ सकती है। अगर मानसून का असर या ग्लोबल तनाव बढ़ा तो आम आदमी की जेब पर दबाव और गहराएगा। पेट्रोल 391 रुपए पार, रात 9 बजते ही बाजारों में सन्नाटा और शादियों की प्लेट से कई डिश गायब। ये ताजा तस्वीर पाकिस्तान की जो हम आपको दिखाएंगे। एक तरफ सऊदी अरब जैसा दोस्त, दूसरी तरफ ईरान से लगती सीमा, फिर भी पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तेल को तरस रहा है। ऊर्जा संकट इतना गहरा गया है कि शाहबाज सरकार को बाजारों को 9 बजे, शादियों को 10 बजे समेटने का फरमान जारी किया गया है। आज आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान इतना फटेहाल क्यों हुआ। चौथी स्टोरी, इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या मिडिल ईस्ट के रण में महाशक्ति का गेम प्लान पूरी तरह बदल चुका है। क्या खाड़ी देशों में अब अमेरिका की जगह चाइना लेने जा रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब येमेन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी में हमले तेज किए तो सऊदी अरब को अमेरिका नहीं बल्कि चाइना का सहारा मिला है। चाइना ने बिना देर किए ईरान से कहा कि हूती विद्रोहियों पर लगाम लगाओ। जिस अमेरिका ने सऊदी अरब की सुरक्षा का ठेका लिया था वहां अब चाइना मददगार बन रहा है। क्या अमेरिका का ये मजबूत किला अब ड्रैगन के पाले में जा रहा है, देखिए। पांचवी खबर, खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले निठारी कांड में आरोपी रहे सुरेंद्र कोहली ने आत्महत्या कर ली है। सुरेंद्र कोहली निठारी मामले में 19 साल जेल में रहा, हालांकि बाद में उसे सभी मामलों में बरी किया गया। सवाल ये कि आखिर सालों जेल में काटने, अदालत से राहत मिलने के बाद सुरेंद्र कोहली ने यह कदम क्यों उठाया। अगली खबर, पश्चिम बंगाल की, जहां नंदीग्राम में उपचुनाव के मतदान से पहले ही बड़ा खेला हो गया। पहले अगर आप देखिए तो चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के असली नाम और सिंबल को फ्रीज कर दिया है। ममता गुट और बागी गुट दोनों को अलग अलग नाम और सिंबल थमा दिया है। इस फैसले पर भड़की ममता बैनर्जी ने इसे लोकतंत्र का काला दिन करार दिया। वहीं राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा, पहले शिवसेना फिर एनसीपी अब टीएमसी, और उसके बाद ऐसा खेला हुआ कि सारी बाजी ही पलट गई। नंदीग्राम से ममता गुट की प्रत्याशी संचिता प्रधान डे ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद अचानक अपना नाम वापस ले लिया है। साथ ही खबर लखनऊ की, जहां स्पेशल एनआईए कोर्ट ने भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ कराने वाले म्यांमार के 4 नागरिकों को 7 साल की सजा सुना दी है। यूपी एटीएस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि सिंडिकेट बांग्लादेश सीमा के जरिए रोहिंग्याओं को भारत लाता था, फिर फर्जी दस्तावेज, उनके भारतीय पहचान पत्र बनवाता था और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे खतरनाक नेटवर्क को चला रहा था। घुसपैठ कराने वालों और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क के लिए अदालत का यह फैसला कड़ा संदेश है। अगली खबर, सड़कों पर हिट एंड रन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक पर बैठा 21 साल का लड़का घायल हो गया। इस कार को 73 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति चला रहे थे जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। क्या महिलाएं सिलेंडर नहीं उठा सकती, ऐसी सोच और दलील के साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 38 साल पहले एक महिला को नौकरी देने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोच पर प्रहार किया है और इस सोच को तोड़ते हुए सख्त लहजे में पूछा कि क्या महिलाएं अपने घर में सिलेंडर नहीं उठाती। इसके साथ ही कोर्ट ने महिला को 12 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। ये महिलाओं को कमतर आंकने वाली उस सोच पर सबसे गहरा प्रहार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इंसाफ मिलने में 38 साल क्यों लग गए। और अगली खबर, हनुमान अंश की सफलता के बीच अब बाबा नीप करौली बाबा के भक्तों के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। पर्यटन विभाग ने फिरोजाबाद में नीप करौली बाबा कॉरिडोर की तैयारी तेज कर दी है और इस कॉरिडोर के लिए 5 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। बाबा की जन्मस्थली को संवारने पर 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

0: लेकिन आज खबरों की शुरुआत हम इन दो तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। तो देखिए ये दो तस्वीरें, इनमें पहली तस्वीर जो है वो साल 2010 की है जब एप्पल कंपनी ने अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज का आईफोन 4 लॉन्च किया था। इसे खरीदने के लिए टोक्यो में एप्पल स्टोर के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन लगी थी। इनमें भी कई लोग तो ऐसे थे जो एक एक हफ्ते तक अपने घर नहीं गए थे। बाद में इन तमाम लोगों का तालियां बजाकर स्वागत किया गया था। और यह बात सिर्फ जापान की नहीं है, साल 2010 से लेकर 2016 तक यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये तमाम देशों के लोग नए आईफोन के लिए एप्पल स्टोर के बाहर तीन तीन दिन पहले टेंट लगाकर बैठ जाते थे। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि उस दौर में अगर आप देखिए तो आईफोन के मॉडल सीमित होते थे और हर देश में एक साथ लॉन्च नहीं होते थे, और इसी वजह से सप्लाई कम होता था। सप्लाई कम होने के कारण जो पहले लाइन में लगता था उसे ही फोन मिलता था, तो सब डटे रहते थे। लेकिन बाद में यह व्यवस्था बदली, लोगों को नए आईफोन की प्री ऑर्डर सुविधा मिलने लगी, और इस सुविधा के बाद यूरोप हो, जापान हो, ऐसे देशों ने कई जो नई आईफोन सीरीज है उसका फोन खरीदने के लिए लोगों की लाइनें लगाना बंद कर दी, पहले से प्री ऑर्डर लोग करने लगे। जबकि भारत में इसका उल्टा हुआ है। तो देखिए आज आईफोन की जो नई फ्लैगशिप सीरीज है उसका ग्लोबल लॉन्च एक साथ होता है और इसके लिए प्री ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध होती है, लेकिन इसके बावजूद भारत में हर साल आईफोन के लिए लोग सब कुछ भूलकर लाइनों में क्यों लगते हैं, ये कतार हमारे देश के लोगों के बारे में क्या बताती है और क्या इसके पीछे सोशल मीडिया और कंटेंट भी एक वजह हो सकती है, इसके लिए आपको आज हमारी ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए।
1: टोक्यो की ये तस्वीरें 16 साल पुरानी है जब एप्पल की नई फ्लैगशिप सीरीज का आईफोन 4 लॉन्च हुआ था। उस वक्त भी एप्पल के बाहर लोगों की लंबी कतारें थी और लोग तीन तीन दिनों से अपने घर नहीं गए थे। लेकिन अब आप इसी जगह भारत की आज की इन तस्वीरों को देखिए। 16 साल पहले जापान, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो हो रहा था वही आज भारत में हो रहा है। बस फर्क इतना है कि अब विदेशों में पहले दिन पहला आईफोन खरीदने का उत्साह और जुनून कम हो गया है, जबकि भारत में अब भी ये अपने चरम पर है। आज से 10-15 साल पहले जब विदेशों में एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने के लिए लंबी कतारें लगती थी, तब इसका बड़ा कारण ये होता था कि उस वक्त आईफोन के नए मॉडल सीमित होते थे और इन्हें हर देश में एक साथ लॉन्च नहीं किया जाता था। इससे सप्लाई कम होने के कारण जो पहले लाइन में लगता था उसे ही फोन मिलता था। लेकिन आज ये व्यवस्था बदल चुकी है और अब ऑनलाइन प्री ऑर्डर की सुविधा और पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद भारत में दिखने वाली इस भीड़ और लोगों के जुनून के पीछे कई गहरे आर्थिक और सामाजिक पहलू समझ आते हैं, और अभी पूरा देश इन्हीं के बारे में बात कर रहा है।
2: पूरे देश में आईफोन का फीवर चढ़ गया है और मैं फिलहाल मुंबई के BKC आईफोन स्टोर में हूं, जहां पर आपको आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स यहां पर डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दे कि आईफोन का फीवर आईफोन लवर्स में इतना है कि कल रात से ही लंबी कतारें लगाकर वो यहां पर आईफोन खरीदने आए हैं।
1: आईफोन 18 के लिए ये भीड़ सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं थी, देश की राजधानी दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में एप्पल स्टोर के बाहर लोग रात 10 बजे से ही कतारों में लग गए थे और सुबह होते होते ये लाइन मॉल के बाहर तक पहुंच गई।
3: हर साल मैं 17 प्रो जैसे मैंने पिछली बार भी लिया था, तो इस बार मैं 18 प्रो मैक्स लेने आया हूँ 2TB। उसके लिए भाई काफी लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ भाई क्या इम्प्रूव कराए, जो 40,000 रुपए बढ़ाए हैं तो किस चीज में बढ़ाए हैं। तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ कवर लगा के दे देंगे, कुछ मुझे चाहिए, कैमरे भी इम्प्रूव चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए।
4: 18 प्रो लेने आए हैं जी, बिल्कुल आधी रात को आए हैं, अभी आए हैं, आकर सीट खाली मिल गई, बैठ गए जी।
5: रात भर से खड़े हैं, बहुत एक्साइटेड है, और हमारे पास बारकोड नहीं है फिर भी हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं।
6: रात को 10-10:30 बजे से हम लाइन में खड़े हुए हैं, प्री बुकिंग किया हुआ है और 8 बजे का पहला स्लॉट मिला हुआ है और इसके बाद हमको भी डिलीवरी मिलेगी थोड़ी।
1: इसी तरह की तस्वीरें मुंबई से भी आई, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ रात भर फुटपाथ पर सोई रही और कुछ जगहों पर लाइन तोड़ने के लिए लोगों में धक्का मुक्की और बहस भी देखी गई, जिसे शांत कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ा। मुंबई की तरह दिल्ली के पास नोएडा में भी एप्पल स्टोर के बाहर सुबह 6 बजे से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई और इनमें भी कई युवा ये कह रहे थे कि वो दूसरे राज्यों से आईफोन खरीदने के लिए नोएडा के इस एप्पल स्टोर में आए।
7: मैं मदुरई से आया हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने प्री बुकिंग किया था, अभी सुबह मैं 7 बजे लाइन में लग गया था, अभी मेरे को फाइनली मिल गया है।
8: हम मैसूर से हैं सर। हाँ, हमारे टोटल 12 फोन है, 12 फोन है, सारे दोस्त आए हैं उनके साथ।
9: 12 फोन?
8: हाँ, 12 फोन खरीदे, पूरे फ्रेंड्स से भी साथ है।
10: मैं एक्चुअली रात में 2 बजे आया था, मैं अहमदाबाद से आया हूँ, मेरी फ्लाइट 2 बजे आई थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे सुबह से मैं वेट ही कर रहा था, तो अभी मेरे को फाइनली मिल चुका है ये।
1: पहले के जमाने में राशन, सिलेंडर और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों की लाइनें लगती थी, लेकिन आज के नए जमाने में नए फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स के लिए भी लाइनें लगती हैं और लोग इन्हें भी अपने जीवन में जरूरी मानते हैं। और सबसे बड़ी चीज, भारत में ज्यादातर लोग लेटेस्ट आईफोन अपने शौक के लिए भी खरीदते हैं।
2: फोन लवर्स में इतना जुनून क्या है, क्योंकि इतने महंगे फोन है कि मीम्स हम लोग देख रहे हैं कि लोग किडनी बेचना पड़ता है अगर आईफोन खरीदना है। आप क्या कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं इस बार?
11: मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सेविंग करता हूँ उसके लिए। मैं आईफोन 3GS जब आया था तब से मैं यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने कोई फोन यूज नहीं किया है। मैं हर साल 2-2 मॉडल स्किप करके उसके आगे आता हूँ। मैं
2: कौन सा मोबाइल लेने की सोच
12: रहा हूँ? 18 Pro Max बुक किया हूँ मैंने, 1TB बरगंडी कलर।
2: कितना?
12: 1TB।
2: प्राइस कितना
12: है? 2.5 लाख के आसपास है।
2: 2.5 लाख में एक बढ़िया बाइक आ सकती है, अच्छे वेकेशन पर भी जा सकते हो।
12: शौक शौक की बात है, जब शौक रखेंगे आदमी तो कुछ भी कर सकता है।
1: जब ज्यादातर लोगों ने सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए आईफोन 18 प्रो या आईफोन 18 प्रो मैक्स खरीदा, तब ये देखना भी जरूरी है कि भारत में ये फोन एक छोटी गाड़ी की कीमत के बराबर है। आईफोन 18 प्रो की कीमत 1,64,900 से लेकर 3,14,900 रुपए तक है, जबकि आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत 1,79,900 से लेकर 3,29,900 रुपए तक है। यह कीमत भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में थोड़ी चुभती है। भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, जिसका मतलब ये होता है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति आईफोन 18 प्रो खरीदता है तो इसके लिए उसे अपनी 7 महीने 22 दिनों की तनख्वाह खर्च करनी होगी। ये भी तब होगा जब वो व्यक्ति अपनी तनख्वाह को किसी और चीज पर खर्च न करे, जबकि दूसरे देशों में कहानी अलग है। अमेरिका के लोग सिर्फ अपनी 7 दिन की तनख्वाह से आईफोन 18 प्रो खरीद सकते हैं, फ्रांस के लोग 12 दिनों की तनख्वाह से, ब्रिटेन के लोग 11 दिनों की, जापान के लोग 17 दिनों की और ऑस्ट्रेलिया के लोग सिर्फ 10 दिनों की सैलरी से आईफोन 18 प्रो खरीद सकते हैं। ये आंकड़े हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि लोग इस बात को समझें कि भारत में आईफोन के शौक की कीमत क्या है और दूसरे देशों में आईफोन का शौक कितना कीमती है। इस बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इस व्यक्ति को सुनिए जिसने अपने घर का सोना बेचकर अपनी पत्नी के लिए नया आईफोन खरीदा।
13: शुरुआत करिए।
14: अरे जो गोल्ड वगैरह है उसके प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो गोल्ड खरीदने की नहीं सोची?
13: नहीं नहीं नहीं, गोल्ड पहले से ही काफी है, दादी परदादियों का, वो बेच के लेने आए।
14: सर आप कौन सा फोन खरीदने आए?
13: प्रो मैक्स 18 प्रो मैक्स।
1: आपको यकीन नहीं होगा कि किसी भी शहर में हमें ऐसे लोग बहुत कम मिले जो टेक्नोलॉजी, फीचर्स या कैमरे की क्वालिटी की वजह से आईफोन खरीदने आए हों। ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि ये उनका शौक है और वो शौक के लिए पहले दिन पहला आईफोन 18 खरीदने आए हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज एप्पल स्टोर्स के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ आईफोन के लिए आई थी या वो कंटेंट के लिए आई थी? यानी लोग सिर्फ इसलिए लाइन में खड़े होते हैं क्योंकि सब खड़े हैं, या वो इसलिए लाइन में खड़े थे क्योंकि उन्हें नए आईफोन के फीचर्स पसंद हैं?
15: काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा कोई फॉरेन ट्रिप कर सकते थे, जापान जा सकते थे।
16: ये तो बेवकूफी है, ये बेवकूफी है। आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ में, फॉरेन ट्रिप अलग ट्रिप और ये शौक है, शौक की कोई कीमत नहीं होती भाई।
1: किसी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि लोग आईफोन खरीदने क्यों आए, ये सवाल हम भी नहीं पूछ रहे। हमारा मकसद सिर्फ इस भीड़ को और उसके जुनून के पीछे की वजहों को समझना है, और ये वजह कहीं ना कहीं बताती है कि बहुत सारे लोगों ने आज आईफोन मुख्य रूप से 3 वजहों से खरीदा। पहली वजह, इसे स्टेटस सिंबल से जोड़ना। दूसरी वजह, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक बहुत बड़ा हिस्सा कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का था, जिनके लिए लाइन में खड़े होना, स्टोर के अंदर जाने वाले पहले 10 लोगों में शामिल होना और एप्पल के कर्मचारियों के साथ ताली बजाते हुए अनबॉक्सिंग की रील बनाना, ये सब सोशल मीडिया कंटेंट के लिए जरूरी था और कई लोगों ने ऐसा किया भी। और जब ये होता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो भी ऐसा करेंगे और वो भी पहले दिन जाकर पहला आईफोन 18 खरीदेंगे, पर आज भी शायद यही हुआ।
17: कितना एक्साइटमेंट है और कब प्री बुकिंग करा ली थी आप?
18: प्री बुकिंग लास्ट वीक करा था, लास्ट सैटरडे मैंने कराया था, आई थिंक 9 को ही करवा दिया था। और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर। That's it.
17: मैं देख रहा हूँ दो फोन आप लेके आए हैं।
18: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊँ।
17: कितना एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत जगह से पिक्चर्स आ रही हैं कि लोग लाइनों में खड़े हैं, आप आराम से आए अपना टाइम पे 8 बजे स्टोर खुला और फोन लेने के लिए पहुंचे।
19: हाँ, प्री बुकिंग ऑलरेडी कर रखी थी तो ऐसा अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। देखते हैं
17: क्या वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से फर्स्ट डे फर्स्ट फोन लेने का ये रहता है।
19: फीचर्स एज इन मतलब हाँ, पहले से टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं और जो आईफोन यूजर है वो तो खैर हर साल एक नए अपग्रेड के लिए जाते ही हैं, तो ये बेसिकली एक तरह का मतलब अपने अंदर एक वो होता है कि हम चलो नया एडवांस उसके लिए जाएं, बस यही है।
17: पिछली बार भी आप फर्स्ट कस्टमर्स में ही थे जब लिया था?
19: नहीं, पिछली बार मैं नहीं था, ये थे मगर।
18: मैं रहता हूँ फर्स्ट कस्टमर।
17: हर बार जब आएगा नया वेरियंट तो आप?
18: मैं रहता हूँ, मैं फर्स्ट लेता हूँ, स्टार्टिंग से ही लेता हूँ, फर्स्ट डे वाला बुकिंग पहले से करके रखता हूँ।
1: यहाँ ये भी समझना होगा कि एप्पल कभी भी इस भीड़ को रोकता नहीं है, बल्कि वो लाइन में खड़े लोगों का स्वागत तालियों और नारों के साथ करता है, जिसके कारण नए आईफोन की बिक्री एक बड़े लॉन्च इवेंट में बदल जाती है। सिर्फ इस माहौल का हिस्सा बनने के लिए ही पहले दिन पहला आईफोन खरीदते हैं। हालांकि ये नकारात्मक बिल्कुल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि भारत में सारे लोग सिर्फ EMI पर आईफोन खरीदते हैं। इस साल भारत में जितने स्मार्टफोन की बिक्री हुई उनमें 42% स्मार्टफोन EMI यानी किस्तों पर खरीदे गए, और इनमें आईफोन की बिक्री के आंकड़े भी शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में बिकने वाले हर 10 में से लगभग 5 आईफोन EMI पर खरीदे हैं और 5 आईफोन कैश या कार्ड से खरीदे जाते हैं। और कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि EMI पर खरीदे जाने वाले आईफोन की संख्या अब तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि नया आईफोन 18 पिछले सीरीज के आईफोन के मुकाबले महंगा है। भारत में 75 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है, जिनमें सिर्फ 7% यानी करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आईफोन चला रहे हैं। यानी भारत में आईफोन का बाजार बड़ा जरूर है, लेकिन इसके आंकड़े ये नहीं कहते कि भारत में हर कोई EMI पर आईफोन खरीदने की रेस में दौड़ रहा है, बल्कि यहाँ ये बात अहम है कि भारत में हर साल जितने स्मार्टफोन की बिक्री होती है उनमें 30% पैसा एप्पल कंपनी को जाता है। यानी वॉल्यूम में आईफोन की बिक्री कम है, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
0: खैर, इस भीड़ को लेकर एक और बहस ये हो रही है कि क्या भारत में EMI यानी किस्तों पर आईफोन खरीदने का ये जुनून सही है, और क्या ये भीड़ शिक्षा नौकरियों के लिए लगने वाली भीड़ से ज्यादा है। तो हमें लगता है कि ऐसी बातों पर यकीन करने से पहले आपको पूरा सच जानना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ कुछ हजार लोगों की इस भीड़ से पूरे भारत को नहीं समझा जा सकता। देखिए,
1: आज जब पूरे देश में सिर्फ इस भीड़ की चर्चा हो रही है, तब हम आपको मेड इन इंडिया की ताकत भी बताना चाहते हैं। पहला, जब एप्पल का कोई नया आईफोन लॉन्च होता था तब उसके सिर्फ बेस मॉडल्स भारत में बनाए जाते थे, जबकि प्रीमियम प्रो मॉडल्स को कई महीनों बाद भारत में असेंबल करना शुरू किया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स दोनों को लॉन्च के पहले दिन से ही भारत में तैयार किया जा रहा है। इस वक्त एप्पल कंपनी के 25% आईफोन यानी हर 4 में से एक आईफोन को भारत में बनाया या असेंबल किया जा रहा है, और अभी भारत एप्पल कंपनी के लिए अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा बाजार है। अभी एप्पल कंपनी के हर 100 में से 6 आईफोन भारत में खरीदे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब इन आईफोन को खुद बना रहा है। साल 2024-25 में एप्पल कंपनी ने भारत में 1,94,000 करोड़ रुपए के आईफोन असेंबल किए थे, और इसमें पिछले साल के मुकाबले 60% की वृद्धि हुई थी। एप्पल कंपनी के मुताबिक पिछले साल की एक तिमाही में अमेरिका में 50% से ज्यादा मेड इन इंडिया आईफोन की बिक्री हुई, और ये सारे आईफोन भारत में असेंबल होने के बाद अमेरिका के बाजार में पहुंचे। आज एप्पल कंपनी अपना हर 4 में से एक प्रोडक्ट भारत में बना रही है, और साल 2028 तक आईफोन के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% से भी ज्यादा हो सकती है। बड़ी बात यह है कि साल 2014 में भारत में इस्तेमाल होने वाले 26% मोबाइल फोन ही मेड इन इंडिया होते थे, लेकिन अब हमारे देश में इस्तेमाल हो रहे 99.2% मोबाइल फोन मेड इन इंडिया हैं। 2014-15 में भारत में 18,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का उत्पादन होता था, लेकिन आज हमारे देश में 5,45,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का उत्पादन होता है। तो ये आंकड़े भी हमें अपने देश पर गर्व कराते हैं। और आपके लिए भी अच्छी बात यह है कि भारत में लोग भारत में ही बने और असेंबल हुए आईफोन 18 को खरीद रहे हैं। भारत की उत्पादन क्षमता बढ़ने और घरेलू खपत में तेजी आने से ही अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। मूडीज के मुताबिक भारत की ग्रोथ G20 अर्थव्यवस्थाओं और समान रेटिंग वाले उभरते बाजारों से तेज रहने की उम्मीद है। हालांकि इन्हीं अनुमानों में एक चेतावनी भी आई है। इसमें लिखा है कि भारत में तेल की बढ़ती कीमतें और महंगाई के कारण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और भारत को अभी इसी से निपटना है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है, ईरान के साथ उसकी सीमा लगती है और ओमान भी उसके पड़ोस में है, तब पाकिस्तान तेल के लिए तड़प क्यों रहा है? सीधा कारण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी देश मुफ्त में तेल नहीं देता, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त, कितना भी अच्छा पड़ोसी क्यों ना हो। तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर या विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है और पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां लोग सरकार से ये कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। देखिए,
20: पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर आवाम का पारा हाई, हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा।
21: तीन दिनों में 26 रुपए तेल तो बढ़ चुका है और हम क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, बताएं, आप बताएं।
22: रोज हाथ में अकेली जिंदगी गुजार रही
23: हूँ। रोए नहीं आप, रोए नहीं।
22: अब हम यकीन है बस वापसी का भी किराया नहीं।
23: भाई आप बाइक पे हो, पेट्रोल डलवाया?
24: पेट्रोल पैसे नहीं है, किस तरह डलवाए।
1: पाकिस्तान की सरकार ने ईंधन बचाने और फिजूल खर्ची रोकने के लिए जो पाबंदियां लगाई, अब उन पर खूब कोहराम मचा है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि जब तक तेल संकट का कोई हल नहीं मिलता, तब तक सभी दुकानें और बाजार रात 9 बजे बंद करने होंगे। शादी हॉल रात 10 बजे और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक बंद करने होंगे। शादी समारोह में सिर्फ एक व्यंजन परोसने की अनुमति होगी। सरकारी गाड़ियों के तेल का कोटा अगले 3 महीने के लिए 50% तक घटाया जाएगा। सरकारी अधिकारियों की 3 महीने की विदेश यात्रा पर रोक लगाई जाएगी। बेहद जरूरी यात्रा में भी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को इकोनॉमी क्लास में जाना होगा। गैर कर्मचारी बजट में 5% की कटौती की जाएगी। सरकारी बैठकें संभव हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी और इसी दौरान सरकारी दावतों पर भी कड़ी रोक लगाई जाएगी और ये सूची बहुत लंबी है। ईरान युद्ध के कारण पाकिस्तान का हाल इतना बेहाल हो गया है कि वहां 18 सितंबर से पेट्रोल 390.89 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल 424.92 रुपए प्रति लीटर हो गया है और सरकार ने साफ कह दिया है कि वो ना तो अभी इस पर टैक्स कम कर सकती है और ना ही पाबंदियों में कोई छूट दे सकती है। और इन पाबंदियों के बाद पाकिस्तान की आवाम वहां की सरकार से कह रही है कि तुमसे ना हो पाएगा।
25: अभी सब्सिडी का ऐलान किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब यकीन करें, मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ मैं इसको रजिस्टर करने की। अच्छा, एक तो उनकी शराइत इतनी मुश्किल है, ठीक है। एक बात ये कि ये बोलते हैं गाड़ी आपके नाम हो, ठीक है। ऊपर से वो गाड़ी आपके नाम हो और आपका जो रजिस्ट्रेशन आपके नाम हो, ठीक है। उसके बाद वो जो आपका मोबाइल की सिम हो आपके नाम हो। भाई इतनी मुश्किल करोगे तो गरीब आदमी जो इलिटरेट पर्सन है वो किस तरह सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। हम रजिस्टर किस तरह कर पाएंगे?
26: पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल है, पेट्रोल बढ़ने का मतलब ही यही है कि जो सर के बाल से लेकर नाखून तक और एक जो है वो नाई की दुकान से लेकर एक 5-स्टार होटल तक हर चीज आप महंगी कर दें।
27: कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ 200, 100, 150 का पेट्रोल डालते हैं तो वो देखे एकदम से वो 1300 या 1400 देना पड़ जाए तो वो तो बेचारे डलवाएंगे ही नहीं, ठीक है। हमारे पास आज थे तो आज हमने डलवा लिए, नेक्स्ट वीक क्या पता मैं भी ना डलवा सकूं।
1: अजीब बात यह है कि जब पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है और सऊदी अरब, यूएई और ओमान उसके सहयोगी देश हैं, तब वो तेल के संकट के सामने सरेंडर कर चुका है। जबकि इसी जगह हमारा देश भारत भी कच्चे तेल के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है और ईरान युद्ध का असर हम पर भी पड़ा है। और हमारी आबादी तो 145 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं लगी है। और जानते हैं भारत और पाकिस्तान में ये फर्क क्यों है? अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो भारत की तुलना में पाकिस्तान भौगोलिक रूप से मिडल ईस्ट देशों से ज्यादा करीब है। ईरान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। ओमान से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 400 किलोमीटर है। यूएई भी 550 किलोमीटर और सऊदी अरब भी पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है। और इस चीज को देखते हुए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तेल का संकट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी पाकिस्तान बूंद बूंद तेल के लिए तड़प रहा है। और इसका कारण यही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी देश मुफ्त में कच्चा तेल नहीं देता, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त या पड़ोसी क्यों ना हो। तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर यानी विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है और पाकिस्तान के पास डॉलर खत्म हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे निचले स्तर पर है। और आप खुद सोचिए, जब जेब में डॉलर ही नहीं होंगे तो पाकिस्तान तेल कहां से खरीदेगा? और अभी उसके साथ यही हो रहा है। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है, लेकिन उस पर अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू हैं। अगर पाकिस्तान ईरान से आधिकारिक रूप से तेल खरीदता है तो उस पर भी वैश्विक प्रतिबंध लग जाएंगे, जिससे उसका बचा खुचा व्यापार और आईएमएफ से मिलने वाला कर्ज पूरी तरह रुक जाएगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब से तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पर्याप्त डॉलर नहीं है। अगर वो बिना कटौती के तेल खरीदता है तो पूरा पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सीमा भले ही मिडल ईस्ट देशों के करीब है, लेकिन उसकी जेब में तेल खरीदने का पैसा नहीं है। और वो अपने लोगों को कह रहा है कि शादियों में एक डिश से ज्यादा न परोसी जाए और नेता भी विदेशी दौरों पर न जाए। जबकि भारत ने पिछले हफ्ते ही ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की है और इस संकट में भी हमने पाबंदियों से देश को बचा कर रखा है। और इसका कारण ये है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत मजबूत है। भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो 780 बिलियन डॉलर का है, जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 21 बिलियन डॉलर का है, जो 64वें नंबर पर है। और इसमें भी बहुत सारा पैसा सऊदी अरब का है, जिसे पाकिस्तान खर्च तक नहीं कर सकता। भारत ही अपने तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन हमारी बड़ी बात यह है कि जब ईरान युद्ध के कारण हुर्मुज बंद हुआ तो हमने रशिया से कच्चे तेल की कीमत 50% तक बढ़ा ली और अमेरिका से गैस का आयात भी 50% तक बढ़ा लिया। और हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बहुत मजबूत हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग अपनी किस्मत पर कैसे रो रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है।
3: इनके पास मुल्क चलाने के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। इन पेट्रोल की कीमतों से ये अयाशिया भी कर रहे हैं और मुल्क भी चला रहे हैं, लेकिन ये अपनी अयाशिया और अपने अखराजात कम नहीं कर रहे।
4: वो पेट्रोल महंगा हो ही जा रहा है, अगे हफ्ते बाद महीने बाद असी सुनी दा सी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, मगर हुण पता ही कोई नहीं। पेट्रोल जड़ा है ना, वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है।
5: आप खाइए कि पेट्रोल पुआइए कि बच्चे से करिए, समझो गल बार है कि कोई मसल लगी करना चाहती है।
6: कीमतें बढ़ रही हैं, ये सरासर ज्यादा है। हुकूमत आवाम के साथ जो है ना खिलवाड़ कर रही है।
7: पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आम आवाम तो जलील हो गई है। यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस नीचे कर रही है, आम बंदे की जरूरत है, किसी अमीर की जरूरत नहीं है, ये गरीब बंदे की जरूरत है।
1: पाकिस्तान अपनी जरूरत का करीब 80-85% कच्चा तेल आयात करता है। उसके कच्चे तेल के आयात में यूएई की हिस्सेदारी करीब 50-56% है, सऊदी अरब की 30-35% और कुवैत की करीब 4% है। लेकिन अभी पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो इन देशों को पैसे देकर तेल और गैस खरीद ही नहीं सकता। और वैसे पाकिस्तान डींगे बड़ी बड़ी हांकता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: खैर, एक तरफ पाकिस्तान में नई गाड़ियों की खरीद पर बैन लगा दिया गया है, दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान की सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटों से जुड़ी अमेरिकी कंपनी के साथ ड्रोन खरीदने का रक्षा सौदा किया। और ये देखकर पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुनिए।
8: काड़ा में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए पुलिस और ताजरों के दरमियान आंख मचोली। पुलिस के आने पर दुकानें बंद, जबकि जाने पर फिर खोली जाती हैं।
9: इन लोगों का जो टाइम है वो 10 बजे तक डाइन इन का टाइम है, 10 बजे तक आपने लोगों को अंदर बिठा के खिलाना पिलाना है।
10: 10 बजे तक
9: 10 बजे तक دس بجے کے بعد آپ نے ان کو اندر بٹھا کے کھلانا نہیں ہے, ان کو باہر سے ہی پیک کر کے دے دینا
2: کرنی ہے. 17 کو یہاں سے چلا گیا لندن کے اندر, اس کا کوئی کام نہیں ہے, سرکاری جہاز کے اوپر گیا ہوا ہے لندن میں. دو تین دن ہمارا پرائم منسٹر رہے گا, اس کے بعد وہ امریکہ تشریف لے جائے گا. 7 دن کا تو یہ دورہ ہے. آج انہوں نے پاکستان دونوں پہ پابندی لگا دی.
10: پمپ پہ جتنے لوگ جا رہے تھے ان کو پمپ والے کہہ رہے تھے کہ آپ کو کوئی سبسڈی, ہمیں پتا ہی نہیں سبسڈی کیا ہوتی ہے.
11: مطلب انہیں اپنی پڑھی ہے کہ ہمارے 100 روپے کیسے پورے ہوں گے. حکومت ہمیں تو بتائے کہ یہ سبسڈی آپ ہمیں کیسے دیں گے.
12: سارا دن تو مزدوری کرتے ہیں, ریڈی لگاتے ہیں گول گپوں کی. جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اس سے ہمارا کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے. تازی والے بندے گھر کا کیسے گزارا چلائیں.
13: خود دیکھتا ہوں 5,000 کا گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں. ہم غریبوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بات نہیں ہے, غریب آدمی کو پیدر پی مارنے کی دکار پر لے آئے گی.
0: اب اگلی خبر کا رخ کرتے ہیں. آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یدھ دنیا میں کہیں بھی ہو, امریکہ اپنے ہتھیار بیچنے کے طریقے نکال ہی لیتا ہے. امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو F-35 فائٹر جیٹ بیچنے کو انومتی دے دی. اس ڈیل کے لیے سعودی عرب پچھلے سال کی شروعات سے ہی لگا ہوا تھا, لیکن بات چیت کہیں نہ کہیں اٹکی ہوئی تھی ہوتی کے حملوں سے. اب سعودی عرب پھنسا ہوا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر موقع پر چوکا لگاتے ہوئے امریکی راشٹرپتی نے F-35 فائٹر جیٹ سعودی کو بیچنے کی تیاری شروع کر دی ہے. حالانکہ اگر آپ اس کو کئی معنوں میں دیکھیے تو کچھ وشلیشک اس ڈیل کو چائنا کی ایک بڑی سازش کے طور پر دیکھ رہے ہیں. آخر کیا کھیل چل رہا ہے امریکہ, سعودی عرب اور چائنا کے بیچ, اس رپورٹ میں سمجھیے.

0: दुनिया में युद्ध कहीं भी हो, अमेरिका उस युद्ध के लिए हथियार बेचने के तरीके निकाल ही लेता है। वो दोस्ती भले ही ना निभाए, लेकिन दोस्त के पैसे लेकर अपनी दुकानदारी जरूर चला लेता है। हुती से जंग में उलझे हुए सऊदी अरब को उसने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट F-35 बेचने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 बेचने को हरी झंडी दिखा दी है। इसका मतलब ये है कि अब सऊदी अरब अब चौथा गैर नेटो देश होगा जिसके पास F-35 जैसा ताकतवर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होगा। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 48 F-35 फाइटर जेट की डील होगी। ये पूरी डील करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की होगी। इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को 48 F-35 फाइटर जेट और इसके साथ साथ 49 F-135 इंजन भी देगा। F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट में F-135 इंजन ही लगा है। सऊदी अरब हर फाइटर जेट के लिए एक स्पेयर इंजन मंगवा रहा है और इसके अलावा एक इंजन अलग से भी चाहता है। F-35 फाइटर जेट को हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। इस फाइटर जेट का निर्माण अमेरिका के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम के तहत होता है, यानी कई देश इसको विकसित करने के प्रोग्राम में हिस्सेदार हैं। ये फाइटर जेट अभी तक दुनिया के केवल 20 देशों के पास है। इसमें भी ज्यादातर नाटो देश ऐसे हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड्स, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ग्रीस और रोमानिया। अभी तक केवल 6 गैर नाटो देशों को ही अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 दिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड है। अब सऊदी अरब वो 7वां देश होगा जिसके पास अमेरिका का F-35 फाइटर जेट होगा और इसके लिए सऊदी अरब अच्छी खासी रकम चुकाएगा। अब आप सोचिए कि अमेरिका कितना चालाक है कि वो वर्षों तक सऊदी अरब से युद्ध में मदद का भरोसा दिलाता रहा, और जब हूती के साथ उसकी जंग शुरू हुई तो उसने हूती के साथ अलग से डील कर ली, और अब हूती के खिलाफ जंग में सऊदी अरब से पैसे लेकर उसे F-35 बेच रहा है। नैतिकता तो यही कहती है कि अमेरिका को दोस्ती के नाम पर हूती के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हूती के खिलाफ सऊदी अरब अमेरिका को अपने पक्ष में चाहता है और इसीलिए वो F-35 डील के जरिए पैसे देकर एक तरह से अमेरिका की मदद खरीद रहा है। अब आप सोचिए कि सऊदी अरब ने साल 2025 की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप से सीधे ही F-35 खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब ट्रंप ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में पेंटागन की तरफ से ये खबर आई कि F-35 को सऊदी अरब को देने पर विचार किया जा रहा है। फिर नवंबर 2025 के तीसरे हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि सऊदी को F-35 बेचे जा सकते हैं। ये संकेत सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वॉशिंगटन यात्रा से कुछ दिन पहले का था। इसके बाद 18 नवंबर 2025 को दोनों देशों के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ और F-35 देने की बात पर सहमति बनती दिखी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से फाइटर देने की बात पक्की नहीं मानी गई। मायने हूती पर हमले से ज्यादा अमेरिका को अपने करीब लाने से जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: हुती के हमलों से जब कोई भी देश सऊदी अरब की मदद नहीं कर रहा है तो ऐसे में चाइना ने सऊदी का हाथ थाम लिया है। खबर है कि चाइना अपने दोस्त ईरान के जरिए हुती से सऊदी अरब पर नरमी बरतने की अपील कर रहा है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन देशों में ईरान युद्ध के बाद अमेरिका का वर्चस्व कमजोर हुआ है, चाइना उन तमाम देशों में एक एक करके सेंधमारी में जुट गया है। देखिए,
0: क्या सऊदी अरब अमेरिका से F-35 खरीद कर उसकी तकनीक चीन को बेच सकता है? अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस पर चिंता जताई है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया अधिकारियों की रिपोर्ट के हवाले से चिंता जताई गई है कि अगर अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 दिया तो चीन सऊदी अरब में मौजूदगी, सुरक्षा सहयोग और जासूसी के दम पर F-35 की संवेदनशील टेक्नोलॉजी तक पहुँच सकता है। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की इस रिपोर्ट में मुख्य 3 चिंता जताई गई है। पहली ये कि सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों तक चीन के सैन्य अधिकारियों की भी पहुंच है। दरअसल चीन के सैनिक सऊदी अरब में युद्ध अभ्यास के लिए जाते रहते हैं। यही नहीं, चीन की PLA ने सऊदी अरब के नौ सैनिकों के साथ प्रशिक्षण भी लिया है। इसके अलावा चीन सऊदी अरब को बैलिस्टिक मिसाइलें और दूसरी सैन्य तकनीक भी देता है। अमेरिकी खुफिया विभाग की दूसरी चिंता है सऊदी का सैन्य और टेलीकॉम नेटवर्क। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब के सैन्य और टेलीकॉम नेटवर्क में चीन की तकनीक इस्तेमाल की गई है। खास तौर से हुआवे और ZTE के उपकरणों और नेटवर्क को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। खुफिया विभाग की सबसे बड़ी चिंता F-35 के रडार और सर्विलांस सिस्टम है। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि अगर सऊदी अरब के पास F-35 पहुंच गया और चीन तक उसकी पहुंच हो गई, तो वो इस फाइटर जेट के एडवांस रडार टेक और सर्विलांस टेक्नोलॉजी को डिकोड कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो चीन अपनी तकनीकी क्षमता का इस्तेमाल करके F-35 का तोड़ निकाल लेगा। और ये
1: अब हम 20 साल पुराने निठारी केस की बात करेंगे, जिसके आरोपी रहे सुरेंद्र कोहली ने आत्महत्या कर ली है। बच्चों की हत्याओं से जुड़े 13 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरेंद्र कोहली को सभी मामलों में बरी कर दिया था। केस से बरी होने के बाद वो हरिद्वार में नाम बदलकर रह रहा था और एक चाय की दुकान भी उन्होंने खोली थी। अब अपने घर में ही खबर आ रही है कि फांसी लगा ली है। आखिर ऐसा क्यों किया, इस रिपोर्ट में देखिए।
2: २९ दिसंबर साल 2026 को नोएडा के निठारी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। निठारी की इस D5 कोठी के पीछे एक के बाद एक 16 मासूम बच्चों के सड़े गले शव बरामद होते गए। इस आदमी को तो आप जानते ही होंगे, नाम है सुरेंद्र कोहली। निठारी कांड को देखने और समझने वाले इस चेहरे को कभी नहीं भूल सकते। इस आदमी को 13 मामलों में देश की अदालतों ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन फांसी से ऐन पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने इसकी फांसी को टलवा दिया और फिर एक लंबी सुनवाई के बाद सुरेंद्र कोहली को हर आरोप से बरी कर दिया गया। करीब 19 साल तक जेल में रहने के बाद पिछले साल नवंबर में पिछले करीब 10 महीनों से सुरेंद्र कोहली आजाद था। उसकी फांसी की सजा टाली जा चुकी थी, उसे हर जुर्म से बरी कर दिया गया था। लेकिन अब खबर यह है कि सुरेंद्र कोहली ने फांसी लगा ली है। पिछले कई दिनों से सुरेंद्र कोहली नाम और पहचान बदलकर लोगों की नजरों से बचते हुए हरिद्वार में चाय की छोटी सी दुकान चला रहा था। उसने लोगों को अपना एक फर्जी नाम बता रखा था। पुलिस के मुताबिक वो कुछ महीने पहले ही हरिद्वार आया था। उसने अपना नाम सदाराम रख लिया था। आस पड़ोस के लोगों को उसकी असली पहचान कभी तब तक पता नहीं चला जब तक पुलिस ने शव के पास से मिले असली पहचान पत्र की जाँच नहीं की थी।
3: किसी के माध्यम से ये आया और इसने अपना नाम बदल के यहाँ पे चाय की दुकान चलाया 3 दिन पहले।
4: पहचान कैसे हो पाई उसकी?
3: इसका आधार कार्ड में जो आया जाए, फिर जो लोग, क्योंकि वो बड़ा चर्चित रहा था निठारी काम, उसमें इसका चेहरा भी आया था, तो ये फिर जानकारी हुई है, तो ये वही अब तक जो पता लगा है ये वही व्यक्ति है जो निठारी काम में अभी था।
2: सुरेंद्र कोहली ने अपने घर में फांसी क्यों लगाई, इसके पीछे की वजह अतिक्रमण हटाओ अभियान बताया जा रहा है। हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों की वजह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इस कारण से सुरेंद्र कोहली ने एक दुकान के मालिक को एडवांस दिया था जिसके फंसने की चिंता थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से दुकान के अंदर ही उसने फांसी लगा ली। निठारी कांड देश में हत्या के सबसे भयानक मामलों में से एक माना जाता है। ये मामला साल 2005-2006 के बीच का है, जब निठारी की D5 कोठी के पीछे नाले के अंदर से 16 बच्चों के शव बरामद हुए थे। इन बच्चों की हत्या में सुरेंद्र कोहली का हाथ माना गया था। शुरुआत में

0: छोटा बच्चा है कि आप भी ये सोचकर बाजार में महंगा बेबी फूड लाते हैं कि उसमें आपके बच्चे के लिए कम से कम भरपूर पोषण तो है। अब दिग्गज कंपनी नेस्ले इंडिया पर FSSAI ने शिकंजा कसा है। कंपनी पर मासूम बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ और गुमराह करने वाला विज्ञापन न देने का अब मामला चल रहा है कि वो ऐसे विज्ञापन दे रहे थे जो मिसलीडिंग विज्ञापन का आरोप लगा है। नेस्ले के फॉलो अप फॉर्मूला बेबी फूड में विटामिन B7 की मात्रा तय मानकों से बहुत कम पाई गई है, जबकि नैन एक्सेला प्रो और लैक्टोजन प्रो 1 में प्रोडक्ट्स के जरिए आसानी से पचने जैसे दावों के साथ धड़ल्ले से प्रचार किया गया और ये नियमों का सीधा उल्लंघन है। FSSAI ने साफ कर दिया है कि बिक्री बढ़ाने के नाम पर माता पिता के भरोसे से खेलना बर्दाश्त नहीं होगा। मामले में अलग अलग तीन जगहों पर, मतलब तीन अलग अलग केसेस इन तमाम मुद्दों पर दर्ज किए गए हैं और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
1: टीवी, अखबार, सोशल मीडिया से लेकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक हर तरफ विज्ञापनों की ऐसी जबरदस्त भरमार है कि आम उपभोक्ता भ्रमित हो जाए। 100% शुद्ध, आसानी से पचने वाला, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला जैसे दावों के साथ भ्रामक प्रचार का बाजार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। लेकिन जब बात नौनिहालों और मासूम बच्चों के पोषण की हो तो क्या ऐसे अनियंत्रित विज्ञापनों पर आंखें मूंद ली जाएं? FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेस्ले इंडिया पर अब कड़ा कानूनी शिकंजा कस दिया है। मामला मासूम बच्चों के लिए बनने वाले इन्फेंट न्यूट्रिशन यानी बेबी फूड प्रोडक्ट से जुड़ा है। FSSAI ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ तीन अलग अलग कानूनी मामले दर्ज किए हैं। जांच में सामने आया कि नेस्ले ने नान एक्सेला प्रो स्टेज 1 और लैक्टोजन प्रो 1 के विज्ञापनों में नियमों की धज्जियां उड़ाई। नान एक्सेला प्रो स्टेज 1 में 5 HMOs और वे प्रोटीन का प्रचार किया जा रहा था। वहीं लैक्टोजन प्रो 1 को लेकर दावा ठोका गया कि इसमें मौजूद वे प्रोटीन बहुत आसानी से पचता है। FSSAI के मुताबिक ये फूड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन रेगुलेशंस 2020 और IMS एक्ट 1992 का सीधा उल्लंघन है, जो बच्चों के भोजन की बिक्री बढ़ाने के लिए किए जाने वाले ऐसे किसी भी प्रमोशनल दावे या प्रचार पर सख्त रोक लगाते हैं। बात सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित नहीं है। FSSAI द्वारा की गई लैब जांच में नेस्ले इंडिया के फॉलो अप फॉर्मूला का एक सैंपल सबस्टैंडर्ड पाया गया। जब इसकी रेफरल रैप में दोबारा जांच कराई गई तब भी इसमें बायोटीन यानी विटामिन B7 की मात्रा तय मानकों से कम पाई गई, यानी पोषण का जो वादा डिब्बे पर लिखा था वो प्रयोगशाला की जांच में खरा नहीं उतरा। आरोपों के बाद नेस्ले इंडिया ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि उनके सभी उत्पाद भारतीय नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। कंपनी के मुताबिक उनके लेबल्स FSSAI की एक्सपर्ट कमेटी से स्वीकृत हैं और उन्होंने इस संबंध में अपना जवाब सौंप दिया है। हालांकि FSSAI ने साफ कर दिया है कि बिक्री बढ़ाने के नाम पर माता पिता के भरोसे के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल के महीनों में FSSAI ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों और दावों पर 150 से अधिक कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। बाजार में मची इस अंधाधुंध होड़ पर अब सरकार और रेगुलेटर्स का हंटर चलना शुरू हो चुका है। चाहे कितनी भी बड़ी ब्रांड या दिग्गज कंपनी क्यों न हो, जब बात उपभोक्ता के स्वास्थ्य और छोटे बच्चों के भविष्य की होगी तो कानून सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। भ्रामक दावों से भरी इस दुनिया में जागरूक होना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए किसी ब्रांड के नाम में फंसने और किसी भी विज्ञापन के लुभावने शब्दों के जाल में उलझने के बजाय गुणवत्ता और मानकों की जांच जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
0: और अब बात पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की। आज तक और दिल्ली सरकार के संयुक्त अभियान में प्रदूषण से निपटने के तरीकों पर नए नए आविष्कार सामने आ रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी डिवाइस जो हॉटस्पॉट्स पर प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए साल भर काम कर सकती है।

मेरा नाम राजीव चानन है और मैं फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ह्यूमेंडस टेक्नोलॉजीज का, जो 2018 में हम लोगों ने फॉर्म की थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। हम लोगों की टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप एक्सपोजर रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। APS स्टैंड फॉर एम्बियंट प्योरिफिकेशन सिस्टम, इट इज पार्टली मेंट फॉर पार्टिकुलेट मैटर। An idea behind this is that we are supposed to make a system and technology for outdoor.

store where you install it once and it should continue to run without any attention intervention for 15-20 years. इसमें 15 साल तक consistent performance रहता है सभी pollution level पे और सभी weather condition में. इसमें जो प्रिंसिपल हम लोगों ने यूज किया वो बेसिक फिजिक्स का प्रिंसिपल था. तो आप इसमें एयर सक करते हैं इन ए पर्टिकुलर वेलोसिटी विद ए पर्टिकुलर एंगल सो दैट जो हैवियर मेटल होते हैं हैवियर पार्टिकल होते हैं PM2.5 एंड PM10 दे कैनॉट ट्रेवल द पाथ ऑफ द एयर बींग टेकन इन टू द सिस्टम सो दे टेंड टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बैलेंस एयर फोर्स.

0: मैं करता हूँ ना,
1: मैं करूँगा।
2: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
0: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
2: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
0: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB, दोनों ही चैंपियन है।
2: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो एक
3: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
7: जेके वॉल मैक्स।
5: बेस्ट पेंट?
8: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
5: जेके मैक्स पेंट्स।
2: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग। जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सुंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
4: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।
1: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
2: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।

आखिर ये सेमीकंडक्टर है क्या? एक छोटी सी चिप इतनी जरूरी क्यों है? आइए एकदम आसान शब्दों में बताते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए बिजली और उस बिजली को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर चिप इसी काम को अंजाम देती है। ये चिप एक तरह से डिवाइस का दिमाग होती है, जो डिवाइस को बताती है कि कब क्या और कैसे करना है। अब सवाल है कि ये चिप बनती किस चीज से है? तो इसकी शुरुआत होती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में सिलिका और कई खनिजों में पाया जाता है। इसे बेहद शुद्ध करके एक पतली गोल प्लेट बनाई जाती है, जिसे सिलिकॉन वेफर कहा जाता है। यही वेफर आगे चलकर चिप का आधार बनता है। इसको ऐसे समझिए कि सिलिकॉन से वेफर, वेफर से सर्किट, सर्किट से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से चिप और सबसे अंत में टेस्टिंग और पैकेजिंग। इतने स्टेप से गुजरने के बाद सेमीकंडक्टर चिप तैयार होती है। यही वजह है कि चिप बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। चिप बनाने वाली फैक्ट्री में धूल का एक बेहद छोटा कण भी उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन फैक्ट्रियों में बेहद साफ वातावरण और बेहद सटीक मशीनों की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर की पूरी दुनिया को अगर देखें तो चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका इसके बड़े केंद्र हैं। इन देशों के पास चिप बनाने की फैक्ट्रियां, तकनीक और पूरी सप्लाई चेन मौजूद है। लेकिन जब बात सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक चिप बनाने की आती है तो ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनकर सामने आता है। दुनिया के बड़े देश सेमीकंडक्टर को सिर्फ कारोबार का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी तकनीकी और रणनीतिक ताकत मान रहे हैं, क्योंकि आज जिस मोबाइल को हम हाथ में लेकर घूमते हैं, जिस कार में सफर करते हैं और जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उन सब की असली ताकत उस छोटी सी चिप में छिपी है जो ताइवान, चीन या अमेरिका की बनी है। भारत भी अब इन सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत के सेमीकॉन मिशन का विजन है कि पूरा इकोसिस्टम भारत में तैयार किया जाए। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और किसी को मिटाने में अपनी ऊर्जा ना खर्च करें। मिटाते मिटाते रबर खुद ही मिट जाती है। नमस्कार।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: पंचायत आज तक बिहार में बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यूसीसी पर गठबंधन से बातचीत के बाद लेंगे निर्णय। बंगाल उपचुनाव में ट्विस्ट पे ट्विस्ट, पहले नंदीग्राम से ममता की उम्मीदवार ने नाम वापस लिया। कांग्रेस का दावा, हमारी प्रत्याशी प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोप पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस भस्मासुर, साथ आने वाले सभी दलों को जलाने का करती है काम। उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख भागवत का जेंजी को संदेश, भारत के युवा पूरी दुनिया में न सिर्फ यशस्वी बल्कि सार्थक भी बने। और वायुसेना को एचएएल से मिला तेजस का ट्रेनर, पवन हंस को भी 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर मिले। बेंगलुरु के कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक की शुरुआत ममता बनर्जी के उस दांव से जिसने इंडिया गठबंधन को नई संजीवनी दी। 2024 लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली थी, लेकिन नंदीग्राम उपचुनाव में ममता ने बीजेपी के प्लान पर पानी फेरने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाने का निर्णय किया है। अगर नंदीग्राम में ममता का प्रयोग सफल रहा तो 2029 की चुनावी लड़ाई में वो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की तरफ वापस लौटना पड़ा? क्यों बंगाल में कांग्रेस से दूरी बनाने वाली ममता आज राहुल गांधी की पार्टी से हाथ मिलाने को राजी हो गई? क्या बंगाल के चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए ममता ने ये नई रणनीति बनाई है?

0: बीजेपी पार्टी है, जुमला पार्टी है।
1: ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा दांव चल दिया।
0: बट वी आर ऑल्सो रेडी टू फाइट इट आउट। आई वॉन्ट दैट बीजेपी मस्ट गो फ्रॉम इंडिया।
1: नंदीग्राम में कांग्रेस का समर्थन करेंगी ममता। सीएम शुभेंदु के नहले पर ममता का दहला। पार्टी के बागियों को ममता का खुला चैलेंज। ममता का नया प्लान, सीएम शुभेंदु परेशान।
0: We want to see that era, end of the BJP era.
1: बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटका लगा। पहले पार्टी के विधायकों ने बगावत करके नया गुट बनाया, फिर सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीधी बगावत का बिगुल फूंक दिया। बड़ी बात ये कि बागी विधायकों ने सिर्फ ममता का साथ नहीं छोड़ा बल्कि पार्टी पर भी अपना दावा ठोक दिया। मतलब ममता बनर्जी को उनकी ही पार्टी से बेदखल करने की पूरी तैयारी कर डाली। लिहाजा पार्टी के सिंबल पर हक की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई। चुनाव आयोग ने अंतिम निर्णय आने तक टीएमसी के सिंबल जोड़ा पुल को फ्रीज कर लिया। ऐसे में बंगाल के दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ममता और बागी गुट नए सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने संचिता प्रधान को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन सीएम शुभेंदु से मुलाकात के बाद संचिता प्रधान ने नामांकन वापस ले लिया। मतलब नंदीग्राम में अब ममता बनर्जी का कोई प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में ममता ने शुभेंदु के नहले पर दहला चलते हुए नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया।
0: पहले से डिसाइड किया था कांग्रेस को इस सीट में हम सपोर्ट करेंगे, उसका कैंडिडेट अच्छा है। इसी के लिए हम जो करेंगे अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम होंगे कामयाब। ये मेरे को इशारा ही काफी है।
1: नंदीग्राम उपचुनाव में बीजेपी की रणनीति को मात देने के लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया, तो वहीं पार्टी पर बागी गुट के दावे पर चुनाव आयोग के फैसले पर निशाना साधा।
0: टू सेटिस्फाई द ईगो ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, ऑलरेडी आपने आपका पता है कि उन्होंने बोला था पहले, नाम भी नहीं रखने दूंगा, निशाना भी नहीं रखने दूंगा, पहले ही बताया था।
1: दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और ममता की हार के बाद टीएमसी में बगावत हुई। दोनों धड़े पार्टी पर अपना अपना दावा लेकर आयोग पहुंचे। चुनाव आयोग ने 14 पन्नों के आदेश में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह दोनों फ्रीज कर दिए। आयोग ने कहा कि ये अंतरिम कदम है, पार्टी के नाम और प्रतीक का अंतिम फैसला चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के पैरा 15 के तहत नाम और निशान पर रोक रहेगी और फैसला विस्तृत जांच और सुनवाई के बाद किया जाएगा।
0: We never thought that they will seize our symbol and party name. How can they do it? 29 years party. First they freezed our bank account. Why? Even Prop 98. I have donated from my MP salary. All the MPs these 29 years, MLAs, councillors, others, party workers, bond.
1: चुनाव आयोग के फैसले पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए, खुल्लम खुल्ला ममता बनर्जी का समर्थन किया, आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मदद से अब बीजेपी पार्टी चोरी करने में जुटी है। पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब तृणमूल कांग्रेस। हर बार एक ही पैटर्न, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं, फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है। जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं। वोट चोरी, सरकार चोरी, अब पार्टी चोरी, ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं। ईसीआई की संवैधानिक जिम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना है, मगर उल्टा वो उन ताकतों की मदद कर रहा है जो जनता के फैसले को ही पलट देते हैं। ये लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी जी की नहीं है, ये हर राजनीतिक दल, हर मतदाता की लड़ाई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है।
2: सियासत में कुछ भी हो सकता है, ममता बनर्जी अब बंगाल में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेंगी। इससे पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को आड़े हाथ लिया और ममता बनर्जी के सपोर्ट में उतर आए। एक और दौर था ज जब उस वक्त इंडिया ब्लॉक की कमान को ममता बनर्जी को सौंपने की कवायद चल रही थी, तब अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी को जमकर भला बुरा कह रहे थे। यानी कि अगर टाइमिंग सही हो तो सियासी समीकरण भी बन और बिगड़ सकते हैं।
3: राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है और नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर यह आरोप लगाया है। उनके उम्मीदवारी की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि निष्पक्ष चुनाव पर भरोसा नहीं है और ये कोई संयोग नहीं है। मिनल प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया है एक पुराने मामले में। राहुल गांधी ने इस पर बीजेपी पर हमला बोला है और प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा उपचुनाव होना है शिवेंदु अधिकारी की सीट पर। यहां पर ममता बनर्जी कांग्रेस को समर्थन दे चुकी है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के उम्मीदवार मिनल प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया। एक पुराने मामले में प्रधान को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये कोई संयोग नहीं है कि उनका उम्मीदवार चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार हो जाता है। प्रधान को जब गिरफ्तार किया गया मिलन प्रधान को, तो उस पर बीजेपी पर भी राहुल गांधी ने हमला बोला है और राहुल गांधी ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव की हम अब उम्मीद नहीं कर सकते और प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग भी नहीं। भले ही विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, पार्टी के सांसद विधायकों ने साथ छोड़ दिया उनका, लेकिन ममता बनर्जी की इमेज एक स्ट्रीट फाइटर की है जो कभी हार नहीं मानती। अब ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी और अपनी राजनीतिक पकड़ को बनाए रखने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का खुला समर्थन कर दिया। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का मिशन 2029 अब शुरू हो चुका है।
4: इधर राहुल गांधी का संदेश आया, उधर ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस और कांग्रेस को लेकर 2029 का एजेंडा सेट कर दिया। ममता बनर्जी मानती हैं कि राजनीति में लड़ाई विचारधारा के खिलाफ होती है, बीजेपी के खिलाफ ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, जबकि इंडिया अलायंस की विचारधारा से कोई परहेज नहीं है।
0: Though we have given some name and proposal for that temporarily, we will fight it out. But Nandigram, it is not that somebody, we have decided earlier also. Nandigram, we are going to give our support to Congress party.
4: चुनाव में मिली हार और उसके बाद विधायक और सांसदों की बगावत को देखते हुए ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को बचाने की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। ममता ने अपने अंदाज में यही कहा कि खेला तो अब शुरू हुआ है।
0: उद्धव ठाकरे को पार्टी को तोड़ा, इसका बाद वो एनसीपी को तोड़ा, इसका बाद हम लोगों के पास बहुत सारे थ्रेट आया कि उसको सपोर्ट करने के लिए बीजेपी को, हम लोगों ने नहीं किया। हम देश का इंटरेस्ट में नहीं किया, जनता को इंटरेस्ट में नहीं किया, इसी के लिए वो लोगों ने पहले से प्लान करके झूठा एसआईआर करके, झूठा इलेक्शन करके, काउंटिंग तो सीआरपीएफ किया।

0: दरअसल पार्टी में हुई बगावत या यूं कहें कि सबसे बड़ी टूट विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई। टीएमसी के 58 विधायक ऋतुव्रत बनर्जी के साथ मिलकर बागी हो गए। उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता चुन लिया। स्पीकर ने मान्यता दे दी। ऋतुव्रत बनर्जी गुट ने अरूप रॉय को पार्टी अध्यक्ष और अकरुद जमा को मुख्य सचेतक चुन लिया। उधर लोकसभा में टीएमसी के 28 में से 20 सांसद टूटकर एनसीपीआई में चले गए। राज्यसभा में 13 में से 3 सांसदों ने इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ले ली। ममता के आरोपों पर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार किया, दावा किया कि टीएमसी में बगावत के पीछे बीजेपी नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी हैं। यानी अपनी नाकामी का ठीकरा ममता बनर्जी ने बीजेपी पर फोड़ा है। तो क्या नंदीग्राम उपचुनाव का नतीजा ममता बनर्जी को एक बार फिर कांग्रेस के करीब ले जाएगा?
1: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की महाभारत। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का समय अब बहुत तेजी से घट रहा है और अब राजनीतिक पार्टियां सत्ता का रास्ता तय करने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई हैं, क्योंकि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद चैलेंज जेन जी का है, तो बीजेपी युवाओं के लिए 1,00,000 नौकरियों के साथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है। अखिलेश यादव का पीडीए रद्द भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है, देखिए।
2: में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी।
3: समाजवादी पार्टी और जो हमारा गठबंधन पहले से है सरकार बनाने जा रहा है। 100 दिन से ज्यादा नहीं बचे, इसीलिए देखा होगा बीजेपी वाले अपना सामान लपेटने लगे, खूब लूटने लगे।
0: इन दावों से क्लियर है कि 2027 की चुनावी जंग तगड़ी है। चैलेंज बड़ा है ये सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी समझ रही है, और कैसे 2027 के यूपी चुनाव में माइलेज लेना है इसकी पूरी रणनीति अखिलेश यादव और राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं।
4: आप सभी की जोरदार तालियां।
0: सीएम योगी के लिए बीजेपी की हैट्रिक लगवाना और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से निपटना एक चुनौती है। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस बार जेन जी, पेपर लीक, रोजगार, यूजीसी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर पूरा फोकस कर रहे हैं। तो साथ ही साथ अखिलेश पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को भी साध रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अखिलेश यादव 2024 वाली प्लानिंग से 2027 में बीजेपी को रोकने का प्लान बना रहे हैं और पीडीए यात्रा के लिए उनका रथ तैयार है। लेकिन बीजेपी ने जंतर मंतर पर जेन जी का दबदबा देखा है, तो सीएम योगी से लेकर बीजेपी और आरएसएस की नीति और रणनीति यही है कि जेन जी को लुभाना है, तो फिर चुनाव से ठीक पहले सीएम योगी जेन जी के लिए रोजगार योजना लाए हैं। सीएम योगी का ऐलान, 1,00,000 नौकरियों का प्लान, 19 सितंबर से अभियान, रोजगार के साथ आएगा नौजवान। बीजेपी का जेन जी प्लान, 2027 का चुनावी अभियान।
5: हम इस वर्ष के अंदर यानी अगले 6 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव घोषणा होने के पहले हमने कह रखा है कि 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी के अंदर उपलब्ध करवाएंगे।
0: शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों के चुनावी असर को बखूबी समझ रही बीजेपी यूपी में इस मोर्चे को दुरुस्त रखना चाहती है। यही वजह है कि सीएम योगी लगातार नौकरियों की बातें कर रहे हैं। उधर लखनऊ के इको गार्डन में 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का आरक्षण विसंगतियों को लेकर पिछले 19 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि यूपी SSSC में होने वाली भर्तियों में जो अभ्यर्थी चयन के बाद दूसरी नौकरी में चले जाते हैं वो पद खाली रह जाते हैं, लिहाजा नतीजे निकालते वक्त वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया रखनी चाहिए।
6: लाख अभ्यर्थी सर प्रभावित हो रहे हैं यूपी SSSC में वेटिंग लिस्ट को लेकर के। यूपी SSSC में हर जितनी भी वैकेंसी आती है सर, सभी वैकेंसियों में लगभग 200, 300, 1,000, 2,000 पद खाली।

0: ले जाते हैं क्योंकि वो बच्चे कहीं और सेलेक्ट हो चुके होते हैं। कि सर सिर्फ एक ही डिमांड है कि यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट लागू किया जाए।
1: ये ग्राम पंचायत या जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, मेरी उनसे अपील है, ये सरकार ने 10 साल आपसे काम लिया, आपको अपमान किया, आपको धोखा दिया, आप सब मिलकर के इस सरकार को गिराइए, हटाइए इस सरकार को, अपने वोट डाल करके इनको सत्ता से बाहर करिए। उसके बाद हम भरोसा दिलाते हैं, पहले भी मैनिफेस्टो में लिखा था कि ग्राम स्तर की जो नौकरियां हैं, जितनी भी विसंगतियां हैं इसकी, उन सबको बेहतर किया जाएगा, एक बराबर लेकर के आया जाएगा।
2: आरएसएस और बीजेपी समझ रही है युवाओं का गुस्सा फूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, इसीलिए आरएसएस ने बीजेपी को वो 5 चुनौतियां भी बता दी हैं जो चुनावों में सबसे बड़ी होंगी। इनमें यूजीसी गाइडलाइन से सामान्य वर्ग का आक्रोश, पेपर लीक पर सरकार के खिलाफ बड़ा माहौल, रोजगार और शिक्षा, निचले स्तर का भ्रष्टाचार, कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होना। संघ ने यूपी में बीजेपी के नेताओं के साथ समन्वय बैठक भी की है। इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे।
3: आरएसएस से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब मिशन यूपी पर हैं। संघ बीजेपी को प्रचार की लाइन समझा रहा है और नितिन नवीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों का गणित साधने निकल रहे हैं। लेकिन बीजेपी की इन तैयारियों के बीच अखिलेश यादव 2024 वाली प्लानिंग के साथ 2027 का चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ने जिस पीडीए रथ पर सवार होने की ठानी है और जिस पीडीए रथ पर वो सवार होने वाले हैं उस पर 2024 की तरह रथ का नाम समाजवादी पीडीए यात्रा रखा है।
2: आरएसएस की तरफ से बीजेपी को कहा गया है कि वो विपक्ष के नैरेटिव में ना फंसे। एक तरफ संघ यूपी चुनाव के लिए बीजेपी को गाइड कर रहा है तो खुद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मिशन यूपी पर उतर रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार पश्चिमी यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। नितिन नवीन 21 सितंबर को मेरठ और 22 सितंबर को सहारनपुर में रहेंगे और क्षेत्रीय पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसमें बूथ और शक्ति केंद्र से लेकर मंडल और जिला स्तर तक संगठन की स्थिति पर चर्चा होगी और पश्चिमी यूपी में सीटों को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी ने पश्चिमी यूपी से चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। पश्चिमी यूपी की अहमियत क्यों है वो आपको समझा देते हैं। यहाँ 26 जिले और 136 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी ने 93 और समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें जीती थी और आरएलडी को 8 सीटें मिली थी। लेकिन अब आरएलडी एनडीए में शामिल हो चुकी है, इसीलिए अखिलेश और जयंत चौधरी में वार पलटवार भी चल रहा है।
1: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
4: वो हमें जब हमारा उनके साथ साझा था, सारी बातें नहीं बताई जाती सामने, ये मेरी गंभीरता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा। अगर वो बातें मैं खोल दूंगा ना तो उनको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश। जिस हल्केपन से वो आज बातें कह रहे हैं कि इतनी सीट मिलनी चाहिए, तभी सम्मान चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से नहीं तय होने वाला, उनका सम्मान सबके दिल में है और रहेगा चाहे वो जो चाहे।
2: लेकिन जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने दम दिखाया और समाजवादी पार्टी 4 से सीधे 10 सीटों पर पहुंच गई, उसके बाद से अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में पश्चिमी यूपी की 136 सीटें सत्ता की चाबी साबित होंगी, इसीलिए इस बार पश्चिमी यूपी में जाति और धर्म की पॉलिटिक्स भी तेज हो रही है। अब पीडीए के रथ पर सवार होंगे अखिलेश। 2027 के लिए अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा तैयार। 2024 वाली प्लानिंग से 2027 में बीजेपी को रोकने का प्लान। अखिलेश यादव समाजवादी पीडीए यात्रा से यूपी चुनाव 2027 का माहौल बनाएंगे। यूपी चुनाव 2027 को लेकर खास रथ को तैयार किया गया है।
5: अक्टूबर के अंत में सूत्रों के मुताबिक ये रथ मैदान में उतरेगा और चुनावी कैंपेनिंग करेगा। अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद पीडीए इस बार 27 की सत्ता तक पहुंचाएगा। अब बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और इसे नई बोतल और पुरानी शराब करार दे रही है, यानी कि बीजेपी का कहना है कि कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं बल्कि MY समीकरण की रीपैकेजिंग है। जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में B.R. अंबेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है।
2: ये एक विशेष सुविधाओं से लैस एक लग्जरी बस है। लाल रंग के इस रथ पर सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा। PDA ही परिवर्तन लाएगा नारा लिखा गया है। PDA की फुल फॉर्म दी गई है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रथ के नीचे लिखा हुआ है।
6: PDA का बदल रहे सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। PDA तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका PDA तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
7: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
6: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि PDA पूरी तरह से फर्जी है। सत्ता पाने के मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
7: PDA का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
6: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
2: 2017 के चुनाव में इस बस का नाम समाजवादी विकास रथ था, 2022 में समाजवादी विजय यात्रा हो गया और 2024 में समाजवादी PDA यात्रा हो गया था और 2027 के विधानसभा चुनावों में भी 2024 की तरह रथ का नाम समाजवादी PDA यात्रा रखा गया है। यानी 2027 के चुनाव में अखिलेश 2024 वाली प्लानिंग लेकर चल रहे हैं। समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: दर्शक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो आपको दिखाएंगे भारतीय वायुसेना का दम आसमान के सिकंदर। देखते रहिए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
11: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: तो भरोसा है।
6: बहुत टायर्ड हो गई।
7: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
8: लायन डेट नट बाइट्स।
9: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
10: Sabdham!
11: Ek to ek.
12: Ishram.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
8: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
9: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
10: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
11: अब मैं क्या ही बोलूं?
12: परिवार अटूट भरोसा।
13: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
3: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
4: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
3: स्मॉल बैंक?
4: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
3: Okay.
4: Ujjivan, nothing small about us.
5: In association with
6: Anmol Biscuits, Swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक YouTube पर और बचिए हर क्राइम से।
8: अठारह सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में। तावड़े सीधे जमीनी स्तर का फीडबैक ले रहे हैं। चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर हो रही है। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ RSS भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। इस बार RSS और बीजेपी कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं रखना चाहती। आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सह कार्यवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। खबर है कि समन्वय बैठक में RSS ने बीजेपी को 2027 चुनाव की वो बड़ी चुनौतियां बता दी हैं, जिनसे बीजेपी को पार पाना है। RSS की तरफ से बीजेपी के लिए यूपी में 5 चैलेंज बताए गए हैं। पहला है UGC गाइडलाइन से सामान्य वर्ग का आक्रोश। दूसरा है पेपर लीक पर सरकार के खिलाफ बना माहौल। तीसरा है

रोजगार और शिक्षा, चौथा है निचले स्तर का भ्रष्टाचार और पांचवा है कार्यकर्ताओं की सुनवाई ना होना। यानी बीजेपी ने अगर इन मुद्दों पर काम कर लिया तो आरएसएस को लगता है कि वो 2027 फिर से जीत जाएंगे। ये वो मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द लगातार अखिलेश यादव हमला करते रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, पेपर लीक हो, अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला हो, अखिलेश यादव ने इन्हें लगातार मुद्दा बनाया हुआ है। आरएसएस की तरफ से बीजेपी को कहा गया है कि वो विपक्ष के नैरेटिव में ना फंसे, अपने मुद्दों और सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने के लिए जोर लगाएं, विपक्ष के मुद्दों का सटीक और तथ्यात्मक तरीके से जवाब देने पर जोर लगाएं। ये भी डर है कि विपक्ष जातिवाद का मुद्दा बनाएगा तो कहा गया है कि इससे भी बचना है। कुल मिलाकर बीजेपी को कहा गया है कि वो विपक्ष के नैरेटिव में उलझने के बजाय अपने मुद्दों और लक्ष्यों पर फोकस करें। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आपने कल अपने स्पीच में 6 पिलर्स की चर्चा की, जिसमें चिप डिजाइन, मशीन से लेकर टैलेंट तक। इसमें कौन सा एस्पेक्ट है जो सबसे डिफिकल्ट है अचीव करना?
5: मटेरियल्स की प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है इसमें। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो मटेरियल लगता है उसकी प्योरिटी व्हाट वी कॉल 6 9s and 9 9s, 99.99999 बार, इतना परसेंट उसकी प्योरिटी होनी चाहिए। यानी 10 करोड़ पार्टिकल्स में से केवल एक पार्टिकल इम्प्योर हो सकता है। दैट काइंड ऑफ प्योरिटी इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, एंड दैट डजंट कम बाय merely having the right machines or having the right training. That comes through meticulous discipline, continuous improvement. That takes huge amount of culture change. So to me it appears that materials is going to be the biggest challenge.
4: Talent, sir? Is in
5: talent we have cracked already, because in the first phase, Semicon 1.0, we promised 85,000 design engineers to be developed in 10 years period. In within 4 years we have been able to develop 70,000, and we are very soon going to launch the technician training program where we'll be training 1 lakh technicians, because we'll require that many. So 1 lakh technicians we'll be training in the next 3 to 4 years, but we are well set on that.
4: Aapne kal bola hai ki companies have proposed around 1 lakh crore of investment under Semicon 2.0.
5: actually zyada jayega usse jitna abhi industry bol rahi hai. एक तो सीईओ ने बोला कि हमारे बोर्ड ने कहा है कि आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट का कोई सीलिंग नहीं है, आप जितना एग्जीक्यूट कर सकते हो उतना इन्वेस्टमेंट हम लगा देंगे, तो इससे ज्यादा ही आएगा।
4: सो आर यू लुकिंग एट सम काइंड ऑफ टाइमलाइन हियर सर?
5: ये तो 6 साल का प्रोग्राम है, विद इन 6 इयर्स
4: यू आर एक्सपेक्टिंग दैट?
5: ज्यादा आएगा उससे। सेमिकॉन 1.0 भी 6 साल का प्रोग्राम था, 4 साल में कंप्लीट हो गया। सेम थिंग विल हैपन इन दिस।
4: सो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन,
5: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक अगर फैब लगती है तो देर आर अबाउट 10, लाइक मल्टीप्लायर ऑफ 10, एज इन देर आर मोर देन

0: 100 ecosystem partners who join that work. Yane, normally किसी भी एक इंडस्ट्री के साथ कुछ लोग जुड़ते हैं, राइट? कुछ इंडस्ट्रीज में ज्यादा लोग जुड़ते हैं. रेलवे में फॉर एग्जाम्पल 5 इज द फैक्टर, सेमीकंडक्टर में 10 इज द फैक्टर. सो दैट मीन्स देर आर सो मेनी जॉब्स विच आर गेटिंग क्रिएटेड इन द इकोसिस्टम. अगर एक फैब में 100 लोग हैं, बाकी में उससे 10 गुना ज्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं आसपास के इकोसिस्टम में. एंड दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू सी. आई कैन very comfortably see 1 lakh plus jobs getting created. उससे ज्यादा ही होगा, काफी ज्यादा होगा उससे.
1: तो आपका timeline काफी है,
0: ये 6 साल का पीरियड.
1: 6 साल के पीरियड में मोबाइल फोन्स, मिस्टर वैष्णव, आर नाउ इंडियाज सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम, विच इज अहेड ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी ऑल्सो
0: एंड पेट्रोलियम.
1: एंड पेट्रोलियम विद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्रॉसिंग $130 billion.
0: थर्ड रैंक इन द ओवरऑल गुड्स ऑलरेडी, फ्रॉम 9th रैंक 10 years ago. It is now third ranked.
1: So can India's semiconductor story replicate that?
0: Yes, it can. अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, बहुत सारे products जो India में designed है, India में manufactured है, they are now being exported to Japan, to Europe, to US. One of the, I won't take the name, but one of the stalls, they showed me a product which is now being exported to China. So that just with the foundation layer that we have been able to create that much competence in the industry, that much confidence in the industry. So of course we'll see a very high growth period.
1: Sir, talking about the ecosystem, kyunki ecosystem ki aapne charcha ki, design linked incentive scheme mein 24 startups with $83 million funding chal rahi hai. 15 of them have gone up to $118 million in VC funding. अगर इस तरह का कन्वर्जन होता है जो शुरू करती है सरकार और उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, तो क्या ये आप उसको भी एक पिलर मानते हैं?
0: बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है. फर्स्ट फेज में सेमिकॉन 1.0 में ऑनेस्टली वी डिड नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 1 वीसी फंडिंग. वी थॉट दैट यस फाइन, देयर विल बी सम पीपल हु विल कम एंड स्टार्ट देयर डीप टेक, बिकॉज दिस इज डीप टेक स्टार्टअप. दिस नॉट लाइक अ रूटीन स्टार्टअप. दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी डिफिकल्ट. Lot of perseverance is required, lot of talent, very deep talent is required. So we didn't expect that, but we got 20 VC funding. We got 105 startups getting into it, but 20 getting VC funding. So this time we have scaled up our ambition, and now that ecosystem is there. Today the India Deep Tech Alliance was making the announcement. They are already ready with $3 billion investment in India. They are ready with it. They are saying that already, like, they started with some 8 partners, now they are having about 20 partners, and there are many more partners willing to join them, many more funds willing to be a part of the India Deep Tech Alliance. So that journey is behind us now. So the future journey is going to be much more bigger. We are targeting in Semicon 2.0, 6 years period, we are targeting 200 deep tech chip design companies to be well established in the country.
1: आपने बताया कि बहुत सारे एरा पीछे रह गया, भारत आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसी में इंडिया में करेंटली 40 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है.
0: 28 नैनोमीटर.
1: आपने उसको एक गोल सेट किया है 7 नैनोमीटर टू 3 नैनोमीटर विद इन 8 years. लेकिन जिन देशों ने इसको अचीव किया है सर, उन्होंने डेकेड्स लगाए हैं, बहुत सालों लगाए हैं. लेकिन आपने 8 साल का बोला है कि 8 साल के अंदर भारत ये अचीव कर लेगा, तो आपको ये कॉन्फिडेंस किस इशू पर आ रहा है?
0: देखो, जितना हमने सेमिकॉन 1.0 में अचीव किया 4 साल में, 4.5 साल में, उतना कई देशों ने 20 साल में अचीव किया था. तो देश में पॉलिसी की सर्टेनिटी है, टैलेंट है, क्लियर पॉलिटिकल विल है, और दुनिया भर में इंडिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखा जाता है. इन सब फैक्टर्स को अगर हम मिलाएं और ये टारगेट लेके चले कि हमें 7 नैनोमीटर्स और 3 नैनोमीटर्स तक पहुंचना है बाय 2035, इट्स अ टारगेट विच इज अचीवेबल.
1: यू आर सेइंग बाय 2035 इंडिया वुड हैव मैन्युफैक्चर्ड दैट?
0: या, या, इट्स अचीवेबल.
1: इट्स
0: अ टफ टारगेट. इट्स, आई डोंट से दैट दिस इंडस्ट्री इज इजी इंडस्ट्री. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंडस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड. द एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन इन दैट वीडियो वॉज एक नाखून पे अगर हमें अपना नाम लिखना है तो आसान है, सारे क्लासमेट्स का नाम लिखना तो डिफिकल्ट है, और सारी टेक्स्ट बुक्स भी अगर उस पर लिखनी है एक नाखून पे, तो दैट इज सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, दैट कॉम्प्लेक्सिटी, इतना फाइन इसमें काम होता है. यू गो एंड सी दी वर्क विच इज बींग डन हियर, इट्स फिनोमिनल. सो आई नो दी डिफिकल्टी ऑफ दिस, आई अंडरस्टैंड, आई हैम वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द डिफिकल्टीज, दैट्स वाई वी हैव टू वर्क वेरी मेथोडिकली, देर हैज टू बी परसिव.

0: Understand, I am very cognizant of the difficulties. That's why we have to work very methodically. There has to be perseverance. There has to be a lot of patience, a lot of explaining, a lot of hand-holding. Tabhi jaake achieve hoga.
1: So, usi ki wajah se aapne wo explainer dala, which was seen by millions, and you had like really broken it down. For most people, it was almost like a master class in Semicon.
0: Theek hai, aise
1: hi. I'll move ahead, sir. The CHIPS to Startup program, that has reached 320 universities.
0: Now 400 universities.
1: 400 universities. See, I mean, there are data and then the data which is updated by you.
0: Change hona hai.
1: Ji. So, what is one aspect which was most surprising for you and also the most promising one?
0: Bahut chote-chote shaharon mein, when we started this program, chote-chote shaharon mein bhi students ka jo enthusiasm dikha, Odisha mein Brahmapur, Assam mein शिवपुर, मेघालय में, एक किसी भी स्टेट में आप जाओ, हर स्टेट में 400 यूनिवर्सिटीज पूरे देश भर में फैली हुई है. इवन द स्मॉल यूनिवर्सिटीज एंड स्मॉल टाउन्स, द स्टूडेंट्स आर सो एंथुजियास्टिक, दे आर लर्निंग, दे आर गेटिंग इनटू डेप्थ, और उनकी चिप्स डिजाइन हो रही है, चिप्स टेप आउट हो रही है, चिप्स बोर्ड में लग रही है, टेस्टिंग हो रही है उसकी. सो इमेजिन द कॉन्फिडेंस इट गिव्स टू द स्टूडेंट्स. आई हैव स्पोकन विद मेनी स्टूडेंट्स. It's life changing because those students, when they go into the industry, like, there won't be many countries in the world where a student coming out of a university can say that I have taped out a chip. Maine ek bar Davos mein ye round table mein pucha tha industry ko. Industry could not count more than 20 universities in the entire world, and we have 400 universities where students are able to tape out. So this is a very large scale of talent development that gives youth satisfaction, because youth is liking it. Young people are seeing a new hope in it.
1: And they are seeing future in it.
0: It is there, because the industry says that the gap of employment by the employment gap, talent gap, is about 1 million by 2030. Million. 10 lakh.
1: Sir, toh एजुकेशन Global. Point of view से, क्योंकि इकोसिस्टम की जब बात करते हैं तो एजुकेशन भी होना चाहिए ताकि आप
0: एग्जैक्टली वही कर रहे हैं हम यूनिवर्सिटीज में. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन द यूनिवर्सिटीज. 400 यूनिवर्सिटीज एजुकेशन हो रही है, तभी तो जाके वो सीधा उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही. नाउ इन सेमिकॉन 2.0 इन द टैलेंट 6th पिलर वील अपग्रेड द एजुकेशन टू इवन मोर हायर लेवल. व्हाट अदर कंट्रीज दे लर्न इन द मास्टर्स प्रोग्राम विल ब्रिंग इट इन द बैचलर्स प्रोग्राम, बीटेक प्रोग्राम में लेके आ जाएंगे. सिस्टम डिजाइन, सो चिप डिजाइन, चिप के ऊपर सिस्टम डिजाइन, दैट्स इवन मोर डिफिकल्ट. सो दोज स्टूडेंट्स डू गुड इन चिप डिजाइन विल ग्रेजुएट देम इनटू सिस्टम्स डिजाइन. इट्स अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री. इट्स अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री एज इन आप यहाँ पे जो कुछ भी देख रहे हो यहाँ पर, राइट, या अपने घर में अगर लो आप एग्जाम्पल लो, घर में आप सुबह उठने से लाइट जलाने से लेके, लाइट से लेके फोन देखते हो आप, मोबाइल फोन देखते हो, उसके बाद में आप नाश्ता करते हो, तो आप में अगर आपके पास घर में कोई भी नाश्ते से रिलेटेड कोई भी कुकिंग इक्विपमेंट है, ज़्यादातर कुकिंग इक्विपमेंट में सेमीकंडक्टर्स लगते हैं. रेफ्रिजरेटर में सेमीकंडक्टर्स चिप्स होती है, आपके टीवी में, फैन में, सब में चिप्स लग रही. आप स्कूटी पे आते हो, कार में आते हो, सब में चिप्स लगती है. ट्रेन में, मिसाइल में, एरोप्लेन में, सब में चिप्स लगती है. बिना सेमीकंडक्टर के यू कांट हैव एनी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड. सो यू हैव टू हैव दैट इंडस्ट्री फॉर मेकिंग श्योर दैट यूर मैन्युफैक्चरिंग footprint keeps growing.
2: अब खबर ट्रंप के प्लान हथियार की. अमेरिका ने ईरान पर हमला किया. फरवरी से शुरू हुआ युद्ध अभी तक जारी है, लेकिन इसी युद्ध में अब एक नया मोर्चा खुल गया. यह मोर्चा है हूती बनाम सऊदी अरब का. सऊदी अरब पर हूती के हमले जारी हैं. हूतियों के खिलाफ सऊदी अरब ने अमेरिका से सैन्य कार्रवाई को लेकर मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया. उल्टा युद्ध जैसी आपदा में ट्रंप ने सऊदी अरब को अमेरिकी हथियार बेचने का मौका तलाश लिया. तो क्या ट्रंप की नीति यही है, पहले लड़वाओ फिर हथियार बेचो?
3: सऊदी अरब पर हूतियों के हमले जारी.

0: हमले के बीच ट्रंप की सऊदी से डील। सऊदी को F-35 फाइटर जेट देंगे ट्रंप। 2 लाख करोड़ की बड़ी डील को मंजूरी। ट्रंप का खतरनाक हथियार बेचो प्लान। पहले लड़वाओ फिर हथियारों की डील। बीते कई दिनों से हूतियों के हमलों से सऊदी अरब की धरती धधक रही है। तेल रिफाइनरी से लेकर तेल की पाइपलाइन पर हूती बारूदी कहर बरपा रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान ने चुप्पी साध रखी है। बड़ी बात यह है कि हूतियों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब है। सऊदी की गुहार के बावजूद अमेरिका ने हूतियों के ठिकाने पर सैन्य हमले करने से इनकार कर दिया, उल्टा सऊदी अरब के साथ हथियारों की डील पर मोहर लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक दो नहीं बल्कि 50 F-35 लड़ाकू विमान बेचने की डील पर मोहर लगा दी। लड़ाकू विमानों की डील करीब 2 लाख करोड़ के करीब की है। F-35 दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है। इसमें स्टेल्थ तकनीक है जिसकी मदद से लड़ाकू जेट दुश्मन की नजर से बच सकता है। जानकार मानते हैं कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका की डील ट्रंप के प्लान हथियार का हिस्सा है, क्योंकि डील की टाइमिंग बहुत अहम है। सऊदी अरब लंबे अरसे से F-35 लड़ाकू विमानों का सौदा करना चाहता था, लेकिन इसराइल के दबाव में अमेरिका ने सौदे को लटका कर रखा था। वहीं ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद खाड़ी देशों में दहशत है। मिडल ईस्ट ईरान और हूती से बचने के लिए हथियारों की मुंहबांगी कीमत देने को तैयार है। ट्रंप ने पहले ईरान पर हमला करके आपदा की स्थिति पैदा की और अब मुंहबांगी कीमत पर सऊदी को हथियार बेच रहा है। अमेरिका का ये पुराना मॉडल है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका यही चाहता है कि दुनिया भर में युद्ध का माहौल बना रहे, ताकि उसके हथियारों का कारोबार फलता फूलता रहे। अगर अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी है तो उसकी वजह है खाड़ी के देशों में ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत का डर। इस डर के पीछे भी अमेरिका है, क्योंकि खाड़ी देशों के साथ ईरान के टकराव की असल वजह अमेरिका ही है। मिडल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ईरान हमेशा से मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर सवाल उठाता रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट में अमेरिकी सेना की मौजूदगी ही पूरे इलाके की शांति को भंग करती है।
1: A nuclear weapon right now, and I would be addressing them as Supreme Leader, Mr. Supreme Leader, sir, how are you? But now I don't have to do that. If they had a nuclear weapon, I'd be calling the Supreme Leader, and I'd be saying, Mr. Supreme Leader, how are you, sir? Is there anything we can do for you? As opposed to bombing the crap out of them.
0: ईरान का यही डर इसराइल ईरान युद्ध और ईरान अमेरिका युद्ध में सच साबित हुआ, क्योंकि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया। मतलब यही है कि अमेरिका पूरे इलाके को युद्ध में धकेल कर अपने हथियारों का सौदा कर रहा है। यही वजह है कि ईरान कह रहा है कि मिडल ईस्ट में शांति तभी लौटेगी जब पूरे इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होगा।
2: एक और मुद्दा है सर, जिसपे हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि युद्ध रुका है या नहीं वो एक मुद्दा है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब कहते हैं कि वो असल जो लीडर्स हैं ईरान के, उनसे बात कर रहे हैं। अटैक के बाद लीडरशिप बदल चुका है। आप हमें बताइए ये असली लीडर्स कौन हैं?
3: मुझे लगता है कि यह सवाल आपको खुद ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। एक दिन वो ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं कि हम ईरान के दोस्त हैं। तो हम नहीं कह सकते कि उनके किस बयान को हम गंभीरता से लें और उसी के हिसाब से काम करें।
0: ट्रंप के इसी खेल को लेकर अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब पर हमला कर रहे हूतियों के साथ अमेरिका ने सीक्रेट डील कर रखी है। डील यही है कि सऊदी अरब पर हमलों को लेकर अमेरिका सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, बदले में लाल सागर में अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को हूती निशाना नहीं बनाएंगे। दावे की माने तो इसे लेकर अमेरिकी अधिकारियों और हूतियों के नेताओं के बीच मस्कट के अमेरिकी दूतावास में बातचीत हुई थी। खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस बता चुके हैं कि उनकी सरकार हूतियों के संपर्क में है। वहीं हूती भी यही ऐलान कर रहे हैं कि उनका निशाना सऊदी अरब है। हमने अल्लाह की मदद और उसके आदेश से सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया। ये लड़ाकू विमान मारिब प्रांत के आसमान में अपने सैन्य अभियान के समर्थन में हमले कर रहा था। इसे स्थानीय स्तर पर बनाई गई हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमारे हमले सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हैं। इन जगहों का पवित्र स्थलों से कोई संबंध नहीं है। सऊदी का दावा झूठा है। मक्का को निशाना बनाने का दावा एक घिसा पिटा झूठ है। पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है और अब कोई इस पर भरोसा नहीं करता।
4: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ्रा
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: EU सोच बदलो और बैंक भी।
9: पापा
10: सॉरी यार गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का
9: सब कैशलेस हो गया है।
10: हाँ ला भाई मेरा बैट।
9: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
10: चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
12: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
12: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
14: In association with
15: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
16: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: उत्तर प्रदेश के मिजाज को नापना हो तो बस जैसी सवारी भी चाहिए और धारदार स्लोगन भी। ये अखिलेश यादव की पीडीए बस है, जो बस अभी हवा पानी सब दुरुस्त कर तैयार कर ली गई है। अक्टूबर से इस पर सवार होकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलने वाले हैं। बस पर लिखे नारों से सामाजिक न्याय का संदेश दिया गया है, यानी 2027 को लेकर पीडीए का बड़ा एजेंडा तैयार है। लेकिन अखिलेश बस यात्रा पर निकले उससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2027 ही नहीं 2047 तक अखिलेश के सत्ता में नहीं आने की गारंटी जारी कर रहे हैं।
1: पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
2: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
1: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है। सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
2: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
1: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
0: अखिलेश यादव 2024 के चुनाव के समय से ही पीडीए का दांव चल रहे हैं। पहले पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया गया था। बाद में पीडीए में पंडित, अगड़ा, आधी आबादी, आदिवासी सभी के शामिल होने की बात की गई। 2024 में यूपी में बीजेपी से ज्यादा लोकसभा सीटें पाने के बाद अखिलेश इसे जीत का महामंत्र मानकर चल रहे हैं।
3: जाति गणना के साथ साथ पीडीए का साथ लेकर के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम हम सब मिलकर के करेंगे।
0: अखिलेश के इस पीडीए रथ में सोफा लगा है, 6 लोग एक साथ बैठक कर सकते हैं। बस में वॉशरूम, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं। अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक यात्राओं के लिए 2016-17 और 2021 में इसी बस का इस्तेमाल किया था। बस अब नए डिजाइन और पीडीए के संदेशों के साथ समाजवादी पार्टी मुख्यालय पहुंच चुकी है। पीडीए पर राजनीतिक वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन असल सवाल है राजनीतिक संदेशों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने आशीर्वाद का दिया जलाया है। उधर योगी आदित्यनाथ विकास के साथ साथ हिंदुत्व के अपने एजेंडे पर कायम है, साथ ही यूपी में कानून का राज होने का दावा कर रहे हैं।
4: आज यूपी कर्फ्यू मुक्त है, दंगा मुक्त है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अपराधी या तो जेल में है या दूसरे लोक की यात्रा में जा चुका है।
0: विकास और कानून व्यवस्था पर पक्ष विपक्ष के दावों के बीच सच्चाई ये भी है कि चुनावी समीकरण आखिर में जातियों पर आने की ही संभावना है। अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा से इसकी राजनीति और आगे बढ़ सकती है। आज तक ब्यूरो।

0: पंचायत आज तक बिहार में बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यूसीसी पर गठबंधन से बातचीत के बाद लेंगे निर्णय। बंगाल उपचुनाव में ट्विस्ट में ट्विस्ट, पहले नंदीग्राम से ममता की उम्मीदवार ने नाम वापस लिया तो कांग्रेस का दावा, हमारी प्रत्याशी मिलन प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राहुल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर पार्टियों के तोड़ने के आरोप पर मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस एक भस्मासुर, सभी दलों को जलाने का करती है काम। उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख भागवत का जेंजी को संदेश, भारत के युवा पूरी दुनिया में न सिर्फ यशस्वी बल्कि सार्थक भी बने। वायुसेना को एचएएल से मिला तेजस का ट्रेनर विमान, पवन हंस को भी 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर मिले, बेंगलुरु के कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 18 साल और 11 महीने तक देश की 3-3 अदालतों में यह मुकदमा चला। किनिठारी के 13 बच्चों के कत्ल के इल्जाम में सुरेंद्र कोहली को फांसी दी जाए या नहीं, फिर 13 के 13 मामलों में अदालत ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुना दी। पर 10 महीने पहले देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने सभी फांसी की सजा को रद्द करते हुए सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया। पर किस्मत का खेल देखिए, जिस सुरेंद्र कोहली को कानून फांसी नहीं दे पाया उसी सुरेंद्र कोहली ने खुद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी देश की तीनों ही अदालतों ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। 11 साल पहले एक रात ऐसी भी आई थी जब फांसी का फंदा उससे बस कुछ ही दूरी पर था। फांसी का तख्ता, जल्लाद, रस्सी सब तैयार, पर ऐन फांसी से पहले रात के अंधेरे में सुप्रीम कोर्ट की बत्ती जली और फांसी से ऐन पहले उसकी फांसी रोक दी गई। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे 13 मामलों में देश की तीनों अदालतों ने फांसी की सजा सुनाई। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब 13 के 13 मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। पिछले 10 महीनों से वो आजाद था, उसे हर जुर्म से बरी कर दिया गया था। 13 की 13 फांसी की सजा वापस ले ली गई थी। अब वो कानून का गुनहगार भी नहीं था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 18 साल 11 महीने तक जिसे जेल में रखा गया, जब वो जेल से बाहर आया तब उसकी मौत उसी फांसी से हुई जो फांसी उसे कभी कानून दे नहीं सका। देश को झकझोर देने वाले निठारी कांड का कभी मुख्य आरोपी रहा ये सुरेंद्र कोहली है, और ये उसके गले में फांसी का फंदा जो फंदा उसे कभी कानून नहीं पहना सका। आखिरकार जेल से रिहाई के ठीक 10 महीने और 5 दिन बाद सुरेंद्र कोहली ने वही फंदा अपने हाथों से पहन लिया। अट्ठारह सितंबर शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे हरिद्वार में मशहूर हर की पौड़ी से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर चाय की इसी दुकान के अंदर सुरेंद्र कोहली ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हालांकि जब उसने अपनी जान दी तब तक किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मरने वाला है कौन। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लाश के साथ जो सामान पड़े थे उन्हीं में से एक आईडी मिली। इस आईडी पर पहली बार जब पुलिस की नजर पड़ी तब खुद पुलिस हैरान थी, क्योंकि ये वो नाम था जिसे शायद हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है।
2: एक व्यक्ति यहाँ 3 दिन पहले ही चाय की दुकान चला रहा था, तो आज जब सवेरे जिसने उसको चाय की दुकान यहाँ किराए पे दिलाई थी वो सदाराम नाम से अपने को बताया उसने, तो जब ये वो आया होगा तो ये देखा कि फांसी लगाए हुए हैं, तो पुलिस को सूचना दी, मौके पे पुलिस आई है, तो ये जानकारी हुई है। जब उसकी जेब से जो है वो सुरेंद्र कोहली नाम के व्यक्ति का आधार कार्ड प्राप्त हुआ है। जो ये पता चला है कि जो निठारी कांड हुआ था उसमें ये अभियुक्त था। काफ़ी टाइम से ये पहले बता रहे हैं सिटकुल में भी कोई सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था, उसके बाद ये 3 दिन पहले ही यहाँ आया था। आज ये सुसाइड कर लिया, तो प्रथम दृष्टया सुसाइड लग रहा है, बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है।
3: पुलिस अफसर जिस शख्स के बारे में बता रहे हैं कि जिसकी मदद से सुरेंद्र कोहली ने 3 दिन पहले ही यहाँ चाय की दुकान किराए पर ली थी, ये वही शख्स है। इसका नाम धर्मेंद्र कौशिक है। असल में पिछले 2-3 महीनों से सुरेंद्र कोहली सिटकुल में एक सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम कर रहा था। वहीं से उसके किसी पहचान वाले ने धर्मेंद्र से उसकी सिफारिश की। 4 दिन पहले ही सुरेंद्र कोहली हरिद्वार आया और धर्मेंद्र कौशिक की सिफारिश से उसे चाय की एक दुकान किराए पर मिल गई। ये वही चाय की दुकान है जो सुरेंद्र कोहली ने 3 दिन पहले ही किराए पर ली थी।
4: ये सदाराम जी पहले रोशनाबाद में रहते थे, तो हमारे मित्र हैं, तो इनके द्वारा मैंने जाना था। तो एक रोन लगे गान लगे कि भाई मुझे काम दिवा दो, कोई अपना काम कर लूँ मैं, और मैं शुगर पेशेंट हूँ ये हूँ। तो मैंने ये दुकान खुद मैंने दिवाई थी मैं, और 3 दिन हुए आए हुए। अब सुबह आए यहाँ पे तो कहने लगे यहाँ पे तो दीवान जी बैठे थे यहाँ पे, मैं नहीं जानता हूँ, चाय के लिए कहने लगे कि चाचा ने आज दुकान नहीं खोली चाय। तो मैंने आवाज मारी दूसरी बार शटर में, तो शटर का थोड़ा लोग ढीला था, तो शटर अपना उठ गया, तो देखा तो वहाँ से पड़े थे।
5: सबसे पहले आप ही ने देखा उनको?
4: हाँ, वहाँ पे उन्होंने देखा, सबने देखा, 2-3 बंदे थे यहाँ पे।
5: नाम उन्होंने सदानंद बताया।
4: सदाराम,
5: आपने पहचाना नहीं किया सुरेंद्र?
4: मैं क्या जान लूँ।
3: यानी सुरेंद्र कोहली ने चाय की दुकान खोलने के लिए अपना नाम और असली पहचान दोनों छुपाई, ये लाजमी भी था। निठारी कांड को लेकर जिसे 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बच्चों का आदमखोर तक कहा गया, उस सुरेंद्र कोहली को उसके असली नाम और पहचान के साथ शायद कोई भी समाज अपनाता नहीं। बस इसीलिए उसने अपना नाम बदलकर सगाराम रख लिया था। हालांकि वो अपने पास अपना असली आधार कार्ड रखे हुए था, जिस पर न सिर्फ उसका असली नाम सुरेंद्र कोहली लिखा था, बल्कि उस आधार कार्ड पर उसका पता भी उसी D5 कोठी निठारी का था, जिस कोठी ने 20 साल पहले बच्चों के कंकाल उगले थे। चूंकि सुरेंद्र कोहली एक बड़े केस का आरोपी रहा, फिर देश की हर अदालत से रिहा हो गया और रिहाई के 10 महीने के अंदर अंदर उसने अपनी जान दे दी, इसीलिए हरिद्वार पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। डॉक्टरों के पैनल के जरिए पोस्टमार्टम करवाने का फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। वैसे भी निठारी के वो माँ बाप जिनके बच्चों को मारा गया, उनका गुस्सा रिहाई के बावजूद सुरेंद्र कोहली से कभी कम नहीं हुआ। यही वो तारीख थी जब निठारी की D5 कोठी का शैतान, सीरियल किलर, बच्चों का कातिल और आदमखोर तक कहे गए सुरेंद्र कोहली को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। इल्जाम था 16 मासूम बच्चों के कत्ल का। पूरे 18 साल और 11 महीने तक जेल में रहने के बाद वही सुरेंद्र कोहली बुधवार की देर शाम 12 नवंबर 2025 को नोएडा के इसी लक्सर जेल से आजाद हो गया। हर जुर्म से आजाद, हर सजा से आजाद, हर इल्जाम से आजाद, देश में इससे पहले शायद ही कभी किसी के हिस्से में ऐसी आजादी आई हो, जिसे एक दो नहीं बल्कि 13 बार 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई। 2005-06 के दरमियान जब निठारी में मौजूद इसी D5 कोठी ने अपने बाहर के नालों से इंसानी कंकाल उगलना शुरू किया, तब कुल 19 कंकाल या कंकाल के अवशेष मिले थे, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद केस 16 बच्चों के कत्ल के दर्ज हुए। बाद में नोएडा पुलिस से मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। गाजियाबाद की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जुलाई 2017 में इन 16 मामलों में से 3 मामलों में सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया, जबकि बाकी के 13 मामलों में उसे सीधे फांसी की सजा सुनाई। बाद में सुरेंद्र कोहली ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। 6 साल बाद अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत यानी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलट दिया। जिन 13 मामलों में निचली अदालत ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी थी, उनमें से एक केस को छोड़कर बाकी 12 मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। यहां तक कि D5 कोठी के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर को निचली अदालत ने जिन 2 मामलों में सजाए मौत दी थी, उसे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पलटते हुए पंढेर को रिहा कर दिया। यानी अब कायदे से निठारी के 16 बच्चों के कत्ल के मामले में से सिर्फ एक केस बचा था, जिसमें अकेला सुरेंद्र कोहली गुनहगार था और जिसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस फांसी की सजा को बरकरार रखा था जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दिया था। ये 13वां और एक आखिरी केस 15 साल की एक बच्ची रिम्पा हल्दर के कत्ल का था। इसी 13वें केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुरेंद्र कोहली ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी और मौत की सजा बरकरार रखी। सुरेंद्र कोहली ने इस 13वें केस को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी निठारी कांड के 13वें केस में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुरेंद्र कोहली की मौत की सजा पर मुहर लगा चुकी थी। इसी बीच सुरेंद्र कोहली ने सुप्रीम कोर्ट में इसी 13वें केस जिसमें उसे फांसी की सजा हुई थी को लेकर तीसरी बार क्यूरेटिव पिटीशन की शक्ल में एक और अर्जी दाखिल कर दी। पर इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट सुरेंद्र कोहली की इस क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला सुनाती, इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक चौंकाने वाला फैसला आता है। अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इस एक 13वें केस को छोड़कर बाकी के उन 12 मामलों में जिनमें निचली अदालत ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी थी, उन सभी मामलों में कोहली को बरी कर दिया। यानी अब सिर्फ एक 13वां केस बचा था, वो इकलौता केस जिसमें देश की 3 अदालतें उसे सजाए मौत दे चुकी थी। भले ही सुरेंद्र कोहली बाकी के सभी मामलों में बरी हो चुका था, लेकिन इस एक इकलौते केस की वजह से भी उसे फांसी हो सकती थी। इस 13वें मामले को लेकर भी सुरेंद्र कोहली इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फांसी पर अमल में देरी का हवाला देते हुए इस 13वें केस में भी उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सुरेंद्र कोहली ने इस फैसले को भी फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसी 13वें केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2025 को निठारी कांड के इस आखिरी केस से भी सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया। यानी अब सुरेंद्र कोहली के खिलाफ एक भी केस पेंडिंग नहीं था, निठारी के हर केस से अब वो बरी हो चुका था। अंकित शर्मा के साथ मुदित कुमार अग्रवाल, हरिद्वार आज तक। निठारी के कुल 13 बच्चों के कत्ल के मामले में कुल 2 आरोपी थे, सुरेंद्र कोहली और D5 कोठी का मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर। हालांकि इन दोनों को ही कोर्ट ने बरी कर दिया। बरी होने के बाद 10 महीने पहले हमने मुनिंदर सिंह पंढेर से सुरेंद्र कोहली के बारे में बातचीत की थी। तब सुरेंद्र कोहली को लेकर पंढेर ने क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। आप D5 कोठी में कब आए थे?
6: मैं 2004 में आया था।
3: सुरेंद्र कोहली से कैसे मुलाकात हुई?
6: जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर थे जिन्होंने ये कोठी हमारे को दिलवाई, ये उनके पास काम करता था।
3: तो 2004 में ही सुरेंद्र कोहली को आपने अपने घर पर रखा?
6: जी हाँ।
3: 2004 से 2006 अगले 2 सालों में कभी आपने सुरेंद्र कोहली के बिहेवियर, उसके बर्ताव के बारे में कुछ अजीब चीज देखी कभी?
6: बिल्कुल नहीं,
3: बिल्कुल नहीं। कोहली फर्स्ट फ्लोर पे रहा करता था?
6: पहले वो रहता था गराज में।
3: अच्छा,
6: ठीक है जी। गराज के बाद मैंने एक सर्वेंट क्वार्टर बनाया उसके ऊपर, ठीक है। सर्वेंट क्वार्टर में वो रहने लगा और सर्वेंट क्वार्टर के साथ उसका बाथरूम था। हाँ जी।
3: जब ये सारी चीजें हुई और आपका जिससे मैंने शुरू में ही पूछा था कि कोहली ऊपर रहता था, कभी आपने जाने की कभी मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ कोहली रहता था उस वक्त
7: कभी मौका मिला, इत्तफाक हुआ कि जाकर देखूं यहाँ?
6: नहीं, मैं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के टाइम गया था ऊपर, उसके बाद तो मतलब ही नहीं है। मैं तो कभी किचन में भी नहीं जाता था, सही पूछो तो, मैंने क्या करना वहां पे, मेरा तो काम ही नहीं है।
7: जब आपने कुछ नहीं देखा, कभी कुछ नहीं, लेकिन आपके जो भी जो कई बार ऐसे स्टेटमेंट आए हैं जिसमें आपने सीधे सीधे निठारी में जितने बच्चे मारे गए, आपने ये कहा है कि ये कोहली ने किया है।
6: कहाँ किया है?
7: आपने कुछ अभी हाल में भी एक कहीं कहा था कि कोहली रात को एक दो बार शायद देखा निकला भी है, या कोहली इस तरीके का कर सकता है। मेरा इन बच्चों, क्योंकि उसकी आपने एक दलील भी दी थी कि जब जब इस कोठी में कोई मर्डर हुआ, ये कोठी के बाहर जहाँ भी, आप उस कोठी में मौजूद नहीं थे। आप पहली बार ऑस्ट्रेलिया में थे, फिर चंडीगढ़ में, फिर कहीं टूर पर, आप नहीं, आप बल्कि आप
6: ये तो मैं अभी कहता हूँ, वो तो कोर्ट, वो तो सीबीआई कह रही है।
7: हाँ, इसीलिए मैं जो फैक्ट्स है उसी पे बात कर रहा हूँ।
6: अगर उसको आप जोड़ रहे हो?
7: नहीं, उसको मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन आपने कभी माना कि हाँ ये जो कुछ हुआ है इसके लिए कोहली जिम्मेदार है?
6: मैंने कभी नहीं माना, मेरे मुंह से निकलवाया गया अंग ढंग से कह कह के कुछ बात घुमा घुमा के।
7: मतलब आपको कहा गया कि कोहली का नाम लो?
6: मेरे को किसी ने नहीं कहा, बल्कि यस ड्यूरिंग अपना, जैसे आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर रहे हो या कुछ पूछ, वो रीजनिंग पूछ रहे हो, तो उसमें कोई स्लिपेज हो सकती हो, बट नहीं, मैंने अपनी तरफ से कभी ये नहीं कहा भी कोहली ने किया। हाँ जी,
7: तो फिर पंडेर साहब वही बात आ जाती है कि असल में वो कोठी है सेंटर में, और कोठी के ओनर आप हैं और कोठी का नौकर कोहली, और 19 साल हो गए कोठी के पीछे से ही सारी चीज़ें बरामद होती हैं। यहाँ तक कि इल्ज़ाम ये भी आता है कि इसके पीछे ह्यूमन ऑर्गन का भी एक रैकेट था।
6: ये तो उस टाइम भी आ गया था।
7: हाँ,
6: ये तो उस टाइम जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस टाइम काफ़ी शोर मचा था, कई चीज़ों का शोर मरा था। पहले तो मेरे ख्याल कोई ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चला था, फिर उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन का चला था, उसके बाद फिर ये मेरे ख्याल चला था ये ऑर्गन ट्रेड का चला था। ये तो उसी टाइम शोर मच रहे थे, मीडिया में ही आ रहा था, तो इसके साथ के साथ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, नहीं हो रही मैं तो कुछ बता नहीं सकता।
7: आपके पड़ोस में जो एक कोठी है D6,
6: हाँ जी,
7: उसमें एक डॉक्टर रहते हैं,
6: रहते हैं।
7: और तब उंगली उठी थी कि शायद ये ह्यूमन ऑर्गन जो भी है ये सारी,
6: उस टाइम तो मेरी नॉलेज में नहीं थी बिल्कुल भी ये बात, मुझे तो बाद में पता लगा।
7: ये कितना सच है कि एक बार आपने कहीं ये कहा था कि एक बार रात को आपकी अचानक आँख खुली और आपने देखा कि गेट खोल कर कोहली कहीं बाहर जा रहा, उसके हाथ में कोई पैकेट?
6: देखो, बेर सवेर तो जाता रहता हूँ, आता रहता था, पर ऐसी कोई बात नहीं है अभी मैंने कोई रात को ऐसा कोई आठ उठ के देखा हो या कुछ ऐसा हो स्पेसिफिक लिखा हो, पर देर सवेर गिरता होता, रात को भी जाके स्पॉन्सर गिरता था।
7: तो आप रात को अगर वो बाहर जाता था तो आपने कभी पूछा नहीं क्यों रात को?
6: नहीं, मैं नहीं पूछता, मैं मतलब ही नहीं, क्या पूछ, किस चीज़ को पूछूं?
7: घर में आपके कभी पॉलीथीन या इस तरह की चीज़ें आपने एक्सेस पाया हो?
6: नहीं, मेरे तो जो कनक राइस वगैरह बैग्स वगैरह आते होते थे पॉलीथीन के, वो आते थे।
7: आप जब D5 में रहा करते तो अक्सर आप अकेले होते थे, फैमिली आपकी चंडीगढ़ में थी?
6: यस, कुछ तो समय के बाद मेरी फैमिली चंडीगढ़
7: चली गई थी।
6: हाँ,
7: यहाँ पर फिर रात में अकेले कोहली रहा करता था आपके पीछे में?
6: बिल्कुल।
7: एक मुनीदर साहब जो पूरे केस स्टडी से लेकर सारी बातें आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि अक्सर जब आप रात को कभी आया करते थे तो आप अपने इस कोठी में पार्टी किया करते थे और आप स्कॉट बुलाया करते थे, क्या ये सच है?
6: स्कॉट वाली कहानी सच है।
7: तो जो भी स्कॉट आप बुलाते थे आती थी, तो जाहिर है कि सुरेंद्र कोहली इन चीज़ों की जानकारी रखता था और वो देखता था। तो एक चीज़ ये कही गई कि जब उसने ये देखना शुरू किया तब पहली बार सुरेंद्र कोहली के अंदर भी कुछ अरमान जागे या एक शैतानियत जागी और उसका बहुत असर पड़ा आपके इस एक्ट से, ये कितना सच है?
6: ये बात का जवाब वही दे सकता है, मैं किसी के दिमाग के बारे क्या बोलूँ। देखो, इंसान डूबता क्या नहीं कहता, और कोई भी आदमी हो वो तो ये कहेगा कि अगर मेरे से कोई पूछताछ हो रही है यार, कोई गलत इशारा मेरे ऊपर आ रहा है, गलत उंगली मेरे ऊपर उठ रही है, तो वाजिब है वो कुछ ना कुछ ऐसा कह ही देगा, और कह सकता भी है और हो भी सकता है, पर उसको उसने कभी ये चीज़ मेरे से जाहिर नहीं की।
7: इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद आपने कभी ये महसूस किया कि सुरेंद्र कोहली मतलब किस तरह का इंसान है, चूँकि आपने उसको रखा था काम पर?
6: मुझे तो बहुत बढ़िया इंसान लगा, तो अगर अच्छा ना होता तो मैं रखता ही ना, सीधी सी बात है।
7: जब दिसंबर लास्ट वीक 2006 में पहली बार आपकी और आपके पड़ोसियों के कोठी के पीछे नाले से कंकाल बरामद होना शुरू हुआ, तब आपको अंदाज़ा था कि इसकी आँच आप और कोहली दोनों तक जाएगी?
6: मुझे तो कोई जब मुझे पता लगा उस टाइम तो सारी बात खुल चुकी थी, उस टाइम तो केस सारा खुल ही चुका था भी, हाँ जी ये कोई सीरियल किलिंग का मामला है। तब जाके मेरी कानों में पति और बात पड़ी।
7: पहली बार आपको क्या पता चला सुरेंद्र कोहली के बारे में?
6: वो तो पहले तो लिंक उसका जो बनाया गया था वो तो पायल के साथ बनाया गया
7: जी,
6: था
7: बिल्कुल।
6: तो बच्चों वाली तो कोई कहानी थी नहीं, बच्चों वाली कहानी जो मेरी अपना जहन में आया वो तो सुबह अपना 29 तारीख को आया।
7: पायल का जब फोन मिला था तो कहते हैं कि शायद उसका सिम या कुछ सुरेंद्र कोहली का था उसमें।
6: यस,
7: तो जिस पायल के साथ आपका रिश्ता था उसी पायल की गुमशुदगी और फिर उसका सिम सुरेंद्र कोहली के पास मिलना, तब तक आपको अंदाजा नहीं हुआ था कि सुरेंद्र कोहली ऐसा कर सकता है कि उसने कर दिया?
6: तो मैं ही हूँ जो सुरेंद्र कोहली को उसको अपना गांव से लेके आया था। जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई है और जब मैंने इन्वेस्टिगेशन वालों को खुद बोला है भी ये लड़की हर हालत रिकवर होनी चाहिए, कोहली को लाने वाला मैं था उसके गांव से, मैंने टैक्सी भेजी, मैंने अपना ड्राइवर भेजा, ठीक है। अगर आप कहते हो भी इसमें कोहली को बचाने में मेरा हाथ है तो उसमें आप थोड़ा सा मेरे को ज्ञान देने की कष्ट करना।
7: कोहली की गिरफ्तारी के बाद,
6: हाँ जी,
7: आपकी गिरफ्तारी होती है?
6: बिल्कुल।
7: तो क्या आपकी जब गिरफ्तारी हुई तो कोहली ने यह स्टेटमेंट दिया था कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सब मुरिंदर सिंह पंडेर जी के कहने पर किया?
6: ये आप उससे पूछो,
7: कभी आपका
6: ये उसका स्टेटमेंट है?
7: हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ
6: उसका स्टेटमेंट। मुझे कैसे मालूम होगा उसका स्टेटमेंट? मेरे सामने तो सुरेंद्र कोहली जब इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिस दिन अरेस्ट हुई है उसके बाद मैं और सुरेंद्र कोहली इकट्ठे रहे ही नहीं है।
7: कभी आपका आमना सामना पुलिस कस्टडी
6: में? बिल्कुल नहीं हुआ, सीबीआई की कस्टडी में नहीं हुआ। वो अलग कमरे में होता था, मैं अलग में होता था, हमें आपस एक दूसरे के साथ बात करनी अलाउ नहीं थी।
7: आपकी जब गिरफ्तारी हुई थी तब पुलिस ने यह कहा था, आपका रिमांड जो लिया था, कि सुरेंद्र कोहली ने यह स्टेटमेंट दिया है तो कि मैंने जो कुछ किया है इनके कहने पर किया है और ये भी शामिल है, तब आपको रिमांड पर लिया गया था।
6: तो आपको जानते नहीं पुलिस रिमांड कैसे लेती है
7: जी?
6: अगर ये बयान ना होता मेरे को रिमांड पर ले जाते फिर तो मेरी अरेस्ट भी नहीं बनती थी।
7: मैं उसी पर आ रहा हूँ कोहली साहब, कि जब नोएडा पुलिस बाद में सीबीआई को चूंकि ये केस दिया गया,
6: हाँ जी,
7: तो जो मामला कोर्ट में गया उसमें ये था कि 16 बच्चे गायब थे और 16 बच्चों के कंकाल के अवशेष मिले, इसलिए 16 मर्डर के केसेस दर्ज हुए किए। अब 16 बच्चे D5 D6 जो भी मैं कहें उसके पीछे के नाले से मिलता है और इतना लंबा वक्फा, करीब साल डेढ़ साल से बच्चे गायब हो रहे थे, तो जब ये सारी चीजें सामने आई कभी आपने, और फिर उसमें ये भी आई इन्वेस्टिगेशन में कि इन बच्चों को ऐसी D5 कोठी में मारा गया, कुछ बच्चों को काटा गया, फिर बाकी भी बहुत सारी चीजें आएंगी, कुछ आदमखोर वाला एंगल भी, पर आप चूंकि उस D5 कोठी के ओनर मालिक, आपने कभी इतने सालों में या इतने महीनों में ये नहीं देखा कि आपकी कोठी में कुछ अजीब गरीब चीजें हो रही हैं, बच्चे लाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं कभी?
6: पहले तो आप मेरे को बताओ इसका साधन क्या होना चाहिए था, मुझे पता रख लग रही है।
7: घर में नौकर क्या कर रहा है, घर में क्या हो रही है,
6: ऐसे बताओ
7: जैसे आमतौर पर लोग रखते हैं।
6: बताओ, आप बताओ ना,
7: जैसे उसका बिहेवियर क्या, चाल चलन क्या है?
6: बिल्कुल ठीक था चाल चलन, बिल्कुल।
7: बच्चों के साथ ज्यादा घुलना मिलना तो क्यों है?
6: बिल्कुल भी नहीं था।
7: नहीं था
6: ना,
7: कभी आपने नहीं देखा?
6: घर में, घर पे ही नहीं था, मैं कैसे देख लूंगा।
8: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: समाजवादी पार्टी के 2027 के चुनावी रथ तैयार है और उसमें पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर के, सर पीडीए को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
1: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
0: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
1: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है, सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
0: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
1: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
0: तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का चलने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। और मुंबई मेट्रो की शुरुआत इस समय की एक बड़ी खबर से हम कर रहे हैं। मुंबई के आईआईटी बॉम्बे से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के एक सेकेंड ईयर के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान छात्र को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़ लिया गया था। हालांकि संस्थान के अधिकारियों ने उसे भरोसा दिया था कि उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस घटना से पूरे परिसर में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छात्रों ने कैंपस के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आईआईटी मुंबई के सेकेंड ईयर के छात्र की आत्महत्या।
2: इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के पवई स्थित आईआईटी गेट के सामने, जहां पर अंदर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक एक छात्र के आत्महत्या के बाद जो है अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर यहां पर भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। अंदर जो है पुलिस गई हुई है, पुलिस के आला अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं, और जो अंदर में छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो है माहौल जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो जल्द से जल्द शांत हो सके। दरअसल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक एक जो मृतक छात्र है वो परीक्षा के दौरान जो है फोन लेकर गया था और अंदर वो क्वेश्चन पेपर को ये फोन में अपलोड चैट जीपीटी पर अपलोड कर उसका आंसर जानने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद जो वहां पर मौजूद जो इंस्ट्रक्टर थे वो उसे पकड़ लेते हैं और उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बारे में कहा जाता है। हालांकि जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन वो छात्र जो है अपने कमरे में जाता है और वहां पर आत्महत्या कर लेता है। घटना के बाद से ही जो छात्र हैं वो यहाँ पर इंसाफ की और जो
1: आइए मुंबई सीधे लिए चलते हैं। एजाज खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एजाज, आखिर इतना ऐसा क्या हो गया? ये बच्चा जिसने आत्महत्या की है, क्या इसे प्रताड़ित किया गया, डराया धमकाया गया? खबर तो ये भी आ रही है कि उसे किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का उसे भरोसा दिया गया था।
2: ये देखिए, जो आईआईटी के तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि घटना के बाद बच्चे को साफ तौर पर कहा गया था कि आप पर जो है किसी तरह का कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है नहीं की जाएगी। बावजूद उसके जो लड़का जो है काफी उसकी काउंसलिंग भी की गई थी, बाद में वो बच्चा जो है वो अपने कमरे में जाता है और वहां पर वो आत्महत्या कर लेता है। घटने के बाद से जो है काफी दुखद घटना थी। जो कॉलेज के अंदर जितने भी आईआईटी के छात्र हैं वो सभी अंदर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल को अंदर तैनात किया गया है। जो इलाके के जो आला अधिकारी हैं पुलिस के वो भी अंदर गए हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्र हैं जो अंदर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सभी को जल्द से जल्द शांत कराया जाए, क्योंकि रात भी काफी तेज हो चुकी है। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये आईआईटी का ये मेन गेट है और ठीक सामने ही जो प्रोटेस्ट जो है चल रहा है। हालांकि सामने आप देख सकते हैं पुलिस बल भी जो है भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है और लगातार कोशिश कर रहे हो और बीच बीच में जो बच्चों की आवाज भी आ रही है, जिसे लगातार पुलिस जो है कोशिश करे कि जल्द से जल्द जो है बच्चे शांत होकर अपने अपने हॉस्टल में जाए। और चूंकि जो कहा जा रहा है जो परीक्षा भी चल रही है और कल भी परीक्षा होगी तो उसके लिए हो सकता है आगे की तैयारी करे, तो उसके लिए यहाँ पर जो मुंबई पुलिस है पूरी तरह चाक चौबंद है और लगातार कोशिश कर रही है कि बच्चों को किसी तरह अंदर शांत कराया जा सके।
1: बहुत धन्यवाद एजाज आपका। एजाज खान हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। दुखद खबर आईआईटी के इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एनसीपी 27 सितंबर को नासिक में होने वाले अपने सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष सुनीता पवार के एक बड़े रीलॉन्च की तैयारी कर रही है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी अपने मशहूर स्लोगन एक ही वादा अजीत दादा से आगे बढ़कर सुनीता पवार पर केंद्रित एक नया कैंपेन शुरू करने की योजना बना रही है, जिसकी ब्रांडिंग हमारी भाभी है ना के साथ की जाएगी। लेकिन एनसीपी नेता उमेश पाटिल ने ऐसी खबरों को गलत बताया है।
3: इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना पार्टी के अध्यक्ष ने कुछ कहा है, ना पार्टी के किसी नेता ने कुछ कहा है, अपनी वैनी है ना, इस तरह की टैगलाइन के बारे में कहां पार्टी ने कुछ कहा है। यह सुझाव हो सकता है। और रीलॉन्चिंग की बात कैसे आ गई? सुनेत्रा वैनी पवार लगभग 6-7 महीनों से राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है तब से वो कार्यकर्ताओं के बीच में है, सरकार का काम देख रही है। रीलॉन्चिंग किसको कहते हैं? अगर राजनीतिक किसी नेता का 5-10 साल का गैप है, राजनीति से बाहर है और अब फिर से राजनीति में अगर आ रहे हैं तो उसको रीलॉन्चिंग कहा जा सकता है।
4: अजीत पवार के असमय निधन के बाद एनसीपी पार्टी में शुरू हुई राजनीतिक हलचल अब एक नए मोड़ पर आकर रुक गई है। आने वाले 27 सितंबर को नासिक में एनसीपी पार्टी का महाधिवेशन होने वाला है, जिसमें पार्टी में चर्चा शुरू हो गई है कि डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को नए सिरे से लॉन्च किया जाएगा और उनकी छवि गढ़ने की कोशिश की जाएगी। प्रशांत किशोर के साथ हुई एक राजनीतिक मुलाकात की भी चर्चाएं गर्म है। हालांकि पार्टी के नेता और प्रवक्ता उमेश पाटिल ने इन सारे अटकलों को पूर्ण विराम लगा दिया है। उनका कहना है कि वो पहले से ही राज्य की उपमुख्यमंत्री भी है और साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, तो उन्हें रीलॉन्च करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बावजूद उसके जब से अजीत पवार का निधन हुआ है तब से पार्टी में पार्टी की कमान कौन संभालेगा, नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर लगातार आपसी रंजिश देखने को मिल रही है। अब इस बीच बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पार्टी में शरद पवार की एनसीपी के मर्जर की भी चर्चाएं जोरों पर है और अगर ये मर्जर होता है तो पार्टी का नेतृत्व किसके पास जाएगा, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो।
1: आज से हमारे देश भारत में आईफोन 18 सीरीज के मोबाइल की बिक्री शुरू हो गई। पहले ही दिन आईफोन खरीदने के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज देखा गया। हैरानी की बात यह है कि नए आईफोन के लिए दिल्ली से मुंबई तक लोग देर रात से ही लाइन में नजर आए। महंगा होने के बावजूद आईफोन 18 सीरीज के मोबाइल के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। शायद इसीलिए कहा गया है कि शौक बड़ी चीज है, लेकिन इस महंगे आईफोन के लिए किडनी बेचने वाले मीम्स पर असली आईफोन लवर्स आखिर क्या सोचते हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
5: अभी 14 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूं, अभी मैं अपग्रेड कर रहा हूं 18 प्रो मैक्स पे।
6: एक एक्सपीरियंस है, शौक है बस।
7: शौक बड़ी चीज है। आईफोन 18 सीरीज के मोबाइल खरीदने के लिए एप्पल स्टोर पर लगी ये लंबी कतारें देखकर ये बात सच साबित हो रही है।
6: कहाँ से आए? नासिक से। नासिक से सिर्फ यहाँ पर आईफोन लेने आया? हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ एप्पल स्टोर नहीं ना ऑफिशियल इसके लिए। क्या ये सिर्फ मोबाइल है, एक्सपीरियंस है कि आपके लिए ये एक स्टेटस सिंबल भी है? नहीं, एक एक्सपीरियंस है, शौक है बस। आईफोन चाहिए तो चाहिए।
7: ये आईफोन की दीवानगी है। एप्पल का आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स आज से जैसे ही बिक्री के लिए आया तो आईफोन के दीवाने दौड़ पड़े।
4: पूरे देश में आईफोन का फीवर चढ़ गया है और मैं फिलहाल मुंबई के BKC आईफोन स्टोर में हूं, जहां पर आपको आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स यहां पर डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दे कि आईफोन का फीवर आईफोन लवर्स में इतना है कि कल रात से ही लंबी कतारें लगाकर वो यहां पर आईफोन खरीदने आए हैं। अब आईफोन का सेल क्योंकि इंडिया में शुरू हो चुका है, आईफोन 18 प्रो जो कि बर्गंडी, लाइट ब्लू, व्हाइट और ब्लैक कलर में यहां पर उपलब्ध है, वो मार्केट में

0: क्या खास इस फोन में है जो इसके लिए हर उम्र के लोग इतने क्रेजी हुए जा रहे हैं।
1: इतने महंगे फोन में उन्हें क्यों दिलचस्पी है? हम कई सारे मीम्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर, इंटरनेट पर, किडनी बेचनी पड़ेगी अगर नया आईफोन खरीदना है। आपने क्या दाव पर लगाया है ये आईफोन खरीदने?
2: कुछ दाव पे लगाने जैसा नहीं, लेकिन द फीचर्स एंड द जो प्रोडक्ट मिल रहा है आईफोन 18 प्रो के अंदर, सो वो काफी इंटरेस्टिंग है। इरिस्पेक्टिव के एंड्रॉयड भी काफी फीचर्स दे रहा है, लेकिन जो यूआई एक्सपीरियंस आईफोन के अंदर है वो बहुत ज्यादा बेटर है। द कैमरा क्वालिटी, यूजेज एंड द काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है।
1: आप अभी कौन सा फोन यूज कर रहे थे?
2: करंटली मैं 17 प्रो यूज कर रहा हूँ।
1: और अभी खरीदने कौन से वाले या खरीद लिया?
2: खरीदने हम आईफोन ड्यूओ देखने आए थे, बट वो अब तक आए हैं, 23 अक्टूबर को आएगा। सो वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग आईफोन 18 प्रो।
0: लॉन्चिंग के दिन ही एप्पल ने बता दिया था कि 18 सितंबर से आधिकारिक तौर पर आईफोन 18 सीरीज के मोबाइल भारतीय बाजार में बिकने लगेंगे। अभी देश के कुछ चुनिंदा शहरों में ही एप्पल स्टोर है और ये फोन अभी सिर्फ एप्पल के आधिकारिक स्टोर पर ही उपलब्ध है।
1: जो सामान्य लोग हैं उनका कहना है कि इतने पैसों में तो एक बाइक आ जाएगी या तो एक अच्छी घड़ी आ जाएगी या तो एक वेकेशन आ जाएगा, तो वो सब नहीं करके हम आईफोन ही क्यों खरीदना चाहते हैं?
3: ट्रू, आप बिल्कुल सही हुए इस बात पे। बट अगर हम इकोनॉमिक्स और मैकेनिज्म समझेंगे तो आजकल हम हर चीज पे भी जा रहे हैं तो एक मार्केट स्टडी को करके की जाती है। आई थिंक एप्पल और बड़ी चीजें आजकल अब उस मार्केट में आ गई हैं जहां पे वो वही लोग ले सकते हैं जिनके सैलरी बजट कुछ पैरामीटर्स के ऊपर हों। वो नहीं।
4: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एफडीए का सख्त एक्शन लगातार जारी है। महाराष्ट्र एफडीए ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन के चलते मुंबई में 3 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इनमें दक्षिण मुंबई के कोलाबा में मशहूर ओलंपिया कॉफी हाउस भी शामिल है। एफडीए की जांच में इन प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आई हैं।

0: महाराष्ट्र एफडीए का मिलावट खोरों और खाने पीने में साफ सफाई से समझौता करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक बार फिर मुंबई में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर टीम तुकाराम मुंडे ने कार्रवाई की है। दक्षिण मुंबई के कोलाबा ओलंपिया कॉफी हाउस समेत 3 जगहों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। ओलंपिया कॉफी हाउस की जांच में खाद्य भंडारण क्षेत्र में यूरिनल पाए गए, कॉकरोच और मक्खियों का प्रकोप दिखा, खाने का सामान सीधे फर्श पर रखा जा रहा था, सड़ चुकी लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल, 35 में से 34 खाद्य कर्मचारियों ने अनिवार्य फूड सेफ्टी ट्रेनिंग तक नहीं ली थी।
1: महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फिर एक बार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इस बार महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के 3 बड़े रेस्टोरेंट्स और एक हॉस्पिटल के कैंटीन पर रेड करते हुए उनके लाइसेंस को सस्पेंड किया है। हम इस वक्त मुंबई के प्रसिद्ध ओलंपिया रेस्टोरेंट के बाहर है, जहां पर 16 तारीख को एफडीए ने रेड की थी और कई खामियां पाने के बाद इनका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया था। यहां पर होटल की तरफ से एक नोटिस भी लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है कि कुछ कारणों की वजह से, सुधार करने की वजह से और मेंटेनेंस के काम के वजह से जो है रेस्टोरेंट कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। अगले नोटिस तक ये रेस्टोरेंट बंद रहेगा, लेकिन 16 तारीख को एफडीए ने रेड की थी, जिसमें उन्होंने कई खामियां पाई थी। एफडीए के अधिकारियों ने जब किचन का दौरा किया, तब उन्होंने पाया कि जो यूरिनल था वो किचन में ही था, जो खाने पीने की चीजें थी वो फर्श पर रखी जा रही थी। इसके साथ ही जो कर्मचारी थे, 35 कर्मचारियों में से 34 कर्मचारियों को खाने पीने की ट्रेनिंग या जो फूड ट्रेनिंग जिसे कहते हैं वो नहीं दी गई थी। और इसके साथ ही जो पीने का पानी था उसमें, उसको लेकर भी एफडीए के अधिकारियों ने कई तरह की खामियां पाई। साथ ही जो चॉपिंग बोर्ड यूज किया जा रहा था वो भी काफी खराब अवस्था में था, जिसके बाद एफडीए ने ये बड़ा कदम उठाया है। पिछले कई दिनों से एफडीए की रेड लगातार जारी है और इसी कड़ी में ये एफडीए की रेड हुई है, जिसमें एफडीए ने मुंबई के प्रसिद्ध कुलाबा में स्थित ओलंपिया होटल का लाइसेंस जो है उसको सस्पेंड किया।

0: इसी सिलसिले में नायर अस्पताल के नर्सेस मिस का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया। 12 सितंबर को हुई रेड में गंभीर खामियां सामने आई थी।
1: एफडीए ने रेड की कैंटीन बंद हो गया है, क्या कहेंगे किस तरह से रेड हुई, कौन सा कैंटीन एग्जैक्टली बंद हुआ है?
2: कॉलेज का कैंटीन बंद नहीं हुआ है या वहां पे रेड नहीं हुआ है। कल शाम को एफडीए का प्रेस रिलीज देखा, उसमें उन्होंने कहा है कि नायर कैंटीन, मगर ये नायर कैंटीन ने मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो ये नायर में जो स्टूडेंट नर्सेस का मेस है वहां पे उन्होंने इंस्पेक्शन किया, मगर जब वो इंस्पेक्शन को आए तो कोई भी ऑफिसर से उन्होंने बात नहीं किए, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि किए हैं या कुछ डिफिकल्टीज है उसमें, इसके बारे में एफडीए ने हमको कुछ भी बताया नहीं है। अभी तक इस वक्त तक मेरे पास कोई भी उनकी रिपोर्ट ऑफिशियल आई नहीं है हमारे प्रीमाइसेस के बारे में। हमारे कॉलेज का कैंटीन तो शुरू है, उसका इसके पहले दो बार उन्होंने इंस्पेक्शन किया है और उसमें कोई इश्यू नहीं था। ये जो है वो स्टूडेंट नर्सेस मेस का उन्होंने मेस एरिया जो है वो उन्होंने इंस्पेक्ट किया था।
0: एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे अपनी कार्यशैली से साफ संदेश दे रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
3: मराठी फिल्म गोंधल को 99वें एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर 2027 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के लिए चुना गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसका आधिकारिक ऐलान किया। ये एक थ्रिलर फिल्म है जो ऑस्कर समारोह में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। इसने कुल 33 फिल्मों को पछाड़ा है।
4: गोरी नजर से देखेगा तो उसकी दोनों आंखें
3: जिसमें तुरंत
5: मराठी सिनेमा के लिए इस वक्त एक बड़ी खबर है। फिल्म गोंधल को 99वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना गया है। 23 फिल्मों के बीच में गोंधल का चयन हुआ है और अब यह फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर की इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी के में आगे की दौड़ का हिस्सा बनेगी। लेकिन आखिरकार गोंधल है क्या? फिल्म की कहानी महाराष्ट्र की लोक संस्कृति और यहाँ की पारंपरिक आस्था से जुड़ी गोंधल परंपरा की पृष्ठभूमि में बुनी गई है। गोंधल महाराष्ट्र की एक पारंपरिक लोक धार्मिक प्रस्तुति है जिसका संबंध देवी देवताओं की आराधना और लोक परंपराओं से रहा है। अब फिल्म की टीम ऑस्कर कैंपेन की तैयारी में जुट चुकी है। संतोष ने बताया कि लॉस एंजलिस की एक पीआर फर्म को उन्होंने हायर किया है अपने ऑस्कर कैंपेन के लिए और साथ ही सोशल मीडिया के लिए भी एक इंटरनेशनल टीम को लिया है।
3: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद दर्शन बाप्पा के, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: खबर गणपति महोत्सव के जश्न की, देखिए कैसे मुंबई के एक गणपति पंडाल ने 700 करोड़ से अधिक का बीमा कराया क्योंकि यहां बप्पा को 66 किलो सोने के आभूषण पहनाए गए।

0: ये है देश के सबसे महंगे गणपति बप्पा। मुंबई का प्रतिष्ठित जीएसबी गणपति मंडल इस बार 72वां गणेशोत्सव मना रहा है। जीएसबी सेवा मंडल के गणेश जी को 66 किलो से ज्यादा सोने और 335 किलो चांदी से सजाया गया है। खास बात है कि गणेश पंडाल में इस बार 703 करोड़ रुपए का बीमा भी कराया गया।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई महाराष्ट्र और देश के सबसे महंगे गणेश पंडाल में, जिनकी बातें सुनकर वाकई में आप आश्चर्य हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आप खुद गणपति बप्पा के दर्शन करें। ये देखिए, मैं मौजूद हूँ जीएसबी सेवा मंडल मुंबई के वडाला इलाके में स्थित एक ऐसे पंडाल में जिनकी बीमा ही कम से कम 7 करोड़ रुपए की हुई है। आखिर कैसे वो आप देखें, ऊपर से नीचे बप्पा जो हैं वो गहने में लदे पड़े हैं। आपको बताएं कि 66 किलो सोना बप्पा को चढ़ाया गया है।
0: वहीं मुंबई का राजा यानी गणेश गली उत्सव मंडल ने संतों के योगदान के कथाओं वाली थीम तैयार की है, जो वैष्णव संप्रदाय को दर्शाता है। यहाँ 22 फीट ऊंचे अष्टभुजाधारी बाल गणेश विराजमान है, साथ ही भव्य गरुड़ पर संत तुकाराम विराजमान है। इस मंडल को मुंबई के पुराने मंडलों में गिना जाता है। इस मंडल का नाम ग्लोबल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। इसी तरह गिरगांव के महाराजा बप्पा के दर्शन करने भी लाखों लोग आ रहे हैं।
2: मैं मौजूद हूं मुंबई के गिर गांव का महाराजा के दरबार में, और इसलिए ये मंडल बहुत ज्यादा वायरल है क्योंकि इस तरह से तराफा रखा हुआ है और बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं बकायदा यहाँ पर, और एक अजीब सी बड़ी ही प्यारी सी खुशी, बहुत ही अच्छी स्माइल इन बच्चों के फेस पे है। थोड़ा सा कैसा लगा बेटा?
3: बहुत फन है एंड एकदम अमेजिंग।
2: क्या नाम है आपका? डर नहीं लगा आपको वहाँ पे? मतलब एंजॉय कर लिया ना? ओके थैंक यू। आ जाओ आप लोग आ जाओ। कैसा लगा?
3: अच्छा,
2: मजा आया? आपको कैसा लगा भाई?
3: अच्छा लगा।
2: आप लोग तो मंडल वाले हो, एक्सपीरियंस होगा आपको।
3: बहुत अच्छा लगा।
2: दिन में कितनी बार ऐसे जाते आते हो?
3: तीन चार बार।
2: अच्छा राहुल, आप तो देखते रहोगे ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे वगैरह आते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं लोग?
3: लोग को बहुत मजा आता है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है यहाँ पर।
2: ऐसा पहली बार हो रहा है? 3.5 करोड़ रुपए का गहना है, सही है?
4: अभी हम लोगों ने काउंट नहीं किया लेकिन है, लगभग तो है, क्योंकि हमारे इधर एक तो दिन रहते हैं सुवर्ण दुर्वा अर्पण, किसी के मन्नत रहती है, किसी का कुछ चढ़ावा रहता है, तो वो दिन में वो चढ़ावा चढ़ाते हर साल। हमारे इधर कुछ ना कुछ तो जेवर आता है, जो भी दुर्वा होते हैं 2 दुर्वा देते हैं, कोई 5 दुर्वा देते हैं, कोई अलग अलग देते हैं, तो सबको इकट्ठा करके हम लोग एक जेवर बनाते।
2: मतलब मन्नत लोग मांगते हैं जब पूरा हो जाता है पप्पा पूरा करते हैं तो?
4: इसके लिए तो मैंने मंडल ने कुछ खर्चा नहीं किया, जो मन्नत से आता है वही जेवर हम लोग चढ़ाते।
5: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आखिर ये सेमीकंडक्टर है क्या? एक छोटी सी चिप इतनी जरूरी क्यों है? आइए एकदम आसान शब्दों में बताते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए बिजली और उस बिजली को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर चिप इसी काम को अंजाम देती है। ये चिप एक तरह से डिवाइस का दिमाग होती है, जो डिवाइस को बताती है कि कब क्या और कैसे करना है। अब सवाल है कि ये चिप बनती किस चीज से है? तो इसकी शुरुआत होती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में सिलिका और कई खनिजों में पाया जाता है। इसे बेहद शुद्ध करके एक पतली गोल प्लेट बनाई जाती है, जिसे सिलिकॉन वेफर कहा जाता है। यही वेफर आगे चलकर चिप का आधार बनता है। इसको ऐसे समझिए कि सिलिकॉन से वेफर, वेफर से सर्किट, सर्किट से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से चिप और सबसे अंत में टेस्टिंग और पैकेजिंग। इतने स्टेप से गुजरने के बाद सेमीकंडक्टर चिप तैयार होती है। यही वजह है कि चिप बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। चिप बनाने वाली फैक्ट्री में धूल का एक बेहद छोटा कण भी उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन फैक्ट्रियों में बेहद साफ वातावरण और बेहद सटीक मशीनों की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर की पूरी दुनिया को अगर देखें तो चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका इसके बड़े केंद्र हैं। इन देशों के पास चिप बनाने की फैक्ट्रियां, तकनीक और पूरी सप्लाई चेन मौजूद है। लेकिन जब बात सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक चिप बनाने की आती है, तो ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनकर सामने आता है। दुनिया के बड़े देश सेमीकंडक्टर को सिर्फ कारोबार का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी तकनीकी और रणनीतिक ताकत मान रहे हैं। क्योंकि आज जिस मोबाइल को हम हाथ में लेकर घूमते हैं, जिस कार में सफर करते हैं और जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उन सब की असली ताकत उस छोटी सी चिप में छिपी है, जो ताइवान, चीन या अमेरिका की बनी है। भारत भी अब इन सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत के सेमीकॉन मिशन का विजन है कि पूरा इकोसिस्टम भारत में तैयार किया जाए। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पंचायत आज तक बिहार में बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यूसीसी पर गठबंधन से बातचीत के बाद लेंगे निर्णय। बंगाल उपचुनाव में ट्विस्ट बे ट्विस्ट, पहले नंदीग्राम से ममता की उम्मीदवार ने नाम वापस लिया तो कांग्रेस का दावा, हमारी प्रत्याशी मिलन प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राहुल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोप पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस भस्मासुर, साथ आने वाले सभी दलों को जला देती। उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख का जेनजी को संदेश, बोले भारत के युवा पूरी दुनिया में न सिर्फ यशस्वी बल्कि सार्थक भी बने। वायुसेना को HAL से मिला तेजस का ट्रेनर विमान, पवन हंस को 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर, बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल।

बंगाल उपचुनाव में जारी राजनीतिक घमासान, नंदीग्राम से ममता के उम्मीदवार ने नाम वापस लिया, कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन और गिरफ्तार। कांग्रेस का दावा, हमारे प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ममता ने आज ही समर्थन देने का ऐलान किया था। नंदीग्राम विवाद पर राहुल का हमला, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोप पर किरण रिजिजू का पलटवार, कहा कांग्रेस एक भस्मासुर अपने साथ आने वाले दलों को जला देती। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, एनटीए मुख्यालय का दौरा कर सुधारों की खुद निगरानी करेंगे जज। देश को मिले नए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, बेंगलुरु में एचएएल के ऑफिस में कार्यक्रम, विमानों हेलीकॉप्टर्स को सेना को सौंपने से पहले रक्षा मंत्री ने की पूजा। वायुसेना को मिले एलसीए तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर, एचटीटी 40 बेसिक ट्रेनर, सैन्य पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता। डीयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने एसआरसीसी, अदिति महाविद्यालय, शिवाजी कॉलेज समेत कई कॉलेजों में शानदार जीत दर्ज की। भारती कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में भी एबीवीपी उम्मीदवारों ने बाजी मारी, अध्यक्ष सचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर प्रचंड जीत। डीयू छात्र संघ चुनाव में 39.77% मतदान, सुबह 8 बजे से शुरू होगी अब मतगणना। बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, 3 महीने का वेतन दान किया। बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है बिहार सरकार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी निरीक्षण किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में नशा मुक्त पंजाब यात्रा को दिखाई झंडी, 4,000 किलोमीटर की यात्रा। नितिन नवीन बोले, पंजाब की भूमि वीरों और अन्नदाताओं की, माफिया राज गैंगस्टर प्रशासन के खिलाफ हमारी नशा मुक्त पंजाब यात्रा। नितिन नवीन हुए भावुक, कहा पठानकोट में माताओं के आंसू देखकर भीतर तक झकझोर उठा, युवाओं को नशे से बचाने के लिए एकजुट होने की जरूरत। पंजाब के 8 लाख कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, मान सरकार ने डीए 8% बढ़ाया। वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष आयोजन, 11,000 दीपक जलाकर लंबी उम्र की कामना की गई। भजन क्लबिंग और आधुनिक संगीत के अनूठे संगम के बीच युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। पारुल यूनिवर्सिटी कैंपस को रोशन कर जेन जी ने व्यक्त की अपनी भावना। उज्जैन में देश की 6ठी धर्म संसद का अवंतिकापुरी में हुआ विधिवत शुभारंभ, मोहन भागवत ने युवाओं को बताई धर्म की परिभाषा, बोले धर्म बांधता है मुक्त करता है। गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड हिट एंड रन केस मामले में दोनों आरोपियों को 14 दिन की हिरासत, अगली सुनवाई आगे होगी। निटारी कांड में बरी हुए सुरेंद्र कोहली ने की आत्महत्या, हरिद्वार में चाय की दुकान में लगा ली फांसी। अंकिता भंडारी की 4थी पुण्यतिथि पर कांग्रेस की श्रद्धांजलि, कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच के लिए निकाला कैंडल मार्च। नासिक में विज्ञापन होर्डिंग्स के लिए रातोंरात काटे गए 55,000 पेड़, 10,000 रुपए में हुआ था सौदा, 6 गिरफ्तार। गंगापुर रोड पर अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में मुख्य विज्ञापन एजेंसी संचालक समेत 6 में से 5 की पुलिस कस्टडी, कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज। बेड़ी की पढ़ाई के लिए नंगे पैर मैराथन दौड़ने वाली बेड़ की रमाबाई के संघर्ष को राष्ट्रीय पहचान, उपराष्ट्रपति ने 50,000 रुपए की मदद दी। सतना की बहुमंजिला इमारत में भीषण आग, बिल्डिंग से अब तक 2 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। तेलंगाना के करीमनगर में बाइक की टक्कर से 63 वर्ष के बुजुर्ग की मौत, उप सरपंच के पिता थे मृतक। रंगारेड्डी के नगर में स्कूल की सीढ़ियों से गिरने से 4थी कक्षा की छात्रा की मौत, पुलिस जांच में जुटी। कोटपुतली में 11,000 केवी की लाइन टूटने से घरों में दौड़ा करंट, एक ही परिवार के 4 लोग झुलसे, ग्रामीणों ने किया चैन। मैनपुरी में भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान, हादसे में कई लोग घायल। खेड़ा में टोल प्लाजा पर कार में भीषण आग, टोल बूथ को नुकसान। पुरुलिया में महिलाओं के कपड़े पहनकर होटल में छुपकर रह रहे थे 4 संदिग्ध बांग्लादेशी, सभी गिरफ्तार। बिजनौर में शादी में भात देने के लिए महिला ने गैंग के साथ ज्वेलरी शोरूम में 8,00,000 रुपए की चोरी की, 2 गिरफ्तार, जेवर बरामद। गुजरात के अमरेली में किराए के मकान में पिता का शव फांसी के फंदे से लटका मिला, जबकि उसकी 5 वर्ष की बेटी का शव फ्रिज के अंदर मिला।
तेलंगाना के खम्मम में स्थानीय मुद्दों पर वीडियो बनाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर दबाव, शहर छोड़ने की बात कहते हुए हुए भावुक। मिर्जापुर में रेलवे अंडरपास में बीजेपी विधायक की कीचड़ में गाड़ी फंसी, ट्रैक्टर से खींचकर ग्रामीणों ने निकाला वीडियो वायरल। जमशेदपुर में बेकाबू स्कूल वैन डिवाइडर पर चढ़ी, 14 बच्चे सवार थे, सभी को चोटें आईं। सोनीपत में नाबालिग बच्ची की हत्या, परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार किया, देर रात तक शमशान घाट के बाहर हंगामा किया, आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार। औरैया में स्कूल बस पलटने के मामले में एक्शन, लापरवाह ड्राइवर का लाइसेंस रद्द, बस जब्त। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाइक सवार युवक पर भारी भरकम पेड़ गिरा, स्थिति गंभीर। बागपत में ढाबे पर खाना खाने गए पिता पुत्र की जमकर पिटाई, बुजुर्ग का मुंह कपड़े से बांधा, ढाबा बना WWE का रिंग। सहरसा में 20 वर्ष के युवक की गोली मारकर हत्या, पैसों के लेनदेन में हत्या, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में पैदल जा रहे व्यक्ति को कार ने मारी टक्कर, मौत, CCTV फुटेज सामने आया। दिल्ली में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बम्पर में फंसी कार चालक ने कई 100 मीटर बाइक को घसीटा। इटावा में 50 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी, पुट्टी की बोरियों में छिपाकर पंजाब से बिहार ले जा रहे थे, 6000 बोतलें बरामद। हिमाचल के चंबा में दूसरे दिन भी जमकर बर्फबारी, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर। बांदीपुरा जिले के गुरेज में मौसम की पहली बर्फबारी, प्रकृति का सुंदर दृश्य। राजस्थान के बारा में देवदूत बने ग्रामीण और पुलिस, बरसाती नाले में फंसे 2 संतों का किया रेस्क्यू, अचानक से आ गया था पानी। महाराष्ट्र के बीड जिले में 1.5 महीने के सूखे के बाद कड़कती बिजली के साथ बारिश, किसानों ने राहत की सांस। जूनागढ़ के खड़िया रोड पर एक साथ 6 शेर सड़क पार करते नजर आए, शेरों की चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कृष्ण नगरी मथुरा के बरसाना में भव्य दिव्य राधा अष्टमी का उल्लास, रानी की गई सजावट। माँ राधा के जन्मोत्सव के रंग में डूबी कृष्ण नगरी मथुरा, आधी रात से शुरू होगा जन्मोत्सव, सुबह 5 बजे किया जाएगा राधा रानी का अभिषेक। राधा अष्टमी पर देशभर से लाखों श्रद्धालुओं के बरसाना पहुंचने का अनुमान, पुलिस ने लगाए CCTV कैमरे, ड्रोन भी तैनात। राधा अष्टमी की तैयारियों के लिए जिलाधिकारी SSP ने की बैठक, श्रद्धालुओं के साथ अच्छे से पेश आने के दिए सभी को निर्देश। राधा अष्टमी के दौरान श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए 16 घंटे तक खुला रहेगा मंदिर, वेबसाइट पर लाइव प्रसारण भी होगा। देशभर में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए जनसैलाब, 5वें दिन लालबाग के राजा की अनोखी छटा, लंबी लंबी लाइन लगी। गणेश गली में मुंबई के राजा के दरबार में भी अभिलाषियों की भीड़, 22 फीट ऊंचे अष्टभुजाधारी बाल गणेश हैं। संतों के योगदान की कथाओं से संबंधित झांकियों से की गई सजावट, 99 वर्ष मना रहा है गणेश गली उत्सव मंडल। मुंबई के किंग सर्कल स्थित GSB सेवा मंडल में बापा का दरबार सेवा मंडल मना रहा है। 66 किलो से अधिक शुद्ध सोने और 335 किलो चांदी से गजानन सजे, 703 करोड़ रुपए का कराया गया बीमा। हैदराबाद में आकर्षण का केंद्र बने बापा, नव वानर थीम से रामायण की झलक। सूरत के महीधरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर बप्पा का पंडाल, 25 से 30 किलो सोना चांदी से दिव्य श्रृंगार, 2 लाख अमेरिकन डायमंड्स भी जड़े। जालना में विघ्नहर्ता का भव्य दरबार, राजा की तरह जालन के राजा की स्वर्ण चरण दर्शन का अवसर। चंद्रपुर के पंडाल में सुरक्षा हेलमेट, पैरों में मजबूत गम्बूट्स, हाथों में औजार लिए नजर आए बप्पा, कोयला खदान कामगारों को समर्पित पंडाल। चंद्रपुर के राजा की भव्य झांकी, चंद्रपुर में राजा साकार हुआ, पुरी का जगन्नाथ धाम। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन, सेमीफाइनल में एंट्री, जापान के खिलाफ से 30 गेंदों में खत्म किया मैच। जापान के 57 रनों के जवाब में 5 ओवर में बनाए 59 रन, शेफाली वर्मा ने 15 गेंदों में खेली 40 रनों की नाबाद धुआंधार पारी। श्री चढ़ने ने झटके 4 विकेट, टॉस जीतकर भारत ने जापान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से अच्छी खबर, मादा चीता KGP-12 ने 4 शावकों को जन्म दिया, तस्वीरें आईं। मेरठ के आसमान में 19-20 सितंबर को दिखेगा सूर्य किरण का रोमांच, नोहॉक विमानों के साथ एयर शो। महाकाव्य श्री रामायण कथा का ट्रेलर रिलीज, 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म।
प्रेम कीटाणु का चौथा गाना इश्क का गुलाम जारी 2 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। ऑस्कर के लिए जाएगी मराठी थ्रिलर गोंधल, भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री, 30 से ज्यादा फिल्मों को पछाड़ा। म्यूजिकल लव स्टोरी मैं न रहा मेरा का टीजर रिलीज। फिल्म में अध्ययन सुमन के साथ मिस दिवा 2022 रह चुकी दिविता नजर आएंगी। पर्दे पर पहली बार महान गायिका का किरदार निभाएंगी रश्मिका मंदाना। महान सिंगर सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक में बनेंगी अम्मा। भारत में 18 सितंबर से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु समेत देश भर में एप्पल के कुल 16 रिटेल स्टोर्स के बाहर खरीदारों की लंबी लंबी लाइन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार अगस्त में घरेलू सोना 12% महंगा होकर 158,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। 11 सितंबर तक गोल्ड में 4.5% से ज्यादा की आई थी गिरावट। कॉलियर्स के होम बाइंग सेंटिमेंट सर्वे के अनुसार अगले 2 वर्ष में घर खरीदना चाहते हैं 50% खरीदार। 31% लोगों ने अफोर्डेबिलिटी और सही दाम को चिंता बताया। 15 अक्टूबर से लागू होने वाले नई यूपीआई एमडीआर नियम में सरकार का एक और रेगुलेटरी सिस्टम बनाने पर विचार। 2000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर लगने वाले चार्ज को ग्राहकों पर नहीं डाल सकेंगे दुकानदार। नकली पेस्टिसाइड जैसे प्रोडक्ट्स की घुसपैठ से किसानों की प्रोडक्टिविटी और इनकम को नुकसान पहुंचाने का खतरा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश, किसान की आजीविका पर असर की आशंका। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार जल्द ही नो इंश्योरेंस नो फ्यूल व्यवस्था का ट्रायल शुरू करेगी। पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन करके बताएंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है या नहीं। एनारॉक के कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे के अनुसार करीब 48% होम बायर्स को पसंद है 3 BHK फ्लैट। 90 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक का बजट। यूपीआई एमडीआर लागू होने और महंगाई बढ़ने के बावजूद रेस्टोरेंट्स में अक्टूबर दिसंबर फेस्टिवल तिमाही में कीमतें नहीं बढ़ेंगी। ग्राहकों की आवाजाही के लिए बनाए कंपनियां खुद उठाएंगी अतिरिक्त लागत। इंडिगो ने एक्स्ट्रा बैगेज, अकेले सफर करने वाले बच्चों के किराए, प्रायोरिटी चेक इन जैसी सुविधाओं के शुल्क बढ़ाए। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने यात्रियों पर सीधा जेब पर असर डाला। टाटा सन्स बोर्ड ने टी चंद्रशेखरन को फिर से 5 साल के लिए चेयरमैन नियुक्त करने को स्वीकृति दी। नोएल टाटा के विरोध के बावजूद 4-1 वोट से निर्णय। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में बड़ा बॉम्ब विस्फोट, शुक्रवार की नमाज के दौरान धमाका, 16 लोगों की मौत, 25 लोग घायल। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या पर बड़ा ड्रोन हमला, शॉपिंग मॉल को निशाना, 1 व्यक्ति घायल। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद रूस में पहली बार संसदीय चुनाव, 450 सीटों वाली स्टेट ड्यूमा के लिए मतदान। रूस के समर्थक स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट का बड़ा बयान, यूरोप बड़े युद्ध के मुहाने पर, शांति के लिए प्रयास जरूरी, यूक्रेन युद्ध से बड़े स्तर पर संघर्ष भड़कने का खतरा। ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने पर दक्षिण कोरिया की सरकार का निर्णय, अमेरिका के युद्ध में अपनी सेना उतारने से साफ इनकार किया। ईरान का दावा, उन्होंने हॉर्मुज में टोगो के झंडे वाले तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया। टोगो के झंडे वाले तेल टैंकर को उस समय निशाना बनाया जब वो हॉर्मुज से अवैध तौर पर गुजर रहा था। हुती नेता ने मक्का पर हुती विद्रोहियों के हमले से इनकार किया, कहा यह घिनौना झूठ। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच लोगों ने अपनी सरकार के समर्थन में बड़ी रैली निकाली। अमेरिका इसराइल के हमले के बाद विरोध एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन। दक्षिणी फिलीपींस के हाईस्कूल में भीषण गोलीबारी से हड़कंप, 16 वर्षीय हमलावर समेत 6 की मौत, मरने वालों में एक ही स्कूल के 4 बच्चे, ये तीसरी घटना। दक्षिण चीन सागर में चीनी और फिलीपींस के जहाजों की टक्कर, आमना सामना हुआ, मछली पकड़ने वाली नाव को मारी टक्कर।

आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको आईफोन के लिए लगी लंबी लाइनें दिखाएंगे। लोग रात से ही लाइनों में आकर खड़े हो गए हैं। दिल्ली, मुंबई, नोएडा, बेंगलुरु, हर जगह एप्पल स्टोर के बाहर का नजारा देखकर लग रहा है फोन नहीं अमृत बट रहा हो। 17 प्रो मैक्स जेब में है, फिर भी 18 प्रो मैक्स के लिए रात 10 बजे से ही इंतजार करने लगे। दीवानगी का आलम तो देखिए, कोई नासिक से मुंबई भाग रहा है तो कोई पंजाब से गाड़ियां दौड़ाते हुए नोएडा पहुंचा है। किसी के लिए ये रक्षाबंधन और दिवाली से भी बड़ा त्योहार है, तो कोई अपनी पत्नी को आईफोन दिलाने के लिए घर का सोना तक बेच आया है।

0: मैं एक्चुअली निकला हूँ सूरत से, समझो रात को 10 बजे के करीब मैं पहुंचा हूँ यहाँ, 2-3 बजे।
1: मैं पंजाब से आया हूँ, सुबह 6 बजे से लाइन लगा हूँ।
2: मैं नासिक से आया हूँ और रात को 10-10:30 बजे से हम लाइन में खड़े हुए हैं।
3: गोल्ड पहले से ही काफी है दादी परदादियों का, वो बेच के लेने आए।
4: अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई। दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से बढ़ाकर 7% रहने का अनुमान जताया है। लेकिन इस रफ्तार के बीच मूडीज ने बड़ी चेतावनी जारी की है। एजेंसी का मानना है कि खाद्य पदार्थों की जो कीमतें बढ़ रही हैं और जो महंगाई है वो अर्थव्यवस्था का स्वाद बिगाड़ सकती है। अगर मानसून का असर या ग्लोबल तनाव बढ़ा तो आम आदमी की जेब पर दबाव और गहराएगा। पेट्रोल 391 रुपए पार, रात 9 बजते ही बाजारों में सन्नाटा और शादियों की प्लेट से कई डिश गायब। ये ताजा तस्वीर पाकिस्तान की जो हम आपको दिखाएंगे। एक तरफ सऊदी अरब जैसा दोस्त, दूसरी तरफ ईरान से लगती सीमा, फिर भी पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तेल को तरस रहा है। ऊर्जा संकट इतना गहरा गया है कि शाहबाज सरकार को बाजारों को 9 बजे, शादियों को 10 बजे समेटने का फरमान जारी किया गया है। आज आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान इतना फटेहाल क्यों हुआ। चौथी स्टोरी, इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या मिडिल ईस्ट के रण में महाशक्ति का गेम प्लान पूरी तरह बदल चुका है। क्या खाड़ी देशों में अब अमेरिका की जगह चाइना लेने जा रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब येमेन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी में हमले तेज किए तो सऊदी अरब को अमेरिका नहीं बल्कि चाइना का सहारा मिला है। चाइना ने बिना देर किए ईरान से कहा कि हूती विद्रोहियों पर लगाम लगाओ। जिस अमेरिका ने सऊदी अरब की सुरक्षा का ठेका लिया था वहां अब चाइना मददगार बन रहा है। क्या अमेरिका का ये मजबूत किला अब ड्रैगन के पाले में जा रहा है, देखिए। पांचवी खबर, खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले निठारी कांड में आरोपी रहे सुरेंद्र कोहली ने आत्महत्या कर ली है। सुरेंद्र कोहली निठारी मामले में 19 साल जेल में रहा, हालांकि बाद में उसे सभी मामलों में बरी किया गया। सवाल ये कि आखिर सालों जेल में काटने, अदालत से राहत मिलने के बाद सुरेंद्र कोहली ने यह कदम क्यों उठाया। अगली खबर, पश्चिम बंगाल की, जहां नंदीग्राम में उपचुनाव के मतदान से पहले ही बड़ा खेला हो गया। पहले अगर आप देखिए तो चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के असली नाम और सिंबल को फ्रीज कर दिया है। ममता गुट और बागी गुट दोनों को अलग अलग नाम और सिंबल थमा दिया है। इस फैसले पर भड़की ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र का काला दिन करा दिया। वहीं राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा, पहले शिवसेना फिर एनसीपी अब टीएमसी, और उसके बाद ऐसा खेला हुआ कि सारी बाजी ही पलट गई। नंदीग्राम से ममता गुट की प्रत्याशी संचिता प्रधान डे ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद अचानक अपना नाम वापस ले लिया है। साथ ही खबर लखनऊ की, जहां स्पेशल एनआईए कोर्ट ने भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ कराने वाले म्यांमार के 4 नागरिकों को 7 साल की सजा सुना दी है। यूपीएटीएस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि सिंडिकेट बांग्लादेश सीमा के जरिए रोहिंग्याओं को भारत लाता था, फिर फर्जी दस्तावेज उनके भारतीय पहचान पत्र बनवाता था और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे खतरनाक नेटवर्क को चला रहा था। घुसपैठ कराने वालों और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क के लिए अदालत का यह फैसला कड़ा संदेश है। अगली खबर, सड़कों पर हिट एंड रन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के आर के पुरम में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक पर बैठा 21 साल का लड़का घायल हो गया। इस कार को 73 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति चला रहे थे जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है।
5: और रुक जा।
4: क्या महिलाएं सिलेंडर नहीं उठा सकती, ऐसी सोच और दलील के साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 38 साल पहले एक महिला को नौकरी देने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोच पर प्रहार किया है और इस सोच को तोड़ते हुए सख्त लहजे में पूछा कि क्या महिलाएं अपने घर में सिलेंडर नहीं उठाती। इसके साथ ही कोर्ट ने महिला को 12 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। ये महिलाओं को कमतर आंकने वाली उस सोच पर सबसे गहरा प्रहार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इंसाफ मिलने में 38 साल क्यों लग गए। और अगली खबर हनुमान अंश की सफलता के बीच अब बाबा नीब करौली बाबा के भक्तों के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। पर्यटन विभाग ने फिरोजाबाद में नीब करौली बाबा कॉरिडोर की तैयारी तेज कर दी है और इस कॉरिडोर के लिए 5 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। बाबा की जन्मस्थली को संवारने पर 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

0: लेकिन आज खबरों की शुरुआत हम इन दो तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। तो देखिए ये दो तस्वीरें, इनमें पहली तस्वीर जो है वो साल 2010 की है जब एप्पल कंपनी ने अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज का आईफोन 4 लॉन्च किया था। इसे खरीदने के लिए टोक्यो में एप्पल स्टोर के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन लगी थी। इनमें भी कई लोग तो ऐसे थे जो एक एक हफ्ते तक अपने घर नहीं गए थे। बाद में इन तमाम लोगों का तालियां बजाकर स्वागत किया गया था। और यह बात सिर्फ जापान की नहीं है, साल 2010 से लेकर 2016 तक यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये तमाम देशों के लोग नए आईफोन के लिए एप्पल स्टोर के बाहर तीन तीन दिन पहले टेंट लगाकर बैठ जाते थे। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि उस दौर में अगर आप देखिए तो आईफोन के मॉडल सीमित होते थे और हर देश में एक साथ लॉन्च नहीं होते थे, और इसी वजह से सप्लाई कम होता था। सप्लाई कम होने के कारण जो पहले लाइन में लगता था उसे ही फोन मिलता था, तो सब डटे रहते थे। लेकिन बाद में यह व्यवस्था बदली, लोगों को नए आईफोन की प्री ऑर्डर सुविधा मिलने लगी, और इस सुविधा के बाद यूरोप हो, जापान हो, ऐसे देशों ने कई जो नई आईफोन सीरीज है उसका फोन खरीदने के लिए लोगों की लाइनें लगाना बंद कर दी, पहले से प्री ऑर्डर लोग करने लगे। जबकि भारत में इसका उल्टा हुआ है। तो देखिए आज आईफोन की जो नई फ्लैगशिप सीरीज है उसका ग्लोबल लॉन्च एक साथ होता है और इसके लिए प्री ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध होती है, लेकिन इसके बावजूद भारत में हर साल आईफोन के लिए लोग सब कुछ भूलकर लाइनों में क्यों लगते हैं, ये कतार हमारे देश के लोगों के बारे में क्या बताती है और क्या इसके पीछे सोशल मीडिया और कंटेंट भी एक वजह हो सकती है, इसके लिए आपको आज हमारी ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए।
1: टोक्यो की ये तस्वीरें 16 साल पुरानी है जब एप्पल की नई फ्लैगशिप सीरीज का आईफोन 4 लॉन्च हुआ था। उस वक्त भी एप्पल के बाहर लोगों की लंबी कतारें थी और लोग तीन तीन दिनों से अपने घर नहीं गए थे। लेकिन अब आप इसी जगह भारत की आज की इन तस्वीरों को देखिए। 16 साल पहले जापान, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो हो रहा था वही आज भारत में हो रहा है। बस फर्क इतना है कि अब विदेशों में पहले दिन पहला आईफोन खरीदने का उत्साह और जुनून कम हो गया है, जबकि भारत में अब भी ये अपने चरम पर है। आज से 10-15 साल पहले जब विदेशों में एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने के लिए लंबी कतारें लगती थी, तब इसका बड़ा कारण ये होता था कि उस वक्त आईफोन के नए मॉडल सीमित होते थे और इन्हें हर देश में एक साथ लॉन्च नहीं किया जाता था। इससे सप्लाई कम होने के कारण जो पहले लाइन में लगता था उसे ही फोन मिलता था। लेकिन आज ये व्यवस्था बदल चुकी है और अब ऑनलाइन प्री ऑर्डर की सुविधा और पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद भारत में दिखने वाली इस भीड़ और लोगों के जुनून के पीछे कई गहरे आर्थिक और सामाजिक पहलू समझ आते हैं, और अभी पूरा देश इन्हीं के बारे में बात कर रहा है।
2: पूरे देश में आईफोन का फीवर चढ़ गया है और मैं फिलहाल मुंबई के BKC आईफोन स्टोर में हूं, जहां पर आपको आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स यहां पर डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दे कि आईफोन का फीवर आईफोन लवर्स में इतना है कि कल रात से ही लंबी कतारें लगाकर वो यहां पर आईफोन खरीदने आए हैं।
1: आईफोन 18 के लिए यह भीड़ सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं थी, देश की राजधानी दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में एप्पल स्टोर के बाहर लोग रात 10 बजे से ही कतारों में लग गए थे और सुबह होते होते ये लाइन मॉल के बाहर तक पहुंच गई।
3: हर साल मैं 17 प्रो जैसे मैंने पिछली बार भी लिया था, तो इस बार मैं 18 प्रो मैक्स लेने आया हूँ 2TB। उसके लिए भाई काफी लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ भाई क्या इम्प्रूव कराए, जो 40,000 रुपए बढ़ाए हैं तो किस चीज में बढ़ाए हैं। तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ कवर लगा के दे देंगे, कुछ मुझे चाहिए, कैमरे भी इम्प्रूव चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए।
4: 18 प्रो लेने आए हैं जी, बिल्कुल आधी रात को आए, अभी आए, आके सीट खाली मिल गई, बैठ गए जी।
5: रात भर से खड़े, बहुत एक्साइटेड है, और हमारे पास बारकोड नहीं है, फिर भी हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं।
6: रात को 10-10:30 बजे से हम लाइन में खड़े हुए हैं, प्री बुकिंग किया हुआ है और 8 बजे का पहला स्लॉट मिला हुआ है, और इसके बाद हमको भी डिलीवरी मिलेगी थोड़ी देर।
1: इसी तरह की तस्वीरें मुंबई से भी आई, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ रात भर फुटपाथ पर सोई रही और कुछ जगहों पर लाइन तोड़ने के लिए लोगों में धक्का मुक्की और बहस भी देखी गई, जिसे शांत कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ा। मुंबई की तरह दिल्ली के पास नोएडा में भी एप्पल स्टोर के बाहर सुबह 6 बजे से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई और इनमें भी कई युवा ये कह रहे थे कि वो दूसरे राज्यों से आईफोन खरीदने के लिए नोएडा के इस एप्पल स्टोर में आए।
7: मैं मदुरई से आया हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने प्री बुकिंग किया था, अभी सुबह मैं 7 बजे लाइन में लग गया था, अभी मेरे को फाइनली मिल गया है।
8: हम मैसूर से हैं सर। हाँ, हमारे टोटल 12 फोन है, 12 फोन है, सारे दोस्त आए उनके साथ।
9: 12 फोन?
8: हाँ, 12 फोन खरीदे हैं, पूरे फ्रेंड्स सभी साथ हैं।
10: मैं एक्चुअली रात में 2 बजे आया था, मैं अहमदाबाद से आया हूँ, मेरी फ्लाइट 2 बजे आई थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे सुबह से मैं वेट ही कर रहा था, तो अभी मेरे को फाइनली मिल चुका है ये।
1: पहले के जमाने में राशन, सिलेंडर और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों की लाइनें लगती थी, लेकिन आज के नए जमाने में नए फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स के लिए भी लाइनें लगती हैं और लोग इन्हें भी अपने जीवन में जरूरी मानते हैं। और सबसे बड़ी चीज, भारत में ज्यादातर लोग लेटेस्ट आईफोन अपने शौक के लिए भी खरीदते हैं।
11: आईफोन लवर्स में इतना जुनून क्या है, क्योंकि इतने महंगे फोन है कि मीम्स हम लोग देख रहे हैं कि लोग किडनी बेचना पड़ता है अगर आईफोन खरीदना है। आप क्या कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं इस बार?
12: मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सेविंग करता हूँ उसके लिए। मैं आईफोन 3GS जब आया था तब से मैं यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने कोई फोन यूज नहीं किया है। मैं हर साल दो दो मॉडल स्किप करके उसके आगे आता हूँ। मैं
11: कौन सा मोबाइल लेने की सोच रहे?
13: 18 Pro Max बुक किया हूँ मैंने, 1 TB बरगंडी कलर।
11: कितना?
13: 1 TB।
11: प्राइस कितना
13: है? 2.5 लाख के आसपास है।
11: 2.5 लाख में एक बढ़िया बाइक आ सकती है, अच्छे वेकेशन पर भी जा सकते हो।
13: शौक शौक की बात है, जब शौक रखेंगे आदमी तो कुछ भी कर सकता है।
1: जब ज्यादातर लोगों ने सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए आईफोन 18 प्रो या आईफोन 18 प्रो मैक्स खरीदा, तब ये देखना भी जरूरी है कि भारत में ये फोन एक छोटी गाड़ी की कीमत के बराबर है। आईफोन 18 प्रो की कीमत 1,64,900 से लेकर 3,14,900 रुपए तक है, जबकि आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत 1,79,900 से लेकर 3,29,900 रुपए तक है। यह कीमत भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में थोड़ी चुभती है। भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, जिसका मतलब ये होता है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति आईफोन 18 प्रो खरीदता है तो इसके लिए उसे अपनी 7 महीने 22 दिनों की तनख्वाह खर्च करनी होगी। ये भी तब होगा जब वो व्यक्ति अपनी तनख्वाह को किसी और चीज पर खर्च न करे, जबकि दूसरे देशों में कहानी अलग है। अमेरिका के लोग सिर्फ अपनी 7 दिन की तनख्वाह से आईफोन 18 प्रो खरीद सकते हैं, फ्रांस के लोग 12 दिनों की तनख्वाह से, ब्रिटेन के लोग 11 दिनों की, जापान के लोग 17 दिनों की और ऑस्ट्रेलिया के लोग सिर्फ 10 दिनों की सैलरी से आईफोन 18 प्रो खरीद सकते हैं। ये आंकड़े हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि लोग इस बात को समझें कि भारत में आईफोन के शौक की कीमत क्या है और दूसरे देशों में आईफोन का शौक कितना कीमती है। इस बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इस व्यक्ति को सुनिए जिसने अपने घर का सोना बेचकर अपनी पत्नी के लिए नया आईफोन खरीदा।
14: शुरुआत करिए।
15: अरे जो गोल्ड वगैरह है उसके प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो गोल्ड खरीदने की नहीं सोची?
14: नहीं नहीं नहीं, गोल्ड पहले से ही काफी है, दादी परदादियों का, वो बेच के लेने आए।
15: सर आप कौन सा फोन खरीदने आए?
14: प्रोमैक्स।
15: 18 प्रोमैक्स।
1: आपको यकीन नहीं होगा कि किसी भी शहर में हमें ऐसे लोग बहुत कम मिले जो टेक्नोलॉजी, फीचर्स या कैमरे की क्वालिटी की वजह से आईफोन खरीदने आए हों। ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि ये उनका शौक है और वो शौक के लिए पहले दिन पहला आईफोन 18 खरीदने आए हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज एप्पल स्टोर्स के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ आईफोन के लिए आई थी या वो कंटेंट के लिए आई थी? यानी लोग सिर्फ इसलिए लाइन में खड़े होते हैं क्योंकि सब खड़े हैं, या वो इसलिए लाइन में खड़े थे क्योंकि उन्हें नए आईफोन के फीचर्स पसंद हैं?
16: काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा कोई फॉरेन ट्रिप कर सकते थे, जापान जा सकते थे।
17: ये तो बेवकूफी है, वो ये बेवकूफी है। आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ में, फॉरेन ट्रिप अलग ट्रिप और ये शौक है, शौक की कोई कीमत नहीं होती भाई।
1: किसी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि लोग आईफोन खरीदने क्यों आए, ये सवाल हम भी नहीं पूछ रहे। हमारा मकसद सिर्फ इस भीड़ को और उसके जुनून के पीछे की वजहों को समझना है, और ये वजह कहीं ना कहीं बताती है कि बहुत सारे लोगों ने आज आईफोन मुख्य रूप से 3 वजहों से खरीदा। पहली वजह, इसे स्टेटस सिंबल से जोड़ना। दूसरी वजह, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक बहुत बड़ा हिस्सा कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का था, जिनके लिए लाइन में खड़े होना, स्टोर के अंदर जाने वाले पहले 10 लोगों में शामिल होना और एप्पल के कर्मचारियों के साथ ताली बजाते हुए अनबॉक्सिंग की रील बनाना, ये सब सोशल मीडिया कंटेंट के लिए जरूरी था। और कई लोगों ने ऐसा किया भी। और जब ये होता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो भी ऐसा करेंगे और वो भी पहले दिन जाकर पहला आईफोन 18 खरीदेंगे, और आज भी शायद यही हुआ।
9: कितना एक्साइटमेंट है और कब प्री बुकिंग करा ली थी आप?
18: प्री बुकिंग लास्ट वीक करा था, लास्ट सैटरडे मैंने कराया था, आई थिंक 9th को ही करवा दिया था। और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर। That's it.
9: मैं देख रहा हूँ दो फोन आप लेके आए हैं।
18: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊँ।
9: कितना एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत जगह से पिक्चर्स आ रही हैं कि लोग लाइनों में खड़े हैं, आप आराम से आए, अपना टाइम पे 8 बजे स्टोर खुला और फोन लेने के लिए पहुंचे।
19: हाँ, प्री बुकिंग ऑलरेडी कर रखी थी तो एज सच अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। देखते हैं
9: क्या वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से फर्स्ट डे फर्स्ट फोन लेने का ये रहता है।
19: फीचर्स एज इन मतलब, हाँ, पहले से टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं और जो आईफोन यूजर है वो तो खैर हर साल एक नए अपग्रेड के लिए जाते ही हैं, तो ये बेसिकली एक तरह का मतलब अपने अंदर एक वो होता है कि हम चलो नया एडवांस उसके लिए जाएं, बस यही है।
9: पिछली बार भी आप फर्स्ट कस्टमर्स में ही थे जब लिया था?
19: नहीं, पिछली बार मैं नहीं था, ये थे मगर।
18: मैं रहता हूँ फर्स्ट कस्टमर। ठीक है,
9: हर बार जब आएगा नया वेरिएंट तो आप?
18: मैं रहता हूँ, मैं फर्स्ट लेता हूँ, स्टार्टिंग से ही लेता हूँ, फर्स्ट डे वाला बुकिंग पहले से करके रखता हूँ।
1: यहाँ ये भी समझना होगा कि एप्पल कभी भी इस भीड़ को रोकता नहीं है, बल्कि वो लाइन में खड़े लोगों का स्वागत तालियों और नारों के साथ करता है, जिसके कारण नए आईफोन की बिक्री एक बड़े लॉन्च इवेंट में बदल जाती है। सिर्फ इस माहौल का हिस्सा बनने के लिए ही पहले दिन पहला आईफोन खरीदते हैं। हालांकि ये नकारात्मक बिल्कुल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि भारत में सारे लोग सिर्फ ईएमआई पर आईफोन खरीदते हैं। इस साल भारत में जितने स्मार्टफोन की बिक्री हुई उनमें 42% स्मार्टफोन ईएमआई यानी किस्तों पर खरीदे गए, और इनमें आईफोन की बिक्री के आंकड़े भी शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में बिकने वाले हर 10 में से लगभग 5 आईफोन ईएमआई पर खरीदे हैं और 5 आईफोन कैश या कार्ड से खरीदे जाते हैं। और कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि ईएमआई पर खरीदे जाने वाले आईफोन की संख्या अब तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि नया आईफोन 18 पिछले सीरीज के आईफोन के मुकाबले महंगा है। भारत में 75 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है, जिनमें सिर्फ 7% यानी करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आईफोन चला रहे हैं। यानी भारत में आईफोन का बाजार बड़ा जरूर है, लेकिन इसके आंकड़े ये नहीं कहते कि भारत में हर कोई ईएमआई पर आईफोन खरीदने की रेस में दौड़ रहा है, बल्कि यहाँ ये बात अहम है कि भारत में हर साल जितने स्मार्टफोन की बिक्री होती है उनमें 30% पैसा एप्पल कंपनी को जाता है। यानी वॉल्यूम में आईफोन की बिक्री कम है, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
0: खैर, इस भीड़ को लेकर एक और बहस ये हो रही है कि क्या भारत में ईएमआई यानी किस्तों पर आईफोन खरीदने का ये जुनून सही है, और क्या ये भीड़ शिक्षा नौकरियों के लिए लगने वाली भीड़ से ज्यादा है। तो हमें लगता है कि ऐसी बातों पर यकीन करने से पहले आपको पूरा सच जानना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ कुछ हजार लोगों की इस भीड़ से पूरे भारत को नहीं समझा जा सकता। देखिए,
1: आज जब पूरे देश में सिर्फ इस भीड़ की चर्चा हो रही है, तब हम आपको मेड इन इंडिया की ताकत भी बताना चाहते हैं। पहला, जब एप्पल का कोई नया आईफोन लॉन्च होता था तब उसके सिर्फ बेस मॉडल्स भारत में बनाए जाते थे, जबकि प्रीमियम प्रो मॉडल्स को कई महीनों बाद भारत में असेंबल करना शुरू किया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स दोनों को लॉन्च के पहले दिन से ही भारत में तैयार किया जा रहा है। इस वक्त एप्पल कंपनी के 25% आईफोन यानी हर 4 में से एक आईफोन को भारत में बनाया या असेंबल किया जा रहा है, और अभी भारत एप्पल कंपनी के लिए अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा बाजार है। अभी एप्पल कंपनी के हर 100 में से 6 आईफोन भारत में खरीदे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब इन आईफोन को खुद बना रहा है। साल 2024-25 में एप्पल कंपनी ने भारत में 1,94,000 करोड़ रुपए के आईफोन असेंबल किए थे, और इसमें पिछले साल के मुकाबले 60% की वृद्धि हुई थी। एप्पल कंपनी के मुताबिक पिछले साल की एक तिमाही में अमेरिका में 50% से ज्यादा मेड इन इंडिया आईफोन की बिक्री हुई, और ये सारे आईफोन भारत में असेंबल होने के बाद अमेरिका के बाजार में पहुंचे। आज एप्पल कंपनी अपना हर 4 में से एक प्रोडक्ट भारत में बना रही है, और साल 2028 तक आईफोन के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% से भी ज्यादा हो सकती है। बड़ी बात यह है कि साल 2014 में भारत में इस्तेमाल होने वाले 26% मोबाइल फोन ही मेड इन इंडिया होते थे, लेकिन अब हमारे देश में इस्तेमाल हो रहे 99.2% मोबाइल फोन मेड इन इंडिया हैं।
20: 2014-15 में भारत में 18,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का उत्पादन होता था, लेकिन आज हमारे देश में 5,45,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का उत्पादन होता है। तो ये आंकड़े भी हमें अपने देश पर गर्व कराते हैं। और आपके लिए भी अच्छी बात यह है कि भारत में लोग भारत में ही बने और असेंबल हुए आईफोन 18 को खरीद रहे हैं। भारत की उत्पादन क्षमता बढ़ने और घरेलू खपत में तेजी आने से ही अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। मूडीज के मुताबिक भारत की ग्रोथ G20 अर्थव्यवस्थाओं और समान रेटिंग वाले उभरते बाजारों से तेज रहने की उम्मीद है। हालांकि इन्हीं अनुमानों में एक चेतावनी भी आई है। इसमें लिखा है कि भारत में तेल की बढ़ती कीमतें और महंगाई के कारण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और भारत को अभी इसी से निपटना है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है, ईरान के साथ उसकी सीमा लगती है और ओमान भी उसके पड़ोस में है, तब पाकिस्तान तेल के लिए तड़प क्यों रहा है? सीधा कारण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी देश मुफ्त में तेल नहीं देता, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त, कितना भी अच्छा पड़ोसी क्यों ना हो। तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर या विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है और पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां लोग सरकार से ये कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। देखिए,
21: पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर आवाम का पारा हाई, हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा।
22: तीन दिनों में 26 रुपए तेल तो बढ़ चुका है और हम क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, बताएं, आप बताएं।
23: भाई आप बाइक पे हो, पेट्रोल डलवाया?
24: पेट्रोल पैसे नहीं है, किस तरह डलवाए।
20: पाकिस्तान की सरकार ने ईंधन बचाने और फिजूल खर्ची रोकने के लिए जो पाबंदियां लगाई, अब उन पर खूब कोहराम मचा है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि जब तक तेल संकट का कोई हल नहीं मिलता, तब तक सभी दुकानें और बाजार रात 9 बजे बंद करने होंगे। शादी हॉल रात 10 बजे और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक बंद करने होंगे। शादी समारोह में सिर्फ एक व्यंजन

0: रोक लगाई जाएगी। बेहद जरूरी यात्रा में भी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को इकोनॉमी क्लास में जाना होगा। गैर कर्मचारी बजट में 5% की कटौती की जाएगी। सरकारी बैठकें संभव हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी और इसी दौरान सरकारी दावतों पर भी कड़ी रोक लगाई जाएगी और ये सूची बहुत लंबी है। ईरान युद्ध के कारण पाकिस्तान का हाल इतना बेहाल हो गया है कि वहां 18 सितंबर से पेट्रोल 390 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल 424 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हो गया है और सरकार ने साफ कह दिया है कि वो ना तो अभी इस पर टैक्स कम कर सकती है और ना ही पाबंदियों में कोई छूट दे सकती है। और इन पाबंदियों के बाद पाकिस्तान की आवाम वहां की सरकार से कह रही है कि तुमसे ना हो पाएगा।
1: अभी सब्सिडी का ऐलान किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब यकीन करें मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ मैं इसको रजिस्टर करने की। अच्छा, एक तो उनकी शराइत इतनी मुश्किल है, ठीक है। एक बात ये तो ये बोलते हैं गाड़ी आपके नाम हो, ठीक है। ऊपर से वो गाड़ी आपके नाम हो और आपका जो रजिस्ट्रेशन आपके नाम हो, ठीक है। उसके बाद वो जो आपका मोबाइल की सिम है वो आपके नाम हो। भाई इतनी मुश्किल करोगे तो गरीब आदमी जो इलिटरेट पर्सन है वो किस तरह सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। हम रजिस्टर किस तरह कर पाएंगे।
2: पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल है, पेट्रोल बढ़ने का मतलब ही यही है कि जो सर के बाल से लेकर नाखून तक और एक जो है वो नाई की दुकान से लेकर एक 5-स्टार होटल तक हर चीज आप महंगी कर दें।
3: कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ 200, 100, 150 का पेट्रोल डालते हैं तो वो देखें एकदम से वो 1300 या 1400 देना पड़ जाए तो वो तो बेचारे डलवाएंगे ही नहीं, ठीक है। हमारे पास आज थे तो आज हमने डलवा लिए, नेक्स्ट वीक क्या पता मैं भी ना डलवा सकूँ।
0: अजीब बात यह है कि जब पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है और सऊदी अरब, यूएई और ओमान उसके सहयोगी देश हैं, तब वो तेल के संकट के सामने सरेंडर कर चुका है, जबकि इसी जगह हमारा देश भारत भी कच्चे तेल के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है और ईरान युद्ध का असर हम पर भी पड़ा है। और हमारी आबादी तो 145 करोड़ से ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं लगी है। और जानते हैं भारत और पाकिस्तान में ये फर्क क्यों है? अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो भारत की तुलना में पाकिस्तान भौगोलिक रूप से मिडल ईस्ट देशों से ज्यादा करीब है। ईरान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। ओमान से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 400 किलोमीटर है, यूएई भी 550 किलोमीटर और सऊदी अरब भी पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है। और इस चीज को देखते हुए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तेल का संकट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी पाकिस्तान बूंद बूंद तेल के लिए तड़प रहा है और इसका कारण यही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी देश मुफ्त में कच्चा तेल नहीं देता, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त या पड़ोसी क्यों ना हो। तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर यानी विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है और पाकिस्तान के पास डॉलर खत्म हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे निचले स्तर पर है और आप खुद सोचिए जब जेब में डॉलर ही नहीं होंगे तो पाकिस्तान तेल कहां से खरीदेगा। और अभी उसके साथ यही हो रहा है। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है लेकिन उस पर अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू हैं। अगर पाकिस्तान ईरान से आधिकारिक रूप से तेल खरीदता है तो उस पर भी वैश्विक प्रतिबंध लग जाएंगे जिससे उसका बचा खुचा व्यापार और आईएमएफ से मिलने वाला कर्ज पूरी तरह रुक जाएगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब से तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पर्याप्त डॉलर नहीं है। अगर वो बिना कटौती के तेल खरीदता है तो पूरा पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सीमा भले ही मिडल ईस्ट देशों के करीब है लेकिन उसकी जेब में तेल खरीदने का पैसा नहीं है और वो अपने लोगों को कह रहा है कि शादियों में एक डिश से ज्यादा न परोसी जाए और नेता भी विदेशी दौरों पर न जाए। जबकि भारत ने पिछले हफ्ते ही ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की है और इस संकट में भी हमने पाबंदियों से देश को बचा कर रखा है और इसका कारण ये है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत मजबूत है। भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है जो 780 बिलियन डॉलर का है, जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 21 बिलियन डॉलर का है जो 64वें नंबर पर है। और इसमें भी बहुत सारा पैसा सऊदी अरब का है जिसे पाकिस्तान खर्च तक नहीं कर सकता। भारत ही अपने तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है लेकिन हमारी बड़ी बात यह है कि जब ईरान युद्ध के कारण हुर्मुज बंद हुआ तो हमने रशिया से कच्चे तेल की कीमत 50% तक बढ़ा ली और अमेरिका से गैस का आयात भी 50% तक बढ़ा लिया। और हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बहुत मजबूत हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग अपनी किस्मत पर कैसे रो रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है।
4: इनके पास मुल्क चलाने के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के अलावा और

0: कुछ नहीं है। इन पेट्रोल की कीमतों से ये अयाशियाँ भी कर रहे हैं और मुल्क भी चला रहे हैं, लेकिन ये अपनी अयाशियाँ और अपने अखराजात कम नहीं कर रहे।
1: वो पेट्रोल महंगा हो ही जा रहा है, अगे हफ्ते बाद महीने बाद असी सुनी दा सी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, मगर हुण पता ही कोई नहीं, पेट्रोल जड़ा है ना वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है।
2: आप खाइए कि पेट्रोल पवाइए कि बच्चों से करिए, समझो गल बार है कि कोई मसल लगी करना चाहती है।
3: कीमतें बढ़ रही हैं, ये सरासर ज्यादती है, हुकूमत आवाम के साथ जो है ना खिलवाड़ कर रही है।
4: पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आम आवाम तो जलील हो गई है। यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस नीचे कर रही है, आम बंदे की जरूरत है, किसी अमीर की जरूरत नहीं है, या गरीब बंदे की जरूरत है।
5: पाकिस्तान अपनी जरूरत का करीब 80-85% कच्चा तेल आयात करता है। उसके कच्चे तेल के आयात में यूएई की हिस्सेदारी करीब 50-56% है, सऊदी अरब की 30-35% और कुवैत की करीब 4% है। लेकिन अभी पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो इन देशों को पैसे देकर तेल और गैस खरीद ही नहीं सकता, और वैसे पाकिस्तान डींगे बड़ी बड़ी हांकता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
6: खैर, एक तरफ पाकिस्तान में नई गाड़ियों की खरीद पर बैन लगा दिया गया है, दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान की सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटों से जुड़ी अमेरिकी कंपनी के साथ ड्रोन खरीदने का रक्षा सौदा किया। और ये देखकर पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुनिए।
7: काड़ा में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए पुलिस और ताजरों के दरमियान आंख मचोली। पुलिस के आने पर दुकानें बंद, जबकि जाने पर फिर खोली जाती हैं।
8: इन लोगों का जो टाइम है वो 10 बजे तक डाइन इन का टाइम है, 10 बजे तक आपने लोगों को अंदर बिठा के खिलाना पिलाना है।
9: 10 बजे तक
8: 10 बजे के बाद आपने उनको अंदर बिठा के खिलाना नहीं है, उनको बाहर से ही पैक करके दे देना है।
10: कदनी है 17 को यहाँ से चला गया लंदन के अंदर, उसका कोई काम नहीं है, सरकारी जहाज के ऊपर गया हुआ है लंदन में, 2-3 दिन हमारा प्राइम मिनिस्टर रहेगा, उसके बाद वो अमरीका तशरीफ ले जाएंगे। 7 दिन का तो ये दौरा है। आज उन्होंने पाकिस्तान दोनों पे पाबंदी लगा दी।
11: पंप पे जितने लोग जा रहे थे उनको पंप वाले कह रहे थे कि आपको कोई सब्सिडी, हमें पता ही नहीं सब्सिडी क्या होती है,
12: मतलब उन्हें अपनी पड़ी है कि हमारे 100 रुपए कैसे पूरे होंगे, हुकूमत हमें तो बताए कि सब्सिडी आप हमें कैसे देंगे।
13: सारा दिन तो मजदूरी करते हैं, रेडी लगाते हैं गोलगप्पों की, जब से लॉकडाउन हुआ है उससे हमारा कारोबार भी खत्म हो गया है, ताजी वाले बंदे घर का कैसे गुजारा चलाए।
14: खुद देखता हूँ 5-5 हजार का गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, हम गरीबों को क्यों परेशान कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं है, गरीब आदमी को पैदर पै मारने की कगार पर ले आएंगे।
6: अब अगली खबर का रुख करते हैं, आपको ये बताते हैं कि युद्ध दुनिया में कहीं भी हो अमेरिका अपने हथियार बेचने के तरीके निकाल ही लेता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट बेचने को अनुमति दे दी है। इस डील के लिए सऊदी अरब पिछले साल की शुरुआत से ही लगा हुआ था, लेकिन बातचीत कहीं ना कहीं अटकी हुई थी। हुती के हमलों से अब सऊदी अरब फंसा हुआ है, और इसी मौके का फायदा उठाकर मौके पर चौका लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने F-35 फाइटर जेट सऊदी को बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अगर आप इसको कई मायनों में देखिए तो कुछ विश्लेषक इस डील को चाइना की एक बड़ी साजिश के तौर पर देख रहे हैं। आखिर क्या खेल चल रहा है अमेरिका, सऊदी अरब और चाइना के बीच, इस रिपोर्ट में समझिए।

0: दुनिया में युद्ध कहीं भी हो, अमेरिका उस युद्ध के लिए हथियार बेचने के तरीके निकाल ही लेता है। वो दोस्ती भले ही ना निभाए, लेकिन दोस्त के पैसे लेकर अपनी दुकानदारी जरूर चला लेता है। हुती से जंग में उलझे हुए सऊदी अरब को उसने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट F-35 बेचने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 बेचने को हरी झंडी दिखा दी है। इसका मतलब ये है कि अब सऊदी अरब अब चौथा गैर नेटो देश होगा जिसके पास F-35 जैसा ताकतवर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होगा। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 48 F-35 फाइटर जेट की डील होगी। ये पूरी डील करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की होगी। इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को 48 F-35 फाइटर जेट और इसके साथ साथ 49 F-135 इंजन भी देगा। F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट में F-135 इंजन ही लगा है। सऊदी अरब हर फाइटर जेट के लिए एक स्पेयर इंजन मंगवा रहा है और इसके अलावा एक इंजन अलग से भी चाहता है। F-35 फाइटर जेट को हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। इस फाइटर जेट का निर्माण अमेरिका के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम के तहत होता है, यानी कई देश इसको विकसित करने के प्रोग्राम में हिस्सेदार हैं। ये फाइटर जेट अभी तक दुनिया के केवल 20 देशों के पास है। इसमें भी ज्यादातर नाटो देश ऐसे हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड्स, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ग्रीस और रोमानिया। अभी तक केवल 6 गैर नाटो देशों को ही अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 दिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड है। अब सऊदी अरब वो सातवां देश होगा जिसके पास अमेरिका का F-35 फाइटर जेट होगा और इसके लिए सऊदी अरब अच्छी खासी रकम चुकाएगा। अब आप सोचिए कि अमेरिका कितना चालाक है कि वो वर्षों तक सऊदी अरब से युद्ध में मदद का भरोसा दिलाता रहा, और जब हूती के साथ उसकी जंग शुरू हुई तो उसने हूती के साथ अलग से डील कर ली, और अब हूती के खिलाफ जंग में सऊदी अरब से पैसे लेकर उसे F-35 बेच रहा है। नैतिकता तो यही कहती है कि अमेरिका को दोस्ती के नाम पर हूती के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हूती के खिलाफ सऊदी अरब अमेरिका को अपने पक्ष में चाहता है और इसीलिए वो F-35 डील के जरिए पैसे देकर एक तरह से अमेरिका की मदद खरीद रहा है। अब आप सोचिए कि सऊदी अरब ने साल 2025 की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप से सीधे ही F-35 खरीदने की बात कही थी, लेकिन तब ट्रंप ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में पेंटागन की तरफ से ये खबर आई कि F-35 को सऊदी अरब को देने पर विचार किया जा रहा है। फिर नवंबर 2025 के तीसरे हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि सऊदी को F-35 बेचे जा सकते हैं। ये संकेत सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वॉशिंगटन यात्रा से कुछ दिन पहले का था। इसके बाद 18 नवंबर 2025 को दोनों देशों के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ और F-35 देने की बात पर सहमति बनती दिखी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से फाइटर देने की बात पक्की नहीं मानी गई। मायने हूती पर हमले से ज्यादा अमेरिका को अपने करीब लाने से जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: हुती के हमलों से जब कोई भी देश सऊदी अरब की मदद नहीं कर रहा है तो ऐसे में चाइना ने सऊदी का हाथ थाम लिया है। खबर है कि चाइना अपने दोस्त ईरान के जरिए हुती से सऊदी अरब पर नरमी बरतने की अपील कर रहा है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन देशों में ईरान युद्ध के बाद अमेरिका का वर्चस्व कमजोर हुआ है, चाइना उन तमाम देशों में एक एक करके सेंधमारी में जुट गया है। देखिए,
0: क्या सऊदी अरब अमेरिका से F-35 खरीद कर उसकी तकनीक चीन को बेच सकता है? अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस पर चिंता जताई है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया अधिकारियों की रिपोर्ट के हवाले से चिंता जताई गई है कि अगर अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 दिया तो चीन सऊदी अरब में मौजूदगी, सुरक्षा सहयोग और जासूसी के दम पर F-35 की संवेदनशील टेक्नोलॉजी तक पहुँच सकता है। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की इस रिपोर्ट में मुख्य 3 चिंता जताई गई है। पहली ये कि सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों तक चीन के सैन्य अधिकारियों की भी पहुंच है। दरअसल चीन के सैनिक सऊदी अरब में युद्ध अभ्यास के लिए जाते रहते हैं। यही नहीं, चीन की PLA ने सऊदी अरब के 9 सैनिकों के साथ प्रशिक्षण भी लिया है। इसके अलावा चीन सऊदी अरब को बैलिस्टिक मिसाइलें और दूसरी सैन्य तकनीक भी देता है। अमेरिकी खुफिया विभाग की दूसरी चिंता है सऊदी का सैन्य और टेलीकॉम नेटवर्क। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब के सैन्य और टेलीकॉम नेटवर्क में चीन की तकनीक इस्तेमाल की गई है। खास तौर से हुआवे और ZTE के उपकरणों और नेटवर्क को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। खुफिया विभाग की सबसे बड़ी चिंता F-35 के रडार और सर्विलांस सिस्टम है। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि अगर सऊदी अरब के पास F-35 पहुंच गया और चीन तक उसकी पहुंच हो गई, तो वो इस फाइटर जेट के एडवांस रडार टेक और सर्विलांस टेक्नोलॉजी को डिकोड कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो चीन अपनी तकनीकी क्षमता का इस्तेमाल करके F-35 का तोड़ निकाल लेगा। और ये
1: अब हम 20 साल पुराने निठारी केस की बात करेंगे, जिसके आरोपी रहे सुरेंद्र कोहली ने आत्महत्या कर ली है। बच्चों की हत्याओं से जुड़े 13 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरेंद्र कोहली को सभी मामलों में बरी कर दिया था। केस से बरी होने के बाद वो हरिद्वार में नाम बदलकर रह रहा था और एक चाय की दुकान भी उन्होंने खोली थी। अब अपने घर में ही खबर आ रही है कि फांसी लगा ली है। आखिर ऐसा क्यों किया, इस रिपोर्ट में देखिए।
2: २९ दिसंबर साल 2026 को नोएडा के निठारी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। निठारी की इस D5 कोठी के पीछे एक के बाद एक 16 मासूम बच्चों के सड़े गले शव बरामद होते गए। इस आदमी को तो आप जानते ही होंगे, नाम है सुरेंद्र कोहली। निठारी कांड को देखने और समझने वाले इस चेहरे को कभी नहीं भूल सकते। इस आदमी को 13 मामलों में देश की अदालतों ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन फांसी से ऐन पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने इसकी फांसी को टलवा दिया और फिर एक लंबी सुनवाई के बाद सुरेंद्र कोहली को हर आरोप से बरी कर दिया गया। करीब 19 साल तक जेल में रहने के बाद पिछले साल नवंबर में पिछले करीब 10 महीनों से सुरेंद्र कोहली आजाद था। उसकी फांसी की सजा टाली जा चुकी थी, उसे हर जुर्म से बरी कर दिया गया था। लेकिन अब खबर यह है कि सुरेंद्र कोहली ने फांसी लगा ली है। पिछले कई दिनों से सुरेंद्र कोहली नाम और पहचान बदलकर लोगों की नजरों से बचते हुए हरिद्वार में चाय की छोटी सी दुकान चला रहा था। उसने लोगों को अपना एक फर्जी नाम बता रखा था। पुलिस के मुताबिक वो कुछ महीने पहले ही हरिद्वार आया था। उसने अपना नाम सदाराम रख लिया था। आस पड़ोस के लोगों को उसकी असली पहचान का भी तब तक पता नहीं चला जब तक पुलिस ने शव के पास से मिले असली पहचान पत्र की जाँच नहीं की थी।
3: किसी के माध्यम से ये आया और इसने अपना नाम बदल के यहाँ पे चाय की दुकान चलाई 3 दिन पहले।
4: पहचान कैसे हो पाई उसकी?
3: इसका आधार कार्ड में जो आया जाए, फिर जो लोग, क्योंकि वो बड़ा चर्चित रहा था निठारी काम, उसमें इसका चेहरा भी आया था, तो ये फिर जानकारी हुई है। तो ये वही, अब तक जो पता लगा है ये वही व्यक्ति है जो निठारी काम में अभी था।
2: सुरेंद्र कोहली ने अपने घर में फांसी क्यों लगाई, इसके पीछे की वजह अतिक्रमण हटाओ अभियान बताया जा रहा है। हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों की वजह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इस कारण से सुरेंद्र कोहली ने एक दुकान के मालिक को एडवांस दिया था जिसके फंसने की चिंता थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से दुकान के अंदर ही उसने फांसी लगा ली। निठारी कांड देश में हत्या के सबसे भयानक मामलों में से एक माना जाता है। ये मामला साल 2005-2006 के बीच का है, जब निठारी की D5 कोठी के पीछे नाले के अंदर से 16 बच्चों के शव बरामद हुए थे। इन बच्चों की हत्या में सुरेंद्र कोहली का हाथ माना गया था। शुरुआत में नोएडा पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, लेकिन बाद में इस मामले की जांच CBI को सौंप दी गई थी। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आपके घर में छोटा बच्चा है? क्या आप भी ये सोचकर बाजार में महंगा बेबी फूड लाते हैं कि उसमें आपके बच्चे के लिए कम से कम भरपूर पोषण तो है? अब दिग्गज कंपनी नेस्ले इंडिया पर FSSAI ने शिकंजा कसा है। कंपनी पर मासूम बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ और गुमराह करने वाला विज्ञापन न देने का अब मामला चल रहा है कि वो ऐसे विज्ञापन दे रहे थे जो मिसलीडिंग विज्ञापन का आरोप लगा है। नेस्ले के फॉलो अप फॉर्मूला बेबी फूड में विटामिन B7 की मात्रा तय मानकों से बहुत कम पाई गई है, जबकि नैन एक्सेला प्रो और लैक्टोजन प्रो 1 में प्रोडक्ट्स के जरिए आसानी से पचने जैसे दावों के साथ धड़ल्ले से प्रचार किया गया और ये नियमों का सीधा उल्लंघन है। FSSAI ने साफ कर दिया है कि बिक्री बढ़ाने के नाम पर माता पिता के भरोसे से खेलना बर्दाश्त नहीं होगा। मामले में अलग अलग तीन जगहों पर, मतलब तीन अलग अलग केसेस इन तमाम मुद्दों पर दर्ज किए गए हैं और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
0: टीवी अखबार, सोशल मीडिया से लेकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक हर तरफ विज्ञापनों की ऐसी जबरदस्त भरमार है कि आम उपभोक्ता भ्रमित हो जाए। 100% शुद्ध, आसानी से पचने वाला, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला जैसे दावों के साथ भ्रामक प्रचार का बाजार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। लेकिन जब बात नौनिहालों और मासूम बच्चों के पोषण की हो तो क्या ऐसे अनियंत्रित विज्ञापनों पर आंखें मूंद ली जाएं? FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेस्ले इंडिया पर अब कड़ा कानूनी शिकंजा कस दिया है। मामला मासूम बच्चों के लिए बनने वाले इन्फेंट न्यूट्रिशन यानी बेबी फूड प्रोडक्ट से जुड़ा है। FSSAI ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ 3 अलग अलग कानूनी मामले दर्ज किए हैं। जांच में सामने आया कि नेस्ले ने नान एक्सेला प्रो स्टेज 1 और लैक्टोजन प्रो 1 के विज्ञापनों में नियमों की धज्जियां उड़ाई। नान एक्सेला प्रो स्टेज 1 में 5 HMOs और वे प्रोटीन का प्रचार किया जा रहा था। वहीं लैक्टोजन प्रो 1 को लेकर दावा ठोका गया कि इसमें मौजूद वे प्रोटीन बहुत आसानी से पचता है। FSSAI के मुताबिक ये फूड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन रेगुलेशंस 2020 और IMS एक्ट 1992 का सीधा उल्लंघन है, जो बच्चों के भोजन की बिक्री बढ़ाने के लिए किए जाने वाले ऐसे किसी भी प्रमोशनल दावे या प्रचार पर सख्त रोक लगाते हैं। बात सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित नहीं है। FSSAI द्वारा की गई लैब जांच में नेस्ले इंडिया के फॉलोअप फॉर्मूला का एक सैंपल सबस्टैंडर्ड पाया गया। जब इसकी रेफरल रैप में दोबारा जांच कराई गई तब भी इसमें बायोटीन यानी विटामिन B7 की मात्रा तय मानकों से कम पाई गई। यानी पोषण का जो वादा डिब्बे पर लिखा था वो प्रयोगशाला की जांच में खरा नहीं उतरा। आरोपों के बाद नेस्ले इंडिया ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि उनके सभी उत्पाद भारतीय नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। कंपनी के मुताबिक उनके लेबल्स FSSAI की एक्सपर्ट कमेटी से स्वीकृत हैं और उन्होंने इस संबंध में अपना जवाब सौंप दिया है। हालांकि FSSAI ने साफ कर दिया है कि बिक्री बढ़ाने के नाम पर माता पिता के भरोसे के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल के महीनों में FSSAI ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों और दावों पर 150 से अधिक कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। बाजार में मची इस अंधाधुंध होड़ पर अब सरकार और रेगुलेटर्स का हंटर चलना शुरू हो चुका है। चाहे कितनी भी बड़ी ब्रांड या दिग्गज कंपनी क्यों न हो, जब बात उपभोक्ता के स्वास्थ्य और छोटे बच्चों के भविष्य की होगी तो कानून सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। भ्रामक दावों से भरी इस दुनिया में जागरूक होना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए किसी ब्रांड के नाम में फंसने और किसी भी विज्ञापन के लुभावने शब्दों के जाल में उलझने के बजाय गुणवत्ता और मानकों की जांच जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: और अब बात पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की। आज तक और दिल्ली सरकार के संयुक्त अभियान में प्रदूषण से निपटने के तरीकों पर नए नए आविष्कार सामने आ रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी डिवाइस जो हॉटस्पॉट्स पर प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए साल भर काम कर सकती है।

मेरा नाम राजीव चानन है और मैं फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ह्यूमेंडस टेक्नोलॉजीज का, जो 2018 में हम लोगों ने फॉर्म की थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट। हम लोगों की टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप एक्सपोजर रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। APS स्टैंड फॉर एम्बियंट प्योरिफिकेशन सिस्टम, इट इज पार्टली मेंट फॉर पार्टिकुलेट मैटर। An idea behind this is that we are supposed to make a system and technology for outdoor where you install it once and it should continue to run without any attention intervention for 15-20 years. इसमें 15 साल तक consistent performance रहता है सभी pollution level पे और सभी weather condition में। इसमें जो प्रिंसिपल हम लोगों ने यूज किया वो बेसिक फिजिक्स का प्रिंसिपल था। तो आप इसमें एयर सक करते हैं इन ए पर्टिकुलर वेलोसिटी विद ए पर्टिकुलर एंगल, सो दैट जो हैवियर मेटल होते हैं, हैवियर पार्टिकल होते हैं PM2.5 एंड PM10, दे कैनॉट ट्रेवल द पाथ ऑफ द एयर बींग टेकन इन टू द सिस्टम, सो दे टेंड टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बैलेंस एयर होल्स।

0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और किसी को मिटाने में अपनी ऊर्जा ना खर्च करें। मिटाते मिटाते रबर खुद ही मिट जाती है। नमस्कार।
1: नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद अब मुकाबले में ट्विस्ट आ गया। यहां जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। ममता बनर्जी से पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, जिसके बाद ममता जबरदस्त गुस्से में नजर आईं।
2: 2026 के बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी पर बगावत का ऐसा हथौड़ा पड़ा कि 18 साल की बुनियाद और 15 साल की हुकूमत की निशानी जोड़ा पूल फ्रीज हो गया।
3: But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic and totally political bias vendetta.
4: Hindu dharma ke ganda dharma bola, Mahakumbh ke mrutyu kumbh bola. রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম মন্দির মানি না বলে মিছিল করা, আছেন তো ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপেই সব ধ্বংস হয়ে গেছে।
2: সুবেদু অধিকারী কি খালি সিট নন্দীগ্রাম ও হুমায়ুন কবীর কি খালি সিট রেজিনগর পর 6 অক্টোবর কো উপচুনাব হ্যায়। পার্টি কে নাম ও চুনাব চিহ্ন মে খিঁচতান কো দেখতে হুয়ে আয়োগ নে দোনো দলো সে তিন তিন পসন্দিদা বিকল্প পুছে থে। উসি কে আধার পর মমতা ব্যানার্জি কে গুট কো মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস কা নাম ও ফুটবল খেলতা হুয়া খিলাড়ি নিশান মিলা, জবকি বাগি ধড়ে কো ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও লিফাফে কা নিশান দিয়া গিয়া। ইয়ে নাম ও নিশান 6 অক্টোবর কো হোনে ওয়ালে উপচুনাব কে লিয়ে লাগু রহেঙ্গে।
5: ইন্টারিম অর্ডার ইসসে সাবিত হে, জাহির হে कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
2: इस बीच नंदीग्राम उपचुनाव में नया ट्विस्ट आ गया, जहां ममता बनर्जी की उम्मीदवार संचिता प्रधान सुबेंदु अधिकारी से मिलने पहुंची और फिर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब नंदीग्राम में नामांकन की तारीख निकल गई है। ऐसे में अब ममता ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है।
3: इन्होंने क्या किया, हाईजैक किया है टोटल। इट वाज कंट्रोल फ्रॉम सम ऑफिस टू हाईजैक द ईवीएम मशीन। इवन
2: पश्चिम बंगाल में भले ही लड़ाई उपचुनाव की हो, लेकिन घमासान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: पंजाब में भी चुनाव से पहले जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पंजाब में नशे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की, तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार मान सरकार को घेर रहा है।
6: पंजाब की इन तीन तस्वीरों ने सियासत की नई स्क्रिप्ट शुरू कर दी है। एक ओर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नशा मुक्त यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं पूर्व मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमले की तस्वीर सामने आई। इस बीच एएसआई के मर्डर ने एक बार फिर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में नशा मुक्त यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो नशे को लेकर मान सरकार पर जोरदार हमला किया।
7: मैं आज यहां के सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने केवल नारा गिरा था, आप लोगों ने केवल सत्ता की चाबी समझी थी, आपने कभी नशा का दर्द नहीं समझा। और जिस परिवारों ने अपने को खोया, उनसे मिलने के बजाय, उनके पीड़ा को समझने के बजाय, उनको सुसाइड करने के लिए, उनको आत्महत्या करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं।
8: वो किस मुंह से बात कर रहे हैं नशे की? 2007 से लेकर 2017 के बीच जिस पार्टी ने पंजाब में नशे का कारोबार किया, जिसके मंत्री जिसके नेता नशे की तस्करी करवाते थे अपनी अपनी गाड़ियों में रखे, वो पार्टी आज कह रही है कि पंजाब को नशे से मुक्त कराना है, किस मुंह से कह रही है?
6: पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला हो गया। बिट्टू अमृतसर से पठानकोट यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उन पर टमाटर और अंडे फेंके गए।
9: कई चीजें केजरीवाल जैसे आप शर्म आती है मुझे यार, जिन जिस पंजाबी एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। मैं पंजाब पुलिस को भी हमेशा बहुत अच्छी पुलिस समझता था।
6: वही मान सरकार के मंत्री पर हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली।
10: सर, उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने उनके ऊपर हमला किया है। सर,
6: अमृतसर में हमलावरों ने एक एएसआई को निशाना बनाया जिसे बेहद करीब से गोली मारी गई और हमलावर वहां से फरार हो गए।
11: तकरीबन 12:30 बजे का इंसिडेंट सी, 9:30 बजे रात में और ड्यूटी लई ये ठकीवा थाने तो इतने दाना मंडी से दूर की गई सी। टू व्हीलर ते उन्होंने फॉलो किया गया है, क्लोज रेंज 30 बोर का जरा पिस्टल है वो यूज करके क्लोज रेंज से शूटिंग हुई है।
6: पंजाब में चुनाव से पहले नशा और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिस पर विपक्ष मान सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। असीम बस्सी के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।
1: खबर यूपी के पावर प्ले की। बस चुनावों में कुछ ही महीनों का समय है और तैयारियां दोनों ही खेमों में भरपूर। अखिलेश पीडीए के सहारे हैं तो बीजेपी सनातन के भरोसे। सवाल ये कि जनता ने क्या सोचा। उधर लखनऊ में अखिलेश का पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक रथ तैयार हो चुका है। इसी रथ के सहारे अखिलेश यादव अब चुनावों से पहले पूरे यूपी में कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन उनकी पिछली 2 बार की ये कोशिश असफल हो चुकी है।
12: अखिलेश यादव ने यूपी जीतने के लिए दोनों बार रथ यात्राओं का सहारा लिया। यही हाईटेक रथ 2017 में भी था जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे, और फिर 2022 के चुनावों से ठीक पहले उन्होंने विजय रथ यात्रा शुरू कर दी थी। कोशिश यही थी कि वो दोबारा यूपी जीत पाएंगे, लेकिन न 17 में सफल हुए न 22 में। अब 27 से पहले उनका रथ फिर से तैयार है। रंग वैसा ही है लाल, वैसा ही हाईटेक है रथनुमा। इस लग्जरी बस में सारी सुविधाएं हैं। बस नारे बदल गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जब अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी की यात्रा पर निकलेंगे तो क्या होगा। इसकी कुछ झलक आपको 5 साल पहले की इन तस्वीरों से दिखाते हैं। 2022 में यूपी में चुनाव होना था और उससे पहले ही नवंबर 2021 में अखिलेश यादव की कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। तब भी उनके चुनावी रथ को यूपी में समर्थन तो बहुत मिला था। जहां से गुजरते थे वहीं लोगों की भीड़ लग जाती थी। ऐसे ही रथ के ऊपर खड़े होकर वो हाथ हिलाते, लोगों के उपहार और फूल मालाएं स्वीकार करते थे, लेकिन नतीजा उनके फेवर में नहीं रहा। 2017 में उनके रथ पर नारा लिखा था समाजवादी विकास रथ, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद भी यूपी के लोगों ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया, चुनाव हार गए। 2022 में फिर रथ का नारा बदला गया, लिखा गया यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। लेकिन 5 साल के बाद भी यूपी वालों ने अखिलेश को जनादेश नहीं दिया, फिर से हार गए। अब 2027 की बारी है, रथ फिर तैयार है और रथ पर नया नारा चिपका दिया गया है। अब लिखा है समाजवादी पीडीए यात्रा। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम। अब नए रथ का नारा क्या अखिलेश की 10 साल के बाद वापसी कराएगा, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस बार अखिलेश यादव के रथ में क्या बदलाव हुआ है। अखिलेश के समाजवादी रथ वाली बस में बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाईं ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में स्लोगन लिखा है पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा है। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पीडीए के इस मुद्दे में बड़ा दम दिखता है। वो भले ही पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हो, मौका भांपते ही वो पी को पिछड़ा से पंडित भी करते हैं, लेकिन पीडीए का असली मतलब उनके चुनावी रथ पर ही लिखा है पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इसमें कोई कंफ्यूजन न हो तो अल्पसंख्यक के बाद डैश लगाकर मुसलमान भी लिखा है।
13: ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं, आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं।
14: बीजेपी का तो पूरा प्रयास यही है कि पीडीए का ये नारा किसी भी तरह से ध्वस्त करना है, इसीलिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि पीडीए वो समीकरण है कि अगर वो चुनावों में चला तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव में पीडीए के चलने का मतलब है चुनाव जाति पर शिफ्ट हो गया, और बीजेपी चाहती है कि चुनाव जाति पर नहीं सनातन पर हो।
15: पीडीए को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
16: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
15: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी
16: कोई उनका। मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है, सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
15: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
16: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
14: इसी समाजवादी रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल और रूट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन चमचमाती बस पहुंच चुकी है। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं। छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है। 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है। लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी की भी सुविधा है।
17: अक्टूबर के अंत में सूत्रों के मुताबिक ये रथ मैदान में उतरेगा और चुनावी कैंपेनिंग करेगा। अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद पीडीए इस बार 27 की सत्ता तक पहुंचाएगा। अब बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और इसे नई बोतल और पुरानी शराब करार दे रही है। यानी कि बीजेपी का कहना है कि कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं बल्कि MY समीकरण की रीपैकेजिंग है। जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में B.R. अंबेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे या बीजेपी कई संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी, ये वक्त बताएगा।
14: यूपी में पहले चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए MY समीकरणों का हवाला दिया जाता था। M का मतलब मुसलमान और Y का मतलब यादव। अखिलेश ने इसी समीकरण को बड़ा कर दिया है। मायावती चुनावों में पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में वो लगभग सरेंडर के मोड में रही, इसीलिए अखिलेश यादव मायावती के दलित वोट को भी अपनी तरफ करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि पीडीए वही MY है।
18: समाजवादी पार्टी ने माल वही है, पैकेजिंग नहीं है, MY के समीकरण पर एक्सपोज हो चुके थे। सब उनके इस MY के समीकरण को समझते हैं, इसीलिए अब ये पीडीए के नाम पर नया सिगुफा लेकर आए। वो जानते हैं कि पीडीए एक नई पैकेजिंग केवल है, इसीलिए रोज पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। लेकिन पीडीए के अंदर वही माल है जो पुराना इनका MY समीकरण है। लेकिन ये जाति मजहब के आधार पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो विकास के मुद्दे पर होगा और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी फिर फेल होगी।
14: अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर ही 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी के अंदर बीजेपी को रोका है। बीजेपी 240 पर सिमटी तो इसके लिए यूपी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जहां अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बड़ी रिकॉर्ड सफलता पाई। 2024 में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गईं। SP के सहयोगी कांग्रेस की सीटें भी 2024 में 1 से बढ़कर 6 हो गईं
12: और सबसे बड़ी बात 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में 403 में से 224 विधानसभा सीटों पर आगे था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लगभग बराबर वोट मिले। बीजेपी को 3,83,00,000 और समाजवादी पार्टी को 3,81,00,000 वोट मिले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों और पिछड़ों के साथ दलितों के वोट भी हासिल किए थे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि 2027 से पहले वो एक बार फिर से 2024 जैसा माहौल खड़ा कर देंगे।
19: 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा की थी 2024 के पहले, मतलब लोगों को जगाना, उनके अधिकारों की उनकी बात करना और समाज का वो वर्ग जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उनकी बात करना, उनको बताना कि उनका अधिकार कितना है। वोट इनका, राज किसी और का ये नहीं चल सकता है।
12: लेकिन बीजेपी के पास सनातन का वो हथियार है जो अगर चुनावों में चल गया तो फिर समाजवादी पार्टी के ये समीकरण किसी काम के नहीं रहेंगे। अखिलेश पीडीए पर टिके हैं तो बीजेपी भी सनातन और हिंदुत्व से हिल नहीं रही।
20: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। पावन कथाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करना, व्यापक रूप से आगे बढ़ाना।
12: संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: और अब एक चौंकाने वाली खबर, नोएडा के निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली के आत्महत्या की। जिस कोहली को कोर्ट से फांसी की सजा नहीं मिली वो फांसी के फंदे से लटका मिला।
21: नोएडा के जिस निठारी कांड ने पूरे देश को चौंका दिया था, आज उसी निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। हरिद्वार में इस चाय की दुकान के अंदर सुरेंद्र कोहली का शव फंदे से लटका मिला। 3 दिन पहले ही सुरेंद्र कोहली ने ये दुकान ली थी। जब पुलिस ने शव की तलाशी दी तो आधार कार्ड से पता चला कि ये शव सुरेंद्र कोहली का है।
22: सुसाइड लग रहा है, बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है, पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाएगा, जैसा होगा हमें जानकारी दी जाएगी।
21: सुरेंद्र कोहली इससे पहले हरिद्वार में ही एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था, जिसके बाद उसने ये चाय की दुकान ली। सबसे बड़ी बात ये कि सुरेंद्र ने अपना नाम सदाराम बताया था। ऐसे में किसी को शक ही नहीं था कि ये नोएडा निठारी कांड वाला सुरेंद्र है।
23: सुबह आए यहाँ पे तो कहने लगे यहाँ पे तो दीवान जी बैठे थे यहाँ पे, मैं नहीं जानता हूँ, चाय के लिए कहने लगे कि चाचा ने आज दुकान नहीं खोली चाय, तो मैंने आवाज मारी दूसरी बार शटर में, तो शटर का थोड़ा लोग ढीला था तो शटर अपना उठ गया, तो देखा तो हाँ शटर पड़े थे।
24: सबसे पहले आप ही ने देखा उनको?
23: हाँ, वहाँ पे उन्होंने देखा, सबने देखा, 2 दिन बंदे थे यहाँ पे।
21: अब सवाल ये है कि अगर ये सुसाइड है तो आखिर सुरेंद्र ने सुसाइड क्यों किया? दुकान मालिक का कहना है कि वो बड़ी परेशानी की हालत में उसके पास आया था, जहां उसने बच्चे के जन्मदिन की बात कहकर 2,000 रुपए भी लिए थे।
23: डिप्रेशन में थे, किसका बर्थडे था कल, इनके किसी बच्चे का, तो उसमें कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो फोन पे बात कर दे, उनसे किल्ला चप्पी उड़ गई।
21: 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी इलाके में मनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से 8 बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इसके बाद घर के आसपास के नालों की तलाशी और खुदाई की गई, जिसमें कई और कंकाल मिले। इस मामले में मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। पंडेर को इनमें से 2 मामलों में सजा हुई, जबकि सुरेंद्र कोहली को निचली अदालत ने कुल 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन 2025 में कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। ये नोएडा के निठारी की वही D5 कोठी है जो अब सुनसान पड़ी हुई है। निठारी कांड के पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार सुरेंद्र की मौत के पीछे साजिश का शक जता रहे हैं।
25: कोहली ने सुसाइड नहीं किया, करना होता ना तो जेल में कर लेता, वो जेल में क्यों नहीं किया? अब छूट के आ गया था, तो बता रहे तुम्हें लोग बता रहे हो कि चाय की दुकान चलाता था। अब चाय की दुकान चलाता था तो खुद तो कमाता होगा, बीवी बच्चों के साथ रहता था, यही मैं मारा होगा, पंडेर के अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता इसमें।
26: इसने मतलब जो है इन लोगों ने कुछ कहा होगा, कोई खुलासा वो करने वाला होगा, कोई खुलासा करने वाला होगा, या इसको कहा होगा इतना नहीं इतना देंगे तुम्हें, और वो नहीं तो वो कहा होगा हम बता देंगे।
21: बहरहाल सुरेंद्र कोहली की मौत से हर कोई हैरान है और सवाल ये कि 19 साल जेल में रहने के दौरान और सवाल ये कि 19 साल जेल में रहने के दौरान जिस शख्स ने सुसाइड नहीं किया उसने जेल से बाहर आने के बाद अपनी जान क्यों ली, आज तक विरोध।
1: अब एक हैरान और विचलित कर देने वाली खबर, हमारे देश के कई शहरों में आतंक का नाम बन चुका पिटबुल एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली के करीब सोनीपत में पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया।
21: तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपको हूबहू नहीं दिखा रहे। तस्वीरें देखिए, चीख पुकार मची है, लोग एक काले पिटबुल कुत्ते को डंडे से मार रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन पिटबुल बेकाबू है। स्क्रीन पर जो हिस्सा आपको ब्लर नजर आ रहा है, दरअसल उस हिस्से में 6 महीने का एक मासूम बच्चा है जिस पर पिटबुल लगातार झपट्टा मार रहा है। यह तस्वीर दिल्ली से सटे सोनीपत के सिक्का कॉलोनी की है। यहाँ 6 महीने के एक मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल का यह हमला तब हुआ जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी, तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। हमले में मासूम और उसकी बुआ घायल हुए हैं। गंभीर हालत में बच्चे का रोहतक PGI में इलाज चल रहा है।
0: पिटबुल ने उसको कितनी जगह से काटा?
2: उसका मुंह छील रखा है पूरा, जैसे उसने गली में उसको छिजोड़ा था ना, तो उसको काफी सारी चोट आई हुई है, पेट वगैरह पे, हाथ वगैरह पे, बहुत सारी जगह चोट आई है।
0: कभी पहले भी देखा गली में घूमता?
2: एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन बच्चा बच गया था, उनके बच्चे को काट रही थी वो उस दिन में, लेकिन उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं था।
21: सोनीपत में पिटबुल हमले के बाद प्रशासन जागा, मेयर और पुलिस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एक्शन का भरोसा दिया।
3: इस तरह के जो कुत्ते पालने वाले हैं लोग, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जो है सरकार की तरफ से किया गया, उसका भी अभियान चलाया जाएगा। और अगर जो है कोई व्यक्ति प्रतिबंधित जो है डॉग पालने का काम करता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
21: आए दिन पिटबुल के हमले की खबरें आती रहती हैं, सवाल कुत्ते के मालिक की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। प्रशासन का कहना है कि शिकायत के बाद एक्शन लिया जाएगा। पवन राठी, सोनीपत, आज तक।
1: अब खबर पहाड़ों पर अचानक बदले मौसम की। बीते सितंबर ही पहाड़ों पर मौसम बदलने लगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई।
21: चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है, पेड़ों पर कुदरत ने श्रृंगार किया है। सितंबर के दूसरे सप्ताह के साथ ही पहाड़ कुदरत के सफेद गहनों से सज गए हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर ले हाईवे पर झोजिला के जीरो पॉइंट की हैं। यहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के साथ ही सर्दियों ने दस्तक दे दी है।
4: कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
21: अब मनाली की तस्वीरें देखिए, मनाली के ऊपरी हिस्सों में देखिए कितना सुंदर नजारा है। यहाँ भी सीजन की पहली बर्फबारी ने मनाली को मोहक बना दिया है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही होटल व्यवसायियों की आंखों की चमक बढ़ गई है क्योंकि होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है।
5: सब जगह पता लग गया है कि आज पहली बर्फबारी जो है वो सर्दियों की शुरुआत की आज से हो गई है। और इस बर्फबारी से जैसे ही बर्फबारी हुई और सारी खबरें फैली तो होटलों में बुकिंग आना शुरू हो गई है।
21: मनाली के पहाड़ों पर ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने चांदी लपेट दी। मौसम खुशगवार है लेकिन यही मौसम कुछ लोगों के लिए काल बन गया है। दरअसल पहाड़ पर एकाएक मौसम बदला जिसकी वजह से लाहौल स्पीति में पवित्र ड्रिलभुरी कोरा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक मौसम बदलने और भारी बर्फबारी के बाद हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया की वजह से 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं एक श्रद्धालु के पैर की हड्डी टूटने से वह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए केलांग क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनाली के बाद कुल्लू की तस्वीरें देखिए, यहां भी आसमान से बर्फ बरसी है। रुई के फाहों जैसी बर्फ इस बर्फबारी ने पर्यटकों को प्रसन्न कर दिया है। अब उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें देखिए, यहां भी मौसम बदला है। बरसात के बाद हल्की बर्फबारी ने तापमान में गिरावट की है। रुद्रनाथ में हल्की बर्फबारी के साथ गिरे ओले। पहाड़ों पर बिछी सफेदी और बारिश के बीच बदलता मौसम। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब भी सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सफेद रंग में रंगा नजर आया। चारों तरफ बर्फ और उसके बीच नजर आता पवित्र धाम का खूबसूरत नजारा। कुल मिलाकर पहाड़ों पर सर्दियां दस्तक दे रही हैं। कुदरत अपना सबसे खूबसूरत रंग बिखेर रही है। आज तक ब्यूरो।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पंचायत आज तक बिहार में बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यूसीसी पर गठबंधन से बातचीत के बाद लेंगे निर्णय। बंगाल उपचुनाव में ट्विस्ट बे ट्विस्ट, पहले नंदीग्राम से ममता की उम्मीदवार ने नाम वापस लिया तो कांग्रेस का दावा, हमारी प्रत्याशी मिलन प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राहुल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोप पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस भस्मासुर, साथ आने वाले सभी दलों को जला देती। उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख का जेनजी को संदेश, बोले भारत के युवा पूरी दुनिया में न सिर्फ यशस्वी बल्कि सार्थक भी बने। वायुसेना को HAL से मिला तेजस का ट्रेनर विमान, पवन हंस को 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर, बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद अब मुकाबले में ट्विस्ट आ गया, यहां जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। ममता बनर्जी से पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, जिसके बाद ममता जबरदस्त गुस्से में नजर आईं।
1: 2026 के बंगाल चुनाव के बाद TMC पर बगावत का ऐसा हथौड़ा पड़ा कि 18 साल की बुनियाद और 15 साल की हुकूमत की निशानी जोड़ा पुल फ्रीज हो गया।
2: But until today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic and totally political bias vendetta.
3: Hindu dharma ke ganda dharma bola, Mahakumbh ke mithu kumbh bola. আর রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম মন্দির মানি না বলে মিছিল করা, আছেন তো ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপেই সব ধ্বংস হয়ে গেছে।
1: সুবেদু অধিকারী কি খালি সিট নন্দীগ্রাম ও হুমায়ু কবীর কি খালি সিট রেজিনগর পর 6 অক্টোবর কো উপচুনাব হ্যায়। পার্টি কে নাম ও চুনাব চিহ্ন মে খিঁচতান কো দেখতে হুয়ে আয়োগ নে দোনো দলো সে তিন তিন পসন্দিদা বিকল্প পুছে থে, উসি কে আধার পর মমতা ব্যানার্জি কে গুট কো মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস কা নাম ও ফুটবল খেলতা হুয়া খিলাড়ি নিশান মিলা, জবকি বাগি ধড়ে কো ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও লিফাফে কা নিশান দিয়া গিয়া। ইয়ে নাম ও নিশান 6 অক্টোবর কো হোনে ওয়ালে উপচুনাব কে লিয়ে লাগু রহেঙ্গে।
4: ইন্টারিম অর্ডার ইসসে সাবিত হে, জাহির হে कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
1: इस बीच नंदीग्राम उपचुनाव में नया ट्विस्ट आ गया, जहां ममता बनर्जी की उम्मीदवार संचिता प्रधान सुबेंदु अधिकारी से मिलने पहुंची और फिर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब नंदीग्राम में नामांकन की तारीख निकल गई है, ऐसे में अब ममता ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है।
2: इन्होंने क्या किया, हाईजैक किया है टोटल, इट वॉज कंट्रोल फ्रॉम सम ऑफिस टू हाईजैक द EVM मशीन। इवन
1: पश्चिम बंगाल में भले ही लड़ाई उपचुनाव की हो, लेकिन घमासान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भी चुनाव से पहले जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पंजाब में नशे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार मान सरकार को घेर रहा है।
5: पंजाब की इन तीन तस्वीरों ने सियासत की नई स्क्रिप्ट शुरू कर दी है। एक ओर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नशा मुक्त यात्रा की शुरुआत की तो वहीं पूर्व मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमले की तस्वीर सामने आई। इस बीच ASI के मर्डर ने एक बार फिर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में नशा मुक्त यात्रा को हरी झंडी दिखाई तो नशे को लेकर मान सरकार पर जोरदार हमला किया।
6: मैं आज यहां के सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने केवल नारा गिरा था, आप लोगों ने केवल सत्ता की चाबी समझी थी, आपने कभी नशा का दर्द नहीं समझा। और जिस परिवारों ने अपने को खोया उनसे मिलने के बजाय, उनके पीड़ा को समझने के बजाय, उनको सुसाइड करने के लिए, उनको आत्महत्या करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं।
7: वो किस मुंह से बात कर रहे हैं नशे की, 2007 से लेकर 2017 के बीच जिस पार्टी ने पंजाब में नशे का कारोबार किया, जिसके मंत्री जिसके नेता नशे की तस्करी करवाते थे अपनी अपनी गाड़ियों में रखे, वो पार्टी आज कह रही है कि पंजाब को नशे से मुक्त कराना है। किस मुंह से कह रही है?
5: पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला हो गया। बिट्टू अमृतसर से पठानकोट यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उन पर टमाटर और अंडे फेंके गए।
8: कई चीजें केजरीवाल जैसे, आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। मैं पंजाब पुलिस को भी हमेशा बहुत अच्छी पुलिस समझता था।
5: वहीं मान सरकार के मंत्री पर हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली।
9: सर, उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने उनके ऊपर हमला किया है। सर,
5: अमृतसर में हमलावरों ने एक एएसआई को निशाना बनाया, जिसे बेहद करीब से गोली मारी गई और हमलावर वहां से फरार हो गए।
10: तकरीबन 12:30 बजे का इंसिडेंट सी, 9:30 बजे रात में और ड्यूटी लई ये ठकीवा थाने तो इतने दाना मंडी से दूर की गई सी। टू व्हीलर पे उन्होंने फॉलो किया गया है, क्लोज रेंज 30 बोर का जरा पिस्टल हैगा वो यूज करके क्लोज रेंज से शूटिंग हुई है।
5: पंजाब में चुनाव से पहले नशा और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर विपक्ष मान सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। असीम बस्सी के साथ कमलजीत संधु, चंडीगढ़ आज तक।
0: खबर यूपी के पावर प्ले की। बस चुनावों में कुछ ही महीनों का समय है और तैयारियां दोनों ही खेमों में भरपूर। अखिलेश पीडीए के सहारे हैं तो बीजेपी सनातन के भरोसे। सवाल ये कि जनता ने क्या सोचा। उधर लखनऊ में अखिलेश का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रथ तैयार हो चुका है। इसी रथ के सहारे अखिलेश यादव अब चुनावों से पहले पूरे यूपी में कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन उनकी पिछली 2 बार की ये कोशिश असफल हो चुकी है।
1: अखिलेश यादव ने यूपी जीतने के लिए दोनों बार रथ यात्राओं का सहारा लिया। यही हाईटेक रथ 2017 में भी था जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे, और फिर 2022 के चुनावों से ठीक पहले उन्होंने विजय रथ यात्रा शुरू कर दी थी। कोशिश यही थी कि वो दोबारा यूपी जीत पाएंगे, लेकिन न 17 में सफल हुए न 22 में। अब 27 से पहले उनका रथ फिर से तैयार है। रंग वैसा ही है लाल, वैसा ही हाईटेक है रथनुमा। इस लग्जरी बस में सारी सुविधाएं हैं। बस नारे बदल गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जब अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी की यात्रा पर निकलेंगे तो क्या होगा। इसकी कुछ झलक आपको 5 साल पहले की इन तस्वीरों से दिखाते हैं। 2022 में यूपी में चुनाव होना था और उससे पहले ही नवंबर 2021 में अखिलेश यादव की कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। तब भी उनके चुनावी रथ को यूपी में समर्थन तो बहुत मिला था। जहां से गुजरते थे वहीं लोगों की भीड़ लग जाती थी। ऐसे ही रथ के ऊपर खड़े होकर वो हाथ हिलाते, लोगों के उपहार और फूल मालाएं स्वीकार करते थे, लेकिन नतीजा उनके फेवर में नहीं रहा। 2017 में उनके रथ पर नारा लिखा था समाजवादी विकास रथ, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद भी यूपी के लोगों ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया, चुनाव हार गए। 2022 में फिर रथ का नारा बदला गया, लिखा गया यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। लेकिन 5 साल के बाद भी यूपी वालों ने अखिलेश को जनादेश नहीं दिया, फिर से हार गए। अब 2027 की बारी है, रथ फिर तैयार है और रथ पर नया नारा चिपका दिया गया है। अब लिखा है समाजवादी पीडीए यात्रा, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम। अब नए रथ का नारा क्या अखिलेश की 10 साल के बाद वापसी कराएगा, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस बार अखिलेश यादव के रथ में क्या बदलाव हुआ है। अखिलेश के समाजवादी रथ वाली बस में बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाईं ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में स्लोगन लिखा है पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा है। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पीडीए के इस मुद्दे में बड़ा दम दिखता है। वो भले ही पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हों, मौका भांपते ही वो पी को पिछड़ा से पंडित भी करते हैं, लेकिन पीडीए का असली मतलब उनके चुनावी रथ पर ही लिखा है, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इसमें कोई कंफ्यूजन न हो तो

0: या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं। आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं।
1: बीजेपी का तो पूरा प्रयास यही है कि पीडीए का ये नारा किसी भी तरह से ध्वस्त करना है। इसीलिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि पीडीए वो समीकरण है कि अगर वो चुनावों में चला तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव में पीडीए के चलने का मतलब है चुनाव जाति पर शिफ्ट हो गया, और बीजेपी चाहती है कि चुनाव जाति पर नहीं सनातन पर हो।
2: पीडीए को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
3: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
2: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
3: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है। सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
2: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
3: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
1: इसी समाजवादी रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल और रूट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन चमचमाती बस पहुंच चुकी है। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं। छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है। 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है। लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी की भी सुविधा है।
4: अक्टूबर के अंत में सूत्रों के मुताबिक ये रथ मैदान में उतरेगा और चुनावी कैंपेनिंग करेगा। अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद पीडीए इस बार 27 की सत्ता तक पहुंचाएगा। अब बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और इसे नई बोतल और पुरानी शराब करार दे रही है। यानी कि बीजेपी का कहना है कि कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं, बल्कि MY समीकरण की रीपैकेजिंग है। जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में B.R. अंबेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे, या बीजेपी कई संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी, ये वक्त बताएगा।
1: यूपी में पहले चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए MY समीकरणों का हवाला दिया जाता था। M का मतलब मुसलमान और Y का मतलब यादव। अखिलेश ने इसी समीकरण को बड़ा कर दिया है। मायावती चुनावों में पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में वो लगभग सरेंडर के मोड में रही। इसीलिए अखिलेश यादव मायावती के दलित वोट को भी अपनी तरफ करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि पीडीए वही MY है।
5: समाजवादी पार्टी ने माल वही है, पैकेजिंग नहीं है, MY के समीकरण पर एक्सपोज हो चुके थे। सब उनके इस MY के समीकरण को समझते हैं, इसीलिए अब ये पीडीए के नाम पर नया सिगुफा लेकर आए हैं। वो जानते हैं कि पीडीए एक नई पैकेजिंग केवल है, इसीलिए रोज पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। लेकिन पीडीए के अंदर वही माल है जो पुराना इनका MY समीकरण है। लेकिन ये जाति मजहब के आधार पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो विकास के मुद्दे पर होगा और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी फिर फेल होगी।
1: अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर ही 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी के अंदर बीजेपी को रोका है। बीजेपी 240 पर सिमटी तो इसके लिए यूपी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जहां अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बड़ी रिकॉर्ड सफलता पाई। 2024 में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गईं। SP के सहयोगी कांग्रेस की सीटें भी 2024 में 1 से बढ़कर 6 हो गईं। और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी

0: बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में 403 में से 224 विधानसभा सीटों पर आगे था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लगभग बराबर वोट मिले। बीजेपी को 3,83,00,000 और समाजवादी पार्टी को 3,81,00,000 वोट मिले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों और पिछड़ों के साथ दलितों के वोट भी हासिल किए थे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि 2027 से पहले वो एक बार फिर से 2024 जैसा माहौल खड़ा कर देंगे।
1: 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा की थी 2024 के पहले, मतलब लोगों को जगाना, उनके अधिकारों की उनकी बात करना और समाज का वो वर्ग जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उनकी बात करना, उनको बताना कि उनका अधिकार कितना है, वोट इनका राज किसी और का ये नहीं चल सकता है।
0: लेकिन बीजेपी के पास सनातन का वो हथियार है जो अगर चुनावों में चल गया तो फिर समाजवादी पार्टी के ये समीकरण किसी काम के नहीं रहेंगे। अखिलेश पीडीए पर टिके हैं तो बीजेपी भी सनातन और हिंदुत्व से हिल नहीं रही।
2: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। पावन कथाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करना, व्यापक रूप से आगे बढ़ाना।
0: संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: और अब एक चौंकाने वाली खबर, नोएडा के निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली के आत्महत्या की। जिस कोहली को कोर्ट से फांसी की सजा नहीं मिली, वो फांसी के फंदे से लटका मिला।
4: नोएडा के जिस निठारी कांड ने पूरे देश को चौंका दिया था, आज उसी निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। हरिद्वार में इस चाय की दुकान के अंदर सुरेंद्र कोहली का शव फंदे से लटका मिला। 3 दिन पहले ही सुरेंद्र कोहली ने ये दुकान ली थी। जब पुलिस ने शव की तलाशी दी तो आधार कार्ड से पता चला कि ये शव सुरेंद्र कोहली का है।
5: सुसाइड लग रहा है, बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है, पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाएगा, जैसा होगा जानकारी दी जाएगी।
4: सुरेंद्र कोहली इससे पहले हरिद्वार में ही एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था, जिसके बाद उसने ये चाय की दुकान ली। सबसे बड़ी बात ये कि सुरेंद्र ने अपना नाम सदाराम बताया था। ऐसे में किसी को शक ही नहीं था कि ये नोएडा निठारी कांड वाला सुरेंद्र है।
6: अब सुबह आए यहाँ पे तो कहने लगे, यहाँ पे दीवान जी बैठ रहे, यहाँ पे मैं नहीं जानता, चाय के लिए कहने लगे कि चाचा ने आज दुकान नहीं खोली चाय। तो मैंने आवाज मारी दूसरी बार शटर में, तो शटर का थोड़ा लोग ढीला था तो शटर अपना उठ गया, तो देखा तो फांसी लग पड़े थे।
7: सबसे पहले आप ही ने देखा उनको?
6: हाँ, वहां पे उन्होंने देखा, सबने देखा, 2-3 बंदे थे यहाँ पे।
4: अब सवाल यह है कि अगर ये सुसाइड है तो आखिर सुरेंद्र ने सुसाइड क्यों किया? दुकान मालिक का कहना है कि वो बड़ी परेशानी की हालत में उसके पास आया था, जहां उसने बच्चे के जन्मदिन की बात कहकर 2,000 रुपए भी लिए थे।
6: डिप्रेशन में थे, किसका बर्थडे था कल, इनके किसी बच्चे बच्चे का, तो उसमें कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो फोन पे बात करते, उनसे चिल्ला चप्पी उड़ गई।
4: 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी इलाके में मनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से 8 बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इसके बाद घर के आसपास के नालों की तलाशी और खुदाई की गई, जिसमें कई और कंकाल मिले। इस मामले में मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। पंडेर को इनमें से 2 मामलों में सजा हुई, जबकि सुरेंद्र कोहली को निचली अदालत ने कुल 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन 2025 में कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। ये नोएडा के निठारी की वही D5 कोठी है जो अब सुनसान पड़ी हुई है। निठारी कांड के पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार सुरेंद्र की मौत के पीछे साजिश का शक जता रहे हैं।
8: कोहली ने सुसाइड नहीं किया, करना होता ना तो जेल में कर लेता, वो जेल में क्यों नहीं किया? अब छूट के आ गया था, तब बता रहे तुम्हें लोग बता रहे हो कि चाय की दुकान चलाता था। अब चाय की दुकान चलाता था तो कुछ तो कमाता होगा, अभी भी बच्चों के साथ रहता था, मैं मारा होगा। पंडेर के अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता इसमें।
9: इसने मतलब जो है लोगों ने कुछ कहा होगा, कोई खुलासा वो करने वाला होगा, कोई खुलासा करने वाला होगा, या इसको कहा होगा इतना नहीं इतना देंगे तुम्हें, और वो नहीं तो वो कहा होगा हम बता देंगे।
4: बहरहाल सुरेंद्र कोहली की मौत से हर कोई हैरान है, और सवाल ये कि 19 साल जेल में रहने के दौरान और सवाल ये कि 19 साल जेल में रहने के दौरान जिस शख्स ने सुसाइड नहीं किया उसने जेल से बाहर आने के बाद अपनी जान क्यों ली? आज तक ब्यूरो।
3: अब एक हैरान और विचलित कर देने वाली खबर। हमारे देश के कई शहरों में आतंक का नाम बन चुका पिटबुल एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली के करीब सोनीपत में पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया।
4: तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपको हूबहू नहीं दिखा रहे। तस्वीरें देखिए, चीख पुकार मची है, लोग एक काले पिटबुल कुत्ते को डंडे से मार रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन पिटबुल बेकाबू है। स्क्रीन पर जो हिस्सा आपको ब्लर नजर आ रहा है, दरअसल उस हिस्से में 6 महीने का एक मासूम बच्चा है जिस पर पिटबुल लगातार झपट्टा मार रहा है। यह तस्वीर दिल्ली से सटे सोनीपत के सिक्का कॉलोनी की है। यहाँ 6 महीने के एक मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल का यह हमला तब हुआ जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी। तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। हमले में मासूम और उसकी बुआ घायल हुए हैं। गंभीर हालत में बच्चे का रोहतक PGI में इलाज चल रहा है।
10: पिटबुल ने उसको कितनी जगह से काटा?
11: उसका मुंह छील रखा है पूरा, जैसे उसने गली में उसको छिजोड़ा था ना, तो उसको काफी सारी चोट आई हुई है, पेट वगैरह पे, हाथ वगैरह पे, बहुत सारी जगह चोट आई है।
10: कभी पहले भी देखा गली में घूमता?
11: एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन बच्चा बच गया था, उनके बच्चे को काट रही थी वो उस दिन में, लेकिन उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं था।
4: सोनीपत में पिटबुल हमले के बाद प्रशासन जागा। मेयर और पुलिस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एक्शन का भरोसा दिया।
12: इस तरह के जो कुत्ते पालने वाले हैं लोग, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जो है सरकार की तरफ से किया गया, उसका भी अभियान चलाया जाएगा। और अगर जो है कोई व्यक्ति प्रतिबंधित जो है डॉग पालने का काम करता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
4: आए दिन पिटबुल के हमले की खबरें आती रहती हैं। सवाल कुत्ते के मालिक की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। प्रशासन का कहना है कि शिकायत के बाद एक्शन लिया जाएगा। पवन राठी, सोनीपत आज तक।
3: फोन ने भले ही अपनी कीमत बढ़ा ली हो लेकिन उसका क्रेज कम नहीं हो रहा है। हमारे देश में नया आईफोन लॉन्च कर दिया गया। देर रात से ही स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें खरीदने के लिए लोगों की दिखी।
13: दुर्गा पूजा गिफ्ट फ्रॉम मी टू मी।
14: ये आईफोन की दीवानगी है। एप्पल का आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स भारतीय बाजार में जैसे ही आया, आईफोन के दीवाने दौड़ पड़े इसे अपना बनाने।
15: और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर।
16: That's it. मैं देख रहा हूँ दो फोन आप लेके आए हैं।
15: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊँ।
14: 18 सितंबर से आधिकारिक तौर पर आईफोन 18 सीरीज के फोन भारत के बाजार में बिकने लगे। देश के चुनिंदा शहरों में ही अभी एप्पल के स्टोर हैं और ये फोन अभी सिर्फ एप्पल के आधिकारिक स्टोर पर ही उपलब्ध हैं। इसलिए आईफोन प्रीमियम ने पहले से ही अपनी बुकिंग कर रखी थी ताकि स्टोर पहुंचने पर आसानी से खरीदारी हो सके, लेकिन स्टोर के बाहर तो लंबी लाइनें लगी थी। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां साकेत में एप्पल का स्टोर है। देर रात से ही लोग स्टोर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे, इंतजार करने लगे सुबह के 8 बजने का, क्योंकि स्टोर में एंट्री सुबह 8 बजे ही शुरू होती है। जैसे ही लोगों ने स्टोर में प्रवेश किया तो तुरंत प्री बुकिंग के हिसाब से फोन को अपना बना लिया।
17: मैं दिल्ली रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। आईफोन 18 प्रो बरगंडी कलर, बढ़िया लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। आईफोन 18 लेके फीचर्स तो वही है, जैसे अगली जनरेशन आवे तो उसके हिसाब से, जैसे कैमरा वगैरह में भी मतलब एक बढ़िया क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का कैमरा है, बढ़िया लग रहा है।
14: आईफोन प्रो की शुरुआती कीमत 1,64,000 रुपए है जो 3,14,000 तक आती है, तो वहीं प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,000 रुपए है जो 3,29,000 तक जाती है। इस बार के आईफोन काफी महंगे हैं। कीमतों को लेकर लोग शिकायतें तो करते हैं लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि खरीदना तो है ही। आज तक देरो।
3: अब खबर पहाड़ों पर अचानक बदले मौसम की। बीते सितंबर ही पहाड़ों पर मौसम बदलने लगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई।
4: चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है, पेड़ों पर कुदरत ने श्रृंगार किया है। सितंबर के दूसरे सप्ताह के साथ ही पहाड़ कुदरत के सफेद गहनों से सज गए हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर लेह हाईवे पर जो जिला के जीरो पॉइंट की है। यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के साथ ही सर्दियों ने दस्तक दे दी है।
18: कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
4: अब मनाली की तस्वीरें देखिए, मनाली के ऊपरी हिस्सों में देखिए कितना सुंदर नजारा है। यहाँ भी सीजन की पहली बर्फबारी ने मनाली को मोहक बना दिया है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही होटल व्यवसायियों की आंखों की चमक बढ़ गई है क्योंकि होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है।
19: सब जगह पता लग गया है कि आज पहली बर्फबारी जो है वो सर्दियों की शुरुआत की आज से हो गई है और इस बर्फबारी से जैसे ही बर्फबारी हुई और सवेरे खबरें फैली तो होटलों में बुकिंग आना शुरू हो गई है।
4: मनाली के पहाड़ों पर ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने चांदी लपेट दी। मौसम खुशगवार है लेकिन यही मौसम कुछ लोगों के लिए काल बन गया। दरअसल पहाड़ पर एकाएक मौसम बदला जिसकी वजह से लाहौल स्पीति में पवित्र ड्रिलभुरी कोरा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक मौसम बदलने और भारी बर्फबारी के बाद हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया की वजह से दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं एक श्रद्धालु के पैर की हड्डी टूटने से वह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए केलांग क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनाली के बाद कुल्लू की तस्वीरें देखिए, यहां भी आसमान से बर्फ बरसी है। रुई के फाहों जैसी बर्फ इस बर्फबारी ने पर्यटकों को प्रसन्न कर दिया है। अब उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें देखिए, यहां भी मौसम बदला है। बरसात के बाद हल्की बर्फबारी ने तापमान में गिरावट की है। रुद्रनाथ में हल्की बर्फबारी के साथ गिरे ओले, पहाड़ों पर बिछी सफेदी और बारिश के बीच बदलता मौसम। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब भी सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सफेद रंग में रंगा नजर आया। चारों तरफ बर्फ और उसके बीच नजर आता पवित्र धाम का खूबसूरत नजारा। कुल मिलाकर पहाड़ों पर सर्दियां दस्तक दे रही हैं। कुदरत अपना सबसे खूबसूरत रंग बिखेर रही है। आज तक ब्यूरो।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: पंचायत आज तक बिहार में बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यूसीसी पर गठबंधन से बातचीत के बाद लेंगे निर्णय। बंगाल उपचुनाव में ट्विस्ट बे ट्विस्ट, पहले नंदीग्राम से ममता की उम्मीदवार ने नाम वापस लिया तो कांग्रेस का दावा, हमारी प्रत्याशी मिलन प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राहुल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोप पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस भस्मासुर, साथ आने वाले सभी दलों को जला देती। उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख का जेन जी को संदेश, बोले भारत के युवा पूरी दुनिया में न सिर्फ यशस्वी बल्कि सार्थक भी बने। वायुसेना को HAL से मिला तेजस का ट्रेनर विमान, पवन हंस को 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर, बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद अब मुकाबले में ट्विस्ट आ गया, यहां जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। ममता बनर्जी से पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया जिसके बाद ममता जबरदस्त गुस्से में नजर आईं।
1: 2026 के बंगाल चुनाव के बाद TMC पर बगावत का ऐसा हथौड़ा पड़ा कि 18 साल की बुनियाद और 15 साल की हुकूमत की निशानी जोड़ा पूल फ्रीज हो गया।
2: But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country, that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic and totally political bias vendetta.
3: Hindu dharma ke ganda dharma bola, Mahakumbh ke mrityu kumbh bola. রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম মন্দির মানি না বলে মিছিল করা, আছেন তো ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপেই সব ধ্বংস হয়ে গেছে।
1: সুবেদু অধিকারী কি খালি সিট নন্দীগ্রাম ও হুমায়ুন কবীর কি খালি সিট রেজিনগর পর 6 অক্টোবর কো উপচুনাব হ্যায়। পার্টি কে নাম ও চুনাব চিহ্ন মে খিঁচতান কো দেখতে হুয়ে আয়োগ নে দোনো দলো সে তিন তিন পসন্দিদা বিকল্প পুছে থে, উসি কে আধার পর মমতা বনার্জি কে গুট কো মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস কা নাম ও ফুটবল খেলতা হুয়া খিলাড়ি নিশান মিলা, জবকি বাগি ধড়ে কো ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও লিফাফে কা নিশান দিয়া গিয়া। ইয়ে নাম ও নিশান 6 অক্টোবর কো হোনে ওয়ালে উপচুনাব কে লিয়ে লাগু রহেঙ্গে।
4: ইন্টারিম অর্ডারিং সে সাবিত হে, জাহির হে कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
1: इस बीच नंदीग्राम उपचुनाव में नया ट्विस्ट आ गया जहां ममता बनर्जी की उम्मीदवार संचिता प्रधान सुबेंदु अधिकारी से मिलने पहुंची और फिर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब नंदीग्राम में नामांकन की तारीख निकल गई है, ऐसे में अब ममता ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है।
2: इन्होंने क्या किया, हाईजैक किया है टोटल, इट वाज कंट्रोल फ्रॉम सम ऑफिस टू हाईजैक द EVM मशीन। इवन
1: पश्चिम बंगाल में भले ही लड़ाई उपचुनाव की हो लेकिन घमासान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भी चुनाव से पहले जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पंजाब में नशे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार मान सरकार को घेर रहा है।
5: पंजाब की इन तीन तस्वीरों ने सियासत की नई स्क्रिप्ट शुरू कर दी है। एक ओर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नशा मुक्त यात्रा की शुरुआत की तो वहीं पूर्व मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमले की तस्वीर सामने आई। इस बीच ASI के मर्डर ने एक बार फिर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में नशा मुक्त यात्रा को हरी झंडी दिखाई तो नशे को लेकर मान सरकार पर जोरदार हमला किया।
6: मैं आज यहां के सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने केवल नारा गिरा था, आप लोगों ने केवल सत्ता की चाबी समझी थी, आपने कभी नशा का दर्द नहीं समझा। और जिस परिवारों ने अपने को खोया उनसे मिलने के बजाय, उनके पीड़ा को समझने के बजाय उनको सुसाइड करने के लिए, उनको आत्महत्या करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं।
7: वो किस मुंह से बात कर रहे हैं नशे, 2007 से लेकर 2017 के बीच जिस पार्टी ने पंजाब में नशे का कारोबार किया, जिसके मंत्री जिसके नेता नशे की तस्करी करवाते थे अपनी अपनी गाड़ियों में रखे, वो पार्टी आज कह रही है कि पंजाब को नशे से मुक्त कराना है। किस मुंह से कह रही है?
5: पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला हो गया। बिट्टू अमृतसर से पठानकोट यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उन पर टमाटर और अंडे फेंके गए।
8: कई चीजें केजरीवाल जैसे, आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। मैं पंजाब पुलिस को भी हमेशा बहुत अच्छी पुलिस समझता था।
5: वही मान सरकार के मंत्री पर हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली।
9: सर, उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने उनके ऊपर हमला किया है। सर,
5: अमृतसर में हमलावरों ने एक एएसआई को निशाना बनाया, जिसे बेहद करीब से गोली मारी गई और हमलावर वहां से फरार हो गए।
10: तकरीबन 12:30 बजे का इंसिडेंट सी, 9:30 बजे रात को और ड्यूटी लई ये ठकीवा थाने तो इत्थे दाना मंडी डिपूट कीते गए सी। ये टू व्हीलर ते उन्हां नू फॉलो किया गया हैगा, ते क्लोज रेंज 30 बोर दा जड़ा पिस्टल हैगा वो यूज करके क्लोज रेंज ते शूटिंग हुई है।
5: पंजाब में चुनाव से पहले नशा और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर विपक्ष मान सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। असीम बस्सी के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।
0: अबर यूपी के पावर प्ले की, बस चुनावों में कुछ ही महीनों का समय है और तैयारियां दोनों ही खेमों में भरपूर। अखिलेश पीडीए के सहारे हैं तो बीजेपी सनातन के भरोसे। सवाल ये कि जनता ने क्या सोचा। उधर लखनऊ में अखिलेश का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रथ तैयार हो चुका है। इसी रथ के सहारे अखिलेश यादव अब चुनावों से पहले पूरे यूपी में कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन उनकी पिछली दो बार की ये कोशिश असफल हो चुकी है।
1: अखिलेश यादव ने यूपी जीतने के लिए दोनों बार रथ यात्राओं का सहारा लिया। यही हाईटेक रथ 2017 में भी था जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे, और फिर 2022 के चुनावों से ठीक पहले उन्होंने विजय रथ यात्रा शुरू कर दी थी। कोशिश यही थी कि वो दोबारा यूपी जीत पाएंगे, लेकिन न 17 में सफल हुए न 22 में। अब 27 से पहले उनका रथ फिर से तैयार है। रंग वैसा ही है लाल, वैसा ही हाईटेक है रथनुमा। इस लग्जरी बस में सारी सुविधाएं हैं। बस नारे बदल गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जब अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी की यात्रा पर निकलेंगे तो क्या होगा। इसकी कुछ झलक आपको 5 साल पहले की इन तस्वीरों से दिखाते हैं। 2022 में यूपी में चुनाव होना था और उससे पहले ही नवंबर 2021 में अखिलेश यादव की कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। तब भी उनके चुनावी रथ को यूपी में समर्थन तो बहुत मिला था। जहां से गुजरते थे वहीं लोगों की भीड़ लग जाती। ऐसे ही रथ के ऊपर खड़े होकर वो हाथ हिलाते, लोगों के उपहार और फूल मालाएं स्वीकार करते थे, लेकिन नतीजा उनके फेवर में नहीं रहा। 2017 में उनके रथ पर नारा लिखा था समाजवादी विकास रथ, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद भी यूपी के लोगों ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया, चुनाव हार गए। 2022 में फिर रथ का नारा बदला गया, लिखा गया यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। लेकिन 5 साल के बाद भी यूपी वालों ने अखिलेश को जनादेश नहीं दिया, फिर से हार गए। अब 2027 की बारी है, रथ फिर तैयार है और रथ पर नया नारा चिपका दिया गया है। अब लिखा है समाजवादी पीडीए यात्रा। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम। अब नए रथ का नारा क्या अखिलेश की 10 साल के बाद वापसी कराएगा, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस बार अखिलेश यादव के रथ में क्या बदलाव हुआ है। अखिलेश के समाजवादी रथ वाली बस में बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाईं ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में स्लोगन लिखा है पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा है। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पीडीए के इस मुद्दे में बड़ा दम दिखता है। वो भले ही पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हों, मौका भांपते ही वो पी को पिछड़ा से पंडित भी करते हैं, लेकिन पीडीए का असली मतलब उनके चुनावी रथ पर ही लिखा है, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इसमें कोई कंफ्यूजन न हो तो अल्पसंख्यक के बाद डैश लगाकर मुसलमान भी लिखा है।
11: ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं, आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं।
1: बीजेपी का तो पूरा प्रयास यही है कि पीडीए का ये नारा किसी भी तरह से ध्वस्त करना है। इसीलिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि पीडीए वो समीकरण है कि अगर वो चुनावों में चला तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव में पीडीए के चलने का मतलब है चुनाव जाति पर शिफ्ट हो गया, और बीजेपी चाहती है कि चुनाव जाति पर नहीं सनातन पर हो।
12: पीडीए को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
13: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
12: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
13: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है, सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
12: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
13: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
1: इसी समाजवादी रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल और रूट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन चमचमाती बस पहुंच चुकी है। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं। छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है। 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है। लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी की भी सुविधा है।
14: अक्टूबर के अंत में सूत्रों के मुताबिक ये रथ मैदान में उतरेगा और चुनावी कैंपेनिंग करेगा। अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद पीडीए इस बार 27 की सत्ता तक पहुंचाएगा। अब बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और इसे नई बोतल और पुरानी शराब करार दे रही है। यानी कि बीजेपी का कहना है कि कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं, बल्कि MY समीकरण की रीपैकेजिंग है। जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में B.R. अंबेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे, या बीजेपी कई संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी, ये वक्त बताएगा।
1: यूपी में पहले चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए MY समीकरणों का हवाला दिया जाता था। M का मतलब मुसलमान और Y का मतलब यादव। अखिलेश ने इसी समीकरण को बड़ा कर दिया है। मायावती चुनावों में पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में वो लगभग सरेंडर के मोड में रही। इसीलिए अखिलेश यादव मायावती के दलित वोट को भी अपनी तरफ करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि पीडीए वही MY है।
15: समाजवादी पार्टी ने माल वही है, पैकेजिंग नहीं है। MY के समीकरण पर एक्सपोज हो चुके थे, सब उनके इस MY के समीकरण को समझते हैं। इसीलिए अब ये पीडीए के नाम पर नया सिगुफा लेकर आए हैं। वो जानते हैं कि पीडीए एक नई पैकेजिंग केवल है, इसीलिए रोज पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। लेकिन पीडीए के अंदर वही माल है जो पुराना इनका MY समीकरण है। लेकिन ये जाति मजहब के आधार पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो विकास के मुद्दे पर होगा, और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी फिर फेल होगी।
16: अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर ही 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी के अंदर बीजेपी को रोका है। बीजेपी 240 पर सिमटी तो इसके लिए यूपी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जहां अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बड़ी रिकॉर्ड सफलता पाई। 2024 में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गईं। एसपी के सहयोगी कांग्रेस की सीटें भी 2024 में 1 से बढ़कर 6 हो गईं। और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में 403 में से 224 विधानसभा सीटों पर आगे था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लगभग बराबर वोट मिले। बीजेपी को 3,83,00,000 और समाजवादी पार्टी को 3,81,00,000 वोट मिले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों और पिछड़ों के साथ दलितों के वोट भी हासिल किए थे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि 2027 से पहले वो एक बार फिर से 2024 जैसा माहौल खड़ा कर देंगे।
17: 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा की थी 2024 के पहले, मतलब लोगों को जगाना, उनके अधिकारों की उनकी बात करना और समाज का वो वर्ग जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उनकी बात करना, उनको बताना कि उनका अधिकार कितना है। वोट इनका, राज किसी और का ये नहीं चल सकता है।
16: लेकिन बीजेपी के पास सनातन का वो हथियार है जो अगर चुनावों में चल गया तो फिर समाजवादी पार्टी के ये समीकरण किसी काम के नहीं रहेंगे। अखिलेश पीडीए पर टिके हैं तो बीजेपी भी सनातन और हिंदुत्व से हिल नहीं रही।
18: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। पावन कथाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करना, व्यापक रूप से आगे बढ़ाना।
16: संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: और अब एक चौंकाने वाली खबर, नोएडा के निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली के आत्महत्या की। जिस कोहली को कोर्ट से फांसी की सजा नहीं मिली, वो फांसी के फंदे से लटका मिला।
5: नोएडा के जिस निठारी कांड ने पूरे देश को चौंका दिया था, आज उसी निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। हरिद्वार में इस चाय की दुकान के अंदर सुरेंद्र कोहली का शव फंदे से लटका मिला। 3 दिन पहले ही सुरेंद्र कोहली ने ये दुकान ली थी। जब पुलिस ने शव की तलाशी दी तो आधार कार्ड से पता चला कि ये शव सुरेंद्र कोहली का है।
19: सुसाइड लग रहा है, बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है, पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाएगा, ये सब होगा। जानकारी
5: सुरेंद्र कोहली इससे पहले हरिद्वार में ही एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था, जिसके बाद उसने ये चाय की दुकान ली। सबसे बड़ी बात ये कि सुरेंद्र ने अपना नाम सदाराम बताया था। ऐसे में किसी को शक ही नहीं था कि ये नोएडा निठारी कांड वाला सुरेंद्र है।
19: सुबह आए यहाँ पे तो कहने लगे यहाँ पे दीवान जी बैठे थे, यहाँ पे मैं नहीं जानता, चाय के लिए कहने लगे कि चाचा ने आज दुकान नहीं खोली चाय, तो मैंने आवाज मारी दूसरी बार शटर में, तो शटर का थोड़ा लोग ढीला था तो शटर अपना उठ गया, तो देखा तो फांसी लग पड़े थे।
20: सबसे पहले आप ही ने देखा उनको?
19: हाँ, वहां पे उन्होंने देखा, सबने देखा, 2 दिन बंदे थे यहाँ पे।
5: अब सवाल यह है कि अगर ये सुसाइड है तो आखिर सुरेंद्र ने सुसाइड क्यों किया? दुकान मालिक का कहना है कि वो बड़ी परेशानी की हालत में उसके पास आया था, जहां उसने बच्चे के जन्मदिन की बात कहकर 2,000 रुपए भी लिए थे।
19: डिप्रेशन में थे, किसका बर्थडे था कल, इनके किसी बच्चे बच्चे का, तो उसमें कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो फोन पे बात करते, उनसे चिल्ला चप्पी हो रही थी।
5: 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी इलाके में मनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से 8 बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इसके बाद घर के आसपास के नालों की तलाशी और खुदाई की गई, जिसमें कई और कंकाल मिले। इस मामले में मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। पंडेर को इनमें से 2 मामलों में सजा हुई, जबकि सुरेंद्र कोहली को निचली अदालत ने कुल 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन 2025 में कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। ये नोएडा के निठारी की वही D5 कोठी है जो अब सुनसान पड़ी हुई है। निठारी कांड के पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार सुरेंद्र की मौत के पीछे साजिश का शक जता रहे हैं।
3: ओनली ने सुसाइड नहीं किया, करना होता ना तो जेल में कर लेता, वो जेल में क्यों नहीं किया? अब छूट के आ गया था, तब बता रहे तुम्हें लोग बता रहे हो कि चाय की दुकान चलाता था। अब चाय की दुकान चलाता था तो कुछ तो कमाता होगा, अभी भी बच्चों के साथ रहता था, है मैं मारा होगा, पर ढेर के अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता इसमें।
21: इसने मतलब जो है इन लोगों ने कुछ कहा होगा, कोई खुलासा वो करने वाला होगा, कोई खुलासा करने वाला होगा, या इसको कहा होगा इतना नहीं इतना देंगे तुम्हें, और वो नहीं तो वो कहा होगा हम बता देंगे।
5: बहरहाल सुरेंद्र कोहली की मौत से हर कोई हैरान है, और सवाल ये कि 19 साल जेल में रहने के दौरान जिस शख्स ने सुसाइड नहीं किया उसने जेल से बाहर आने के बाद अपनी जान क्यों ली? आज तक ब्यूरो।
0: अब एक हैरान और विचलित कर देने वाली खबर। हमारे देश के कई शहरों में आतंक का नाम बन चुका पिटबुल एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली के करीब सोनीपत में पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया।
5: तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपको हूबहू नहीं दिखा रहे। तस्वीरें देखिए, चीख पुकार मची है, लोग एक काले पिटबुल कुत्ते को डंडे से मार रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन पिटबुल बेकाबू है। स्क्रीन पर जो हिस्सा आपको ब्लर नजर आ रहा है, दरअसल उस हिस्से में 6 महीने का एक मासूम बच्चा है जिस पर पिटबुल लगातार झपट्टा मार रहा है। यह तस्वीर दिल्ली से सटे सोनीपत के सिक्का कॉलोनी की है। यहाँ 6 महीने के एक मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल का यह हमला तब हुआ जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी, तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। हमले में मासूम और उसकी बुआ घायल हुए हैं। गंभीर हालत में बच्चे का रोहतक PGI में इलाज चल रहा है।
22: पिटबुल ने उसको कितनी जगह से काटा?
23: उसका मुंह छील रखा है पूरा, जैसे उसने गली में उसको छिजोड़ा था ना, तो उसको काफी सारी चोट आई हुई है, पेट वगैरह पे, हाथ वगैरह पे, बहुत सारी जगह चोट आई है।
22: कभी पहले भी देखा गली में घूमता?
23: एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन बच्चा बच गया था, उनके बच्चे को काट रही थी वो उस दिन में, लेकिन उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं था।
5: सोनीपत में पिटबुल हमले के बाद प्रशासन जागा, मेयर और पुलिस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एक्शन का भरोसा दिया।
24: इस तरह के जो कुत्ते पालने वाले हैं लोग, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जो है सरकार की तरफ से किया गया, उसका भी अभियान चलाया जाएगा। और अगर जो है कोई व्यक्ति प्रतिबंधित जो है डॉग पालने का काम करता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
5: आए दिन पिटबुल के हमले की खबरें आती रहती हैं, सवाल कुत्ते के मालिक की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। प्रशासन का कहना है कि शिकायत के बाद एक्शन लिया जाएगा। पवन राठी, सोनीपत आज तक।
0: फोन ने भले ही अपनी कीमत बढ़ा ली हो लेकिन उसका क्रेज कम नहीं हो रहा है। हमारे देश में नया आईफोन लॉन्च कर दिया गया, देर रात से ही स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें खरीदने के लिए लोगों की दिखी।
25: दुर्गा पूजा गिफ्ट फ्रॉम मी टू मी।
26: ये आईफोन की दीवानगी है। एप्पल का आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स भारतीय बाजार में जैसे ही आया, आईफोन के दीवाने दौड़ पड़े इसे अपना बनाने।
27: और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर।
28: That's it.
29: मैं देख रहा हूँ दो फोन आप लेके आए हैं।
27: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊँ।
26: 18 सितंबर से आधिकारिक तौर पर आईफोन 18 सीरीज के फोन भारत के बाजार में बिकने लगे। देश के चुनिंदा शहरों में ही अभी एप्पल का स्टोर है और ये फोन अभी सिर्फ एप्पल के आधिकारिक स्टोर पर ही उपलब्ध है, इसलिए आईफोन प्रेमियों ने पहले से ही अपनी बुकिंग कर रखी थी ताकि स्टोर पहुंचने पर आसानी से खरीदारी हो सके, लेकिन स्टोर के बाहर तो लंबी लाइनें लगी थी। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां साकेत में एप्पल का स्टोर है। देर रात से ही लोग स्टोर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे, इंतजार करने लगे सुबह के 8 बजने का, क्योंकि स्टोर में एंट्री सुबह 8 बजे ही शुरू होती है। जैसे ही लोगों ने स्टोर में प्रवेश किया तो तुरंत प्री बुकिंग के हिसाब से फोन को अपना बना लिया।
29: मैं दिल्ली रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। आईफोन 18 प्रो बरगंडी कलर, बढ़िया लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। आईफोन 18 लेके फीचर्स तो वही है, जैसे अगली जनरेशन आ तो उसके हिसाब से जैसे कैमरा वगैरह में भी मतलब एक बढ़िया क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का कैमरा, बढ़िया लग रहा है।
26: आईफोन प्रो की शुरुआती कीमत 1,64,000 रुपए है, जो 3,14,000 तक आती है, तो वहीं प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,000 रुपए है, जो 3,29,000 तक जाती है। इस बार के आईफोन काफी महंगे हैं। कीमतों को लेकर लोग शिकायतें तो करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि खरीदना तो है ही। आज तक देरो।
0: अब खबर पहाड़ों पर अचानक बदले मौसम की। बीते सितंबर ही पहाड़ों पर मौसम बदलने लगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई।
2: चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है, पेड़ों पर कुदरत ने श्रृंगार किया है। सितंबर के दूसरे सप्ताह के साथ ही पहाड़ कुदरत के सफेद गहनों से सज गए हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर ले हाईवे पर जो जिला के जीरो पॉइंट की है। यहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के साथ ही सर्दियों ने दस्तक दे दी है।
4: कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से, और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
2: अब मनाली की तस्वीरें देखिए। मनाली के ऊपरी हिस्सों में देखिए कितना सुंदर नजारा है। यहाँ भी सीजन की पहली बर्फबारी ने मनाली को मोहक बना दिया है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही होटल व्यवसायियों की आंखों की चमक बढ़ गई है, क्योंकि होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है।
6: सब जगह पता लग गया है कि आज पहली बर्फबारी जो है वो सर्दियों की शुरुआत की आज से हो गई है। और इस बर्फबारी से जैसे ही बर्फबारी हुई और सवेरे खबरें फैली तो होटलों में बुकिंग आना शुरू हो गई है।
2: मनाली के पहाड़ों पर ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने चांदी लपेट दी। मौसम खुशगवार है, लेकिन यही मौसम कुछ लोगों के लिए काल बन गया है। दरअसल पहाड़ पर एकाएक मौसम बदला, जिसकी वजह से लाहौल स्पीति में पवित्र ड्रिलभुरी कोरा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक मौसम बदलने और भारी बर्फबारी के बाद हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया की वजह से 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं एक श्रद्धालु के पैर की हड्डी टूटने से वह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए केलांग क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनाली के बाद कुल्लू की तस्वीरें देखिए। यहां भी आसमान से बर्फ बरसी है। रुई के फाहों जैसी बर्फ इस बर्फबारी ने पर्यटकों को प्रसन्न कर दिया है। अब उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें देखिए। यहां भी मौसम बदला है। बरसात के बाद हल्की बर्फबारी ने तापमान में गिरावट की है। रुद्रनाथ में हल्की बर्फबारी के साथ गिरे ओले। पहाड़ों पर बिछी सफेदी और बारिश के बीच बदलता मौसम। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब भी सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सफेद रंग में रंगा नजर आया। चारों तरफ बर्फ और उसके बीच नजर आता पवित्र धाम का खूबसूरत नजारा। कुल मिलाकर पहाड़ों पर सर्दियां दस्तक दे रही हैं। कुदरत अपना सबसे खूबसूरत रंग बिखेर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक का, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पंचायत आज तक बिहार में बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यूसीसी पर गठबंधन से बातचीत के बाद लेंगे निर्णय। बंगाल उपचुनाव में ट्विस्ट बे ट्विस्ट, पहले नंदीग्राम से ममता की उम्मीदवार ने नाम वापस लिया तो कांग्रेस का दावा, हमारी प्रत्याशी मिलन प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राहुल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोप पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस भस्मासुर, साथ आने वाले सभी दलों को जला देती। उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख का जेनजी को संदेश, बोले भारत के युवा पूरी दुनिया में न सिर्फ यशस्वी बल्कि सार्थक भी बने। वायुसेना को HAL से मिला तेजस का ट्रेनर विमान, पवन हंस को 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर, बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद अब मुकाबले में ट्विस्ट आ गया, यहां जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। ममता बनर्जी से पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, जिसके बाद ममता जबरदस्त गुस्से में नजर आईं।
1: 2026 के बंगाल चुनाव के बाद TMC पर बगावत का ऐसा हथौड़ा पड़ा कि 18 साल की बुनियाद और 15 साल की हुकूमत की निशानी जोड़ा पूल फ्रीज हो गया।
2: But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic and totally political bias vendetta.
3: Hindu dharma ke gonda dharma bola, mahakumbh ke mithu kumbh bola. আর রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম মন্দির মানি না বলে মিছিল করা, আছেন তো ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপেই সব ধ্বংস হয়েছে।
1: সুবেদু অধিকারী কি খালি সিট নন্দীগ্রাম ও হুমায়ুন কবীর কি খালি সিট রেজিনগর পর 6 অক্টোবর কো উপচুনাব হ্যায়। পার্টি কে নাম ও চুনাব চিহ্ন মে খিঁচতান কো দেখতে হুয়ে আয়োগ নে দোনো দলো সে তিন তিন পসন্দিদা বিকল্প পুছে থে, উসি কে আধার পর মমতা ব্যানার্জি কে গুট কো মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস কা নাম ও ফুটবল খেলতা হুয়া খিলাড়ি নিশান মিলা, জবকি বাগি ধড়ে কো ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও লিফাফে কা নিশান দিয়া গিয়া। ये नाम और निशान 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए लागू रहेंगे।
4: इंटरिम ऑर्डर इससे साबित है, जाहिर है कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
1: इस बीच नंदीग्राम उपचुनाव में नया ट्विस्ट आ गया, जहां ममता बनर्जी की उम्मीदवार संचिता प्रधान सुबेंदु अधिकारी से मिलने पहुंची और फिर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब नंदीग्राम में नामांकन की तारीख निकल गई है, ऐसे में अब ममता ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है।
2: इन्होंने क्या किया, हाईजैक किया है टोटल, इट वाज कंट्रोल फ्रॉम सम ऑफिस टू हाईजैक द EVM मशीन।
1: पश्चिम बंगाल में भले ही लड़ाई उपचुनाव की हो, लेकिन घमासान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भी चुनाव से पहले जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पंजाब में नशे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की, तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार मान सरकार को घेर रहा है।
5: पंजाब की इन तीन तस्वीरों ने सियासत की नई स्क्रिप्ट शुरू कर दी है। एक ओर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नशा मुक्त यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं पूर्व मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमले की तस्वीर सामने आई। इस बीच ASI के मर्डर ने एक बार फिर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में नशा मुक्त यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो नशे को लेकर मान सरकार पर जोरदार हमला किया।
6: मैं आज यहां के सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने केवल नारा गिरा था, आप लोगों ने केवल सत्ता की चाबी समझी थी, आपने कभी नशा का दर्द नहीं समझा। और जिस परिवारों ने अपने को खोया उनसे मिलने के बजाय, उनके पीड़ा को समझने के बजाय उनको सुसाइड करने के लिए, उनको आत्महत्या करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं।
7: वो किस मुंह से बात कर रहे हैं नशे, 2007 से लेकर 2017 के बीच जिस पार्टी ने पंजाब में नशे का कारोबार किया, जिसके मंत्री जिसके नेता नशे की तस्करी करवाते थे अपनी अपनी गाड़ियों में रखे, वो पार्टी आज कह रही है कि पंजाब को नशे से मुक्त कराना है। किस मुंह से कह रही है?
5: पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला हो गया। बिट्टू अमृतसर से पठानकोट यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जा रास्ते में हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उन पर टमाटर और अंडे फेंके गए।
8: कई चीजें केजरीवाल जैसे, आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। मैं पंजाब पुलिस को भी हमेशा बहुत अच्छी पुलिस समझता था।
5: वहीं मान सरकार के मंत्री पर हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली।
9: सर, उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने उनके ऊपर हमला किया है। सर,
5: अमृतसर में हमलावरों ने एक एएसआई को निशाना बनाया जिसे बेहद करीब से गोली मारी गई और हमलावर वहां से फरार हो गए।
10: तकरीबन 12:30 बजे का इंसिडेंट सी, 9:30 बजे रात में और ड्यूटी ले ये ठकीबा थाने तो इतने दाना मंडी से ड्यूटी पे गए सी, ले टू व्हीलर ते उन्होंने फॉलो किया गया है, क्लोज रेंज 30 बोर का जरा पिस्टल है वो यूज करके क्लोज रेंज से शूटिंग हुई है।
5: पंजाब में चुनाव से पहले नशा और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिस पर विपक्ष मान सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। असीम बस्सी के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।
0: अबर यूपी के पावर प्ले की, बस चुनावों में कुछ ही महीनों का समय है और तैयारियां दोनों ही खेमों में भरपूर। अखिलेश पीडीए के सहारे हैं तो बीजेपी सनातन के भरोसे, सवाल ये कि जनता ने क्या सोचा। उधर लखनऊ में अखिलेश का पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक रथ तैयार हो चुका है। इसी रथ के सहारे अखिलेश यादव अब चुनावों से पहले पूरे यूपी में कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन उनकी पिछली 2 बार की ये कोशिश असफल हो चुकी है।
1: अखिलेश यादव ने यूपी जीतने के लिए दोनों बार रथ यात्राओं का सहारा लिया। यही हाईटेक रथ 2017 में भी था जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे, और फिर 2022 के चुनावों से ठीक पहले उन्होंने विजय रथ यात्रा शुरू कर दी थी। कोशिश यही थी कि वो दोबारा यूपी जीत पाएंगे, लेकिन न 17 में सफल हुए न 22 में। अब 27 से पहले उनका रथ फिर से तैयार है। रंग वैसा ही है लाल, वैसा ही हाईटेक है रथनुमा। इस लग्जरी बस में सारी सुविधाएं हैं, बस नारे बदल गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जब अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी की यात्रा पर निकलेंगे तो क्या होगा, इसकी कुछ झलक आपको 5 साल पहले की इन तस्वीरों से दिखाते हैं। 2022 में यूपी में चुनाव होना था और उससे पहले ही नवंबर 2021 में अखिलेश यादव की कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। तब भी उनके चुनावी रथ को यूपी में समर्थन तो बहुत मिला था, जहां से गुजरते थे वहीं लोगों की भीड़ लग जाती। ऐसे ही रथ के ऊपर खड़े होकर वो हाथ हिलाते, लोगों के उपहार और फूल मालाएं स्वीकार करते थे, लेकिन नतीजा उनके फेवर में नहीं रहा। 2017 में उनके रथ पर नारा लिखा था समाजवादी विकास रथ, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद भी यूपी के लोगों ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया, चुनाव हार गए। 2022 में फिर रथ का नारा बदला गया, लिखा गया यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, लेकिन 5 साल के बाद भी यूपी वालों ने अखिलेश को जनादेश नहीं दिया, फिर से हार गए। अब 2027 की बारी है, रथ फिर तैयार है और रथ पर नया नारा चिपका दिया गया है। अब लिखा है समाजवादी पीडीए यात्रा, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम। अब नए रथ का नारा क्या अखिलेश की 10 साल के बाद वापसी कराएगा, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस बार अखिलेश यादव के रथ में क्या बदलाव हुआ है। अखिलेश के समाजवादी रथ वाली बस में बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है, सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाईं ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में स्लोगन लिखा है, पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है, बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा है। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पीडीए के इस मुद्दे में बड़ा दम दिखता है। वो भले ही पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हों, मौका भांपते ही वो पी को पिछड़ा से पंडित भी करते हैं, लेकिन पीडीए का असली मतलब उनके चुनावी रथ पर ही लिखा है, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इसमें कोई कंफ्यूजन न हो तो अल्पसंख्यक के बाद डैश लगाकर मुसलमान भी लिखा है।
11: ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं, आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं।
1: बीजेपी का तो पूरा प्रयास यही है कि पीडीए का ये नारा किसी भी तरह से ध्वस्त करना है। इसीलिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि पीडीए वो समीकरण है कि अगर वो चुनावों में चला तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव में पीडीए के चलने का मतलब है चुनाव जाति पर शिफ्ट हो गया, और बीजेपी चाहती है कि चुनाव जाति पर नहीं सनातन पर हो।
12: पीडीए को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
13: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में।

0: असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
1: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
0: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है, सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
1: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार,
0: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
2: इसी समाजवादी रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल और रूट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन चमचमाती बस पहुंच चुकी है। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं। छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है। 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है। लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी की भी सुविधा है।
3: अक्टूबर के अंत में सूत्रों के मुताबिक ये रथ मैदान में उतरेगा और चुनावी कैंपेनिंग करेगा। अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद पीडीए इस बार 27 की सत्ता तक पहुंचाएगा। अब बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और इसे नई बोतल और पुरानी शराब करार दे रही है। यानी कि बीजेपी का कहना है कि कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं बल्कि MY समीकरण की रीपैकेजिंग है। जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में B.R. अंबेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे या बीजेपी कई संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी, ये वक्त बताएगा।
2: यूपी में पहले चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए MY समीकरणों का हवाला दिया जाता था। M का मतलब मुसलमान और Y का मतलब यादव। अखिलेश ने इसी समीकरण को बड़ा कर दिया है। मायावती चुनावों में पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में वो लगभग सरेंडर के मोड में रही, इसीलिए अखिलेश यादव मायावती के दलित वोट को भी अपनी तरफ करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि पीडीए वही MY है।
4: समाजवादी पार्टी ने माल वही है, पैकेजिंग नई है, MY के समीकरण पर एक्सपोज हो चुके थे। सब उनके इस MY के समीकरण को समझते हैं, इसीलिए अब ये पीडीए के नाम पर नया सिगुफा लेकर आए। वो जानते हैं कि पीडीए एक नई पैकेजिंग केवल है, इसीलिए रोज पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। लेकिन पीडीए के अंदर वही माल है जो पुराना इनका MY समीकरण है। लेकिन ये जाति मजहब के आधार पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो विकास के मुद्दे पर होगा और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी फिर फेल होगी।
2: अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर ही 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी के अंदर बीजेपी को रोका है। बीजेपी 240 पर सिमटी तो इसके लिए यूपी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जहां अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बड़ी रिकॉर्ड सफलता पाई। 2024 में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गईं। SP के सहयोगी कांग्रेस की सीटें भी 2024 में 1 से बढ़कर 6 हो गईं। और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में 403 में से 224 विधानसभा सीटों पर आगे था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लगभग बराबर वोट मिले। बीजेपी को 3,83,00,000 और समाजवादी पार्टी को 3,81,00,000 वोट मिले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों और पिछड़ों के साथ दलितों के वोट भी हासिल किए थे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि 2027 से पहले वो एक बार फिर से 2024 जैसा माहौल खड़ा कर देंगे।
5: 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा की थी 2024 के पहले, मतलब लोगों को जगाना, उनके अधिकारों की उनकी बात करना और समाज का वो वर्ग जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है उनकी बात करना, उनको बताना कि उनका अधिकार कितना है। वोट इनका, राज किसी और का, ये नहीं चल सकता है।
2: लेकिन बीजेपी के पास सनातन का वो हथियार है जो अगर चुनावों में चल गया तो फिर समाजवादी पार्टी के ये समीकरण किसी काम के नहीं रहेंगे।

0: कलेश पीडीए पर टिके हैं तो बीजेपी भी सनातन और हिंदुत्व से हिल नहीं रही।
1: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी। और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। पावन कथाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करना, व्यापक रूप से आगे बढ़ाना।
0: संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: अरबिक का चौंकाने वाली खबर, नोएडा के निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली के आत्महत्या की। जिस कोहली को कोर्ट से फांसी की सजा नहीं मिली, वो फांसी के फंदे से लटका मिला।
3: नोएडा के जिस निठारी कांड ने पूरे देश को चौंका दिया था, आज उसी निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। हरिद्वार में इस चाय की दुकान के अंदर सुरेंद्र कोहली का शव फंदे से लटका मिला। 3 दिन पहले ही सुरेंद्र कोहली ने ये दुकान ली थी। जब पुलिस ने शव की तलाशी दी तो आधार कार्ड से पता चला कि ये शव सुरेंद्र कोहली का है।
4: प्रथम दृष्टया सुसाइड लग रहा है, बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है, पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाएगा, ये सब होगा।
3: सुरेंद्र कोहली इससे पहले हरिद्वार में ही एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था, जिसके बाद उसने ये चाय की दुकान ली। सबसे बड़ी बात ये कि सुरेंद्र ने अपना नाम सदाराम बताया था। ऐसे में किसी को शक ही नहीं था कि ये नोएडा निठारी कांड वाला सुरेंद्र है।
5: अब सुबह आए यहाँ पे तो कहने लगे, यहाँ पे तो दीवान जी बैठे थे यहाँ पे, मैं नहीं जानता हूँ, चाय के लिए कहने लगे कि चाचा ने आज दुकान नहीं खोली चाय। तो मैंने आवाज मारी दूसरी बार शटर में, तो शटर का थोड़ा लोग ढीला था तो शटर अपना उठ गया, तो देखा तो फांस पड़े थे।
6: सबसे पहले आप ही ने देखा?
5: हाँ, वहाँ पे उन्होंने देखा, सबने देखा, 2-3 बंदे थे यहाँ पे।
3: अब सवाल ये है कि अगर ये सुसाइड है तो आखिर सुरेंद्र ने सुसाइड क्यों किया? दुकान मालिक का कहना है कि वो बड़ी परेशानी की हालत में उसके पास आया था, जहां उसने बच्चे के जन्मदिन की बात कहकर 2,000 रुपए भी लिए थे।
5: ना डिप्रेशन में थे, किसका बर्थडे था कल, इनके किसी बच्चे बच्चे का, तो उसमें कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो फोन पे बात करते, उनसे तिल्ला चप्पी उड़ गई।
3: 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी इलाके में मनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से 8 बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इसके बाद घर के आसपास के नालों की तलाशी और खुदाई की गई, जिसमें कई और कंकाल मिले। इस मामले में मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। पंडेर को इनमें से 2 मामलों में सजा हुई, जबकि सुरेंद्र कोहली को निचली अदालत ने कुल 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन 2025 में कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। ये नोएडा के निठारी की वही D5 कोठी है जो अब सुनसान पड़ी हुई है। निठारी कांड के पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार सुरेंद्र की मौत के पीछे साजिश का शक जता रहे हैं।
7: कोहली ने सुसाइड नहीं किया, करना होता ना तो जेल में कर लेता, वो जेल में क्यों नहीं किया? अब छूट के आ गया था, तो बता रहे तुम्हें लोग बता रहे हो कि चाय की दुकान चलाता था। अब चाय की दुकान चलाता था तो कुछ तो कमाता होगा, अभी भी बच्चों के साथ रहता था, मैं मारा होगा, पंडेर के अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता इसमें।
8: इसने मतलब जो है लोगों ने कुछ कहा होगा, कोई खुलासा वो करने वाला होगा, कोई खुलासा करने वाला होगा, या इसको कहा होगा इतना नहीं इतना देंगे तुम्हें, और वो नहीं तो वो कहा होगा हम बता देंगे।
3: बहरहाल सुरेंद्र कोहली की मौत से हर कोई हैरान है, और सवाल ये कि 19 साल जेल में रहने के दौरान जिस शख्स ने सुसाइड नहीं किया, उसने जेल से बाहर आने के बाद अपनी जान क्यों ली? आज तक ब्यूरो।
2: अब एक हैरान और विचलित कर देने वाली खबर। हमारे देश के कई शहरों में आतंक का नाम बन चुका पिटबुल एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली के करीब सोनीपत में पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया।
3: तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपको हूबहू नहीं दिखा रहे। तस्वीरें देखिए, चीख पुकार मची है, लोग एक काले पिटबुल कुत्ते को डंडे से मार रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन पिटबुल बेकाबू है। स्क्रीन पर जो हिस्सा आपको ब्लर नजर आ रहा है, दरअसल उस हिस्से में 6 महीने का एक मासूम बच्चा है, जिस पर पिटबुल लगातार झपट्टा मार रहा है। ये तस्वीर दिल्ली से सटे सोनीपत के सिक्का कॉलोनी की है। यहाँ 6 महीने के एक मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल का यह हमला तब हुआ जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी। तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। हमले में मासूम और उसकी बुआ घायल हुए हैं। गंभीर हालत में बच्चे का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है।
9: पिटबुल ने उसको कितनी जगह से काटा?
10: उसका मुंह छील रखा है पूरा। जैसे उसने गली में उसको छिजोड़ा था ना, तो उसको काफी सारी चोट आई हुई है। पेट वगैरह पे, हाथ वगैरह पे बहुत सारी जगह चोट आई है।
9: कभी पहले भी देखा गली में घूमता?
10: एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन बच्चा बच गया था। उनके बच्चे को काट रही थी वो उस दिन में, लेकिन उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं था।
3: सोनीपत में पिटबुल हमले के बाद प्रशासन जागा। मेयर और पुलिस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एक्शन का भरोसा दिया।
11: इस तरह के जो कुत्ते पालने वाले हैं लोग, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जो है सरकार की तरफ से किया गया, उसका भी अभियान चलाया जाएगा। और अगर जो है कोई व्यक्ति प्रतिबंधित जो है डॉग पालने का काम करता हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
3: आए दिन पिटबुल के हमले की खबरें आती रहती हैं। सवाल कुत्ते के मालिक की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। प्रशासन का कहना है कि शिकायत के बाद एक्शन लिया जाएगा। पवन राठी, सोनीपत आज तक।
2: फोन ने भले ही अपनी कीमत बढ़ा ली हो, लेकिन उसका क्रेज कम नहीं हो रहा है। हमारे देश में नया आईफोन लॉन्च कर दिया गया। देर रात से ही स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें खरीदने के लिए लोगों की दिखी।
12: दुर्गा पूजा गिफ्ट फ्रॉम मी टू मी।
13: ये आईफोन की दीवानगी है। एप्पल का आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स भारतीय बाजार में जैसे ही आया, आईफोन के दीवाने दौड़ पड़े इसे अपना बनाने।
14: और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर।
15: That's it. मैं देख रहा हूँ दो फोन आप लेके आए हैं।
14: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊँ।
13: 18 सितंबर से आधिकारिक तौर पर आईफोन 18 सीरीज के फोन भारत के बाजार में बिकने लगे। देश के चुनिंदा शहरों में ही अभी एप्पल के स्टोर हैं, और ये फोन अभी सिर्फ एप्पल के आधिकारिक स्टोर पर ही उपलब्ध हैं। इसलिए आईफोन प्रेमियों ने पहले से ही अपनी बुकिंग कर रखी थी, ताकि स्टोर पहुंचने पर आसानी से खरीदारी हो सके। लेकिन स्टोर के बाहर तो लंबी लाइनें लगी थी। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां साकेत में एप्पल का स्टोर है। देर रात से ही लोग स्टोर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे, इंतजार करने लगे सुबह के 8 बजने का, क्योंकि स्टोर में एंट्री सुबह 8 बजे ही शुरू होती है। जैसे ही लोगों ने स्टोर में प्रवेश किया, तो तुरंत प्री बुकिंग के हिसाब से फोन को अपना बना लिया।
15: मैं दिल्ली रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। आईफोन 18 प्रो बरगंडी कलर। बढ़िया लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। आईफोन 18 लेके फीचर्स तो वही है, जैसे अगली जनरेशन आवे तो उसके हिसाब से, जैसे कैमरा वगैरह में भी मतलब एक बढ़िया क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का कैमरा बढ़िया लग रहा है।
13: आईफोन प्रो की शुरुआती कीमत 1,64,000 रुपए है, जो 3,14,000 तक आती है। तो वहीं प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,000 रुपए है, जो 3,29,000 तक जाती है। इस बार के आईफोन काफी महंगे हैं। कीमतों को लेकर लोग शिकायतें तो करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि खरीदना तो है ही। आज तक देरो।
2: अब खबर पहाड़ों पर अचानक बदले मौसम की। बीते सितंबर ही पहाड़ों पर मौसम बदलने लगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई।
3: चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है, पेड़ों पर कुदरत ने श्रृंगार किया है। सितंबर के दूसरे सप्ताह के साथ ही पहाड़ कुदरत के सफेद गहनों से सज गए हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर ले हाईवे पर जो जिला के जीरो पॉइंट की हैं। यहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, और इस बर्फबारी के साथ ही सर्दियों ने दस्तक दे दी है।
16: कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से, और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
3: अब मनाली की तस्वीरें देखिए। मनाली के ऊपरी हिस्सों में देखिए कितना सुंदर नजारा है। यहाँ भी सीजन की पहली बर्फबारी ने मनाली को मोहक बना दिया है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही होटल व्यवसायियों की आंखों की चमक बढ़ गई है, क्योंकि होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है।
17: सब जगह पता लग गया है कि आज पहली बर्फबारी जो है वो सर्दियों की शुरुआत की आज से हो गई है, और इस बर्फबारी से जैसे ही बर्फबारी हुई और सवेरे खबरें फैली तो होटलों में बुकिंग आना शुरू हो गई है।
3: मनाली के पहाड़ों पर ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने चांदी लपेट दी। मौसम खुशगवार है लेकिन यही मौसम कुछ लोगों के लिए काल बन गया है। दरअसल पहाड़ पर एकाएक मौसम बदला जिसकी वजह से लाहौल स्पीति में पवित्र ड्रिलभुरी कोरा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक मौसम बदलने और भारी बर्फबारी के बाद हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया की वजह से दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं एक श्रद्धालु के पैर की हड्डी टूटने से वह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए केलांग क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनाली के बाद कुल्लू की तस्वीरें देखिए, यहां भी आसमान से बर्फ बरसी है। रुई के फाहों जैसी बर्फ इस बर्फबारी ने पर्यटकों को प्रसन्न कर दिया है। अब उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें देखिए, यहां भी मौसम बदला है। बरसात के बाद हल्की बर्फबारी ने तापमान में गिरावट की है। रुद्रनाथ में हल्की बर्फबारी के साथ गिरे ओले, पहाड़ों पर बिछी सफेदी और बारिश के बीच बदलता मौसम। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब भी सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सफेद रंग में रंगा नजर आया। चारों तरफ बर्फ और उसके बीच नजर आता पवित्र धाम का खूबसूरत नजारा। कुल मिलाकर पहाड़ों पर सर्दियां दस्तक दे रही हैं। कुदरत अपना सबसे खूबसूरत रंग बिखेर रही है। आज तक ब्यूरो।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पंचायत आज तक बिहार में बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यूसीसी पर गठबंधन से बातचीत के बाद लेंगे निर्णय। बंगाल उपचुनाव में ट्विस्ट बे ट्विस्ट, पहले नंदीग्राम से ममता की उम्मीदवार ने नाम वापस लिया तो कांग्रेस का दावा, हमारी प्रत्याशी मिलन प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राहुल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोप पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस भस्मासुर, साथ आने वाले सभी दलों को जला देती। उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख का जेन जी को संदेश, बोले भारत के युवा पूरी दुनिया में न सिर्फ यशस्वी बल्कि सार्थक भी बने। वायुसेना को HAL से मिला तेजस का ट्रेनर विमान, पवन हंस को 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर, बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद अब मुकाबले में ट्विस्ट आ गया, यहां जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। ममता बनर्जी से पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया जिसके बाद ममता जबरदस्त गुस्से में नजर आईं।
1: 2026 के बंगाल चुनाव के बाद TMC पर बगावत का ऐसा हथौड़ा पड़ा कि 18 साल की बुनियाद और 15 साल की हुकूमत की निशानी जोड़ा पूल फ्रीज हो गया।
2: But to feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country, that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic and totally political bias vendetta.
3: Hindu dharma ke ganda dharma bola, Mahakumbh ke mrityu kumbh bola. রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম মন্দির মানি না বলে মিছিল করা, আছেন তো ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপেই সব ধ্বংস হয়ে গেছে।
1: সুবেদু অধিকারী কি খালি সিট নন্দীগ্রাম ও হুমায়ুন কবীর কি খালি সিট রেজিনগর পর 6 অক্টোবর কো উপচুনাব হ্যায়। পার্টি কে নাম ও চুনাব চিহ্ন মে খিঁচতান কো দেখতে হুয়ে আয়োগ নে দোনো দলো সে তিন তিন পসন্দিদা বিকল্প পুছে থে, উসি কে আধার পর মমতা বনার্জি কে গুট কো মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস কা নাম ও ফুটবল খেলতা হুয়া খিলাড়ি নিশান মিলা, জবকি বাগি ধড়ে কো ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও লিফাফে কা নিশান দিয়া গিয়া। ইয়ে নাম ও নিশান 6 অক্টোবর কো হোনে ওয়ালে উপচুনাব কে লিয়ে লাগু রহেঙ্গে।
4: ইন্টারিম অর্ডারিং সে সাবিত হে, জাহির হে कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
1: इस बीच नंदीग्राम उपचुनाव में नया ट्विस्ट आ गया जहां ममता बनर्जी की उम्मीदवार संचिता प्रधान सुबेंदु अधिकारी से मिलने पहुंची और फिर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब नंदीग्राम में नामांकन की तारीख निकल गई है, ऐसे में अब ममता ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है।
2: इन्होंने क्या किया, हाईजैक किया है टोटल, इट वाज कंट्रोल फ्रॉम सम ऑफिस टू हाईजैक द ईवीएम मशीन। इवन
1: पश्चिम बंगाल में भले ही लड़ाई उपचुनाव की हो लेकिन घमासान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भी चुनाव से पहले जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पंजाब में नशे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार मान सरकार को घेर रहा है।
5: पंजाब की इन तीन तस्वीरों ने सियासत की नई स्क्रिप्ट शुरू कर दी है। एक ओर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नशा मुक्त यात्रा की शुरुआत की तो वहीं पूर्व मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमले की तस्वीर सामने आई। इस बीच ASI के मर्डर ने एक बार फिर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में नशा मुक्त यात्रा को हरी झंडी दिखाई तो नशे को लेकर मान सरकार पर जोरदार हमला किया।
6: मैं आज यहां के सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने केवल नारा गिरा था, आप लोगों ने केवल सत्ता की चाबी समझी थी, आपने कभी नशा का दर्द नहीं समझा। और जिस परिवारों ने अपने को खोया उनसे मिलने के बजाय, उनके पीड़ा को समझने के बजाय उनको सुसाइड करने के लिए, उनको आत्महत्या करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं।
7: वो किस मुंह से बात कर रहे हैं नशे, 2007 से लेकर 2017 के बीच जिस पार्टी ने पंजाब में नशे का कारोबार किया, जिसके मंत्री जिसके नेता नशे की तस्करी करवाते थे अपनी अपनी गाड़ियों में रखे, वो पार्टी आज कह रही है कि पंजाब को नशे से मुक्त कराना है। किस मुंह से कह रही है?
5: पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला हो गया। बिट्टू अमृतसर से पठानकोट यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उन पर टमाटर और अंडे फेंके गए।
8: कई चीजें केजरीवाल जैसे, आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। मैं पंजाब पुलिस को भी हमेशा बहुत अच्छी पुलिस समझता था।
5: वही मान सरकार के मंत्री पर हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली।
9: सर, उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने उनके ऊपर हमला किया है। सर,
5: अमृतसर में हमलावरों ने एक एएसआई को निशाना बनाया, जिसे बेहद करीब से गोली मारी गई और हमलावर वहां से फरार हो गए।
10: तकरीबन 12:30 बजे का इंसिडेंट सी, 9:30 बजे रात में और ड्यूटी लई ये ठकीवा थाने तो इतने दाना मंडी से दूर की गई सी। ये टू व्हीलर ते उन्होंने फॉलो किया गया है, क्लोज रेंज 30 बोर का जरा पिस्टल है वो यूज करके क्लोज रेंज से शूटिंग हुई है।
5: पंजाब में चुनाव से पहले नशा और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर विपक्ष मान सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। असीम बस्सी के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।
0: खबर यूपी के पावर प्ले की। बस चुनावों में कुछ ही महीनों का समय है और तैयारियां दोनों ही खेमों में भरपूर। अखिलेश पीडीए के सहारे हैं तो बीजेपी सनातन के भरोसे। सवाल ये कि जनता ने क्या सोचा। उधर लखनऊ में अखिलेश का पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक रथ तैयार हो चुका है। इसी रथ के सहारे अखिलेश यादव अब चुनावों से पहले पूरे यूपी में कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन उनकी पिछली 2 बार की ये कोशिश असफल हो चुकी है।
1: अखिलेश यादव ने यूपी जीतने के लिए दोनों बार रथ यात्राओं का सहारा लिया। यही हाईटेक रथ 2017 में भी था जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे, और फिर 2022 के चुनावों से ठीक पहले उन्होंने विजय रथ यात्रा शुरू कर दी थी। कोशिश यही थी कि वो दोबारा यूपी जीत पाएंगे, लेकिन न 17 में सफल हुए न 22 में। अब 27 से पहले उनका रथ फिर से तैयार है। रंग वैसा ही है लाल, वैसा ही हाईटेक है रथनुमा। इस लग्जरी बस में सारी सुविधाएं हैं। बस नारे बदल गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जब अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी की यात्रा पर निकलेंगे तो क्या होगा। इसकी कुछ झलक आपको 5 साल पहले की इन तस्वीरों से दिखाते हैं। 2022 में यूपी में चुनाव होना था और उससे पहले ही नवंबर 2021 में अखिलेश यादव की कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। तब भी उनके चुनावी रथ को यूपी में समर्थन तो बहुत मिला था। जहां से गुजरते थे वहीं लोगों की भीड़ लग जाती थी। ऐसे ही रथ के ऊपर खड़े होकर वो हाथ हिलाते, लोगों के उपहार और फूल मालाएं स्वीकार करते थे, लेकिन नतीजा उनके फेवर में नहीं रहा। 2017 में उनके रथ पर नारा लिखा था समाजवादी विकास रथ, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद भी यूपी के लोगों ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया, चुनाव हार गए। 2022 में फिर रथ का नारा बदला गया, लिखा गया यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। लेकिन 5 साल के बाद भी यूपी वालों ने अखिलेश को जनादेश नहीं दिया, फिर से हार गए। अब 2027 की बारी है, रथ फिर तैयार है और रथ पर नया नारा चिपका दिया गया है। अब लिखा है समाजवादी पीडीए यात्रा। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम। अब नए रथ का नारा क्या अखिलेश की 10 साल के बाद वापसी कराएगा, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस बार अखिलेश यादव के रथ में क्या बदलाव हुआ है। अखिलेश के समाजवादी रथ वाली बस में बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाईं ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में स्लोगन लिखा है पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें लगी। दरअसल अखिलेश यादव को पीडीए के इस मुद्दे में बड़ा दम दिखता है। वो भले ही पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हों, मौका भांपते ही वो पी को पिछड़ा से पंडित भी करते हैं, लेकिन पीडीए का असली मतलब उनके चुनावी रथ पर ही लिखा है। पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इसमें कोई कंफ्यूजन न हो तो अल्पसंख्यक के बाद डैश लगाकर मुसलमान भी लिखा है।
11: ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं। आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं।
1: बीजेपी का तो पूरा प्रयास यही है कि पीडीए का ये नारा किसी भी तरह से ध्वस्त करना है। इसीलिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि पीडीए वो समीकरण है कि अगर वो चुनावों में चला तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव में पीडीए के चलने का मतलब है चुनाव जाति पर शिफ्ट हो गया, और बीजेपी चाहती है कि चुनाव जाति पर नहीं सनातन पर हो।
12: पीडीए को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
13: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
12: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
13: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है। सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
12: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
13: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
1: इसी समाजवादी रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल और रूट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन चमचमाती बस पहुंच चुकी है। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं। छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है। 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है। लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी की भी सुविधा है।
14: अक्टूबर के अंत में सूत्रों के मुताबिक ये रथ मैदान में उतरेगा और चुनावी कैंपेनिंग करेगा। अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद पीडीए इस बार 27 की सत्ता तक पहुंचाएगा। अब बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और इसे नई बोतल और पुरानी शराब करार दे रही है। यानी कि बीजेपी का कहना है कि कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं, बल्कि MY समीकरण की रीपैकेजिंग है। जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में B.R. अंबेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे, या बीजेपी की संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी, ये वक्त बताएगा।
1: यूपी में पहले चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए MY समीकरणों का हवाला दिया जाता था। M का मतलब मुसलमान और Y का मतलब यादव। अखिलेश ने इसी समीकरण को बड़ा कर दिया है। मायावती चुनावों में पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में वो लगभग सरेंडर के मोड में रही। इसीलिए अखिलेश यादव मायावती के दलित वोट को भी अपनी तरफ करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि पीडीए वही MY है।
15: समाजवादी पार्टी ने माल वही है, पैकेजिंग नहीं है। MY के समीकरण पर एक्सपोज हो चुके थे, सब उनके इस MY के समीकरण को समझते हैं। इसीलिए अब ये पीडीए के नाम पर नया सिगुफा लेकर आए हैं। वो जानते हैं कि पीडीए एक नई पैकेजिंग केवल है, इसीलिए रोज पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। लेकिन पीडीए के अंदर वही माल है जो पुराना इनका MY समीकरण है। लेकिन ये जाति मजहब के आधार पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो विकास के मुद्दे पर होगा, और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी फिर फेल होगी।
16: अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर ही 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी के अंदर बीजेपी को रोका है। बीजेपी 240 पर सिमटी तो इसके लिए यूपी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जहां अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बड़ी रिकॉर्ड सफलता पाई। 2024 में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गईं। एसपी के सहयोगी कांग्रेस की सीटें भी 2024 में 1 से बढ़कर 6 हो गईं। और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में 403 में से 224 विधानसभा सीटों पर आगे था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लगभग बराबर वोट मिले। बीजेपी को 3,83,00,000 और समाजवादी पार्टी को 3,81,00,000 वोट मिले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों और पिछड़ों के साथ दलितों के वोट भी हासिल किए थे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि 2027 से पहले वो एक बार फिर से 2024 जैसा माहौल खड़ा कर देंगे।
17: 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा की थी 2024 के पहले, मतलब लोगों को जगाना, उनके अधिकारों की उनकी बात करना और समाज का वो वर्ग जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उनकी बात करना, उनको बताना कि उनका अधिकार कितना है। वोट इनका, राज किसी और का, ये नहीं चल सकता है।
16: लेकिन बीजेपी के पास सनातन का वो हथियार है जो अगर चुनावों में चल गया तो फिर समाजवादी पार्टी के ये समीकरण किसी काम के नहीं रहेंगे। अखिलेश पीडीए पर टिके हैं तो बीजेपी भी सनातन और हिंदुत्व से हिल नहीं रही।
18: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी। और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। पावन कथाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करना, व्यापक रूप से आगे बढ़ाना।
16: संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: और अब एक चौंकाने वाली खबर, नोएडा के निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली के आत्महत्या की। जिस कोहली को कोर्ट से फांसी की सजा नहीं मिली, वो फांसी के फंदे से लटका मिला।
5: नोएडा के जिस निठारी कांड ने पूरे देश को चौंका दिया था, आज उसी निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। हरिद्वार में इस चाय की दुकान के अंदर सुरेंद्र कोहली का शव फंदे से लटका मिला। 3 दिन पहले ही सुरेंद्र कोहली ने यह दुकान ली थी। जब पुलिस ने शव की तलाशी दी तो आधार कार्ड से पता चला कि यह शव सुरेंद्र कोहली का है।
19: सुसाइड लग रहा है, बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है, पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाएगा, यह सब होगा। जानकारी
5: सुरेंद्र कोहली इससे पहले हरिद्वार में ही एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था, जिसके बाद उसने ये चाय की दुकान ली। सबसे बड़ी बात ये कि सुरेंद्र ने अपना नाम सदाराम बताया था। ऐसे में किसी को शक ही नहीं था कि ये नोएडा निठारी कांड वाला सुरेंद्र है।
19: अब सुबह आए यहाँ पे तो कहने लगे, यहाँ पे दीवान जी बैठे थे, यहाँ पे मैं नहीं जानता, चाय के लिए कहने लगे कि चाचा ने आज दुकान नहीं खोली चाय। तो मैंने आवाज मारी दूसरी बार शटर में, तो शटर का थोड़ा लोग ढीला था तो शटर अपना उठ गया, तो देखा तो फांसी लग पड़े थे।
20: सबसे पहले आप ही ने देखा?
19: हाँ, वहां पे उन्होंने देखा, सबने देखा, 2-3 बंदे थे यहाँ पे।
5: अब सवाल ये है कि अगर ये सुसाइड है तो आखिर सुरेंद्र ने सुसाइड क्यों किया? दुकान मालिक का कहना है कि वो बड़ी परेशानी की हालत में उसके पास आया था, जहां उसने बच्चे के जन्मदिन की बात कहकर 2,000 रुपए भी लिए थे।
19: डिप्रेशन में थे, किसका बर्थडे था कल, इनके किसी बच्चे का, तो उसमें कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो फोन पे बात करते, उनसे चिल्ला चपटी हो रही थी।
5: 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी इलाके में मनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से 8 बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इसके बाद घर के आसपास के नालों की तलाशी और खुदाई की गई, जिसमें कई और कंकाल मिले। इस मामले में मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। पंडेर को इनमें से 2 मामलों में सजा हुई, जबकि सुरेंद्र कोहली को निचली अदालत ने कुल 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन 2025 में कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। ये नोएडा के निठारी की वही D5 कोठी है जो अब सुनसान पड़ी हुई है। निठारी कांड के पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार सुरेंद्र की मौत के पीछे साजिश का शक जता रहे हैं।
3: ओनली ने सुसाइड नहीं किया, करना होता ना तो जेल में कर लेता, वो जेल में क्यों नहीं किया? अब छूट के आ गया था तो बता रहे, तुम्हें लोग बता रहे हो कि चाय की दुकान चलाता था। अब चाय की दुकान चलाता था तो कुछ तो कमाता होगा, बीवी बच्चों के साथ रहता था, यही मैं मारा होगा, पर ढेर के अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता इसमें।
21: इसने मतलब जो है, इन लोगों ने कुछ कहा होगा, कोई खुलासा वो करने वाला होगा, कोई खुलासा करने वाला होगा, या इसको कहा होगा इतना नहीं इतना देंगे तुम्हें, और वो नहीं तो वो कहा होगा हम बता देंगे।
5: बहरहाल सुरेंद्र कोहली की मौत से हर कोई हैरान है, और सवाल ये कि 19 साल जेल में रहने के दौरान जिस शख्स ने सुसाइड नहीं किया उसने जेल से बाहर आने के बाद अपनी जान क्यों ली? आज तक ब्यूरो।
0: अब एक हैरान और विचलित कर देने वाली खबर। हमारे देश के कई शहरों में आतंक का नाम बन चुका पिटबुल एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली के करीब सोनीपत में पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया।
5: तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपको हूबहू नहीं दिखा रहे। तस्वीरें देखिए, चीख पुकार मची है, लोग एक काले पिटबुल कुत्ते को डंडे से मार रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन पिटबुल बेकाबू है। स्क्रीन पर जो हिस्सा आपको ब्लर नजर आ रहा है, दरअसल उस हिस्से में 6 महीने का एक मासूम बच्चा है जिस पर पिटबुल लगातार झपट्टा मार रहा है। यह तस्वीर दिल्ली से सटे सोनीपत के सिक्का कॉलोनी की है। यहाँ 6 महीने के एक मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल का यह हमला तब हुआ जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी, तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। हमले में मासूम और उसकी बुआ घायल हुए हैं। गंभीर हालत में बच्चे का रोहतक PGI में इलाज चल रहा है।
22: पिटबुल ने उसको कितनी जगह से काटा?
23: उसका मुंह छील रखा है पूरा, जैसे उसने गली में उसको छिजोड़ा था ना, तो उसको काफी सारी चोट आई हुई है, पेट वगैरह पे, हाथ वगैरह पे, बहुत सारी जगह चोट आई है।
22: कभी पहले भी देखा गली में घूमता?
23: एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन बच्चा बच गया था, उनके बच्चे को काट रही थी वो उस दिन में, लेकिन उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं था।
5: सोनीपत में पिटबुल हमले के बाद प्रशासन जागा, मेयर और पुलिस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एक्शन का भरोसा दिया।
24: इस तरह के जो कुत्ते पालने वाले हैं लोग, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जो है सरकार की तरफ से किया गया, उसका भी अभियान चलाया जाएगा। और अगर जो है कोई व्यक्ति प्रतिबंधित जो है डॉग पालने का काम करता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
5: आए दिन पिटबुल के हमले की खबरें आती रहती हैं। सवाल कुत्ते के मालिक की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। प्रशासन का कहना है कि शिकायत के बाद एक्शन लिया जाएगा। पवन राठी, सोनीपत, आज तक।
0: फोन ने भले ही अपनी कीमत बढ़ा ली हो लेकिन उसका क्रेज कम नहीं हो रहा है। हमारे देश में नया आईफोन लॉन्च कर दिया गया, देर रात से ही स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें खरीदने के लिए लोगों की दिखी।
25: दुर्गा पूजा गिफ्ट फ्रॉम मी टू मी।
5: ये आईफोन की दीवानगी है। एप्पल का आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स भारतीय बाजार में जैसे ही आया, आईफोन के दीवाने दौड़ पड़े इसे अपना बनाने।
26: और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर।
27: That's it.
28: मैं देख रहा हूँ दो फोन आप लेके आए हैं।
26: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊँ।
5: 18 सितंबर से आधिकारिक तौर पर आईफोन 18 सीरीज के फोन भारत के बाजार में बिकने लगे। देश के चुनिंदा शहरों में ही अभी एप्पल के स्टोर हैं और ये फोन अभी सिर्फ एप्पल के आधिकारिक स्टोर पर ही उपलब्ध हैं। इसलिए आईफोन प्रेमियों ने पहले से ही अपनी बुकिंग कर रखी थी ताकि स्टोर पहुंचने पर आसानी से खरीदारी हो सके, लेकिन स्टोर के बाहर तो लंबी लाइनें लगी थी। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां साकेत में एप्पल का स्टोर है। देर रात से ही लोग स्टोर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे, इंतजार करने लगे सुबह के 8 बजने का, क्योंकि स्टोर में एंट्री सुबह 8 बजे ही शुरू होती है। जैसे ही लोगों ने स्टोर में प्रवेश किया तो तुरंत प्री बुकिंग के हिसाब से फोन को अपना बना लिया।
29: मैं दिल्ली रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। आईफोन 18 प्रो बरगंडी कलर, बढ़िया लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। आईफोन 18 लेके फीचर्स तो वही है, जैसे अगली जनरेशन आवे तो उसके हिसाब से, जैसे कैमरा वगैरह में भी मतलब एक बढ़िया क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का कैमरा, बढ़िया लग रहा है।
5: आईफोन प्रो की शुरुआती कीमत 1,64,000 रुपए है,
2: जो 3,14,000 तक आती है, तो वहीं प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,000 रुपए है, जो 3,29,000 तक जाती है। इस बार के आईफोन काफी महंगे हैं। कीमतों को लेकर लोग शिकायतें तो करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि खरीदना तो है ही। आज तक देरो।
0: अब खबर पहाड़ों पर अचानक बदले मौसम की। बीते सितंबर ही पहाड़ों पर मौसम बदलने लगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई।
16: चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है, पेड़ों पर कुदरत ने श्रृंगार किया है। सितंबर के दूसरे सप्ताह के साथ ही पहाड़ कुदरत के सफेद गहनों से सज गए हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर ले हाईवे पर जो जिला के जीरो पॉइंट की है। यहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के साथ ही सर्दियों ने दस्तक दे दी है।
4: कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से, और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
16: अब मनाली की तस्वीरें देखिए। मनाली के ऊपरी हिस्सों में देखिए कितना सुंदर नजारा है। यहाँ भी सीजन की पहली बर्फबारी ने मनाली को मोहक बना दिया है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही होटल व्यवसायियों की आंखों की चमक बढ़ गई है, क्योंकि होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है।
6: सब जगह पता लग गया है कि आज पहली बर्फबारी जो है वो सर्दियों की शुरुआत की आज से हो गई है, और इस बर्फबारी से जैसे ही बर्फबारी हुई और सवेरे खबरें फैली तो होटलों में बुकिंग आना शुरू हो गई है।
16: मनाली के पहाड़ों पर ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने चांदी लपेट दी। मौसम खुशगवार है, लेकिन यही मौसम कुछ लोगों के लिए काल बन गया। दरअसल पहाड़ पर एकाएक मौसम बदला, जिसकी वजह से लाहौल स्पीति में पवित्र ड्रिलभुरी कोरा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक मौसम बदलने और भारी बर्फबारी के बाद हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया की वजह से 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं एक श्रद्धालु के पैर की हड्डी टूटने से वह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए केलांग क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनाली के बाद कुल्लू की तस्वीरें देखिए। यहां भी आसमान से बर्फ बरसी है। रुई के फाहों जैसी बर्फ इस बर्फबारी ने पर्यटकों को प्रसन्न कर दिया है। अब उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें देखिए। यहां भी मौसम बदला है। बरसात के बाद हल्की बर्फबारी ने तापमान में गिरावट की है। रुद्रनाथ में हल्की बर्फबारी के साथ गिरे ओले। पहाड़ों पर बिछी सफेदी और बारिश के बीच बदलता मौसम। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब भी सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सफेद रंग में रंगा नजर आया। चारों तरफ बर्फ और उसके बीच नजर आता सफेद रंग में रंगा नजर आया। चारों तरफ बर्फ और उसके बीच नजर आता पवित्र धाम का खूबसूरत नजारा। कुल मिलाकर पहाड़ों पर सर्दियां दस्तक दे रही हैं। कुदरत अपना सबसे खूबसूरत रंग बिखेर रही।
0: साथ कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई। एक तरफ ट्रंप के लगातार बदलते बयान नए हमले की आशंका बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के अमेरिका जाने का रास्ता खुल गया है।
1: हुती लगातार सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। हुर्मुज में जहाजों पर मिसाइलें बरस रही हैं। ईरान लगातार अमेरिकी फौज के ठिकानों पर हमले के दावे कर रहा है। दूसरी तरफ सैन्य नीति के बाद कूटनीति के मोर्चे पर भी अब जंग तेज हो गई है, लेकिन ट्रंप के हर रोज बदलते बयानों ने हड़कंप मचा दिया है। 2 दिन पहले उन्होंने ईरान के साथ एक बार फिर डील की कोशिशें तेज होने जैसे बयान देकर ये संकेत दिए कि कुछ ही दिनों में जंग खत्म होने वाली है। अब वो साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला शुरू करने के फैसले के करीब है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस से बातचीत में ट्रंप ने कहा, मुझे एक बहुत बड़ा फैसला लेना है, क्या मैं अंदर जाकर उन्हें पूरी तरह खत्म कर दूं या नहीं। ये एक बड़ा फैसला है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ट्रंप का ये हाहाकारी बयान ऐसे वक्त पर आया है जब वो न्यूयॉर्क में यूएन महासभा के दौरान खाड़ी के 6 देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। ये मीटिंग अगले हफ्ते होनी है। हालांकि ट्रंप ने ये बताने से इनकार कर दिया है कि वो ईरान पर अगले चरण के हमले का फैसला नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले करेंगे या बाद में। दूसरी तरफ अमेरिका ने अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान के शीर्ष अधिकारियों को कई यात्रा प्रतिबंधों के साथ शामिल होने की इजाजत देने का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिकी वीजा पाने वालों में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची शामिल होंगे, जो अमेरिका में जाकर अपनी बात रख पाएंगे। यूएन के बहाने ही सही, अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से चल रहे युद्ध के मद्देनजर ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का अमेरिका जाना बेहद अहम माना जा रहा है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पंचायत आज तक बिहार में बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यूसीसी पर गठबंधन से बातचीत के बाद लेंगे निर्णय। बंगाल उपचुनाव में ट्विस्ट बे ट्विस्ट, पहले नंदीग्राम से ममता की उम्मीदवार ने नाम वापस लिया तो कांग्रेस का दावा, हमारी प्रत्याशी मिलन प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राहुल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोप पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस भस्मासुर, साथ आने वाले सभी दलों को जला देती। उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख का जेनजी को संदेश, बोले भारत के युवा पूरी दुनिया में न सिर्फ यशस्वी बल्कि सार्थक भी बने। और वायुसेना को HAL से मिला तेजस का ट्रेनर विमान, पवन हंस को 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर, बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद अब मुकाबले में ट्विस्ट आ गया, यहां जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। ममता बनर्जी से पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, जिसके बाद ममता जबरदस्त गुस्से में नजर आईं।
1: 2026 के बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी पर बगावत का ऐसा हथौड़ा पड़ा कि 18 साल की बुनियाद और 15 साल की हुकूमत की निशानी जोड़ा पूल फ्रीज हो गया।
2: But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic and totally political bias vendetta.
3: Hindu dharma ke ganda dharma bola, Mahakumbh ke mithu kumbh bola. আর রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম মন্দির মানি না বলে মিছিল করা, আছেন তো ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপেই সব ধ্বংস হয়ে গেছে।
1: সুবেদু অধিকারী কি খালি সিট নন্দীগ্রাম ও হুমায়ুন কবীর কি খালি সিট রেজিনগর পর 6 অক্টোবর কো উপচুনাব হ্যায়। পার্টি কে নাম ও চুনাব চিহ্ন মে খিঁচতান কো দেখতে হুয়ে আয়োগ নে দোনো দলো সে তিন তিন পসন্দিদা বিকল্প পুছে থে, উসি কে আধার পর মমতা ব্যানার্জি কে গুট কো মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস কা নাম ও ফুটবল খেলতা হুয়া খিলাড়ি নিশান মিলা, জবকি বাগি ধড়ে কো ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও লিফাফে কা নিশান দিয়া গিয়া। ইয়ে নাম ও নিশান 6 অক্টোবর কো হোনে ওয়ালে উপচুনাব কে লিয়ে লাগু রহেঙ্গে।
4: ইন্টারিম অর্ডার ইসসে সাবিত হে, জাহির হে कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
1: इस बीच नंदीग्राम उपचुनाव में नया ट्विस्ट आ गया, जहां ममता बनर्जी की उम्मीदवार संचिता प्रधान सुबेंदु अधिकारी से मिलने पहुंची और फिर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब नंदीग्राम में नामांकन की तारीख निकल गई है, ऐसे में अब ममता ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है।
2: इन्होंने क्या किया, हाईजैक किया है टोटल, इट वाज कंट्रोल फ्रॉम सम ऑफिस टू हाईजैक द ईवीएम मशीन। इवन
1: पश्चिम बंगाल में भले ही लड़ाई उपचुनाव की हो लेकिन घमासान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भी चुनाव से पहले जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पंजाब में नशे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार मान सरकार को घेर रहा है।
5: पंजाब की इन तीन तस्वीरों ने सियासत की नई स्क्रिप्ट शुरू कर दी है। एक ओर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नशा मुक्त यात्रा की शुरुआत की तो वहीं पूर्व मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमले की तस्वीर सामने आई। इस बीच ASI के मर्डर ने एक बार फिर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में नशा मुक्त यात्रा को हरी झंडी दिखाई तो नशे को लेकर मान सरकार पर जोरदार हमला किया।
6: मैं आज यहां के सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने केवल नारा गिरा था, आप लोगों ने केवल सत्ता की चाबी समझी थी, आपने कभी नशा का दर्द नहीं समझा। और जिस परिवारों ने अपने को खोया उनसे मिलने के बजाय, उनके पीड़ा को समझने के बजाय, उनको सुसाइड करने के लिए, उनको आत्महत्या करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं।
7: वो किस मुंह से बात कर रहे हैं नशे के खिलाफ, 2007 से लेकर 2017 के बीच जिस पार्टी ने पंजाब में नशे का कारोबार किया, जिसके मंत्री जिसके नेता नशे की तस्करी करवाते थे अपनी अपनी गाड़ियों में रखे, वो पार्टी आज कह रही है कि पंजाब को नशे से मुक्त कराना है। किस मुंह से कह रही है?
5: पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला हो गया। बिट्टू अमृतसर से पठानकोट यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उन पर टमाटर और अंडे फेंके गए।
8: कई चीजें केजरीवाल जैसे, आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। मैं पंजाब पुलिस को भी हमेशा बहुत अच्छी पुलिस समझता था।
5: वहीं मान सरकार के मंत्री पर हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली।
9: सर, उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने उनके ऊपर हमला किया है। सर,
5: अमृतसर में हमलावरों ने एक एएसआई को निशाना बनाया, जिसे बेहद करीब से गोली मारी गई और हमलावर वहां से फरार हो गए।
10: तकरीबन 12:30 बजे का इंसिडेंट सी, 9:30 बजे रात में और ड्यूटी लई ये ठकीवा थाने तो इतने दाना मंडी से दूर की गई सी। टू व्हीलर पे उन्होंने फॉलो किया गया है, क्लोज रेंज टी बोर का जरा पिस्टल हैगा वो यूज करके क्लोज रेंज से शूटिंग हुई है।
5: पंजाब में चुनाव से पहले नशा और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर विपक्ष मान सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। असीम बस्सी के साथ कमलजीत संधु, चंडीगढ़ आज तक।
0: खबर यूपी के पावर प्ले की। बस चुनावों में कुछ ही महीनों का समय है और तैयारियां दोनों ही खेमों में भरपूर। अखिलेश पीडीए के सहारे हैं तो बीजेपी सनातन के भरोसे। सवाल ये कि जनता ने क्या सोचा। उधर लखनऊ में अखिलेश का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रथ तैयार हो चुका है। इसी रथ के सहारे अखिलेश यादव अब चुनावों से पहले पूरे यूपी में कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन उनकी पिछली दो बार की ये कोशिश असफल हो चुकी है।
1: अखिलेश यादव ने यूपी जीतने के लिए दोनों बार रथ यात्राओं का सहारा लिया। यही हाईटेक रथ 2017 में भी था जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे, और फिर 2022 के चुनावों से ठीक पहले उन्होंने विजय रथ यात्रा शुरू कर दी थी। कोशिश यही थी कि वो दोबारा यूपी जीत पाएंगे, लेकिन न 17 में सफल हुए न 22 में। अब 27 से पहले उनका रथ फिर से तैयार है। रंग वैसा ही है लाल, वैसा ही हाईटेक है रथनुमा। इस लग्जरी बस में सारी सुविधाएं हैं। बस नारे बदल गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जब अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी की यात्रा पर निकलेंगे तो क्या होगा। इसकी कुछ झलक आपको 5 साल पहले की इन तस्वीरों से दिखाते हैं। 2022 में यूपी में चुनाव होना था और उससे पहले ही नवंबर 2021 में अखिलेश यादव की कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। तब भी उनके चुनावी रथ को यूपी में समर्थन तो बहुत मिला था। जहां से गुजरते थे वहीं लोगों की भीड़ लग जाती थी। ऐसे ही रथ के ऊपर खड़े होकर वो हाथ हिलाते, लोगों के उपहार और फूल मालाएं स्वीकार करते थे, लेकिन नतीजा उनके फेवर में नहीं रहा। 2017 में उनके रथ पर नारा लिखा था समाजवादी विकास रथ, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद भी यूपी के लोगों ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया, चुनाव हार गए। 2022 में फिर रथ का नारा बदला गया, लिखा गया यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। लेकिन 5 साल के बाद भी यूपी वालों ने अखिलेश को जनादेश नहीं दिया, फिर से हार गए। अब 2027 की बारी है, रथ फिर तैयार है और रथ पर नया नारा चिपका दिया गया है। अब लिखा है समाजवादी पीडीए यात्रा। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम। अब नए रथ का नारा क्या अखिलेश की 10 साल के बाद वापसी कराएगा, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस बार अखिलेश यादव के रथ में क्या बदलाव हुआ है। अखिलेश के समाजवादी रथ वाली बस में बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाईं ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में स्लोगन लिखा है पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा है। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पीडीए के इस मुद्दे में बड़ा दम दिखता है। वो भले ही पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हो, मौका भांपते ही वो पी को पिछड़ा से पंडित भी करते हैं, लेकिन पीडीए का असली मतलब उनके चुनावी रथ पर ही लिखा है, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इसमें कोई कंफ्यूजन न हो तो अल्पसंख्यक के बाद डैश लगाकर मुसलमान भी लिखा है।
11: ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं।

0: बीजेपी का तो पूरा प्रयास यही है कि पीडीए का ये नारा किसी भी तरह से ध्वस्त करना है। इसीलिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि पीडीए वो समीकरण है कि अगर वो चुनावों में चला तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव में पीडीए के चलने का मतलब है चुनाव जाति पर शिफ्ट हो गया, और बीजेपी चाहती है कि चुनाव जाति पर नहीं सनातन पर हो।
1: पीडीए को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
2: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
1: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
2: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है, सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
1: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
2: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
0: इसी समाजवादी रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल और रूट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन चमचमाती बस पहुंच चुकी है। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं। छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है। 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है। लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी की भी सुविधा है।
3: अक्टूबर के अंत में सूत्रों के मुताबिक ये रथ मैदान में उतरेगा और चुनावी कैंपेनिंग करेगा। अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद पीडीए इस बार 27 की सत्ता तक पहुंचाएगा। अब बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और इसे नई बोतल और पुरानी शराब करार दे रही है। यानी कि बीजेपी का कहना है कि कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं, बल्कि MY समीकरण की रीपैकेजिंग है। जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में B.R. अंबेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे, या बीजेपी कई संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी, ये वक्त बताएगा।
0: यूपी में पहले चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए MY समीकरणों का हवाला दिया जाता था। M का मतलब मुसलमान और Y का मतलब यादव। अखिलेश ने इसी समीकरण को बड़ा कर दिया है। मायावती चुनावों में पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में वो लगभग सरेंडर के मोड में रहीं। इसीलिए अखिलेश यादव मायावती के दलित वोट को भी अपनी तरफ करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि पीडीए वही MY है।
4: समाजवादी पार्टी ने माल वही है, पैकेजिंग नहीं है, MY के समीकरण पर एक्सपोज हो चुके थे। सब उनके इस MY के समीकरण को समझते हैं, इसीलिए अब ये पीडीए के नाम पर नया सिगुफा लेकर आए हैं। वो जानते हैं कि पीडीए एक नई पैकेजिंग केवल है, इसीलिए रोज पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। लेकिन पीडीए के अंदर वही माल है जो पुराना इनका MY समीकरण है। लेकिन ये जाति मजहब के आधार पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो विकास के मुद्दे पर होगा, और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी फिर फेल होगी।
0: अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर ही 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी के अंदर बीजेपी को रोका है। बीजेपी 240 पर सिमटी तो इसके लिए यूपी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जहां अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बड़ी रिकॉर्ड सफलता पाई। 2024 में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं, और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गईं। SP के सहयोगी कांग्रेस की सीटें भी 2024 में 1 से बढ़कर 6 हो गईं। और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में 403 में से 224 विधानसभा सीटों पर आगे था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लगभग बराबर वोट मिले। बीजेपी को 3,83,00,000 और समाजवादी पार्टी को 3,81,00,000 वोट मिले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमान

0: और पिछड़ों के साथ दलितों के वोट भी हासिल किए थे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि 2027 से पहले वो एक बार फिर से 2024 जैसा माहौल खड़ा कर देंगे।
1: 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा की थी 2024 के पहले, मतलब लोगों को जगाना, उनके अधिकारों की उनकी बात करना और समाज का वो वर्ग जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उनकी बात करना, उनको बताना कि उनका अधिकार कितना है। वोट इनका, राज किसी और का, ये नहीं चल सकता है।
0: लेकिन बीजेपी के पास सनातन का वो हथियार है जो अगर चुनावों में चल गया तो फिर समाजवादी पार्टी के ये समीकरण किसी काम के नहीं रहेंगे। अखिलेश पीडीए पर टिके हैं तो बीजेपी भी सनातन और हिंदुत्व से हिल नहीं रही।
2: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी। और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। पावन कथाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करना, व्यापक रूप से आगे बढ़ाना।
0: संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: और अब एक चौंकाने वाली खबर, नोएडा के निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली के आत्महत्या की। जिस कोहली को कोर्ट से फांसी की सजा नहीं मिली वो फांसी के फंदे से लटका मिला।
4: नोएडा के जिस निठारी कांड ने पूरे देश को चौंका दिया था, आज उसी निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। हरिद्वार में इस चाय की दुकान के अंदर सुरेंद्र कोहली का शव फंदे से लटका मिला। 3 दिन पहले ही सुरेंद्र कोहली ने यह दुकान ली थी। जब पुलिस ने शव की तलाशी दी तो आधार कार्ड से पता चला कि यह शव सुरेंद्र कोहली का है।
5: प्रथम दृष्टया सुसाइड लग रहा है, बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है, पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाएगा, यह सब होगा और जानकारी दी जाएगी।
4: सुरेंद्र कोहली इससे पहले हरिद्वार में ही एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था, जिसके बाद उसने ये चाय की दुकान ली। सबसे बड़ी बात ये कि सुरेंद्र ने अपना नाम सदाराम बताया था। ऐसे में किसी को शक ही नहीं था कि ये नोएडा निठारी कांड वाला सुरेंद्र है।
6: सुबह आए यहाँ पे तो कहने लगे यहाँ पे तो दीवान जी बैठे थे यहाँ पे, मैं नहीं जानता हूँ, चाय के लिए कहने लगे कि चाचा ने आज दुकान नहीं खोली चाय। तो मैंने आवाज मारी दूसरी बार शटर में, तो शटर का थोड़ा लोग ढीला था तो शटर अपना उठ गया, तो देखा तो फांसी लटक पड़े थे।
7: सबसे पहले आप ही ने देखा उनको?
6: हाँ, वहाँ पे उन्होंने देखा, सबने देखा, 2-3 बंदे थे यहाँ पे।
4: अब सवाल यह है कि अगर ये सुसाइड है तो आखिर सुरेंद्र ने सुसाइड क्यों किया? दुकान मालिक का कहना है कि वो बड़ी परेशानी की हालत में उसके पास आया था, जहां उसने बच्चे के जन्मदिन की बात कहकर 2,000 रुपए भी लिए थे।
6: डिप्रेशन में थे, किसका बर्थडे था कल, इनके किसी बच्चे बच्चे का, तो उसमें कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है तो फोन पे बात करते, उनसे चिल्ला चप्पी उड़ गई।
4: 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी इलाके में मनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से 8 बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इसके बाद घर के आसपास के नालों की तलाशी और खुदाई की गई, जिसमें कई और कंकाल मिले। इस मामले में मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। पंडेर को इनमें से 2 मामलों में सजा हुई, जबकि सुरेंद्र कोहली को निचली अदालत ने कुल 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन 2025 में कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। ये नोएडा के निठारी की वही D5 कोठी है जो अब सुनसान पड़ी हुई है। निठारी कांड के पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार सुरेंद्र की मौत के पीछे साजिश का शक जता रहे हैं।
8: कोहली ने सुसाइड नहीं किया, करना होता ना तो जेल में कर लेता, वो जेल में क्यों नहीं किया? अब छूट के आ गया था तो बता रहे, तुम्हें लोग बता रहे हो कि चाय की दुकान चलाता था। अब चाय की दुकान चलाता था तो कुछ तो कमाता होगा, अभी भी बच्चों के साथ रहता था, मैं मारा होगा। पंडेर के अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता इसमें।
9: इसमें मतलब जो है लोगों ने कुछ कहा होगा, कोई खुलासा वो करने वाला होगा, कोई खुलासा करने वाला होगा, या इसको कहा होगा इतना नहीं इतना देंगे तुम्हें, और वो नहीं तो वो कहा होगा हम बता देंगे।
4: बहरहाल सुरेंद्र कोहली की मौत से हर कोई हैरान है, और सवाल ये कि 19 साल जेल में रहने के दौरान जिस शख्स ने सुसाइड नहीं किया उसने जेल से बाहर आने के बाद अपनी जान क्यों ली? आज तक ब्यूरो।
3: अब एक हैरान और विचलित कर देने वाली खबर। हमारे देश के कई शहरों में आतंक का नाम बन चुका पिटबुल एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली के करीब सोनीपत में पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया।
4: तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपको हूबहू नहीं दिखा रहे। तस्वीरें देखिए, चीख पुकार मची है। लोग एक काले पिटबुल कुत्ते को डंडे से मार रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन पिटबुल बेकाबू है। स्क्रीन पर जो हिस्सा आपको ब्लर नजर आ रहा है, दरअसल उस हिस्से में 6 महीने का एक मासूम बच्चा है जिस पर पिटबुल लगातार झपट्टा मार रहा है। यह तस्वीर दिल्ली से सटे सोनीपत के सिक्का कॉलोनी की है। यहाँ 6 महीने के एक मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल का यह हमला तब हुआ जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी। तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। हमले में मासूम और उसकी बुआ घायल हुए हैं। गंभीर हालत में बच्चे का रोहतक PGI में इलाज चल रहा है।
10: पिटबुल ने उसको कितनी जगह से काटा?
11: उसका मुंह छील रखा है पूरा। जैसे उसने गली में उसको छिजोड़ा था ना, तो उसको काफी सारी चोट आई हुई है, पेट वगैरह पे, हाथ वगैरह पे, बहुत सारी जगह चोट आई है।
10: कभी पहले भी देखा गली में घूमता?
11: एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन बच्चा बच गया था। उनके बच्चे को काट रही थी वो उस दिन में, लेकिन उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं था।
4: सोनीपत में पिटबुल हमले के बाद प्रशासन जागा। मेयर और पुलिस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एक्शन का भरोसा दिया।
12: इस तरह के जो कुत्ते पालने वाले हैं लोग, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जो है सरकार की तरफ से किया गया, उसका भी अभियान चलाया जाएगा। और अगर जो है कोई व्यक्ति प्रतिबंधित जो है डॉग पालने का काम करता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
4: आए दिन पिटबुल के हमले की खबरें आती रहती हैं। सवाल कुत्ते के मालिक की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। प्रशासन का कहना है कि शिकायत के बाद एक्शन लिया जाएगा। पवन राठी, सोनीपत आज तक।
3: फोन ने भले ही अपनी कीमत बढ़ा ली हो, लेकिन उसका क्रेज कम नहीं हो रहा है। हमारे देश में नया आईफोन लॉन्च कर दिया गया। देर रात से ही स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें खरीदने के लिए लोगों की दिखी।
13: दुर्गा पूजा गिफ्ट फ्रॉम मी टू मी।
14: ये आईफोन की दीवानगी है। एप्पल का आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स भारतीय बाजार में जैसे ही आया, आईफोन के दीवाने दौड़ पड़े इसे अपना बनाने।
15: और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर।
16: That's it. मैं देख रहा हूँ दो फोन आप लेके आए हैं।
15: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊँगा।
14: 18 सितंबर से आधिकारिक तौर पर आईफोन 18 सीरीज के फोन भारत के बाजार में बिकने लगे। देश के चुनिंदा शहरों में ही अभी एप्पल के स्टोर हैं और ये फोन अभी सिर्फ एप्पल के आधिकारिक स्टोर पर ही उपलब्ध हैं। इसलिए आईफोन प्रेमियों ने पहले से ही अपनी बुकिंग कर रखी थी ताकि स्टोर पहुंचने पर आसानी से खरीदारी हो सके, लेकिन स्टोर के बाहर तो लंबी लाइनें लगी थी। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां साकेत में एप्पल का स्टोर है। देर रात से ही लोग स्टोर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे, इंतजार करने लगे सुबह के 8 बजने का, क्योंकि स्टोर में एंट्री सुबह 8 बजे ही शुरू होती है। जैसे ही लोगों ने स्टोर में प्रवेश किया तो तुरंत प्री बुकिंग के हिसाब से फोन को अपना बना लिया।
17: मैं दिल्ली रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। आईफोन 18 प्रो बरगंडी कलर, बढ़िया लग रहा है। अच्छा फील हो रहा है आईफोन 18 लेके। फीचर्स तो वही है, जैसे अगली जनरेशन आ है तो उसके हिसाब से, जैसे कैमरा वगैरह में भी मतलब एक बढ़िया क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का कैमरा, बढ़िया लग गया।
14: आईफोन प्रो की शुरुआती कीमत 1,64,000 रुपए है, जो 3,14,000 तक आती है। तो वही प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,000 रुपए है, जो 3,29,000 तक जाती है। इस बार के आईफोन काफी महंगे हैं। कीमतों को लेकर लोग शिकायतें तो करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि खरीदना तो है ही। आज तक देरो।
3: अब खबर पहाड़ों पर अचानक बदले मौसम की। बीते सितंबर ही पहाड़ों पर मौसम बदलने लगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई।
4: चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है। पेड़ों पर कुदरत ने श्रृंगार किया है। सितंबर के दूसरे सप्ताह के साथ ही पहाड़ कुदरत के सफेद गहनों से सज गए हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर ले हाईवे पर जो जिला के जीरो पॉइंट की हैं। यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के साथ ही सर्दियों ने दस्तक दे दी है।
18: कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
4: अब मनाली की तस्वीरें देखिए, मनाली के ऊपरी हिस्सों में देखिए कितना सुंदर नजारा है। यहाँ भी सीजन की पहली बर्फबारी ने मनाली को मोहक बना दिया है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही होटल व्यवसायियों की आंखों की चमक बढ़ गई है क्योंकि होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है।
19: सब जगह पता लग गया है कि आज पहली बर्फबारी जो है वो सर्दियों की शुरुआत की आज से हो गई है और इस बर्फबारी से जैसे ही बर्फबारी हुई और सवेरे खबरें फैली तो होटलों में बुकिंग आना शुरू हो गई है।
4: मनाली के पहाड़ों पर ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने चांदी लपेट दी। मौसम खुशगवार है लेकिन यही मौसम कुछ लोगों के लिए काल बन गया है। दरअसल पहाड़ पर एकाएक मौसम बदला जिसकी वजह से लाहौल स्पीति में पवित्र ड्रिलभुरी कोरा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक मौसम बदलने और भारी बर्फबारी के बाद हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया की वजह से दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं एक श्रद्धालु के पैर की हड्डी टूटने से वह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए केलांग क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनाली के बाद कुल्लू की तस्वीरें देखिए, यहां भी आसमान से बर्फ बरसी है। रुई के फाहों जैसी बर्फ इस बर्फबारी ने पर्यटकों को प्रसन्न कर दिया है। अब उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें देखिए, यहां भी मौसम बदला है। बरसात के बाद हल्की बर्फबारी ने तापमान में गिरावट की है। रुद्रनाथ में हल्की बर्फबारी के साथ गिरे ओले, पहाड़ों पर बिछी सफेदी और बारिश के बीच बदलता मौसम। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब भी सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सफेद रंग में रंगा नजर आया। चारों तरफ बर्फ और उसके बीच नजर आता पवित्र धाम का खूबसूरत नजारा। कुल मिलाकर पहाड़ों पर सर्दियां दस्तक दे रही हैं। कुदरत अपना सबसे खूबसूरत रंग बिखेर रही है। आज तक ब्यूरो।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

पंचायत आज तक बिहार में बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यूसीसी पर गठबंधन से बातचीत के बाद लेंगे निर्णय। बंगाल उपचुनाव में ट्विस्ट बे ट्विस्ट, पहले नंदीग्राम से ममता की उम्मीदवार ने नाम वापस लिया तो कांग्रेस का दावा, हमारी प्रत्याशी मिलन प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राहुल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोप पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस भस्मासुर, साथ आने वाले सभी दलों को जला देती। उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख का जेनजी को संदेश, बोले भारत के युवा पूरी दुनिया में न सिर्फ यशस्वी बल्कि सार्थक भी बने। और वायुसेना को HAL से मिला तेजस का ट्रेनर विमान, पवन हंस को 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर, बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल।

0: नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद अब मुकाबले में ट्विस्ट आ गया। यहां जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। ममता बनर्जी से पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, जिसके बाद ममता जबरदस्त गुस्से में नजर आईं।
1: 2026 के बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी पर बगावत का ऐसा हथौड़ा पड़ा कि 18 साल की बुनियाद और 15 साल की हुकूमत की निशानी जोड़ा पुल फ्रीज हो गया।
2: But until today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic and totally political bias vendetta.
3: Hindu dharma ke ganda dharma bola, Mahakumbh ke Vishnu Kumbh bola. রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম মন্দির মানি না বলে মিছিল করা, আছেন তো ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপেই সব ধ্বংস হয়ে গেছে।
1: সুবেদু অধিকারী কি খালি সিট নন্দীগ্রাম ও হুমায়ুন কবীর কি খালি সিট রেজিনগর পর 6 অক্টোবর কো উপচুনাব হ্যায়। পার্টি কে নাম ও চুনাব চিহ্ন মে খিঁচতান কো দেখতে হুয়ে আয়োগ নে দোনো দলো সে তিন তিন পসন্দিদা বিকল্প পুছে থে। উসি কে আধার পর মমতা ব্যানার্জি কে গুট কো মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস কা নাম ও ফুটবল খেলতা হুয়া খিলাড়ি নিশান মিলা, জবকি বাগি ধড়ে কো ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও লিফাফে কা নিশান দিয়া গিয়া। ইয়ে নাম ও নিশান 6 অক্টোবর কো হোনে ওয়ালে উপচুনাব কে লিয়ে লাগু রহেঙ্গে।
4: ইন্টারিম অর্ডার ইসসে সাবিত হে, জাহির হে कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
1: इस बीच नंदीग्राम उपचुनाव में नया ट्विस्ट आ गया, जहां ममता बनर्जी की उम्मीदवार संचिता प्रधान सुबेंदु अधिकारी से मिलने पहुंची और फिर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब नंदीग्राम में नामांकन की तारीख निकल गई है। ऐसे में अब ममता ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है।
2: इन्होंने क्या किया, हाईजैक किया है टोटल। इट वॉज कंट्रोल फ्रॉम सम ऑफिस टू हाईजैक द ईवीएम मशीन। इवन
1: पश्चिम बंगाल में भले ही लड़ाई उपचुनाव की हो, लेकिन घमासान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भी चुनाव से पहले जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पंजाब में नशे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की, तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार मान सरकार को घेर रहा है।
5: पंजाब की इन तीन तस्वीरों ने सियासत की नई स्क्रिप्ट शुरू कर दी है। एक ओर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नशा मुक्त यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं पूर्व मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमले की तस्वीर सामने आई। इस बीच एएसआई के मर्डर ने एक बार फिर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में नशा मुक्त यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो नशे को लेकर मान सरकार पर जोरदार हमला किया।
6: मैं आज यहां के सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने केवल नारा गिरा था, आप लोगों ने केवल सत्ता की चाबी समझी थी, आपने कभी नशा का दर्द नहीं समझा। और जिस परिवारों ने अपने को खोया, उनसे मिलने के बजाय, उनके पीड़ा को समझने के बजाय, उनको सुसाइड करने के लिए, उनको आत्महत्या करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं।
7: वो किस मुंह से बात कर रहे हैं नशे के खिलाफ? 2007 से लेकर 2017 के बीच जिस पार्टी ने पंजाब में नशे का कारोबार किया, जिसके मंत्री जिसके नेता नशे की तस्करी करवाते थे अपनी अपनी गाड़ियों में रखे, वो पार्टी आज कह रही है कि पंजाब को नशे से मुक्त कराना है, किस मुंह से कह रही है?
5: पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला हो गया। बिट्टू अमृतसर से पठानकोट यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जा रास्ते में हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उन पर टमाटर और अंडे फेंके गए।
8: कई चीजें केजरीवाल जैसे, आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। मैं पंजाब पुलिस को भी हमेशा बहुत अच्छी पुलिस समझता था।
5: वहीं मान सरकार के मंत्री पर हमले को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने चुप्पी साध ली।
9: मैं सर उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने उनके ऊपर हमला किया है सर।
5: अमृतसर में हमलावरों ने एक एएसआई को निशाना बनाया जिसे बेहद करीब से गोली मारी गई और हमलावर वहां से फरार हो गए।
10: तकरीबन 12:30 बजे का इंसिडेंट सी 9:30 बजे रात में और ड्यूटी लई ये ठकीवा थाने तो इतने दाना मंडी से दूर की गई सी ये टू व्हीलर पे उन्हें फॉलो किया गया है। क्लोज रेंज 30 बोर का जड़ा पिस्टल हैगा वो यूज करके क्लोज रेंज से शूटिंग हुई है।
5: पंजाब में चुनाव से पहले नशा और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिस पर विपक्ष मान सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। असीम बस्सी के साथ कमलजीत संधु, चंडीगढ़ आज तक।
0: खबर यूपी के पावर प्ले की। बस चुनावों में कुछ ही महीनों का समय है और तैयारियां दोनों ही खेमों में भरपूर। अखिलेश पीडीए के सहारे हैं तो बीजेपी सनातन के भरोसे। सवाल ये कि जनता ने क्या सोचा। उधर लखनऊ में अखिलेश का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रथ तैयार हो चुका है। इसी रथ के सहारे अखिलेश यादव अब चुनावों से पहले पूरे यूपी में कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन उनकी पिछली 2 बार की ये कोशिश असफल हो चुकी है।
11: अखिलेश यादव ने यूपी जीतने के लिए दोनों बार रथ यात्राओं का सहारा लिया। यही हाईटेक रथ 2017 में भी था जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे, और फिर 2022 के चुनावों से ठीक पहले उन्होंने विजय रथ यात्रा शुरू कर दी थी। कोशिश यही थी कि वो दोबारा यूपी जीत पाएंगे, लेकिन न 17 में सफल हुए न 22 में। अब 27 से पहले उनका रथ फिर से तैयार है। रंग वैसा ही है लाल, वैसा ही हाईटेक है। रथनुमा इस लग्जरी बस में सारी सुविधाएं हैं। बस नारे बदल गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जब अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी की यात्रा पर निकलेंगे तो क्या होगा। इसकी कुछ झलक आपको 5 साल पहले की इन तस्वीरों से दिखाते हैं। 2022 में यूपी में चुनाव होना था और उससे पहले ही नवंबर 2021 में अखिलेश यादव की कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। तब भी उनके चुनावी रथ को यूपी में समर्थन तो बहुत मिला था। जहां से गुजरते थे वहीं लोगों की भीड़ लग जाती थी। ऐसे ही रथ के ऊपर खड़े होकर वो हाथ हिलाते, लोगों के उपहार और फूल मालाएं स्वीकार करते थे, लेकिन नतीजा उनके फेवर में नहीं रहा। 2017 में उनके रथ पर नारा लिखा था समाजवादी विकास रथ, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद भी यूपी के लोगों ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया, चुनाव हार गए। 2022 में फिर रथ का नारा बदला गया, लिखा गया यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। लेकिन 5 साल के बाद भी यूपी वालों ने अखिलेश को जनादेश नहीं दिया, फिर से हार गए। अब 2027 की बारी है, रथ फिर तैयार है और रथ पर नया नारा चिपका दिया गया है। अब लिखा है समाजवादी पीडीए यात्रा। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम। अब नए रथ का नारा क्या अखिलेश की 10 साल के बाद वापसी कराएगा, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस बार अखिलेश यादव के रथ में क्या बदलाव हुआ है। अखिलेश के समाजवादी रथ वाली बस में बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाईं ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में स्लोगन लिखा है पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा है। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पीडीए के इस मुद्दे में बड़ा दम दिखता है। वो भले ही पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हो, मौका भांपते ही वो पी को पिछड़ा से पंडित भी करते हैं, लेकिन पीडीए का असली मतलब उनके चुनावी रथ पर ही लिखा है पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इसमें कोई कंफ्यूजन न हो तो अल्पसंख्यक के बाद डैश लगाकर मुसलमान भी लिखा है।
12: ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं। आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं।
11: बीजेपी का तो पूरा प्रयास यही है कि पीडीए का ये नारा किसी भी तरह से ध्वस्त करना है। इसीलिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि पीडीए वो समीकरण है कि अगर वो चुनावों में चला तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव में पीडीए के चलने का मतलब है चुनाव जाति पर शिफ्ट हो गया, और बीजेपी चाहती है कि चुनाव जाति पर नहीं सनातन पर हो।
13: पीडीए को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
14: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
13: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
14: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है, सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
13: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
14: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
11: इसी समाजवादी रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल और रूट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन चमचमाती बस पहुंच चुकी है। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं। छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है। 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है। लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी की भी सुविधा है।
15: अक्टूबर के अंत में सूत्रों के मुताबिक ये रथ मैदान में उतरेगा और चुनावी कैंपेनिंग करेगा। अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद पीडीए इस बार 27 की सत्ता तक पहुंचाएगा। अब बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और इसे नई बोतल और पुरानी शराब करार दे रही है। यानी कि बीजेपी का कहना है कि कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं बल्कि MY समीकरण की रीपैकेजिंग है। जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में B.R. अंबेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे या बीजेपी कई संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी, ये वक्त बताएगा।
11: यूपी में पहले चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए MY समीकरणों का हवाला दिया जाता था। M का मतलब मुसलमान और Y का मतलब यादव। अखिलेश ने इसी समीकरण को बड़ा कर दिया है। मायावती चुनावों में पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में वो लगभग सरेंडर के मोड में रही, इसीलिए अखिलेश यादव मायावती के दलित वोट को भी अपनी तरफ करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि पीडीए वही MY है।
16: समाजवादी पार्टी ने माल वही है, पैकेजिंग नई है, MY के समीकरण पर एक्सपोज हो चुके थे। सब उनके इस MY के समीकरण को समझते हैं, इसीलिए अब ये पीडीए के नाम पर नया सिगुफा लेकर आए हैं। वो जानते हैं कि पीडीए एक नई पैकेजिंग केवल है, इसीलिए रोज पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। लेकिन पीडीए के अंदर वही माल है जो पुराना इनका MY समीकरण है। लेकिन ये जाति मजहब के आधार पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो विकास के मुद्दे पर होगा और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी फिर फेल होगी।
11: अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर ही 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी के अंदर बीजेपी को रोका है। बीजेपी 240 पर सिमटी तो इसके लिए यूपी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जहां अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बड़ी रिकॉर्ड सफलता पाई। 2024 में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गईं। SP के सहयोगी कांग्रेस की सीटें भी 2024 में 1 से बढ़कर 6 हो गईं। और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में 403 में से 224 विधानसभा सीटों पर आगे था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लगभग बराबर वोट मिले। बीजेपी को 3,83,00,000 और समाजवादी पार्टी को 3,81,00,000 वोट मिले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों और पिछड़ों के साथ दलितों के वोट भी हासिल किए थे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि 2027 से पहले वो एक बार फिर से 2024 जैसा माहौल खड़ा कर दे।
17: 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा की थी 2024 के पहले, मतलब लोगों को जगाना, उनके अधिकारों की उनकी बात करना, और समाज का वो वर्ग जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उनकी बात करना, उनको बताना कि उनका अधिकार कितना है, वोट इनका राज किसी और का ये नहीं चल सकता है।
11: लेकिन बीजेपी के पास सनातन का वो हथियार है जो अगर चुनावों में चल गया तो फिर समाजवादी पार्टी के ये समीकरण किसी काम के नहीं रहेंगे। अखिलेश पीडीए पर टिके हैं तो बीजेपी भी सनातन और हिंदुत्व से हिल नहीं रही।
18: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। पावन कथाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करना, व्यापक रूप से आगे बढ़ाना।
11: संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: और अब एक चौंकाने वाली खबर, नोएडा के निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली के आत्महत्या की। जिस कोहली को कोर्ट से फांसी की सजा नहीं मिली वो फांसी के फंदे से लटका मिला।
5: नोएडा के जिस निठारी कांड ने पूरे देश को चौंका दिया था, आज उसी निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। हरिद्वार में इस चाय की दुकान के अंदर सुरेंद्र कोहली का शव फंदे से लटका मिला। 3 दिन पहले ही सुरेंद्र कोहली ने यह दुकान ली थी। जब पुलिस ने शव की तलाशी दी तो आधार कार्ड से पता चला कि यह शव सुरेंद्र कोहली का है।
19: प्रथम दृष्टि सुसाइड लग रहा है, बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है, पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाएगा, यह सब होगा अभी जानकारी दी गई।
5: सुरेंद्र कोहली इससे पहले हरिद्वार में एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था, जिसके बाद उसने ये चाय की दुकान ली। सबसे बड़ी बात ये कि सुरेंद्र ने अपना नाम सदाराम बताया था। ऐसे में किसी को शक ही नहीं था कि ये नोएडा निठारी कांड वाला सुरेंद्र है।
20: अब सुबह आए यहाँ पे तो कहने लगे यहाँ पे तो दीवान जी बैठे थे यहाँ पे, मैं नहीं जानता हूँ, चाय के लिए कहने लगे कि चाचा ने आज दुकान नहीं खोली चाय। तो मैंने आवाज मारी दूसरी बार शटर में, तो शटर का थोड़ा लोग ढीला था तो शटर अपना उठ गया, तो देखा तो फांसी लग पड़े थे।
21: सबसे पहले आप ही ने देखा उनको?
20: हाँ, वहां पे उन्होंने देखा, सबने देखा, 2-3 बंदे थे यहाँ पे।
5: अब सवाल ये है कि अगर ये सुसाइड है तो आखिर सुरेंद्र ने सुसाइड क्यों किया? दुकान मालिक का कहना है कि वो बड़ी परेशानी की हालत में उसके पास आया था, जहां उसने बच्चे के जन्मदिन की बात कहकर 2,000 रुपए भी लिए थे।
20: डिप्रेशन में थे, किसका बर्थडे था कल, इनके किसी बच्चे बच्चे का, तो उसमें कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो फोन पे बात करते, उनसे चिल्ला चप्पी उड़ गई।
5: 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी इलाके में मनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से 8 बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इसके बाद घर के आसपास के नालों की तलाशी और खुदाई की गई, जिसमें कई और कंकाल मिले। इस मामले में मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। पंडेर को इनमें से 2 मामलों में सजा हुई, जबकि सुरेंद्र कोहली को निचली अदालत ने कुल 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन 2025 में कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। ये नोएडा के निठारी की वही D5 कोठी है जो अब सुनसान पड़ी हुई है। निठारी कांड के पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार सुरेंद्र की मौत के पीछे साजिश का शक जता रहे हैं।
22: कोहली ने सुसाइड नहीं किया, करना होता ना तो जेल में कर लेता, वो जेल में क्यों नहीं किया? अब छूट के आ गया था, तो बता रहे हो तुम्हें लोग बता रहे हो कि चाय की दुकान चलाता था। अब चाय की दुकान चलाता था तो कुछ तो कमाता होगा, बीवी बच्चों के साथ रहता था, यही मैं मारा होगा, पर ढेर के अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता इसमें।
23: इसमें मतलब जो है लोगों ने कुछ कहा होगा, कोई खुलासा वो करने वाला होगा, कोई खुलासा करने वाला होगा, या इसको कहा होगा इतना नहीं इतना देंगे तुम्हें, और वो नहीं तो वो कहा होगा हम बता देंगे।
5: बहरहाल सुरेंद्र कोहली की मौत से हर कोई हैरान है, और सवाल ये कि 19 साल जेल में रहने के दौरान जिस शख्स ने सुसाइड नहीं किया उसने जेल से बाहर आने के बाद अपनी जान क्यों ली? आज तक ब्यूरो।
0: अब एक हैरान और विचलित कर देने वाली खबर, हमारे देश के कई शहरों में आतंक का नाम बन चुका पिटबुल एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली के करीब सोनीपत में पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया।
5: तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपको हूबहू नहीं दिखा रहे। तस्वीरें देखिए, चीख पुकार मची है, लोग एक काले पिटबुल कुत्ते को डंडे से मार रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन पिटबुल बेकाबू है। स्क्रीन पर जो हिस्सा आपको ब्लर नजर आ रहा है, दरअसल उस हिस्से में 6 महीने का एक मासूम बच्चा है जिस पर पिटबुल लगातार झपट्टा मार रहा है। यह तस्वीर दिल्ली से सटे सोनीपत के सिक्का कॉलोनी की है। यहाँ 6 महीने के एक मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल का यह हमला तब हुआ जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी। तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। हमले में मासूम और उसकी बुआ घायल हुए हैं। गंभीर हालत में बच्चे का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है।
1: पिटबुल ने उसको कितनी जगह से काटा?
2: उसका मुंह छील रखा है पूरा। जैसे उसने गली में उसको छिजोड़ा था ना, तो उसको काफी सारी चोट आई हुई है, पेट वगैरह पे, हाथ वगैरह पे, बहुत सारी जगह चोट आई है।
1: कभी पहले भी देखा गली में घूमता?
2: एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन बच्चा बच गया था। उनके बच्चे को काट रही थी वो उस दिन में, लेकिन उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं था।
5: सोनीपत में पिटबुल हमले के बाद प्रशासन जागा। मेयर और पुलिस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एक्शन का भरोसा दिया।
3: इस तरह के जो कुत्ते पालने वाले हैं लोग, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जो है सरकार की तरफ से किया गया, उसका भी अभियान चलाया जाएगा। और अगर जो है कोई व्यक्ति प्रतिबंधित जो है डॉग पालने का काम करता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
5: आए दिन पिटबुल के हमले की खबरें आती रहती हैं। सवाल कुत्ते के मालिक की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। प्रशासन का कहना है कि शिकायत के बाद एक्शन लिया जाएगा। पवन राठी, सोनीपत आज तक।
0: फोन ने भले ही अपनी कीमत बढ़ा ली हो, लेकिन उसका क्रेज कम नहीं हो रहा है। हमारे देश में नया आईफोन लॉन्च कर दिया गया। देर रात से ही स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें खरीदने के लिए लोगों की दिखी।
4: दुर्गा पूजा गिफ्ट फ्रॉम मी टू मी।
5: ये आईफोन की दीवानगी है। एप्पल का आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स भारतीय बाजार में जैसे ही आया, आईफोन के दीवाने दौड़ पड़े इसे अपना बनाने।
24: और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर। That's it.
25: मैं देख रहा हूँ दो फोन आप लेके आए हैं।
24: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊँ।
5: 18 सितंबर से आधिकारिक तौर पर आईफोन 18 सीरीज के फोन भारत के बाजार में बिकने लगे। देश के चुनिंदा शहरों में ही अभी एप्पल के स्टोर हैं और ये फोन अभी सिर्फ एप्पल के आधिकारिक स्टोर पर ही उपलब्ध हैं। इसलिए आईफोन प्रेमियों ने पहले से ही अपनी बुकिंग कर रखी थी ताकि स्टोर पहुंचने पर आसानी से खरीदारी हो सके, लेकिन स्टोर के बाहर तो लंबी लाइनें लगी थी। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां साकेत में एप्पल का स्टोर है। देर रात से ही लोग स्टोर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे, इंतजार करने लगे सुबह के 8 बजने का, क्योंकि स्टोर में एंट्री सुबह 8 बजे ही शुरू होती है। जैसे ही लोगों ने स्टोर में प्रवेश किया तो तुरंत प्री बुकिंग के हिसाब से फोन को अपना बना लिया।
26: मैं दिल्ली रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। आईफोन 18 प्रो बरगंडी कलर, बढ़िया लग रहा है। अच्छा फील हो रहा है आईफोन 18 लेके। फीचर्स तो वही है, जैसे अगली जनरेशन आवे तो उसके हिसाब से, जैसे कैमरा वगैरह में भी मतलब एक बढ़िया क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का कैमरा बढ़िया लग गया।
5: आईफोन प्रो की शुरुआती कीमत 1,64,000 रुपए है, जो 3,14,000 तक आती है, तो वहीं प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,000 रुपए है, जो 3,29,000 तक जाती है। इस बार के आईफोन काफी महंगे हैं। कीमतों को लेकर लोग शिकायतें तो करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि खरीदना तो है ही। आज तक देरो।
0: अब खबर पहाड़ों पर अचानक बदले मौसम की। बीते सितंबर ही पहाड़ों पर मौसम बदलने लगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई।
5: चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है, पेड़ों पर कुदरत ने श्रृंगार किया है। सितंबर के दूसरे सप्ताह के साथ ही पहाड़ कुदरत के सफेद गहनों से सज गए हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर ले हाईवे पर जो जिला के जीरो पॉइंट की हैं। यहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के साथ ही सर्दियों ने दस्तक दे दी है।
27: कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से, और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
5: अब मनाली की तस्वीरें देखिए, मनाली के ऊपरी हिस्सों में देखिए
6: कितना सुंदर नजारा है। यहाँ भी सीजन की पहली बर्फबारी ने मनाली को मोहक बना दिया है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही होटल व्यवसायियों की आंखों की चमक बढ़ गई है, क्योंकि होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है।
7: सब जगह पता लग गया है कि आज पहली बर्फबारी जो है वो सर्दियों की शुरुआत की आज से हो गई है। और इस बर्फबारी से जैसे ही बर्फबारी हुई और सवेरे खबरें फैली तो होटलों में बुकिंग आना शुरू हो गई है।
6: मनाली के पहाड़ों पर ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने चांदी लपेट दी। मौसम खुशगवार है, लेकिन यही मौसम कुछ लोगों के लिए काल बन गया। दरअसल पहाड़ पर एकाएक मौसम बदला, जिसकी वजह से लाहौल स्पीति में पवित्र ड्रिलभुरी कोरा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक मौसम बदलने और भारी बर्फबारी के बाद हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया की वजह से दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं एक श्रद्धालु के पैर की हड्डी टूटने से वह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए केलांग क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनाली के बाद कुल्लू की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी आसमान से बर्फ बरसी है। रुई के फाहों जैसी बर्फ इस बर्फबारी ने पर्यटकों को प्रसन्न कर दिया है। अब उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी मौसम बदला है। बरसात के बाद हल्की बर्फबारी ने तापमान में गिरावट की है। रुद्रनाथ में हल्की बर्फबारी के साथ गिरे ओले, पहाड़ों पर बिछी सफेदी और बारिश के बीच बदलता मौसम। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब भी सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सफेद रंग में रंगा नजर आया। चारों तरफ बर्फ और उसके बीच नजर आता पवित्र धाम का खूबसूरत नजारा। कुल मिलाकर पहाड़ों पर सर्दियां दस्तक दे रही हैं। कुदरत अपना सबसे खूबसूरत रंग बिखेर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पंचायत आज तक बिहार में बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यूसीसी पर गठबंधन से बातचीत के बाद लेंगे निर्णय। बंगाल उपचुनाव में ट्विस्ट बे ट्विस्ट, पहले नंदीग्राम से ममता की उम्मीदवार ने नाम वापस लिया तो कांग्रेस का दावा, हमारी प्रत्याशी मिलन प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राहुल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोप पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस भस्मासुर, साथ आने वाले सभी दलों को जला देती। उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख का जेनजी को संदेश, बोले भारत के युवा पूरी दुनिया में न सिर्फ यशस्वी बल्कि सार्थक भी बने। वायुसेना को HAL से मिला तेजस का ट्रेनर विमान, पवन हंस को 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर, बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद अब मुकाबले में ट्विस्ट आ गया, यहां जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। ममता बनर्जी से पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, जिसके बाद ममता जबरदस्त गुस्से में नजर आईं।
1: 2026 के बंगाल चुनाव के बाद TMC पर बगावत का ऐसा हथौड़ा पड़ा कि 18 साल की बुनियाद और 15 साल की हुकूमत की निशानी जोड़ा पूल फ्रीज हो गया।
2: But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic and totally political bias vendetta.
3: Hindu dharma ke ganda dharma bola, Mahakumbh ke Vittu Kumbh bola. আর রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম মন্দির মানি না বলে মিছিল করা, আছেন তো ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপেই সব ধ্বংস হয়ে গেছে।
1: সুবেদু অধিকারী কি খালি সিট নন্দীগ্রাম ও হুমায়ুন কবীর কি খালি সিট রেজিনগর পর 6 অক্টোবর কো উপচুনাব হ্যাঁ। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह में खींचतान को देखते हुए आयोग ने दोनों दलों से 3-3 पसंदीदा विकल्प पूछे थे। उसी के आधार पर ममता बनर्जी के गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम और फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी निशान मिला, जबकि बागी धड़े को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम और लिफाफे का निशान दिया गया। ये नाम और निशान 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए लागू रहेंगे।
4: इंटरिम ऑर्डर इससे साबित है, जाहिर है कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
1: इस बीच नंदीग्राम उपचुनाव में नया ट्विस्ट आ गया, जहां ममता बनर्जी की उम्मीदवार संचिता प्रधान सुबेंदु अधिकारी से मिलने पहुंची और फिर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब नंदीग्राम में नामांकन की तारीख निकल गई है, ऐसे में अब ममता ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है।
2: इन्होंने क्या किया, हाईजैक किया है टोटल, इट वॉज कंट्रोल फ्रॉम सम ऑफिस टू हाईजैक द EVM मशीन। इवन
1: पश्चिम बंगाल में भले ही लड़ाई उपचुनाव की हो, लेकिन घमासान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भी चुनाव से पहले जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पंजाब में नशे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार मान सरकार को घेर रहा है।
5: पंजाब की इन 3 तस्वीरों ने सियासत की नई स्क्रिप्ट शुरू कर दी है। एक ओर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नशा मुक्त यात्रा की शुरुआत की तो वहीं पूर्व मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमले की तस्वीर सामने आई। इस बीच ASI के मर्डर ने एक बार फिर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में नशा मुक्त यात्रा को हरी झंडी दिखाई तो नशे को लेकर मान सरकार पर जोरदार हमला किया।
6: मैं आज यहां के सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने केवल नारा गढ़ा था, आप लोगों ने केवल सत्ता की चाबी समझी थी, आपने कभी नशा का दर्द नहीं समझा। और जिस परिवारों ने अपने को खोया उनसे मिलने के बजाय, उनके पीड़ा को समझने के बजाय उनको सुसाइड करने के लिए, उनको आत्महत्या करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं।
7: वो किस मुंह से बात कर रहे हैं नशे के खिलाफ, 2007 से लेकर 2017 के बीच जिस पार्टी ने पंजाब में नशे का कारोबार किया, जिसके मंत्री जिसके नेता नशे की तस्करी करवाते थे अपनी अपनी गाड़ियों में रखे, वो पार्टी आज कह रही है कि पंजाब को नशे से मुक्त कराना है। किस मुंह से कह रही है?
5: पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला हो गया। बिट्टू अमृतसर से पठानकोट यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उन पर टमाटर और अंडे फेंके गए।
8: कई चीजें केजरीवाल जैसे, आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। मैं पंजाब पुलिस को भी हमेशा बहुत अच्छी पुलिस समझता था।
5: वहीं मान सरकार के मंत्री पर हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली।
9: सर, उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने उनके ऊपर हमला किया है। सर,
5: अमृतसर में हमलावरों ने एक एएसआई को निशाना बनाया, जिसे बेहद करीब से गोली मारी गई और हमलावर वहां से फरार हो गए।
10: तकरीबन 12:30 बजे का इंसिडेंट सी, 9:30 बजे रात में और ड्यूटी लई ये ठकीबा थाने तो इतने दाना मंडी से ड्यूट किए गए सी। ये टू व्हीलर ते उन्होंने फॉलो किया गया है, क्लोज रेंज 30 बोर का जड़ा पिस्टल हैगा वो यूज करके क्लोज रेंज ते शूटिंग हुई है।
5: पंजाब में चुनाव से पहले नशा और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर विपक्ष मान सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। असीम बस्सी के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।
0: खबर यूपी के पावर प्ले की। बस चुनावों में कुछ ही महीनों का समय है और तैयारियां दोनों ही खेमों में भरपूर। अखिलेश पीडीए के सहारे हैं तो बीजेपी सनातन के भरोसे। सवाल ये कि जनता ने क्या सोचा। उधर लखनऊ में अखिलेश का पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक रथ तैयार हो चुका है। इसी रथ के सहारे अखिलेश यादव अब चुनावों से पहले पूरे यूपी में कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन उनकी पिछली दो बार की ये कोशिश असफल हो चुकी है।
1: अखिलेश यादव ने यूपी जीतने के लिए दोनों बार रथ यात्राओं का सहारा लिया। यही हाईटेक रथ 2017 में भी था जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे, और फिर 2022 के चुनावों से ठीक पहले उन्होंने विजय रथ यात्रा शुरू कर दी थी। कोशिश यही थी कि वो दोबारा यूपी जीत पाएंगे, लेकिन न 17 में सफल हुए न 22 में। अब 27 से पहले उनका रथ फिर से तैयार है। रंग वैसा ही है लाल, वैसा ही हाईटेक है रथनुमा। इस लग्जरी बस में सारी सुविधाएं हैं। बस नारे बदल गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जब अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी की यात्रा पर निकलेंगे तो क्या होगा। इसकी कुछ झलक आपको 5 साल पहले की इन तस्वीरों से दिखाते हैं। 2022 में यूपी में चुनाव होना था और उससे पहले ही नवंबर 2021 में अखिलेश यादव की कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। तब भी उनके चुनावी रथ को यूपी में समर्थन तो बहुत मिला था, जहां से गुजरते थे वहीं लोगों की भीड़ लग जाती। ऐसे ही रथ के ऊपर खड़े होकर वो हाथ हिलाते, लोगों के उपहार और फूल मालाएं स्वीकार करते थे, लेकिन नतीजा उनके फेवर में नहीं रहा। 2017 में उनके रथ पर नारा लिखा था समाजवादी विकास रथ, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद भी यूपी के लोगों ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया, चुनाव हार गए। 2022 में फिर रथ का नारा बदला गया, लिखा गया यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। लेकिन 5 साल के बाद भी यूपी वालों ने अखिलेश को जनादेश नहीं दिया, फिर से हार गए। अब 2027 की बारी है, रथ फिर तैयार है और रथ पर नया नारा चिपका दिया गया है। अब लिखा है समाजवादी पीडीए यात्रा। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम। अब नए रथ का नारा क्या अखिलेश की 10 साल के बाद वापसी कराएगा, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस बार अखिलेश यादव के रथ में क्या बदलाव हुआ है। अखिलेश के समाजवादी रथ वाली बस में बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाईं ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में स्लोगन लिखा है पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा है। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पीडीए के इस मुद्दे में बड़ा दम दिखता है। वो भले ही पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हों, मौका भांपते ही वो पी को पिछड़ा से पंडित भी करते हैं, लेकिन पीडीए का असली मतलब उनके चुनावी रथ पर ही लिखा है, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इसमें कोई कंफ्यूजन न हो तो अल्पसंख्यक के बाद डैश लगाकर मुसलमान भी लिखा है।
11: ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं, आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं।
1: बीजेपी का तो पूरा प्रयास यही है कि पीडीए का ये नारा किसी भी तरह से ध्वस्त करना है। इसीलिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि पीडीए वो समीकरण है कि अगर वो चुनावों में चला तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव में पीडीए के चलने का मतलब है चुनाव जाति पर शिफ्ट हो गया, और बीजेपी चाहती है कि चुनाव जाति पर नहीं सनातन पर हो।
12: पीडीए को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
13: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
12: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
13: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है, सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
12: पीडीए का

0: पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल और रूट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन चमचमाती बस पहुंच चुकी है। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं। छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है। 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है। लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी की भी सुविधा है।
1: अक्टूबर के अंत में सूत्रों के मुताबिक ये रथ मैदान में उतरेगा और चुनावी कैंपेनिंग करेगा। अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद पीडीए इस बार 27 की सत्ता तक पहुंचाएगा। अब बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और इसे नई बोतल और पुरानी शराब करार दे रही है। यानी कि बीजेपी का कहना है कि कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं बल्कि MY समीकरण की रीपैकेजिंग है। जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में B.R. अंबेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे या बीजेपी कई संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी, ये वक्त बताएगा।
0: यूपी में पहले चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए MY समीकरणों का हवाला दिया जाता था। M का मतलब मुसलमान और Y का मतलब यादव। अखिलेश ने इसी समीकरण को बड़ा कर दिया है। मायावती चुनावों में पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में वो लगभग सरेंडर के मोड में रही, इसीलिए अखिलेश यादव मायावती के दलित वोट को भी अपनी तरफ करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि पीडीए वही MY है।
2: समाजवादी पार्टी ने माल वही है, पैकेजिंग नहीं है, MY के समीकरण पर एक्सपोज हो चुके थे। सब उनके इस MY के समीकरण को समझते हैं, इसीलिए अब ये पीडीए के नाम पर नया सिगुफा लेकर आए हैं। वो जानते हैं कि पीडीए एक नई पैकेजिंग केवल है, इसीलिए रोज पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। लेकिन पीडीए के अंदर वही माल है जो पुराना इनका MY समीकरण है। लेकिन ये जाति मजहब के आधार पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो विकास के मुद्दे पर होगा और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी फिर फेल होगी।
0: अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर ही 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी के अंदर बीजेपी को रोका है। बीजेपी 240 पर सिमटी तो इसके लिए यूपी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जहां अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बड़ी रिकॉर्ड सफलता पाई। 2024 में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गईं। SP के सहयोगी कांग्रेस की सीटें भी 2024 में 1 से बढ़कर 6 हो गईं। और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में 403 में से 224 विधानसभा सीटों पर आगे था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लगभग बराबर वोट मिले। बीजेपी को 3,83,00,000 और समाजवादी पार्टी को 3,81,00,000 वोट मिले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों और पिछड़ों के साथ दलितों के वोट भी हासिल किए थे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि 2027 से पहले वो एक बार फिर से 2024 जैसा माहौल खड़ा कर देंगे।
3: 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा की थी 2024 के पहले, मतलब लोगों को जगाना, उनके अधिकारों की उनकी बात करना और समाज का वो वर्ग जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है उनकी बात करना, उनको बताना कि उनका अधिकार कितना है। वोट इनका, राज किसी और का, ये नहीं चल सकता है।
0: लेकिन बीजेपी के पास सनातन का वो हथियार है जो अगर चुनावों में चल गया तो फिर समाजवादी पार्टी के ये समीकरण किसी काम के नहीं रहेंगे। अखिलेश पीडीए पर टिके हैं तो बीजेपी भी सनातन और हिंदुत्व से हिल नहीं रही।
4: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी। और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।

0: पावन कथाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करना, व्यापक रूप से आगे बढ़ाना।
1: संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: और अब एक चौंकाने वाली खबर, नोएडा के निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली के आत्महत्या की। जिस कोहली को कोर्ट से फांसी की सजा नहीं मिली, वो फांसी के फंदे से लटका मिला।
3: नोएडा के जिस निठारी कांड ने पूरे देश को चौंका दिया था, आज उसी निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। हरिद्वार में इस चाय की दुकान के अंदर सुरेंद्र कोहली का शव फंदे से लटका मिला। 3 दिन पहले ही सुरेंद्र कोहली ने ये दुकान ली थी। जब पुलिस ने शव की तलाशी दी तो आधार कार्ड से पता चला कि ये शव सुरेंद्र कोहली का है।
4: प्रथम दृष्टया सुसाइड लग रहा है, बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है, पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाएगा, यह सब होगा अभी जानकारी दी जाएगी।
3: सुरेंद्र कोहली इससे पहले हरिद्वार में ही एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था, जिसके बाद उसने ये चाय की दुकान ली। सबसे बड़ी बात ये कि सुरेंद्र ने अपना नाम सदाराम बताया था। ऐसे में किसी को शक ही नहीं था कि ये नोएडा निठारी कांड वाला सुरेंद्र है।
5: सुबह आए यहाँ पे तो कहने लगे, यहाँ पे दीवान जी बैठ रहे, यहाँ पे मैंने जानता हूँ चाय के लिए, कहने लगे कि चाचा ने आज दुकान नहीं खोली चाय। तो मैंने आवाज मारी दूसरी बार शटर में, तो शटर का थोड़ा लोग ढीला था तो शटर अपना उठ गया, तो देखा तो फांसी लग पड़े थे।
6: सबसे पहले आप ही ने देखा?
5: हाँ, वहां पे उन्होंने देखा, सबने देखा, 2-3 बंदे थे यहाँ पे।
3: अब सवाल ये है कि अगर ये सुसाइड है तो आखिर सुरेंद्र ने सुसाइड क्यों किया? दुकान मालिक का कहना है कि वो बड़ी परेशानी की हालत में उसके पास आया था, जहां उसने बच्चे के जन्मदिन की बात कहकर 2,000 रुपए भी लिए थे।
5: डिप्रेशन में थे, किसका बर्थडे था कल, इनके किसी बच्चे बच्चे का, तो उसमें कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो फोन पे बात करते, उनसे चिल्ला चप्पी उड़ गई।
3: 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी इलाके में मनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से 8 बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इसके बाद घर के आसपास के नालों की तलाशी और खुदाई की गई, जिसमें कई और कंकाल मिले। इस मामले में मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। पंडेर को इनमें से 2 मामलों में सजा हुई, जबकि सुरेंद्र कोहली को निचली अदालत ने कुल 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन 2025 में कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। ये नोएडा के निठारी की वही D5 कोठी है जो अब सुनसान पड़ी हुई है। निठारी कांड के पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार सुरेंद्र की मौत के पीछे साजिश का शक जता रहे हैं।
7: कोहली ने सुसाइड नहीं किया, करना होता ना तो जेल में कर लेता, वो जेल में क्यों नहीं किया? अब छूट के आ गया था, तो बता रहे हो तुम्हें लोग बता रहे हो कि चाय की दुकान चलाता था। अब चाय की दुकान चलाता था तो खुद तो कमाता होगा, अभी भी बच्चों के साथ रहता था, यही मैं मारा होगा। पंडेर के अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता इसमें।
8: इसने मतलब जो है लोगों ने कुछ कहा होगा, कोई खुलासा वो करने वाला होगा, कोई खुलासा करने वाला होगा, या इसको कहा होगा इतना नहीं इतना देंगे तुम्हें, और वो नहीं तो वो कहा होगा हम बता देंगे।
3: बहरहाल सुरेंद्र कोहली की मौत से हर कोई हैरान है, और सवाल ये कि 19 साल जेल में रहने के दौरान जिस शख्स ने सुसाइड नहीं किया, उसने जेल से बाहर आने के बाद अपनी जान क्यों ली? आज तक ब्यूरो।
2: अब एक हैरान और विचलित कर देने वाली खबर। हमारे देश के कई शहरों में आतंक का नाम बन चुका पिटबुल एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली के करीब सोनीपत में पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया।
3: तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपको हूबहू नहीं दिखा रहे। तस्वीरें देखिए, चीख पुकार मची है, लोग एक काले पिटबुल कुत्ते को डंडे से मार रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन पिटबुल बेकाबू है। स्क्रीन पर जो हिस्सा आपको ब्लर नजर आ रहा है, दरअसल उस हिस्से में 6 महीने का एक मासूम बच्चा है जिस पर पिटबुल लगातार झपट्टा मार रहा है। यह तस्वीर दिल्ली से सटे सोनीपत के सिक्का कॉलोनी की है। यहाँ 6 महीने के एक मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल का यह हमला तब हुआ जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी। तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। हमले में मासूम और उसकी बुआ घायल हुए हैं। गंभीर हालत में बच्चे का रोहतक PGI में इलाज चल रहा है।
6: पिटबुल ने उसको कितनी जगह से काटा?
9: उसका मुंह छील रखा है पूरा, जैसे उसने गली में उसको छिजोड़ा था ना, तो उसको काफी सारी चोट आई हुई है, पेट वगैरह पे, हाथ वगैरह पे, बहुत सारी जगह चोट आई है।
6: कभी पहले भी देखा गली में घूमता?
9: एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन बच्चा बच गया था, उनके बच्चे को काट रही थी वो उस दिन में, लेकिन उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं था।
3: सोनीपत में पिटबुल हमले के बाद प्रशासन जागा, मेयर और पुलिस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एक्शन का भरोसा दिया।
10: इस तरह के जो कुत्ते पालने वाले हैं लोग, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जो है सरकार की तरफ से किया गया, उसका भी अभियान चलाया जाएगा। और अगर जो है कोई व्यक्ति प्रतिबंधित जो है डॉग पालने का काम करता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
3: आए दिन पिटबुल के हमले की खबरें आती रहती हैं, सवाल कुत्ते के मालिक की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। प्रशासन का कहना है कि शिकायत के बाद एक्शन लिया जाएगा। पवन राठी, सोनीपत आज तक।
2: फोन ने भले ही अपनी कीमत बढ़ा ली हो, लेकिन उसका क्रेज कम नहीं हो रहा है। हमारे देश में नया आईफोन लॉन्च कर दिया गया, देर रात से ही स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें खरीदने के लिए लोगों की दिखी।
11: दुर्गा पूजा गिफ्ट फ्रॉम मी टू मी।
12: ये आईफोन की दीवानगी है। एप्पल का आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स भारतीय बाजार में जैसे ही आया, आईफोन के दीवाने दौड़ पड़े इसे अपना बनाने।
13: और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर।
14: That's it.
15: मैं देख रहा हूँ दो फोन आप लेके आए हैं।
13: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊंगा।
12: 18 सितंबर से आधिकारिक तौर पर आईफोन 18 सीरीज के फोन भारत के बाजार में बिकने लगे। देश के चुनिंदा शहरों में ही अभी एप्पल के स्टोर है और ये फोन अभी सिर्फ एप्पल के आधिकारिक स्टोर पर ही उपलब्ध है। इसलिए आईफोन प्रीमियो ने पहले से ही अपनी बुकिंग कर रखी थी ताकि स्टोर पहुंचने पर आसानी से खरीदारी हो सके, लेकिन स्टोर के बाहर तो लंबी लाइनें लगी थी। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां साकेत में एप्पल का स्टोर है। देर रात से ही लोग स्टोर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे, इंतजार करने लगे सुबह के 8 बजने का, क्योंकि स्टोर में एंट्री सुबह 8 बजे ही शुरू होती है। जैसे ही लोगों ने स्टोर में प्रवेश किया तो तुरंत प्री बुकिंग के हिसाब से फोन को अपना बना लिया।
16: मैं दिल्ली रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। आईफोन 18 प्रो बरगंडी कलर, बढ़िया लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। आईफोन 18 लेके फीचर्स तो वही है, जैसे अगली जनरेशन आवे तो उसके हिसाब से, जैसे कैमरा वगैरह में भी मतलब एक बढ़िया क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का कैमरा है, बढ़िया लग गया।
12: आईफोन प्रो की शुरुआती कीमत 1,64,000 रुपए है, जो 3,14,000 तक आती है, तो वहीं प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,000 रुपए है, जो 3,29,000 तक जाती है। इस बार के आईफोन काफी महंगे हैं, कीमतों को लेकर लोग शिकायतें तो करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि खरीदना तो है ही। आज तक देरो।
2: अब खबर पहाड़ों पर अचानक बदले मौसम की। बीते सितंबर ही पहाड़ों पर मौसम बदलने लगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई।
3: चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है, पेड़ों पर कुदरत ने श्रृंगार किया है। सितंबर के दूसरे सप्ताह के साथ ही पहाड़ कुदरत के सफेद गहनों से सज गए हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर लेह हाईवे पर जो जिला के जीरो पॉइंट की है। यहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के साथ ही सर्दियों ने दस्तक दे दी है।
17: कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से, और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
3: अब मनाली की तस्वीरें देखिए, मनाली के ऊपरी हिस्सों में देखिए कितना सुंदर नजारा है। यहाँ भी सीजन की पहली बर्फबारी ने मनाली को मोहक बना दिया है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही होटल व्यवसायियों की आंखों की चमक बढ़ गई है, क्योंकि होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है।
18: सब जगह पता लग गया है कि आज पहली बर्फबारी जो है वो सर्दियों की शुरुआत की आज से हो गई है, और इस बर्फबारी से जैसे ही बर्फबारी हुई और सवेरे खबरें फैली तो होटलों में बुकिंग आना शुरू हो गई है।
3: मनाली के पहाड़ों पर ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने चांदी लपेट दी। मौसम खुशगवार है, लेकिन यही मौसम कुछ लोगों के लिए काल बन गया। दरअसल पहाड़ पर एकाएक मौसम बदला, जिसकी वजह से लाहौल स्पीति में पवित्र ड्रिलभुरी कोरा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक मौसम बदलने और भारी बर्फबारी के बाद हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया की वजह से दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं एक श्रद्धालु के पैर की हड्डी टूटने से वह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए केलांग क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनाली के बाद कुल्लू की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी आसमान से बर्फ बरसी है। रुई के फाहों जैसी बर्फ, इस बर्फबारी ने पर्यटकों को प्रसन्न कर दिया है। अब उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी मौसम बदला है। बरसात के बाद हल्की बर्फबारी ने तापमान में गिरावट की है। रुद्रनाथ में हल्की बर्फबारी के साथ गिरे ओले, पहाड़ों पर बिछी सफेदी और बारिश के बीच बदलता मौसम। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब भी सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सफेद रंग में रंगा नजर आया। चारों तरफ बर्फ और उसके बीच नजर आता पवित्र धाम का खूबसूरत नजारा। कुल मिलाकर पहाड़ों पर सर्दियां दस्तक दे रही हैं। कुदरत अपना सबसे खूबसूरत रंग बिखेर रही है। आज तक ब्यूरो।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पंचायत आज तक बिहार में बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यूसीसी पर गठबंधन से बातचीत के बाद लेंगे निर्णय। बंगाल उपचुनाव में ट्विस्ट बे ट्विस्ट, पहले नंदीग्राम से ममता की उम्मीदवार ने नाम वापस लिया तो कांग्रेस का दावा, हमारी प्रत्याशी मिलन प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राहुल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोप पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस भस्मासुर, साथ आने वाले सभी दलों को जला देती। उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख का जेनजी को संदेश, बोले भारत के युवा पूरी दुनिया में न सिर्फ यशस्वी बल्कि सार्थक भी बने। वायुसेना को HAL से मिला तेजस का ट्रेनर विमान, पवन हंस को 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर, बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद अब मुकाबले में ट्विस्ट आ गया, यहां जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। ममता बनर्जी से पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया जिसके बाद ममता जबरदस्त गुस्से में नजर आईं।
1: 2026 के बंगाल चुनाव के बाद TMC पर बगावत का ऐसा हथौड़ा पड़ा कि 18 साल की बुनियाद और 15 साल की हुकूमत की निशानी जोड़ा पुल फ्रीज हो गया।
2: But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic and totally political bias vendetta.
3: Hindu dharma ke ganda dharma bola, Mahakumbh ke mithu kumbh bola. আর রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম মন্দির মানি না বলে মিছিল করা, আছেন তো ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপেই সব ধ্বংস হয়ে গেছে।
1: সুবেদু অধিকারী কি খালি সিট নন্দীগ্রাম ও হুমায়ুন কবীর কি খালি সিট রেজিনগর পর 6 অক্টোবর কো উপচুনাব হ্যায়। পার্টি কে নাম ও চুনাব চিহ্ন মে খিঁচতান কো দেখতে হুয়ে আয়োগ নে দোনো দলো সে তিন তিন পসন্দিদা বিকল্প পুছে থে, উসি কে আধার পর মমতা ব্যানার্জি কে গুট কো মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস কা নাম ও ফুটবল খেলতা হুয়া খিলাড়ি নিশান মিলা, জবকি বাগি ধড়ে কো ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও লিফাফে কা নিশান দিয়া গিয়া। ये नाम और निशान 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए लागू रहेंगे।
4: इंटरिम ऑर्डर इससे साबित है, जाहिर है कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
1: इस बीच नंदीग्राम उपचुनाव में नया ट्विस्ट आ गया जहां ममता बनर्जी की उम्मीदवार संचिता प्रधान सुबेंदु अधिकारी से मिलने पहुंची और फिर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब नंदीग्राम में नामांकन की तारीख निकल गई है, ऐसे में अब ममता ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है।
2: इन्होंने क्या किया, हाईजैक किया है टोटल, इट वॉज कंट्रोल फ्रॉम सम ऑफिस टू हाईजैक द EVM मशीन। इवन
1: पश्चिम बंगाल में भले ही लड़ाई उपचुनाव की हो लेकिन घमासान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भी चुनाव से पहले जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पंजाब में नशे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार मान सरकार को घेर रहा है।
5: पंजाब की इन तीन तस्वीरों ने सियासत की नई स्क्रिप्ट शुरू कर दी है। एक ओर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नशा मुक्त यात्रा की शुरुआत की तो वहीं पूर्व मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमले की तस्वीर सामने आई। इस बीच ASI के मर्डर ने एक बार फिर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में नशा मुक्त यात्रा को हरी झंडी दिखाई तो नशे को लेकर मान सरकार पर जोरदार हमला किया।
6: मैं आज यहां के सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने केवल नारा गिरा था, आप लोगों ने केवल सत्ता की चाबी समझी थी, आपने कभी नशा का दर्द नहीं समझा और जिस परिवारों ने अपने को खोया उनसे मिलने के बजाय, उनके पीड़ा को समझने के बजाय उनको सुसाइड करने के लिए, उनको आत्महत्या करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं।
7: वो किस मुंह से बात कर रहे हैं नशे, 2007 से लेकर 2017 के बीच जिस पार्टी ने पंजाब में नशे का कारोबार किया, जिसके मंत्री, जिसके नेता नशे की तस्करी करवाते थे अपनी अपनी गाड़ियों में रखे, वो पार्टी आज कह रही है कि पंजाब को नशे से मुक्त कराना है। किस मुंह से कह रही है?
5: पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला हो गया। बिट्टू अमृतसर से पठानकोट यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उन पर टमाटर और अंडे फेंके गए।
8: कई चीजें केजरीवाल जैसे, आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी, एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। मैं पंजाब पुलिस को भी हमेशा बहुत अच्छी पुलिस समझता था।
5: कोई मान सरकार के मंत्री पर हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली।
9: सर, उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने उनके ऊपर हमला किया है। सर,
5: अमृतसर में हमलावरों ने एक एएसआई को निशाना बनाया, जिसे बेहद करीब से गोली मारी गई और हमलावर वहां से फरार हो गए।
10: तकरीबन 12:30 बजे का इंसिडेंट सी, 9:30 बजे रात में और ड्यूटी लई ये ठकीवा थाने तो इतने नाना मंडी से दूर किए गए सी, ये टू व्हीलर ते उन्होंने फॉलो किया गया है, क्लोज रेंज 30 बोर का जड़ा पिस्टल हैगा वो यूज करके क्लोज रेंज ते शूटिंग हुई है।
5: पंजाब में चुनाव से पहले नशा और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर विपक्ष मान सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। असीम बस्सी के साथ कमलजीत संधु, चंडीगढ़ आज तक।
0: खबर यूपी के पावर प्ले की। बस चुनावों में कुछ ही महीनों का समय है और तैयारियां दोनों ही खेमों में भरपूर। अखिलेश पीडीए के सहारे हैं तो बीजेपी सनातन के भरोसे। सवाल ये कि जनता ने क्या सोचा। उधर लखनऊ में अखिलेश का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रथ तैयार हो चुका है। इसी रथ के सहारे अखिलेश यादव अब चुनावों से पहले पूरे यूपी में कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन उनकी पिछली दो बार की ये कोशिश असफल हो चुकी है।
1: अखिलेश यादव ने यूपी जीतने के लिए दोनों बार रथ यात्राओं का सहारा लिया। यही हाईटेक रथ 2017 में भी था जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे, और फिर 2022 के चुनावों से ठीक पहले उन्होंने विजय रथ यात्रा शुरू कर दी थी। कोशिश यही थी कि वो दोबारा यूपी जीत पाएंगे, लेकिन न 17 में सफल हुए न 22 में। अब 27 से पहले उनका रथ फिर से तैयार है। रंग वैसा ही है लाल, वैसा ही हाईटेक है रथनुमा। इस लग्जरी बस में सारी सुविधाएं हैं, बस नारे बदल गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जब अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी की यात्रा पर निकलेंगे तो क्या होगा। इसकी कुछ झलक आपको 5 साल पहले की इन तस्वीरों से दिखाते हैं। 2022 में यूपी में चुनाव होना था और उससे पहले ही नवंबर 2021 में अखिलेश यादव की कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। तब भी उनके चुनावी रथ को यूपी में समर्थन तो बहुत मिला था, जहां से गुजरते थे वहीं लोगों की भीड़ लग जाती थी। ऐसे ही रथ के ऊपर खड़े होकर वो हाथ हिलाते, लोगों के उपहार और फूल मालाएं स्वीकार करते थे, लेकिन नतीजा उनके फेवर में नहीं रहा। 2017 में उनके रथ पर नारा लिखा था समाजवादी विकास रथ, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद भी यूपी के लोगों ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया, चुनाव हार गए। 2022 में फिर रथ का नारा बदला गया, लिखा गया यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, लेकिन 5 साल के बाद भी यूपी वालों ने अखिलेश को जनादेश नहीं दिया, फिर से हार गए। अब 2027 की बारी है, रथ फिर तैयार है और रथ पर नया नारा चिपका दिया गया है। अब लिखा है समाजवादी पीडीए यात्रा, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम। अब नए रथ का नारा क्या अखिलेश की 10 साल के बाद वापसी कराएगा, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस बार अखिलेश यादव के रथ में क्या बदलाव हुआ है। अखिलेश के समाजवादी रथ वाली बस में बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाईं ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में स्लोगन लिखा है पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा है। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पीडीए के इस मुद्दे में बड़ा दम दिखता है। वो भले ही पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हों, मौका भांपते ही वो पी को पिछड़ा से पंडित भी करते हैं, लेकिन पीडीए का असली मतलब उनके चुनावी रथ पर ही लिखा है, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इसमें कोई कंफ्यूजन न हो तो अल्पसंख्यक के बाद डैश लगाकर मुसलमान भी लिखा है।
11: ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं। आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं।
1: बीजेपी का तो पूरा प्रयास यही है कि पीडीए का ये नारा किसी भी तरह से ध्वस्त करना है। इसीलिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि पीडीए वो समीकरण है कि अगर वो चुनावों में चला तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव में पीडीए के चलने का मतलब है चुनाव जाति पर शिफ्ट हो गया, और बीजेपी चाहती है कि चुनाव जाति पर नहीं सनातन पर हो।
12: पीडीए को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
13: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
12: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
13: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है, सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
12: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
13: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
1: इसी समाजवादी रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल और रूट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन चमचमाती बस पहुंच चुकी है। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं। छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है। 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है। लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी की भी सुविधा है।
14: अक्टूबर के अंत में सूत्रों के मुताबिक ये रथ मैदान में उतरेगा और चुनावी कैंपेनिंग करेगा। अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद पीडीए इस बार 27 की सत्ता तक पहुंचाएगा। अब बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और इसे नई बोतल और पुरानी शराब करार दे रही है। यानी कि बीजेपी का कहना है कि कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं बल्कि MY समीकरण की रीपैकेजिंग है। जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में B.R. अंबेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे या बीजेपी कई संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी, ये वक्त बताएगा।
1: यूपी में पहले चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए MY समीकरणों का हवाला दिया जाता था। M का मतलब मुसलमान और Y का मतलब यादव। अखिलेश ने इसी समीकरण को बड़ा कर दिया है। मायावती चुनावों में पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में वो लगभग सरेंडर के मोड में रही। इसीलिए अखिलेश यादव मायावती के दलित वोट को भी अपनी तरफ करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि पीडीए वही MY है।
15: समाजवादी पार्टी ने माल वही है, पैकेजिंग नहीं है, MY के समीकरण पर एक्सपोज हो चुके थे। सब उनके इस MY के समीकरण को समझते हैं, इसीलिए अब ये पीडीए के नाम पर नया सिगुफा लेकर आए हैं। वो जानते हैं कि पीडीए एक नई पैकेजिंग केवल है, इसीलिए रोज पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। लेकिन पीडीए के अंदर वही माल है जो पुराना इनका MY समीकरण है। लेकिन ये जाति मजहब के आधार पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो विकास के मुद्दे पर होगा और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी फिर फेल होगी।
16: अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर ही 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी के अंदर बीजेपी को रोका है। बीजेपी 240 पर सिमटी तो इसके लिए यूपी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जहां अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बड़ी रिकॉर्ड सफलता पाई। 2024 में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गईं। एसपी के सहयोगी कांग्रेस की सीटें भी 2024 में 1 से बढ़कर 6 हो गईं। और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में 403 में से 224 विधानसभा सीटों पर आगे था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लगभग बराबर वोट मिले। बीजेपी को 3,83,00,000 और समाजवादी पार्टी को 3,81,00,000 वोट मिले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों और पिछड़ों के साथ दलितों के वोट भी हासिल किए थे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि 2027 से पहले वो एक बार फिर से 2024 जैसा माहौल खड़ा कर देंगे।
17: 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा की थी 2024 के पहले, मतलब लोगों को जगाना, उनके अधिकारों की उनकी बात करना और समाज का वो वर्ग जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उनकी बात करना, उनको बताना कि उनका अधिकार कितना है। वोट इनका, राज किसी और का, ये नहीं चल सकता है।
16: लेकिन बीजेपी के पास सनातन का वो हथियार है जो अगर चुनावों में चल गया तो फिर समाजवादी पार्टी के ये समीकरण किसी काम के नहीं रहेंगे। अखिलेश पीडीए पर टिके हैं तो बीजेपी भी सनातन और हिंदुत्व से हिल नहीं रही।
18: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी। और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। पावन कथाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करना, व्यापक रूप से आगे बढ़ाना।
16: संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: और अब एक चौंकाने वाली खबर, नोएडा के निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली के आत्महत्या की। जिस कोहली को कोर्ट से फांसी की सजा नहीं मिली, वो फांसी के फंदे से लटका मिला।
5: नोएडा के जिस निठारी कांड ने पूरे देश को चौंका दिया था, आज उसी निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। हरिद्वार में इस चाय की दुकान के अंदर सुरेंद्र कोहली का शव फंदे से लटका मिला। 3 दिन पहले ही सुरेंद्र कोहली ने यह दुकान ली थी। जब पुलिस ने शव की तलाशी दी तो आधार कार्ड से पता चला कि यह शव सुरेंद्र कोहली का है।
19: प्रथम दृष्टया सुसाइड लग रहा है। बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है, पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाएगा, यह सब होगा।
5: सुरेंद्र कोहली इससे पहले हरिद्वार में ही एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था, जिसके बाद उसने ये चाय की दुकान ली। सबसे बड़ी बात ये कि सुरेंद्र ने अपना नाम सदाराम बताया था। ऐसे में किसी को शक ही नहीं था कि ये नोएडा निठारी कांड वाला सुरेंद्र है।
20: अब सुबह आए यहाँ पे तो कहने लगे, यहाँ पे तो दीवान जी बैठे थे यहाँ पे, मैं नहीं जानता हूँ, चाय के लिए कहने लगे कि चाचा ने आज दुकान नहीं खोली चाय। तो मैंने आवाज मारी दूसरी बार शटर में, तो शटर का थोड़ा लोग ढीला था तो शटर अपना उठ गया, तो देखा तो फांसी लग पड़े थे।
21: सबसे पहले आप ही ने देखा उनको?
20: हाँ, वहाँ पे उन्होंने देखा, सबने देखा, 2-3 बंदे थे यहाँ पे।
5: अब सवाल यह है कि अगर ये सुसाइड है तो आखिर सुरेंद्र ने सुसाइड क्यों किया? दुकान मालिक का कहना है कि वो बड़ी परेशानी की हालत में उसके पास आया था, जहां उसने बच्चे के जन्मदिन की बात कहकर 2,000 रुपए भी लिए थे।
20: डिप्रेशन में थे, किसका बर्थडे था कल, इनके किसी बच्चे बच्चे का, तो उसमें कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो फोन पे बात कर दे, उनसे चिल्ला चप्पी उड़ गई।
5: 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी इलाके में मनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से 8 बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इसके बाद घर के आसपास के नालों की तलाशी और खुदाई की गई, जिसमें कई और कंकाल मिले। इस मामले में मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। पंडेर को इनमें से 2 मामलों में सजा हुई, जबकि सुरेंद्र कोहली को निचली अदालत ने कुल 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन 2025 में कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। ये नोएडा के निठारी की वही D5 कोठी है जो अब सुनसान पड़ी हुई है। निठारी कांड के पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार सुरेंद्र की मौत के पीछे साजिश का शक जता रहे हैं।
3: बोलने ने सुसाइड नहीं किया करना होता ना तो जेल में कर लेता, वो जेल में क्यों नहीं किया? अब छूट के आ गया था तो बता रहे तुम्हें लोग बता रहे हो कि चाय की दुकान चलाता था। अब चाय की दुकान चलाता था तो कुछ तो कमाता होगा, अभी भी बच्चों के साथ रहता था। यही मैं मारा होगा, पर ढेर के अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता इसमें।
4: इसमें मतलब जो है लोगों ने कुछ कहा होगा, कोई खुलासा वो करने वाला होगा, कोई खुलासा करने वाला होगा, या इसको कहा होगा इतना नहीं इतना देंगे तुम्हें, और वो नहीं तो वो कहा होगा हम बता देंगे।
5: बहरहाल सुरेंद्र कोहली की मौत से हर कोई हैरान है, और सवाल ये कि 19 साल जेल में रहने के दौरान जिस शख्स ने सुसाइड नहीं किया उसने जेल से बाहर आने के बाद अपनी जान क्यों ली? आज तक ब्यूरो।
0: अब एक हैरान और विचलित कर देने वाली खबर। हमारे देश के कई शहरों में आतंक का नाम बन चुका पिटबुल एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली के करीब सोनीपत में पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया।
5: तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपको हूबहू नहीं दिखा रहे। तस्वीरें देखिए, चीख पुकार मची है, लोग एक काले पिटबुल कुत्ते को डंडे से मार रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन पिटबुल बेकाबू है। स्क्रीन पर जो हिस्सा आपको ब्लर नजर आ रहा है, दरअसल उस हिस्से में 6 महीने का एक मासूम बच्चा है जिस पर पिटबुल लगातार झपट्टा मार रहा है। यह तस्वीर दिल्ली से सटे सोनीपत के सिक्का कॉलोनी की है। यहाँ 6 महीने के एक मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल का यह हमला तब हुआ जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी। तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। हमले में मासूम और उसकी बुआ घायल हुए हैं। गंभीर हालत में बच्चे का रोहतक PGI में इलाज चल रहा है।
22: पिटबुल ने उसको कितनी जगह से काटा?
23: उसका मुंह छील रखा है पूरा, जैसे उसने गली में उसको छिजोड़ा था ना, तो उसको काफी सारी चोट आई हुई है, पेट वगैरह पे, हाथ वगैरह पे, बहुत सारी जगह चोट आई है।
22: कभी पहले भी देखा गली में घूमता?
23: एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन बच्चा बच गया था, उनके बच्चे को काट रही थी वो उस दिन में, लेकिन उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं था।
5: सोनीपत में पिटबुल हमले के बाद प्रशासन जागा, मेयर और पुलिस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एक्शन का भरोसा दिया।
24: इस तरह के जो कुत्ते पालने वाले हैं लोग, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जो है सरकार की तरफ से किया गया, उसका भी अभियान चलाया जाएगा। और अगर जो है कोई व्यक्ति प्रतिबंधित जो है डॉग पालने का काम करता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
5: आए दिन पिटबुल के हमले की खबरें आती रहती हैं। सवाल कुत्ते के मालिक की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। प्रशासन का कहना है कि शिकायत के बाद एक्शन लिया जाएगा। पवन राठी, सोनीपत आज तक।
0: फोन ने भले ही अपनी कीमत बढ़ा ली हो लेकिन उसका क्रेज कम नहीं हो रहा है। हमारे देश में नया आईफोन लॉन्च कर दिया गया। देर रात से ही स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें खरीदने के लिए लोगों की दिखी।
25: दुर्गा पूजा गिफ्ट फ्रॉम मी टू मी।
5: ये आईफोन की दीवानगी है। एप्पल का आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स भारतीय बाजार में जैसे ही आया, आईफोन के दीवाने दौड़ पड़े इसे अपना बनाने।
26: और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर।
27: That's it.
28: मैं देख रहा हूँ दो फोन आप लेके आए हैं।
26: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊँगा।
5: 18 सितंबर से आधिकारिक तौर पर आईफोन 18 सीरीज के फोन भारत के बाजार में बिकने लगे। देश के चुनिंदा शहरों में ही अभी एप्पल के स्टोर हैं और ये फोन अभी सिर्फ एप्पल के आधिकारिक स्टोर पर ही उपलब्ध हैं। इसलिए आईफोन प्रेमियों ने पहले से ही अपनी बुकिंग कर रखी थी ताकि स्टोर पहुंचने पर आसानी से खरीदारी हो सके, लेकिन स्टोर के बाहर तो लंबी लाइनें लगी थी। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां साकेत में एप्पल का स्टोर है। देर रात से ही लोग स्टोर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे, इंतजार करने लगे सुबह के 8 बजने का, क्योंकि स्टोर में एंट्री सुबह 8 बजे ही शुरू होती है। जैसे ही लोगों ने स्टोर में प्रवेश किया तो तुरंत प्री बुकिंग के हिसाब से फोन को अपना बना लिया।
28: मैं दिल्ली रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। आईफोन 18 प्रो बरगंडी कलर। बढ़िया लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है आईफोन 18 लेके। फीचर्स तो वही है, जैसे अगली जनरेशन आवे तो उसके हिसाब से, जैसे कैमरा वगैरह में भी मतलब एक बढ़िया क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का कैमरा बढ़िया लग गया।
5: आईफोन प्रो की शुरुआती कीमत 1,64,000 रुपए है।
2: जो 3,14,000 तक आती है, तो वहीं प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,000 रुपए है, जो 3,29,000 तक जाती है। इस बार के आईफोन काफी महंगे हैं। कीमतों को लेकर लोग शिकायतें तो करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि खरीदना तो है ही। आज तक देरो।
0: अब खबर पहाड़ों पर अचानक बदले मौसम की। बीते सितंबर ही पहाड़ों पर मौसम बदलने लगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई।
6: चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है, पेड़ों पर कुदरत ने श्रृंगार किया है। सितंबर के दूसरे सप्ताह के साथ ही पहाड़ कुदरत के सफेद गहनों से सज गए हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर ले हाईवे पर जो जिला के जीरो पॉइंट की है। यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के साथ ही सर्दियों ने दस्तक दे दी है।
7: कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से, और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
6: अब मनाली की तस्वीरें देखिए। मनाली के ऊपरी हिस्सों में देखिए कितना सुंदर नजारा है। यहाँ भी सीजन की पहली बर्फबारी ने मनाली को मोहक बना दिया है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही होटल व्यवसायियों की आंखों की चमक बढ़ गई है, क्योंकि होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है।
8: सब जगह पता लग गया है कि आज पहली बर्फबारी जो है वो सर्दियों की शुरुआत की आज से हो गई है। और इस बर्फबारी से जैसे ही बर्फबारी हुई और सवेरे खबरें फैली तो होटलों में बुकिंग आना शुरू हो गई है।
6: मनाली के पहाड़ों पर ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने चांदी लपेट दी। मौसम खुशगवार है, लेकिन यही मौसम कुछ लोगों के लिए काल बन गया। दरअसल पहाड़ पर एकाएक मौसम बदला, जिसकी वजह से लाहौल स्पीति में पवित्र ड्रिलगुरी कोरा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक मौसम बदलने और भारी बर्फबारी के बाद हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया की वजह से 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं एक श्रद्धालु के पैर की हड्डी टूटने से वह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए केलांग क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनाली के बाद कुल्लू की तस्वीरें देखिए। यहां भी आसमान से बर्फ बरसी है। रुई के फाहों जैसी बर्फ इस बर्फबारी ने पर्यटकों को प्रसन्न कर दिया है। अब उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें देखिए। यहां भी मौसम बदला है। बरसात के बाद हल्की बर्फबारी ने तापमान में गिरावट की है। रुद्रनाथ में हल्की बर्फबारी के साथ गिरे ओले। पहाड़ों पर बिछी सफेदी और बारिश के बीच बदलता मौसम। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब भी सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सफेद रंग में रंगा नजर आया। चारों तरफ बर्फ और उसके बीच नजर आता पवित्र धाम का खूबसूरत नजारा। कुल मिलाकर पहाड़ों पर सर्दियां दस्तक दे रही हैं। कुदरत अपना सबसे खूबसूरत रंग बिखेर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पंचायत आज तक बिहार में बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यूसीसी पर गठबंधन से बातचीत के बाद लेंगे निर्णय। बंगाल उपचुनाव में ट्विस्ट बे ट्विस्ट, पहले नंदीग्राम से ममता की उम्मीदवार ने नाम वापस लिया तो कांग्रेस का दावा, हमारी प्रत्याशी मिलन प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राहुल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोप पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस भस्मासुर, साथ आने वाले सभी दलों को जला देती। उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख का जेनजी को संदेश, बोले भारत के युवा पूरी दुनिया में न सिर्फ यशस्वी बल्कि सार्थक भी बने। और वायुसेना को HAL से मिला तेजस का ट्रेनर विमान, पवन हंस को 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर, बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद अब मुकाबले में ट्विस्ट आ गया, यहां जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। ममता बनर्जी से पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, जिसके बाद ममता जबरदस्त गुस्से में नजर आईं।
1: 2026 के बंगाल चुनाव के बाद TMC पर बगावत का ऐसा हथौड़ा पड़ा कि 18 साल की बुनियाद और 15 साल की हुकूमत की निशानी जोड़ा पूल फ्रीज हो गया।
2: But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic and totally political bias vendetta.
3: Hindu dharma ke ganda dharma bola, Mahakumbh ke Vittu Kumbh bola. আর রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম মন্দির মানি না বলে মিছিল করা, আছেন তো ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপেই সব ধ্বংস হয়ে গেছে।
1: সুবেদু অধিকারী কি খালি সিট নন্দীগ্রাম ও হুমায়ুন কবীর কি খালি সিট রেজিনগর পর 6 অক্টোবর কো উপচুনাব হ্যাঁ। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह में खींचतान को देखते हुए आयोग ने दोनों दलों से 3-3 पसंदीदा विकल्प पूछे थे। उसी के आधार पर ममता बनर्जी के गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम और फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी निशान मिला, जबकि बागी धड़े को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम और लिफाफे का निशान दिया गया। ये नाम और निशान 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए लागू रहेंगे।
4: इंटरिम ऑर्डर इससे साबित है, जाहिर है कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
1: इस बीच नंदीग्राम उपचुनाव में नया ट्विस्ट आ गया, जहां ममता बनर्जी की उम्मीदवार संचिता प्रधान सुबेंदु अधिकारी से मिलने पहुंची और फिर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब नंदीग्राम में नामांकन की